ओम शांति। हम फॉलो फादर कर रहे हैं, हमें ब्रह्मा बाबा के समान संपूर्ण निर्विकारी बनना है, ताकि हमसे प्योर एनर्जी चारों ओर फैलती रहे, प्रकृति का भी कल्याण होता रहे और वातावरण भी शुद्ध होता रहे। और जितने जितने हम निर्विकारी बनेंगे, तो देवकुल की जो पवित्र आत्माएं हैं, उन्हें आकर्षण होगा पहले हमारी ओर और वो हमसे जाएंगी बाबा की ओर। तो निर्विकारी बनने से सेवाओं में भी बहुत वृद्धि प्राप्त होगी। हम सूक्ष्म रूप से इस बात को देख सकते हैं अपने अपने में। जिसकी पवित्रता की स्थिति जितनी श्रेष्ठ है, उसकी सेवाएं भी उतनी ही श्रेष्ठ हैं। तो हम अपने को निर्विकारी बनाएंगे और क्रोध को संपूर्ण रूप से समाप्त करेंगे। हमारे मन में भी चिड़चिड़ापन न हो। कभी कभी मन में थोड़ी उत्तेजना किसी की आ जाए, थोड़ा रोब आ जाए, किसी से बदले लेने की भावना हो जाए, ये सब क्रोध के सूक्ष्म अंश हैं। तो हम ध्यान रखेंगे कि हमें बिल्कुल शीतल बन जाना है। क्रोध या चिड़चिड़ापन कहीं भी किसी को भी प्रिय नहीं होता। आपके परिवार में या आपके संगठन में कोई व्यक्ति थोड़ा थोड़ा भी चिड़चिड़ा रहता हो, आपको कैसा लगता होगा? ये क्रोध का एक ऐसा अंश है जो हमारी सूक्ष्म एनर्जी को धीरे धीरे खाने लगता है, खुश नहीं रहने देता मनुष्य को, उसके मन को विचलित करता रहेगा, उसकी एकाग्रता को नष्ट करता रहेगा। तो हमें क्रोध मुक्त होना ही है। बाबा ने भी कई बार ये अभियान चलाए हैं और बहुतों ने इस पर बहुत सफलता पाई है। बाबा का बनने के बाद बहुत आत्माएं क्रोध के अधिक अंश को समाप्त कर चुकी हैं। हम सब भी ध्यान देंगे, जितना भी क्रोध किसी के अंदर बचा हो, वो कब आता है, क्यों आता है, उसके कारण को ढूंढ लेंगे। किस परिस्थिति में मुझे क्रोध आता है, चिड़चिड़ापन आता है, उसे चेक करेंगे और ज्ञान के किसी भी पॉइंट का प्रयोग वहां पर हम करेंगे। इसका आप स्वयं अपने में निरीक्षण करेंगे और कौन सी ज्ञान की पॉइंट आपको उस समय फायदा देगी, चित्त को शांत रखने में, मन को शीतल रखने में, इसका खुद उपयोग करेंगे। तो अपने पास कई सारी पॉइंट्स रख लेंगे, जिनके आधार से हम अपने क्रोध को नष्ट करते चलेंगे। परंतु हमें ये बात कभी नहीं भूलनी चाहिए कि इन विकारों को नष्ट करने के लिए हमें योग शक्ति की परम आवश्यकता होती है। हमें स्वदर्शन चक्रधारी बनना परम आवश्यक है, क्योंकि हमारे पांचों स्वरूप क्रोध मुक्त हैं, संपूर्ण पवित्र हैं, निर्विकारी हैं। जितने जितने हम स्वरूपों की स्मृति में रहेंगे, तो स्मृति से स्थिति बनती है। बार बार अगर हम इस स्मृति को लाएंगे, मैं तो पूज्य आत्मा हूँ, परम पूज्य हूँ, संपूर्ण निर्विकारी हूँ, निर्विकारी स्थिति के आधार पर ही तो मैं परम पूज्य हूँ, तो हमारी स्थिति निर्विकारी बनती ही जाएगी। साथ में योग बल की हमें परम आवश्यकता रहती है, ताकि कोई भी विपरीत परिस्थिति हमारे पास आ जाए, जो बार बार आ जाए, हमारी मन की शांति को नष्ट करने लगे, उसमें हम अपने मन में संतुलन रख पाएं। इसके लिए योग शक्ति की परम आवश्यकता है। बिना योग बल के कोई भी निर्विकारी नहीं बन सकता, माया पर विजयी नहीं बन सकता। तो आज सारा दिन हम ये अभ्यास करेंगे, मैं विजयी रतन हूँ। इस गुड फीलिंग से हमारे अंदर की शक्तियाँ विजय दिलाने लगेंगी। मैं कल्प कल्प का विजयी रतन हूँ, कल पूर्व भी मैंने इस माया को, इस क्रोध को, इस चिड़चिड़ेपन को जीता था, ये स्मृति हमें पुनः विजयी बनाएगी, हमारी शक्तियों को जागृत करेगी। ये बहुत गुड फीलिंग दिन में कई बार हम करें, 10 बार कर लें सारे दिन में, मैं कल्प कल्प की विजयी आत्मा हूँ।
और कुछ देर हर घंटे में 10 सेकंड भी बैठा करें जाकर परम धाम में सर्वशक्तिवान की किरणों के नीचे, ताकि उसकी संपूर्ण एनर्जी हम में समा जाए, हम आत्माएं संपूर्ण पावरफुल बन जाएं और इस माया को चैलेंज कर दें, सदा के लिए नष्ट कर दें। ओम शांति।

0: रुक रुक रुक। तो सुनाई नहीं देती? और ये पुकार है आपकी गड्डी की, जो कह रही है कि बिना पिए मेरे को चलाओ। और ये पुकार आपके बच्चों की भी हो सकती है, तो जो सलामत घर पहुंचना हो तो बिना पिए गाड़ी चलाना, समझे? चलो निकल लो अब। और हाँ, हैप्पी जर्नी मेरी तरफ से अवलदार कड़क। हाँ, जो आपको कहता है डोंट ड्रिंक एंड ड्राइव। और ठीक ना? ठीक।
1: ब्रह्मा कुमारीज के सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन द्वारा

0: जनहित में जारी।
1: सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। सुप्रभात में आपका स्वागत रेडियो मधुबन पर। कुछ युवक बहुत पढ़े लिखे, योग्य और स्वस्थ होते हुए भी जब समय की बुराई करते हैं तो उस समय बड़ा विचित्र सा लगता है, क्योंकि इस युग में तो आगे बढ़ने के सारे अवसर भरे पड़े हैं। क्या इससे अच्छा समय कभी आपने देखा है? नहीं, इससे पहले ऐसे अवसर थे ही नहीं। आज तो हम जिधर भी नजर दौड़ाकर देखते हैं उधर ही अवसर नजर आ रहे हैं। इस पर भी यदि कोई नव युवक निराश होकर बोले, अरे अपना तो भाग्य ही खोटा है, जिधर भी जाते हैं निराशा के सिवा कुछ नहीं मिलता, हमें आगे बढ़ने का अवसर ही नहीं मिलता, इस समाज में तो जीना ही बेकार है जिसमें हमारे लिए कुछ भी नहीं, यह सब कुछ उन लोगों का बहाना है जो मन में पाप की गठरी लिए घूमते हैं। यह पाप नहीं तो और क्या है? आप स्वयं कुछ नहीं करते, दोष देते हो समाज को। क्या आपने अपने ही जैसे लोगों को ऊंचे ऊंचे पदों पर और बड़े बड़े बिजनेस चलाते नहीं देखते? इन सब लोगों ने यह सब कुछ कैसे प्राप्त कर लिया? इन लोगों ने हिम्मत से परिश्रम किया और साथ ही अपने विवेक से काम लिया, तभी सफल हो पाए। सफलता एक दिन में नहीं मिल पाती, इसके लिए लंबे संघर्ष की जरूरत पड़ती है, धैर्य रखना पड़ता है। जैसे कि एक किसान पहले खेत में हल चलाकर मिट्टी को खोदता है, फिर उसमें बीज बोता है, बीज बोने के पश्चात खाद डाली जाती है, समय समय पर पानी दिया जाता है, गुड़ाई करके फालतू घास फूस निकाली जाती है, कई महीनों की मेहनत के पश्चात जाकर फसल तैयार होती है। परंतु किसान इस पर भी कभी निराश नहीं होते, वे तो अपना कर्तव्य पालन बराबर करते रहते हैं। कभी कभी फसल नष्ट भी हो जाती है, अधिक वर्षा होने या सूखा पड़ने पर भी फसल मारी जाती है, मगर इस पर भी किसान खेती का काम नहीं छोड़ देते। तब फिर आप निराश क्यों होते हो? क्यों जरा सी असफलता पर भाग्य का रोना रोने लगते हो? सफलता और असफलता, दुख और सुख, यही तो जीवन के दो पहलू हैं। जीवन तो संघर्ष से बनता है, मुफ्त ही खाने वाले जीवन का आनंद नहीं ले सकते। अगर जीवन का सच्चा आनंद लेना है तो मेहनत करो, परिश्रम करो, जी जान से।

ओम शांति। मैं हूं विजय कुमार शर्मा और आप सुन रहे हैं ब्रह्मा कुमारीज का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन 107.8 FM। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

आजकल के युवकों के मन में सबसे बुरी बात यह घुस गई है कि वे चाहते हैं कि पहली असफलता के पश्चात कोई उनका हाथ पकड़कर आगे बढ़ाए, यानी किसी की सहायता पाकर ही वे ऊंचे उठने की धारणा बना लेते हैं। यदि उन्हें कोई सहारा देने वाला नहीं मिलता तो वे निराश होकर बैठ जाते हैं और अपने भाग्य को कोसते रहते हैं। कुछ करने की हिम्मत उनमें नहीं रहती। आपकी घड़ी का कोई पुर्जा यदि खराब है तो वह घड़ी के अंदर ही तो है। वह जब भी ठीक होगा तो घड़ी को खोलकर ही होगा। बिना घड़ी के खुले बाहर से सिर पटकने पर भी कुछ होने वाला नहीं। ठीक इसी तरह से जो भी शक्ति आपको मंजिल की ओर ले जाती है वह आपके अंदर ही है, बाहर कुछ नहीं है। कुछ लोग यही सोचते रहते हैं कि बाहर के हालात ही कुछ ऐसे हैं जिनके कारण उनकी हालत खराब होती जा रही है, उसी कारण वे आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। यदि वे हर काम के लिए स्वतंत्र होते तो फिर काम करके दिखलाते। यह सब खोखली और बेसिर पैर वाली बातें हैं। इनसे कुछ नहीं होता। यदि यह होता तो वो हो जाता, यदि वो हो जाता तो हम यह कर लेते। जिन लोगों को कुछ करना होता है वे कहाँ यह सब सोचते हैं कि वह होता तो वो होता, वो होता तो यह होता। यह सब अपनी कमजोरियों पर पर्दा डालने वाली बातें हैं। जो लोग कुछ कर नहीं सकते वे केवल बातें ही करके अपना काम चला लेते हैं। हमारे समाज में कुछ ऐसे भी लोग हैं जो यही सोचते हैं कि शादी के पश्चात उनके अच्छे दिन शुरू हो जाएंगे। एक के साथ एक मिलकर हम दो हो जाएंगे। दो की सोच के सहारे वे जीवन की खोई हुई खुशियां फिर से प्राप्त कर लेंगे। इसी प्रतीक्षा में कुछ भी नहीं कर पाते बल्कि कल्पना के घोड़े दौड़ाते हुए अपना दिल बहलाते रहते हैं। कुछ लोग ऐसे ही अपना समय व्यतीत करते रहते हैं। समाज का एक वर्ग ऐसा भी है जो अपनी असफलता का सारा बोझ किस्मत पर डालकर अपने आप को बचा लेता है। उनकी हर असफलता के पीछे भाग्य का हाथ रहता है। गोया कि हर असफल प्राणी ऐसे ही बेतुकी बातों का सहारा लेकर अपना बचाव कर लेते हैं, जिसे उनकी उन्नति के रास्ते का रोड़ा कहा जा सकता है। तोड़ दो ऐसे बंधनों को, आगे बढ़ो, क्योंकि अगर आप कार्य करने के लिए आगे ही नहीं बढ़ेंगे तो आप कुछ प्राप्त कैसे कर पाएंगे। कुछ प्राप्त करने के लिए कुछ पुरुषार्थ, कुछ मेहनत तो करनी पड़ती है ना। बिना पुरुषार्थ के तो प्रारब्ध कुछ भी नहीं मिलती। भूल जाओ इन सब रूढ़िवादी घटनाओं को। आपकी उन्नति के रास्ते का सबसे बड़ा रोड़ा आपका रूढ़िवाद है। यदि आपको आगे बढ़ना है, अपने मन की कामनाओं को पूरा करना है, तो रूढ़िवाद को छोड़कर संघर्ष की ओर ध्यान दो।

0: रेडियो मधुबन पर आइए सुनते हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी के प्रेरणादायी विचार।
1: कुछ दिन पहले एक भाई मिले, उन्होंने कहा सुबह क्या हुआ, कहते मैं उठा, ऐसे बेड से उठा तो टेबल थी बेड के सामने, मेरा पैर लग गया टेबल से। तो मैंने सबको जोर जोर से डांट लगानी शुरू कर दी, दिखता नहीं, अपने सब स्टाफ को बुलाया, वाइफ को बुलाया, दिखता नहीं बेड के सामने टेबल रखी, उठा मेरा पैर लग गया, सबको डांट रहा था। तो धीरे से किसी ने आके कान में कहा, सर रात को आपने रखी थी। अब जैसे ये पता चला कि रात को आपने रखी थी, अब व्यवहार कैसा हो जाएगा। इसीलिए जीवन में जितने विघ्न हमें दिखाई दे रहे हैं, जिनके लिए हम औरों को डांट रहे हैं, औरों को जिम्मेवार ठहरा रहे हैं, औरों पर चिल्ला रहे हैं, वो जीवन में विघ्न हमारे किसने रखे थे, किसने रखे थे? वो हमने ही रखे थे। अब औरों पर डांटने की बजाय हमें क्या करना है, हमें क्या करना है कि आज उसको ध्यान से साइड पे रखना है। तो जो मेरे जीवन में हो रहा है, अगर मुझे ये क्लैरिटी है कि जैसा कर्म वैसा कॉन्सिक्वेंस, तो मुझे उंगली फिर किसी और पर नहीं, उंगली यहाँ और ठीक करने की उंगली भी यहाँ। वी आर नॉट डूइंग अ फेवर टू एनीबडी एल्स। ये हम कहते हैं ना, उसने किया इतना, मैं कैसे क्षमा करूं, उनको नहीं क्षमा कर रहे, अपने आप को क्षमा कर रहे हैं।
0: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन, सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए।

भाग्य कोई लिखता नहीं बल्कि बनाया जाता है। इसीलिए अपनी हर कमजोरी, हर असफलता को भाग्य के सिर मत मढ़ो। किसी के गिराने से कोई गिरता नहीं, किसी के बनाने से कोई बनता नहीं। यदि कुछ बनना चाहते हो और अपने मन की इच्छाओं की पूर्ति चाहते हो, तो यह प्रतिज्ञा कर लो कि मुझे अपना भाग्य स्वयं बनाना है। मैं जो भी चाहूंगा या मैं जो भी चाहूंगी, उसे पाकर ही दम लूंगी। कई लोग ऐसे भी हैं जो अपने मनोवृत्ति के कारण ही दीन बन जाते हैं। इसका कारण कोई बाहर से आने वाला प्राणी नहीं, वह स्वयं ही है। आप में ही कोई न कोई दोष, कोई त्रुटि ऐसी है जो आपको अंदर ही अंदर खोखला कर रही है, जिसने आपके भविष्य को अंधकार में डुबो रखा है। इससे आपकी वृद्धि भी कुंद हो रही है। कुछ उद्योगपति ऐसे भी हैं जो केवल उत्साही और परिश्रमी युवकों की तलाश में रहते हैं। उन्हें भीड़ भाड़ में घूमना पसंद नहीं, वे तो कुछ अलग रहना चाहते हैं। उनकी सफलता का मूल मंत्र यही है कि परिश्रम करते चलो, फल उसका जरूर मिलेगा। बिना परिश्रम किए फल की आशा रखने वाले को लोग पागल ही कहेंगे। फल आपको तभी मिलेगा जब आप कोई बीज बोएंगे। बीज बोने पर ही आप फसल काट पाएंगे। तीव्र बुद्धि, उच्च कोटि के विचार, नई मौलिक सूझबूझ, यही ऐसे गुण हैं जो इंसान को ऊंचा उठाते हैं। ऐसे लोग ही उन्नति करते हैं। उद्योगपति लोग भी इस बात को जानते हैं कि ऐसे आदमी तो बहुत मिलते हैं जो केवल उतना ही काम करते हैं जितना कि उनको बताया जाता है। वे लोग अपने को केवल कहना मानने की मशीन समझते हैं। जिस प्रकार उस मशीन से बटन दबाकर जितना काम होने के लिए निर्देशित किया जाए, वह उतना ही काम करती है। अपने बुद्धि से काम करने के लिए उस मशीन की क्षमता ही नहीं होती। ठीक उसी प्रकार कुछ लोग होते हैं, ऊंचे पद प्राप्त करने या बड़े कारोबार करने में वही लोग सफल होते हैं जिनके पास कुछ नया करने की क्षमता होती है। केवल लकीर के फकीर बने रहने वालों की उन्नति रुक जाती है। इसीलिए अपने आप में एक नई शक्ति, नई ऊर्जा पैदा करें। आगे बढ़ने के लिए मौलिकता का सहारा लें। पुरानी प्रथाएं यदि आपका रास्ता रोकती हैं, तो उन्हें तोड़ डालो। यदि आपने उन्नति के मार्ग पर अपना पांव रख दिया है, तो इसे आगे बढ़ाते रहें, परंतु साथ साथ अपने शत्रुओं से भी सतर्क रहें। हर आगे बढ़ने वाले का रास्ता रोकने के लिए कुछ लोग आगे जरूर बढ़ते हैं। ऐसे लोगों से होशियार रहें।

हमेशा बाइक पर हेलमेट पहनकर निकलना चाहिए, इसमें आपका ही भला है। जीवन अनमोल है, इसे यूं ही व्यर्थ न गवाएं। रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी।

सफलता के लिए यह जरूरी है कि जिस काम को एक बार हाथ में ले लो उसे हर हाल में पूरा करके छोड़ो। कोई भी काम अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए। जो आदमी आपको अपने नीचे रखना चाहता है उससे आगे निकलने का एकमात्र रास्ता यही है कि जो काम वह आदमी कर रहा है आप उस काम को उससे कहीं अधिक अच्छे ढंग से करके दिखाएं। किसी भी चीज को छोटा करने के लिए यह जरूरी हो जाता है कि उससे बड़ी चीज उसके सामने रखी जाए। जैसे किसी बड़ी लकीर को छोटा करने के लिए उसे काट छांट न करके उसके पास एक बड़ी लकीर खींच दें, तो वह अपने आप छोटी हो जाएगी। जो लोग अपने जीवन में आने वाले हर अवसर को सौभाग्य का अवसर मानते हैं, उनको यह तो पहले से पता नहीं होता कि उनके लिए कौन सा अवसर लाभकारी सिद्ध होगा। यह तो उन अवसरों के काम से ही पता चल सकता है कि किसमें लाभ क्या है और हानि क्या है। हाँ, एक बात जरूर याद रखें कि आप अपनी ओर से जो कुछ भी करें उसे सच्चे दिल से सोच समझकर हर तरह से नाप तोल करके इस अवसर का लाभ उठाने का प्रयत्न करें। इसका परिणाम जो भी हो आपके हित में ही होगा। यह भी हो सकता है कुछ लोग आपकी बुद्धि की ओर से आंखें बंद करके बैठे होंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। एक आदमी यदि पागल हो जाता है तो बाकी लोग तो पागल नहीं हो जाते। जो लोग जीवन में आए हर अवसर को ही भाग्य प्रदाता मान लेते हैं वही सबसे बड़ी भूल का शिकार होते हैं। उन्हें ही निराशा का मुंह देखना पड़ता है। उन्हें यह उदाहरण सदा याद रखना चाहिए कि इस संसार में हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती। इसीलिए हर अवसर को सफलता का खजाना न समझें। पहले से ही अपने मन में सपनों के महल न बना लें जो बाद में रेत के घरौंदों की भांति गिरते नजर आए। बस इतना ही सोचकर काम शुरू करें कि मुझे इस कार्य को करना है और फल तो जब सामने आएगा तभी पता चलेगा। हाँ, परिश्रम करने वाले सच्चे और ईमानदार लोगों के लिए तो पूरा फल कभी मिलता ही नहीं। जो भी काम आप स्वार्थ भाव से हटकर पूरे परिश्रम और बुद्धि के सदुपयोग से करोगे उसका फल आपको अच्छा ही मिलेगा। परंतु इस ईमानदारी और सच्चे परिश्रम के साथ जो रिश्ता जुड़ा हुआ है वह रिश्ता है कठिनाइयों और उलझनों का। वैसे तो इस संसार में हर अच्छे काम के साथ कठिनाइयां जुड़ी रहती हैं, मगर इनको झेलने वाले और अपना रास्ता साफ रखने वाले लोग ही एक दिन सफलता के द्वार पर पहुंच पाते हैं। तो इन्हीं बातों के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। फिर मिलेंगे सुप्रभात में। रेडियो मधुबन, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

0: रेडियो मधुबन हमारे जीवन को सुखमय व समृद्धशील बनाता है। सभी प्रोग्राम्स को बेहतरीन अंदाज में नवीनता को लिए बेहतरीन क्वालिटी के साथ
1: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 मेगाहर्ट्ज़ पर, 107.8 FM पर। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

0: आरव, आप क्यों नहीं खेल रहे हो?
1: मुझे कोई अपने साथ खेलने नहीं देता।
0: चलो मेरे साथ, हम भी उन बच्चों के साथ खेलते हैं।
1: पर वो
0: बच्चों, क्या हम भी आपके साथ खेल सकते हैं?
2: पर आंटी, ये कैसे खेलेगा? ये तो चल नहीं सकता।
0: क्या आप भी अगर इस हाल में होते तो क्या आपका मन नहीं करता खेलने का? आरव का भी मन आपकी तरह है, ये भी खेलना चाहता है, दोस्त बनाना चाहता है, हंसना चाहता है।
3: चलो हम भी अब आरव को अपने साथ खिलाते हैं। चलो आरव, खेलते हैं मिलकर।
4: कहीं हम अपनी पिछड़ी सोच की वजह से बच्चों से उनके खेलने का अधिकार छीन तो नहीं रहे हैं? रेडियो मधुबन कहता है, खेलना हर बच्चे का अधिकार है।
5: मानवीय हो मानसिकता, सुखद हो व्यवहार, मन की आँखों से देखिए सुंदर ये संसार।

0: नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM। ये है कार्यक्रम सहज स्वास्थ्य। मैं हूं आपका दोस्त राजेश। दोस्तों, जब हम स्वास्थ्य की बात करते हैं तो अक्सर हम इस बात को समझते हैं कि स्वस्थ रहना मनुष्य के लिए एक सबसे बड़ा वरदान है। अगर स्वास्थ्य चला जाता है तो व्यक्ति जीवन के सारे सुख सुविधाएं होते हुए भी उसका उपभोग नहीं कर सकता, या वो चीजें होते हुए भी वो अपने आप को सुखी नहीं महसूस करता। ऐसे में स्वास्थ्य कितना महत्वपूर्ण है हम सभी समझते हैं। अक्सर इसके महत्व को न जानने के कारण हम कुछ ऐसी गलतियां कर बैठते हैं जिसकी वजह से हम अपने स्वास्थ्य को खो देते हैं, या थोड़े समय के लिए हम रोगी बन जाते हैं, और इस रोग से छूटने के लिए फिर हमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है। आइए आज स्वास्थ्य से जुड़े हुए कुछ ऐसे विषयों पर जानकारी लेते हैं जिससे ये समझा जाए कि कैसे हम अपने आप को स्वस्थ बनाए रखें, स्वास्थ्य का यह तोहफा हमेशा हमारे पास रहे। आज हमारे साथ इन विषयों पर चर्चा के लिए स्वास्थ्य जगत से ही एक ऐसे एक्सपर्ट जुड़ रहे हैं जो पेशे से एक एलोपैथी डॉक्टर हैं, भारत के जाने माने ऑस्टियोपैथ हैं और स्पोर्ट्स मेडिसिन के क्षेत्र में लंबा अनुभव रखते हैं। साथ ही भारत के प्राचीनतम प्रकृति चिकित्सा केंद्रों में से एक आरोग्य मंदिर गोरखपुर में प्रैक्टिस करते हैं, जहां पर उनके परिवार की अनेक पीढ़ियों ने लोगों को स्वास्थ्य लाभ दिया है और दे रहे हैं। आज हमारे साथ स्टूडियो में जुड़ रहे हैं डॉक्टर राहुल मोदी जी। डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है आज के कार्यक्रम में।
1: नमस्कार, ओम शांति।
0: डॉक्टर साहब, स्वास्थ्य से संबंधित चीजों पर जब भी हम कोई

0: बातचीत करते हैं तो ये बात समझ में आती है कि स्वास्थ्य एक ऐसी चीज है जिसे एक बहुमूल्य कुंजी के रूप में लोग हमेशा से देखते आए हैं। मगर गौर करने वाली बात ये आज देखने को मिलती है कि व्यक्ति का ध्यान पैसा कमाने के लिए ज्यादा रहता है, जीवनोपार्जन के लिए ज्यादा रहता है, मगर जीवन को सुख से व्यतीत करने के लिए जो सबसे पहली चीज चाहिए, निरोगी काया यानी स्वस्थ शरीर, व्यक्ति का अपना स्वास्थ्य आवश्यक है, वो पहली रिक्वायरमेंट है, इसे लोग भूल जाते हैं। ऐसा क्यों होता है?
1: भैया, अरबी में कहावत है कि जिसके पास स्वास्थ्य है उसके पास उम्मीद है, और जब उसके पास उम्मीद है तो उसके पास सब कुछ है। बहुत बार ये बोला जाता है, होप हैंग्स फ्रॉम अ वेरी थिन स्ट्रिंग, बट इफ यू हैव होप यू कैन गेट ऑल द थिंग्स। तो मोटा मोटी उम्मीद को भी स्वास्थ्य के साथ जोड़ा जाता है कि अगर आप स्वस्थ हैं तो आपके पास ज्यादा मेहनत करने की ताकत है, आपको पास ज्यादा उम्मीद है। और ये बहुत बार लोगों को समझाया जाता है कि आप कृपया करके अपने स्वास्थ्य का ध्यान बहुत अच्छे से दीजिए। और अभी हम लोग जिस तरह से बात कर रहे हैं, क्या हमारे देश नहीं पूरी दुनिया में जो बदलाव आया है सन 1990 सन 2000 तक, हमारे यहाँ नाइट ड्यूटी या रात का काम सिर्फ चौकीदार लोग किया करते थे, पुलिस वाले किया करते थे और अस्पताल के कर्मचारी किया करते थे। रेलवे स्टेशन पे भी आपको ये मिल जाता था। उस समय हमारी हवाई सेवाएं इतनी नहीं थी कि रात भर आपको दौड़ना भागना पड़े, और एक अमूमन ये था कि 10-11 बजे के बाद आपको रिक्शा मिलना, आपको टैक्सी मिलना, ये सब कम हो जाएगा। अब आप देखिए कि रात का काम करने वाले कितने सारे लोग हो गए, और जो दिल्ली एनसीआर है या हैदराबाद है, मुंबई है, बैंगलोर है, चंडीगढ़ है, लखनऊ है, जयपुर है, आप जो भी बड़े शहरों को देखिए, इवन सुदूर आसाम कोलकाता चले जाइए, आपको एक बहुत बड़ी जनसंख्या यंगस्टर्स की मिल जाएगी जो कॉल सेंटर पे काम कर रहे हैं और जो रात में काम कर रहे हैं, और वो उस रात में काम करने की वजह से अपनी पूरी जो लाइफ साइकिल है और स्लीप साइकिल है उसको डिस्टर्ब कर दिए हैं। इसीलिए कहा जा रहा है कि बहुत दिन तक लोग ये काम कर ही नहीं पा रहे, और उन्हें ये काम साल 2 साल 3 साल के बाद छोड़ना पड़ रहा है क्योंकि उनको बीमारियां पकड़ ले रही। इवन भैया, अब आप कंस्ट्रक्शन साइट्स पे देखिए, वहां 24 घंटे काम हो रहा है। तो हम जो काम कर रहे हैं वो अपना न समय देख रहे हैं न वातावरण देख रहे हैं, और हम जब काम कर रहे हैं तो अपने भोजन पे भी ध्यान नहीं दे रहे हैं। मैं किसी दूसरे के ऊपर उंगली नहीं उठाता हूं, मैं अपना ही आपको एग्जाम्पल देता हूं कि जब मैं मुंबई में मरीज देखता हूं और मेरे पास बहुत सारे मरीज रहते हैं, तो मेरा नाश्ता, मेरा जो दोपहर का भोजन है और मेरे शाम का जो भोजन है, वो सिर्फ एक चीज होता है, वो है वड़ा पाव। और आपका दिमाग क्या कहता है, जल्दी से जल्दी कुछ खा लो। और ये मेरे यंग डेज में मैंने बहुत किया। मैं जब ब्रिटेन में रहा तो जस्ट एक इंग्लिश का वर्ड है, आप भी श्री भैया रहे हैं, ग्रैब अ सैंडविच एंड गो, या पिक अप अ कॉफी एंड गो। तो हम लोग क्या करते, और आप जितने भी बड़े स्टोर्स को देखिए, वहां पर एक मील कॉम्बो मिलता था जिसमें एक छोटा पैकेट ऑफ चिप्स या कुकी बिस्किट मिलता था, एक सैंडविच मिलता था और एक ड्रिंक मिलती थी। और ये आपसे उम्मीद की जाती थी कि आप इसको 5 ही मिनट में खा के खत्म कर लेंगे। तो हम लोग अपने भोजन, उस समय दिमाग यही था कि बस पेट भर लेना है, स्वास्थ्य की तो हम बात ही नहीं सोच रहे थे। और जब उम्र बढ़ने लगती है, खासकर जब आप 35 साल को क्रॉस करते हैं और बहुत सारे लोगों में 40 साल तक, तो आपको ये जो आपने किया है अपने शरीर के साथ, आपने जो दुर्व्यवहार किया है, वो आपको दिखने लगता है, आपको लगने लगता है कि आपने गलत किया, आपको ये करना नहीं चाहिए था, आपको ठीक से भोजन करना चाहिए था, आपको ठीक से एक्सरसाइज करनी चाहिए थी, आपको ठीक से हिलना डुलना चाहिए था। तो मैं सबको ये कहना चाहूंगा कि कृपा करके अपने स्वास्थ्य के प्रति जितनी जल्दी हो सके उतना जागरूक हो जाइए। और मैं सिर्फ शरीर के स्वास्थ्य की बात नहीं कर रहा हूं, मैं शरीर, मन और हम सोसाइटी में कैसे रह रहे हैं, तीनों तरह से आपको स्वस्थ रहना है और अच्छा काम करना है। क्योंकि अगर आप स्वस्थ रहेंगे, अच्छा काम करेंगे, तभी हमारा देश आगे बढ़ पाएगा।
0: डॉक्टर साहब, ये बात आप बहुत ही सहजता से हम सबको समझा रहे हैं कि कैसे हम इस एक चीज को इग्नोर कर देते हैं, अपने स्वास्थ्य को इग्नोर कर देने की वजह से दूसरी चीजों को प्रायोरिटी देने से हम इसे खो देते हैं, और फिर उसे वापस पाने के लिए हमें कमाया हुआ पैसा, समय इत्यादि खर्चना पड़ता है। पिछले दिनों हम बातचीत कर रहे थे, हम ये चर्चा में समझ रहे थे कि कब्ज की जो बात हम कर रहे थे, कॉन्स्टिपेशन एक ऐसी समस्या है जो हमारे ऐसे ही इग्नोर करने के कारण शुरू होती है। हम पानी पीना पर ध्यान नहीं देते, हम समय पर शौच पे जाना पड़ेगा तो उसके लिए हम, हालांकि हमारा शरीर इशारा करता है तो भी हम उसे दबा दे रहे हैं कि हम शौचालय का इस्तेमाल नहीं कर पाते। हम भोजन में भी हेर फेर कर लेते हैं, क्या खाना है क्या नहीं खाना है उस चीज पर ध्यान नहीं देते। ऐसे करते करते ये इसका स्वरूप बदलता चला जाता है। और आपने ये भी कहा कि पाइल्स जैसी समस्याएं भी इससे ही जुड़ी हुई होती हैं कि इन्हीं गलतियों के कारण ये चीज ऐसे होती जाती हैं। अब समस्या एक ही चीज से जुड़ी हुई है वो समझ में आ रहा है कि धीरे धीरे वो अलग अलग स्टेजेस पे आ रहा है। अब इसके इलाज के बारे में जब बात की जाती है तो प्रश्न उठता है, क्या इसके इलाज भी एक समान है कि इन सारी समस्याओं के लिए हम अलग अलग तरीके से इलाज करते हैं, क्योंकि आज लोग अलग अलग पैथीज इत्यादि का इस्तेमाल करते हैं, तो प्रश्न उठता है स्वाभाविक रीति।
1: भैया, मोटापा हो, कॉन्स्टिपेशन हो या पाइल्स हो, मोटा मोटी सबका इलाज एकदम एक जैसा है। इन तीनों के विषय में आपने भैया खाने की बात की और शौच जाने की बात की, तो एक बड़ी, यहाँ एक लोकल बंगला में कहावत है कि जाए कि ना जाए तो जो जाए उचित, और खाए कि ना खाए, ना खाए उचित। मतलब अगर आपको, मतलब थोड़ा भी आपको, आपका पेट इशारा कर रहा है कि फ्रेश होने जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, आपको तुरंत जाना चाहिए। वो हल्के से भी सिग्नल को, वो हल्के से भी जो आपके शरीर के अंदर से आवाज आ रही है, उसे तुरंत आपको पकड़ना चाहिए। मतलब शौच आप जाएं कि ना जाएं, इस दुविधा में अगर आपका मन है तो आपको चुपचाप शौच चले जाना चाहिए। और इसी के विपरीत कि हमको खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए, तो इसमें नहीं खाना चाहिए ज्यादा उचित है। अगर आपके शरीर ने, आपके मन ने, आपकी जिह्वा ने, आपके दिमाग ने एक बार भी ये सोच लिया यार ये खाएं कि नहीं खाएं, तो नहीं खाना उचित है। तो प्लीज, अगर आप अपने पेट को ठीक रखना चाहते हैं, तो मैं हमेशा बोलता हूं गर्दन को दाहिने बाएं घुमाइए, ना बोलना सीखिए खाने को। और अगर जरा सा भी आपके पेट में सिग्नल आए तो आपको तुरंत पेट साफ होने के लिए जाना चाहिए। हम लोग अभी पेट की बात कर रहे हैं और पेट साफ होने की बात कर रहे हैं, तो इसमें सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज आजकल बात की जाती है वो है इलाज में, अब उसको भी कंसिडर किया जा रहा है कि आपको सुबेरे जल्दी उठना चाहिए। हमारी ह्यूमन बॉडी को इस तरह से भगवान ने बनाया है कि उसमें जो भी नेचुरल, जो बात फ्रेश होने के जो सिग्नल्स हैं, वो सुबेरे के समय आते हैं। आप जान के अचंभित होंगे कि इस समय जितने भी इनफर्टिलिटी के मरीज हैं, उनके ट्रीटमेंट के लिए भी जो प्रोसेसेस हैं, वो डॉक्टर्स कोशिश करते हैं कि सुबेरे किए जाएं। और वो ये तक कोशिश कर रहे हैं, स्पेशली बड़े शहरों में, कि ब्रह्म मुहूर्त में किया जाए, कि ये सबसे पॉजिटिव, सबसे अच्छा समय है। मेरी माँ ये हमेशा कहती थी, सुबेरे उठ के जो पढ़ाई होती है वो 1 घंटे में हमें 2 से 3 घंटे का फायदा हो जाता है। सुबेरे उठ के मुंह हाथ धो के, जब पूरा वातावरण शांत रहता है, कोई भी चीज सुनाई नहीं देती, उस समय अगर आप बैठ के पढ़िए तो आपको ज्यादा याद होगा, आपके शरीर के लिए अच्छा और आपके मन के लिए भी अच्छा है। तो यही चीज अब मोटापा, कॉन्स्टिपेशन और पाइल्स, तीनों में कहा जा रहा है कि आप प्लीज सुबेरे उठिए। और ये भी कहा जाता है कि सूर्य की जब किरण निकल रही है, अगर आप उस समय उठ पाएंगे तो आपको सबसे अच्छा लगेगा। और अगर आप किसी तांबे के या मिट्टी के या जो सामर्थ्यवान है चांदी के बर्तन में रखा हुआ पानी जो रात भर का रखा है उसे उठते ही पीते हैं, तो आपके पेट साफ होने में वो बहुत मदद करेगा। सुबेरे उठते ही 2 ग्लास पानी आपको पीना चाहिए। अब इस पानी में हम चाहें तो जो सर मैंने पहले कहा था कि हमको इसमें जो नींबू का रस मिलाकर हम इसमें सुबेरे पी सकते हैं। मैं अपने श्रोताओं को ये समझाना चाहूंगा कि आप रात में पानी रखें और सुबेरे उसमें नींबू गार लें, कागजी नींबू, और पी जाएं। ये मत करिएगा कि रात में ही आप नींबू और पानी बनाकर आप उसको रख दें और सुबेरे पिए। हल्का फुल्का व्यायाम और गहरी सांस लेने वाली कसरत आपको करनी चाहिए। और अगर आपको सीवियर कॉन्स्टिपेशन या आपको अच्छा खासा आपका वजन बढ़ा हुआ है तो आपको 4 से 6 किलोमीटर सुबेरे वॉक करना चाहिए। ये मोटा मोटी माना जाता है, अगर स्टेप के हिसाब से माने कि हम हर मिनट 100 स्टेप चल लेते हैं, 10 मिनट में 1000 स्टेप चल लेते हैं, तो हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि हम कम से कम 10,000 स्टेप सुबेरे ही चल लें। क्योंकि यदि आप 10,000 स्टेप चल लेंगे तो आपका पूरा मेटाबॉलिज्म जो है वो एक्टिवेट हो जाएगा। और जहां आप हल्के फुल्के व्यायाम, एक्सरसाइज या टहलना करेंगे तो आपका रक्त संचार जो है वो थोड़ा सा बढ़ जाएगा, आपकी बड़ी आंत में भी अच्छा रक्त संचार होगा और इसकी वजह से आपका पेट ठीक से साफ हो जाएगा। इसके बाद हमें कोई भी फल का या रस का प्रयोग करना चाहिए। फलों में सबसे अच्छा जो फल है वो पपीता, अमरूद और बेल है, और पके हुए फल का प्रयोग करना चाहिए। अमरूद, पपीता या बेल, इन तीनों में से जो भी चीज आपको मिले आपको सुबेरे के नाश्ते में करनी चाहिए। अगर आप रस पीना चाहते हैं तो आपको गाजर का रस और पालक का रस, ये रस आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छे होंगे। दोपहर के भोजन में हमें चोकर समेत आटे की रोटी, हमको ताजा साग सब्जी, उबली हुई साग सब्जी का भोजन करना चाहिए, या हम कोई भी दलिया या कोई भी मिलेट जो है वो खा सकते हैं। मैं सबको ये राय और देना चाहूंगा, कृपया मिक्स्ड आटा या मिक्स्ड मिलेट इसका प्रयोग मत करिए, क्योंकि ये आपके जो पाचन तंत्र है उसके ऊपर ज्यादा जोर डालता है। इसीलिए सिंगल ग्रेन या सिंगल मिलेट का प्रयोग करिए। मिक्सिंग ऑफ ग्रेन्स मतलब बहुत सारे अन्न को मिला के खाने की कोशिश मत करिए। जिनको भयंकर कॉन्स्टिपेशन, पाइल्स, मोटापा होता है, उनको ये तक कहा जाता है कि आप दालों को मत खाइए और जो भी भोजन जो गर्म होते हैं उन्हें मत खाइए, क्योंकि जैसे तेल, अचार, खटाई, मिठाई, ये सारी चीजें जो हैं वो आपके पाचन तंत्र को और धीरा बना देते हैं। आप सुबेरे के नाश्ते के बाद अपनी पेट पे ठंडे पानी का कपड़ा रख सकते हैं। यदि आपको मिट्टी मिले तो आप पेट पे मिट्टी की पट्टी रख सकते हैं। बहुत सारे लोग को ये भी कहा जाता है कि आप अपने कमर पे एक ठंडे पानी में कोई पट्टी, जो कॉटन की कोई भी पट्टी है उसको भिगो लें, और ये करीब 12 इंच मोटी कोई पट्टी आपके पास अगर कॉटन की है तो इसको भिगो लें और इसको अपने कमर पे बांध लें। नाभि के 4 उंगल ऊपर, 4 उंगल नीचे होना चाहिए। पट्टी नाभि के एकदम बीचों बीच से, अगर आप नाभि को बीच में माने तो जितना ऊपर नाभि के उतना ही नाभि के नीचे भी होनी चाहिए। इससे आपकी सारी जो आंत है उसमें ठंडक पहुंचेगी, आंतों की गर्मी निकलेगी और आंतों में फिर से नया जीवन आएगा और वो अपने आप चलायमान हो जाएंगी। हम लोग ने ठंडे पानी में बैठ मतलब पानी में बैठने की भी बात की थी, तो आप अगर आंतों को ठंडक पहुंचाएंगे तो आपको बहुत आराम मिलेगा। करीब हफ्ते में एक दिन उपवास करने की कोशिश करनी चाहिए। 2-3 दिन तक अगर हम रसाहार या लिक्विड डाइट करते हैं तो वो भी हमको बहुत आराम देगा। सवेरे भारी नाश्ता करने की हमें आदत छोड़नी चाहिए कि हम मतलब हैवी ब्रेकफास्ट कर रहे हैं। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि जितना ज्यादा खाएंगे उतनी जल्दी निकलेगा।
0: डॉक्टर साहब, जब आप कहते हैं कि ये जो हैवी ब्रेकफास्ट करना है इससे बचना होगा, और आपने ये भी बात कहा कि जितना ज्यादा खाएंगे उतना जल्दी निकलेगा शरीर से बाहर, ये एक अवधारणा हमारी कैसे बनती है वो मैं नहीं जानता। प्रायः ये चीज कहा जाता है कि लोगों को बोला जाता है कि भाई अच्छे से नाश्ता करो बेटा, बचपन से ये चीज सिखाया जाता है। तो हम सोचते हैं कि भाई एक किंग के समान नाश्ता होना चाहिए और एक मजदूर के जितना हमें भोजन करना चाहिए, और फिर बाद में एक बहुत ही गरीब आदमी जितना रात का भोजन होना चाहिए, ये कहावत मशहूर है। तो लोगों को लगता है कि नहीं, ब्रेकफास्ट तो हैवी होना ही चाहिए, जो मिल रहा सब कुछ ही खा लेना है, ऐसी ये चीज लगती है।
1: भैया ये जो आपने बात की ये हेल्दी पीपल के लिए है। जब आपका पाचन तंत्र चल ही नहीं रहा है तो उसमें आप ऊपर से जो भी डालेंगे वो फंस जाएगा। अच्छा, हैवी ब्रेकफास्ट अगर ये जहां से भैया निकला वहां पर जो भी लोग थे वो सैलड बहुत खाते हैं, वो फ्रूट्स बहुत खाते हैं, वो ब्रेकफास्ट में जैसे जो यूरोप है वहां से ये धारणा निकली, तो दे हैव लॉट ऑफ फ्रूट्स सैलेड्स ब्रेड्स मिल्क, ये वहां से निकला। हमारी इंडिया में आते आते ये सुबेरे के पराठे में कन्वर्ट हो गया। और ये हैवी ब्रेकफास्ट जो है ये तला भुना वो सारी चीजें हो गई। आप खुद नोटिस करेंगे भैया कि हम आप विदेश में रहे हैं वहां खाने के साथ पानी बहुत कम पिया जाता है, और हमारे यहाँ हम इतना भारी भोजन करते हैं कि हम खाने के साथ पानी का गिलास भी रखते हैं। बहुत सारे लोग जब आरोग्य मंदिर में चिकित्सा कराने आते हैं तो वो इस बात से अचंभित हो जाते हैं कि यहाँ पानी का गिलास ही नहीं भोजन के साथ मिलता है। हम आपको सिर्फ एक स्टील की प्लेट, 2 कटोरी, 1 चम्मच देते हैं, हम पानी का गिलास ही नहीं देते हैं। और अगर आपको कोई भी पाचन तंत्र की समस्या है, भोजन आपका ठीक नहीं है, तो आपको ये कोशिश करनी चाहिए कि आप खाना खाने से पहले नॉर्मल या हल्का गुनगुना पानी ठंडक में पी सकते हैं, और भोजन करने के 1.5 से 2 घंटे बाद इच्छा अनुसार आप जल पी सकते हैं। खाने के साथ आपको पानी जो है वो अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि वो पेट और छोटी आंत का जो काम है वो बढ़ा देता है। एक्सरसाइज में ये भी कहा जाता है कि आप बेसिक सूर्य नमस्कार अगर करिए, क्योंकि सूर्य नमस्कार में आगे झुकने और पीछे झुकने के जो आसन है वो आपके पेट को साफ करने में बहुत मदद करेंगे। ये अवधारणा है कि खासकर प्राकृतिक चिकित्सा एवं आयुर्वेद ये कि आपको बहुत भारी भोजन नहीं करना चाहिए अगर आप कॉन्स्टिपेशन या पाइल्स के मरीज हैं।
0: व्यायाम की जब आप अभी बात कर रहे थे डॉक्टर साहब, तो बहुत सारे लोग इन सब चीजों से अवगत नहीं होते। जैसे आपने ये बात कहा, जैसे मैंने अभी ये सवाल पूछा, आपने कहा कि ये स्वस्थ लोगों के लिए चीज है, मगर वो लोग जो पाइल्स कॉन्स्टिपेशन जैसे कब्ज जैसी बीमारियों से जूझ रहे हैं, उनको अपने इलाज में इन चीजों का ख्याल रखने की जरूरत है। कभी कभार हम एक्सरसाइज के बारे में भी जब करते हैं तो हम बिना चिकित्सीय सलाह के, बिना डॉक्टर से राय मशवरा किए, जो हम YouTube पे देख रहे हैं या सोशल मीडिया रील्स पे देख रहे हैं वो करना शुरू कर देते हैं। तो क्या ये जानना जरूरी नहीं है कि मेरे शरीर में जो गड़बड़ियां चल रही हैं या कोई चीजें मुझे सूट नहीं करने वाली होंगी, उसके हिसाब से मुझे ये चीज समझ कर करना है?
1: आपको अपने बारे में जरूर सोचना चाहिए। आपको वो भोजन जो आपकी जिह्वा पे आपको अच्छा लग रहा है पर आपको शरीर से कष्ट दे रहा है उसको पक्का छोड़ देना चाहिए। भैया राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात में एक चटनी बनाई जाती है जिसमें

0: हम लाल मिर्च का पाउडर लहसुन के साथ उसको पीसते हैं और ये बहुत तेज होती है। मतलब मेरे जैसा व्यक्ति इसको अगर एक बार खा लेता है तो मेरा चेहरा लाल हो जाता है, मेरे पेट में अगले दिन जलन होने लगती है और मेरी पूरे जो मुंह है सूख जाता है। तो मुझको मालूम है ये मेरे लिए अच्छी चीज नहीं है, मगर वो जब जीवा पड़ती तो बहुत एकदम एक तीखा सा स्वाद आता। तो मुझे मालूम चल गया वो मेरे लिए अच्छा नहीं है। मैंने इसको एक बार दो बार खाया, उसके बाद से मैं पहले मना कर देता हूं कि मैं नहीं खाता, और अगर सर्व भी हो जाती है तो मैं इसको छोड़ देता हूं, क्योंकि वो चीज मेरे शरीर के लिए अच्छी नहीं है। बहुत सारे लोग ऐसे ही, कोई एक फल होता है जिससे वो रिएक्शन हो जाता है, कोई एक दाल होती है, कोई एक मतलब प्रोटीन होता है, कोई सब्जी होती है, इनको खाने से परेशानी होने लगती है। ठंडक के समय लोग बहुत मटर खाते हैं तो गैस होने लगती है, इसलिए मटर को वो फिर ये होता बड़ा परेशानी हो रही, तो भाई छोड़ दीजिए आप। तो जो चीज आपके शरीर के लिए अच्छी नहीं है, आपको भले ही उससे स्वाद आ रहा है, तो प्लीज उसको तो जरूर छोड़ दीजिए।
1: बहुत ही खूबसूरत बात आपने कही डॉक्टर साहब। एक ओर हम स्वास्थ्य के प्रति जागरूक हैं और जागरूक होने की कोशिश में हमें ये भी जानने की जरूरत है कि हम क्या कर रहे हैं, क्या चीजें हमारे शरीर के लिए, हमारी प्रकृति के लिए अनुकूल है और क्या चीजें अनुकूल नहीं है, क्या चीजें हमें सूट करती हैं, क्या चीजें हमारे शरीर के लिए विरोधी हैं, ऐसी चीजें हैं जो हमें समस्या ले आ सकती है, क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, कौन सा एक्सरसाइज करना है, ये सारी चीजें समझ के साथ जब हम करते हैं तब पता चलता है। दोस्तों, स्वास्थ्य में जब भी गड़बड़ियां होती हैं तो इलाज मौजूद है, मगर उन इलाजों को करते समय सही राय लेना बहुत ही आवश्यक है। आजकल जानकारी के इस युग में रहते हुए हम हर कोई जो मन में आए वो करने लग जाए तो शायद ये हमारे लिए अहितकारी साबित होगा। कब्ज, कॉन्स्टिपेशन, पाइल्स जैसे बीमारियों के लिए इलाज के क्या तरीके हैं, उस विषय पर आज हमने डॉक्टर राहुल मोदी जी से सुना। आशा करते हैं कि ये सभी जानकारी आपके लिए फायदेमंद होगी और आप इसका सही सही इस्तेमाल करेंगे। आज की चर्चा में यही रुकना होगा। आप सभी श्रोता मित्रों की ओर से मैं डॉक्टर राहुल मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब।
0: नमस्कार, ओम शांति।
1: दोस्तों, आज की बातचीत में बस इतना ही। सहज स्वास्थ्य में अपने स्वास्थ्य को सहज करने के लिए क्या करने की जरूरत है, रेडियो मधुबन इसके लिए आपको आपके हाथ पकड़कर अच्छे स्वास्थ्य की ओर एक एक कदम बढ़ाने में मदद कर रहा है। हमारे साथ इस सफर पे यूं ही बने रहिए, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए। रेडियो मधुबन 107.8।

नमस्कार, मैं हूं बसवराज बबलेश्वर और आप सुन रहे हैं ब्रह्मा कुमारीज का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन 107.8 FM। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

0: स्वागत करते हैं आप सबका अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज में। नमस्कार। और अगर हम पूरे सफ़र को देखते हैं, खुद को पहचानने का जो ये सफ़र हम तय कर रहे हैं, उसमें हमने बात की थी डिप्रेशन की, कि डिप्रेशन की वजह क्या है, क्यों हो जाता है डिप्रेशन, भागती दौड़ती ज़िंदगी में ऐसा क्यों लगने लगता है कि हम सब कुछ होते हुए भी अकेले हैं। कहीं ना कहीं हमारे थॉट्स हैं, हमारे जो संस्कार हैं, जो हम पूरा सोचते हैं, वो कहीं ना कहीं हमें इस डिप्रेशन की तरफ ले जाता है। और अगर उन्हें ही हम पॉजिटिव कर लें तो हम डिप्रेशन से बाहर भी आ जाते हैं। हमने एंगर के बारे में जाना, गुस्से के बारे में जाना कि गुस्सा एक हथियार ज़रूर हो सकता है लेकिन हमें हमारी मंजिल तक नहीं पहुंचा सकता। खुशी आंतरिक है, अपने ही अंदर है, खुद उसे वहीं तलाशना है। आज हम बात करते हैं कि खुशी को तलाशने का सबसे अच्छा तरीका, प्यार को तलाशने का सबसे अच्छा राज क्या है। एक्सेप्टेंस, यानी कि स्वीकारना। किसे स्वीकारना है? मुझे खुद को स्वीकारना है या फिर मुझे मेरे आसपास जो लोग हैं, जो कुछ हो रहा है उसे स्वीकारना है। किस चीज़ को मुझे स्वीकारना है और किस तरह स्वीकारना है, और ये स्वीकारना किस तरह मेरी ज़िंदगी को बेहतर करेगा, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं जाने माने साइकोथेरेपिस्ट डॉक्टर गिरीश पटेल। आपका स्वागत।
1: नमस्कार।
0: नमस्कार। और हर बार की तरह हमारे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर शिवानी। अ वेरी वार्म वेलकम।
2: ओम शांति।
0: ओम शांति। डॉक्टर पटेल, एक्सेप्ट करना बहुत मुश्किल लगता है कई बार, और अगर हम देखें तो हम अदरवाइज कहते हैं कि मैं तो सब कुछ एक्सेप्ट करती हूँ, मैं तो स्वीकार है मुझे, लेकिन क्या हम सचमुच स्वीकारते हैं? स्वीकारना किसे है मुझे?
1: बिल्कुल, बहुत अच्छा कहा कि भी कॉन्फ्लिक्ट है। पहले हम कहते हैं कि मैं सब कुछ स्वीकार करता हूँ, परंतु हम करते नहीं हैं वास्तव में। और सबसे पहले तो हमें अपने आप को स्वीकार करना कि मैं जो हूँ, जैसा हूँ, जो भी मेरी क्वालिटीज़ है, मेरे में पॉजिटिव चीज़ें भी है, नेगेटिव भी है, परंतु उसको मैं सचमुच एक्सेप्ट करता हूँ। और आप एक्सेप्ट करेंगे तो पीस ऑफ माइंड होगी और फिर आगे की जर्नी है वो सरल हो सकती।
0: तो सारी अपनी नेगेटिविटीज और पॉजिटिविटीज की स्ट्रेंथ को लेकर, सारी एनर्जीज को लेकर मुझे सबसे पहला कदम करना है, खुद को स्वीकारना है। इतना आसान है सिस्टर शिवानी खुद को स्वीकारना, क्योंकि खुद से तो हमारा तारुफ ही नहीं हुआ हुआ अभी तक। हमने अपने आप से बातें ही नहीं की हैं अपने, वो एक बात फिर वही आ जाती है कि अंधेरा है अंदर, डर लगता है अंदर झांकते हुए। तो क्या हमने खुद से अभी जाना है? इतना आसान होगा मुझे ये जानना, ये स्वीकारना कि मुझ में भी ये कमियाँ हैं या मुझ में भी ये ताकत है?
2: एक्चुअली हमारे में क्या कमियां हैं शायद हम सब जानते हैं, मतलब चाहे उसका राइट पर्सपेक्टिव ना हो कि अपनी शक्ति और कमी को नहीं जान पाए, लेकिन हर एक को ये तो पता है कि मेरे अंदर कुछ कमियां भी हैं और कुछ विशेषताएं भी हैं। ज़्यादातर हमें कमियां ज़्यादा पता है। हम लोग कई बार वर्कशॉप्स में जैसे लोगों का इंट्रोडक्शन कराते हैं तो वी से गिव अस योर नेम एंड विद दैट टेल अस वन गुड क्वालिटी, यू नो योर पॉजिटिव क्वालिटी। एंड आप हैरान होंगे कि लोगों को अपनी पॉजिटिव चीज़ बताने में बहुत प्रॉब्लम होती है, और वो ज़्यादातर कहते हैं हमें तो पता नहीं, दूसरे शायद हमारे बारे में बता पाएंगे, या अगर सोचते हैं कि अगर हम ये बताएंगे तो लोग क्या सोचेंगे, अच्छा ये समझते हैं इनके अंदर ये है। लेकिन अगर आप उनको कह दीजिए अपनी वीकनेस बताइए, तो एक नहीं, आप एक मांगेंगे वो चार बता देंगे। तो वी आर अवेयर ऑफ आर वीकनेसेस, it's just that we reject them a lot. We don't like them. It's not that we can like the weakness, lekin ek bar usko accept kar lenge fir usko change karne ka jo process hai wo easier ho jayega.
0: kahin na kahin hum apne aap ko dosh dete rehte
2: hain, matlab victimization bahut ek jo feeling hum apne liye har time create karte rehte hain, you know, self pity ho gayi, victimization ho gayi, ye fir wo transformation ka process nahi lane degi. to sabse pehli cheez hame apne aap ko ki main जो हूँ, जैसा हूँ अभी, आई लाइक माई सेल्फ, एक्सेप्टेंस इज दिस, आई लाइक माई सेल्फ। ज़्यादातर हम कहते हैं जब मैं ये कर लूँगा देन आई लाइक माई सेल्फ, जब मैं ऐसा बन जाऊँगा देन आई लाइक माई सेल्फ,
0: मुझे अपनी इस कमी को दूर करना है।
2: कई बार स्थूल अचीवमेंट हो सकती है कि जब मैं इस पर्टिकुलर लेवल तक पहुँच जाऊँगा देन आई फील गुड, इट्स नॉट ऑल्सो लाइक माई सेल्फ बट आई फील गुड अबाउट माई सेल्फ। That is only acceptance.
0: Again, we have an email actually, isi se milta julta bilkul, that I don't like myself, you know. We have this, Virendra ji hamare saath mail bheja hai, unhone Chennai se, aur wo yahi keh rahe hain ki maine MBA kiya hua hai, main bahut achhi job karta hoon, main bahut creative bhi hoon, lekin sab kuch acha hote hue bhi, married bhi hoon, bacche bhi hain, sab kuch hai, parents ke saath bhi acha relationship hai, but I don't like myself. I somewhere feel ki I lack something. मुझे क्यों अच्छी फीलिंग नहीं होती अपने बारे में, और फिर मैं इसी कारण बहुत डिप्रेशन में रहता हूँ. मेरे सब लोग मुझसे पूछते भी हैं, मेरे फ्रेंड्स भी, कि क्या हुआ है. आई एम नॉट एबल टू टेल देम दैट आई डोंट लाइक माई सेल्फ. दिस इज़ अ फीलिंग एक्चुअली जहाँ हम में से सब लोग कहीं ना कहीं कभी ना कभी वाबस्ता होते हैं कि मुझे, मैं अपने आप को अच्छी नहीं लगती हूँ. कई बार हम उसको इग्नोर कर देते हैं और फिर भी आगे बढ़ते जाते हैं क्योंकि काम तो करना है. लेकिन ये जो लाइक नहीं करना है अपने आप को, कैसे होगा कि मैं उसे अपने आप को एक्सेप्ट करूं?
1: तो कहेंगे कि इनमें सेल्फ एस्टीम नहीं है. ही लैक सेल्फ एस्टीम बेसिकली. और सेल्फ एस्टीम ऐसी चीज है कि जिसमें हमें ये सोचना होगा कि मेरी जो स्ट्रेंथ है वो कौन सी है. कई बार हम खुद नहीं जानते. मैं अपने वर्कशॉप्स में एक छोटी सी गेम कराता हूँ, जो गेम दो लोगों को करनी होती है जो एक दूसरे को अच्छे से जानते हैं. मे बी पति पत्नी हो सकते हैं, तो कलीग्स हो सकते हैं. उनको ये कहते हैं कि आप अपनी सारी कमजोरियाँ लिखो. जो भी अपनी अपनी वीकनेस है वो सारी वीकनेस लिखो, 10-12 जितनी भी हो. और अपने पार्टनर की स्ट्रेंथ लिखो, उसकी सारी अच्छी क्वालिटी लिखो. दोनों वह करेंगे और फिर जब उसको मैच कराते हैं तो हर बार 100% हर पैर में यह बात होती है कि जिसको हम वीकनेस समझते हैं वही हमारा पार्टनर उसको स्ट्रेंथ समझता है.
0: वाओ, दैट्स ब्यूटीफुल, बहुत ही खूबसूरत.
1: मैं आपको एक दो उदाहरण बताता हूँ. एक कंपनी में ये प्रयोग किया तो उस गेम में देखा कि एक मैनेजर ने लिखा कि मैं बहुत गुस्से वाला हूँ. तो उसके पार्टनर ने लिखा कि भी इनकी डैशिंग पर्सनालिटी, जहां जाता है अपना काम करके आता है. तो देखो वही बात जो है वह दूसरे शब्दों में उसकी एक स्ट्रेंथ बनी.
0: उनका एग्रेशन जो था वो उनका, उसको स्ट्रेंथ लगी.
1: स्ट्रेंथ लगी उसको. ऐसे एक बार डॉक्टर्स के बीच में हम ये गेम कर रहे थे तो एक डॉक्टर ने लिखा कि मैं सर्जन हूँ परंतु सबमिसिव हूँ. कोई भी मुझे कुछ बोल देता है, आई एम बिट सबमिसिव. तो उसके पार्टनर ने लिखा कि इसमें बहुत ही ह्यूमिलिटी है, इसमें बहुत पोलाइटनेस है. तो देखिए वही बात जो हमने कमजोरी समझी वह सामने वाले उसको स्ट्रेंथ समझ,
0: क्योंकि इन दोनों के बीच में एक थिन लाइन ही है. अगर मैं उसे अपनी कमजोरी समझ रहा हूँ तो सामने वाले की नजरों में वो मेरी स्ट्रेंथ है.
2: आई थिंक इन दिस केस आई डोंट लाइक माई सेल्फ इन कंपैरिजन विद समबडी एल्स. ये ज़्यादातर ऐसे होगा कि आई डोंट लाइक, ऐसे नहीं होगा कि आई डोंट लाइक माई सेल्फ. आई डोंट लाइक माई सेल्फ व्हेन आई सी यू. मैंने MBA किया लेकिन मैं यहीं पहुँचूँ, लेकिन आप कहीं और पहुँचे हुए हैं, देन आई डोंट लाइक माई सेल्फ. ज़्यादातर जो हम अपने आप को नहीं पसंद करते हैं क्योंकि हम औरों को देख रहे हैं जिनके पास हमारे से ज़्यादा है, चाहे वो अचीवमेंट, प्राप्ति या क्वालिटी, यू नो, वैल्यूज, कुछ भी हो. लेकिन दूसरों को देखकर फिर हमें लगता है कि हम जैसे हैं वो ठीक नहीं है. इट ऑलवेज कम्स इन कंपैरिजन विद अदर.
0: इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स. सो क्या कहा जाए, हम वीरेंद्र जी को क्या कहें कि वो किस तरह से ये जो अपने आप को कि मैं, आई डोंट लाइक माई सेल्फ, आई डोंट हैव अ गुड फीलिंग अबाउट माई सेल्फ, मैं इसीलिए डिप्रेस्ड फील करता हूं.
1: अपार्ट फ्रॉम नो द साइकोलॉजिकल थिंग्स, मैं समझता हूं उनको सबसे ज्यादा जरूरत है आध्यात्मिकता की. अगर थोड़ा भी मेडिटेशन करेंगे तो ऑटोमेटिकली उन्हें खुद फील होने लगेगा कि भाई मेरे पास बहुत कुछ है. अब जो खुद ही कह रहे हैं कि भाई मैं MBA भी हूँ, बहुत अच्छा है MBA, तो सैलरी भी जरूर अच्छी होगी. नहीं, ऐसे बच्चे हैं, स्पेल सेट है लाइफ में, तो एक्सटर्नली कोई चीज़ की कमी नहीं, परंतु कमी वो अंदर में है. तो इसलिए सबसे अच्छा सजेशन है कि थोड़ा भी, इवन रिसर्च स्टडीज हुई है, बोले कुछ भी ना करे, शांति से बैठ करके थोड़ा आध्यात्मिकता के बारे में सोचने लगे,
0: रिफ्लेक्शन
1: अपने आप के बारे में सोच. और धर्म की बात मैं नहीं कर रहा हूँ. से कहेंगे कि भी आप शायद धार्मिक ना भी हो फिर भी आप आध्यात्मिक हो सकते हैं, क्योंकि आध्यात्मिकता भी साइंस है.
0: आध्यात्मिकता की जैसे ही बात आती, स्पिरिचुअलिटी की जैसे ही बात आती है, देयर कम्स एट टाइम्स एक यू नो शील्ड ले आते हैं लोग. एक ऐसे फीलिंग हो जाती है कि इट्स नॉट फॉर मी, यू नो, मैं तो एक MBA हूँ, मैं तो एक IT प्रोफेशनल हूँ. व्हाट स्पिरिचुअलिटी?
2: गेटिंग टू नो योरसेल्फ.
0: यस,
2: दैट्स ऑल.
0: या,
2: यू नो, उसको जब तक हमने ये सोचा स्पिरिचुअलिटी, हम जैसे ही स्पिरिचुअलिटी वर्ड यूज करते हैं तो हमारे माइंड में जो इमेज क्रिएट, सी एवरीथिंग इज एन इमेज, हमने ऑलरेडी प्री कंसीव्ड इमेजेस हर चीज़ की बनाई हुई है. तो जैसे ही आध्यात्म, धर्म, ये कोई भी नाम आता है तो हमारे सामने जो इमेज आती है वो पहले होती है संन्यास, दुनिया को छोड़ देना, वैभव को छोड़ देना, परिवार को छोड़ देना, एक ऑरेंज कलर की ड्रेस या शायद एक वाइट कलर की ड्रेस, ये इमेज आ जाएगी. एंड देन आई से बट आई डोंट वांट टू बी लाइक दिस यू नो बिकॉज आई एम जस्ट सीइंग के स्पिरिचुअलिटी मतलब दुनिया से कट ऑफ हो जाना. दिस इज माई बिलीफ सिस्टम. यू नो स्पिरिचुअलिटी मतलब आप एम्बिशियस नहीं रहेंगे. स्पिरिचुअलिटी मतलब आप डिटैच्ड हो जाएंगे अपने परिवार से. आप उनके बारे में सोचना बंद कर देंगे. ये जो प्री कंसीव्ड फिर अगेन बिलीफ सिस्टम बनाए हुए हैं इससे हमने क्या किया अपने आप को स्पिरिचुअलिटी से दूर रखना शुरू कर दिया.
0: भागना शुरू कर दिया बिल्कुल एक्चुअली.
2: और दूसरा बिलीफ सिस्टम स्पिरिचुअलिटी कब है जब बाकी सब चीजें फिनिश हो जाएंगी. लाइफ की सारी एम्स गोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज पूरी हो जाएंगी फ्री हो जाएंगे तो इसका मतलब आफ्टर रिटायरमेंट
0: पहले मैं ये तो कर लूं फिर सोचूंगा कि अध्यात्म की बात.
2: एंड द अदर थिंग इज देयर इज नो टाइम. यू नो अभी जितनी चीजें हैं वो ही नहीं पूरी हो रही हैं तो वेयर इज द क्वेश्चन कि आप एक और डायमेंशन मेरे जीवन में ऐड कर दें कि भाई अब आप अध्यात्म के लिए भी टाइम निकालें. आज मरने के लिए फुर्सत नहीं है यू नो द फ्रेज तो फिर अध्यात्म के लिए फुर्सत नहीं है. सो ये जो सारी बिलीफ सिस्टम है वो हमें कहीं ना कहीं इससे दूर ले जाते हैं. एंड इफ यू रियली सी इट इन दिस राइट पर्सपेक्टिव हम सारा दिन में या सारे जीवन में इतने लोगों से मिलते हैं. स्पिरिचुअलिटी जस्ट मीन्स मीटिंग वन मोर पर्सन दैट्स ऑल
0: एंड
2: दैट्स योर सेल्फ द मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन.
0: ब्यूटिफुल.
2: जब आप जीवन में इतने लोगों से मिलते हैं इतने लोगों से टाइम निकालते हैं क्या आप एक व्यक्ति और के लिए टाइम नहीं निकाल सकते हैं? निकाल सकते हैं. सो इट्स ऑल अबाउट जस्ट मीटिंग योर सेल्फ. सो इट्स नॉट यू नो anything else, it's not detachment, it's not renunciation, it's just apne aap se milna. Jo sabse important vyakti hai, uske apne pehchan aur dosti.
0: Bahut sundar aapne baat kahi aur Virendra ji se bhi hum yehi kehna chahenge, I remember that song, you know, ki aankh mila hai zindagi, haath bada kar baat kar. To kahin na kahin ye aankh milana aur haath mila kar baat karna apne aap se hai. पहचान कराना परिचय करना अपने आप से दैट्स एक्चुअली ये एक बहुत ज़रूरी कंसेप्ट है जिसको हम कहीं ना कहीं भूले बैठे हैं और वो सिर्फ बातचीत से अपने आप से बातचीत करने
2: की. एंड द अदर थिंग इज कि अवेयरनेस कि मेरे अंदर सारा दिन क्या हो रहा है. स्पिरिचुअलिटी से डिटैच होना इज लाइक कि आपको सारी दुनिया की जैसे देखो घर में जब बच्चे बिगड़ जाते हैं किसी के बच्चे एडिक्शन की तरफ चले गए तो लोग कहते हैं आपको यही नहीं पता चला आपके घर में क्या हो रहा है. आपके यू नो नाक के नीचे ये हो रहा था या आपके नाक के नीचे से वो चुरा के ले गया आपको पता ही नहीं चला. दैट मीन्स यू वर स्लीपिंग यू नो. सो सिमिलरली सारी दुनिया में क्या हो रहा है उसकी नॉलेज है. अपने अंदर क्या हो रहा है उसके लिए कह रहे हैं टाइम नहीं है यू नो. और ये नहीं समझ रहे हम कि जब तक मुझे ये नहीं पता चलेगा कि मेरे अंदर क्या हो रहा है आई विल नॉट बी एबल टू गिव माई फुल पोटेंशियल जो मैं बाहर करना चाहती हूँ. सो इट्स ऑल अबाउट नोइंग द थिंग विच इज क्लोजेस्ट टू मी. Then only will I be able to perform better in whatever I do outside. So spirituality is one of the aspects of my life. जिसे हम कहते भी है ना चार pillars है. एक table है वो चार pillars पर खड़ी है. Physical, शारीरिक aspect, मानसिक mental, सामाजिक social. एंड आध्यात्मिक स्पिरिचुअल. हर एक व्यक्ति की जीवन ये चार पिलर्स पर खड़ी होती है. लेकिन आज क्या हुआ हम शरीर का बहुत ध्यान रख रहे हैं मेंटल डिवेलपमेंट सोशल इंटरेक्शंस एवरीथिंग और ये तीन पिलर्स हमारा इतना टाइम और एनर्जी डिमांड कर रहे हैं कि हमने चौथे एस्पेक्ट की तरफ टाइम नहीं दिया. फॉर द टेबल टू स्टैंड एवरी पिलर विल हैव टू बी इक्वल. जहाँ एक पिलर भी थोड़ा सा आप देखो एक पिलर थोड़ा सा भी छोटा होता है तो वो टेबल
0: अनस्टेबल.
2: तो ऐसा भी नहीं अध्यात्म की तरफ गए तो बस अपने अपना ध्यान नहीं दिया लोगों से कट ऑफ हो गए तो फिर वो अध्यात्म वाला पांव बहुत बड़ा हो जाएगा बाकी पिलर्स छोटे हो जाएंगे. ऑल फोर एस्पेक्ट्स विल हैव टू बी इक्वली बैलेंस्ड.
0: ब्यूटीफुल.
2: देन माय लाइफ इज
0: यू नो लाइक पूरी टेबल की तरह स्टेबल हो सकती है. तो वीरेंद्र जी के सामने यही बात आती है कि खुद से बात करना. स्पिरिचुअलिटी की बात डॉक्टर साहब ने भी की कि स्पिरिचुअलिटी इज नथिंग एल्स एक्चुअली इट्स लाइक नोइंग योरसेल्फ यू नो.
1: इट्स अ साइंस मोस्ट इम्पोर्टेंट.
2: एक्सपेरिमेंटेशन भी है ना सारा दिन एक एक्सपेरिमेंट चल रहा है.
0: एक्चुअली हम कर भी क्या रहे हैं हम इस पूरे सफर में जो हम भी बात कर रहे हैं कि इट्स एक्चुअली एंड जिंदगी जीते हुए यू नो लाइक चारों बाकी तीनों पायदानों पर भी खड़े होते हुए चौथे पायदान को हम एक्चुअली अचीव कर सकते हैं. हमने बात जो आज हम डॉक्टर साहब कर रहे हैं इस एक्सेप्टेंस. पहली चीज़ आपने ये कही कि सेल्फ एक्सेप्टेंस. मैं जैसा हूँ मुझ में ये कमज़ोरी भी है मुझ में ये ताकत भी है उसके साथ मैं अपने आप को स्वीकार करूँ. उसके बाद क्या मैं अपनी कमज़ोरियों पर काम कर सकती हूँ?
1: बिल्कुल. क्योंकि तभी आप कर पाएंगे। देखो मैं आपको डिफरेंस बताता हूँ। एक तो ये जो सेल्फ एक्सेप्टेंस है उनकी स्टेट ऑफ माइंड क्या है, जो सेल्फ एक्सेप्टेंस नहीं है उनकी क्या है। जैसे भी सेल्फ एक्सेप्टेंस नहीं है तो सबसे पहले होता है टेंशन है, नो आई वॉन्ट चेंज, नो देर इज अ डिस्टर्बेंस। दूसरा जब सेल्फ एक्सेप्टेंस नहीं है तो देन व्हाट हैपेंस, नो नथिंग इज इनफ,
2: और
1: चाहिए और चाहिए।
0: एक और बात है, आई कांट चेंज, दिस इज माई बेसिक नेचर, आई एम लाइक दिस।
2: हम एक्सेप्ट करते हैं लेकिन इस सेंस में,
0: हाँ, I am like this.
1: No, no, that is wrong. Now, that's a different issue. यहाँ पर जो है कि मैं सेल्फ एक्सेप्टेंस नहीं है तो एंग्जाइटी भी आती है कि क्या करूं कैसे करूं,
2: पीस नहीं रहेगा।
1: हाँ बिल्कुल, पीस आपको नहीं, ऑलवेज यू आर पीसलेस। और अभी सेल्फ एक्सेप्टेंस से क्या होगा कि भी जैसा है आपने अपनी सिचुएशन को स्वीकार किया तो एक तो आपके थॉट्स कम होंगे। नहीं, आज जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है ना, वो विचार हमारे बहुत चल रहे, दिन में 70,000-80,000 थॉट्स चल रहे, एंड दैट इज कॉजिंग डिस्टर्बेंस। और ये होगा कि भी एवरीथिंग इज इनफ। दूसरा सेल्फ एक्सेप्टेंस से सबसे बड़ी बात है पीस इज नाउ, नो पीस इज हियर। जब एक्सेप्ट नहीं करते तो पीस इज नोवेयर,
0: है ना, शांति नहीं है जिंदगी में, यू नो कोई शांति नहीं है, कहाँ ढूंढो मुझे शांति चाहिए, तो शांति
1: इसलिए हाँ, इसलिए अपने आप को सिचुएशन को भी एक्सेप्ट करो। और आज मानने भी लगे, अच्छे अच्छे साइकोलॉजिस्ट

0: भी, ना केवल स्पिरिचुअलिस्ट, साइकोलॉजिस्ट भी मानने लगे कि आज जो आपकी और मेरी सिचुएशन जैसी होनी चाहिए वैसी ही है. भल उसमें इम्प्रूवमेंट की आवश्यकता है,
1: लेकिन अभी वो परफेक्ट,
0: परफेक्ट
1: अगेन दैट ड्रामा. अभी जो मेरा सीन चल रहा है दैट इज एक्यूरेट, परफेक्ट एंड बेनिफिशियल. ये बिल्कुल कल्याणकारी है, इसमें कुछ अकल्याण नहीं हो रहा है. इसको मैं इम्प्रूव कर सकती हूँ, द नेक्स्ट मोमेंट कैन बी चेंज्ड, लेकिन ये मोमेंट अभी जैसा है
2: और मेरे पास स्कोप है इम्प्रूवमेंट का,
0: वो फिर होगा.
1: तब होगा अगर ये मोमेंट बहुत स्टेबल बीतेगा, यू नो, एक्सेप्टेंस से, तब नेक्स्ट मोमेंट वो मोटिवेशन आएगा उसको चेंज या बेटरमेंट का. लेकिन ये मोमेंट ही जब टर्मोइल में या रिजेक्शन में बीत जाता है तो कोई एनर्जी नहीं रहती है ट्रांसफॉर्मेशन लाने के लिए, परिवर्तन लाने के लिए भी शक्ति चाहिए.
0: और एक जो बहुत बड़ी बात है जिसको मैं हमेशा कहता हूँ कि हमें अगर बहुत कुछ पाना है तो ऐसे ही नहीं होगा. आज जो हम समझते हैं हार्ड वर्क से मिल जाए, मैं ये स्ट्रगल करूं, कंपटीशन करूं, मिलेगा आपको, लेकिन जितनी मेहनत की उतना ही मिलेगा, उससे ज्यादा नहीं मिलेगा. अगर आपको सचमुच क्वांटम जंप लगानी है ना, एक मिली सेकेंड में यहां से और कहीं पहुंच जाना है, तो जो आवश्यकता है कि सुप्रा कॉन्शियस को जगाओ. क्योंकि जो सच्ची पावर है वो सुप्रा कॉन्शियस में है. सुप्रा कॉन्शियस इज इन्फिनिट ऑर्गेनाइजिंग कैपेसिटी. सुप्रा कॉन्शियस इज रियली सुपर इंटेलिजेंट, परंतु वो सोया हुआ है. तो उसे काम लेना हो तो उसको जगाना पड़ेगा. सुप्रा कॉन्शियस तब जागेगा जब आप 100% टोटली टोटली टोटली विचारों से परे जाएंगे. जब आप कंप्लीटली अपनी सुधबुद्ध को खो देंगे तब सुप्रा कॉन्शियस तक पहुंचते हैं. वह कब संभव है कि जब आप पूरी तरह से अपने आप को एक्सेप्ट करेंगे, इवन अपने सिचुएशन को एक्सेप्ट करेंगे. ये प्री रिक्विजिट है, बल उसके बाद और भी स्टेप जरूरी है कि जिसमें सुप्रा कॉन्शियस जागे, परंतु यह सबसे पहला स्टेप है.
1: तो क्वेश्चन से परे हो जाएंगे. हाँ, ना अभी हाँ. ज्यादातर जीवन में हर दिन आप एक घंटे को ही चेक कीजिए, कितने क्वेश्चंस, ये क्यों हुआ, इन्होंने ऐसा क्यों किया, ये कैसे हो गया, ये कहाँ जा रहे हैं, ये ऐसा क्यों कर रहे हैं, question mark, you know, everything we need to question.
2: And we need to know, yeah. You know, we want
1: so
2: to know.
1: So we're questioning. We are not accepting people as they are. We are not accepting situations. परिस्थिति को भी जैसी है स्वीकार नहीं कर सकते. क्यों ये ऐसा क्यों हो रहा है, अगर ऐसे कर दें तो. So it's continuously a question mark that is going on. और होने से पहले मनन करना फिर भी ठीक है, यू नो, सो दैट आपके पास स्कोप है इम्प्रूवमेंट का. लेकिन अब जब एक बात हो चुकी है, खत्म हो गई
2: क्यों है, हुआ?
1: तब उसके ऊपर मनन करना, देन दैट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम एंड एनर्जी. ऐसा क्यों हुआ, ऐसा ना होता तो ऐसा होता, ऐसा कर देते तो हमें राजयोग में यही सिखाया जाता है, जब कुछ हो गया, होने से पहले नहीं, होने से पहले आप उसमें पूरा एफर्ट डालिए, पूरी ऑर्गेनाइजिंग कीजिए उसकी, लेकिन होने के बाद जो भी हुआ, जैसा भी हुआ, इवन इफ इट वॉज अ टोटल फेलियर अकॉर्डिंग टू मी, इफ इट वॉज अ टोटल फेलियर, फिर भी उसके बाद फुल स्टॉप वो इजिएस्ट मात्रा है. लेकिन हम वो इजी मात्रा लगाने की बजाय वो टेढ़ी वाली मात्रा लगा देते हैं. और एक बार वो टेढ़ी वाली मात्रा क्वेश्चन मार्क लग जाती है तो वन क्वेश्चन ऑलवेज गेट्स फॉलोड by questions and questions.
2: So questioning is good, but we have to know where we have to make that full stop.
1: Right.
2: आसान वाली मात्रा.
1: जब कुछ हो जाता है, जिसके लिए हम कहते हैं ड्रामा हो गया, you know, now accept. ये जो हम ज्यादातर करते हैं, हम करने से पहले एक्सेप्ट कर लेते हैं, हम जैसे हैं वैसे एक्सेप्ट करें, लेकिन अपना फुल एफर्ट करें. लेकिन एफर्ट करने के बाद जो रिजल्ट आने वाली है, वो जैसी भी रिजल्ट आए, क्योंकि आफ्टर दैट यू कांट डू एनीथिंग. तो ये जो हम मनन बाद में करते हैं, एक्चुअली हम इवेंट से पहले
2: नहीं
1: इतना नहीं करते, उसके बाद ज्यादा करते हैं. तो ये जो बाद वाला मनन है, ये शायद बहुत वेस्टेज ऑफ टाइम.
2: कई बार हम ये कहते हैं कि हमने मनन इसलिए भी किया कि आगे जब कभी ऐसा होगा तो हम तैयार होंगे.
1: नहीं, लेकिन जब आगे परिस्थिति होगी तो सब कुछ बदल चुका होगा तब तक, बिकॉज नो टू टाइम इज द सेम. इवन कल तक things will be totally different. तो कल जब आप कुछ करने जा रहे हैं, think fresh. अब हम ज्यादातर क्या करते हैं, जब हम आज एक नई चीज प्लान कर रहे हैं, हम सोचते हैं पिछली बार कैसे किया था, वही वाला मेथड अभी अप्लाई कर दो. एक्चुअली अपनी क्रिएटिविटी को फिनिश कर रहे हैं,
2: इनोवेशंस कहीं ना कहीं
1: खत्म हो जाती है, इंट्यूशन खत्म हो जाती है. लॉजिक ये कहती है पिछली बार जो मेथड यूज किया था वही वाला अभी यूज करो. and karte rao. They say if you you know do what you've always done, you will get what you always got.
2: Hmm.
1: And now we add one more aspect to it. If you think what you always thought, then you will do what you always did, and then you will get what you always got.
2: Hmm.
1: Ab agar aapko kuch different chahiye, ek bigger result chahiye, think different.
2: Hmm.
1: Don't think what you always thought. So don't really need to learn anything.
2: Hmm.
1: It's over, finished.
2: Jo hua, wo ho gaya, khatam hua. This is what again acceptance is.
1: Yeah, acceptance hai.
2: एक और बात जो एक तो ये सेल्फ एक्सेप्टेंस की हम बात कर रहे हैं डॉक्टर साहब कि ये एक्सेप्ट करना बहुत ज़रूरी है कि मैं जो हूँ जैसा हूँ यहाँ पर फुल स्टॉप है कि एक्सेप्ट किया कि ये है. इसके बाद आगे कुछ और अपने ऊपर काम करना होगा, दैट्स अ सेपरेट इशू. सेकेंड इशू इज़ लोगों को एक्सेप्ट नहीं करते क्योंकि खुद को ही नहीं कर रहे हैं तो लोगों को तो बिल्कुल ही सबसे पहले चीज़ उनको चेंज करने की कोशिश करते हैं, एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहते. ये रियलाइजेशन भी है लेकिन क्या करें
0: कि ना तो बिल्कुल नहीं करो क्योंकि औरों को हम चेंज कर नहीं सकते. अपने आप को तो चेंज भी कर सकते कुछ हद तक, औरों को तो हम नहीं कर सकते. इसलिए सबसे अच्छा है कि औरों को भी वह जैसे है वैसे एक्सेप्ट करो. और आप ऐसे एक्सेप्ट करेंगे ना तो वहां तक भी वो पॉजिटिव वाइब्रेशंस पहुंचेंगे. और वो पॉजिटिव वाइब्रेशन पहुंचेंगे तो उनमें भी हारमोनी आएगी और वह धीरे धीरे चेंज होंगे. एक बहुत अच्छा प्रयोग किया गया है पानी के ऊपर. एक साइंटिस्ट ने क्या किया, पानी के क्रिस्टल्स बनाए. ऐसे पहले तो बॉटल में पानी भरा और उस पर लिखा अलग अलग, एक पर लिखा आई लव यू, दूसरे पे लिखा आई किल यू, और फिर उसके उसको बर्फ बना दिया, क्रिस्टल्स बनाए और उसकी एमआरआई ली जिसे एमआरआई लेते. तो सचमुच देखा गया कि जिस पे लिखा था आई किल यू तो वहां वो शेप्स बन ही नहीं रहे थे. जो है वो नजदीक नजदीक आ रहे एटम्स परंतु शेप्स नहीं बन रहे, परंतु जिस पर लिखा था आई लव यू उसके बहुत ही अच्छे शेप्स बन रहे हैं,
2: बॉन्डिंग हो गई.
0: हाँ, और सचमुच वो अच्छे
2: मॉलिक्यूल्स की बॉन्डिंग हो गई, तभी तो आइस में कन्वर्ट हो गया.
0: कहा भी कि यू नो वाटर आल्सो लिसंस टू यू.
2: हाँ,
0: नहीं आपके जो विचार है वो पानी पर भी प्रभाव डाल रहे, तो मानव पर तो जरूर डालेंगे. नहीं, उससे अनेक गुना ज्यादा डालेंगे.
2: हम कहते हैं कि एटमॉस्फेयर में करता है, हमारे आसपास के पूरे माहौल पे, एनर्जी पे.
1: एटमॉस्फेयर कम्स फ्रॉम द वर्ड आत्मा. आत्मा जो स्फीयर अपने आसपास क्रिएट कर रही है, जो एनर्जी हम भेज रहे हैं वो एक वातावरण क्रिएट कर रही है, दैट्स एटमॉस्फेयर. वो हम हमारे हाथ में, हम किस तरह का एटमॉस्फेयर अपने चारों तरफ क्रिएट करना चाहते हैं.
0: तो इसके कारण लोगों को एक्सेप्ट करना जरूरी है, ये तो फिर वो चेंज भी होंगे.
2: ये एक और इम्पोर्टेंट बात है कि लोगों को एक्सेप्ट करना कितना ज़रूरी है और कितना मुश्किल हो जाता है क्योंकि हम चेंज ही करना चाहते हैं, अपने से ज़्यादा औरों को चेंज करना चाहते हैं. इसके ऊपर अगली कड़ी में हम ज़रूर बातचीत करेंगे. और आज जो एक्सेप्टेंस को लेके पूरा एक सिनेरियो सामने आया कि हम किस तरह से खुद को एक्सेप्ट करके जिस सिचुएशन में जहाँ हैं वहीं उस पल को, आप कह रहे हैं कि जो अभी जो है दैट इज़ परफेक्ट एंड इट फिनिशेज ऑफ टमोरो, या अगला जो पल है, अगला लम्हा एक नया लम्हा है, एक नई कहानी, एक नया ड्रामा गढ़ा जाएगा. तो डॉक्टर गिरीश पटेल, सिस्टर शिवानी, बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके, बहुत कुछ सामने आ रहा है. थैंक यू सो मच. जिंदगी एक नाटक है, जिंदगी एक रंगमंच है, ये सुनते आ रहे हैं हम. लेकिन सचमुच ये ड्रामा रोज रचते हैं हम, लेकिन इस ड्रामे को कैसे खूबसूरत बना सकते हैं. और इसी में ये जो पूरी हमारी जर्नी है, इसमें हमने जब एक्सेप्टेंस की बात की, आज खुद को स्वीकारने की बात की, आज जैसे हम हैं जहाँ हैं उसे स्वीकारते हैं और उसके बाद खुद पर काम करेंगे. अगली कड़ी में किस तरह से हम अपनों को, दूसरों को स्वीकार सकते हैं, कैसे उन्हें एक्सेप्ट कर सकते हैं और उन्हें बदलने की कोशिश नहीं करें, ये जानने की कोशिश करेंगे. अगर आपके पास कोई सवाल है, कोई ऐसी बात है जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं, स्वागत है आपका. आप हमें फ़ोन द्वारा या ईमेल द्वारा संपर्क कर सकते हैं. हमारा फ़ोन नंबर है 9873666555 और हमारा ईमेल आईडी है omshantistudio@gmail.com. इसी के साथ आप दीजिए इजाज़त. अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारी में फिर होगी मुलाकात. तब तक के लिए नमस्कार.

नमस्कार, स्वागत है आप सभी का स्वयं से जुड़े प्रश्न पूछें। मैं कौन हूं? मुझे क्या चाहिए? मैंने जीवन में अब तक क्या पाया है? ये आत्मा चिंतन की पहली सीढ़ी है। मैं हूं आपका हमसफर आरजे रमेश। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

0: रेडियो मधुबन पर आइए सुनते हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी के प्रेरणादायी विचार।
1: आज मैं आत्मा ड्राइवर ये गाड़ी मुझे चलानी है कि मेरी आंखें मेरे हिसाब से चले, मेरा मुख मेरे हिसाब से बोले, मेरा हाथ वो ही करे जो सही है कर्म, और मन वो ही सोचे जो सही है। दैट वुड बी दैट माय कार इज इन माय कंट्रोल। सो लाइक दिस फाइव पीपल आर स्टेइंग इन द हाउस, पांच आत्माएं ड्राइवर और उनकी अपनी अपनी एक गाड़ी। अगर हर आत्मा का अपनी गाड़ी पे कंट्रोल होता तो जर्नी कैसी होती उस रोड के ऊपर? ब्यूटिफुल। हर एक ने प्यार से निकल जाना, हर एक ने एक स्टीयरिंग व्हील घुमाना है, थोड़ा सा दूसरा आ भी रहा होगा तो उसने ऐसे टर्न करना है, उसने घूम जाना, एक्सीडेंट कभी होता ही ना। द पावर टू मोल्ड, द पावर टू एडजस्ट, द पावर टू टर्न हियर, द पावर टू ब्रेक स्टॉप, सब कुछ हो जाता अगर ये गाड़ी मेरे कंट्रोल में होती तो। और अगर पांचों की होती तो वो जीवन, वो घर स्वर्ग होता, राइट? अब अगर सपोज चार की भी नहीं है, एक भी अपने करना शुरू करते हैं, सी, तो कितनी सारी चीजें बचेंगी अगर एक आत्मा अपने ऊपर संयम ले आए। दिस इज द पावर दैट वी हैव। लेकिन अगर पांचों ने अपना ध्यान नहीं रखा, अपनी उनकी ब्रेक्स चलती नहीं, उनका स्टीयरिंग व्हील उनके कंट्रोल में नहीं, लेकिन वो चाहते हैं कि वो बाकी सब गाड़ियां मेरे हिसाब से चलें, तो एक क्षण भी बिना एक्सीडेंट के नहीं चलेगा उस घर के अंदर। दिस इज द रियलिटी ऑफ आवर लाइफ टुडे।
0: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

क्या आपको भी बैंक के नाम से SMS आ रहे हैं? इन SMS में फिशिंग लिंक मिल रहे हैं जो एक क्लिक से .apk फाइल को आपके फोन में डाउनलोड कर देते हैं। ऐसी फाइलें आपके फोन का पूरा नियंत्रण साइबर अपराधियों को दे देती है, यहाँ तक कि वो आपका बैंक OTP भी देख सकते हैं। याद रखें, कभी भी किसी संदिग्ध लिंक पर क्लिक ना करें। ऑनलाइन वित्तीय धोखाधड़ी के शिकार होने पर तुरंत 1930 पर कॉल करें और किसी भी साइबर अपराध की शिकायत cybercrime.gov.in पर करें। सोशल मीडिया पर साइबर दोस्त को फॉलो करें। सतर्क रहें, साइबर सुरक्षित रहें।

राम राम, सुप्रभात, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग। मैं हूँ आरजे शुभा और कहते हैं कि नई सुबह नई उम्मीदें और ढेर सारी पॉजिटिव वाइब्स है, तो इसके साथ आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और आपके अपने मॉर्निंग ब्रेकफास्ट शो में जिसका नाम है नई किरण। तो सुबह की ताज़ी हवा हो, चाय की प्याली हो और साथ हो रेडियो मधुबन का, तो दिन की शुरुआत हो जाए थोड़ी और खूबसूरत। तो तैयार हो जाइए अपने दिन को थोड़ा लाइट, थोड़ा ब्राइट और बहुत सारा पॉजिटिव बनाने के लिए। वैसे तो आप सिस्टर शिवानी जी को भी सुन रहे थे, उससे पहले सहज स्वास्थ्य भी सुन रहे थे, तो आपने अपने मन को भी पॉजिटिव बना लिया होगा और तन को भी पॉजिटिव बनाने के सोचा होगा कि पॉजिटिव डाइट अपनाएं, यानी कि हेल्दी डाइट अपनाएं जो अपने शरीर को लाइट फील कराए और फिर मन भी लाइट हो जाए। तो अगले कुछ वक्त हम रहेंगे आपके साथ इस कार्यक्रम में जिसका नाम है नई किरण। तो बातों के साथ साथ मुस्कुराहट और खूबसूरत गीतों का और दिन को बेहतर बनाने वाले कुछ इन्फॉर्मेशन्स भी आपके साथ शेयर करेंगे। तो चाय का एक सिप लीजिए, एक प्यारी सी स्माइल कीजिए और कहिए आज का दिन मेरा है और मैं खूबसूरत बनाऊँगा और खूबसूरत बनाऊँगी। तो आइए यहाँ पर जान लेते हैं आज के दिन विशेष के बारे में, पंचांग के अनुसार क्या कुछ हाल चाल है। शक संवत 1948 श्रावण शुक्ल सप्तमी बुधवार, विक्रम संवत 2083 है। अंग्रेजी तारीख है 19 अगस्त सन 2026। सूर्य दक्षिणायन उत्तरगोल वर्षा ऋतु है। राहुकाल दोपहर 12 बजे से लेकर के 1:30 तक है। सप्तमी तिथि 7:19 तक, उपरांत अष्टमी तिथि का आरंभ है। स्वाति नक्षत्र प्रातः 6:46 तक, उपरांत विशाखा नक्षत्र का आरंभ है। ब्रह्म योग अगले दिन तड़के 3:44 तक, उपरांत इंद्र योग का आरंभ है। वणिजकरण 7:19 तक, उपरांत विष्टिकरण का आरंभ है। चंद्रमा अगले दिन तड़के 2:30 तक तुला राशि पर, उपरांत वृश्चिक राशि पर संचार करेगा। सूर्योदय का समय प्रातः 5:52 पर था और सूर्यास्त का समय 6:57 पर। और इस्लामी हिजरी के अनुसार 1448 05 रबीउल अव्वल बुध अफरा है आज के दिन। आज तुलसीदास जयंती भी है, तो विश्व फोटोग्राफी दिवस भी आज के दिन है, विश्व मानवीय दिवस भी आज के दिन है। तो ये कुछ बातें जुड़ी हुई थी आज के दिन विशेष के साथ। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए रेडियो माधुबन 107.8 FM।

नमस्कार, मैं हूँ श्वेता पंडित, आपकी साथी। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी है खुशियों की खान, बेटी है तो दुनिया है, बेटी नहीं तो दुनिया भी नहीं। आप सुन रहे हो रेडियो मधुबन, सुनते रहो मुस्कुराते रहो।

टू यू, फिर से स्वागत है आप सभी का रेडियो मधुबन 107.8 FM पर. और अभी ब्रेक के दौरान सुभाष भाई का भी फ़ोन था और मदन भाई का भी फ़ोन था, उन दोनों का भी बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए. और इसके साथ साथ आइए लौटते हैं हम मौसम जानकारी की ओर, जानते हैं मौसम का क्या हालचाल है. 33 डिग्री सेल्सियस आज जयपुर में, बुधवार के दिन हाइस्ट टेम्परेचर और लोएस्ट टेम्परेचर 26 डिग्री तक जा सकता है. बारिश होने की बहुत ही कम संभावना है राजधानी जयपुर में आज दिन के समय, रात्रि के समय 50% चांसेस है. उदयपुर में 32 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान, न्यूनतम तापमान 23 डिग्री तक जा सकता है. यहाँ पर बादल छाए रहेंगे आसमान पर, लेकिन बारिश होने की बहुत ही कम चांसेस है. आबू रोड में 33 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान, 33 डिग्री और न्यूनतम तापमान 25 डिग्री तक जा सकता है. बारिश होने की संभावना दिन के समय 55% तक है और रात्रि के समय भी 55% तक है. बात करें माउंट आबू की तो 18 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान और अधिकतम तापमान 24 डिग्री तक जा सकता है. और यहाँ पर बारिश होने की संभावना है 63% और रात्रि के समय भी लगभग 58% तक बारिश होने की संभावना है. पाली जिले में 35 डिग्री तक अधिकतम तापमान, न्यूनतम तापमान 26 डिग्री तक जा सकता है. बादल छाए रहेंगे आसमान पर, बारिश होने की बहुत कम चांसेस है. जोधपुर में 35 डिग्री तक अधिकतम तापमान, न्यूनतम तापमान 26 डिग्री तक जा सकता है. बात करें सूरत की, 31 डिग्री तक अधिकतम तापमान, न्यूनतम 27 डिग्री तक जा सकता है. बारिश होने की चांसेस भी बहुत ही कम है यहाँ पर. मेहसाना में 26 डिग्री तक न्यूनतम, अधिकतम 35 डिग्री तक जा सकता है. 55% तक बारिश होने की संभावना है दिन के समय, रात्रि के समय लगभग 40% तक बारिश होने की संभावना है. राजकोट में 25 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान, अधिकतम 33 डिग्री तक जा सकता है. और यहाँ पर बारिश होने की बहुत ही कम संभावना है, बादल छाए रहेंगे आसमान पर, धूप भी निकलेगी आज दिन में. गांधीनगर अहमदाबाद में 26 डिग्री तक न्यूनतम तापमान, अधिकतम तापमान यहाँ पर 33 डिग्री तक जा सकता है. बादल छाए रहेंगे आसमान पर, बारिश होने की संभावना 60% तक दिन के समय, रात्रि के समय 40% तक संभावना है. आइए चलते हैं राजधानी दिल्ली की ओर. यहाँ पर 34 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान, न्यूनतम तापमान 27 डिग्री तक जा सकता है और 70% तक बारिश होने की संभावना है. कोलकाता के बारे में बात करें, 33 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान, न्यूनतम तापमान 26 डिग्री तक जा सकता है, 70% तक बारिश होने की संभावना है. बेंगलुरु में 30 डिग्री तक अधिकतम तापमान, न्यूनतम 21 डिग्री तक जा सकता है. बादल छाए रहेंगे, बारिश होने की संभावना 55% तक है. बात करें अगर मुंबई की, मुंबई में 32 डिग्री अधिकतम तापमान, न्यूनतम 27 डिग्री और थोड़ी सी बारिश होने की संभावना है, 60% तक संभावना है बारिश होने की. और अगर बात करें चेन्नई के बारे में, यहाँ पर 71% तक बारिश होने की संभावना है. 34 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान, न्यूनतम 27 डिग्री तक जा सकता है. जिला सिरोही में 34 डिग्री तक अधिकतम तापमान, न्यूनतम तापमान 27 डिग्री तक जा सकता है और बादल छाए रहेंगे आसमान पर और साफ रहेगा काफ़ी समय तक आसमान, 12% तक सिर्फ बारिश होने की संभावना है. तो ये कुछ बातें जुड़ी हुई थी मौसम जानकारियों के साथ. लेते हैं यहाँ पर एक अल्पविराम, मिलते हैं इस गाने के उस पार. सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए, रेडियो माधुबन 107.8 FM. सुप्रभात, गुड मॉर्निंग.

मैं हूं अनूप जलोटा और आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन। सुनते रहो, गुनगुनाते रहो। जो तू मिटाना चाहे जीवन की तृष्णा।

आइए जानते हैं रेलवे इन्फॉर्मेशन। गाड़ी संख्या है 1, 2, 4, 6, 1 वंदे भारत एक्सप्रेस 9:05 पर आबू रोड रेलवे स्टेशन पर पहुंचेगी। जोधपुर एक्सप्रेस 20694 9:10 पर पहुंचने वाली है। जम्मू तवी साबरमती एक्सप्रेस 19224 9:53 पर 8 मिनट देरी से चलती हुई आबू रोड रेलवे स्टेशन पर पहुंचेगी। जोधपुर बेंगलुरु एक्सप्रेस 16533 10:10 पर आबू रोड रेलवे स्टेशन पर पहुंचेगी। जोधपुर सुपरफास्ट एक्सप्रेस 20496 10:30 पर पहुंचेगी और वहीं पर जोधपुर बेंगलुरु एक्सप्रेस 10:10 पर पहुंचेगी। इसके साथ साथ बात करें मुजफ्फरपुर और बीकानेर स्पेशल एक्सप्रेस के बारे में, और ये गाड़ी 11:05 पर आबू रोड रेलवे स्टेशन पर पहुंचेगी। 20476 है। योगा एक्सप्रेस 19032 11:15 पर 25 मिनट देरी से चलती हुई आबू रोड रेलवे स्टेशन पर पहुंचेगी। दौलतपुर गांधीनगर एक्सप्रेस 19412 11:30 पर पहुंचेगी और वहीं पर 0411 प्रयागराज से और ये गाड़ी गांधी ग्राम तक जाएगी। स्पेशल ट्रेन ऑन डिमांड 38 मिनट देरी से चलती हुई ये गाड़ी 11:39 पर पहुंचेगी आबू रोड रेलवे स्टेशन पर। वहीं पर साबरमती जोधपुर एक्सप्रेस 14822 11:40 पर आबू रोड रेलवे स्टेशन पर पहुंचेगी। 11:40 के बाद गाड़ी संख्या 19411 गांधीनगर दौलतपुर एक्सप्रेस दोपहर के बाद 12:55 पर पहुंचेगी। पूरी अजमेर सुपरफास्ट एक्सप्रेस 20823 दोपहर बाद 1:50 पर 5 मिनट देरी से चलती हुई पहुंचने वाली है। साबरमती जम्मू तवी एक्सप्रेस 19223 दोपहर 2:10 पर पहुंचेगी। योगा एक्सप्रेस 19031 साबरमती से योगनगर ऋषिकेश तक जाने वाली गाड़ी दोपहर 3 पहुंचेगी और वहीं पर जोधपुर साबरमती एक्सप्रेस 14821 शाम को 4:05 पर पहुंचने वाली है। तो ये कुछ बातें जुड़ी हुई थी रेलवे इन्फॉर्मेशन के साथ। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए रेडियो मधुबन 107.8 FM।

सबने कहा था इन समुंदरों में जाना, सबने कहा था इन समुंदरों में जाना नहीं, मेरे यारों सुन लो सुन लो। ख्वाबों के पीछे जाके कुछ भी है पाना नहीं, मेरे यारों सुन लो सुन लो।

ही उसके थे अपने, ऐसा था सिंबाद सेलर सेलर। उसके थे जो सपने, वही उसके थे अपने, ऐसा था सिंबाद सेलर सेलर। उसका जहाज खिला तूफानों में, मेरे यारों सुन लो, फिर भी ना आई कमी उसके अरमानों में, मेरे यारों सुन लो। वो दीवाना ऐसा ही था, वो सपनों का हमरा ही था। उसके थे जो सपने, वही उसके थे अपने, ऐसा था सिंबाद सेलर सेलर। उसके थे जो सपने, वही उसके थे अपने, ऐसा था सिंबाद सेलर सेलर। वो कुछ पा

0: उसके थे जो सपने वही उसके थे अपने ऐसा था सिंबाद सेलर सेलर उसके थे जो सपने वही उसके थे अपने ऐसा था सिंबाद सेलर सेलर उसके थे जो सपने वही उसके थे अपने ऐसा था सिंबाद सेलर सेलर
1: रेडियो मधुबन पर आइए सुनते हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी के प्रेरणादायी विचार।
2: छोटे छोटे बातों में अपनी एनर्जी को डिप्लेट नहीं करना, क्योंकि हम हीलर्स हैं, हम एंजल हैं, और हमारी एनर्जी का असर हमारे आसपास के लोगों पर एंड ऑफ कोर्स फिर हमारे पास जो हीलिंग के आ रहे हैं उनके ऊपर पड़ने वाला है। आई कैन नॉट अफोर्ड टू वेस्ट माई एनर्जी लाइक दिस। माई एनर्जी इज़ फॉर अ पर्पज ऑफ हीलिंग थाउजेंड्स ऑफ पीपल। एंड जब हम उस इंटेंशन से अपनी एनर्जी को बचाएंगे, सबसे पहले कौन बच जाएगा? हम खुद। हम काम करेंगे, काम करवाएंगे, डिसिप्लिन करेंगे, डिसिप्लिनरी एक्शन भी लेंगे, लेकिन हिले बिना। इट्स ओनली अ लाइफ स्टाइल चेंज। दीज आर लाइफ स्टाइल चेंजेस। एनर्जी लाइफ है, ये निकल जाए तो लाइफ खत्म हो जाती है।
1: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन, सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए।
3: अभी बजे हैं सुबह के 9। एक मिनट का समय स्वयं को दे

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। सरकार ने घरेलू पाइपलाइन गैस कनेक्शन को घर घर पहुंचाने की प्रोत्साहन योजना को स्वीकृति दी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने 600 पुराने विशेषज्ञों को हटाकर नए विशेषज्ञ शामिल किए। झारखंड सरकार ने विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के बीच अनियमितताओं के कारण रद्द की गई 44 भर्ती परीक्षाओं की सूची जारी की। दिल्ली जल बोर्ड रिश्वत मामले में दिल्ली के पूर्व मंत्री और आम आदमी पार्टी के नेता सत्येंद्र जैन और 5 अन्य गिरफ्तार। संयुक्त अरब अमीरात ने ईरान पर मिसाइल हमले का आरोप लगाते हुए व्यापारिक और वित्तीय लेन देन स्थगित किए। और नीदरलैंड्स में पुरुष हॉकी विश्व कप के पूल डी में आज भारत का सामना पाकिस्तान से। अब समाचार विस्तार से। सरकार ने पाइप से रसोई गैस पीएनजी कनेक्शन घर घर पहुंचाने की प्रक्रिया तेज करने की प्रोत्साहन योजना को स्वीकृति दे दी है। इसका उद्देश्य स्वच्छ, सुरक्षित और सस्ती रसोई गैस उपलब्ध कराना है। ये योजना 1 सितंबर से 2 चरणों में लागू की जाएगी। एक रिपोर्ट।
1: पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अनुसार योजना के माध्यम से मौजूदा पीएनजी कनेक्शनों को अपने रसोई घरों में पाइपलाइन वाली प्राकृतिक गैस का इस्तेमाल शुरू कर सकेंगे। वर्तमान में देश भर में करीब 1,74,00,000 घरेलू पीएनजी कनेक्शन हैं। मंत्रालय ने बताया कि योजना के अंतर्गत सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन सीजीडी कंपनियों को बिना बिल वाले कनेक्शनों को सक्रिय करने और पीएनजी नेटवर्क का विस्तार करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। योजना के अंतर्गत सीजीडी कंपनियों को प्रदर्शन अवधि के दौरान जोड़े गए हर अतिरिक्त घरेलू पीएनजी कनेक्शन के लिए 200 स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर अतिरिक्त घरेलू स्तर पर उत्पादित कम कीमत वाली गैस आवंटित की जाएगी। आनंद और शिवांग की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से चाहत सिंह।
0: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने अपनी टीम में शामिल 600 विशेषज्ञों को हटाकर नए विशेषज्ञ शामिल किए हैं। शिक्षा मंत्रालय ने कहा है कि प्रश्न पत्रों की गहन पड़ताल के लिए 4 स्तरीय जांच प्रणाली लागू की जाएगी। एनटीए के कार्यालयों में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के जवान तैनात किए जाएंगे। परीक्षा

0: यूपीएससी ने यह निर्णय शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी के निर्देश के बाद लिया है। इसमें परीक्षाओं के सुचारू संचालन के लिए सभी उपाय करने को कहा गया था। झारखंड सरकार ने अनियमितताओं के कारण रद्द की गई 44 भर्ती परीक्षाओं की सूची जारी कर दी है। इनमें वर्ष 2014 से झारखंड लोक सेवा आयोग और आउटसोर्स एजेंसी टीएसआर डेटा प्रोसेसिंग प्राइवेट लिमिटेड टीडीपीएल द्वारा आयोजित परीक्षाएं शामिल हैं।
1: सरकार ने उन परीक्षाओं के परिणाम भी रद्द कर दिए हैं जिनकी प्रारंभिक प्रक्रिया टीडीपीएल द्वारा कराई गई थी। अधिसूचनाओं के अनुसार कथित अनियमितताओं को लेकर एसआईटी की जांच और जारी सीआईडी जांच में सामने आए तथ्यों के आधार पर जेएसएससी सीजीएल परीक्षा रद्द की गई है। सरकार ने 6 परीक्षाओं को स्थगित करने और 17 परीक्षाओं की सीआईडी जांच कराने का भी फैसला लिया है। दोनों आयोगों में आंतरिक निगरानी प्रकोष्ठ का गठन किया जाएगा, जबकि वरिष्ठ आईएएस अधिकारी अमिताभ कौशल की अध्यक्षता वाली समिति परीक्षा प्रणाली में सुधार के सुझाव देगी। मैं विश्व रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
0: दिल्ली सरकार की भ्रष्टाचार निरोधक शाखा ने आम आदमी पार्टी नेता और दिल्ली के पूर्व मंत्री सत्येंद्र कुमार जैन, भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी और दिल्ली जल बोर्ड के पूर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी उदित प्रकाश राय और 4 अन्य आरोपियों को गिरफ्तार किया है। ये गिरफ्तारी दिल्ली जल बोर्ड के सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट को उन्नत बनाने की टेंडर प्रक्रिया में गड़बड़ी के मामले में हुई है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: सतर्कता निदेशालय की शिकायत पर उनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। जांच के दौरान सामने आया कि निविदा प्रक्रिया में कथित तौर पर ऐसी तकनीकी विशिष्टताएं और शर्तें शामिल की गई थीं जो एक विशेष प्रौद्योगिकी प्रदाता के पक्ष में थीं। इससे प्रतिस्पर्धा सीमित हुई और एक चयनित निजी इकाई को अनुचित लाभ पहुँचा। जाँच में यह भी सामने आया है कि निजी व्यक्ति कथित तौर पर कुछ सरकारी अधिकारियों और बिचौलियों के साथ संपर्क में थे ताकि निविदा प्रक्रिया को प्रभावित किया जा सके। एसीबी के अनुसार इससे विशेष प्रौद्योगिकी प्रदाता के पक्ष में निविदा की शर्तों को प्रभावित करने के लिए निजी व्यक्तियों और सरकारी अधिकारियों के बीच कथित साठगांठ के संकेत मिलते हैं। जांच में पूरे धन के लेन देन और कथित अपराध से अर्जित आय की भी जाँच की जा रही है। अनुपम और आनंद के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने भारत और जापान की प्रगाढ़ होती साझेदारी और उनके रणनीतिक महत्व पर बल दिया है। उन्होंने जापानी कंपनियों को भारत में निवेश और साझेदारी बढ़ाने के लिए आमंत्रित किया है। श्री गोयल ने नई दिल्ली में जापानी प्रतिनिधिमंडल से कहा कि दोनों देशों के बीच एक मजबूत साझेदारी है जो हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, प्रगति और समृद्धि की साझा आकांक्षाओं पर आधारित है। उन्होंने कहा कि यामानाशी प्रांत के प्रतिनिधियों की मौजूदगी ये दिखाती है कि इस साझेदारी का भारत के राज्यों और क्षेत्रों तक तेजी से विस्तार हो रहा है।
3: जापान के निवेशक और वहाँ पे नवाचार से जुड़े हुए लोग उत्तर प्रदेश के दौरे पे आए हैं। यामाची और उत्तर प्रदेश के बीच ये जो साझेदारी है इससे बड़े पैमाने पे निवेश आएगा, ढेर सारे लोगों को रोजगार और व्यापार के अवसर मिलेंगे।
0: इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च ने चालू वित्त वर्ष में देश की अर्थव्यवस्था के लिए सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर 6.8% रहने का अनुमान व्यक्त किया है। हालांकि एजेंसी ने यह भी कहा है कि अलनीनो और भौगोलिक राजनीतिक चुनौतियों से आर्थिक रफ्तार धीमी पड़ सकती है। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय ने वित्त वर्ष 2026 में वृद्धि दर 7.6% रहने का अनुमान लगाया है। वित्त मंत्रालय ने कहा है कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों ने वित्त वर्ष 2025-26 में ऋण देने के मामले में जबरदस्त बढ़ोतरी की है। इस दौरान भारतीय रिजर्व बैंक के प्राथमिक क्षेत्र ऋण फ्रेमवर्क के अंतर्गत इन बैंकों का प्रदर्शन मजबूत रहा। हालांकि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के कुल बकाया ऋण में 2024-25 के मुकाबले 10.3% की बढ़ोतरी दर्ज की गई, जो गत वित्त वर्ष में 5,78,000 करोड़ रूपये से ज्यादा का था। गृहमंत्री अमित शाह तमिलनाडु के 2 दिन के दौरे पर आज शाम चेन्नई पहुंचेंगे। श्री शाह कल चेन्नई के पास कोवलम में दक्षिण भारत के मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन में भाग लेंगे। सम्मेलन में तमिलनाडु, केरलम, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और पुदुचेरी के मुख्यमंत्री भाग लेंगे। पंजाब पुलिस ने केंद्रीय एजेंसियों के साथ मिलकर मलेशिया से एक कुख्यात गिरोह के 3 आरोपियों को भारत लाने में सफलता हासिल की है। पंजाब के पुलिस महानिदेशक गौरव यादव ने बताया कि इन आरोपियों के पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI से संबंध थे। हत्या, जबरन वसूली, विस्फोटक रखने तथा हाल में लुधियाना में हैंड ग्रेनेड विस्फोट की साजिश से जुड़े कई मामलों में इनकी तलाश थी। हरियाणा पुलिस ने पंजाब के एक परिवार और उसके सहयोगियों से जुड़े अंतर्राज्यीय बाल तस्कर गिरोह को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने गिरोह के सरगना परगट सिंह को पंजाब के मुक्तसर से गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार गिरोह ने अब तक देश भर में 50 नवजात बेचे हैं। बहादुरगढ़ के पुलिस उपायुक्त मयंक मिश्रा ने आकाशवाणी को बताया कि अब तक गिरोह से जुड़े 21 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में आज तड़के न्यू मार्केट इलाके में एक होटल में आग लगने से 9 लोगों की मौत हो गई और 6 अन्य घायल हो गए। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि होटल में आग से बचाव और अग्निशमन की व्यवस्था नहीं थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि मानव जीवन की सार्थकता अन्य प्रणालियों के कल्याण और भलाई के लिए अनवरत काम करने में ही है। सोशल मीडिया पर संस्कृत श्लोक सुभाषितम को साझा करते हुए उन्होंने कहा कि व्यक्ति को अपनी शारीरिक क्षमताओं, धन, बुद्धि और वाणी का इस्तेमाल परहित और कल्याणकारी कार्यों के लिए करना चाहिए। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने आज पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा की जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि डॉक्टर शर्मा प्रसिद्ध शिक्षाविद, कानूनविद और कुशल राजनेता थे। मौसम विभाग ने आज पूर्वी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश और उत्तराखंड में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। उत्तर पूर्वी हिस्सों दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, बिहार, छत्तीसगढ़, तटीय कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, केरलम, माहे, पश्चिम बंगाल के हिमालय से सटे इलाकों और सिक्किम के कुछ हिस्सों में दिन में तेज बारिश हो सकती है। उधर उत्तरी उड़ीसा में बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि नदियों में उफान से 6 जिलों के कई इलाके जलमग्न हो गए हैं और लगभग 10 लाख लोग प्रभावित हुए हैं।
4: भद्रक में भंडारी पोखरी और तिहिड़ी ब्लॉक सबसे ज्यादा प्रभावित इलाकों में से है, जहां बाढ़ का पानी गांव में घुस गया है और आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। जाजपुर, केंद्रापड़ा, बालेश्वर, केओंझर और मरभज में भी बाढ़ जैसा हालत है। ब्राह्मणी और सालंदी नदियों का जलस्तर बढ़ने से संकट और गहरा हो गया है, जबकि अखुआपदा में बैतरणी नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। बाढ़ प्रभावित इलाकों में एहतियात के तौर पर कई स्कूल बंद रखे गए हैं। राज्य सरकार ने प्रभावित लोगों और किसानों के लिए 1,000 करोड़ रुपए की राहत पैकेज की घोषणा की है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: संयुक्त अरब अमीरात ने इलाके में बढ़ते तनाव और क्षेत्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरे को देखते हुए ईरान के साथ सभी प्रकार के व्यापारिक और वाणिज्यिक लेनदेन को स्थगित कर दिया है। अमीरात के विदेश मंत्रालय की संचार निदेशक अफरा अल हामिली ने बताया कि इस फैसले का उद्देश्य क्षेत्रीय स्थिरता और वित्तीय व्यवस्था को अंतर्राष्ट्रीय कानून तथा वैश्विक मानकों के अनुरूप बनाए रखना है। अमीरात ने यह घोषणा ईरान की ओर से खाड़ी में 2 बैलिस्टिक मिसाइल हमलों के दागे जाने के बाद की। हालांकि अमीरात ने यह भी कहा कि वो शांति और स्थिरता के बीच बातचीत, सहयोग और क्षेत्रीय अखंडता के प्रति संकल्पित है। और अब खेल जगत की खबरों के साथ हैं अर्जुन शर्मा।
5: नीदरलैंड्स में FIH हॉकी विश्व कप के पूल डी में आज भारत का सामना पाकिस्तान से होगा। दोनों टीमों के लिए अगले दौर में जगह बनाने के लिए ये मुकाबला महत्वपूर्ण है। भारत ने अब तक 2 मैचों से 3 अंक हासिल किए हैं और उसे अगले दौर में पहुंचने के लिए आज का मैच कम से कम ड्रॉ खेलना होगा। भारत ने वेल्स को हराया है और इंग्लैंड से हार का सामना करना पड़ा है। श्रीलंका में गोल क्रिकेट टेस्ट के 5वें और आखिरी दिन आज श्रीलंका की टीम अपनी दूसरी पारी में 4 विकेट पर 84 रन से आगे खेलेगी। भारत ने श्रीलंका को 372 रन का लक्ष्य दिया है। श्रीलंका को जीत के लिए अभी 288 रन की जरूरत है, जबकि भारत श्रृंखला की जीत से केवल 6 विकेट दूर है। विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में कल नई दिल्ली में भारतीय खिलाड़ियों ने शानदार जीत दर्ज की। पुरुष सिंगल्स में लक्ष्य सेन ने पहले दौर में ऑस्ट्रिया के कॉलिन फिलिमोन को हराया। वहीं त्रिशा जॉली और गायत्री गोपीचंद की जोड़ी ने प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है।
0: ये समाचार हमारी न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार।
6: धन्यवाद फरहत। झारखंड में परीक्षा रद्द होने से 2000 से अधिक नौकरियां खतरे में, 6 में से 3 प्रदर्शनकारियों ने खत्म किया अनशन। जनसत्ता सहित कई अखबारों की सुर्खी है। जंतर मंतर पर पुलिस सख्ती के आरोपियों की जांच सर्वोच्च न्यायालय की उच्च स्तरीय समिति से कराए जाने का फैसला कई अखबारों ने प्रकाशित किया है। नवभारत टाइम्स ने दिल्ली पुलिस के अत्यधिक बल प्रयोग के आरोपों से इनकार करने का भी समाचार दिया है। 2 अक्टूबर से बैंकिंग फॉर यूथ अभियान दैनिक जागरण के आर्थिक पन्ने की खबर है। पत्र लिखता है, युवाओं को बैंकिंग सुविधा की जानकारी देने के लिए युवा कियोस्क और युवा बैंकिंग मित्र बनाएंगे सभी बैंक। 16 साल बाद भारत और पाकिस्तान आमने सामने, पुरुष हॉकी विश्व कप में शीर्ष 2 में जगह बनाने पर नजरें, अमर उजाला की सुर्खी है। दैनिक जागरण ने अपने संपादकीय पन्ने पर विश्वविद्यालयों में भारतीय ज्ञान पर शोध की प्रक्रिया शुरू होने पर लेख प्रकाशित किया है। पत्र लिखता है, भारतीय ज्ञान परंपरा को मिली महत्ता, भारतीय ज्ञान की खोज हमें औपनिवेशिक मानसिकता से मुक्त कराने के लिए विकसित भारत के लिए ज्ञान लोग गढ़ने वाली भी है। अंतरिक्ष में उगाई सरसों से बनाई सबसे स्वादिष्ट स्पेस डिश हिंदुस्तान की खबर है। पत्र लिखता है, भारतीय मूल के नासा अंतरिक्ष यात्री अनिल मेनन और उनकी साथी जेसिका विट ने किया कारनामा, बीज और खेती की सामग्री पृथ्वी से पहले ही भेजी गई थी। राजस्थान पत्रिका ने आज वर्ल्ड फोटोग्राफी डे पर दुनिया के पुरस्कृत फोटोग्राफ को अपने पहले पन्ने पर जगह दी है। पत्र लिखता है, अंधेरे में शिकार को झपटने को तत्पर बार्न उल्लू, ये तस्वीर इंग्लैंड के नॉरफार्क की है और तस्वीर ली है विंस बर्टन ने। पत्र ने आइसलैंड में डेनियल विने गार्सिया द्वारा क्लिक की गई तस्वीर भी साझा की है, जो ज्वालामुखी से बहते गर्म लावा का विहंगम चित्र है।
0: धन्यवाद मुकेश। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सरकार ने घरेलू पाइपलाइन गैस कनेक्शन को घर घर पहुंचाने की प्रोत्साहन योजना को स्वीकृति दी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने 600 पुराने विशेषज्ञों को हटाकर नए विशेषज्ञ शामिल किए। झारखंड सरकार ने विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के बीच अनियमितताओं के कारण रद्द की गई 44 भर्ती परीक्षाओं की सूची जारी की। दिल्ली जल बोर्ड रिश्वत मामले में दिल्ली के पूर्व मंत्री और आम आदमी पार्टी के नेता सत्येंद्र जैन और 5 अन्य गिरफ्तार। संयुक्त अरब अमीरात ने ईरान पर मिसाइल हमले का आरोप लगाते हुए व्यापारिक और वित्तीय लेन देन स्थगित किए। और नीदरलैंड्स में पुरुष हॉकी विश्व कप के पूल डी में आज भारत का सामना पाकिस्तान से। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

आप सभी का स्वागत है रेडियो मधुबन 107.8 FM सुन रहे हैं आप। एक बड़ा सा ब्रेक के बाद फिर से स्वागत है आपका। आइए जानते हैं आज तुलसीदास जी की जयंती है उनके बारे में। विक्रम संवत के अनुसार श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी की को मनाई जाती है ये, और अधिकतर विद्वान महाकवि गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म इसी दिन मनाते हैं। संपूर्ण भारतवर्ष में महान ग्रंथ रामचरितमानस के रचयिता गोस्वामी तुलसीदास जी के स्मरण में तुलसी जयंती मनाई जाती है। तुलसीदास जी का जन्म संवत 1579 को उत्तर प्रदेश के राजापुर नामक ग्राम में हुआ था, और इनके पिताजी का नाम आत्माराम दुबे था तथा माता जी का नाम हुलसी था। कलयुग के प्रारंभ होने के पश्चात सनातन हिंदू धर्म यदि किन्हीं महापुरुषों का सबसे अधिक ऋणी है तो वो गुरु शंकराचार्य जी, आदि गुरु शंकराचार्य जी और गोस्वामी तुलसीदास जी। शंकराचार्य जी ने 2500 वर्ष पूर्व बौद्ध मत के कारण लुप्त होती वैदिक परंपराओं को पुनर्स्थापित करके सनातन हिंदू धर्म की विजय विजयंती फहराई। विदेशी आक्रमणकारियों के कारण मंदिर तोड़े जा रहे थे, गुरुकुल नष्ट किए जा रहे थे, शास्त्र के साथ साथ हमारे बहुत सारे पौराणिक शास्त्रों को भी विनाश हो रहा था उस दौरान। तो ऐसे भयानक काल में तुलसीदास जी प्रचंड सूर्य की भांति उदित हुए और उन्होंने जन भाषा में श्री रामचरितमानस की रचना करके उसमें समस्त आगम निगम पुराण उपनिषद आदि ग्रंथों का सार भर दिया और वैदिक हिंदू सिद्धांतों को सदा के लिए अमर बना दिया। जब अंग्रेजों ने हजारों भारतीयों को गुलाम बनाकर मॉरिशस और सूरीनाम आदि के निर्जन द्वीपों पर भेज दिया था, तब उन अनपढ़ ग्रामीणों के पास धर्म के नाम पर मात्र श्री रामचरितमानस की एक आध ही प्राप्त थी। केवल उसी के बल पर आज तक वहाँ हिंदू धर्म पूरे तेज के साथ स्थापित है। अनेकों ग्रंथों के रचयिता भगवान श्री राम के परम भक्त गोस्वामी तुलसीदास जी भले ही तलवार लेकर लड़ने वाले योद्धा नहीं थे, लेकिन उन्होंने अपनी भक्ति और लेखनी के बल पर बहुत सारे अन्य धर्मों के आतंक और उसको परास्त कर हिंदू धर्म की ध्वजा फहराए, और इसके साथ साथ हिंदू धर्म को बचाए रखने में उनका योगदान रहा। और आज विश्व फोटोग्राफी दिवस भी है। प्रत्येक वर्ष 19 अगस्त को मनाया जाता है। संसार में प्रकृति के प्रत्येक प्राणी को जन्म के साथ साथ एक कैमरा दिया गया है जिसे वो संसार के प्रत्येक वस्तु की छवि अपने दिमाग में अंकित करता है। वो कैमरा है उसकी आंख। इस दृष्टि से देखा जाए तो प्रत्येक प्राणी एक फोटोग्राफर है। वैज्ञानिक तरक्की के साथ साथ मनुष्य ने अपने साधन बढ़ाना प्रारंभ किया और अनेक आविष्कारों के साथ ही आर्टिफिशियल लेंस का आविष्कार भी हुआ। समय के साथ आगे बढ़ते हुए उसने इस लेंस से प्राप्त छवि को स्थायी रूप से सहेजने का प्रयास किया। इसी प्रयास की सफलता वाले दिन को अब विश्व फोटोग्राफी दिवस के रूप में मनाया जाता है। 1839 में फ्रांस के वैज्ञानिक लुईस जेकिस तथा मेंथी डैग्र्यू ने फोटो तत्वों का खोजने का दावा किया था। ब्रिटिश वैज्ञानिक विलियम हेनरी और इसके साथ साथ नेगेटिव से पॉजिटिव प्रोसेस ढूंढा था, और इसके साथ साथ सन 1834 में भी टेल बर्थ नामक कागज का आविष्कार किया गया था और जिससे खींचे चित्र को स्थायी रूप में रखने की सुविधा प्राप्त हुई। तो फोटोग्राफी का आविष्कार जहां संसार को एक दूसरे के करीब लाया, वहीं एक दूसरे को जानने, उनकी संस्कृति को समझने तथा इतिहास को समृद्ध बनाने में भी उसने बहुत बड़ी मदद की। तो आज संसार के किसी दूरस्थ कोने में स्थित द्वीप के जनजीवन यानी कि आइलैंड के जनजीवन की सचित्र जानकारी बड़ी आसानी से प्राप्त होती है, तो इसमें फोटोग्राफी के योगदान को कम नहीं किया जा सकता। तो आज विश्व फोटोग्राफी दिवस है, आज विश्व मानवीय दिवस भी है। प्रत्येक वर्ष 19 अगस्त को मनाया जाता है।
इस दिवस पर उन लोगों को याद किया जाता है जिन्होंने मानवीय उद्देश्यों के कारण दूसरों की सहायता के लिए अपनी जान न्यौछावर कर दी। इस दिवस को विश्व भर में मानवीय कार्यों को प्रोत्साहन दिए जाने के अवसर के रूप में देखा जाता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा स्वीडिश प्रस्ताव के आधार पर किया गया है और इसके अनुसार किसी आपातकाल की स्थिति में संयुक्त राष्ट्र देशों द्वारा आपस में सहायता के लिए मानवीय आधार पर पहल की जा सकती है। विश्व मानवीय दिवस की विशेष रूप से 2003 में संयुक्त राष्ट्र के बगदाद इराक स्थित मुख्यालय पर हुए हमलों की वर्षगांठ के रूप में मनाया जाता है। ये दिवस मानवीय कर्मियों और मानवीय कारणों की वजह से अपने जान गंवा चुके लोगों को श्रद्धांजलि देने के लिए मनाया जाता है। इसे याद आया कि 25 अगस्त को हम मनाने वाले हैं विश्व बंधुत्व दिवस दादी जी के स्मृति में। आइए लेते हैं यहाँ पर एक अल्पविराम, मिलते हैं इस गाने के उस पार।

आप सुन रहे रेडियो मधुबन 107.8 एफएम। बहुत बहुत स्वागत है फिर से आपका इस कार्यक्रम में जिसका नाम है नई किरण। आइए जानते हैं कुछ बातें जो जुड़ी हुई है हमारे अर्थव्यवस्था के साथ। अगर बात करें बीएसई सेंसेक्स के बारे में, तो सेंसेक्स आज ओपन हुआ था बाजार 77,218.05 पर और वर्तमान समय 77,015.29 पर कारोबार कर रहा है। तो -0.29% तक गिरावट दर के साथ तो और -220.17 अंकों के गिरावट दर के साथ। एनएससी के बारे में बात करें तो एनएससी निफ्टी के बारे में बात करें तो यहाँ पर 24,072.00 पर कारोबार कर रहा है निफ्टी। 0.34% गिरावट दर के साथ, -82.90 अंकों के गिरावट दर के साथ। 24,152.05 पर ओपन हुआ था आज एनएससी का कारोबार। और बात करें अगर हम गोल्ड रेट्स के बारे में, तो 24 कैरेट गोल्ड है टोटल अमाउंट मेकिंग चार्जेस को मिला करके 1,80,019 रुपये वर्तमान समय इंडिया में। और चांदी की कीमत है 2,49,900 रुपये पर किलो के हिसाब से। और अगर सोने के 22 कैरेट के बारे में बात करें तो 1,65,034 रुपये, 18 कैरेट है 1,35,063 रुपये। पेट्रोल और डीजल के ऊपर नज़र डालते हैं। पेट्रोल मुंबई में 112.40 रुपये और राजधानी दिल्ली में 102.12 रुपये हैं। राजधानी जयपुर में 113.06 रुपये हैं। और डीजल के बारे में बात करें तो डीजल है राजधानी दिल्ली में 95.22 रुपये लगभग, और चेन्नई में 101.26 रुपये, मुंबई में 99.03 रुपये हैं। बात करें अगर हम हमारे हैदराबाद में तो 103.82 रुपये हैं, जयपुर में 98.14 रुपये हैं। तो ये कुछ बातें जुड़ी हुई थी पेट्रोल और डीजल के साथ। एलपीजी के बारे में बात करें तो 14.2 kg डोमेस्टिक 941.50 रुपये, कमर्शियल है 2,691.50 रुपये। तो ये कुछ बातें जुड़ी हुई थी पेट्रोल डीजल सेंसेक्स के साथ, गोल्ड सिल्वर प्राइसेस के साथ। मुद्रा जगत के ओर चले तो यहाँ पर इंडियन करेंसी है एक USD के मुकाबले 95.73 रुपये, एक यूरो के हिसाब से 110.88 रुपये, एक GBP के हिसाब से 129.60 रुपये हैं। तो एक रियाल के हिसाब से 25.49 रुपये लगभग हैं। तो ये कुछ बातें जुड़ी हुई हैं हमारे करेंसीज के साथ भी। तो लेते हैं यहाँ पर अल्पविराम, मिलते हैं अल्पविराम के उस पार। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए रेडियो मधुबन 107.8 FM।

0: शिवशंकर भोलेनाथ
1: की जय हो,
0: खेम सिद्ध महाराज
1: की जय हो,
0: केसरी कमार की जय हो।
2: ओए रुको रुक रुक, ओ भाई साहब इधर आओ, कहाँ जा रहे हो जरा बताओ। लाल बत्ती में दिखता नहीं आपको, सामने लोग रोड क्रॉस कर रहे हैं फिर भी गाड़ी पे चले जा रहे हो हैं?
3: अरे हवलदार साहब, एक बार लाल बत्ती में निकल गया तो कौन सा पहाड़ टूट जाएगा।
2: ओए पहाड़ भले ही ना टूटे, लेकिन बेमतलब यमराज के रजिस्टर में एक नाम जुड़ जाएगा। इसीलिए जब भी लाल बत्ती हो तो बोलो पहले आप, समझे?
4: गाड़ी चलाते वक्त पहले आप का रूल अपनाइए और अपने शहर का ट्रैफिक स्मूथ बनाइए। ब्रह्मा कुमारीज के सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी

उन आप सभी का स्वागत है रेडियो मधुबन 107.8 FM सुन रहे हैं आप। आइए कुछ बातें जो जुड़ी हुई हैं हमारे आसपास के साथ जानते हैं। बात करें अगर विद्यार्थियों को मत अधिकार की प्राप्ति के बारे में, तो सिरोही में मतदान का सिर्फ चुनाव के दिन की प्रक्रिया न मानकर लोकतंत्र की अपनी जिम्मेदारी से जोड़ने के उद्देश्य से राजकीय महाविद्यालय सिरोही में कॉफ़ी की मेज पर मतदान की चर्चा कार्यक्रम हुआ। और निर्वाचन साक्षरता क्लब के तत्वावधान में हुए कार्यक्रम में विद्यार्थियों, युवा मतदाताओं ने अनौपचारिक माहौल में मतदान, लोकतांत्रिक व्यवस्था, निर्वाचन प्रक्रिया से जुड़े मुद्दों पर खुल करके संवाद किया। वहीं पर नारी शक्ति निभाएगी विश्व कल्याण में अहम भूमिका, धर्माचार्य मोदगिल जी ने कहा। धर्माचार्य कुंवरपाल मोदगिल जी ने ये बात, नारी शक्ति ही विश्व के कल्याण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी, आध्यात्मिकता मन इंद्रियों पर नियंत्रण रखने की शक्ति देती है। ब्रह्मा कुमारी संगठन की ओर से आयोजित आध्यात्मिक कार्यक्रम विश्व में शांति सकारात्मकता का संदेश पहुंचा रहे हैं। ज्ञान सरोवर के संत सम्मेलन के समापन सत्र में उन्होंने ये बात कही। मंगलवार को ज्ञान सरोवर अकादमी परिसर में धार्मिक सेवा प्रभाग के राष्ट्रीय सम्मेलन के समापन सत्र में वो बातें बोल रहे थे। और वहीं पर सिरोही में भारत सरकार विकास परिषद देवनागरी शाखा ने राजकीय महिला महाविद्यालय में नशा मुक्ति जागरूकता कार्यक्रम किया, हस्ताक्षर अभियान चलाया। शुरुआत कार्यवाहक प्राचार्य डॉक्टर रेणु और परिषद अध्यक्ष नरेंद्र पाल सिंह जी ने माँ भारती और स्वामी विवेकानंद जी की तस्वीर के सामने दीप जला करके इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इसके बाद सामूहिक वंदे मातरम गान हुआ। सहायक आचार्य प्रहलाद राम ने अतिथियों का परिचय कराया और उनको अंगवस्त्र देकर सम्मानित किया। कालेंद्री कॉलेज में नशा मुक्ति की विद्यार्थियों को शपथ दिलाई गई। दानवा के एकलव्य स्कूल में एसडीएम जी ने भोजनालय का जांच किया। एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय दानवा में आवरण उपकरण अधिकारी राम स्वरूप जोहर जी ने विद्यालय का निरीक्षण किया। उन्होंने व्यवस्थाओं का जायजा लिया, विद्यार्थियों से संवाद किया, विद्यालय स्टाफ से भी बात की। निरीक्षण के दौरान एसडीएम जी ने विद्यालय के भोजनालय का निरीक्षण किया, विद्यार्थियों के साथ भोजनालय में बैठकर भोजन किया। उन्होंने भोजन की गुणवत्ता देखी, स्वच्छता देखी, व्यवस्थाएं देखी, विद्यार्थियों से भोजन को लेकर फीडबैक भी लिया। विद्यार्थियों ने बताया कि उन्हें विद्यालय का भोजन पसंद आता है। एसडीएम ने विद्यार्थियों से अलग अलग विषयों के सवाल पूछे और उनकी शैक्षणिक जानकारी परखी और समझ भी देखी। और इसके साथ साथ बाल विवाह, साइबर अपराध और ऑनलाइन सुरक्षा की जानकारी दी गई है। आबुरुड तालुका विधिक सेवा समिति आबुरुड के अध्यक्ष अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश क्रमांक एक कुलदीप सूत्रकार जी की मौजूदगी में मंगलवार को आबुरुड क्षेत्र के 3 विद्यालयों में ट्रांसफॉर्मेटिव कार्यक्रम आयोजित किया गया। और इसमें कार्यक्रम में महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय की वर्ली, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय और राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय लुनियापुरा में ये कार्यक्रम आयोजित किया गया। बाल शोषण के खिलाफ आवाज उठाने का आह्वान किया गया। पिंडवाड़ा तालुका विधिक सेवा समिति पिंडवाड़ा के तत्वावधान में आदर्श विद्या मंदिर सीनियर सेकेंडरी स्कूल में ट्रांसफॉर्मेटिव ट्यूजेट के तहत विधिक जागरूकता कार्यक्रम किया गया। और इसके साथ साथ राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सिरोही के अध्यक्ष के दिशा निर्देशन में शिवगंज में भी ये कार्यक्रम आयोजन किया गया। रक्षाबंधन को लेकर के जवाल में आदर्श विद्या मंदिर माध्यमिक विद्यालय की छात्राओं ने देश की सीमाओं पर तैनात भारतीय सैनिकों के लिए राखियां भेजी। पोसालय में अरटवाड़ा में श्री जिरावल पार्श्वनाथ जैन संघ और भारतीय जनता पार्टी पालड़ी एम मंडल के संयुक्त तत्वावधान में 300 से अधिक छायादार पौधे लगाए गए, नीम, गुलमोहर और ओबेरा। और वहीं पर सिरोही शहर में रोज 7
एमएलडी पानी की ज़रूरत है। और जलदाय विभाग के जैन पंकज कुमार जी ने दैनिक भास्कर को बताया कि शहर की पेयजल आपूर्ति के लिए अणगौर बांध से पानी लिया जा रहा है। अगस्त आधा बीता, शहर की प्यास बुझाने वाले बांध में 12% पानी शेष रह गए हैं। और मानसून की बेरुखी के बारे में दैनिक भास्कर ने आज ये लेख लिखे हैं, जिले में औसत से 25% से कम बरसा है पानी। और इसके साथ साथ भास्कर खास में मौसम विभाग और पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार प्रति एकड़ 8 से 25 हज़ार तक बचत हुई है। मौसम वाणी पर 93% किसानों को भरोसा है, खेती की लागत घटी है। बेमौसम बारिश और असमय सूखे और बदलते मौसम से जूझते किसानों के लिए अब मौसम विज्ञान भरोसा बनकर के उभरा है। भारतीय मौसम विभाग के और से पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार देश भर के 93.5% से अधिक किसानों ने मौसम आधारित कृषि परामर्श सेवाओं पर भरोसा जताया है। सेवा में शामिल 52.64% किसानों ने इन सेवाओं को पूरी तरह से संतोषजनक और 40% किसानों ने अत्यधिक संतोषजनक बताया है। और महज 4.5% किसानों ने इसे आंशिक रूप से अनुपयोगी माना है। तो मौसम वाणी पर कृषकों को, किसानों को भरोसा है।

तो ये कुछ बातें जुड़ी हुई थी हमारे आसपास के साथ। यहीं पर मैं रुकना चाहूँगी, फिर मुलाकात होगी अगले कड़ी में। तब तक के लिए सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए, रेडियो मधुबन 107.8 FM। आप सभी का दिन अच्छा हो, मंगलमय हो, बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्ते। अगला कार्यक्रम आशियाना है, रिकॉर्डेड कार्यक्रम सुनेंगे आप फिल वक्त।

समय बनता है सुबह का जब खास, उषा आती है अचानक के साथ। आप सभी को नमस्कार, गुड मॉर्निंग, राम राम सा, जय श्री कृष्ण सा, खम्मा गणेशा। लालच बुरी बला है, अतः लालच कभी नहीं करना चाहिए। कैसे, जरा सोचिए। और जी हाँ, तुलसी स्वास्थ्य के लिए कैसे फायदा करती है, आप भी सोचिए। उपाय तो हम जरूर बताएंगे, लेकिन थोड़ा आप भी सोचिए। अगर आपको भी आंसर मिलता है तो आप भी उपाय बता सकते हो। और आज मैं आप सभी को सिखाने वाली हूँ आइसक्रीम। कल आपने खाई कुल्फी, आज बनाएंगे आइसक्रीम, परंतु कौन सी वाली, वो तो आप आशियाना सुनेंगे तभी जान पाएंगे। और खुशनुमा जीवन की ढेर सारी बातें भी करेंगे, तो प्रश्न भी पूछने वाली हूँ बहुत ही सरल और सुंदर। तो ये सब कुछ सुनेंगे आप आशियाना में। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन 90.4 FM।

0: पीछे पीछे पीछे चल। स्टॉप लाइन के आगे कहाँ जा रहा है? लाल बत्ती दिखाई नहीं देती।
1: पर हवलदार साहब, जरा जल्दी निकलने के मूड में हूँ।
0: वो तो ठीक है, पर दूसरी तरफ हरी बत्ती है और उन लोगों का रुकने का मूड नहीं है। तो जब भी लाल बत्ती हो तेरी तरफ तो बोलो पहले आप।
2: गाड़ी चलाते वक्त पहले आप का रूल अपनाइए और अपने शहर का ट्रैफिक स्मूथ बनाइए। ब्रह्मा कुमारीज के सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी।
3: बहुत ही सुंदर गीत सुना आप सभी ने, उसके बाद पुनः आप सभी का आशियाना में स्वागत है। आज का सुंदर सा विचार इस प्रकार है कि लालच बुरी बला है, अतः लालच कभी नहीं करे। लालच बुरी बला है, इसलिए लालच कभी नहीं करना चाहिए। कैसे? तो आज के विचार का विस्तार एक छोटी सी कहानी के साथ करना चाहूँगी कि एक नगर में एक लालची आदमी रहता था। अपार धन संपदा होने के बाद भी उसे हर समय और भी अधिक धन प्राप्ति की लालसा रहती थी। एक बार नगर में एक चमत्कारी संत का आगमन हुआ। लोभी व्यक्ति को जब उनके चमत्कारों के बारे में ज्ञात हुआ तो वह दौड़ा दौड़ा उनके पास गया और उन्हें अपने घर आमंत्रित किया, उनके अच्छी सेवा की, आदर सत्कार किया। सेवा से प्रसन्न होकर के नगर से प्रस्थान करने के पहले संत ने उस लोभी व्यक्ति को चार दीपक दिए। चारों दीपक दे करके संत ने उसे बताया, पुत्र जब भी तुम्हें धन की आवश्यकता हो तो पहला दीपक जला लेना और पूर्व दिशा में चलते जाना। जहां दीपक बुझ जाए उस जगह की जमीन खोद लेना, वहां तुम्हें धन की प्राप्ति होगी। उसके बाद पुनः तुम्हें धन की आवश्यकता हुई तो दूसरा दीपक जला लेना, जिसे लेकर के पश्चिम दिशा में तब तक चलते जाना जब तक वहां दिया बुझ ना जाए। उस स्थान से जमीन में घड़ी अपार धन संपदा तुम्हें प्राप्त होगी। धन की तुम्हारी आवश्यकता तब भी पूरी नहीं हो सकती है तो तीसरा दीपक भी जला करके दक्षिण दिशा में चले जाना। वहां पर दिया बुझेगा तो वहां पर तुम्हें धन की प्राप्ति होगी। अंत में तुम्हारे पास एक दीपक और है, एक दीपक है किंतु तुम्हें न उस दीपक को जलाना है न ही उस दिशा में जाना है। इतना कह करके संत लोभी व्यक्ति के घर और उस नगर से प्रस्थान कर गए। संत के जाते ही लोभी व्यक्ति ने पहला दीपक जला लिया और धन की तलाश में पूर्व दिशा की ओर चल पड़ा। एक जंगल में दीपक बुझ गया। वहां की खुदाई करने पर उसे एक कलश प्राप्त हुआ और वह कलश सोने के आभूषणों से भरा हुआ था। लोभी व्यक्ति ने सोचा कि पहले दूसरी दिशाओं का धन प्राप्त कर लूं, फिर यहाँ का धन भी ले जाऊंगा। वह कलश वही झाड़ियों में छिपा करके दूसरा दीपक जलाया और पश्चिम दिशा की ओर चल पड़ा। एक सुनसान स्थान पर दूसरा दीपक भी बुझ गया। लोभी व्यक्ति ने वहां की जमीन खोदी। उसे वहां एक संदूक मिला जो सोने के सिक्कों से भरा हुआ था। लोभी व्यक्ति ने वह संदूक उसी गड्ढे में रख दिया और सोचा कि बाद में ले जाऊंगा, इसलिए वही छोड़ करके तीसरा दीपक जलाया और दक्षिण दिशा की ओर बढ़ गया। वह दीपक एक पेड़ के नीचे बुझा। वहां जमीन के नीचे लोभी व्यक्ति को एक घड़ा मिला जिसमें हीरे मोती भरे हुए थे। इतना धन प्राप्त कर लोभी व्यक्ति प्रसन्न तो बहुत हुआ किंतु उसका लोभ और बढ़ गया। वह अंतिम दीपक जला करके उत्तर दिशा में जाने का विचार करने लगा, जिसके लिए उसे संत ने सख्त मना किया था। किंतु लोभ में अंधे हो चुके व्यक्ति ने सोचा कि अवश्य उस स्थान पर इन स्थानों से भी ज्यादा धन छुपा होगा जो संत स्वयं रखना चाहता हो। मुझे तत्काल वहां जाकर उसे पहले उस धन को अपने कब्जे में ले लेना चाहिए, उसके बाद सारा जीवन में ऐशो आराम से बिताऊंगा। उसने अंतिम दीपक भी जला लिया और उत्तर दिशा में बढ़ने लगा। चलते चलते वे एक महल के सामने पहुंचा। वहां पहुंचते ही दीपक बुझ गया। दीपक बुझने के बाद लोभी व्यक्ति ने महल का द्वार खोल लिया और महल के भीतर प्रवेश कर महल के कक्षों में धन की तलाश करने लगा। एक कक्ष में उसे हीरे जवाहरात का भंडार मिला, जिन्हें देख करके उसकी आंखें चौंधिया गई। एक अन्य कक्ष में उसे सोने का भंडार मिला, अपार धन देख करके उसका लालच और भी बढ़ने लगा। कुछ आगे जाने पर उसे चक्की चलने की आवाज सुनाई दी, वह एक कक्ष से आ रही थी। आश्चर्यचकित होकर उसने उस कक्ष का द्वार खोल लिया। वहां उसे एक वृद्ध व्यक्ति चक्की पीसता हुआ दिखाई पड़ा। लोभी व्यक्ति ने उससे पूछा, यहाँ कैसे पहुंचे बाबा? क्या थोड़ी देर में तुम चक्की चलाओगे? मैं जरा सांस ले लूं, फिर तुम्हें पूरी बात बताता हूँ कि मैं यहाँ कैसे पहुंचा और मुझे यहाँ क्या मिला, वृद्ध व्यक्ति बोला। लोभी व्यक्ति ने सोचा कि वृद्ध व्यक्ति से ये जानकारी प्राप्त हो जाएगी कि इस महल में धन कहाँ कहाँ छुपा है, और उसकी बात मानकर वह चक्की चलाने लगा। इधर वृद्ध व्यक्ति उठ खड़ा हुआ और जोर जोर से हंसने लगा। उसे हंसता देख लोभी व्यक्ति ने पूछा, ऐसे क्यों हंस रहे हो भाई? ये कहकर वह चक्की बंद करने लगा। अरे अरे, चक्की बंद मत करना, अब से ये महल तेरा है, इस पर अब तेरा अधिकार है, और साथ ही इस चक्की पर भी। ये चक्की तुम्हें अब हर समय चलाते रहना है, क्योंकि चक्की बंद होते ही ये महल ढह जाएगा और तू इसमें दब करके मर जाएगा। गहरी सांस लेकर वृद्ध व्यक्ति आगे बोला, संत की बात न मानकर मैं भी लोभवश आखिरी दीपक जलाकर इस महल में पहुंच गया था। तब से यही चक्की चला रहा हूं, मेरी पूरी जवानी चक्की चलाते चलाते निकल गई। इतना कह करके वृद्ध व्यक्ति वहां से जाने लगा। जाते जाते ये तो बताते जाओ कि इस चक्की से छुटकारा कैसे मिलेगा, लोभी व्यक्ति जोर से चिल्लाया पीछे से। जब तक मेरे और तुम्हारे जैसा कोई व्यक्ति लोभ में अंधा होकर के यहाँ नहीं आएगा, तुम्हें इस चक्की से छुटकारा नहीं मिलेगा। इतना कहकर वृद्ध व्यक्ति चला गया। लोभी व्यक्ति चक्की पीसता और खुद को कोसता रह गया। तो कहने का भाव यही है मेरे प्यारे श्रोता बंधुओं कि लालच बुरी बला है, इसलिए लालच कभी नहीं करना चाहिए। देखा ना आपने लालची व्यक्ति के क्या हानि हुई, क्या इसके साथ घटित हुआ। इसलिए लोभ लालच बिल्कुल नहीं करना है। यही आज का सुंदर सा विचार है, जिस पर जरूर गौर करेंगे और सुनेंगे पुनः एक प्यारा सा गीत। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन।

मैं हूं संजय कुमार और आप सुन रहे हैं ब्रह्म कुमारीज का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन 107.8 FM पर। सुनते रहो और मुस्कुराते रहो।

चा ओ झुक जा सांवरिया लूले जाए तुल छा ओ झुक जा सांवरिया लूले जाए तुल छा। आप सुन रहे हो कार्यक्रम आशियाना और आशियाना में जैसे कि ये गीत की चंद पंक्तियां मैंने गुनगुनाई है इससे आप समझ गए होंगे कि आज मैं नुस्खे कौन से देने वाली हूँ। वैसे तो परिचय में आप सभी सुन चुके हो फिर भी आइए आज आपको नुस्खे देते तुलसी के ऊपर कि तुलसी के गीत तो बड़े अच्छे अच्छे बने हुए हैं, भजन बहुत ही सुंदर सुंदर बने हुए हैं, लेकिन वास्तव में जैसा नाम है वैसा तुलसी का काम भी है। बहुत ही फायदा करती है तुलसी, और तुलसी का पौधा तो लगभग हम अपने घरों में लगाते ही हैं, है ना, कोई घर में रखते कोई घर के बाहर रखते, लेकिन हर एक के घर में लगभग तुलसी का पौधा तो होता ही है। तो बहुत सारी बीमारियों को ठीक करती है तुलसी। तुलसी देखिए इसको एक दिव्य पौधा माना जाता है क्योंकि ये श्री कृष्ण जी को भी प्यारी है, तो बहुत सारे भजन बन गए हैं, है ना, और बीमारियों को भी ठीक करती है, इसलिए इसको दिव्य पौधा के रूप में माना जाता है। इसकी पूजा भी होती है और बहुत सारी बीमारियों को ये नाश करती है। तो जैसे कि कैंसर वाले लोगों के लिए मैं आपको कहना चाहूँगी कि कैंसर में कैसे फ़ायदा करती है तुलसी। कैंसर जैसे गंभीर रोगों में 25 से 100 पत्तियाँ बड़ों के लिए, ठीक है ना, तुलसी के पत्ते कितने लेने हैं, 25 से 100 पत्तियाँ और 5 से 25 पत्तियाँ बच्चों के लिए ले सकते हैं आप। फिर भी शुरुआत में आप 21 से 35 पत्तियों से शुरू करिएगा, ठीक है, ये पर्याप्त है, फिर आपको संख्या बढ़ानी है। तो अधिकतर रोगों में सामान्यतः 7 से लेकर 11 पत्तियां लेनी है। कैंसर की बीमारी में मैंने आपको बताया है कि शुरुआत में 21 से 35 तक शुरुआत करनी है और बाकी 25 से 100 तक पत्तियां लेनी है, धीरे धीरे संख्या बढ़ानी है, लेकिन ज़्यादा ही तकलीफ है तो फिर आप बढ़ा सकते हैं। और दूसरी अन्य कोई बीमारी हो तो आप 7 से लेकर के 11 पत्तियाँ, ठीक है, और बच्चों के लिए 6 से लेकर के 5 पत्तियाँ ज़रूर इनको खिलाइएगा, ठीक है। जैसे कोट जैसे 7 साल पुराना चर्म रोग केवल 3 पत्तियाँ बारीक घोट करके आप दीजिएगा, तो कोट जैसी बीमारियों में भी फायदा पहुँचा सकते हैं तुलसी के पत्तियाँ। बस आपको ज़रूरी है थोड़ा सा लगातार इसका सेवन करना, ठीक है, और जलन या फिर कोई और छोटी मोटी तकलीफ है तो आप खाली पत्तियां भी दे सकते हैं, सुबह खाली पेट देना है, ठीक है। तुलसी की पत्ती खा करके आप सामान्य जो जल है उसको पी लीजिएगा, ठीक है, नहीं चबाएंगे तो भी चलेगा, ऐसे उतार करके पानी पी लीजिए, चबा करके भी लेना चाहते हो तो ले सकते हो, ठीक है। तो जैसे कि 7 से 21 ताजे हरी तुलसी की पत्तियाँ लेकर के आप स्वच्छ खरल या सिल बट्टे पर जिस पर मसाला नहीं पीसा जाता है, ठीक है, और मसाला पीस रहे हो तो उसको अच्छी तरह धुलाई करो, धुलाई करके स्वच्छ कपड़े से पोंछो, उसके बाद ही आपको तुलसी की पत्तियां घोटनी है, नहीं तो फिर आप लोगे तो छाती में जलन करेंगे, फिर कहेंगे कि अरे ये तुलसी जल रही है, लेकिन तुलसी की जलन नहीं है, आपके मसाले की जलन है। इसलिए अगर सिलबट्टे पर पीस रहे हैं आप और मसाले वाला है तो उसका अच्छी तरह धुलाई करिए, बाकी जिसमें आप मसाला नहीं पीसते हो वो सिलबट्टा भी आप ले सकते हो और चटनी की तरह इसको, मतलब चटनी बना देनी है इसकी 7 से 21 ताज़ा हरी पत्तियां लेकर के। फिर इसको 50 या फिर 125 ग्राम दही में मिला करके रोज खाली पेट 2-3 महीना तक लीजिए। बस इतना ध्यान रखना है कि दही खट्टा नहीं होना चाहिए, यदि दही खट्टा है माफिक नहीं आ रहा है तो आप 1-2 चम्मच शहद मिला सकते हैं इस चटनी में, ठीक है, तुलसी की चटनी में, और इसको लीजिए, तो इससे कफ और श्वसन संस्थान के रोगों तथा छोटे बच्चों को बारीक पीसी हुई तुलसी की पत्तियां शहद में मिलाकर दीजिए तो ये श्वसन और कफ में काफ़ी फायदा करेगा। बच्चों के आप खुराक की मात्रा घटा दीजिए, बड़ों के लिए मात्रा जो मैंने आपको बताया है वो लीजिएगा, इससे कफ है श्वास की समस्या है इन सब में राहत मिलेगी। जैसा कि मैंने आपको बताया 2-3 महीने तक लगातार लेना है, सुबह सुबह खाली पेट तुलसी के पत्तियों के पेस्ट करके इसको या तो दही में घोलिए, दही अगर खट्टा है तो शहद में भी आप मिला सकते हैं और इसको चाटिए, ठीक है, तो श्वास की समस्या ठीक होगी, कफ की समस्या ठीक होगी। और आप दूध में
तुलसी को मत डालिएगा, चाय में डालिएगा। चाय में जैसे आप अदरक डाल रहे हो, अन्य मसाला डाल रहे हो, उसके साथ आप तुलसी की पत्तियां डाल करके भी चाय बना सकते हो, और इसको पीने से भी कफ में, सर्दी में, सब में राहत मिलेगी, और बहुत सारे दर्द जो शरीर में होते होंगे ना, उससे भी छुटकारा मिलेगा। अंदरूनी दर्द थोड़ा बहुत चलता ही रहता है, तो इस तरह अगर आप तुलसी लेते रहेंगे तो धीरे धीरे ये दर्द आपका छोटा मोटा ठीक हो जाएगा। तो ये सारे ही नुस्खे बहुत ही अच्छे हैं, और आप चाहो तो आजमा सकते हो। आइए अब आज के प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आज का प्रश्न बहुत ही सुंदर और सरल है। प्रकृति के 5 तत्वों का नाम बताइए। प्रकृति के 5 तत्वों का नाम बताइए। जवाब देने के लिए रेडियो मधुबन के नंबर है 9414151415 पर आप फोन कॉल्स कर सकते हो और आज के प्रश्न का जवाब दे सकते हो। अब आइए सुनेंगे बहुत ही सुंदर एक गीत, और उसके बाद हम पुनः आपसे रूबरू होंगे। तो बने रहिएगा आशियाना में, सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।
1: हमारे श्रोता बंधु जुड़ना चाहते हैं, पहले उनसे बात करेंगे, उसके बाद हम आपसे रूबरू होंगे। हेलो।
2: हाँ नमस्कार दीदी, पालनपुर से फिरोज भाई बोल रहे हैं।
1: हाँ जी नमस्कार फिरोज भाई, कैसे हो आप?
2: आज बहन जी प्रश्न कौन सा है, मेरे पास रेडियो है नहीं अभी।
1: हाँ जी, आज का प्रश्न है प्रकृति के पांच तत्वों का नाम बताइए।
2: अच्छा, तो ये पृथ्वी, आकाश
1: जी,
2: और जल, अग्नि और ये हवा वायु।
1: अच्छा ठीक है, तो आभार आपका फिरोज भाई। आप

जैसा कि मैंने आपको परिचय में कहा था कि आइसक्रीम सिखाएंगे, परंतु कौन सी वाली? जी हाँ, ड्राई फ्रूट की आइसक्रीम। ठीक है, सादी सिंपल आइसक्रीम बच्चे भी पसंद करते हैं, बड़े भी पसंद करते हैं, बुजुर्ग भी पसंद करते हैं। तो ड्राई फ्रूट की आइसक्रीम के लिए आप पेन और डायरी ज़रूर ले लीजिएगा, और सामग्री में लिखवा रही हूँ वो लिखिएगा। आप लीजिएगा 1 लीटर दूध, ठीक है, फिर आपको लेना है 2 ब्रेड की स्लाइस, फिर आप लीजिए 250 ग्राम चीनी, छोटी इलायची ले लीजिएगा 4, 10 ग्राम आप खरबूजे के बीज लीजिएगा, 10 ग्राम ही आपको चिरौंजी।

लेनी है, और थोड़े काजू, बादाम, पिस्ता आवश्यकता के अनुसार ले लीजिए, थोड़े कटे हुए, ठीक है। तो फिर से मैं दोहरा रही हूँ सामग्री, आप एक नज़र डालिएगा अपनी डायरी में, कहीं छूट गया हो तो लिख लीजिएगा। 1 लीटर दूध, फिर आप लीजिएगा ब्रेड की स्लाइस दो, 250 ग्राम आपको लेनी है चीनी, और 4 ले लीजिएगा छोटी इलायची, खरबूजे के बीज ले सकते हैं आप 10 ग्राम, और चिरौंजी भी 10 ग्राम, और काजू, बादाम और पिस्ता, ये आप अपनी आवश्यकता के अनुसार लीजिएगा, ठीक है। बनाने का तरीका आपको सिखा रही हूँ, ध्यान दीजिएगा कि दूध को आप गर्म करिए, गर्म करके आप उसको तो गर्म करते रहिए, बीच बीच में हिलाते रहिए, चिपके नहीं, नीचे चिपकेगा लगेगा तो आप समझ सकते हो कि उससे स्मेल आएगी, इसलिए आप हिलाते रहिए और दूध गर्म करिए। फिर जो ब्रेड की स्लाइस ली है इसका आप चूरा कर दीजिए, और लगातार हिलाते हुए दूध को आप थोड़ा गाढ़ा होने दीजिए, ठीक है, और पकाते रहिए। और इसमें ही ये जो चूरा है ये भी डाल दीजिए दूध में, ठीक है, और हिलाते रहिए। दूध गाढ़ा हो जाए तो फिर आप चीनी मिलाइए, फिर 5-10 मिनट और इसको पकाना है, फिर आप गैस बंद कर दीजिए या फिर गैस से नीचे उतार दीजिए। फिर पिसी हुई इलायची का पाउडर डाल दीजिएगा और कटे हुए ड्राई फ्रूट डाल दीजिएगा, अच्छी तरह मिक्स करके आप किसी भी बर्तन में भर करके आप फ्रीजर में रख दीजिए, और जब ये जम जाए कम से कम 8-10 घंटे लगेंगे, 8-10 घंटे के बाद आप चेक कर सकते हो कि आइसक्रीम आपकी जम चुकी है, फिर जब चाहे आप खा सकते हो। तो इस तरह ड्राई फ्रूट की आइसक्रीम बनाई जाती है। फिर से विधि दोहरा रही हूँ, ध्यान दीजिएगा, अच्छी तरह सुन करके बनाइएगा कि दूध को आप गर्म करिए, हिलाते रहिए और गर्म करते रहिए। फिर जो हमने ब्रेड की स्लाइस ली है उसका चूरा कर दीजिए, और इस चूरे को भी आप दूध में डालिए और अच्छी तरह हिलाइए। दूध थोड़ा गाढ़ा हो जाए तो शक्कर डाल दीजिएगा, ठीक है, और फिर से हिलाइए। उसके बाद आप गैस बंद कर दीजिए, और गैस बंद करने के बाद आप इसमें इलायची पाउडर डाल दीजिएगा, ड्राई फ्रूट्स कटे हुए डाल दीजिएगा, और अच्छी तरह हिलाकर जब यह ठंडा हो जाए तो आप आइसक्रीम के बर्तन में भर करके आप फ्रीजर में रख दीजिए। 8-10 घंटे आपको फ्रीजर में रखना है। उसके बाद आप देखिएगा आपकी आइसक्रीम तैयार हो चुकी है, ड्राई फ्रूट्स वाली आइसक्रीम तैयार है। तो बस आइसक्रीम आपने सीखी है, और भी मैं आपको अन्य प्रकार के आइसक्रीम सिखाने वाली हूँ, लेकिन कौन सी वो आपकी सुनने के बाद ही जान पाएंगे। तो आइए आज के प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आज का प्रश्न है कि प्रकृति के 5 तत्वों का नाम बताइए। जवाब देने के लिए रेडियो मधुबन के नंबर है 9414151415 पर आप फोन कॉल्स कर सकते हो और आज के प्रश्न का जवाब दे सकते हो। आइए अब सुनेंगे गीत, उसके बाद हम पुनः आपसे मिलेंगे, आशा ना में आगे बढ़ेंगे। तो सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन।

0: आप सुन रहे हैं ब्रह्मा कुमारीज का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन।
1: प्लेटफॉर्म पर चलते समय ध्यान रखें कि यदि कोई गाड़ी रनिंग थ्रू पास होती है उस समय प्लेटफॉर्म के किनारे पर न चलें, जिससे आपकी जान को खतरा हो सकता है। तब एक छोर से दूसरे छोर पर जाने के लिए पैदल पुल का इस्तेमाल करें। रेलवे लाइन क्रॉस करना कानूनी अपराध है व इससे आप अपनी जान गंवा सकते हैं।
0: रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी, सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए।
2: आप सभी आशियाना के किचन में हो और आशियाना के किचन में बना रहे थे ड्राई फ्रूट वाली आइसक्रीम। आइए अब आपको कोकोनट वाली आइसक्रीम सिखा देते हैं। ठीक है, गर्मी का मौसम चल रहा है, आप जब भी चाहो बना सकते हो आइसक्रीम कुल्फी और घर पर ही बना करके इसका आनंद ले सकते हो। पेन और डायरी तो तैयार है ना, तो लिखिएगा। कोकोनट आइसक्रीम के लिए आप लीजिएगा वनीला आइसक्रीम 4 कप, फिर आप लीजिएगा कद्दूकस किया हुआ नारियल 1 कप, सादी क्रीम लेनी है 1/2 कप और कैस्टर शुगर लेना है 1/2 कप। बस इसमें सामग्री ज़्यादा नहीं है। फिर से दोहरा रही हूँ, 4 कप ले लीजिएगा वनीला आइसक्रीम, फिर आप लीजिएगा कद्दूकस किया हुआ नारियल 4 कप लेना है वनीला आइसक्रीम, 1 कप कद्दूकस किया हुआ नारियल लेना है, सादी क्रीम भी आप 1 कप ले लीजिएगा या फिर थोड़ी कम होगी तो भी चलेगा, और कैस्टर शुगर लेना है आपको 1/2 कप। अब देखिए इसमें आपको मैं वनीला आइसक्रीम रेडी मतलब दिलवा रही हूँ आपको, लेकिन आप चाहो तो जैसे ड्राई फ्रूट वाली आइसक्रीम आपको सिखाई है ना, तो बस आप उसमें ड्राई फ्रूट्स मत डालिएगा तो सादी आइसक्रीम हो जाएगी। तो इस तरह अगर आप पूरी ही तरह से बनाना चाहते हैं आइसक्रीम तो इस तरह भी आप बना सकते हैं। ठीक है, तो कोकोनट आइसक्रीम के लिए फिर इसमें आपको खाली नारियल ऐड करना है, और वो वाली आइसक्रीम जिसमें ड्राई फ्रूट लिया है वैसे ड्राई फ्रूट हर एक में आप डाल सकते हो, मात्रा को थोड़ा सा घटा बढ़ा सकते हो। ठीक है, और नहीं भी डालोगे तो चलेगा, इस आइसक्रीम में लिया नहीं है वैसे ड्राई फ्रूट। तो आप अब क्या करेंगे, बनाने का तरीका आपको सिखा रही हूँ। नारियल को मिक्सी में पीस लीजिए, फिर क्रीम और कैस्टर शुगर को एक साथ मिला करके आप फेंट लीजिए। ठीक है, और नारियल के पेस्ट को इसमें मिला दीजिए। वनीला आइसक्रीम में इस पेस्ट को मिला देना है, फिर इस मिश्रण को आइसक्रीम कंटेनर में भर करके आप फ्रीजर में रख दीजिए। जब मिश्रण हल्का सा जमने लगे तो फ्रीजर से निकाल करके कांटे की मदद से फेंटिए, फिर से फेंटना है और वापिस कंटेनर में भर करके ढक्कन लगा करके फ्रीजर में जमने के लिए रख दीजिए। तो बस 8-10 घंटे आपको फिर से रखना है फ्रीजर में, और उसके बाद आप निकालिए, जब चाहो तब आप खा सकते हो। ये बन गई हमारे नारियल वाली आइसक्रीम। थोड़ा सा स्वाद में चेंज आ गया है, लेकिन बहुत सारे फ्लेवर की बनती है आइसक्रीम, जिसमें थोड़े थोड़े से चीज़ें हम अलग तरीके से ऐड करते जाते हैं, उसका टेस्ट थोड़ा चेंज होता जाता है, और हर कोई चाहता है कि टेस्ट चेंज होता रहे, चाहे कुल्फी हो, चाहे आइसक्रीम हो, चाहे भोजन हो, टेस्ट सभी चाहते हैं कि हमेशा थोड़ा सा अलग अलग प्रकार का मिलता रहे, है ना। तो बहुत ही सरल तरीका है इस आइसक्रीम का भी, इसमें ज़्यादा मुश्किल नहीं है। फिर से दोहरा रही हूँ विधि को, कि आप नारियल को मिक्सी में पीस लीजिए, क्रीम और कैस्टर शुगर को एक साथ मिला करके अच्छी तरह फेंटिएगा, और इसमें फिर फेंटने के बाद नारियल की पेस्ट को भी मिला दीजिएगा। अब आप वनीला आइसक्रीम में इस पेस्ट को मिक्स करिए और इस मिश्रण को आइसक्रीम कंटेनर में आप भर के रख दीजिए, किसी भी आप बर्तन में जो आइसक्रीम जमाने का है उसमें भर के रख दीजिए। जब मिश्रण हल्का सा जमने लगे तो फ्रीजर से निकालिए और निकाल करके इसको फिर से फेंटिए, फेंट करके फिर से इस कंटेनर में इस पात्र में भरना है और ढक्कन लगा करके अच्छी तरह आप फ्रीजर में रख दीजिए। 8-10 घंटा इसको जमने दीजिए, उसके बाद बस आप जब चाहे आइसक्रीम का आनंद ले सकते हो। तो चलिए हमारे श्रोता बंधु जुड़ना चाहेंगे तो उनसे बात करेंगे। हेलो
3: हेलो, नमस्कार, गुड मॉर्निंग हमारी प्यारी उषा बहन जी।
2: हाँ जी नमस्कार दयाराम जी, कैसे हो आप?
3: बहुत ही अच्छा हूँ, और सभी मित्रों की कृपा है, बाबा की कृपा है और आपकी दुआ है, और कार्यक्रम भी बहुत सुंदर चल रहा है, और अभी अभी जो ऑन किया तो कार्यक्रम चल रहा
2: जी,
3: तो सोचा फोन कर लूं और बात कर लूं, और जवाब क्या है वो पसंद भी।
2: अच्छा, प्रश्न नहीं सुना आपने?
3: जी मैं तो अभी ऑन किया था।
2: जी जी, तो आज का प्रश्न है प्रकृति के पांच तत्वों का नाम बताइएगा।
3: जी जी जी बहन, प्रकृति अपने में जो समेत के पांच तत्व रखे है
2: जी,
3: तो उसका नाम मैं बताता हूँ बहना, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, ये सब प्रकृति के नियम है। हम ये सब सृष्टि के बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
2: ठीक है दयाराम जी, तो आप कार्यक्रम सुनिएगा, हम आपका जवाब जरूर सुनाएंगे। ठीक है
3: जी बहन
2: जी, आभार आपका जी, नमस्कार। तो देखिए दोनों ही प्रकार के आइसक्रीम तैयार है, चाहे हम आइसक्रीम बनाएं, कुल्फी बनाएं, चिवड़ा बनाए।

0: ना या भोजन बनाए, भोग तो लगाना बहुत जरूरी है ना। तो आप भोग लगाइएगा, परमात्मा की याद में भोग लगाइएगा, और कभी कभी क्या है, प्रकृति को भी धन्यवाद दे दीजिएगा, क्योंकि प्रकृति से बना हुआ ये शरीर है और प्रकृति के द्वारा ही हम वस्तुओं को, चीजों को बनाते हैं। तो कभी क्या है, जो भी बना रहे हैं हम, चाहे भोजन हो, चाहे आइसक्रीम हो, चाहे कुल्फी हो, चाहे कुछ भी बना रहे हो, साथ ही साथ आप प्रकृति को धन्यवाद भी देते जाइएगा कि प्रकृति हमारा कितना साथ निभाती है। ये प्रकृति नहीं होती तो हमारा क्या होता। इसलिए हे प्रकृति, आपको बहुत बहुत धन्यवाद जो आप इतना अच्छा साथ हमारा निभाती हो। तो इस तरह कभी प्रकृति के 5 तत्व में से 1 तत्व को भी आप धन्यवाद दे सकते हो, कभी 5ों को ही धन्यवाद दीजिए, और प्रभु की याद में आप भोग लगा करके आइसक्रीम को स्वीकार कीजिए। ठीक है, आइए फिर से आज के प्रश्न दोहरा रही हूँ कि प्रकृति के 5 तत्वों का नाम बताइए। जवाब देने के लिए रेडियो मधुबन के नंबर है 94-14-15-14-15, और अब एक गीत सुनने के बाद पुनः लौट रही हूँ, तो बने रहिएगा आशियाना में, सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन। आग लगती है तो ये नहीं पूछते कैसे लगी, सिर्फ आग बुझाने में लग जाते हैं, बात छोटी हो या समस्या बड़ी हो, क्यों हुआ, कैसे हुआ, किसकी वजह से हुआ। प्रश्नों का चिंतन मन की शक्ति को घटाता है मेरे प्यारे श्रोता बंधुओं, कारण नहीं ढूंढना, निवारण ढूंढना है। आप सुन रहे हो कार्यक्रम आशियाना, और आशियाना में अब हम खुशनुमा जीवन की बातें करेंगे। विषय आपके समक्ष रख चुकी हूँ, अब आप इसको स्पष्ट करने में मदद करेंगे। और आज का प्रश्न भी बहुत ही सुंदर है कि प्रकृति के 5 तत्वों का नाम क्या है। तो दोनों में ही प्रश्न का भी आप जवाब दे सकते हो और खुशनुमा जीवन में भी आप जुड़ सकते हो। नंबर है रेडियो मधुबन के 94-14-15-14-15 पर आप फोन कॉल्स कर सकते हो, और आप खुशनुमा जीवन की बातें भी कर सकते हो कि कैसे आग लगती है तो पूछना नहीं है कैसे लगी, उस समय पूछते कैसे लगी, कैसे लगी, कैसे हम फटफट उसको पानी ला करके बुझाने की कोशिश करते हैं। तो बस ठीक इसी तरह बातें छोटी हो या बड़ी हो, समस्या छोटी हो या बड़ी हो, क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, ये नहीं करना है, समस्या का समाधान करना है। क्या कहेंगे आप, हम आपके द्वारा जानना चाहेंगे। तो आप जरूर जुड़िएगा रेडियो मधुबन से और अपने विचार को जरूर रखिएगा। तो बहुत ही सुंदर विषय है खुशनुमा जीवन का कि जैसे आग लगती है, ये आपको बता चुकी हूँ कि मैं, आग लगती है तो हम इंतजार नहीं करते, ठीक इसी तरह किसी के भी जीवन में समस्या आती है तो उसका क्या क्यों में मत घेरिए। हेलो, हाँ जी, नमस्ते नमस्ते सुरेश भाई, कैसे हो आप?
1: बस बिल्कुल अच्छे हैं, और बहुत अच्छा विषय भी दिया है दीदी। आजकल जो आपने बात बताई ऐसा ही हो रहा है
0: जी।
1: आज कोई भी बात है तो बात का बदंतर कर देते हैं और बात को छोटी करने की कोशिश नहीं करते हैं। आज देखो कोई भी बात हो तो जैसे आपने बताया कि आग लगती है तो कहीं ना कहीं कितनी ही बातें हो सकती है, ऐसे करो लेकिन
0: जी,
1: कोई
0: जी,
1: करता
0: जी।
1: नहीं करता नहीं, बात ही करता है
0: बिल्कुल।
1: और सब सुचन देते हैं, सलाह देते हैं, लेकिन खुद इसको खुद अच्छी करने की कोशिश नहीं करते
0: जी।
1: तो आज कई सारी पिछली बातें ऐसी है कि हमारे भी जो देखो आज परिवार में कोई बात हो जाती है तो बहुत बात बड़ी हो जाती है, लंबी हो जाती है
0: जी,
1: लेकिन शॉर्टकट में बात पूरी नहीं होती है
0: जी।
1: कितने ही सवाल उठते हैं, शायद देखो आज मैं बताऊँ तो एक सैंपल बताऊँ तो ठीक है, हमारे घर में कोई भी झगड़ा हो गया शायद, ऐसा एक नमूना मैं देता हूँ
0: जी।
1: और झगड़े में बात झगड़े की और होती है और बात कहाँ से चली जाती है,
0: पाया ही चेंज हो जाता है
1: शायद, अच्छा विषय चेंज हो जाता है
0: जी।
1: तो आज ऐसा है तो इसलिए आज ये बात बहुत बड़ी हो जाती है, शायद पहले पहले कुछ साल भर में कोई आदमी कुछ हुआ तो ये बात भी आगे आ जाती है इस वक्त
0: जी।
1: तो बात का वतन कर करते हैं लेकिन बात छोटी करने की कोशिश नहीं करते कि चलो ये बात भी तो ये बात बस ये कर दो पूरा हो जाए, ऐसी बात नहीं आती
0: जी।
1: इसलिए तो आज देखो कई सारे झगड़े हो रहे हैं, कई सारे रिश्ते में दरार हो रही है
0: जी।
1: तो आज शादियाँ होती है किसी की, तो देखो कई परिवार ऐसे है कि आगे की बात लेके बैठ जाता है और हमको ऐसा हुआ था, आपने ऐसा किया था, ऐसा किया था, इसलिए आज रिश्ते टूट रहे हैं। इसका कारण ये है कि बात छोटी हो तो छोटी ही रहने, तो बड़ी नहीं करना, बस बड़ी करेंगे तो कहीं ना कहीं सब रिश्ता टूट जाएगा
0: बिल्कुल। बहुत सुंदर,
1: तो यही कहेंगे आपके दीदी को, बस कोई भी बात हो तो शॉर्ट में इसको पूरी कर दो तो सही है,
0: जी जी जी
1: वरना परिणाम तो अच्छा नहीं आता है।
0: जी जी, आभार आपका, बहुत सुंदर आपने स्पष्ट किया है, बहुत ही अच्छी बात बताई है सुरेश भाई ने, कि देखिए सभी फैलाने की कोशिश करते लेकिन समेटते कोई नहीं। आप क्या कहेंगे? हमारे और भी श्रोता बंधु जुड़ना चाहते रेडियो मधुबन से, उनसे बात करेंगे। हेलो,
1: हाँ नमस्कार दीदी, पालनपुर से फिरोज।
0: हाँ जी नमस्कार, नमस्कार फिरोज भाई,
1: आपका विषय बहुत बढ़िया है
0: जी, थैंक यू।
1: हाँ, पहले तो एक शेर बोल देता हूँ कि दबा ले जितना जी चाहे मंजिल तक पहुँचा दूंगी, दबा ले जितना जी चाहे मंजिल तक पहुँचा दूंगी, और जरा सा मील का झोंका आया तो कयामत तक सुला दूंगी।
0: वाह वाह वाह वाह, क्या बात है, बहुत सुंदर।
1: अमीरों की जिंदगी बिस्किट और केक में, और हमारे जैसे ड्राइवरों की जिंदगी स्टेयरिंग और ब्रेक में।
0: वाह वाह वाह वाह, क्या बात है।
1: दूसरा क्या है, दूसरा क्या समझो कि दो गाड़ी के बीच में एक्सीडेंट हुआ
0: जी,
1: तो सबसे पहले एक्सीडेंट के अंदर कितने अंदर बैठे हैं, किसको क्या इजा हुई है, क्या हुआ है, उससे सबसे पहले तो इनको हॉस्पिटल पहुंचाना है
0: जी,
1: और फिर बाद में ये जो गाड़ी बीच में रोड के बीच में है तो उसको साइड में करवाना है
0: जी, बिल्कुल।
1: इसके और ये कई लोग तो क्या वो देखेंगे, वो भले मरता तो मरने दो या तो कुछ भी होने दो
0: जी,
1: वो
0: जी,
1: पहले
0: जी।
1: तो सेल्फी लेंगे और टेलीफोन लगाएंगे और फिर इसका वो पूरी जगह पे उसको अनाउंस कर देंगे, ऐसा नहीं करना है।
0: बिल्कुल सही कहा आपने,
1: हाँ ये बात है
0: जी, बहुत अच्छी बात बताई फिरोज भाई, बहुत बहुत आभार आपका। स्वीट एंड शॉर्ट शब्दों में काफी कुछ आपने समझा दिया कि कैसे लोग जब एक्सीडेंट होते तो सेल्फी लेना शुरू कर देते, वीडियो बनाना शुरू कर देते हैं, लेकिन जो पेशेंट पड़ा हुआ है उसकी मदद नहीं करते। और भी हमारे श्रोता बंधु जुड़ना चाहते रेडियो मधुबन से। हेलो,
2: हेलो नमस्कार दीदी, मैं सुरेश भाई धानेरा से बोल रहा हूँ दीदी।
0: हाँ जी सुरेश भाई नमस्कार, स्वागत आपका रेडियो मधुबन में, कैसे हो आप?
2: बस अच्छे है, काम कर रहे, तो अभी भी 58 पर मैंने रेडियो शुरू किया तो अच्छी अच्छी बातें हो रही थी, चलो मैं भी कॉल करके बात करता हूँ।
0: जी जी स्वागत आपका, तो आज के प्रश्न भी मैं दोहरा रही हूँ, हाँ। कि प्रकृति के 5 तत्वों का नाम बताइएगा।
2: हाँ वो तो जल वायु अग्नि आकाश और पृथ्वी।
0: अच्छा ठीक है
2: जी, जी और दीदी हमारे मित्र भी जैसा उनका चरित्र है वैसी बात कर रहे हैं, तो हम भी बस ऐसे ही बात करेंगे, कहीं भी कोई ऐसा प्रॉब्लम रहता है नहीं तो हमें बुलाते हैं और हम समाधान करते हैं। तो जैसे जो आपने बात की ना इस पर ही मैं बात कर रहा हूँ, तो घर में दो पति पत्नी को झगड़ा हुआ और पत्नी किस तरह वजह से झगड़ा कर रही थी कि पति का जो किसी गैर औरत के साथ ये ऐसा चरित्र खराब है, तो ऐसा करके झगड़ा कर रहे थे, और लोग जो कुछ अच्छे लोग वो समझाते कि चलो भाई ऐसा नहीं है, ये तो अच्छा आदमी है, और ऐसे भी लोग है जो चढ़ावा देते है, हमारे गुजराती में बोलते है तो के अरे तुम तो ये है, फिर आदमी को उस इंसान को भी पत्नी के बारे में तुम्हारी वाइफ इतनी ये है खराब है
0: जी,
2: तो
0: जी,
2: आग फैलाते हैं मतलब, और कुछ ऐसे भी है तो आग बुझाते हैं
0: जी,
2: तो
0: जी,
2: फिर
0: जी।
2: जैसे भी जैसे ही हम लोगों को बुलाया तो पहले तो दोनों की बात सुनी, चलो के पति तो निर्दोष साबित होने के लिए कुछ भी करने को तैयार था और पत्नी भी पीछे हटने को तैयार नहीं थी
0: जी,
2: तो अब करे क्या, तो बहुत समझाया लेकिन नहीं समझ रहे, तो फिर आखिर में एक बात कही कि चलो अब जो भी हुआ चलो तुम्हारे पति ने ये किया चलो कर दिया, हम भी मानते हैं और आप सही है, लेकिन अब से नहीं करेगा इसकी गारंटी हम लेते हैं, और आप भी अगर पति का चरित्र जो भी खराब हो ना तो भी आप कुछ नहीं कहेंगे, ये वादा करो कसम खाओ, मतलब ऐसा कुछ समझाया। अब तक लगभग 3 साल हुए हैं ना उनके घर में झगड़ा या ना कोई ऐसी बात हो रही है, तो ये बात है तो आग बुझाने की
0: बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात, ऐसे सॉल्यूशन मिले तो ही सही मायने में कुछ लगता है कि हमने किसी के लिए कुछ किया है और किसी के जीवन में खुशियां आई है।
2: जी जी सही बात है दीदी
0: जी, बहुत सुंदर आपने बातें बताई है सुरेश भाई, और बहुत अच्छी आपने मदद की है, बहुत बहुत आभार आपका।
2: थैंक यू
0: जी, तो ये थे सुरेश भाई धानेराव से, और आपने बहुत ही अच्छी बात बताई कि किस तरह पड़ोसी में

नमस्कार, मैं हूं सुरेश कुमार जांगड़ा, हरियाणा पुलिस सेवा सुरक्षा सहयोग। हरियाणा पुलिस व होमगार्ड आपकी सेवा में हर समय तत्पर है। आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

आप सुन रहे हो कार्यक्रम आशियाना, और आशियाना में खुशनुमा जीवन की बातें हो रही है कि प्रश्नों का चिंतन मन की शक्ति को घटाता है और कारण नहीं ढूंढना, निवारण को ढूंढना है। क्या, क्यों, कैसे, इन सभी में जाएंगे तो परिस्थितियां बढ़ेगी और बड़ी होगी, घटेगी नहीं, ठीक है ना। जैसे आग लगती है तो हम ये नहीं कहते हैं कि क्या हुआ, कैसे हुआ, हम उसका निवारण ढूंढते हैं और फायर ब्रिगेड को बुलाते हैं, पानी वाले को बुलाते हैं और पानी डलवाते हैं। हम स्वयं भी कोशिश करते हैं कि मिट्टी डाले, पानी डाले, कैसे भी करके आग को बुझाने की कोशिश करते हैं। ऐसे ही जीवन में बहुत सारी बातें आती है। एक बात आपको बताना चाहूँगी, जैसे कि हमारे सुरेश भाई ने भी बताया था कि छोटी छोटी बातों से भी कभी कभी इतनी बड़ी बातें फैल जाती है कि जो मेन बात होती है वो तो कहीं की कहीं रह जाती है और पूरा ही विषय चेंज हो जाता है। ऐसा ही होता है घर परिवार में, आजकल ऐसा ही हो रहा है मेरे प्यारे श्रोता बंधु, और घर टूटते जा रहे हैं। जैसे कि मैं आपको बताना चाहूंगी, एक परिवार में बहुत दूध गर्म कर रही थी, दूध उबल गया, आधा दूध बाहर निकल गया। उसको पता चला अरे ये दूध उबल रहा है, तो तुरंत ही उसने गैस बंद किया, लेकिन तब तक आधा दूध बाहर बह चुका था। इधर सास बोली कि इसका वैसे काम में ध्यान कहाँ है, ये कहाँ सही काम करती है, जब भी करती है ऐसा ही करती है, घर में नुकसान ही करती है। फिर दूसरे व्यक्ति ने कहा कि अरे जरूर ये टीवी देख रही होगी, टीवी में इसका ध्यान होगा इसलिए दूध उबल गया। तीसरे व्यक्ति बोला कि अरे ये तो वैसे ही विचारों में खोई रहती है, कहाँ ये घर में रहती है, रहती यहाँ पर है हमारे सामने, लेकिन विचार कहीं के कहीं चले जाते हैं, इसके विचारों में खोई होगी ना इसलिए दूध उबल गया। और किसी ने कहा कि वैसे ही ये मन से काम क्या करती है, ये तो ऊपरी मन से करती है। मतलब कितनी सारी बातें सुनने को मिली, जबकि कारण कुछ था ही नहीं, एक ही कारण था कि भाई दूध उबल गया। अब उबल गया सो उबल गया ना, समेटने वाला होता तो कह सकता था कि भाई कोई बात नहीं, अगली बार ध्यान रखना, हो जाता है तो वो जरूर ध्यान रखती। लेकिन जब इतनी सारी बातें सुना दी तो आप ही सोचिएगा कि कौन सुनेगा इतनी सारी बातें, वो भी तो शुरू हो गई, फिर तो तू मैं शुरू हो गई। अब बात जो थी दूध उबलने की वो तो रह गई एक तरफ, और दूसरी दूसरी बातें, अरे इसने पहले ऐसा किया था, अरे वो 4 दिन पहले इसने मेरे को ऐसा सुनाया था, अरे 8 दिन पहले तो इसने ऐसा ही किया। अब आप सोचिए बात कितनी सी थी, दूध उबल गया, लेकिन इतनी तूतू मैमे हुई, इतनी तूतू मैमे हुई कि लोग इकट्ठे हो गए मोहल्ले में, और मेन बात तो दब गई और दूसरी दूसरी बातें सामने आई। वो उनकी उछाले, क्या फायदा मिला। घर परिवार ऐसे नहीं चलता है मेरे प्यारे श्रोता बंधुओं, बहुत सारी बातों को समानी होती है, बहुत सारी बातों को सहन करना होता है, बहुत सारी बातों को लेट गो करना पड़ता है, तभी घर परिवार टिकता है। अगर हम फट कुछ भी बोल लेते हैं तो वो घर नहीं टिकेगा, क्योंकि सहन शक्ति सभी में खत्म होती जा रही है। अब बहू को आप 4 सुनाओगे तो एक तो वो जरूर सुनाएगी, 4 सुनाया उसका हमें दुख नहीं, लेकिन एक उसने जवाब दे दिया वो हमें दुख बैठ गया, फिर हमने 4 सुनाई, 8 सुनाई, फिर इधर उधर बात की, फिर उसने भी हमारी जो रही सही इज्जत थी वो भी उतार दी, फलाने दिन ऐसे किया, ढिकड़े दिन ऐसे किया। अब क्या फायदा मिला, भाई दूध उबल गया कोई बात नहीं, दूसरी बार ध्यान रखना, हो जाता है, हमसे भी कभी उबला है, तुमसे भी गलती हो गई। अगर ये कह करके हम उस बात को शांत कर दें तो वो बात बढ़ेगी नहीं और खत्म हो जाएगी। अब एक तो दूध उबला उसका नुकसान हुआ, ऊपर से झगड़ा हुआ तो सभी का खून जला, क्या फायदा हुआ, और लोगों के सामने तमाशा हुआ, लोग इकट्ठे हुए और हंस हंस के गए अरे देखो देखो छोटी छोटी बातों में इनके झगड़ा होता है। फिर कभी बड़ी बात पर भी झगड़ा होता है ना तो लोग हंसेंगे कि अरे इनके घर में चलता रहता है, छोटी छोटी बातों पर झगड़ते हैं ये लोग, तो हमारी इमेज तो वहीं पर खत्म हो गई। वो कहते हैं ना प्यारे श्रोता बंधु कि इज्जत बनाने में पूरी जिंदगी चली जाती है, लेकिन इज्जत का कचरा होने में 1 सेकंड लगता है। इसलिए घर परिवार में बहुत ही सोच समझ करके रहिए, बहुत ही आप अगर दूसरों को कुछ सुना रहे हो तो बहुत ही सोच समझ करके बोलिएगा कि मुझे ऐसी बातें नहीं बोलनी है कि उसका पलट कर मुझे जवाब मिले। कुछ हमारे सामने हो रही होती है बातें, उनको समाना सीखिए। परिस्थितियां हर एक के जीवन में आती है, लेकिन परिस्थितियों को समेटने की ताकत हमारे में होनी चाहिए,
तभी वो परिस्थितियाँ बड़ी नहीं, वो छोटी दिखाई देगी और धीरे धीरे उस परिस्थितियों पर हम विजय प्राप्त कर लेंगे। इसलिए विस्तार में नहीं जाना है, सार में रहना है, यही खुशनुमा जीवन का राज है। आइए गीत सुनेंगे, उसके बाद पुनः लौट रहे हैं, तो बने रहिएगा आशियाना में। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन।

0: बहू मुझे लड़का ही चाहिए।
1: माँ माँ माँ माँ माँ माँ अभी तो भगवान ने मेरे हाथों पे किस्मत की लकीरें भी नहीं बनाई और उनसे पहले ही आप सबने मेरी तकदीर का फैसला सुना दिया। माँ मुझे जी लेने दो, अपनी कसम मैं आपको कभी तंग नहीं करूंगी। माँ मेरी स्कूल फीस की चिंता मत करना, मैं भैया की किताबों से अपने आप ही पढ़ लिख जाऊंगी। और हाँ पापा से कहना मेरे दहेज की चिंता ना करे, मैं आपके साथ रहकर आपके बुढ़ापे का सहारा बनूंगी। अगर फिर भी आपको लगता है कि मैं आप पर बोझ बनूंगी तो आप इस ऑपरेशन पर भी खर्चा मत करना, मैं ही भगवान जी से कह दूंगी कि मेरी माँ मेरा मरा मुंह देखे।
2: माँ अब तो बस करो।
0: बहू क्या सोच रही हो, घर चले, नन्ही परी के स्वागत की तैयारियां भी तो करनी है ना। चलो
3: शोक को कवर ना बनाए, खुशी खुशी बिटिया को दुनिया में लाए।
4: प्यारे श्रोता बंधुओं, समय हो चला है आप सभी से अनुमति लेने का। आज के कार्यक्रम आपने सुना है, बहुत ही सुंदर विचार आपके समक्ष रखा है, उस पर जरूर ध्यान दीजिएगा। नुस्खे भी बहुत ही अच्छे थे, तो रेसिपी भी आपको आइसक्रीम बनाना सिखाई है, दोनों ही प्रकार की, ड्राई फ्रूट्स वाली और नारियल वाली, तो ज़रूर बना करके खाइएगा। और खुशनुमा जीवन की बातें भी बहुत ही अच्छी हुई है। आज का प्रश्न भी बहुत ही सुंदर था, जिसको मैं पुनः दोहरा रही हूँ, प्रकृति के 5 तत्व उनके नाम बताना है और आप सभी ने सही जवाब दिया है। पहले तो मैं आप सभी के लिए ढेर सारी तालियां बजवाना चाहूंगी, क्योंकि आप सभी का पहली बार ऐसा हुआ है कि सही जवाब मिला है। तो अब मैं आपको नाम सुना रही हूँ प्रकृति के 5 तत्व, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। बिल्कुल सही है, आप सभी ने सही जवाब दिया है। आज का मीठा मोती आपको सुनाना चाहूंगी, जो बहुत ही सुंदर है, कि जैसे हमारी रचना अगरबत्ती, जैसे हमारी रचना अगरबत्ती इतना सुगंध फैलाती है, तो हम रचिता जहां हो वहां का वातावरण कितना सुगंधित कर सकते हैं। अब मैं आपको हनुमान जी पर प्यारा सा भजन सुनाऊंगी, आप लेंगे भजन का आनंद और मुझे देंगे इजाजत। कल फिर मिलेंगे एक नए प्रश्न के साथ, तब तक के लिए राम राम सा, जय श्री कृष्ण सा, घनी खम्मा सा, रेडियो मधुबन सुनते रहो, मुस्कुराते रहो। रोम रोम में हनुमत के बसे हुए श्री राम, लांग गए सागर को पल में लेके राम का नाम। झूठा बंधन झूठी माया झूठा ये संसार है, सच्चा है एक राम नाम का

रेड लाइट होने पर हमेशा अपनी गाड़ी रोक लेना चाहिए और उसे ग्रीन होने पर ही आगे बढ़ाना चाहिए। ऐसा ना करके हम अपनी और दूसरों की जान खतरे में डाल सकते हैं। रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी।

सिंहासन हिल उठे, राजवंशों ने भ्रिकुटी तानी थी, बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी, गुमी हुई आजादी की कीमत सबने पहचानी थी, दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी, चमक उठी सन 57 में वो तलवार पुरानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी।

0: कवयित्री सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा रचित ये कविता भारतीय वीरांगना झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की वीरता की गाथा है, जो हम सब ने अपने स्कूली दिनों में पढ़ी भी होंगी। बाल्यावस्था से ही उनके साहस के किस्से चारों ओर फैल चुके थे और 29 वर्ष की अल्प आयु में वो अंग्रेजों से लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुई। इतिहास के पन्ने ऐसे अनगिनत देशभक्तों और क्रांतिकारियों के खून से सने हैं, जिन्होंने खुशी खुशी मातृभूमि के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। फिर वो पुरुष हो या महिला, उनमें से ही एक थी प्रीति लता वाड्डेदार, जो महज 21 साल की उम्र में अंग्रेजों के खिलाफ लड़ते हुए शहीद हो गई। जब अंतिम सांस ली तो उनके मुख से एक ही शब्द निकला, वंदे मातरम। आज एक गीत एक नारा राष्ट्रगीत हमारा के इस एपिसोड में हम जानेंगे इन्हीं वीर क्रांतिकारी प्रीति लता के देशभक्ति की कहानी।
1: निर्मल दा, हम सब ने सिस्टर निवेदिता, भिकाजी कामा, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की वीरता एवं साहस की कहानी सुनी है। आखिर प्रीति लता ने देश के लिए कैसा बलिदान दिया?
2: अच्छा सवाल। प्रीति लता को बंगाल की अग्नि कन्या भी कहते थे। वह किसी से डरती नहीं थी।
1: इतना साहस कैसे आया उनमें?
2: तनिक ठहरो, सब्र करो। इसके लिए हमें चलना होगा इतिहास के उस चटगांव में, जो आज बांग्लादेश का दूसरा सबसे बड़ा शहर है। बांग्लादेश और बंगाल की खाड़ी का सबसे व्यस्त बंदरगाह है और जिसे अब चटगांव नहीं चटग्राम के नाम से जाना जाता है।
0: चटगांव को हम मास्टर सूर्यदा यानी बंगाल के वीर क्रांतिकारी सूर्य सेन की वजह से जानते हैं। उसी चटगांव में रहती थी प्रीति लता, जिनके अंदर देश को ब्रिटिश हुकूमत से आजाद कराने की धुन लगी थी। एक सुबह उनके घर घबराई सी युवती प्रतिभा पहुंचती है और उन्हें कुछ दिखाती है।
3: दीदी दीदी देखो, आज के अखबार में क्या छपा है? मास्टर दा की ढोलघाट वाली मुठभेड़ के बारे में क्या लिखा है? उन्हें पुलिस तलाश रही है। मुझे तो डर लग रहा है, आप क्या कहती हैं?
4: किस बात का डर प्रतिभा? डरना तो अंग्रेजों को चाहिए, जिन्होंने हमारे देश को गुलाम बना रखा है।
3: दीदी आपको डर नहीं लगता? आप स्कूल की हेडमिस्ट्रेस है, आपका सभी बहुत सम्मान करते हैं। माँ बाबा आपके लिए लड़का ढूंढ रहे हैं और आप क्रांतिकारियों के साथ आजादी के सपने देख रही हैं।
4: प्रतिभा, जब पूरा देश एक बड़ी जेल बन चुका हो तो चार दीवारों की गृहस्थी में सुख कैसे मिल सकता है? माँ बाबा को समझा देना, उनकी बेटी सिर्फ शादी के लिए पैदा नहीं हुई है, मेरा विवाह तो इस देश की आजादी से हो चुका है।
0: ये वो समय था जब ब्रिटिश पुलिस इंडियन रिपब्लिकन आर्मी के सदस्यों को जिंदा या मुर्दा पकड़ने के लिए जमीन आसमान एक कर रही थी। और तभी जून 1932 में ढालघाट गांव में क्रांतिकारियों के एक गुप्त ठिकाने पर पहली बार प्रीति लता और सूर्यदा की भेंट होती है। उनके साथ निर्मल सेन और अपूर्व सेन भी थे।
5: मास्टर दा प्रणाम, मैं आ गई हमेशा के लिए।
6: आओ प्रीति, तुम्हारी प्रतीक्षा थी। कल्पना दत्त ने मुझे तुम्हारे आने की सूचना दी थी, पर क्या तुम जानती हो कि इस गुप्त ठिकाने पर कदम रखने का वास्तविक अर्थ क्या है?
5: जानती हूँ मास्टर दा, यहाँ कदम रखने का अर्थ है मौत से सीधा सौदा।
6: तुम एक पढ़ी लिखी लड़की हो, कोलकाता विश्वविद्यालय से फिलॉसफी में ग्रेजुएट हो, तुम्हारा भविष्य उज्जवल है, फिर इस कांटों भरे रास्ते पर क्यों आना चाहती हो? यहाँ भूखे पेट रहना पड़ता है, जमीन पर सोना पड़ता है और किसी भी क्षण अंग्रेजों की गोली का शिकार होना पड़ सकता है।
5: खोमा कोर्बिन मास्टर दा, अगर देश के पढ़े लिखे युवा केवल अपने भविष्य की चिंता करेंगे तो इस भारत माता को गुलामी की बेड़ियों से कौन आजाद कराएगा? यदि पुरुष इस लड़ाई में गोलियां खा सकते हैं तो महिलाएं पीछे क्यों रहें? मुझे अपनी सेना में शामिल कर लीजिए।
6: तुम्हारी आंखों की यह चमक बता रही है कि तुम पीछे हटने वालों में से नहीं हो। आज से तुम हमारी सैन्य शाखा की सक्रिय सदस्य हो।
0: सूर्यदा के ठिकाने पर पहाड़ तली यूरोपियन क्लब पर हमले की योजना बन रही थी। वहां कल्पना, प्रीति, लता सभी पहुंचते हैं।
7: प्रीति, मास्टर दा चाहते हैं कि इस बार हमले की कमान तुम संभालो, लेकिन चुनौती बहुत बड़ी है।
5: हाँ कल्पना, मैंने देखा है, इस क्लब के बाहर एक बोर्ड टंगा है जिस पर लिखा है कुत्तों और भारतीयों का आना मना है। यह सिर्फ एक बोर्ड नहीं है, यह हमारे पूरे राष्ट्र के आत्मसम्मान पर रोज किए जाने वाला प्रहार है।
7: क्लब के चारों ओर कटीले तारों का घेरा है और हर वक्त ब्रिटिश सर्जेंट हथियारबंद सिपाहियों के साथ गश्त करते हैं। हमें रात के अंधेरे में पुरुष वेश धारण करके जाना होगा। क्या तुम तैयार हो?
5: बिल्कुल तैयार हो। हम धोती और शर्ट पहनकर पंजाबी नाविकों का भेष बदलेंगे। मास्टर दा, मुझे इस अभियान के लिए आपकी अनुमति और आशीर्वाद चाहिए।
6: तुम्हें पूरी अनुमति है प्रीति, लेकिन एक बात हमेशा ध्यान रखना, यदि अभियान के दौरान पकड़े जाने की स्थिति बने तो जीवित दुश्मनों के हाथ मत आना। अंग्रेज महिलाओं और पुरुषों पर ऐसी यातनाएं ढाते हैं जो मौत से भी बदतर होती हैं।
5: इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी मास्टर दा, ये पोटेशियम साइनाइड हमेशा मेरे पास रहेगा। अंग्रेजों की गोली या उनकी जेल की काल कोठरी से बेहतर है कि मैं भारत माता की गोद में सो जाऊं।
0: फिर वो तारीख आई, 24 सितंबर 1932, जिस रात को क्लब पर क्रांतिकारियों को धावा बोलना था। प्रीति लता ने कमर कस रखी थी, वो अपने साथियों के साथ आखिरी तैयारी में जुटी थी। उन्हें दिशा निर्देश दे रही थी ताकि कोई चूक ना रह जाए।
5: सब अपनी अपनी पोजीशन ले लो, जैसे ही मैं सीटी बजाऊं क्लब के भीतर बम फेंक देना और खिड़कियों से गोलाबारी शुरू कर देना।

0: बताते हैं कि क्लब के एक मुस्लिम बावर्ची क्रांतिकारियों की सहायता कर रहे थे, क्योंकि वो अंग्रेजों के बर्ताव से बहुत नाराज थे। उन्होंने ही क्रांतिकारियों को क्लब के रास्तों, बनावट आदि की पूरी जानकारी दी थी। सब बताया था कि क्लब में कितने दरवाजे और खिड़कियां हैं, कहां कहां पुलिस तैनात रहते हैं आदि। ये भी तय था कि वो रसोई की खिड़की से टॉर्च लाइट से इशारा देंगे। उनके इशारे के बाद ही तीखी सीटी की आवाज आती है और रात करीब 10 बजे एक बहुत तेज धमाका होता है। कांच टूटने और अंग्रेजों की चीख पुकार मच जाती है। उन्हें बाहर निकलने का मौका ही नहीं मिलता, क्योंकि बाहर जाने के सभी रास्तों पर क्रांतिकारी थे।
1: Help! Help! Terrorists! Terrorists! Run for your lives!
2: इनकलाब जिंदाबाद! आजाद हिंदुस्तान जिंदाबाद! साथियों, कोई भी गोरा अफसर बच कर ना जाने पाए, हमला तेज करो।
0: राइफलों और पिस्तौलों की अंधाधुंध तड़तड़ाहट हो रही थी। दोनों तरफ से भारी गोलाबारी के बीच लोग इधर उधर भाग रहे थे। चीख पुकार मची थी। अंग्रेजों ने भी जवाबी हमला शुरू कर दिया था।
3: Fire! Fire back! Shoot them down! Don't let these rebels escape!
0: तभी अचानक एक भारी गोली चलने की आवाज आती है और उसके तुरंत बाद प्रीति लता के मुंह से एक तेज करहा निकलती है।
2: आ, आ, मुझे, मुझे, मुझे शायद गोली लग गई।
4: प्रीति दीदी, आप बहुत बुरी तरह से जख्मी हैं, बहुत खून बह रहा है। चलिए चलिए, हम आपको यहाँ से सुरक्षित निकाल लेते हैं।
2: नहीं नहीं, रुकना मत, मेरा आदेश है, तुम सब यहाँ से पीछे हटो। हमारा काम पूरा हो चुका है। हमने अंग्रेजों के घमंड को चूर चूर कर दिया है। अगर तुम मुझे बचाने में समय गवाओगे तो सब पकड़े जाओगे।
0: कुछ देर के पश्चात गोलीबारी थम जाती है। केवल क्लब के अंदर लगी आग की लपटों की चटकने की आवाज आ रही थी और प्रीति लता की भारी सांसें सुनाई दे रही थी, लेकिन उस पीड़ा के बीच भी उनकी हिम्मत नहीं टूटी थी। वो नारे लगा रही थी।
2: भारत माता, आज तुम्हारी ये 21 साल की बेटी तुम्हारे चरणों में अपने जीवन का अंतिम अर्घ दे रही है। मैंने जो मशाल जलाई है, उम्मीद है वह बुझेगी नहीं। घोरे सर्जेंट, मुझे

0: मातरम।
1: प्रीति लता ने कागज की पुड़िया खोली और गोली निगल ली। उसने एक गहरी सांस ली और जमीन पर गिर गई। कुछ सेकंड के भारी सन्नाटे के बाद वहां ब्रिटिश साजन पहुंचे और टॉर्च जलाकर देखा।
2: ओह माय गॉड, चेक दिस आउट, ये तो एक युवा लड़की है। इसने पुरुषों के कपड़े पहन रखे हैं। बट शी इज डेड, इसने जहर खा लिया है। लेकिन चेहरे पर खौफ की जगह ये कैसा सुकून और मुस्कान है।
1: असल में ये क्रांतिकारी अप्रैल 1919 के जलियांवाला बाग नरसंहार का बदला लेना चाहते थे और उसमें वो कुछ हद तक सफल भी हुए। लेकिन क्लब पर हमले के बाद ब्रिटिश खेमे में हड़कंप मच गया। घटना स्थल पर चारों ओर अंग्रेज सिपाही पहुंच गए।
3: सर्च एवरी कॉर्नर, इस मरी हुई लड़की की जेब की तलाशी लो। मुझे इसके सारे मददगारों के नाम चाहिए। ये अकेली नहीं थी, इसके पीछे मास्टर द सूर्य सेन का हाथ है।
4: यस सर, देखिए इसकी जेब से कुछ दस्तावेज और एक हाथ से लिखा हुआ पत्र मिला है।
3: क्या लिखा है इसमें?
4: सर जी, इसमें लिखा है,
5: भारत की महिलाएं अब किसी भी मामले में अपने भाइयों से पीछे नहीं रहेंगी। यदि हम देश के लिए जान दे सकती हैं, तो हथियारों से दुश्मनों का भी खात्मा कर सकती हैं।
3: Damn it! ये औरतें तो पुरुषों से भी ज्यादा खतरनाक हैं। तुरंत रेड मारो, कल्पना दत्त और सूर्य सेन को जिंदा या मुर्दा पकड़ो।
1: क्लब पर हमले के बाद कल्पना दत्त को गिरफ्तार कर लिया गया। मास्टर सूर्यदा भागने में सफल रहे। मामले की सुनवाई शुरू हो गई। कोर्ट में भारी गहमा गहमी थी।
6: ऑर्डर ऑर्डर, चटगांव आर्मरी रेड और पहाड़ तली क्लब हमले का स्पेशल ट्रिब्यूनल केस, किंग एम्परर वर्सेस कल्पना दत्त और अन्य।
7: माय लॉर्ड, 25 सितंबर 1932 की रात जो हुआ वह ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ खुली बगावत थी। प्रीति लता वादेदार नाम की बागी लड़की ने खुदकुशी करके कानून से बचने का रास्ता चुना, लेकिन हमारे पास पुख्ता सबूत हैं कि इस पूरी साजिश के पीछे यहाँ खड़ी मुलजिम कल्पना दत्त और फरार मास्टरदा सूर्य सेन का हाथ है। इन बागियों को सरेआम फांसी की सजा मिलनी चाहिए।
8: मुलजिम कल्पना दत्त, क्या आपको अपने बचाव में कुछ कहना है?
9: मिलोर्ड, हमें किसी बचाव की जरूरत नहीं है। प्रीति लता वदेदार मरी नहीं है, उसने देश के आत्मसम्मान के लिए शहादत दी है। आप हमें बागी कहते हैं, लेकिन हम अपनी मातृभूमि को आजाद कराने वाले सैनिक हैं। आप हमें जेल भेज सकते हैं, फांसी पर लटका सकते हैं, लेकिन हमारे दिलों में जल रही आजादी की इस आग को कभी नहीं बुझा सकते।
1: अदालत में भारतीयों द्वारा इनकलाब जिंदाबाद, वंदे मातरम के धीमे लेकिन दृढ़ नारे गूंजने लगे। जज उन्हें शांत रहने को कह रहे थे।
8: साइलेंस, साइलेंस इन द कोर्ट। ये अदालत ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ युद्ध छेड़ने के जुर्म में कल्पना दत्त को आजीवन काला पानी की सजा सुनाती है।
9: मुझे ब्रिटिश हुकूमत से इसकी ही उम्मीद थी। उन्होंने सोचा था कि प्रीति लता के बलिदान और उनके साथियों को जेल भेजकर वे क्रांति को कुचल देंगे, लेकिन वे गलत थे। 21 साल की प्रीति लता वदेदार ने जो शहादत की मशाल जलाई थी, उसने पूरे देश की महिलाओं और युवाओं को उद्वेलित कर दिया है। चटगांव की उस बेटी का नाम इतिहास के पन्नों में अमर हो गया है। उसने सिखा दिया कि आजादी की कीमत अपने प्राणों से बढ़कर कुछ नहीं।
10: दादा,
0: जब प्रीतिलता शिक्षण से जुड़ ही चुकी थी तो वे क्रांतिकारी गतिविधियों में कैसे शामिल हुई?
10: इसकी भी एक कहानी है। असल में ग्रेजुएशन के दौरान वे श्री संघ से जुड़ी हुई थी, जो लीला नाग के नेतृत्व में चल रहे दीपाली संघ का अंग था। आगे चलकर दीपाली संघ महिला क्रांतिकारियों का एक प्रमुख संगठन बना, जहां सदस्यों को शारीरिक प्रशिक्षण से लेकर राजनीतिक आंदोलनों और अन्य तत्कालिक घटनाक्रमों की जानकारी दी जाती थी। इतना ही नहीं बल्कि महिलाओं को पुरुषों के बराबर कार्य करने और आंदोलनों में भागीदारी करने के लिए प्रेरित भी किया जाता था। कलकत्ता प्रवास के दौरान प्रीतिलता कल्याणी दास के नेतृत्व में संचालित छत्री संघ से भी प्रेरित रही। उन्हीं दिनों प्रीतिलता की मुलाकात पूर्णेंदु दस्तीदार से हुई, जो चितगोंग क्रांतिकारी पार्टी के सदस्य थे।
1: प्रीतिलता के क्रांतिकारी बनने की कहानी जानने के लिए हमें इतिहास में लौटना होगा, जब प्रीतिलता मिलती है क्रांतिकारी पार्टी के सदस्य पूर्णेंदु दस्तीदार से।

0: पुर्णेंदु जी, आप मुझे अपनी पार्टी में शामिल कर लीजिए।
1: मुझे समय दो प्रीति, मैं ऐसे फैसले नहीं लेता। मुझे सूर्यदास से विचार विमर्श करना होगा।
0: ठीक है, आप कर लीजिए, मैं जवाब का इंतजार करूंगी।
2: पुर्णेंदु ने सूर्य सेन को प्रीति लता के बारे में बताया कि वो पार्टी में शामिल होने को लेकर कितनी उत्सुक है।
3: देखो पुर्णेंदु, मैं महिलाओं के क्रांतिकारी गतिविधियों में शामिल होने के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन उन्हें कुछ विशेष कार्यों की जिम्मेदारी ही सौंपी जा सकती है, जैसे संदेशवाहक, क्रांतिकारियों को पनाह देना, किताबों को छिपाकर रखना आदि। जहां तक प्रत्यक्ष रूप से क्रांतिकारी गतिविधियों में शामिल होने, हथियार चलाने की बात है, जिससे काफी खून खराबा होने की आशंका रहती है, वैसी गतिविधियों में महिलाओं को हम खतरे में नहीं डाल सकते हैं।
1: आप अपनी जगह ठीक है, लेकिन प्रीति लता के इरादे भी काफी मजबूत है। वह मानसिक रूप से क्रांतिकारी गतिविधियों में शामिल होने को लेकर पूरी तरह तैयार नजर आ रही है। आप उसे एक मौका देकर देखें, क्या पता कि हमें एक वीर महिला योद्धा मिल जाए।
3: अब तुम इतना कह रहे हो तो ले लो प्रीति लता को पार्टी में, लेकिन यह बात बाहर नहीं जानी चाहिए।
2: इसके बाद ही प्रीति लता को चितगोंग क्रांतिकारी पार्टी में शामिल कर लिया जाता है। 18 अप्रैल 1930 को सूर्य सेन के नेतृत्व में चितगोंग आर्मरी रेड होता है। उसके बाद जलालाबाद की जंग हुई, जिसमें 14 से 19 वर्ष के युवा क्रांतिकारियों ने ब्रिटिश सिपाहियों को कड़ी टक्कर दी। उन्हें पीछे हटना पड़ा, लेकिन इस संघर्ष में 11 क्रांतिकारी शहीद हो गए। इसके पश्चात कर्णफुली नदी के समीप यूरोपियन क्वार्टर्स पर हमला किया गया। कालरपोल की जंग हुई, काफी क्रांतिकारी शहीद हो गए। उधर प्रीति लता के सब्र का बांध टूटा जा रहा था।
0: पुर्णेंदु दा, मुझे सशस्त्र संघर्ष के लिए कब भेजा जाएगा?
1: मैं सूर्यदा से बात करता हूँ।
3: पुर्णेंदु, उसे धीरज रखने को कहो। पहले उसे अलीपुर सेंट्रल जेल में बंद रामकृष्ण विश्वास से जाकर मिलने को बोलो।
1: प्रीति, सूर्यदा ने तुम्हें रामकृष्ण से जेल जाकर मिलने को कहा है। उन्हें फांसी की सजा हुई है।
0: क्या क्या किया था उन्होंने?
1: उन पर चांदपुर रेल पुलिस इंस्पेक्टर तारिणी मुखर्जी की हत्या का आरोप है।
0: ठीक है, आप जैसा कहेंगे मैं उनसे जाकर मिलूंगी।
2: प्रीति लता रामकृष्ण से मिलने जेल गई। वो उनके कजन के रूप में उनसे मिलने गई, ताकि किसी को कोई शक ना हो। इस तरह प्रीति लता करीब 40 बार से ज्यादा रामकृष्ण से मिली। असल में सूर्यदा ने उन्हें एक खास मकसद से वहां भेजा था। वो जानते थे कि रामकृष्ण से मिलकर प्रीति लता के अंदर क्रांति का भाव और गहरा होगा, उनमें स्थिरता आएगी।
4: जानती हो बन्नो, सूर्यदा का ये प्रयोग सफल भी रहा।
5: कैसे दादा?
4: प्रीति लता रामकृष्ण से मिलने के बाद रोजाना डायरी लिखा करती थी। उसमें वे अपनी भावनाएं और तमाम विचार लिखती, इससे उनके दृष्टिकोण में स्पष्टता आती गई।
2: हालांकि रामकृष्ण की फांसी का प्रीति लता के मन पर गहरा आघात लगा। उन्होंने तय कर लिया कि वो अब अपना समय जरा भी जाया नहीं करेंगी। खुदीराम, कन्हैयालाल, बाघा जतिन, रानी लक्ष्मीबाई की तरह वो भी देश को आजाद कराने के लिए अपने प्राण न्योछावर कर देंगी। इसीलिए वो सूर्यदास से मिलना चाहती थी। उन्होंने पार्टी में अपना संदेश भिजवाया।
3: प्रीति लता, मैंने तुम्हारे बारे में सुना है। तुम्हें एक जिम्मेदारी सौंपने जा रहा हूँ। तुम्हें चटगांव में अंग्रेजों पर हमला करना है।
0: मैं कब से इंतजार कर रही हूँ दादा।
2: योजना के अनुसार अगले दिन ही यानी 13 जून को प्रीति लता को निकलना था, लेकिन ब्रिटिश अधिकारी कैप्टन कैमरून के साथ अचानक मुठभेड़ हो गई, जिसमें निर्मल सेन की गोली से कैप्टन मारा गया, जबकि एक गोरखा सिपाही की गोली से निर्मल शहीद हो गए। गोलीबारी में अपूर्व की भी मौत हो गई। प्रीति लता और सूर्य सेन किसी तरह भागने में सफल रहे, लेकिन इस घटना के बाद प्रीति लता को वापस ढाल घाट लौटना पड़ा। उधर पुलिस ने प्रीति लता के घर की तलाशी ली, जहां से उन्हें एक पत्र और कई फोटो मिली। उसमें आपत्तिजनक कुछ भी नहीं था। फिर भी प्रीति को घर में नजर बंद कर दिया गया।
6: प्रीति लता घर में कैद होकर रहेगी सूर्यदा, उन्हें बाहर निकालना होगा।
3: उसे संदेश भिजवाओ कि वह अब घर छोड़ने की तैयारी करे। उसे अब से अंडरग्राउंड रहकर काम करना है।
6: ठीक है, मैं संदेश भिजवाता हूँ।
2: प्रीति लता को सूर्यदा का संदेश मिलता है और 5 जुलाई 1932 को वो अपने घर से भाग जाती हैं। ब्रिटिश प्रशासन उनके ऊपर 500 रुपए का इनाम घोषित कर देता है, लेकिन प्रीति लता को फर्क ही नहीं पड़ता। वो अपनी तैयारियों को और धार देने में जुट जाती हैं। इस समय तक वो रिवॉल्वर, पिस्टल एवं बम चलाना सब सीख लेती हैं। आखिरकार उनके सपने के पूरा होने का दिन तय हो जाता है, 24 सितंबर 1932। सूर्यदा उन्हें पहाड़ तली यूरोपियन क्लब पर हमले की जिम्मेदारी सौंपते हैं। उसी हमले में प्रीति लता को गोली लगती है और वो शहीद हो जाती हैं। लेकिन उनका वही सर्वोच्च बलिदान आने वाली सदियों तक हर भारतीय के दिल में देशभक्ति के अंगारे सुलगाता रहेगा। तो अब हमें दीजिए इजाजत, एक गीत एक नारा राष्ट्रगीत हमारा की अगली कड़ी में मिलेंगे एक और वीर सेनानी से। वंदे मातरम।

0: रेडियो मधुबन सुनने वाले सभी श्रोता स्वीकार करें संदीप त्रिवेदी का प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, हाजिर हूं मैं आप सबके लिए आप सबका बेहद पसंदीदा प्रोग्राम जिसका नाम है हमराही लेकर के, और आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो। श्रोताओं, अक्सर कार्यक्रम ऐसे होते हैं जो कहीं ना कहीं हमको प्रेरणा देकर के जाते हैं जब वो कार्यक्रम हो जाते हैं उसके बाद, लेकिन आज का कार्यक्रम व्यक्तिगत तौर पर मेरे लिए बहुत खास है, बहुत विशेष है, क्योंकि एक ऐसे व्यक्तित्व जिनको मेरे जैसे हजारों हजार युवा अपना आदर्श मानते हैं, एक ऐसे व्यक्ति जो कि सुप्रीम कोर्ट में सीनियर लॉयर के पद पर आसीन है, और इससे भी महत्वपूर्ण बात, जो लगभग 50 वर्षों से दृष्टिबाधित साथियों की सेवा में लगे हुए हैं, भारत और भारत के बाहर शायद ही कोई ऐसा हो जो हमारे आज के जो विशेष मेहमान हैं उन्हें नहीं जानता हो, और साथ ही साथ वे भारत के सबसे बड़े दृष्टिबाधितों के लिए बने संगठन राष्ट्रीय दृष्टिहीन संघ के महासचिव हैं, और 1, 2, 4 नहीं लगभग 40-42 वर्षों से वो इस पद पर रहते हुए अपने समाज, अपने साथियों की और अपने पूरे इस पीढ़ी को नेतृत्व प्रदान करने का काम कर रहे हैं। उम्मीद है श्रोताओं इतनी बात में तो आप सब समझ गए होंगे। चलिए तो स्वागत करते हैं आज के इस कार्यक्रम में हमारे विशेष मेहमान आदरणीय एस के रोंगटा सर एवं उनकी श्रीमती जी सुषमा रोंगटा मैडम का। सर और मैम, आप दोनों का बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में।
1: नमस्कार सबको।
0: मैम, आपका भी स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में।
2: थैंक यू सो मच। नमस्ते सबको।
0: मैम, एक्चुअली सर को तो जैसा कि मैंने बताया शायद ही कोई ऐसा हो जो नहीं जानता हो, और वैसे तो आपको भी जानते ही हैं, लेकिन हम चाहते हैं आज की शुरुआत आपसे की जाए। आप थोड़ा सा अपने बारे में मैम हमारे सुनने वालों को बताइए प्लीज।
2: अपने विषय में क्या बताऊं मेरा तो साहब के साथ ही जुड़ा है, जो भी है उसके रुंटा के साथ ही मैं जुड़ी हुई हूँ शुरू से। सबसे पहले मैंने जब बिलीव साइंस किया तो लाइब्रेरी में, मतलब जो हमारी एनएपी की लाइब्रेरी थी उसको ज्वाइन किया था। तो मैं साहब के साथ मीटिंग्स में जाती थी, डिफरेंट मीटिंग्स में, ऑफिशियल्स मीटिंग में, तो मैं देखती थी मिस्टर रुंटा की पर्सनालिटी से मैं बहुत ही ज्यादा प्रभावित हो गई, क्योंकि वो जो भी अपनी बात कहते थे उसमें इतना दम होता था कि अच्छे अच्छे ऑफिसर्स भी उनकी बात को मानने के लिए बाध्य हो जाते थे। तो वो सब मुझे बहुत ही अच्छा लगता था। और इसी तरह जो है मेरा जो है उनसे जो लगाव जो था वो फिर बाद में प्रेम में परिवर्तित हो गया।
0: बहुत खूब। वाकई में ये कहानी जो भी आज सुनेंगे उन्हें बड़ा अच्छा लगने वाला है। मैम, आपकी क्वालिफिकेशन वगैरह क्या?
2: मैंने पहले तो एमए हिंदी किया था और उसके बाद में बिलीव साइंस किया, और बाद में लोकसभा ज्वाइन करने के बाद में मैंने यहाँ पे लाइब्रेरी प्रोफेशनल के रूप में लोकसभा में पार्लियामेंट लाइब्रेरी को ज्वाइन किया, और इसके बाद में फिर मैंने लॉ किया।
0: क्या बात, वाह। मतलब सर की वकालत का असर आप पर भी हो ही गया कम से कम।
2: वकालत के फील्ड में तो अभी मुझे कुछ नहीं आता है।
0: जी मैम, थैंक यू। आपसे बातचीत तो बहुत लंबी करनी है, तो सर वैसे तो आप जो भी कहेंगे वो हम सब के लिए अनमोल वचन ही होते हैं, लेकिन आप अपनी तरफ से अपने बारे में बताएं सर, कुछ ऐसा जो शायद बहुत कम आप कभी कहते हो, प्लीज सर।
1: मैं तो यही कहना चाहूंगा अपने विषय में, जो जीवन का सार अब तक का है।
0: जी सर।
1: जो मैं अपना मूल्यांकन करता हूँ अब तक की जिंदगी के सफर को, वो यही है कि जो आपके साथ समाज परिवार में जिस तरह का व्यवहार होता है,
0: यस सर,
1: उसका बड़ी सतर्कता से हमको मूल्यांकन करना चाहिए।
0: यस सर।
1: और उस व्यवहार के मूल्यांकन के आधार पर आपको अपने जीवन को आगे बढ़ाने के लिए और अपने जीवन को ढालने का, जिससे कि आपका अधिकार, आपका स्वाभिमान सुरक्षित रहे, उसी आधार पर अपने जीवन को ढालना चाहिए और उसी तरह की जीवन यात्रा करनी चाहिए। मैं इसमें विश्वास रखता हूँ।

0: और इसी विश्वास के साथ मैंने अपनी ये जीवन यात्रा तक की है। और उसमें मुझे लगता है कि इस अप्रोच से मैं न केवल अपने व्यक्तिगत जीवन में सफल रहा बल्कि अपने सामाजिक कार्यों में सफल रहा।
1: बहुत खूब। एक बात बताएं सर कि दुनिया आपको अलग अलग नजर से देखती है। हमारे जैसे लोग आपको आदर्श मानते हैं, कुछ लोग आपको एक्टिविस्ट मानते हैं, कुछ लोग आपको सफल वकील मानते हैं। आप अपने आप को क्या मानते हैं सर?
0: मैं तो अपने आप को एक इंसान मानता हूँ और यही प्रार्थना करता हूँ कि एक अच्छा इंसान ईश्वर हमेशा मुझे बनाए रखे। और जो सबसे बड़ी दुश्मन बुराइयां हैं मानव के लिए, जैसे अहम, अहंकार
1: जी सर,
0: जैसे घृणा, जेलस, इनसे दूर रखें
1: जी।
0: और मैं उस इंसानियत का जो आधार मानता हूँ, जिस इंसानियत के साथ अपने अंतिम सांस लेना चाहता हूँ,
1: क्या
0: अंतिम सांस तक जीना चाहता हूँ, वो आधार यही है
1: जी
0: कि व्यक्ति को अपने जीवन में
1: जी
0: जो उसका सबसे बुरा समय था उसको कभी नहीं भूलना चाहिए और उससे जुड़े रहते हुए दूसरों के प्रति अपने व्यवहार को संचालित करना चाहिए।
1: जी जी जी, निश्चित रूप से सर। बहुत खूब सर। सर आपका भी जीवन एक सामान्य दृष्टिबाधित विद्यार्थी की तरह ही प्रारंभ हुआ। कब आपने ये सोचना शुरू कर दिया कि आप अपने इस समाज के लिए ही लड़ेंगे, इस समाज के लिए ही कार्य करते रहेंगे? ये सब भावना आपके अंदर मतलब शुरू में तो नहीं आई होगी एकदम से? तो
0: नहीं, मैं ये कहूंगा कि बहुत शैशव काल से ही ये भावना आ गई।
1: अच्छा।
0: और इसमें जैसा मैंने कहा कि परिवार और समाज में और विद्यालय में
1: जी जी
0: जो व्यवहार देखा, मैंने कहा ना मेरे जीवन यात्रा का आधार और जीवन को ढालने का आधार ही समाज, परिवार और अन्य व्यक्तियों का जो व्यवहार है दृष्टिबाधिता के कारण
1: जी,
0: उसी ने हमेशा यात्रा को निर्धारित किया है। उस क्रम में जो मैंने परिवार में देखा, एक मध्यम वर्गीय परिवार में जन्म लेने के नाते
1: जी सर,
0: जो आपस में दृष्टिबाधिता को लेकर बातें सुनी
1: जी,
0: और जिस तरह से एक जो आम दृष्टिकोण उस समय था, आज भी है, लेकिन आज वो काफी नीचे चला गया है। नीचे इन द सेंस कि वो अभिव्यक्त नहीं होता
1: जी।
0: मैं ये नहीं कहूंगा कि वो लोगों के दिमाग से चला गया है
1: जी जी।
0: अब अभिव्यक्त करते हुए लोग डरते हैं। पहले अभिव्यक्ति उसकी बिल्कुल खुलेआम होती थी, व्यवहार में भी, शब्दों में भी
1: जी।
0: तो वो जो अभिव्यक्ति थी नकारात्मकता की
1: जी,
0: वो जो बोझपन की
1: जी,
0: कि परिवार में एक बोझ आ गया, समाज में एक बोझ आ गया, और विद्यालय में जो देखा कि किसी भी श्रेणी का कर्मचारी
1: जी
0: वो दृष्टिबाधितों को बड़े हे दृष्टि से देखकर व्यवहार करता था
1: जी जी जी,
0: तो निर्दयता भी देखी
1: जी,
0: उसने एक मुझे जो मैं हूं वो बनाया
1: जी,
0: एक रिएक्शन पैदा किया, प्रतिक्रिया पैदा की, नहीं इसके विरुद्ध संघर्ष करना है, इसको परिवर्तित करना है।
1: बिल्कुल सर।
0: और उसको परिवर्तित करने के कारण निर्णय मैंने बहुत शैशव काल में ही ले लिया, और बहुत शैशव काल में ही मैंने तय कर लिया कि मुझे कानून का व्यवसाय चुनना है, क्योंकि उस समय मुझे ये लगा कि, और जो शायद सही लगा और सही निर्णय था
1: जी,
0: यही एक व्यवसाय है
1: जी
0: जिससे अंततोगत्वा संघर्ष के एक हथियार के रूप में प्रयोग करके हम इस नकारात्मक दृष्टिकोण को बदल कर अपने अधिकारों की प्राप्ति कर सकते हैं और उसकी रक्षा कर सकते हैं
1: जी। क्या बात है, बहुत खूब। तो आपकी सर ये यात्रा तो इतनी विशाल, इतनी लंबी है कि इस पर आगे भी बातचीत जारी रहेगी यहाँ पर। लेकिन अब मेरे मन में प्रश्न ये आ रहा है कि ये सब करते करते, अपने साथियों के लिए लड़ते लड़ते, समय आता है जब अपने बारे में भी सोचना होता है कि भाई गृहस्थी बसानी है, परिवार बनाना है, बढ़ाना है, तो ये सब आपने कब सोचना शुरू कर दिया सर?
0: देखिए, मैं अगर इस प्रश्न का उत्तर ढूंढने की बहुत कोशिश करता रहा आज तक मुझे उत्तर नहीं मिला कब
1: जी,
0: लेकिन मैं यही कहूंगा
1: जी
0: कि जब मैडम का साथ मिला
1: जी,
0: तो हमने तय किया कि अब ये सही समय है जब न केवल परिवार के लिए हम सोचें
1: जी,
0: बल्कि हमने ये देखा कि इनके रूप में हमें एक और साथी इस जो मिशन है
1: जी
0: पूरा करने में स्तंभ के रूप में
1: जी
0: मिलेगा
1: जी
0: और अच्छी साथी स्थापित होगी, तभी हमने ये निर्णय किया।
1: जी जी, कौन से सन में सर आप दोनों विवाह सूत्र?
0: ये 1984 में हम लोगों का विवाह हुआ था, 8 मई 1984 को विवाह हुआ था।
1: अरे मतलब मई का महीना आपके लिए?
0: मई का महीना, बिल्कुल सही कह रहे हैं।
1: श्रोताओं बताएंगे
0: ऐसे क्रांति के लिए मार्च का महीना
1: जी जी जी
0: मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है
1: जी,
0: संघर्षों के लिए
1: जी,
0: अपने समाज के लिए
1: जी,
0: क्योंकि विद्यालय में भी जो पहला आंदोलन किया मैंने 23 मार्च को।
1: जी जी जी, अच्छा
0: 23 मार्च को किया
1: जी सर,
0: 23 मार्च 1966 को।
1: 1966, वाह।
0: और यहाँ राष्ट्रीय स्तर पर जो पहला आंदोलन, संगठित आंदोलन
1: जी जी जी
0: हुआ वो 16 मार्च 1966
1: बिल्कुल, जिसमें
0: ये 2 महीने मेरे जीवन के लिए काफी महत्वपूर्ण है।
1: वाह,
0: और राजर मैं कहूँ कि डिटर्मिनेंट है।
1: बहुत खूब सर, बहुत खूब सर। मैम से पहले भी कभी ऐसा हुआ कि मतलब ये व्यक्ति बहुत अच्छे हैं? आपकी जिंदगी में तो काफी लोग आए होंगे, आपने काफी लोगों से मुलाकात की होगी, कभी और कोई आया जहन में आपके, या ऐसा कभी सोचने का वक्त ही नहीं मिला?
0: नहीं, मतलब इस दृष्टि से तो नहीं कहेंगे, लेकिन हाँ ये बात सही है कि व्यक्ति कई आए
1: जी
0: जिनको हमने सोचा कि वो बन सकते हैं और उनमें सामाजिक प्रवृत्ति है
1: जी,
0: लेकिन अंततोगत्वा जो इनमें मैडम में देखी इसके लिए काम करने की, एक्चुअली उस समय परिवार से ज्यादा यही डिटर्मिनेंट था कि कौन इस मिशन में सच्चा साथी साबित हो सकता है।
1: बिल्कुल तो सही
0: वो, वो जो है उसको ध्यान में रखते हुए।
1: अच्छा सर, पहला प्रस्ताव हमारे श्रोता जानने के लिए बेताब रहेंगे सर कि पहला प्रस्ताव किसकी तरफ से आया?
0: अब ये बड़ा डिफिकल्ट मुझे लगता है अकस्मात दोनों ने एक दूसरे को एक ही समय में प्रस्ताव।
1: कहीं ना सर, कहीं ये वकीलों वाला उत्तर तो नहीं है? वकीलों वाला उत्तर तो नहीं है सर कहीं ये?
0: नहीं, वो तो मैडम करेक्ट करेंगी अगर।
1: जी जी जी जी,
0: लेकिन मुझे जो लगता है।
1: जी जी, वाह, मतलब ये यही होता है सर, जब दोनों तरफ भावनाएं प्रबल हो तो फिर शायद समय भी उसी एक साथ ही एक समय में ही ये सारी बातें होती
0: हैं। बिल्कुल बिल्कुल
1: जी, तो बिल्कुल। अब यहाँ पर थोड़ी सी बातचीत सर मैम से भी जरूरी बनती है।
0: जी जी।
1: मैम
2: जी हाँ,
1: यही बात आपके लिए भी मैम आती है मेरे जहन में कि आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा एक्टिवली काम करते हुए, और आपका अपना एक परिवार था, वहां भी बातें हुई होंगी कि भाई अब आपका विवाह होना चाहिए, तो फिर एकाएक दृष्टिबाधित व्यक्ति को चुनना, ये कैसे एकदम संभव हो पाया? मतलब आपके लिए बड़ा आसान रहा होगा, लेकिन हम लोग ये जानना जरूर चाहेंगे। मैम
2: नहीं, मुझे मिस्टर रूंटा में कभी दृष्टि बाधिता कभी मतलब अड़चन के रूप में कभी भी फील नहीं हुई। हमेशा उनका मेरा जो उनको देखने का नजरिया था वो हमेशा उनके इंटेलिजेंसिया पर ही जाता था कि वो कितने इंटेलिजेंट हैं, कितने इंटेलेक्चुअल हैं, और मुझे मतलब जो है वही चीज बहुत ज्यादा प्रभावित करती थी, और मेरे को लगता था कि वो कोई भी ऐसा काम नहीं है कि नहीं कर सकते हैं। तो बल्कि मुझे साइटेड लोगों में बहुत सारी कमियां भी नजर आती थी, जो मेरे ठीक है मेरे पेरेंट्स चाहते थे कि मैं किसी बैंक ऑफिसर से शादी कर लूं, या मतलब ठीक है रिश्ते देखते थे, लेकिन जब मैं सोचती थी कंपेयर करती थी तो मुझे मतलब ठीक नहीं लगता था। जो कैपेबिलिटी और जो मिस्टर रूटा में थी वो मुझे किसी और में नजर ही नहीं आती थी, और दूसरी कुछ फैमिली की सर्कमस्टांसेस भी ऐसी थी कि मेरे छोटे बहन भाई थे थोड़े, तो मुझे लगता था कि मेरे की फैमिली में जितना साथ मेरे को मिस्टर रूटा दे सकते हैं शायद कोई दूसरा नहीं देगा उतना जिंदगी में।
1: क्योंकि मैम ये प्रश्न दरअसल इसलिए आता है कि आज तो तकनीक ने बहुत सारे काम आसान कर दिए हैं, लगभग सब कुछ ही आसान कर दिया है, लेकिन उस जमाने में ना तो तकनीक थी, केवल जो कुछ था वो अपना अपनी इंटेलेक्चुअलनेस ही सब कुछ थी। तो ऐसे में मतलब निर्णय ले पाना, और उस समय बातें भी बहुत हुआ करती थी, ब्लाइंड और साइटेड के बीच की जो एक खाई है वो भी बहुत ज्यादा बड़ी थी।
2: पर मैंने तो बोला ना कि मुझे प्रभावित ही उनका इंटेलिजेंसिया ही किया।
1: हाँ,
2: तो वही मेरे लिए कभी अड़चन लगती नहीं थी कि उनमें ये कमी है वो कमी है, कभी मुझे किसी चीज की कमी नजर ही नहीं आती थी।
1: क्या बात। तो मैम जैसे सर ने बताया आपका विवाह तो 1984 में हुआ, लेकिन अगर मैं पूछूं कि पहले दिन वो पहली बार कौन सा साल था जब आपने सर को देखा?
2: 82 में मैंने NFB ज्वाइन की थी
1: जी,
2: और NFB में मैं फिर जब इनके साथ मीटिंग्स में जाया करती थी, तो ऐसे शुरुआत में तो ऐसे कुछ नहीं था, ठीक है ही वाज माय बॉस, बट ठीक है जब धीरे धीरे जो है जो उनका व्यक्तित्व जो है वो मुझे धीरे धीरे प्रभावित करता गया, और आगे चल के मुझे लगा कि मतलब जब घर में मेरे शादी वादी की बात चलने लगी, तो फिर मुझे लगा कि ये कैन बी अ गुड चॉइस फॉर मी।
1: क्या बात मैम, तो 1982 में आपने पहली बार सर को देखा और
2: वो तो एज ए ऑफिशियल, मतलब एक साल तक तो शायद हम ऑफिस की तरह ऑफिसर ही मैं उनको मानती थी।
1: हाँ, लेकिन एक एक पर्सन के रूप में, एक ह्यूमन बीइंग के रूप में आपने 1982 में। बहुत खूब। तो मैम परिवार का क्या रिएक्शन था, इमीडिएट रिएक्शन, पहली बार जब आपने ये बताया कि भाई आप इस तरीके से विवाह करने जा रहे हैं? ये बहुत कॉमन क्वेश्चन आपसे पूछा गया होगा मुझे लगता है।
2: परिवार तो देखिए उस टाइम पे जैसी सोच होती है, उस टाइम पे तो कोई अग्री नहीं कर सकता था इस चीज को कि मैं जो है एक ब्लाइंड पर्सन से शादी कर लूं, और बहुत रिएक्शन था, बहुत रिएक्शन था। इसीलिए जो है हमें जो है बिना फैमिली की परमिशन के ही शादी करनी पड़ी।
1: अच्छा, बाद में फिर मैम कितना वक्त लगा परिवार को ये समझने में कि आपने जो निर्णय लिया है वो शायद उनसे भी बेहतर निर्णय लिया है?
2: एक्चुअली मेरी मदर उस टाइम पे काफी बीमार थी, वो तो उनका तो सॉफ्ट कॉर्नर था बहुत ज्यादा, लेकिन मेरे फादर और मेरे फादर के ब्रदर्स वगैरह थे वो सब अगेंस्ट थे बहुत ज्यादा। उनको एक साल तो लगी गया इस चीज को समझने में।
1: अच्छा मैम, फैमिली का तो खैर हम समझ सकते हैं कि क्या रोल रहता है, लेकिन आपके फ्रेंड सर्कल का क्या रिएक्शन था उस समय, फ्रेंड सर्कल की राय क्या थी?
2: नहीं, मेरी जो फ्रेंड्स थी वो बहुत ही सपोर्टिंग थी, हमेशा उन्होंने मुझे सपोर्ट किया। उन्होंने कहा कि अगर तुम किसी को चाहते हो तो उसकी किसी फिजिकल कमी पे नहीं जाना चाहिए, अगर तुम चाहते हो तो ठीक है, आपको वहीं जाना चाहिए जहाँ आपका मन करता है।
1: ऐसे मामलों में मैम
2: देवर वेरी सपोर्ट।
1: वाह, बहुत बढ़िया। ऐसे मामलों में मैम मानसिक रूप से खुद का भी स्ट्रांग होना बहुत जरूरी होता है। कभी आपको ऐसा ऐसा पल आया कि आपने खुद से ये प्रश्न किया हो कि यार मैं कहीं मतलब लड़खड़ा तो नहीं जाऊंगी, कहीं ऐसा तो नहीं है कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज मेरी बढ़ जाएंगी, ऐसा कभी आपको सोचने का मिला?
2: नहीं, ऐसा मुझे कभी फील नहीं हुआ, बल्कि मैं अगर अवलोकन करती भी थी तो हमेशा मुझे मिस्टर डूटा अपने से बेटर ही नजर आते,
1: ज्यादा स्ट्रांग नजर आए आपको?
2: ज्यादा स्ट्रांग नजर आते।
1: बहुत बहुत। तो सर ये बताएं सर कि एक तरफ ये सब आंदोलन चल रहे थे, दूसरी तरफ आप विवाह सूत्र में बंध गए।
0: जी,
1: आमतौर पर सर सबके साथ अक्सर ऐसा होता है कि एक्टिविज्म करते करते कहीं ना कहीं परिवार की डोर या परिवार पर थोड़ी पकड़ ढीली होने लगती है। आपने ये सब कैसे मैनेज किया सर? एक तरफ मैम की भी मतलब इच्छाएं रही होंगी परिवार को संभालने की और उनको समय देने की, सबसे बड़ी बात, तो वो सब मैनेज कैसे किया, ये मुझे लगता है गुरु मंत्र होगा आपकी तरफ से सबके लिए।
0: नहीं, मैं तो इसमें मैंने मैनेज नहीं किया
1: जी,
0: मैनेज मैडम ने किया। इन्होंने बहुत क्लियरली अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी फैमिली की ले ली
1: जी,
0: और कभी भी मुझे नहीं लगता कि परिवार के चलाने के मामलों में
1: जी
0: मैंने कोई किसी ऐसे दायित्व का निर्वहन किया हो जिससे मेरे सामाजिक कार्य पर असर पड़ता हो
1: जी।
0: तो ये तो मैंने कहा ना कि जो मैंने इनसे विवाह का जो निर्णय लिया
1: जी जी,
0: का आधार यही था कि मुझे इनकी सोशल इंस्टिंक्ट और सोशल स्पिरिट का मूल्यांकन था
1: जी,
0: और उसी मूल्यांकन के आधार पे किया जो सही साबित हुआ
1: जी।
0: तो परिवार को तो संभाला मैडम ने ही
1: जी,
0: बच्चों के लालन पोषण से लेकर
1: जिनको
0: पूरी तरह से संभाला उन्होंने, और मुझे कोई पारिवारिक दायित्व के निर्वहन के नाम पर मुझे अपने किसी सामाजिक दायित्व या सामाजिक कार्य या संघर्ष में कहीं पीछे या समय का बंटवारा नहीं करना पड़ा
1: जी जी जी।
0: तो क्या इसके लिए तो पूरा श्रेय मैडम को जाता है।
1: बहुत बड़ी बात कह रहे हैं सर आप, क्योंकि ऐसे में व्यक्ति फ्री हो जाता है अपने साथियों के लिए पूरी ऊर्जा लगाने के लिए।
0: नहीं, कभी भी इन्होंने रोका भी नहीं, ये अपेक्षा भी नहीं की कि भाई पहले परिवार को ही देखो या ये काम करना जरूरी है, और बल्कि हमेशा खुश होती रही, कभी भी जैसे रोजगार के जैसे बात सुनती थी। ये विवाह से पहले भी मैं आपको उदाहरण देना चाहूंगा।
1: जी जी जी, जरूर सर जरूर।
0: विवाह से पहले 1982 में हमने एक फैसला कराया था
1: जी
0: उत्तर प्रदेश सरकार से, विश्वनाथ प्रताप सिंह जी जो उस समय मुख्यमंत्री थे
1: जी जी,
0: आगे बीच नहीं है, तो उनके साथ फैसला करवाया था कि जितने लोग उत्तर प्रदेश में बेरोजगार हैं और रोजगार के लायक हैं उनको एम्प्लॉयमेंट दिया जाए का, और उसके लिए पूरी योजना मैंने ही बना के दी थी
1: जी,
0: और उसमें नाम तक दिए थे कि कौन कहाँ लग सकता है
1: जी,
0: इस पद पर लग सकता है
1: जी।
0: तो वो लिस्ट एज इट इज पूरी योजना अप्रूव हुई थी
1: जी।
0: अब सवाल ये था कि आप जानते हैं कि हमारी व्यवस्था ऐसी है कि निर्णय होने के बाद भी इम्प्लीमेंटेशन जो नीचे लेवल पे है बहुत डिफिकल्ट काम
1: जी,
0: इतना मुश्किल होता है वो आप जानते हैं
1: जी।
0: तो विवाह से पहले ही जैसा मैडम ने कहा कि मीटिंग्स में जाती थी
1: जी,
0: एक कंक्रीट एग्जांपल है कि भी आगरा में
1: जी
0: पूर्णानंद विश्वविद्यालय है, उसमें दो लोगों को जॉब मिलनी थी।
1: अच्छा।
0: और वो लगभग 6 महीने से उस पर कोई काम नहीं। हम आगरा गए, मैडम भी गई थी, और उस दिन दिन भर में एक ही दिन में
1: जी
0: उस फाइल को मूव करा के नियुक्ति पत्र का आदेश हुआ
1: जी।
0: उस समय जो इनकी फीलिंग थी
1: जी,
0: उसने मुझे बहुत प्रभावित किया।
1: क्या बात है।
0: वैसे तो उस समय तो कोई ऐसी बात नहीं थी
1: जी,
0: तो कि विवाह होगा नहीं होगा, लेकिन एक एम्प्लॉय की हैसियत से वो गई थी, और उसमें मतलब खुशी इनको शाम को ये बात सुनकर हुई। वो इस बात को दर्शाती है कि हमारे संघर्षों और उसके परिणामों से
1: जी
0: वो कितना सरोकार रखती, शुरू से रखती रही
1: जी जी जी जी जी। क्या बात है। ये दूरदर्शिता आपके अंदर शुरू से ही थी सर, और ये बहुत अच्छी बात होती है अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करने के लिए।
0: आज भी कोई केसेस होते हैं फेडरेशन से संबंधित कोर्ट में
1: जी,
0: या कोई मीटिंग होती है तो तुरंत पूछती है
1: जी
0: उसके खत्म होने के बाद
1: जी
0: कि क्या हुआ, ठीक हुआ
1: जी जी,
0: क्या हुआ नहीं हुआ
1: जी। और सर कभी आपको परेशान देखते होंगे मैम, तो उस समय फिर क्या प्रतिक्रिया होती है मैम की?
0: नहीं, वो हमेशा स्ट्रेंथ के रूप में रही है
1: जी,
0: परेशान देखकर भी हमेशा स्ट्रेंथ के रूप में रही। उन्होंने हमेशा यही मुझे बल दिया है इस बात का कि काम इनके लिए अगर आप नहीं करेंगे तो कौन करेगा। इस दृष्टि से मतलब केवल एक जीवन संगिनी के रूप में नहीं
1: जी जी जी जी जी,
0: हमारे सामाजिक कार्यों में और संगठन के कार्यों में
1: जी।
0: आपको बताऊं, ये जब अपना प्रधान कार्यालय बना
1: जी जी जी,
0: इसकी बिल्डिंग, इसका नक्शे से लेकर इसकी सुपरविजन, इसकी ईंट से लेकर लोहे की परचेजिंग
1: जी,
0: हर चीज का खुद
1: क्या बात,
0: इन्होंने ऑफिस जाते हुए भी
1: जी जी जी,
0: और उन दिनों सुबह जाना
1: जी
0: ऑफिस, पहले वहाँ बिल्डिंग पे फिर ऑफिस जाना, और शाम को वापस आते हुए पहले बिल्डिंग पे आना
1: जी,
0: कंस्ट्रक्शन जो हुआ है उस दिन उसका सुपरविजन करना
1: जी,
0: और फिर घर आना।
1: बहुत खुश।
0: तो आप ये सोचिए कि यही कारण है कि हमने किसी को बिल्डिंग मटेरियल और लेबर का कंबाइन कॉन्ट्रैक्ट नहीं दिया, हमने लेबर कॉन्ट्रैक्ट केवल दिया, वो भी एक अभी जिसने शुरू ही किया होगा
1: जी, जी,
0: अपने अपने काम को
1: जी,
0: उसको ठेका दिया था
1: जी,
0: उससे काम करवा लेना, और इतना अच्छा, कम से कम आज जब कोई कहता है कि ये बिल्डिंग बहुत अच्छी है, किसी भी कॉर्पोरेट से अच्छी है
1: जी,
0: तो मुझे बहुत गर्व होता है इनके इस सहयोग पर।
1: क्या
0: संघ का, अब देखिए
1: जी
0: आप जानते हैं कि संघ में चूंकि जनतांत्रिक है,
1: बिल्कुल सर,
0: राजनीतिक बातें बहुत होती हैं
1: जी,
0: हम इन चीजों को कभी रेखांकित नहीं करते, लेकिन सच्चाई ये है कि प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप में अनकहे बहुत से सहयोग हैं इनके, जो निश्चित रूप से संगठन और समाज को काफी शक्ति हमेशा प्रदान करते हैं, और मेरे कार्य को तो निश्चित रूप से बहुत सबल बनाते हैं।
1: वाह सर, ये संगठन के प्रति आपका जो समर्पण है वो तो सभी जानते हैं, लेकिन मैम का जो समर्पण भाव है कहीं ना कहीं वही संगठन की,
0: हमारे समर्पण को तो आप ये मान के चलिए कि हमारा समर्पण तो वर्ग का एक सदस्य होने के नाते जो है, लेकिन इनका समर्पण होना
1: जी
0: वो मेरे समर्पण से ज्यादा महत्वपूर्ण है।
1: निश्चित रूप से सर, निश्चित रूप से। इतने सारे सर, मतलब चूंकि आपका पेशा ही वकालत का है, और आपके केसेस के साथ साथ आपने संगठन और अपने साथियों के लिए जो केसेस इतने सारे लड़े हैं और जीते हैं, ऐसा हुआ सर कभी कि परिवार से इतर उन केसेस पर भी आप दोनों की चर्चाएं होती हों आपस में, और कई बार कभी ऐसा भी हुआ हो जब मैम की कोई राय आपके बहुत काम आ गई हो?
0: देखिए, लीगल रूप से हर केस पर चर्चा होती है।
1: अच्छा, व्यवहारिक रूप
0: से लीगल पक्ष के लिए तो वो ये कहती हैं कि भाई उस पे तो आप ही सही निर्णय ले सकते हो,
1: आप ही बेहतर हैं जी जी जी,
0: लेकिन व्यवहारिक रूप से वो जरूर अपनी प्रतिक्रिया भी देती हैं। अगर निर्णय, जैसे मान लीजिए हमने किसी केस में, जैसे एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं
1: जी,
0: कि राजस्थान में जो टीचर्स का केस था
1: जी, रीट वाला,
0: रीट का
1: जी,
0: रीट वाला
1: जी सर,
0: जिसमें उनको शिक्षकों की नियुक्ति में कंसेशन पहले मिला हुआ था, रिलैक्सेशन मार्क्स में
1: जी सर,
0: और बाद में उन्होंने हमारा छीन लिया, बाकी का जारी रखा, तो उसके विरुद्ध जो डाली थी, हर बार मैं जाता था हर बार जब लगता था कि आज हो जाएगा फैसला
1: जी,
0: और जब नहीं होता था
1: जी,
0: तो इनको भी उतनी ही खींच आती थी जितनी हमको आती थी। क्या न्यायालय की व्यवस्था है, मतलब वो देख के काफी अंदर से शक्ति भी आती थी।
1: जी जी जी
0: देखिए
1: जी,
0: जो आपने पहले बहुत पहले सवाल पूछा था शुरू में
1: जी जी,
0: मैनेज कैसे किया सामाजिक कार्य और परिवार को के समय के बीच।
1: जी सर,
0: वो जो बात मैंने कही थी कि भाई मैंने मैनेज नहीं किया,
1: बिल्कुल
0: ये उसी का परिणाम उसी का प्रमाण है जो मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ
1: जी।
0: तो मैंने देखा उन दिनों, मतलब हमको तो लगता ही था जो लगता था
1: जी,
0: इनको भी ऐसे केसेस में लगता है। अभी खाद्य सुरक्षा का जब हुआ था केस,
1: बिल्कुल सर,
0: तो मैं समझ सकता था कि जब वो ऑर्डर हुआ तो कितनी खुशी इनको,
1: कितनी खुशी जी जी जी जी
0: हाँ सबके लिए, कम से कम जिनके पास खाने की सुरक्षा नहीं है वो तुम आपने दिलवा दी
1: जी,
0: मतलब वो खुशी जो जीवन संगीनी हो जाना एक अलग इशू है, परिवार चला लेना एक अलग इशू है
1: जी,
0: लेकिन आपकी जो मिशन है उसके साथ उसके खुशी और गम दोनों को शेयर करना, ये ज्यादा एडेड इनकी व्यक्तित्व का मैं कहूंगा कि हिस्सा है।
1: क्या बात है सर, बहुत खूब सर। आमतौर पर सर घरों में छोटी छोटी बातों को लेकर के विवाद हो जाते हैं।
0: नहीं, हमारे यहाँ कोई विवाद
1: नहीं। आपका जीवन इतना समर्पित रहा है इस सबके पीछे,
0: उसकी विवाद की गुंजाइश आप जैसा कह रहे हैं बहुत थी
1: जी जी,
0: क्योंकि अधिकतर समय हमारा संघ को ही और समाज को ही गया है
1: जी,
0: इसमें मुझे मानने में कोई हिचक नहीं है
1: जी,
0: और किसी भी गृहिणी को इस पर कम से कम रोष तो हो ही सकता है
1: जी जी जी,
0: लेकिन वो रोष भी व्यक्त नहीं कभी हुआ
1: जी।
0: आप देखते हैं जब, अब तो खैर परिस्थितियां ऐसी नहीं है
1: जी,
0: पहले जब परिस्थितियां सामान्य थी तब महीने में कम से कम 2-3 बार बाहर जाना भी पड़ता था
1: जी, जी, जी।
0: लेकिन उसके बावजूद, उन 2-3 बार बाहर जाने के बावजूद भी
1: जी,
0: कभी ऐसा नहीं लगा उनको कि दिक्कत कोई है। तो उस दृष्टि से मैं मानता हूँ कि ये निर्णय भी सही था
1: जी,
0: और इस जीवन यात्रा में एक सही साथी मिला,
1: एक मजबूत आधार स्तंभ आपकी इस पूरी यात्रा में।
0: बिल्कुल,
1: क्या बात है सर, बहुत खूब सर। लेकिन इंसान कभी कभी परेशान हो जाता है सर, अपने जो दिक्कतें आती हैं या प्रशासन से या समाज से जो कुछ सुनने को मिलता है समझने को मिलता है, तो उस समय आपके तनाव को किस प्रकार मैम ने कम करने में अपना योगदान दिया, मदद की आपकी, कोई ऐसी बात आपको जो बहुत ही प्रभावित कर गई हो कि हाँ यार ये तो मैं गलत ही सोच रहा था।
0: नहीं, मुझे देखो संदीप, ऐसा कोई वाकया एक्चुअली, मेरा काम करने की शैली, मेरे काम की शैली बहुत डिफरेंट है। मैं किसी चीज को तनाव में नहीं लेता।
1: क्या बात है, वाह बहुत खूब सर।
0: किसी भी चीज को तनाव के रूप में कभी नहीं लेता
1: जी जी जी।
0: और अगर कोई समस्या है तो समस्या को चुनौती के रूप में लेता हूँ, न कि तनाव, इसलिए ऐसी स्थिति आती नहीं
1: जी
0: जनरली
1: जी,
0: और इसलिए ऐसा कोई इंस्टांस याद नहीं आता जब ऐसी आवश्यकता मान पड़ी हो
1: जी जी। तो सर एक प्रश्न जो बहुत देर से मेरे मन में चल रहा है, मैं वो पूछना चाह रहा हूँ आपसे कि
0: बिल्कुल पूछिए।
1: आपने साथियों को रोजगार दिलवाने के लिए, उनको एकेडमिक क्वालिफिकेशंस में उनको मदद मिले इंस्टीट्यूशन से, और इसके अलावा भी वो उनका सामाजिक विकास हो, इसके लिए आपने पूरी जिंदगी लगा दी अपनी। लेकिन हर एक इंसान की सर एक आवश्यकता होती है, अपना परिवार बसाना, अपने जीवन साथी की तलाश करना, क्योंकि आजकल सर इतना आपने और संगठन ने काम कर दिया है कि जॉब में इतनी दिक्कत आजकल आती नहीं है, आती तो है फिर भी लेकिन इतनी नहीं आती है। लेकिन आपको नहीं लगता अभी कि सामाजिक सर्वांगीण विकास के लिए व्यक्ति के परिवार के साथ उसका सामंजस्य और समाज में, उसके लिए व्यक्ति को खुद क्या पहल करनी चाहिए, और आप अपने स्तर पर कहां देखते हैं कि कहीं कोई कमी रही है कैसे?
0: देखिए, जो सामाजिक विकास की प्रक्रिया है, और मैं अगर कहूं कि फुल इंटीग्रेशन की जो प्रक्रिया है
1: जी,
0: क्योंकि जो समस्याएं, जिस समस्या की ओर आप इशारा कर रहे हैं
1: जी जी जी,
0: उसका रूट कॉज, उसकी जड़ में क्या है, उसकी जड़ में एक्सक्लूजन, जो नकारात्मक दृष्टिकोण के कारण एक्सक्लूजन हुआ हमारा, एक विभाजक रेखा खिंची
1: जी
0: दान दाता
1: जी,
0: और दान लेने वाले के बीच।
1: बिल्कुल बिल्कुल,
0: समाज में ये एक विभाजक रेखा हमारे और समाज के वर्ग के बीच रही। तो अब आप उसको तोड़ने के लिए, उस विभाजक रेखा को मिटाने के लिए
1: जी,
0: हमारे संघर्ष का उद्देश्य क्या है? हमारे संघर्ष का उद्देश्य समानता की ओर आगे बढ़ना
1: जी।
0: हमारे संघर्ष का उद्देश्य अवसरों के माध्यम से, क्षमता प्रदर्शन के माध्यम से नकारात्मक दृष्टिकोण को परिवर्तित करना है
1: जी।
0: ये प्रोसेस बहुत लंबा है, बहुत लंबा है
1: जी जी जी जी जी।
0: ये प्रोसेस एक व्यक्ति या कुछ व्यक्तियों के जीवन काल का नहीं है
1: जी।
0: ये अनवरत चलने वाला प्रोसेस है।
1: बिल्कुल सर।
0: अगर हम तुलना करें कि जो लोग आज आत्मनिर्भर हो गए, क्योंकि मैं ये मानता हूँ
1: जी
0: कि किसी भी समानता के लिए सबसे पहले आर्थिक आत्मनिर्भरता आवश्यक है, उसके बिना समानता की बात बेमानी है, वो होगा नहीं।
1: बिल्कुल
0: आप बोलते रहिए
1: जी,
0: कॉन्स्टिट्यूशन में लिख दीजिए कोई फर्क नहीं पड़ता, कानून में लिख दीजिए कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अगर हम ऐसे लोगों की तुलना करें और आपस में तुलना करें जिनको रोजगार मिल गया, आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर हो गए
1: जी,
0: तो कुछ आपको ऐसे मिलेंगे जिन्होंने हो सकता है मुझसे भी ज्यादा अच्छा अपना समायोजन किया हो
1: जी,
0: सामाजिक रूप से, पारिवारिक रूप से
1: जी जी जी।
0: कुछ ऐसे भी मिलेंगे जिन्होंने उस अवसर का लाभ उठाया ही नहीं, कुछ ऐसे भी मिलेंगे आपको।
1: बिल्कुल निश्चित रूप से सर।
0: और वो क्यों मिलेंगे
1: जी,
0: और क्यों हो रहा है ऐसा
1: जी,
0: उनकी गलती नहीं, उनका जो पारिवारिक परिवेश है, उनका परिवार ही बहुत पीछे नीचे पायदान में खड़ा। तो ऐसे लोगों का ज्यादातर समय
1: जी,
0: क्योंकि ये बात भी सच है
1: जी
0: कि अगर दृष्टि बाधित व्यक्ति जब तक आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर नहीं होता तब तक परिवार उसको बोझ समझता है
1: जी,
0: और जिस दिन वो आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर हो जाता है उस दिन से वो अपना अधिकार समझता है
1: जी, जी,
0: उससे सहयोग
1: जी।
0: ये एक बहुत बड़ी डाइकोटमी है जो मैंने एक्सपीरियंस किया।
1: निश्चित रूप से
0: मैंने स्वयं देखा है अपने जीवन में
1: जी,
0: मैं दूर नहीं जाता
1: जी,
0: कि जो हमारे रिश्तेदार भाई जब हम दिल्ली आ गए पूरी तरह से सेटल नहीं हुए अपनी लाइफ में, तब तक वो हमारे फोन का भी शायद जवाब ना देते थे
1: जी,
0: लेकिन आज उनका खुद का फोन आता है। ये अंतर है।
1: बिल्कुल सर।
0: यही आर्थिक शक्ति है
1: जी।
0: तो वो जिन लोगों का समायोजन नहीं हो पाया अभी उस तरह से पारिवारिक जीवन में,
1: बिल्कुल,
0: या अच्छा समायोजन नहीं हो पाया
1: जी जी जी,
0: उसका कारण मैं ये समझता हूँ कि उनका अधिकतर शक्ति उनकी अपने माता पिता जो पहले ही गरीबी से जूझ रहे थे उनको संभालने में, उनको सपोर्ट देने में
1: जी जी,
0: जो अच्छी बात है। मैं तो कहता हूँ
1: जी
0: कि हम केवल अधिकारियों की बात ना करें, दायित्वों की बात करें।
1: बिल्कुल सर।
0: लेकिन साथ साथ
1: जी
0: ऐसे लोगों से के लिए मेरा संदेश यही रहेगा कि आप दायित्वों का निर्वहन करते हुए
1: जी
0: अपने परिवार अपने परिवेश को भी सुधारते रहें
1: जी जी जी जी जी जी,
0: उसमें भी अपना कुछ हिस्सा उसमें भी लगाएं, अपने एनर्जी का, संसाधनों का। ये कहने का अभिप्राय नहीं है कि माता पिता के प्रति अपने दायित्वों का निर्वहन ना करें
1: जी।
0: हाँ, ये जरूर कहूंगा
1: जी
0: कि भाई बहनों ने अगर आपका पहले ध्यान नहीं रखा तो उनके लिए जब तक आपका आर्थिक समायोजन नहीं हुआ था उनके लिए अपना जीवन व्यर्थ ना करें
1: जी।
0: उनको सहयोग, अपने संसाधनों का इस्तेमाल उनके लिए ना करें
1: जी।
0: ये तो मैं बिल्कुल बहुत दृढ़ता से कहना चाहूँ।
1: लेकिन चूंकि आर्थिक सशक्तिकरण हुआ है तो अब आपका ये जो मानना है बिल्कुल ठीक है सर, कि व्यक्ति को खुद इस पर, इसके लिए प्रयास करना,
0: खुद इस पर करना चाहिए
1: जी,
0: और खुद सही निर्णय लेने चाहिए।
1: और कहीं ना कहीं सर आप ये भी मानते हैं कि व्यक्ति चाहे तो अपने आप को इतना सशक्त वो बना सकता है जॉब लगने के बाद।
0: बिल्कुल बना सकता है, क्यों नहीं बना सकता
1: जी। मैम, हमारे सभी जो साथी हैं समाज के वो ये जानना जरूर चाहेंगे कि सर की आज उम्र के इस पड़ाव पर इतनी ऊर्जा का राज क्या है।
2: उनकी ऊर्जा का राज उनकी डिटर्मिनेशन है।
1: वाह मैम, कभी ऐसा होता है कि आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, आपको लगता है कि भाई इतना बड़ा देश है, इतने सारे संगठन है, इतने सारे लोग हैं, इंडिविजुअली भी काम कर रहे हैं, कभी आपने कहा हो सर को कि देखिए ये व्यक्ति अच्छा काम कर रहा है, मतलब इसने बहुत अच्छा किया है, कभी ऐसा हुआ मैम?
2: हाँ, अगर कोई काम अच्छा करता है तो मुझे भी खुशी होती है, ऐसा ही नहीं है। और मैं ये भी सोचती हूँ ठीक है, मिस्टर रूंगटा आज 67 इयर्स के हो गए, और कितना 10 साल और काम कर लेंगे मैक्सिमम, अगर ईश्वर ने इतनी लाइफ दी तो। ठीक है, 5-7 साल और काम कर लेंगे उसके बाद। मैं इनको बार बार कहती हूँ कि आपको एक एक टीम तैयार करनी चाहिए जो कि आपको टेक ओवर करे और इस इंस्टीट्यूशन को ऐसे ही चलाए जैसे कि आज चल रहा है। उसी इसकी मुझे बहुत चिंता होती है क्योंकि बिकॉज मैंने इसको एक छोटा सा बीज बोया था, उसके बाद एक छोटा पौधा देखा था और पौधे बढ़ते बढ़ते एक वटवृक्ष की तरह से मैं इसको देखती हूँ जो कि अपनी बाहें फैला करके सबको छाया दे रहा है। लेकिन ये ऐसे ही चलना चाहिए, इसकी जड़े कमजोर नहीं होनी चाहिए। इसको मतलब एनएफबी को थोड़ी सी भी अगर सोच लीजिए सशक्तिकरण नहीं होता, मतलब थोड़ा सा भी अगर इसकी कोई चीज कमजोर हो जाती है या वो काम नहीं कर पाती किसी कारण से तो उसका मुझे बहुत दुख होता है,
1: निश्चित रूप।
2: लेकिन हाँ यस, और होगा तो इसलिए मैं चाहती क्योंकि एक अच्छी टीम बनाएं जो कि आगे लोग आए अच्छे और जो है टेक ओवर करके आगे इसी तरह से काम करते रहे।
1: क्या बात है,
2: जैसे मिस्टर रूंगटा ने किया।
1: बहुत बहुत खूब। लेकिन मैम सच्चाई ये है कि हालांकि आप जो कह रहे हैं वो भी सच्चाई है, लेकिन सच्चाई है कि सर के कामों के आगे, सर की ऊर्जा के आगे 25-30 साल के युवा भी जलन महसूस करते हैं। ये बात भी सच है मैम, उतनी जी मैम।
2: लेकिन फिर भी ऐसा नहीं है कि जिन लोगों में ऊर्जा है वो लोग अगर आगे आके काम करेंगे तो उनमें भी डबल ऊर्जा जरूर उनको मतलब मिलेगी और वो जरूर निश्चित रूप से जो है अपनी जो भी काम करना चाहते हैं उसको मतलब रिजल्ट्स उनको जरूर मिलेगी।
1: क्या बात सर, बहुत इम्पोर्टेंट बात की और इशारा किया सर ने, और कहीं ना कहीं ये बात मेरे भी जहन में चल रही थी। आप कितने संतुष्ट हैं जो नई पीढ़ी तैयार हो रही है, आपके पीछे जो युवा शक्ति अभी लगी हुई है वर्तमान में, और खासकर संगठन के भविष्य को लेकर के आप आशान्वित हैं या फिर अभी भी आपको लग रहा है कि नहीं टीम तैयार करने में थोड़ा सा वक्त अभी और लगेगा?
0: देखो, टीम तैयार करना एक सतत प्रक्रिया है। मैं ये कह सकता हूँ कि ये प्रक्रिया ठीक तरीके से चल रही है।
1: बहुत खूब
0: जी। और मैं ये भी कह सकता हूँ कि जो जनतांत्रिक प्रणाली में
1: जी
0: जिसको मैंने संजोया है
1: जी जी जी,
0: बड़े तूफान आए इस जनतांत्रिक प्रणाली को, चुनौतियां दी, संगठन और संगठन के अस्तित्व पर कई बार प्रश्न चिन्ह लगाने का प्रयास भी हुआ
1: जी जी जी।
0: लेकिन मुझे लगता है कि ये जो टीम बनाने का जो प्रयास था और है
1: जी,
0: उसी टीम ने
1: जी
0: इस झंझावात को मेरे साथ मिलकर खड़े होकर सहा है
1: जी जी जी,
0: और उसको झंझावात को नेस्त नाबूद किया है
1: जी जी।
0: वही इस बात का प्रतीक है कि प्रक्रिया सही दिशा में
1: जी
0: चल रही है
1: जी।
0: अब आप देखिए, मेरा जो प्रयास है
1: जी
0: वो नेशनल स्तर से लेकर
1: जी
0: राज्यों के स्तर तक,
1: बिल्कुल सर,
0: युवाओं को अधिक से अधिक भागीदारी देना है,
1: बिल्कुल सर,
0: महिलाओं को अधिक से अधिक भागीदारी देना है,
1: बिल्कुल सर,
0: क्योंकि मैं ये मानता हूँ
1: जी
0: कि जो युवा और महिला अगर मिलकर
1: जी
0: संगठन को चलाएंगे
1: जी
0: तो निश्चित रूप से आज नहीं तो कल नहीं तो परसों वही मजबूती मिलेगी जो मजबूती आज है, और हो सकता है इससे ज्यादा मिले और सस्टेनेबिलिटी और ज्यादा हो
1: जी।
0: क्योंकि मेरा जो इस समय प्रयास चल रहा है वो हर स्तर पर
1: जी
0: एक कलेक्टिव लीडरशिप का प्रयास चल रहा है
1: जी जी,
0: एक कार्य विभाजन कर हरेक को अपनी जिम्मेदारी देकर बिना हस्तक्षेप किए उस जिम्मेदारी का निर्वहन करने का अवसर देकर
1: जी
0: अभी अपनी देखरेख में उनमें एक कॉन्फिडेंस पैदा करने का प्रयास चल रहा है। जैसा आपने देखा
1: जी,
0: आप तो काफी निकटता से जुड़े हुए हैं
1: सेंटर से जी जी जी।
0: अब राजस्थान के स्तर पे आप देखिए जैसे, या इसी तरह कोई भी राज्य।
1: मेरा प्रश्न था सर आगे वो भी कि केंद्र में आपके नेतृत्व में इतना सुदृढ़ तरीके से काम हो रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं आज के एक विद्यार्थी को, एक युवा को जो नया नया संगठन से जुड़ा है और वो किसी राज्य के दूर दराज के किसी कोने में है, कहीं उसके मन में शायद ये आता होगा सर कि राज्य की शाखाओं में उतना प्रबल, उतना सशक्त तरीके से काम शायद नहीं हो रहा जितना आपने
0: उम्मीद की है।
1: जी
0: आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन उसका कारण अगर हम ढूंढे
1: जी
0: तो कारण कहीं ना कहीं ये है कि जो केंद्रीय स्तर पर युवा भागीदारी बढ़ाई गई वो अभी राज्यों के स्तर पर परकुलेट नहीं हुई, और राज्यों के स्तर पर अभी हमारे कार्यकारिणी के पदाधिकारियों ने और जिम्मेदार पदाधिकारियों ने विशेष रूप से
1: जी
0: युवाओं को वो फ्रीडम नहीं दी है,
1: बिल्कुल सर,
0: और मेरा प्रयास यही है
1: जी
0: कि वो फ्रीडम मिले
1: वही सर जी,
0: और वो फ्रीडम मिलकर उनको गलती करने दीजिए आप
1: जी जी जी जी जी
0: गलती करने दीजिए, हम बैठे हैं
1: बिल्कुल
0: गलती को ठीक करने के लिए
1: जी
0: हम बैठे हैं,
1: मॉनिटरिंग पूरी रखनी है, उन्हें अवसर भी पूरा देना है,
0: अवसर पूरा देना है
1: जी,
0: इंटरफेयर नहीं, हर दो मिनट में ये नहीं पूछना है
1: जी
0: कि तुम्हारा, अगर आपको जिम्मेदारी दे दी एक हॉस्टल चलाने की
1: जी,
0: तो मैं नहीं पूछूंगा कि भाई कैसे चल रहा है, क्यों नहीं चल रहा है। मेरे पास कोई बात आएगी तब पूछूंगा कि ये क्या हुआ कि नहीं हुआ, क्या दिक्कत आ रही है वगैरह।
1: वही बातें हैं सर, दरअसल ये एक किसी भी
0: हमको जब तक हम वो नहीं देंगे लिबर्टी
1: जी जी।
0: अब मैंने तो अपने स्तर पर अब राष्ट्रीय कार्यालय ने तो लिबर्टी दे रखी है राज्यों को
1: जी।
0: अब जैसे आपके यहाँ हॉस्टल की स्कीम है
1: जी,
0: हमने तो लिबर्टी दे रखी है
1: जी।
0: अब वो ठीक से चलाना न चलाना
1: जी
0: वो राज्य के पदाधिकारियों का काम है, ठीक है
1: जी जी जी।
0: और इस दिशा में हमको ये चाहिए और ये हमको कुछ आमूलचूल परिवर्तन करने होंगे। लेकिन आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, राज्यों के स्तर पर ये प्रक्रिया अभी प्रारंभ नहीं हुई है
1: जी जी।
0: सफल की तो बात दूर है,
1: दूर है बिल्कुल सर,
0: इसको प्रारंभ करना होगा
1: निश्चित रूप से सर, क्योंकि चाहे राज्य हो चाहे केंद्र हो, हर एक दृष्टिबाधित व्यक्ति अपने संगठन के प्रति एक आशा की किरण से देखता है ना सर।
0: निश्चित रूप से आज महामारी में देखिए
1: जी,
0: कोई और संगठन दिख रहा है? अगर महाराष्ट्र के दूर के इलाके से भी मैसेज आता है तो यहीं से आता है, एनएफबी इंडिया पे फॉरवर्ड होके आता है
1: जी।
0: वो निवेदन करता है किसी ना किसी से कि इसको फॉरवर्ड कर दो, सर तक पहुंचा दो
1: जी,
0: कि मैं इस परेशानी में हूँ। तो ये सब मैसेजेस आपको बता रहे हैं, हम सबको बता रहे हैं
1: जी
0: कि आपका दायित्व कितना बड़ा है
1: जी,
0: और आपसे कितनी संवेदना की अपेक्षा है
1: जी। इसमें वही बात जुड़ जाती है सर कि जैसे अब जयपुर में भी बात करनी है अगर एग्जेम्पशन को लेके तो आप कर रहे हैं, या पंजाब में भी करनी है तो आप कर रहे हैं।
0: आपने देखा पिछले दिनों लगातार
1: जी,
0: मैं अपने मैसेज में कहता भी रहा हूं अप्रत्यक्ष रूप से
1: जी जी जी,
0: कि थोड़ा आप लोग सहयोग करेंगे तो लोकल,
1: जबकि स्टेट लीडरशिप की तरफ से ये मतलब काम हो जाने चाहिए, आप तक तो इन्फॉर्मेशन आ जानी चाहिए कि सर हो गया
0: वही, लेकिन अबे उल्टी गंगा बह रही है, हमें बताना पड़ता है कि अब इस राज्य में आ गया, ये डाल दिया मैंने, ये कर दिया, वो कर दिया।
1: वही सर, वही वही वही सर,
0: तो एक्टिव तो होना पड़ेगा, देखिए
1: होना पड़ेगा निश्चित रूप से सर,
0: और उसमें कहीं ना कहीं हमारे सदस्यों को भी जागरूक होना। देखिए जहाँ जनतांत्रिक व्यवस्था है
1: जी,
0: तो सदस्यों को थोड़ा मित्रता, अपना पराया ये भूल कर
1: जी
0: निर्णय लेने होंगे अपने कार्यकारिणी के गठन के समय
1: जी। हाँ जी हाँ,
0: संगठन के हित में
1: जी
0: डिस्पैशनेटली निर्णय लेने होंगे
1: जी।
0: मान लीजिए मैं ही काम ना करूं,
1: बिल्कुल सर,
0: फिर भी आप अपना समझ के हमको वोट दें तो आप गलत कर रहे हैं, संगठन के प्रति गलत।
1: जी जी जी जी जी, ठीक कह रहे हैं सर। मैम
2: यस,
1: हमारा कार्यक्रम वैसे वैवाहिक जीवन की चुनौतियों और उसको लेकर के होता है, लेकिन श्रोता सोच रहे होंगे ये संगठनात्मक, लेकिन श्रोताओं ये संगठन भी एक परिवार है और संगठन के मुखिया भी संगठन के साथियों के लिए हमराही की तरह ही होते हैं, इसीलिए ये सब चर्चाएं, और सर का कार्यक्षेत्र इतना बड़ा है कि ये सब चर्चाएं करना बहुत जरूरी है। मैम कभी ऐसा कुछ हुआ हो कि आपने किसी कार्य के लिए सर को रोका हो और बाद में आपका कहना ही सही निकला हो, ऐसा कभी हुआ है?
2: मुझे ऐसा कुछ याद तो नहीं आ रहा कि मैंने कभी किसी काम के लिए रोका हो
1: जी। एक मैम मतलब महिलाओं के लिए ये बड़ी एक बात होती है कि लुक्स को लेकर के वो बहुत ज्यादा कंसर्न होती हैं। आपने भी तो कई बार सर को रोका टोका होगा इन मामलों में, या कभी ऐसी जरूरत ही नहीं पड़ी?
2: नहीं, जो भी देखिए वो अपने अपनी चॉइस से तो कपड़े लाते नहीं है, मैं अपनी चॉइस से ही कपड़े लाती हूँ तो जब भी पहनाती हूँ तो अच्छे ही लगते हैं हमेशा।
1: नहीं कभी ऐसा हुआ कि आपने कहा और सर ने मना कर दिया, नहीं नहीं यार रहने दो ये?
2: नहीं नहीं ऐसा कभी नहीं, क्योंकि वो तो कहते हैं जो तुम पहना रही हो तो अच्छा ही पहना रही होगी और दूसरे लोग भी अप्रिशिएट करते हैं, ऐसा नहीं है।
1: सर कुछ कहना चाह रहे थे शायद?
0: नहीं नहीं, मैं कह रहा हूँ ये अब आपको समझ आ गई ना, सामंजस्य की बात।
1: सामंजस्य की बात, बिल्कुल बिल्कुल। बड़ा सर जबरदस्त आज का कार्यक्रम रहा, और बात करते करते वक्त कब निकल गया पता ही नहीं चला, लेकिन सर बातें बहुत है अभी भी, जो काम किया है संगठन की तरफ से आपने, पूरे संगठन ने, संगठन के प्रत्येक व्यक्ति ने वो भी, और समस्याओं पर भी, प्रशासन के रवैये पर भी, तो लगता है कि एक कार्यक्रम और होना चाहिए आपके साथ, अगला भाग भी इसका होना चाहिए अगर आप अनुमति देते हैं तो। तो रेडियो मधुबन और हमारे पूरे दृष्टिबाधित समाज की ओर से इन पंक्तियों के साथ कि जैसा कि आपका जीवन रहा है, अभी तक का जो कार्यक्षेत्र रहा है, कि नेक ने तो नेक समझा, बद ने बद जाना मुझे, अपने अपने आईने में सबने पहचाना मुझे, आपको सर जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं पूरे समाज की ओर से, हमारे परिवार की ओर से, और मैम आप भी अगर इस मंच पर सर को अपनी ओर से जन्मदिन विश करें तो बड़ा अच्छा लगेगा मैम।
2: मुझे तो अभी तक इससे पहले बड़ी शिकायत रहती थी कि आप लोगों के साथ ही जन्मदिन मना रहे थे, नहीं तो कभी कभी कानपुर में तो कभी कहीं कभी कहीं डिफरेंट स्टेट्स में ही जन्मदिन मनाया जा रहा था पिछले कई सालों से। तो
1: बिल्कुल निश्चित रूप से पिछले लगभग 10-12 सालों से ऐसा ही हो रहा था। जी बिल्कुल, आप अपने तरीके से विश कीजिए मैम सर को। कुछ आप ऐसी बात जो शायद कहना चाहते हो जो आप?
2: मैं तो यही चाहूंगी कि ईश्वर इनको बहुत लंबी उम्र दे और इतना स्टैमिना दे, हमेशा स्टैमिना रहे कि संघ के लिए हमेशा काम करते रहे अंतिम सांस तक। मैं यही चाहूंगी, यही विश करती हूँ।
1: वाह मैम, और आज इस मौके पर मैम जो महिलाएं आपको सुन रही हैं और खासकर दिव्यांग साथियों से जुड़ी हुई हैं और परिवार में कुछ किसी वजह से गड़बड़ चलती है कि भाई ये मत कीजिए वो मत कीजिए, क्या सलाह देंगी, क्या संदेश देना चाहेंगे आप?
2: मत कीजिए तो कभी नहीं कहती, मत खाइए जरूर कहती हूँ।
1: नहीं, जो आपको सुन रहे हैं उन्हें क्या संदेश देंगे मैम?
2: अपनी प्यारी बहनों और बच्चियों के लिए तो मेरा यही संदेश है कि भाई ठीक है, घर में जो है मतलब जो हमें परिवार जो चलाना होता है ना, उसकी सारी जिम्मेदारी जो है एक नारी की होती है। मेल्स को थोड़ा फ्री रखना चाहिए जिससे कि वो भी वो जो है जो वो चाहते हैं वो करें और घर की हमें जिम्मेदारी पूरी लेकर चलनी चाहिए।
1: बहुत गुड। और सर आप अपने सभी साथियों को आज इस मंच पर आपके इस जन्मदिन की पूर्व संध्या पर एक तरह से क्या संदेश देना चाहेंगे?
0: मैं तो यही संदेश देना चाहूंगा कि हम सब अपने अंदर छिपी हुई क्षमताओं को पहचानें
1: जी,
0: और जो हमको समाज में अवसर मिले हैं
1: जी,
0: उन अवसरों का लाभ उठाते हुए
1: जी,
0: परिवार और समाज के प्रति अपने दायित्वों का
1: जी,
0: उसी तरह से समानता से निर्वहन करें जिस तरह से समानता के अधिकार की रक्षा की अपेक्षा हम रखते हैं।
1: जी जी।
0: और मैं ये भी कहना चाहूंगा सभी साथियों को
1: जी,
0: जो लोग सुन रहे हैं
1: जी,
0: कि आप भी निरंतर मेरे साथ साथ हर साल
1: जी
0: अपना जन्मदिन खुशियों और किसी नए निश्चय के साथ
1: जी,
0: हमेशा खुशी से मनाएं परिवार के साथ और समाज के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।
1: जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो श्रोताओं, आज का ये प्रोग्राम सर के साथ कैसा लगा आप अपनी प्रतिक्रियाएं जरूर दीजिएगा और रेडियो मधुबन सुनते रहिएगा। कॉल करें 94-14-15-14-15 पर।
3: तो श्रोताओं, आप सब तो जानते ही हैं, हमराही कार्यक्रम रिकॉर्डिंग क्लब और रेडियो मधुबन के साझा प्रयासों से आप सब तक पहुँचाया जाता है। आज का यह कार्यक्रम अगर आपको पसंद आया हो, आप इसका अगला भाग भी सुनना चाहते हो, तो फिर मैसेजेस जरूर कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा। आपके मैसेजेस और कमेंट्स का हमें इंतजार रहेगा, आपके कॉल्स का हमें इंतजार रहेगा। तो चलिए श्रोताओं, आज का कार्यक्रम अब यहीं पर समाप्त करने की इजाजत दीजिए। रेडियो मधुबन का ऐप आप इंस्टॉल कर लीजिए, एंड्रॉइड प्ले स्टोर पर जाकर के, रेडियो मधुबन के ही नाम से है। अगर आप ईमेल करना चाहें तो info@radiomadhuban.in, और कॉल के लिए तो नंबर मैं दे ही चुका हूं, एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं, 94-14-15-14-15 पर। नमस्कार।

नमस्ते मित्रों, मैं हूं कवयित्री डॉक्टर कविता किरण और आप सुन रहे हैं ब्रह्मा कुमारीज का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन 107.8 FM। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

ओम शांति, मैं हूं ब्रह्मा कुमारी प्रेमलता और आप सुन रहे हैं ब्रह्मा कुमारीज का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन 107.8 FM। सुनते रहो मुस्कुराते।

0: बहुत बहुत
1: इज
0: स्वागत
1: फ्रॉम
0: है आप।
1: अहमदाबाद रमेश भाई जी।
0: अच्छा
1: यस
0: बहुत बहुत
1: अहमदाबाद से
0: स्वागत
1: हूँ।
0: है आपका। और प्रीति
1: प्रीति जी
0: सक्सेना जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और अच्छा गाते हैं आप, तो अच्छा लग रहा है हमें आपको यहाँ देखकर। और हमारे दूसरे मित्र तो भी थोड़ी थोड़ी देर में जुड़ेंगे, कविता जी भी हमारे साथ जुड़े हैं, आप भी मुंबई से हैं। बहुत ही अच्छा लगा आप आए हमारे साथ। आइए अब हम लोग कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं, और आप सभी के स्वागत में ये चंद तालियां। और मैं चाहूंगा कि आज के इस प्रोग्राम में हमारा एक जो है स्प्रेडिंग हैप्पीनेस, कि गाना किस लिए गाते हैं, एक तो खुद को खुश करने के लिए, खुद को एक अच्छा फील कराने के लिए, और दूसरे सुनकर खुश होते हैं आपको सुनने के बाद। तो ये एक सिंपल तरीका है कि किसी को खुशी देना है तो बस दो लाइन गुनगुनाइए प्यार से उसके लिए, तो आपका भी खुशी बढ़ेगा, सामने वाला का भी खुशी मिलेगा। तो ये इसलिए हमने एक टॉपिक ही रखा कि स्प्रेडिंग हैप्पीनेस। तो स्प्रेडिंग हैप्पीनेस के लिए आप क्या बताएंगे, खुशी कैसे हम लोग फैला सकते हैं परिवार में, समाज में, अपने ऑफिस में, अपने दोस्तों के साथ में, कैसे हम लोग खुशी बांट सकते हैं, ये आप अपना जो है थोड़ा सा विचार हमारे साथ शेयर करेंगे और अपना एक प्रेजेंटेशन देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। प्रीति जी आपसे शुरू करते हैं क्योंकि आपका इंटरनेट का कुछ भरोसा नहीं, कभी गायब हो जाए तो आप पहला प्रेजेंटेशन भी दे और बताए भी जी प्रीति
1: हेलो
0: जी स्वागत है। हाँ जी नमस्ते।
1: नमस्ते जी सर। हम माइक यूज कर सकते हैं?
0: माइक यूज कीजिए, अभी वॉइस क्लियर आ रहा है आपका, कुछ यूज करने की जरूरत नहीं है।
1: अच्छा ठीक जी। जी मेरा पहला सॉन्ग है हमें और जीने की चाहत ना होती, लता मंगेशकर जी का गाया हुआ है।

सुंदर होते

0: थैंक
1: बहुत बढ़िया प्रीति जी, बहुत ही अच्छा
0: यू
1: आपने प्रेजेंटेशन किया, और अनुपमा
0: जी,
1: जी ने भी आपको याद किया है, वाह सिंगिंग वेरी ब्यूटीफुल, कीप इट अप प्रीति जी। अच्छा प्रीति जी, खुशी बांटने के लिए आप क्या सोचते हैं, क्या तरीका है? एक तो गाने का है और इसके अलावा आप क्या सोचते हैं?
0: जी, खुशी बांटने के लिए हमको एक दूसरे से बातें करनी चाहिए, मन की बातें शेयर करना चाहिए, दूसरों की भी मन की बातें सुननी चाहिए, एक दूसरे से हंस मिलकर रहना चाहिए। मेरे लिए खुशी यही है, बस मिलो, हंसो, मुस्कुराओ, सबके साथ मिलो जुलो। जी
1: चलिए प्रीति जी, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया आपका, बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कि हम एक दूसरे के साथ खुशी से मिलें और एक दूसरे के साथ प्यार बांटें और गिला शिकवा कुछ भी ना हो, ये आपने बताया, ये एक अच्छा तरीका है कि हम लोग खुशनुमा माहौल बना के रखें और खुशी सबको शेयर करें। आइए इसके साथ मैं एक और आर्टिस्ट के साथ आपको जोड़ना चाहूंगा। जी शिवानी शर्मा, बहुत बहुत स्वागत है आपका, कैसे हैं आप?
0: बिल्कुल
1: आपकी
0: बहुत अच्छे।
1: आवाज नहीं आ रही। हाँ जी, हाँ जी,
0: आवाज आ
1: नमस्ते।
0: रही है
1: हाँ
0: आपको?
1: अभी अभी आई है जी, बताइए अपने बारे में थोड़ा सा हमें।
0: जी, मैं अहमदाबाद में रहती हूँ और
1: हाँ
0: गाने का बहुत शौक है, पर अभी फिलहाल बच्चे बहुत छोटे हैं तो इतना समय नहीं मिलता है, पर जब भी मौका मिलता है तो गाने की पूरी कोशिश करती हूँ और
1: जी
0: बहुत
1: जी
0: पसंद है मुझे गाना बेसिकली।
1: बिल्कुल बिल्कुल। चलिए अभी आप जो है, हम जैसे कि हमारा विषय ही है स्प्रेडिंग हैप्पीनेस, खुशियां बांटो,
0: जी
1: तो खुशी को कैसे हम लोग स्प्रेड कर सकते हैं, आपका क्या तरीका है, आप क्या सोचते हैं इसके बारे में बताइए।
0: मुझे ऐसा लगता है कि खुशी हमें उन चीजों में मिलती है जिन चीजों को करके हम खुश होते हैं। तो हम ये जानते हैं कि जिन लोगों से हम मिलते हैं उन्हें क्या पसंद है, तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि उसी तरीके से हम उनको खुशी दे। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं जानती हूँ कि मैं जिनसे मिल रही हूँ उनको गाना पसंद है, तो मैं उनको प्रोत्साहित करूँ गाने के लिए। अगर वो घूमना पसंद करते हैं तो मैं उनके साथ में घूमने की कोशिश करूँ। तो बेसिकली जो पसंद है दूसरों को, उस तरीके से ही आप उनको खुशी दे सकते हैं। आप अपनी चीज को उन पर थोप कर कभी भी खुशी नहीं दे सकते। तो वही कोशिश करनी चाहिए कि जो सबको पसंद हो उसी में खुश रहें और खुश रहने की कोशिश करें।
1: चलिए शिवानी शर्मा, बहुत अच्छी बात आपने बताया, धन्यवाद। आइए आप एक छोटा सा प्रेजेंटेशन, बढ़िया आप अपना पसंदीदा गीत सुनाइए हमें।
0: जी बिल्कुल। आज जो मैं ये सॉन्ग गा रही हूँ, ये जावेद अली जी ने गाया है, तो मैं इसकी शुरुआत करती हूँ। तू
1: जी
0: ही मेरी है सारी जमीन, चाहे कहीं से चलूं

0: तुम्हें नहीं पाया हे खुदा।
1: जी बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, थैंक यू सो मच शिवानी जी, बहुत ही प्यारा सा जो गीत है आपने सुनाया, बहुत बहुत शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं करते हैं आपके लिए। आइए आगे बढ़ते हैं और हमारे साथ विशेष और मेहमान भी जुड़े हुए हैं। जी पंकज जी कैसे हैं आप?
2: अच्छे
1: जी, बताइए अपने बारे में थोड़ा सा हमें।
2: हेलो,
1: हाँ जी, हाँ जी,
2: मैं पंकज पंचाल बोल रहा हूँ। अहमदाबाद।
1: अच्छा अच्छा, और बताइए खुशी बांटने के लिए आप क्या करते हैं या खुश रहने के लिए आप क्या करते हैं?
2: ये संगीत सुनता हूँ और संगीत गाना गाता हूँ। हेलो
1: जी जी जी तो एक सुनाइए गीत बढ़िया सा आप। जी
2: ओके

0: ओके
1: हाँ जी, हाँ जी,
2: पंकज जी, ये म्यूजिक के साथ मिल जाना है
1: ठीक है,
2: पंकज
1: चलेगा
2: जी
1: उनका
2: को।
1: भी।

दूर जब निंदन जाए, सांझ की दुल्हन

0: पंकज जी बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छा गीत आपने सुना, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया आपका। आइए अब आगे बढ़ते हैं और हम लोग विशेष कविता जी को सुनना चाहेंगे। कविता जी बहुत बहुत स्वागत है आपका।
1: हेलो
0: जी, नमस्ते।
1: ओके ओरी मनवा।

बावरे क्यों दिखाई सपने तू सोते जागते, जुबर से सपने बूंद बूंदे नैनों को मूंद मूंद, नैनों को मूंद मूंद जुबर से

हंसते, गूंजा सा है कोई एक तारा, एक तारा गूंजा सा है कोई एक तारा, गूंजा सा है कोई एक तारा, एक तारा गूंजा सा है कोई एक तारा, धीमे बोले कोई एक तारा, एक तारा धीमे बोले कोई एक तारा, गूंजा सा है कोई एक तारा, गूंजा सा है कोई एक तारा। सुन रही हो सुध बुध खोके कोई मैं कहानी, पूरी कहानी है क्या किसे है पता, मैं तो किसी की होके ये भी न जानी, रुत है ये दो पल की या रहेगी सदा, किसे है पता, किसे है पता, किसे है पता, जो बरसे सपने बूंद बूंद, नैनों को मूंद मूंद, नैनों को मूंद मूंद, जो बरसे सपने बूंद बूंद, नैनों को मूंद मूंद, कैसे मैं चलूं देख ना सकूं अनजाने रास्ते, गूंजा सा है कोई एक तारा गूंजा सा है कोई एक तारा, गूंजा सा है कोई एक तारा गूंजा सा है कोई एक तारा, धीमे बोले कोई एक तारा, धीमे बोले कोई एक तारा,

0: बहुत बढ़िया कविता जी। मैं चाहूंगा कि आप, जैसे कि बहुत ही प्यारा संगीत सुना है, हम सभी को खुशी मिली, और खुशी बांटने का या खुश रहने का और क्या तरीका आप अपनाते हैं या बताना चाहेंगे?
1: मेरा अपना बेस्ट एसेट इज माय म्यूजिक। जितना हो सके मैं म्यूजिक के थ्रू आई ट्राई एंड इंस्पायर पीपल। तो जब भी मैं कोई गाना सीखती हूँ या कोई नया इंस्ट्रूमेंट सीखती हूँ, इमीडिएटली आई मेक श्योर दैट आई यूज द सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जहाँ पे मैं उसको अपलोड कर देती हूँ। ऐसे कर करके आई हैव बीन एबल टू एटलीस्ट काफी सारे कलीग्स मेरे, काफी सारे फ्रेंड्स मेरे मुझे देख करके प्रोत्साहित हुए, जो एकदम शेल के अंदर थे, वो लोग काफी डरते थे कि नहीं कर पाएंगे, एंड वो लोग भी इस लीग में आए हैं। तो मुझे वो एक बड़ा इंस्पिरेशन लगता है कि इफ आई कैन बी अ चैनल किसी को हेल्प करने में, उनके टैलेंट्स बाहर शोकेस करने में, तो जितना हो सके आई ट्राई एंड डू दैट। इफ आई एम लर्निंग समथिंग न्यू, इफ आई एम गोइंग टू अ न्यू प्लेस, मीटिंग सम न्यू पीपल, मैं जितना हो सके उसको शोकेस करती हूँ, एंड आई ट्राई टू मेक श्योर कि बाकी लोग भी इसको अपनाएं।
0: ओके ओके, ठीक ठीक ठीक, ऑप्शन। कविता जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, मंगल कामनाएं। आप जिस तरह से खुश रहने के लिए म्यूजिक सबसे पहला आपका पैशन है, और इसके माध्यम से आप लोगों को फिर अपलोड करके जो गीत आप सुनाते हैं तो उनसे दूसरे लोगों को भी मोटिवेशन मिलता है, खुशी मिलती है। बहुत बहुत शुभकामनाएं, धन्यवाद। आइए मैं अभी एक और हमारे मेहमान से मुलाकात कराना चाहूंगा, हेमंत बोरकर जी पूना से। हेमंत जी स्वागत है आपका, नमस्ते, कैसे हैं आप? आपका म्यूट है, एक मिनट में ऑन कर देता हूँ।
2: ये मेरा फर्स्ट टाइम है जी, मैं हुआ हूँ आप लोगों को, और मुझे भी गाना सुनना और गुनगुनाना अच्छा लगता है। और
0: अच्छा,
2: अभी रिसेंटली हमारा एक हास्य क्लब मैंने ज्वाइन किया है, जिसमें एक दो गीत मैंने प्रस्तुत किए, तो उन्होंने सराहे और उन्होंने कहा कि आप भक्ति गीत भी सीखिए, क्योंकि मेरा हिंदी बैकग्राउंड रहा है तो थोड़ा सीखने की, पर हिंदी सॉन्ग मैं गा सकता हूँ। तो आज मैं जो गीत आपको सुनाऊंगा वो 1964 का फिल्म है तीसरी कसम,
0: जी जी सुनाइए।
2: का गीत है, मुकेश जी ने गाया, तो मैं गा रहा हूँ।
0: हाँ जी।

ना है सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है। न हाथी है न घोड़ा है, वहां पैदल ही जाना है सजन।

भला होगा, बुरा कीजिए बुरा होगा, भला कीजिए भला होगा, बुरा कीजिए बुरा होगा, वही लिख लिख के क्या होगा, वही लिख लिख के क्या होगा, यही सब कुछ चुकाना है सजन रे, झूठ मत बोलो,

लड़कपन खेल में खोया, जवानी नींद भर सोया। लड़कपन खेल में खोया, जवानी नींद भर सोया, बुढ़ापा देख कर रोया, बुढ़ापा देख कर रोया, वही किस्सा पुराना है सजन।

0: सजन रे झूठ बंधु खुदा के पास जाना है।
1: बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बढ़िया। हेमंत जी, मैं चाहूंगा कि आप अपने खुशी के बारे में बताइए। आप खुशी स्प्रेड करने के लिए क्या करते हैं? एक तो गीत गाते हैं, गुनगुनाते हैं, लेकिन
0: सबसे पहले
1: उसके
0: मेरा
1: अलावा
0: प्रयास ये रहता है जी, मेरा सबसे पहले मेरा प्रयास रहता है कि मैं स्वयं खुश रहूं। मैं किसी से मिलूं तो हमेशा खुश मिजाजी से मिलूं, ताकि जब मैं ही खुश रहूंगा तो मेरे सामने वाले जो मुझे एक्सेप्ट करेंगे वो भी खुशी से करेंगे। तो ये स्प्रेड होगा इस तरीके से कि आप खुद स्वयं में खुश रहे, स्वयं में खुश रहें तो आपसे जो भी लोग जुड़ेंगे वो भी खुश रहेंगे, और इसी तरह एक बड़ा सा एक समाज तैयार हो जाएगा जो प्रसन्नता में रहता है, प्रेजेंट में रहता है। यही चाहूंगा।
1: चलिए। हेमंत जी, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया आपका। बहुत ही अच्छा लगा आपसे बातें करके, और आपने बहुत ही अच्छा गीत सुना। आइए, इसके साथ मैं आपको जोड़ना चाहूंगा अभी डॉक्टर संगीत सूर्यवंशी रघुवंशी जी से। डॉक्टर संगीत रघुवंशी जी, बहुत बहुत स्वागत है, नमस्ते, कैसे हैं
0: तो बढ़िया, सुकृपा
1: आप?
0: भगवान
1: जी, आप खुश रहने के लिए या खुशी बांटने के लिए क्या करते हैं?
0: की। अभी जो हेमंत जी ने बोला, मैं उससे उनसे बहुत पूरी तरह से सहमत हूं। पहले हमें खुद प्रसन्न रहना पड़ता है, पहले खुद को अपने को खुश रखेंगे तभी हम आगे खुशी बांट सकते हैं।
1: जी,
0: और के लिए क्या है करना चाहिए कि आपके अंदर अच्छे थॉट्स, अपने अंदर अच्छे थॉट्स पैदा करें, आप अच्छी वाइब्रेशंस लोगों को दें। और जो भी हमारे थॉट्स होते हैं, बेसिकली जितने भी थॉट्स हैं वो भी थॉट्स आर एनर्जी, जिनकी अपनी सर्टेन वेवलेंथ्स होती हैं और एक सर्टेन फ्रिक्वेंसीज होती हैं। और ये जो थॉट्स हैं, ये वेव्स हैं, ये ट्रेवल करती हैं, प्रोपोगेट करती हैं, और जिसके लिए आप अच्छे थॉट्स दे रहे हैं ये प्रोपोगेट करके अल्टीमेटली उसके पास पहुंच जाते हैं। जितने अच्छे
1: बहुत
0: थॉट्स होंगे उतनी वाइब्रेशन ज्यादा होंगी, उतनी फ्रीक्वेंसी हायर फ्रीक्वेंसी होंगी सारे के सारे। तो यही है कि पहले खुद को ठीक रखें, और दूसरी चीज और है, आदमी खुश तभी रह सकता है जब एक लोभ हट जाएगा, वरना कोई लिमिट नहीं किसी चीज की। अपने को शांत रखें और अपनी आप खुशी डेवलप हो जाती है उसी से, तभी हम उसको बांट सकते
1: बिल्कुल,
0: हैं।
1: चलिए, बहुत ही अच्छी बात आपने बताया। और आइए आगे बढ़ते हैं, और मैं चाहूंगा कि एक आध गीत जो बहुत ही आपके दिल के करीब हो वो हमें सुनाइए। स्वागत है आपका।
0: चलिए, चल के तुझे मैं लेके चलूं एक ऐसे गगन के तले जहां

0: बहुत बढ़िया, चलिए आगे बढ़ते हैं। रघुवंशी जी, बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही प्यारा सा गीत आपने सुनाया। अभी रमा पांचाल को सुनते हैं। रमा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका, कैसे हैं आप?
1: मैं पताजी शांति।
0: ओम शांति, ओम शांति
1: हाँ जी हाँ सर, एक मिनट सर, या आप किसी को और।
0: जी, बिल्कुल बिल्कुल। आइए आगे बढ़ते हैं, और बड़ी अच्छी बातें हो रही हैं, स्प्रेडिंग हैप्पीनेस के बारे में बातचीत हो रही है, और हर कलाकार जो है अपनी प्रेजेंटेशन के माध्यम से हम सभी को खुशी बांट रहा है। तो नेचुरली संगीत जो है एक माध्यम है जहाँ पर हम दूसरों को भी खुशी दे सकते हैं और खुद को भी खुश रख सकते हैं, तो इससे अच्छा माध्यम और भी नहीं कुछ हो सकता। हाँ, बाकी ये हो सकता है कि भाई आप अपने से ज्यादा ज्यादा से ज्यादा अपने आप को खुश रखने की अगर आप कला सीख लेते हैं, आर्ट ऑफ हैप्पीनेस विद इन द सेल्फ, माना ये एक बहुत ही सुंदर कला है कि खुद को भी खुश रखने का जो एक आर्ट है उसको डेवलप करना है, और जो व्यक्ति ये कला सीख लेता है तो वो उसके लिए फिर कोई प्रॉब्लम नहीं आता है, और वो दूसरों को खुशी बांटने में आगे बढ़ता है। तो आइए, मैं तब तक रमा जी तैयार हो जाए, ब्रजभूषण जी से, ब्रज शर्मा जी से। ब्रजभूषण शर्मा, बहुत बहुत स्वागत है आपका, बताइए आपकी खुशी का राज क्या है? बिल्कुल
2: वही जो आपके डीपी में लिखा है, मुस्कुराते रहिए हमेशा मुस्कुराते रहिए। और देवानंद साहब का एक गाना है, हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया हाँ। और ये अपने आप को खुश करने के लिए, और दूसरों को खुश करने का सबसे उत्तम उपाय ये है कि आप किसी के काम आए, किसी के दर्द में आप शामिल हों, उनका दुख बताएं, किसी को खुश करने की कोशिश करें। तो आई थिंक यही खुश रहने और रखने का तरीका है जी।
0: बहुत सुंदर। चलिए, मैं चाहूंगा कि खुशी को और थोड़ा सा बढ़िया तरीके से हम लोग एंजॉय करें। आप एक गीत सुना दीजिए ताकि हमें खुशी मिले।
2: रमा जी तैयार हो रहे हैं, तो मैं सोच रहा हूँ कि वो बीच में डिस्टरबेंस होगा उनको, लेट हर कम।
0: हाँ, उनको आने दो, वो तब तक आप सुनाइए।
2: रमा जी,
0: आ गए हैं वो।
2: हाँ रमा जी, आर यू रेडी?
0: रमा जी, आप
2: हेलो।
0: रेडी हैं तो आपको गाना है तो
1: हाँ
0: गा
1: जी, हाँ जी,
0: सकते
1: हाँ
0: हैं,
1: जी,
0: आपका
1: हाँ जी, रेडी है, स्टार्ट
0: बहुत ईको आ रहा
1: करो।
0: है। चलिए सुनाइए, स्वागत।
1: हाँ
0: हाँ जी,
1: जी।

0: जी धन्यवाद, शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच रमा पंचाल। आईएएस के साथ ही
1: सर
0: जी आइए एक और गीत सुनते हैं ब्रजभूषण जी से। ब्रजभूषण जी स्वागत है आपका।

0: वो तुमको वो पसंद वही बात कहेंगे, जो तुमको वो पसंद वही बात कहेंगे।
1: चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। चलिए ब्रजभूषण जी, मैं चाहूंगा कि आप अपनी खुशी को कैसे लोगों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे, खुशी बरकरार रखे इसके लिए।

0: So be happy, don't worry.
1: चलिए ब्रजभूषण जी, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच. बहुत ही अच्छा लगा आप लोगों से गीत और संदेश सुनने का मौका मिला आज. और बातें मुलाकातें का ये अपना सीजन 2 शुरू हो गया है, उसका पहला एपिसोड में आपने इतिहास दर्ज किया है. तो आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं करते हैं. और हमारे सभी जो दर्शक मित्र हैं, जो जुड़े हैं, बड़े प्यार से मैसेज कर रहे हैं, सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं करते हैं. और खुश रहने के लिए हमें जो है आज के समय में प्रयासरत करना पड़ रहा है. कहीं ना कहीं हमारी जो एनर्जी है, मुझे लगता है कि वो थोड़ी सी ड्रेन हो गई है. और मुझे लगता है कि हम सभी को फिर से उस परम शक्ति से जुड़कर थोड़े समय के लिए हमें जो है साइलेंस का प्रैक्टिस करना चाहिए, जिससे हमें जो है एनर्जी फिर से रिस्टोर हो जाएगी. तो अपने आप हमें जो है काम करते वक्त आनंद आएगा और खुशी मिलेगी. और एक जो दूसरा मंत्र है कि भाई अभी सवेरे मैं एक चिंतक जो थे, विचारक, उनसे बात चल रही थी, तो उन्होंने बोला खुश रहने के लिए जिंदगी ने आपको सब कुछ दिया है ना, हवा, पानी, खाना, पीना, रहना, सब कुछ दिया हुआ है. उसके बावजूद भी अगर आप खुश नहीं हैं, तो कहीं ना कहीं आपने जिंदगी को सही मायना में समझा नहीं है. तो सही, राइट थिंकिंग करने की जरूरत है. तो राइट थिंकिंग कहाँ से आएगा? हम इस सारी दुनिया को अगर देखेंगे तो गैम्बलिंग हो जाएगा हमारा, क्योंकि बहुत सारे अट्रैक्शंस हैं. तो इसीलिए दुनिया को मत देखो, अपने आप को देखने का प्रयास करो. थोड़ा सा उसको इंट्रोवर्ट कीजिए, माना जो चश्मा आप बाहर देख रहे हो उसके बजाय अंदर देखने की कोशिश करो कि आपको ईश्वर ने कितना खूबसूरती से, फुर्सत से बनाकर इस संसार में भेजा कि आपके जैसा दूसरा कोई नहीं है. तो वो चीज जब आप सोचना शुरू करेंगे, इनसाइड चले जाएंगे, तो नेचुरली आपकी खुशी बढ़ेगी और आप खुशी स्प्रेड भी कर सकते हैं अपने अनुभवों के साथ. तो आशा करूंगा आज के इस एपिसोड में बस इतना ही. फिर मिलते हैं अगले कड़ी में. तब तक आप अपना और अपनों का ख्याल रखें. सलाम, नमस्ते, खमा गणिसा. और सभी को, ब्रजभूषण जी को, रमा पांचाल जी को, डॉक्टर संगीत रघुवंशी जी को, पंकज सर को, और हेमंत जी को, और कविता जी को, और प्रीति जी को, और शिवानी जी को, सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं करते हैं. सलाम, नमस्ते, खमा गणिसा. जय हिंद, जय भारत, ओम शांति,
0: ओम शांति, ओम शांति.

भगवान के साथ ऐसे सुंदर सुंदर संबंध जोड़े हैं कि ना तो भक्त भगवान से दूर रह सकते हैं, ना भगवान भक्त से दूर रह सकते हैं।

ओम शांति। मैं हूं ब्रह्मा कुमारी प्रेमलता और आप सुन रहे हैं ब्रह्मा कुमारीज का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन 107.8 FM। सुनते रहो मुस्कुराते।

0: का चराग होता, मैं उसे घिसता, जिन निकलता और मैं उसे कहता कि जल्दी से मुझे आप सबके पास पहुंचा दे। अरे ये क्या, मीना भी जमाल को अलादीन की कहानी सुना रही है, चलो हम भी सुने।
1: और जब अलादीन जादुई गुफा में बंद हो गया तो फिर पता है क्या हुआ जमाल?
2: क्या हुआ मीना दीदी?
1: वहाँ उसे मिला एक मामूली सा दिखने वाला चिराग।
2: फिर?
1: और जब उसने चिराग से धूल हटाने के लिए उसे घिसा तो उसमें से निकला एक बड़ा सा जिन।
2: सचमुच का जिन?
1: हाँ जमाल, सचमुच का जिन। और उस जिन ने अलादीन से पूछा,
3: क्या हुक्म है मेरे आका?
2: इसका मतलब अलादीन जिन से कुछ भी मांग सकता था?
1: हाँ जमाल, कुछ भी।
2: फिर क्या मांगा अलादीन ने?
4: जमाल, ओ जमाल, मैं खेत जा रहा हूँ, जल्दी आओ।
2: मीना दीदी, मुझे अब जाना होगा।
1: जमाल, कहानी तो बीच में रह गई।
2: हाँ मीना दीदी, पर अभी मुझे जाना होगा।
1: एक काम करो, तुम ये किताब ले जाओ, कहानी पढ़ के मुझे लौटा देना।
2: मुझे पढ़ना नहीं आता।
1: तुम कितने साल के हो जमाल?
2: 7 साल का।
5: 7 साल का?
2: पता नहीं मीना दीदी, मैं ये किताब कभी पढ़ पाऊंगा या नहीं।
1: जरूर पढ़ पाओगे जमाल, देखना जब तुम स्कूल जाना शुरू कर दोगे तो अपने आप ही ये किताब पढ़ पाओगे।
5: किताब पढ़ पाओगे जब रोज स्कूल जाओगे।
2: लेकिन मीना दीदी, मेरे अब्बू मुझे कभी भी स्कूल नहीं भेजेंगे।
4: जमाल, ओ जमाल, कहाँ रह गया?
2: जी अब्बू, अभी आया।
0: अलादीन की कहानी तो पूरी नहीं हो पाई, चलो अब देखें कि जमाल अपने अब्बू के साथ खेत में क्या कर रहा है।
2: ये लीजिए अब्बू, पानी।
4: हाँ, इधर ला।
2: अब्बू, आज मीना दीदी ने मुझे एक बड़ी ही मजेदार कहानी सुनाई, अलादीन और जिन की कहानी।
4: अच्छा अच्छा, ठीक है।
2: अब्बू, क्या मैं
4: अरे बेटा, साफ साफ बोलना, क्या बात है?
2: मुझे भी अपने दोस्तों की तरह स्कूल जाना है अब्बू।
4: तेरा दिमाग तो ठीक है, कितने सारे और जरूरी काम हैं, पहले उन्हें तो पूरा कर ले, फिर बाद में सोचेंगे स्कूल के बारे में, समझा?
2: जी अब्बू।
0: ये क्या, जमाल तो मुंह लटकाए खेत से वापस आ गया, और फिर जब रात को वो सो रहा था तो उसे आया एक सपना कि अलादीन की तरह उसे भी मिला है एक जादुई चिराग, और जब उसने चिराग को घिसा तो चिराग में से निकला जिन।
6: क्या हुक्म है मेरे आका?
2: अरे वाह, मैं जो भी तुमसे कहूँगा तुम वो कर सकते हो?
6: हाँ मेरे आका, ला दूँ नई साइकिल या मीठे रसगुल्ले, नए नए कंचे या क्रिकेट के बल्ले?
2: ये सब नहीं, मैं तो बस ये चाहता हूँ कि मैं वो कहानी वाली किताब पढ़ सकूँ।
6: मगर मेरे आका, पढ़ना तो आपको स्कूल में सिखाया ही होगा, कुछ और मांगिए ना।
2: मैं तो स्कूल जाता ही नहीं, क्या तुम मुझे वहाँ भेज दोगे?
6: मगर मेरे आका, स्कूल जाना तो हर बच्चे का अधिकार है।
2: क्या तुम सच कह रहे हो?
6: हाँ आका, आका कुछ तो बोलिए ना, आका आका।
4: जमाल जमाल, सुबह हो गई है, चलो खेत पे मेरे साथ। जमाल,
2: कौन है?
4: सपना देख रहा था क्या?
2: जी अब्बू, मैंने अभी एक सपना देखा जिसमें एक बड़ा सा जिन था, और जब मैंने उस जिन से कहा कि मुझे स्कूल जाना है तो वो बोला कि
3: स्कूल जाना हर बच्चे का अधिकार है आका।
4: अच्छा हुआ जो सपना खत्म हो गया, मैंने तुझे कितनी बार कहा है कि पहले खेत और घर के जरूरी काम पूरे कर ले, फिर स्कूल के बारे में सोचेंगे, और वैसे भी बड़े होकर जब तुम्हें खेतीबाड़ी ही करनी है तो फिर स्कूल जाकर क्या फायदा, चल अब खेत के लिए तैयार हो जा।
0: और फिर खेत में,
2: अब वो देखिए, मीना और उसके बाबा इसी तरफ आ रहे हैं।
7: नमस्ते भैया।
4: नमस्ते भाई साहब, कैसे हो मीना बेटी?
1: मैं ठीक हूँ चाचा।
7: ये आप क्या

0: बना रहे हैं भैया?
1: बस फसलों की बेहतर सिंचाई के लिए मुंडेर बना रहे हैं। पूरा पानी मिलेगा तो फसल भी अच्छी होगी ना। सही कदम उठाने से ही तो एक अच्छी फसल की उम्मीद की जा सकती है भाई साहब।
0: बिल्कुल सही कहा आपने भैया, और ऐसे ही सही कदम आपको जमाल के अच्छे भविष्य के लिए भी उठाने चाहिए।
1: मैं कुछ समझा नहीं।
0: देखो भैया, जिस तरह से अच्छी उपज के लिए फसलों की अच्छी देखभाल जरूरी है, उसी तरह जरूरी है कि अच्छे भविष्य के लिए बच्चों को सही शिक्षा मिले जो उनके पूरे विकास में मदद करे।
1: देखिए भाई साहब, अब आपसे क्या छुपाना, घर और खेत के अभी इतने जरूरी काम पड़े हैं जिन्हें पहले पूरा करना है। जमाल को स्कूल भेजना तो बाद की बात है।
0: लेकिन भैया, जमाल को स्कूल भेजना उन जरूरी कामों से भी ज्यादा जरूरी है।
2: हाँ अबू, मैं स्कूल जाना चाहता हूँ, अपने दोस्तों के साथ मिलकर पढ़ना चाहता हूँ।
1: वो सब तो ठीक है भाई साहब, लेकिन मुझे खेत में हाथ बटाने के लिए जमाल की ज्यादा जरूरत है, और वैसे भी इसे बड़े होकर खेती ही करनी है।
0: देखिए भैया, अगर जमाल स्कूल जाएगा तो खेती के साथ और भी कई तरीकों से आपकी और बाकी परिवार की मदद कर पाएगा, जिससे आप सभी की जिंदगी बेहतर हो सकती है।
1: लेकिन इसे स्कूल भेजने के लिए पैसे कहाँ से आएंगे?
0: पैसे की चिंता मत करो भैया, 6 साल से लेकर 14 साल तक हर बच्चे को मुफ्त शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। और बात सिर्फ अधिकारों की नहीं है, स्कूल जाना बच्चों के लिए बहुत जरूरी भी है। इसीलिए सभी माँ बाप की ये जिम्मेदारी है कि वो अपने बच्चों को स्कूल भेजें और इसे बाकी चीजों से ज्यादा जरूरी समझें।
1: भाई साहब, आज आपने मुझे ये बात समझाकर सही रास्ता दिखाया है। मैं कल ही स्कूल जाकर जमाल का दाखिला करवाऊंगा।
2: अपने आप किताब पढ़ सकूंगा।
1: हाँ जमाल, और फिर तुम्हें हम सबको कहानी पढ़कर सुनानी पड़ेगी।
2: हाँ अब्बू, जरूर सुनाऊंगा।
3: भाई वाह, अब तो जमाल भी जाएगा रोज सुबह स्कूल और सीखेगा ढेर सारी नई बातें। चलो देखें ये मीना और मिट्टू आज क्या नया कर रहे हैं।
4: सबसे बड़ी जरूरत ये है, करो इसे तुम पूरी।
5: हर बच्चे का स्कूल में जाकर पढ़ना बहुत जरूरी।
3: क्या खूब कविता लिखी है मीना और मिट्टू ने। चलो अब सुनते हैं एक बढ़िया सा गीत।

0: अरे ये क्या, आप सब भी साथ में ये गाना गा रहे थे और मैं भी। गाना था ही इतना मजेदार। अब चलो मीना की क्लास में चलते हैं, जहां बहन जी आज एक अनोखा खेल खिला रही हैं।
1: प्यारे बच्चों, आज हम खेलेंगे शब्दों की अंताक्षरी। मैं तुम्हें एक शब्द दूंगी और तुम्हें उस शब्द के हर अक्षर से एक नया शब्द बताना होगा, ठीक है?
2: जी बहन जी।
1: आज का शब्द है चिराग। कौन बताएगा मुझे पहला शब्द?
3: मैं बहन जी। चिराग में पहला अक्षर है च, और च से होता है चौकोर।
1: हाँ दीपू, और चौकोर के आकार में क्या खास होता है?
4: चौकोर के चारों भुजाएं बराबर होती है।
1: शाबाश सुनील। अब अगला शब्द कौन बताएगा?
5: चिराग का अगला अक्षर है र, और र से होती है रेखा। रेखा होती है एक लकीर जो सीधी हो सकती है या टेढ़ी मेढ़ी हो सकती है।
6: और बहन जी, रेखाओं की मदद से हम बहुत सारे आकार बना सकते हैं, जैसे जैसे त्रिकोण, चौकोर, षटकोण।
1: शाबाश मीना और सुमी। और अब आखिरी शब्द है ग, और ग से मुझे शब्द बताएगी रानो।
7: ग से होता है गोलाकार, और गोलाकार में कोई भुजा नहीं होती।
1: शाबाश रानो, आज तो तुम सभी ने हर एक अक्षर से एक आकार का नाम बताया। तो बच्चों, आज के खेल में मजा आया?
2: बहुत मजा आया जी।
0: तो आपको भी मजा आया ना? फिर ठीक है, फिर मिलेंगे एक नई कहानी, नए गीत और एक नए खेल के साथ। तब तक अपनी प्यारी मीना को चिट्ठी लिखना मत भूलना, चाहे वो आपके सुझाव हो, आपके विचार हो या आपके अनुभव।
6: और मेरा पता है मीना की दुनिया, यूनिसेफ, पोस्ट बॉक्स नंबर 3008, लोधी रोड, HPO, नई दिल्ली 110003।

0: आज गम है तो कल है खुशी, जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद ही जीत है, हार के बाद ही जीत है।
1: रुके रुके रुके, हाँ जी, थोड़ा अपना प्यारा सा मुखड़ा दिखाना शीशे के बाहर झांक के। हैं
2: जी, कहिए। अरे ये क्या कर रहे हो?
1: ओ मेरे भाई, और जिस चीज का कोई फायदा नहीं उसको रखने का फायदा क्या? और तेरे पास चश्मा होते हुए तेरे को रेड लाइट नहीं दिखती तो फायदा की?
2: पर रोड तो खाली थी, कोई था ही नहीं।
1: ये क्या बात हुई भाई, है? इसका मतलब तो ये है कि दुकान पर अगर मालिक नहीं होगा तो तुम बिना पूछे उसका सामान उठाओगे? और बॉस नहीं होगा ऑफिस में तो तुम उसकी कुर्सी पे सो जाओगे? और रोड पे कोई हो न हो, सड़क के नियम कायदे कानून कभी नहीं टूटेंगे। और वैसे भी ये तो है मेरी सड़क, और मुझे कहते हैं हवलदार कड़क।
3: रेड लाइट होने पर हमें अपनी गाड़ी रोक लेनी चाहिए और उसे ग्रीन होने पर ही आगे बढ़ना चाहिए। ऐसा न करके हम अपनी और दूसरों की जान खतरे में डाल सकते हैं। रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी, सुनते रहो मुस्कुराते रहो।
4: CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है ध्वनि पुस्तक संक्षिप्त बुद्ध चरित्र, कक्षा 8 के लिए हिंदी की पूरक पाठ्य पुस्तक। अध्याय 5, महापरिनिर्वाण, पृष्ठ संख्या 66। महापरिनिर्वाण, निर्वाण की ओर। भगवान बुद्ध के उपदेश सुनकर और अपना निमंत्रण स्वीकार हो जाने के बाद आम्रपाली ने भगवान बुद्ध से विदा मांगी। भगवान बुद्ध की आज्ञा पाकर उसने उन्हें प्रणाम किया और अपने भवन चली गई। इसी समय लिच्छिवी सामंतों ने भी सुना कि भगवान बुद्ध आम्रपाली के उद्यान में विराजमान हैं, अतः वे सब उनके दर्शन के लिए चल पड़े। उनमें से कुछ सुसज्जित हाथी घोड़ों पर और कुछ रथों पर सवार होकर आए। आम्रपाली के उद्यान के पास पहुंचकर वे अपने वाहनों से उतर गए और भगवान बुद्ध के निकट जाकर नमस्कार करके धरती पर बैठ गए। भगवान बुद्ध ने उन्हें उपदेश देते हुए कहा, धर्म में आप लोगों की श्रद्धा आपके राज्य, बल और रूप से भी अधिक मूल्यवान है। मैं वृज्जियों को भाग्यशाली मानता हूं जिन्हें आप जैसे सत्यार्थी और धर्मज्ञ राजा प्राप्त हुए हैं। आप सभी शीलवान हैं और शील ही स्वर्ग मार्ग का संकेतक है, वही स्वर्ग ले जाने वाली नौका है। इसलिए शील द्वारा अपने चित्त को शुद्ध कीजिए, अज्ञान और अहंकार को दूर कीजिए। भगवान बुद्ध के उपदेश सुनकर सभी लिच्छिवी सामंतों ने उन्हें फिर सिर झुकाकर प्रणाम किया और भिक्षा के लिए उन्हें अपने घरों पर आमंत्रित किया। तथागत ने उन्हें बताया कि इसके लिए वे पहले ही आम्रपाली का निमंत्रण स्वीकार कर उसे वचन दे चुके हैं। यह सुनकर लिच्छियों को बुरा लगा, परंतु महामुनि के उपदेशों के कारण वे शांत हो गए और प्रणाम कर अपने अपने घर चले गए। दूसरे दिन प्रातःकाल आम्रपाली ने भगवान बुद्ध का अतिथि सत्कार किया। आम्रपाली के घर से भिक्षा लेकर भगवान बुद्ध चतुर्मास वास के लिए वेणुमती नगर चले गए। वहां वर्षा काल के 4 मास व्यतीत किए। इसके बाद वे पुनः वैशाली आ गए और मरकट नामक सरोवर के तट पर निवास करने लगे। पृष्ठ संख्या 67। जब महामुनि मरकट सरोवर के तट पर एक वृक्ष के नीचे बैठे थे कि तभी उनके पास मार आया और सिर झुकाकर कहने लगा, हे मुनि, नैरंजना नदी के तट पर जब आपने बुद्धत्व प्राप्त किया था तो मैंने आपसे कहा था कि आप कृतकृत्य हो गए हैं, आप निर्वाण प्राप्त कीजिए। उस समय आपने कहा था, जब तक मैं पीड़ित और पापियों का उद्धार नहीं कर लेता, तब तक मैं अपने निर्वाण की कामना नहीं करूंगा। अब आप बहुतों को मुक्त कर चुके हैं, बहुत से मुक्ति के मार्ग पर हैं, वे सभी निर्वाण प्राप्त करेंगे, अतः अब आप भी निर्वाण प्राप्त कीजिए। मार की विनती सुनकर भगवान बुद्ध ने कहा, मैं अपनी प्रतिज्ञा पूरी कर चुका हूं, तुम चिंता मत करो, मैं आज से तीसरे मास निर्वाण प्राप्त करूंगा। भगवान बुद्ध के ये वचन सुनकर मार बहुत प्रसन्न हुआ और मुनि को प्रणाम कर वहां से चला गया। मार के चले जाने के बाद भगवान बुद्ध अपने आसन पर बैठकर अपनी प्राणवायु को चित्त में ले गए और चित्त को प्राणों से जोड़कर योग साधना द्वारा समाधि प्राप्त की। जैसे ही उन्होंने प्राणों का निरोध किया, आकाश में चारों ओर से उल्कापात होने लगा, धरती कांपने लगी, चारों ओर बिजली चमकने लगी और वज्र गर्जना होने लगी। सर्वत्र प्रलयकालीन हलचल मच गई। इस प्रकार मरते लोक, दिव्य लोक और आकाश में हुई हलचल की घड़ी में महामुनि ने गंभीर समाधि से निकलकर कहा, आयु से मुक्त मेरा शरीर अब जर्जर हो गया है। वह उस रथ के समान है जिसका धुरा टूट गया हो, मैं इसे अब अपने योग बल से ढो रहा हूं, परंतु जैसे अंडा फोड़कर पक्षी बाहर आ जाता है, वैसे ही मैं भी अब बाहर आ गया हूं। लिच्छवियों पर अनुग्रह। इस प्रकार की हलचल देखकर आनंद कांपने लगा और चक्कर खाकर वैसे ही गिर पड़ा जैसे जड़ के कट जाने पर वृक्ष धरती पर गिर पड़ता है। थोड़ी देर बाद कुछ संभल कर वह खड़ा हुआ और सर्वज्ञ भगवान बुद्ध से इसका कारण पूछने लगा। उन्होंने बताया कि मेरा भूलोक में निवास का समय अब पूरा हो चुका है, इसलिए सर्वत्र हलचल है। अब मैं केवल 3 मास और इस पृथ्वी पर रहूंगा, फिर चिरंतन निर्वाण प्राप्त कर लूंगा। यह सुनकर आनंद को बड़ा आघात लगा, उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। तथागत ही उसके गुरु थे, स्वजन थे और सर्वस्व थे। वह अत्यंत दुखी होकर रोने लगा। विलाप करते हुए आनंद ने कहा, आपके निश्चित प्रस्थान की बात सुनकर मेरा मन दुखी हो गया है, शरीर संतप्त हो रहा है और ऐसा लग रहा है जैसे आपसे सुना हुआ धर्म लुप्त होता जा रहा है। इस पाप रूपी जंगल में भटकने वाले प्राणियों का मार्गदर्शन अब कौन करेगा? शोक संतप्त और व्याकुल आनंद को सांत्वना देते हुए भगवान बुद्ध ने उससे कहा, हे आनंद, तुम्हें जगत का रहस्य समझना चाहिए। देखो, जो भी जन्म लेता है अवश्य मरता है। इस लोक में कुछ भी स्वाधीन नहीं है, कोई भी प्राणी अमर नहीं है। यदि प्राणी अमर होते तो जीवन परिवर्तनशील नहीं होता, फिर मुक्ति का क्या महत्व होता? हे आनंद, मैंने तुम्हें संपूर्ण मार्ग दिखा दिया है। बुद्ध किसी से कुछ भी नहीं छिपाता। मैं शरीर रखूं या छोड़ूं, मेरे लिए दोनों ही स्थितियां समान हैं। हां, मेरे जाने के बाद भी मेरे द्वारा जलाया गया यह धर्म का दीपक सदा जलता रहेगा। तुम उसी दीपक के प्रकाश में निर्द्वंद्व होकर अपने लक्ष्य को प्राप्त करो। मेरे जाने के बाद भी जो लोग इस धर्म के मार्ग में स्थिर रहेंगे, वे निश्चित ही निर्वाण पद प्राप्त करेंगे। जब भगवान बुद्ध आनंद को समझा रहे थे, तभी उनके निर्वाण का समाचार सुनकर सभी लिच्छवी दौड़ते हुए वहां आ गए और भगवान को प्रणाम कर एक ओर खड़े हो गए। तब भगवान बुद्ध ने लिच्छवियों से कहा, मैं आप सबके मन की बात जानता हूं। आप भी अन्य लोगों की भांति शोक संतप्त होकर यहां आए हैं, परंतु मैं आपसे कहना चाहता हूं कि यदि आप लोगों ने मेरे उपदेशों को ध्यान से सुना और ज्ञान प्राप्त किया है तो आपको मेरे जाने के कारण शोक नहीं करना चाहिए। भगवान बुद्ध ने उन्हें आगे समझाया, देखो इस परिवर्तनशील संसार में शरीर काल का भोजन है, जीवन क्षणभंगुर है, इस जगत में सदा रहने वाली कोई वस्तु नहीं है। पहले भी जो बुद्ध हुए हैं वे भी अपनी बुद्धि के प्रकाश से संसार को प्रकाशित कर तेल समाप्त होने वाले दीपक की तरह सदा के लिए बुझ गए। भविष्य में भी बुद्ध पैदा होंगे, वे भी लकड़ी के जल जाने के बाद अग्नि की तरह शांत हो जाएंगे। मुझे भी अब उसी मार्ग पर जाना है। भगवान बुद्ध ने अंत में कहा, इस रम्य नगरी में अभी भी कुछ अदीक्षित लोग रह गए हैं, अतः मुझे चलना चाहिए। आप लोग किसी प्रकार का शोक ना करें और मेरे बताए धर्म के मार्ग का अनुसरण करें। पृष्ठ संख्या 69। इस प्रकार लिच्छवियों पर अनुग्रह कर उन्हें उपदेश देकर भगवान बुद्ध उत्तर दिशा की ओर चल दिए। उनके पीछे पीछे सभी लिच्छवी भी रोते बिलखते चलने लगे। वे कह रहे थे, आहा विशुद्ध स्वर्णिम आभा वाले गुरु की देह नष्ट हो जाएगी, क्या भगवान भी अनित्य है। विलाप करते हुए लिच्छवियों को भगवान बुद्ध ने पुनः समझाया और उन्हें अपने अपने घर जाने की आज्ञा दी, परंतु जैसे लहर हवा की विपरीत दिशा में नहीं चल पाती वैसे ही वे घर लौटने में अपने आप को असमर्थ पा रहे थे। जैसे ही भगवान बुद्ध वैशाली नगर को छोड़कर आगे बढ़े वह नगरी राहु द्वारा ग्रसित सूर्य के समान प्रभाशून्य हो गई। जैसे विद्या के बिना रूप, क्रिया के बिना ज्ञान, भक्ति के बिना बुद्धि, संस्कार के बिना शक्ति, सदाचार के बिना संपत्ति, श्रद्धा के बिना प्रेम, उद्योग के बिना लक्ष्मी, कर्म के बिना धर्म तथा वर्षा के बिना धान के खेत शोभाहीन लगते हैं, वैसे ही तथागत के बिना यह वैशाली शोभाहीन हो गई थी। उस दिन शोक के कारण वैशाली में किसी ने भोजन नहीं किया, न ही किसी ने जल ग्रहण किया। उधर तथागत ने नगर की सीमा पर आकर उसकी ओर मुंह करके कहा, हे वैशाली, अपने जीवन के शेष भाग में अब मैं तुम्हें फिर नहीं देखूंगा, क्योंकि मैं अब निर्वाण के मार्ग पर जा रहा हूं। उन्होंने अपने पीछे पीछे चले आ रहे सभी लोगों को समझाया, उन्हें अपने अपने घर लौट जाने के लिए कहा और स्वयं भोगवती नगरी की ओर चल पड़े। भोगवती नगरी में कुछ समय रहने के बाद भगवान बुद्ध ने अपने अनुयायियों को उपदेश दिए और कहा, मेरे जाने के बाद आप लोग धर्म का अनुसरण करें। मैंने जो कुछ सूत्रों में बताया है और जो विनय में है आप उसी का अनुसरण कीजिए। जिसमें विनय नहीं है वह ना मेरा वचन है और ना धर्म। पवित्र लोगों के वचन वैसे ही ग्रहण करना जैसे कि स्वर्णकार स्वर्ण को तपाकर उसकी परीक्षा करके उसे ग्रहण करता है। इसलिए शब्द को अर्थ के अनुसार ठीक ठीक सुनकर ही उसे ग्रहण करना चाहिए। जो शास्त्र को अनुचित रीति से ग्रहण करता है वह अपने को ही क्षति पहुंचाता है। जैसे तलवार को अनुचित रीति से ग्रहण करने वाला अपने आप को ही काट लेता है। इस प्रकार अपने शिष्यों को उपदेश देकर भगवान बुद्ध ने पापापुर के लिए प्रस्थान किया। पापापुर पहुंचने पर मल्लों ने उनका समारोह पूर्वक स्वागत किया। पृष्ठ संख्या 70। वहां उन्होंने अपने भक्त चुंद के घर अंतिम भोजन किया। अपनी शिष्य मंडली के साथ भोजन कर लेने के बाद उन्होंने चुंद को उपदेश दिए और फिर कुशीनगर के लिए प्रस्थान किया। भगवान बुद्ध ने चुंद के साथ इरावती नदी को पार किया और फिर नगर के एक सुंदर उपवन में एक सरोवर के तट पर कुछ समय विश्राम किया। तदुपरांत उन्होंने हिरण्यवती नदी में स्नान किया और शोकाकुल आनंद को आदेश दिया, हे आनंद, इन दोनों शाल वृक्षों के बीच मेरे शयन के लिए स्थान तैयार करो। हे महाभाग, आज रात्रि के उत्तर भाग में तथागत निर्वाण प्राप्त करेंगे। भगवान बुद्ध के आदेश के अनुसार आनंद ने शयन के लिए स्थान तैयार किया और फिर हाथ जोड़कर निवेदन किया, भगवन, शैया तैयार है। तब वह पुरुष सिंह चिर निद्रा के लिए शांत चित्त से शैया के निकट गए। वे हाथ का तकिया बनाकर एक पैर पर दूसरा पैर रखकर और अपने शिष्यों की ओर उन्मुख होकर दाई करवट लेट गए। उस समय सारी दिशाएं शांत हो गईं, सभी पक्षी निशब्द हो गए और सभी जीव जंतु मौन, मानो सारा संसार स्तब्ध हो गया हो। इस पृष्ठ पर एक चित्र है जिसमें भगवान बुद्ध को निर्वाण लेते हुए दिखाया गया है। आइए अब सुनते हैं पाठ। सूर्यास्त के समय जैसे पथिकों को घर जाने की शीघ्रता होती है, वैसे ही सभी उपस्थित शिष्यों को अंतिम लक्ष्य प्राप्त करने की शीघ्रता होने लगी। तब भगवान बुद्ध ने आनंद से कहा, हे आनंद, तुम मल्लों को मेरे प्रयाण की सूचना दे दो, वे भी निर्वाण देख लें, जिससे उन्हें बाद में पश्चाताप ना हो। पृष्ठ संख्या 71। आदेशानुसार आनंद ने जाकर मल्लों को सूचित किया कि तथागत अब अंतिम शैया पर हैं। यह सुनकर सभी मल्ल अत्यंत व्याकुल होकर आंसू बहाते हुए निकल पड़े। वे शीघ्र ही महामुनि के पास आए और अपने आंसुओं से भगवान बुद्ध के चरणों को भिगोते हुए उनके सन्मुख मौन होकर खड़े हो गए। सभी मल्लों को व्याकुल देखकर भगवान बुद्ध ने कहा, आनंद के समय दुखी होना उचित नहीं है, यह दुर्लभ और काम्य लक्ष्य मुझे आज प्राप्त हो रहा है। मुझे आज वह सुखमय पुण्य प्राप्त हो रहा है जो पंचभूतों से मुक्त, जन्म से रहित, इंद्रियातीत, शांत और दिव्य रूप है, जिसके बाद किसी प्रकार का शोक नहीं होता। यह शोक का समय नहीं है, क्योंकि सभी दुखों का मूल मेरा भौतिक शरीर आज निवृत्त हो रहा है। भगवान बुद्ध के वचन सुनकर एक वृद्ध मल्ल ने कहा, सुजन के लिए हमें शोक नहीं करना चाहिए, फिर भी हमारा चित्त दुखी है, क्योंकि अब हमें आपके दर्शनों का सौभाग्य नहीं मिल पाएगा। जगत के हितैषी के जाने पर भला कौन शोक नहीं करेगा। शोचनीय तो वे हैं जिन्होंने मुनि के दर्शन करके भी सुमार्ग का अनुसरण नहीं किया। सोने की खान में रहकर भी जो दरिद्र ही रहा। वृद्ध मल के वचन सुनकर भगवान बुद्ध ने कहा, सच तो यह है कि मात्र मेरे दर्शनों से निर्वाण नहीं मिल सकता। जो मेरे धर्म को ठीक से समझता है वह मेरे दर्शन के बिना भी दुखों के जाल से मुक्त हो जाता है। औषधि के सेवन के बिना मात्र वैद्य के दर्शन से रोग से मुक्ति नहीं होती। इसीलिए श्रेय का आचरण करो। जीवन तेज हवा के बीच दीप शिख की तरह चंचल है। इस प्रकार महामुनि के दर्शन कर और उनके उपदेश सुनकर सभी मल्लों ने उन्हें प्रणाम किया और आदेशानुसार वे अपने अपने घरों को लौटने लगे। पृष्ठ संख्या 72। महापरिनिर्वाण। मल्लों के चले जाने पर सुभद्र नाम का त्रिदंडी सन्यासी भगवान बुद्ध के दर्शनों के लिए आ गया। वह एक सिद्ध पुरुष था। उसने आनंद से कहा कि निर्वाण के अंतिम क्षणों में मैं भगवान बुद्ध के दर्शन करना चाहता हूं। आनंद ने सोचा कि कहीं यह सन्यासी बुद्ध से शास्त्रार्थ ना करने लगे, इसीलिए उन्होंने सन्यासी को भगवान बुद्ध के निकट जाने से रोका। परंतु तथागत ने लेटे लेटे ही आनंद से कहा, हे आनंद, इस जिज्ञासु मुमुक्षु को रोको मत, आने दो। यह सुनकर सुभद्र सविनय सुगत के पास गया और प्रणाम करके बोला, हे भगवन, मैंने सुना है कि आपने मोक्ष के जिस मार्ग का प्रतिपादन किया है वह अन्य सभी मार्गों से भिन्न है। कृपा पुंज, वह मार्ग कैसा है, मुझे बताने की कृपा करें। मैं जिज्ञासावश आपके पास आया हूं, विवाद के लिए नहीं। सुभद्र की प्रार्थना सुनकर तथागत ने उसे अष्टांग मार्ग का उपदेश दिया। इसे सुनते ही सुभद्र की ज्ञान दृष्टि सम्यक रूप से खुल गई। वह उसी तरह प्रसन्नता का अनुभव करने लगा जैसे भटका हुआ राही अपने गांव पहुंच जाने पर करता है। उसने गदगद होकर कहा, मैं अब तक जिस मार्ग का अनुसरण कर रहा था वह श्रेयस्कर नहीं था, आज मुझे सच्चा मार्ग मिल गया है। अत्यंत प्रसन्न होकर सुभद्र ने भगवान बुद्ध की ओर देखा और आंखों में आंसू भरकर निवेदन किया, हे पूज्य गुरुवर, आपकी मृत्यु का दर्शन करना मेरे लिए उचित नहीं होगा, अतः मैं उससे पहले ही अपनी देह त्याग कर निर्वाण पद प्राप्त करने की अनुमति चाहता हूं। ऐसा कहकर त्रिदंडी सुभद्र ने भगवान बुद्ध को प्रणाम किया, शैल की तरह स्थिर होकर बैठ गया और एक ही क्षण में वायु से बुझे दीपक की भांति निर्वाण को प्राप्त कर गया। संस्कार के ज्ञाता तथागत ने तब सुभद्र का अंतिम संस्कार करने का आदेश दिया और कहा, सुभद्र मेरा उत्तम और अंतिम शिष्य था। आधी रात बीतने पर जब चांदनी के प्रकाश का विस्तार हुआ, सारा वन प्रदेश पूरी तरह शांत हो गया। तब भगवान बुद्ध ने वहां उपस्थित सभी शिष्यों को बुलाया और अंतिम उपदेश दिया। उन्होंने कहा, मेरे निर्वाण के बाद आप सबको इस प्रातिमोक्ष को ही अपना आचार्य, प्रदीप तथा उपदेष्टा मानना चाहिए। आपको उसी का स्वाध्याय करना चाहिए, उसी के अनुसार आचरण करना चाहिए। यह प्रातिमोक्ष शील का सार है, बुद्धि का मूल है, इसी से मोक्ष प्राप्त हो सकता है। तथागत ने प्रातिमोक्ष के सारे नियम विस्तार से समझाए और अंत में कहा, मैंने गुरु का कर्तव्य निभाया है, आगे तुम लोग साधना करो, विहार, वन, पर्वत, जहां भी रहो धर्म का आचरण करो। यदि मेरे बताए आर्य सत्यों के विषय में किसी को कोई शंका हो, कोई प्रश्न हो तो पूछ लो। तथागत के मुख से अंतिम उपदेश ग्रहण करने के बाद सभी शिष्य मौन और शांत बैठे रहे तो अनिरुद्ध ने तथागत से निवेदन किया, हे सुगत, आप द्वारा प्रतिपादित आर्य सत्यों में किसी को भ्रम नहीं है। पृष्ठ संख्या 73। अनिरुद्ध की बात सुनकर तथागत ने कहा, हे अनिरुद्ध, सभी की मृत्यु निश्चित है, अब मेरे जीवित रहने से संसार को कोई लाभ नहीं, स्वर्ग और भूलोक में जो भी दीक्षित होने योग्य थे वे सभी धर्म में दीक्षित हो गए, अब इन्हीं के द्वारा मेरा धर्म जनता में प्रचलित होगा और उससे संसार में स्थायी शांति स्थापित होगी। तुम सब लोग शोक त्याग कर जागरूक रहो, यही मेरा अंतिम वचन है। इतना कहकर भगवान बुद्ध ने प्रथम ध्यान में प्रवेश किया, फिर दूसरे ध्यान में और इस तरह क्रमशः ध्यान के अनेक स्तरों को पार कर पुनः चतुर्थ ध्यान में आ गए और सदा के लिए शांत हो गए। महापरिनिर्वाण के बाद भगवान बुद्ध के निर्वाण प्राप्त करने के बाद सारा संसार ऐसा लगने लगा जैसे बिना चंद्रमा के आकाश, पाले से मुरझाए कमलों का सरोवर अथवा धन के अभाव में निष्फल विद्या। निर्वाण का समाचार सुनकर आकाश से देवतागण भी उनके प्रति अपनी श्रद्धा प्रकट करने लगे। उनमें से एक ने कहा, अहो, यह सारा संसार नश्वर है, जहां मृत्यु के लिए जन्म होता है और जन्म के लिए मृत्यु। जो जन्म और मृत्यु दोनों से मुक्त है वही भाग्यवान है। देखो, ज्ञान की ज्वाला तथा यश रूपी ज्योति को आज काल ने सदा के लिए शांत कर दिया है। किसी मुनि श्रेष्ठ ने अपनी श्रद्धांजलि देते हुए कहा, यह संसार असार है, यहां सभी कुछ नश्वर है। जो सारे लोक का गुरु था वह भी आज काल कवलित हो गया। अंधकार में डूबे लोक को देखकर अनिरुद्ध ने कहा, इस लोक की गति कैसी विचित्र है। तथागत ने दुख मुक्त होकर तपस्या की, आलस्य मुक्त होकर धर्माचरण किया, लोभ मुक्त होकर योगाभ्यास किया और अब मोह मुक्त होकर इस शरीर का भी त्याग कर दिया। जैसे बुद्धि के बिना विद्या, आचरण के बिना क्रिया तथा दया के बिना धर्म निरर्थक होता है, वैसे ही शाक्य मुनि के बिना यह संसार आज व्यर्थ लग रहा है। भगवान बुद्ध के निर्वाण का समाचार जैसे ही मल्लों ने सुना, वे भी रोते हुए वहां दौड़े चले आए और विलाप करने लगे। फिर मल्लों ने मिलकर महामुनि के शव को स्वर्णमय सुंदर शिविका में स्थापित किया, विविध प्रकार की सुगंधित फूल मालाओं से भक्तिपूर्वक पूजा की, शिविका को श्वेत कपड़े से ढका और चंवर डुलाते हुए उसे अपने कंधों पर उठाया। पृष्ठ संख्या 74। भक्तिपूर्वक भगवान बुद्ध की शव शिविका को वे नगर के मध्य भाग में ले आए। फिर वे नगर के नाग द्वार से बाहर निकले और हिरण्यवती नदी को पार किया। उन्होंने मुकुट चैत्य के पास चंदन, अगरू तथा वलकल आदि से चिता बनाई और उस पर महामुनि के शव को रख दिया। दीपक जलाकर मल्लों ने चिता में आग दी, परंतु बार बार प्रयत्न करने पर भी चिता में आग नहीं लगी। भगवान बुद्ध का प्रिय शिष्य काश्यप अभी मार्ग में ही था, उसी के अभाव में चिता में आग नहीं लग पा रही थी। जैसे ही काश्यप दौड़ते हुए वहां आए, उन्होंने अपने गुरु को साष्टांग दंडवत प्रणाम किया, चिता में स्वतः ही आग लग गई। चिता की अग्नि ने भगवान बुद्ध के शरीर के मांस, चर्म, बाल तथा अन्य अवयवों को जला दिया, परंतु उनकी अस्थियां यथावत बनी रहीं। उन्हें चिता की अग्नि न जला सकी। चिता के शांत हो जाने पर मल्लों ने भगवान बुद्ध की अस्थियों को शुद्ध जल से धोया और उन्हें स्वर्ण कलश में रखा, उसे अपने नगर के मध्य ले गए। लोगों ने महामुनि की प्रशंसा में स्तोत्र गाए। किसी ने कहा, इस घट में वे धातु यानी अस्थियां स्थापित हैं जिन्हें चिता की अग्नि नहीं जला सकी। किसी ने कहा, ये अस्थियां मंगलमय हैं, अमूल्य हैं, हम इन्हें यहां स्थापित कर रहे हैं जिससे संसार को शांति प्राप्त हो। यहां एक चित्र है जिसमें बुद्ध के महानिर्वाण को दिखाया गया है। अब सुनते हैं पाठ। पृष्ठ संख्या 75। किसी अन्य ने कहा, अहो, काल कितना निष्ठुर है, इसने महामुनि को भी नहीं छोड़ा, जिसके धर्म और यश से सारा चराचर जगत चमत्कृत है। बाद में मल्लों ने अस्थि कलश के लिए अत्यंत सुंदर पूजा भवन का निर्माण करवाया और उसमें अस्थि कलश स्थापित किया। कुछ समय तक मल्लों ने भगवान बुद्ध के अस्थि कलश की विधिवत पूजा अर्चना की, परंतु धीरे धीरे पड़ोसी राज्यों से दूत आने लगे और भगवान बुद्ध की अस्थियों को मांगने लगे। एक दिन 7 पड़ोसी राज्यों से दूत आए और उन्होंने अस्थियां मांगी, परंतु भगवान बुद्ध की अस्थियों के लिए मन में अत्यंत श्रद्धा होने तथा अपने बल पर अभिमान होने के कारण मल्लों ने भगवान बुद्ध की अस्थियां देने से मना कर दिया और वे लड़ने की तैयारी करने लगे। दूत लौट गए। उन्होंने सारी बातें अपने अपने राजाओं से कही। दूतों की बात सुनकर पड़ोसी राजा भी क्रोधित हुए। उन्होंने मिलकर युद्ध करने का निर्णय किया। वे अपनी अपनी सेना लेकर युद्ध के लिए निकल पड़े। पड़ोसी राज्यों की सेनाओं ने कुशपुर यानी कुशीनगर को चारों ओर से घेर लिया और वे मल्लों को ललकारने लगे। पुरवासी मल्ल भी संगठित होने लगे। उन्होंने विविध प्रकार के शस्त्र अस्त्र धारण किए। वीरों की पत्नियों ने सैनिकों को तिलक लगाए और रणगीत गाए। सभी सैनिक सिंहों की तरह गरजने लगे और शंख बजाने लगे। यहां एक चित्र है जहां हम सेना को प्रस्थान करते हुए देख सकते हैं। अब सुनते हैं पाठ। पृष्ठ संख्या 76। इस प्रकार युद्ध के लिए तैयार दोनों पक्षों को देखकर करुणा और दया से भरकर द्रोण नाम के एक ब्राह्मण ने 7 पड़ोसी राजाओं के पास जाकर निवेदन किया, राजन, बाहर के शत्रुओं को शस्त्रों से जीतना सरल है, परंतु परकोटे में बैठे शत्रु को जीतना सरल नहीं। यदि नगर को घेर कर अंदर के शत्रुओं को जीत भी लिया तो भी वह धर्म युद्ध नहीं होगा, इसे निरपराध नगरवासियों की हत्या ही कहा जाएगा। इसलिए थोड़ा सोचिए और शांति का उपाय कीजिए। शस्त्र से जीते गए मनुष्यों का मन फिर से कुपित हो सकता है, परंतु शांति के उपायों से जीते गए मनुष्यों का मन सदा के लिए शांत हो जाता है। आप लोग जिस शाक्य मुनि का सम्मान करना चाहते हैं उसी की आज्ञा से, उसी के उपदेशों के अनुसार शांति का उपाय कीजिए। द्रोण की बातें सुनकर 7 राजाओं का क्रोध कुछ शांत हुआ। उन्होंने उनसे कहा, हे ब्राह्मण, आप सत्य कहते हैं। हम लोगों की धर्म में, प्रेम में पूरी आस्था है, परंतु हमें अपने बल पर भी पूरा विश्वास है। हमने शाक्य मुनि में अतिशय भक्ति के कारण ही शस्त्र ग्रहण किया है। हम तो शाक्य मुनि की पूजा के लिए ही लड़ रहे हैं। यदि यह कार्य बिना युद्ध हो जाए तो हमें कोई विरोध नहीं है। आप हमारे दूत बनकर जाइए और मल्लों को समझाइए। हमारा उनसे कोई बैर नहीं है। हम तो भगवान बुद्ध के प्रति अपनी श्रद्धांजलि समर्पित करना चाहते हैं। इस प्रकार पड़ोसी राजाओं से बात करके ब्राह्मण द्रोण कुशीनगर गए और उन्होंने मल्लों को समझाया। हे मल्लों, नगर के बाहर जो 7 राजा अपनी सेनाओं के साथ खड़े हैं उनके पास अमोघ आयुध हैं और उनका बल अजेय है, परंतु वे शाक्य मुनि के धर्म के कारण ही डरे हुए हैं। वे यहां राज्य प्राप्ति के लोभ से नहीं आए और न ही अहंकारवश आए हैं। भगवान बुद्ध जैसे आपके गुरु हैं वैसे ही वे हमारे भी गुरु हैं और इन राजाओं के भी, इसलिए ये राजा भी शाक्य मुनि की अस्थियों की पूजा के लिए आए हैं। शाक्य मुनि का उपदेश है कि धन की कृपणता उतना बड़ा पाप नहीं है जितना बड़ा धर्म की कृपणता है। राजाओं का संदेश है कि यदि आप भगवान बुद्ध की धातु यानी अस्थियां नहीं देना चाहते तो नगर के द्वार से बाहर आइए और वीर अतिथियों का स्वागत कीजिए। पृष्ठ संख्या 77। द्रोण ने आगे कहा, यह राजाओं का संदेश है जो सद्भावना और साहस से भरा है। मैंने इनकी बातों पर धैर्यपूर्वक विचार किया है, अतः मेरी भी बात सुनिए। कलह से न किसी को सुख मिलता है और न ही धर्म होता है। शाक्य मुनि ने सदा क्षमा का उपदेश दिया है। जिस महामुनि ने क्षमा से स्वयं शांति प्राप्त की और हजारों लोगों की शांति प्रदान की, उस दयालु के निमित्त व्यर्थ रक्तपात उचित नहीं है। इसीलिए आप लोग इन राजाओं को धातु प्रदान कीजिए, यही आपका धर्म है। इससे आपको यश मिलेगा, ये सभी राजा आपके मित्र हो जाएंगे और सारी जनता को शांति मिलेगी। यहां एक चित्र है जिसमें ब्राह्मण द्रोण सैनिकों से या मल्लों से शांति वार्ता कर रहे हैं। द्रोण की बातें सुनकर मल्लों का क्रोध शांत हो गया। उन्होंने कहा, हे विप्रवर, आपके वचन बड़े कल्याणकारी हैं। आप हमें सन्मार्ग पर ले आए हैं। आपने जैसा कहा है हम वैसा ही करेंगे। इस प्रकार द्रोण के प्रयत्नों से विवाद का अंत हुआ। फिर सबने मिलकर भगवान बुद्ध की मंगलमय धातुओं को 8 भागों में बांटा। एक एक भाग प्रत्येक राजा को दिया और एक भाग स्वयं मल्लों ने अपने पास रखा। भगवान बुद्ध की अस्थियां लेकर सातों राजा प्रसन्नतापूर्वक अपने अपने राज्यों को लौट गए। उन्होंने अपनी अपनी राजधानी में इन अस्थियों पर स्तूप बनवाए और उनकी पूजा की। द्रोण ने भी अपने देश में स्तूप बनवाने के लिए वह घट लिया जिसमें पहले सभी अस्थियां रखी थी। पिसल जाति के बुद्ध भक्तों ने भगवान बुद्ध के शरीर की राख ली। पृष्ठ संख्या 78। इस प्रकार प्रारंभ में श्वेत पर्वतों के समान 8 स्तूपों का निर्माण हुआ जिनमें भगवान बुद्ध की अस्थियां रखी गई थीं। द्रोण के घटवाला नवा स्तूप बना और 10वां स्तूप बना जिसमें भगवान बुद्ध के शरीर की राख रखी गई थी। स्तूपों के निर्माण के बाद राजा सामंत तथा अन्य सभी जन इनकी पूजा करने लगे। स्तूपों पर अखंड ज्योति जलती रहती तथा रात दिन घंटे बजते रहते थे। कुछ समय के बाद एक दिन राजगृह में 500 बौद्ध भिक्षु एकत्र हुए और भगवान बुद्ध द्वारा प्रवर्तित धर्म को स्थायी रूप देने के लिए उन्होंने विचार विमर्श किया। सभी भिक्षुओं ने मिलकर भगवान बुद्ध के उपदेशों का संग्रह करने का निर्णय लिया। आनंद सदा भगवान बुद्ध के साथ रहे थे और उन्होंने उनके मुख से सभी धर्मोपदेश सुने थे। इसीलिए सभी भिक्षुओं ने आनंद से निवेदन किया कि संसार के कल्याण के लिए वे सभी धर्मोपदेशों को दोहराएं। आनंद ने एवं मे सुतम यानी मैंने ऐसा सुना है इस तरह कहते हुए जैसा भगवान बुद्ध से सुना था वैसे ही क्रमशः प्रसंग समय ध्यान आदि के साथ सभी धर्मोपदेश कहे। इस प्रकार आनंद तथा दूसरे वरिष्ठ भिक्षुओं ने भगवान बुद्ध के धर्मशास्त्र का स्वरूप निश्चित किया। कालांतर में देवानाम प्रियदर्शी का जन्म हुआ। उसने जनहित के लिए बहुत से स्तूपों का निर्माण करवाया। इसके कारण वह चंड अशोक या धर्मराज अशोक कहलाने लगा। उसने धातु गर्भित स्तूपों से धातु लेकर अनेक भाग किए और उन्हें सैकड़ों स्तूपों में स्थापित किया। यहां एक चित्र है जहां पर हम चंड अशोक को स्तूपों की स्थापना करते हुए देख सकते हैं। पृष्ठ संख्या 79। जब तक जन्म है तब तक दुख है, इसीलिए पुनर्जन्म से मुक्ति के समान कोई सुख नहीं है। इसलिए और कौन उतना पूज्य हो सकता है जितना कि वह जिन्होंने जन्म जरा व्याधि और मृत्यु से स्वयं मुक्त होकर सारे संसार को मुक्ति का मार्ग दिखाया है। प्रश्न एक, मार ने बुद्ध को क्या याद दिलाया? उत्तर में बुद्ध ने क्या कहा? दो, आनंद कौन था? उसे क्या जानकर आघात लगा? तीन, तथागत ने परिनिर्वाण से पूर्व मल्लों को क्या समझाया? चार, अपने अंतिम उपदेश में बुद्ध ने अपने शिष्यों से क्या कहा? पांच, मल्लों और पड़ोसी राजाओं के बीच युद्ध की संभावना क्यों उत्पन्न हो गई और यह संघर्ष कैसे टल गया? छह, भगवान बुद्ध के उपदेशों को संग्रह करने का भार किसे सौंपा गया और क्यों? यहां अध्याय पांच समाप्त हुआ। संक्षिप्त बुद्ध चरित्र। अभी आप सुन रहे थे कक्षा आठ की हिंदी की पूरक पाठ्य पुस्तक संक्षिप्त बुद्ध चरित्र का ध्वनि पाठ। वाचन स्वर अजीत होरो, निर्माण सहयोग सौम्या मलिक, ध्वन्यंकन विकास सांगवान, निर्माण वंदना अरिमर्दन तथा प्रस्तुति CIET NCERT नई दिल्ली भारत।
5: When I was young, I played for fun, made up the words nobody heard, but now I see all rise on me.

0: नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। अगर आप खुद को बदलने के लिए तैयार हैं, तो पूरी दुनिया आपके अनुकूल हो जाएगी। मैं हूं आपका हमसफर आरजे रमेश। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।
1: शिवानी, कैसे गए एग्जाम?
2: मेरे तो मस्त गए, तू बता?
1: मेरे भी बहुत मस्त गए, लेकिन एग्जाम पसंद है क्या?
2: बिल्कुल भी नहीं, पूरे साल

0: में भी तो बात कर सकते हैं ना.
1: हाँ.
0: तो आज हमारे साथ बच्चों की दुनिया में कौन कौन बच्चे हैं, जरा अपना नाम और क्लास तो बता दीजिए.
2: मेरा नाम रूहानी है, मैं क्लास 8 में आ गई हूँ.
3: मेरा नाम अनुष्का है, मैं क्लास 5 में आ गई हूँ.
4: मेरा नाम अमीक्षा है, मैं क्लास 7 में आ गई हूँ.
5: मेरा नाम राघव है, मैं क्लास 6 में आ गया हूँ.
6: मेरा नाम पलक है, मैं क्लास 6 में आ गई हूँ.
7: मेरा नाम शिवांशी है, मैं क्लास 10th में हूँ.
0: ये होता है ना कि हम नेक्स्ट क्लास में आ जाते हैं, लेकिन आदत तो पड़ी होती है पिछले क्लास की बोलने की, है ना.
1: हाँ.
0: तो बार बार रॉन्ग क्लास बोल देते हैं ना.
1: हाँ.
0: ऐसा होता है. तो आप लोग को नई क्लास अच्छी लग रही है कि पुरानी क्लास की याद आ रही है?
1: पुरानी क्लास की याद आ रही है
7: दीदी. अभी पुरानी की याद आ रही है, फिर जब नेक्स्ट क्लास में चल जाएंगे फिर इस क्लास की याद आएगी.
0: अच्छा, पुरानी की लेकिन क्यों याद आ रही है?
2: क्योंकि उसमें जो बच्चे थे उन्हें हम जानते थे, अब नए बच्चे आ जाएंगे.
0: अच्छा, पुराने वाले बच्चे नहीं है साथ में आपके,
2: है ना.
4: टीचर्स भी नहीं आ जाती है.
0: हाँ, टीचर्स तो बदल जाते हैं, ये बात तो है. अच्छा, तो एग्जाम्स के बारे में बात कर रहे थे आप लोग इससे पहले, तो एग्जाम्स अच्छे क्यों नहीं लगते, क्या वजह हो सकती है इसकी, क्या लगता है?
2: इतना सारा पढ़ के जाना पड़ता है पूरे साल का वो भी.
0: और
7: प्रेशर आ जाता है सारा दिमाग पे, भी ये भी याद करना है, ये भी याद करना है, वो भी याद करना है.
4: क्वेश्चन आंसर, इतने बड़े बड़े क्वेश्चन आंसर,
0: इतने बड़े बड़े लिखने पड़ते हैं आंसर. ये बात तो है, बड़े बड़े तो होते हैं.
6: एक दिन में पूरे दिन की पढ़ाई कौन करता है?
7: हाथ थक जाते हैं एग्जाम्स लिखते लिखते भी. हाथ
6: और उसमें भी दीदी दिमाग पकड़ के बैठ जाते हैं ऐसे, कोई इसका क्या आंसर होगा, आंसर सही होगा दीदी, एग्जाम सेंटर से निकलते ये क्वेश्चन सही होगा नहीं होगा, मार्क्स कटेंगे नहीं कटेंगे, पूरा दिमाग खराब होता है उसमें.
0: और
3: क्वेश्चंस भी बहुत भारी आते हैं. भी
0: क्वेश्चंस बहुत भारी आ जाते हैं.
3: हाँ.
7: सारे सवाल ऐसे दिमाग के ऊपर घूम रहे होते हैं.
0: और राघव को क्या लगता है, क्या अच्छा लगता है एग्जाम्स में आपको?
5: उसके बाद हम नई क्लास में जाते हैं.
0: और एग्जाम्स देते टाइम क्या अच्छा लगता है, डर नहीं लगता एग्जाम में, जैसे ये लोग बता रहे थे सब चीजों में?
5: बस अच्छी तरह पढ़ के जाना चाहिए और फिर डर नहीं लगता.
0: बिल्कुल नहीं लगता. ओके, चलो ये भी अच्छी बात है. तो मोस्टली सबको यहाँ एग्जाम पसंद नहीं है सिवाय एक के, है ना. अच्छा, लेकिन एग्जाम्स पसंद नहीं है या टेस्ट जो होते हैं बीच बीच में वो भी पसंद नहीं है?
7: दीदी टेस्ट चलता है, एग्जाम ना हो,
0: टेस्ट ठीक है.
2: हाँ, क्योंकि टेस्ट में कम क्वेश्चन आते हैं.
6: कम क्वेश्चन आते हैं और क्लास के उसमें ही रहते हैं.
0: ओके,
4: अगर टेस्ट में बात बन जाती तो हम लोग आगे क्लास में भी चले जाते, पर एग्जाम भी होती है.
2: हमारी क्लास में तो टेस्ट के क्वेश्चन भी बता देते, इसलिए टेस्ट बहुत इजी जाते हैं.
0: पहले से बता देते.
2: हाँ. और इतने बड़े क्वेश्चन देते भी नहीं है कि प्रेशर आ जाए.
0: प्रेशर वाले क्वेश्चन नहीं देते और हेल्प कर देते होंगे कि आप ये इम्पोर्टेंट है ये पढ़ लो, है ना.
2: हाँ.
0: अनुष्का क्या लगता है, टेस्ट के बारे में क्या लगता है आपको, अच्छे हैं बुरे हैं, होते हैं नहीं होते हैं?
3: टेस्ट तो अच्छा है.
0: टेस्ट अच्छा है, क्यों अच्छा है?
3: क्योंकि उसमें कम क्वेश्चन आते हैं और सिंपल भी होते हैं.
0: हाँ, सिंपल होते हैं ना उसमें क्वेश्चंस. राघव को क्या लग रहा है, टेस्ट अच्छे हैं कि बुरे हैं?
5: अच्छे हैं.
0: एग्जाम ज्यादा अच्छे कि टेस्ट ज्यादा अच्छे?
5: एग्जाम्स अच्छे हैं.
0: टेस्ट से ज्यादा एग्जाम्स अच्छे हैं, क्यों भाई?
5: एग्जाम में थोड़े कम इजी, मतलब थोड़े ज्यादा और थोड़े कम आते हैं, और टेस्ट में थोड़े बहुत ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन आते हैं.
0: अच्छा, टेस्ट में मुश्किल आते हैं, एग्जाम में इजी आते हैं. ओके, ठीक है.
7: दीदी अभी छोटी क्लास में है ना, इसलिए अभी इसको लग रहा है एग्जाम पसंद है. जब ये 9th-10th में आ जाएगा फिर बोलेगा मेरे को तो बिल्कुल एग्जाम्स पसंद नहीं है.
0: अच्छा, आप लोग जब छोटी क्लास में थे तो एग्जाम्स अच्छे लगते थे?
2: हाँ, तब अच्छे तो हमें भी अच्छे लगते थे.
0: अच्छा.
2: हाँ.
0: क्यों अच्छे लगते थे तब?
2: इसी की तरह क्वेश्चंस बहुत सिंपल होते थे और इजी होते थे.
7: एक लाइन का क्वेश्चन होता था और एक ही लाइन का आंसर होता था. अब एक लाइन का क्वेश्चन आता है और 10-15 लाइन का आंसर होता है.
5: दीदी मेरे 2 पेज के आंसर होते हैं फिर भी मुझे अच्छे लगते हैं एग्जाम.
4: एग्जाम इसीलिए अच्छे लगते थे, क्वेश्चन होता था और एक लाइन का आंसर होता था.
0: ओके, तो अगर क्वेश्चंस आपके छोटे होने लगे तो एग्जाम्स अच्छे लगेंगे, आंसर छोटा लिखना पड़े तो.
2: हाँ
7: हाँ, फिर ठीक है,
0: फिर ठीक है. ओके, तो इतने लंबे लंबे चीजें आपको याद करने में मुश्किल होता है कि लिखने में मुश्किल होता है?
2: दोनों ही.
7: लिखने में होता है, याद तो हो जाते हैं,
6: याद करने में भी पहले
7: हाँ बहुत देर हो रही है, टाइम जा रहा है, टाइम जा रहा है. 3 घंटे लगते हैं दीदी पूरे एग्जाम लिखने में, वो भी कम लगते हैं कि हाँ टाइम ना चला जाए.
6: 3 घंटे नहीं देते, वो आधे घंटे एक्स्ट्रा दे देते हैं, 2.5 घंटे का होता है पेपर.
5: टाइम देते हैं और ना ज्यादा क्वेश्चन आते हैं.
0: टाइम कम देते हैं, क्वेश्चन ज्यादा आते हैं.
5: लर्न करने में टाइम नहीं लगता, बस लिखने में ज्यादा टाइम लगता है.
4: और दीदी कुछ कुछ स्कूलों को तो आधा घंटा और मिलता है.

0: हम लोगों को तो आधा घंटा नहीं मिलता, जितना टाइम होता है उतना ही, बाकी मैं पेपर ले लेते हैं।
1: 3 घंटे का होता है ना एग्जाम?
2: नहीं दीदी, 2.5 घंटे का होता है।
1: 2.5 घंटे का एग्जाम होता है?
0: नहीं, हमारे
3: 3 घंटे का होता है।
1: 1.5 घंटे का? अच्छा, आपका आप छोटी क्लास में हो इसलिए।
2: तुम्हारे 2.5 घंटा देते हैं।
0: अलग है ना।
1: कितने मार्क्स का होता है 1.5 घंटे का एग्जाम? तो अगर 3 घंटे का होता है,
3: कई कई 1.5 के होता है, कई कई 2.5 के होते
1: हैं। 2.5 घंटे का जो एग्जाम होता है वो, मतलब 3 घंटे का जो होता है वो 100 मार्क्स का होता है।
0: हाँ, 2.5 घंटे का जो होता है वो 20 मार्क्स का पेपर होता है।
1: 20 मार्क्स का 2.5 घंटे?
0: 2.5 घंटे नहीं, उससे भी कम।
4: हमारा 3 घंटे का होता है, 80 मतलब
2: होता
4: है। जो
2: हाँ दीदी, हमारे भी
3: 20 मार्क्स के, उसके साथ एक और 50 मार्क्स का भी दे देते हैं।
1: नहीं तो आप जो 2.5 घंटे का पेपर बोल रहे हो अमीक्षा,
0: उसके साथ 50 मार्क्स का पेपर भी आता है।
1: 50 मार्क्स का तो होता होगा ना कम से कम।
2: और जो हमारे 2.5 घंटे देते हैं उसमें हमारे पूरा 80 नंबर का पेपर होता है।
1: अच्छा
5: दीदी, हमारे तो 2.5 घंटे के पेपर में 70 मार्क्स होते हैं।
1: ओके, तो सबके अलग अलग है, किसी के 70, किसी के 80 है ना, क्योंकि प्रैक्टिकल्स भी होते हैं साथ में। है ना,
5: ओरल क्वेश्चंस भी होते हैं,
1: वाइवा भी होता है, ओरल क्वेश्चंस होते हैं। बिल्कुल सही बात है। तो आप लोग को लगता है लंबा लिखना पड़ता है इसलिए तो टाइम लगता है।
6: हाँ दीदी, हमारे तो 1 ही घंटे का होता है।
1: 1 ही घंटे का होता है? ओके,
4: दीदी अभी छोटी क्लास है ना इसलिए।
1: बड़े हो जाएंगे तो फिर और लंबे लंबे एग्जाम्स होने लगेंगे, है ना।
6: एक पेपर में 1 घंटा देते हैं।
1: अच्छा, तो किसी को क्या टेंशन भी होती है एग्जाम्स में कि मतलब बहुत स्ट्रेस हो रहा है, ऐसा लगता है या फिर नहीं होता है कुछ भी?
5: थोड़ा सा ही स्ट्रेस होता
4: है। दीदी इतना स्ट्रेस होता है कि कैसे कैसे क्वेश्चन आएंगे। अब बड़ी क्लासेस होगी ना तो अब बाहर से क्वेश्चन आएंगे तो फिर अब थोड़ा वो टेंशन होती है, पहले नहीं होती थी।
1: ओके, मतलब अभी आप 10th में आए हो तो इसलिए लग रहा है आपको ऐसा?
4: हाँ जी।
1: ओके, तो और क्या लगता है?
0: और ऐसा लगता है कि हमने लर्न किया है वही आए क्वेश्चन, अगर दूसरे आ जाते हैं तो फिर वो याद नहीं होते।
1: अच्छा ओके,
2: और अगर दीदी एग्जाम्स में ऐसा हो जाए जो हम याद करी गए वो क्वेश्चन ना आए तो फिर हमारा और हो जाता है
4: दीदी,
2: दिमाग घूम जाता है।
4: याद करके जाए ना और फिर भी याद ना आए तो बहुत प्रेशर पड़ता है कि पढ़ा तो था बस एक लाइन याद नहीं आ रही।
1: हाँ, ये
4: जो मेन वर्ड होता है वही याद नहीं आता
5: और वही भूली हुई चीज फिर एग्जाम देने के बाद याद आ जाती है।
2: हाँ, इसका आंसर तो ये था।
1: फिर बड़ा बुरा लगता है ना, गुस्सा आता है।
5: हाँ।
4: 3 घंटा सोचते रहे फिर बाद में
1: याद आया अचानक से।
2: पर दीदी कोई कोई एग्जाम शीट लेके पता है उसे 10-15 मिनट तो निहारता है, देखो ये एग्जाम है
3: तो
2: इसका आंसर ये है, इसका आंसर ये।
1: रीडिंग टाइम होता है। ओके ठीक है,
5: हमें नहीं देते,
2: हमें नहीं देते रीडिंग टाइम।
1: किसी स्कूल में कुछ होता है,
0: हमारे बेल बजने तक हम लोगों को देते हैं, वो लोग फिर घंटी बजाते हैं।
1: ओके, तो आपको मतलब ये थोड़ा सा लगता है कि वो जो हमने पढ़ा है वही आ जाए और हम कुछ भूल ना जाए बस। ओके,
3: जो होते हैं उनको करवा देते हैं और हमको नहीं करवाते, फिर बाद में हमको बोलते हैं तुम्हारी गलती थी, तुम मेरे से आके पूछ लेते।
1: अच्छा, मतलब आपको पढ़ाए नहीं गए होते हैं वो सवाल,
3: वो दूसरे सेक्शन को पढ़ाए होते हैं।
1: अच्छा, दूसरे सेक्शन को पढ़ाए होते हैं।
0: और दीदी जब अपने जाते हैं तो टीचर्स बोलती क्लास में पढ़ाया था,
1: तो आपको दूसरे सेक्शन के क्वेश्चंस नहीं पता होते। कई बार होता है ऐसा, कभी कभी क्वेश्चंस हमको नहीं पता चलते एग्जाम में। और बाकी सबको तो ऐसा प्रॉब्लम नहीं होती ना?
5: नहीं, मेरे साथ भी हुई थी एक बार। हमारी क्लास तो एक ही है, सेक्शन एक ही है, लेकिन बच्चे अलग अलग क्लास में बैठे थे ना जब एग्जाम्स में, तब मैम ने एक ऐसा क्वेश्चन दे दिया था जो बताया नहीं था और उस वाली क्लास में बता दिया था, फिर हमको नहीं बताया।
0: हाँ, मेरे साथ भी हुआ था एक बार।
1: ओके,
0: पिछले साल है ना एक क्वेश्चन आया था, उसमें हमारी बुक में भी नहीं था, नोटबुक में भी नहीं, फिर मैम दूसरी क्लास में आके उनको बता के गए, हाँ ये वाला क्वेश्चन नहीं करवाया था, तो उनको आंसर बता दिया और हमको नहीं वापिस नहीं बताया।
1: ओके, इसलिए भी एग्जाम अच्छे नहीं लगते। ओके, अच्छा अगर मान लो हमारी राइटिंग प्रैक्टिस हो जाए, थोड़ा लिखने की दिक्कत ना हो, हमें फास्ट फास्ट लिखने लगे तो एग्जाम्स अच्छे लगने लगेंगे। तो मतलब बस बहुत लिखना पड़ता है, मेन प्रॉब्लम ये है।
2: हाँ,
1: याद करने में तो कोई दिक्कत नहीं है?
4: नहीं
2: नहीं,
1: पढ़ाई सारी कर ले तो सारा सिलेबस एक बार में?
2: पर दीदी एक दिन में सारा पूरे साल का पढ़ना पड़ता है।
4: अगर पहले रिवीजन कर रखी होती है ना तो फिर जल्दी,
0: तब कोई डिफिकल्टी नहीं होती, जल्दी से हो जाता है। और अगर एक ही दिन में पूरा नहीं हो पाता क्योंकि हमने पहले पढ़ा ही नहीं होता कुछ भी,
1: तो एक दिन में तो पूरे साल की पढ़ाई संभव ही नहीं है। पॉसिबल है क्या?
4: नहीं।
1: अच्छा, लास्ट मोमेंट कौन कौन तैयारी करता है, सच्ची सच्ची बताओ? सब लोग जो एग्जाम टाइम पे आके पढ़ते हैं, पहले से नहीं पढ़ते, कौन कौन करता है ऐसा?
5: मैं।
1: ऐसा करते हैं जब एग्जाम की छुट्टियां मिलती हैं तब पढ़ते हो और पहले से रिवाइज नहीं करते?
5: नहीं, मेरा ऐसा है कि जब मैम पढ़ाती है ना तब मुझे आधी चीजें तो तभी याद रह जाती है, बस एक बार रिवीजन कर लेती हूँ फिर एग्जाम देने चले जाती हूँ।
1: ओके, और अनुष्का क्या करती है?
6: हम तो छुट्टी मिलती है एग्जाम की तब पढ़ते हैं।
1: तब पढ़ते हो, उससे पहले नहीं रिवाइज करते?
6: नहीं।
1: ओके, और अमीक्षा?
7: मैं पहले ही रिवाइज करती हूँ।
1: पहले मतलब जब पढ़ाया जाता है तभी घर आके रिवाइज करते हो दोबारा से?
7: जो मतलब क्लास में पढ़ाते हैं ना रोज, मैं वो रोज आके रिवाइज करती हूँ।
1: ओके, और राघव?
8: मैं भी साथ साथ रिवाइज करता हूँ।
1: और
2: नहीं, मैं तो पहले से सिलेबस बना के रखती हूँ कि मैं इस दिन ये वाला चैप्टर पढ़ूंगी।
1: तो फिर वो मतलब वीकडेज में ही पढ़ते हो, जब आपके जब पढ़ाया जा रहा है तभी पढ़ते हो या फिर बाद के लिए बनाते हो?
2: एग्जाम्स के एक दो महीने पहले से सिलेबस बना के रखती हूँ मैं।
1: ओके, एग्जाम्स के एक दो महीने पहले से। और आप क्या करते हो शिवानशी?
4: मेरे चैप्टर्स पढ़ने होते हैं वो पढ़ लेते हैं, बस जिस दिन छुट्टी होती है लगे कि हाँ आज पढ़ने का मूड भी है चलो आज चैप्टर पढ़ लेते हैं।
2: नहीं तो अगर नहीं होता तो बिना पढ़ी जाती है बहन एग्जाम देने।
4: चैप्टर्स पढ़ने से ही सब हो जाता है क्योंकि नोटबुक्स में से कुछ आता ही नहीं है।
1: ओके,
7: अगर दीदी हम लोग चैप्टर भी पढ़ लेना तो भी हम लोग क्वेश्चन आंसर आराम से लिख सकते क्योंकि हमने चैप्टर पढ़ा हुआ है।
2: अगर सारे क्वेश्चन आंसर आते हैं चैप्टर में से ही तो आते हैं।
1: अगर कभी कभी पहले से पढ़े तो फिर आसान नहीं हो जाती एग्जाम टाइम में पढ़ाई?
7: दीदी आसान होती है ना,
1: है ना, थोड़ी तो आसान होती है पहले से।
5: हाँ,
4: दीदी होती है पर एंड मोमेंट तक ये लगता है कि मैंने ये पढ़ लिया, कहीं अगर मेरे को याद ना रहा तो ये क्या करूंगी वो क्या करूंगी, ये पढ़ लिया वो पढ़ लिया, बस इसी टेंशन में फिर वो हो जाता है,
1: थोड़ी टेंशन हो जाती।
5: ऐसा करते हैं ना हम कि पहले पढ़ते हैं तो कभी कभी बहुत सारी एग्जाम साथ में आ जाती है मैथ्स को लेके, तो उसमें ज्यादा प्रेशर बन जाता है फिर।
1: अच्छा, प्रेशर बनता है तो क्या लगता है आपको, अगर बहुत मतलब ऐसा लग रहा है स्ट्रेस जो आप लोग बोल रहे थे तो कुछ फील होता है आपको स्ट्रेस में?
5: हाँ, जल्दी जल्दी सारा सिलेबस खत्म करते हैं ऐसा लगता है।
1: ऐसा लगता है ना। हाँ। और कुछ परेशानी तो नहीं होती किसी को?
2: नहीं दीदी, क्योंकि हम पहले से पढ़ के रखते हैं, एक दिन में बुक खोलो तो आराम से पढ़ते
7: हैं। दीदी मेरा क्लास में सबसे पहले पेपर खत्म होता है।
4: दीदी लास्ट डे पे जब हम पढ़ते हैं तब पढ़ तो हम बुक्स के पास रहते हैं बस, हमारा दिमाग पूरी दुनिया में घूम रहा होता है, उधर क्या हो रहा होगा इधर क्या हो रहा होगा।
2: और ये सोचोगे नहीं जब हमारे सामने पेपर आता है ना तो हमें पता नहीं कहाँ कहाँ की बातें याद आ जाती है, क्वेश्चन की जगह आंसर की जगह।
4: क्वेश्चन के अलावा गाने याद आते हैं, जोक याद आते हैं, बस आंसर्स नहीं आते,
1: उसी वक्त सब कुछ याद आ रहा होता है ना।
4: हाँ जी।
1: ये तो हो सकता है। तो फिर क्या करते हो जब गाने याद आ रहे होते हैं तो?
2: दीदी एक बार गलती से क्या हुआ, गाना याद आ रहा तो मैंने पेपर में गाना ही लिख दिया।
1: सच्ची में?
2: सच्ची में दीदी, फिर मैंने ध्यान से पढ़ा, मैंने उसका इरेज किया फिर।
1: अच्छा चलो, मिटा तो दिया ना टाइम पे।
2: हाँ।
1: ओके,
2: अगर मैम उस टाइम चेकिंग पे आ रही थी, अगर मैम देखती ना मेरे को डांटती,
1: ये क्या लिख रहे हो।
2: हाँ।
4: मैम कहते क्यों आंसर्स कहाँ है, गाने हैं ये तो,
2: वही ना।
5: अच्छा मैम जब आंसर शीट पढ़ेगी तब पढ़ेगी नहीं गाएगी।
1: गाना लिखा तो गाना पड़ेगा। अच्छा ये बताओ, अगर अगर आपको अपने से एक छोटी वाली क्लास को बोला जाए कि आपको उनको ये बताना है कि आप एग्जाम टाइम को इजी कैसे बना सकते हो, तो उनको क्या बोलोगे, क्या टिप्स दोगे उनको? आपसे एक छोटी वाली क्लास है, जैसे जिस क्लास को आप लोगों ने पास कर लिया है, अभी आपने जैसे टेंथ में आ गए हो, नाइन्थ पास कर लिए है ना, सिक्स्थ में आ गए हो, फिफ्थ पास कर लिए है, तो वो क्लास में जाके आपको बोला जाए कि इन बच्चों को बताओ, क्योंकि आप तो बड़े हो गए उससे, कि वो लोग अपने एग्जाम्स को इजी कैसे बनाएं या एग्जाम टाइम को अच्छा कैसे बनाएं, तो उनको क्या टिप्स दोगे?
5: जब मैम चैप्टर पढ़ाए तब एकदम ध्यान से पढ़ना चाहिए क्योंकि ना वही याद रखेंगे तभी वो एग्जाम से याद आ पाएगा।
1: ओके, और अनुष्का क्या बोल रही है, बोलो बोलो लाइन से, सब लोग बोलो, क्या टिप दोगे आप अपने क्लास जो आपने पास कर लिया वो बच्चों को एग्जाम आसान बनाने के लिए?
6: वो लर्न कर देंगे तो उनके लिए तो आसान ही हो जाएगा।
1: ओके,
6: और उन लोगों को एक दिन पहले याद नहीं करना चाहिए, एक दिन पहले लर्न नहीं करना चाहिए, अगर मैम पढ़ा रही हो तो ध्यान से सुन के फिर घर पे आके उसको रिवाइज करना चाहिए, इससे हमारा इजी हो जाएगा लर्न।
1: ओके, और एग्जाम टाइम को फन और अच्छा कैसे बनाया जा सकता है?
7: जब मैम पढ़ा रहे होते हैं तो हमको अच्छी तरह ध्यान रखना चाहिए कि क्या पढ़ा रहे हैं।
1: ओके ठीक है, मैम पढ़ा रहे हैं तो उस वक्त ध्यान देना चाहिए।
2: जब मैम पढ़ा रहे उस टाइम तो ध्यान देना ही चाहिए, पर आपको उससे पहले ध्यान रखना चाहिए कि हाँ मेरे को ये इस बार ये चैप्टर पढ़ना है तो पढ़ना है।
1: ओके,
2: पहले से ही मतलब पढ़ के रखनी चाहिए चैप्टर, तो जब मैम पढ़ाएगी तो उसको ध्यान से समझ सकते हैं।
1: अच्छा, उससे और पहले से पढ़ लेना चाहिए। ओके,
4: जब भी कोई ऐसा कोई मेन पॉइंट दिखे कि हाँ इस पे कोई क्वेश्चन बन सकता है तो उसको अंडरलाइन करना चाहिए, फिर एग्जाम टाइम पे इजी होगा कि पूरा चैप्टर एकदम नहीं पढ़ना पड़ेगा, मेन मेन पॉइंट्स पढ़ लेने चाहिए।
2: तो उसके बाद क्या होगा, जब एग्जाम होगी तो उससे एक दिन पहले पढ़ने में आपको ज्यादा लगेगा, तो फिर क्या होगा, आप अच्छे से पढ़ सकते हो।
1: ठीक है, तो पहले से तैयारी तो कर ही सकते हैं, ये बात तो आप सबने बोली। और एग्जाम टाइम पे उस दौरान क्या कर सकते हो कि उसमें थोड़ा लाइट फील करें हम, उस टाइम पे क्या कर सकते हो? ऐसा मान लो एग्जाम शुरू हो गए आपके,
4: एक ही दिन में पूरा 3-4 घंटे लगातार ना पढ़ें, बीच बीच में रेस्ट लें ताकि दिमाग भी शांति से बैठ के पढ़ाई कर सके।
1: okay. कहीं
4: पूरी दुनिया ना घूमे।
1: ओके okay. पूरी दुनिया नहीं घूम के थोड़ा थोड़ा रेस्ट लेना है। ओके okay. और क्या कर सकते हैं एग्जाम टाइम को लाइट बनाने के लिए, अच्छा बनाने के लिए? आप लोग क्या करते हो जब बहुत स्ट्रेस होता है एग्जाम टाइम में, क्या करते हो?
4: जब कोई क्वेश्चन याद ना हो रहा हो तो उसको एक मतलब गाने के टाइप में बोल के लर्न करना चाहिए ताकि जल्दी जल्दी याद हो जाए।
1: हाँ, ये किया जा सकता है, उसको गाने की तरह बोल के याद करो, गाने तो याद रहते हैं ना, है ना?
2: हाँ दीदी,
4: जितने क्वेश्चन याद नहीं रहते उतने गाने याद रहते हैं,
1: तो गाने की तरह उसको याद कर सकते हैं।
2: जब गाने याद नहीं होते, हम गाने आते ही नहीं है ना, पेपर के टाइम पे पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं वो दिमाग में,
1: ब्रेन भी उस समय परेशान करता है। और
2: कभी भी दीदी जोक ला देता है, बीच में चुटकुला ला देता है, कुछ भी
0: मुझे याद क्यों नहीं आया, तो वो हमको आंसर्स की जगह एग्जाम में याद आएगा गाना।
1: ऐसा हो जाता है ना, आपको भी होता है ऐसा? नहीं होता, राघव को नहीं होता। और कैसे फन बना सकते हैं, इजी बना सकते हैं, लाइट बना सकते हैं एग्जाम टाइम को, कोई आइडिया है आप लोग के पास? क्या करते हो आप लोग एग्जाम टाइम में, कैसा डे का शेड्यूल रहता है आपका?
5: मैं तो पहले पढ़ती हूँ, फिर जैसे शिवांशी ने बताया, फिर रेस्ट लेती हूँ। मैं तो खेलते खेलते भी एग्जाम्स के क्वेश्चन याद करती हूँ।
1: ओके खेलते खेलते भी याद कर सकते हैं, ठीक है। और
2: दीदी अगर मैं कभी कभी याद नहीं करती, पता है मेरा दिमाग कैसे चलता है, सुबह उठ के याद करती हूँ, सुबह सुबह। और ये टीचर भी बोलती है हमारी, सुबह सुबह उठ के याद करो तो आपको जल्दी याद होता है, तो मेरे को ऐसे ही याद होता है ज्यादा।
1: हाँ ये कर सकते हैं ना, अर्ली मॉर्निंग उठ सकते हैं, जल्दी उठने से जल्दी याद हो जाता है।
4: रात के 2 घंटे और सुबह का 1/2 घंटा बराबर होता है
1: जी, कहा जाता है कि सुबह आपको जल्दी याद हो जाता है। किसी ने ट्राई करके देखा है सुबह उठ के पढ़ने?
2: हाँ, दीदी
4: बहुत हाँ। ट्राई,
2: इस एग्जाम में मैंने यही किया था।
1: कितने बजे उठते हो
2: दीदी? सुबह 4।
1: ओके आप लोग भी सुबह उठ के पढ़ते हो जल्दी?
5: हाँ
4: जी।
1: सब लोग?
5: हाँ।
1: जबरदस्ती उठाया जाता है कि खुद उठ जाते?
2: नहीं, खुद उठते हैं
4: दीदी। एक बार तो मैं पढ़ने के लिए उठी थी, ये पढ़ने लगी ना तो ऐसा लगा लेट के पढ़ लेती हूँ, फिर लेट के पढ़ने लगी, फिर सो गई।
1: हाँ
4: फिर स्कूल के टाइम पे उठी सीधा।
1: हाँ ये होता है, अगर सोचो कि लेट के थोड़ा पढ़ लेते हैं तो फिर नींद आ जाती है ना। ठीक है, लेकिन आप लोगों ने अच्छे तरीके बताए, थोड़ा सा ब्रेक लेना। और खेलते हो आप लोग एग्जाम टाइम पे या फिर खेलना बिल्कुल बंद रहता है?
4: नहीं थी, खेलते तो है
2: थोड़ा थोड़ा,
6: खेल खेल में दीदी लर्न करता है, टीचर टीचर बन के।
1: हाँ ये भी अच्छा आइडिया
5: दीदी। मैं तो अपनी पेंसिल वाली कठपुतली ले जाती।
1: ओके
4: दीदी, अगर एग्जाम में टाइम पास नहीं रहता है, छोटे छोटे पॉपिट्स होते हैं उनको किट में रखती हूँ, ताकि अगर थोड़ा माइंड को रेस्ट देना हो तो पॉप पॉप पॉप करके माइंड फ्रेश हो जाए।
1: ओके तो आप लोग पॉपिट्स लेके जाते हैं छोटे छोटे?
5: हाँ।
1: ओके ठीक है, बड़े क्रिएटिव आइडियाज हैं आप लोग के पास। तो सुबह जल्दी उठ के पढ़ना अच्छा है, थोड़ा खेलना बीच में अच्छा है, और छोटे छोटे पॉपिट्स ले जा सकते हो ताकि एकदम से अगर टेंशन हो जाए, याद नहीं आ रहा, तो उसकी तरफ ध्यान जाए और फिर उसके बाद वापस आप रिफ्रेश हो जाओ। ओके वेरी नाइस।
4: बस टीचर के सामने वो नहीं निकालते, नहीं तो टीचर ले लेगी ना फिर।
1: फिर डांट पड़ेगी,
2: टीचर उल्टा सुनेगी, कल से कल अपने पापा को लेके आना, मम्मी को लेके आना, डांट पड़ती है फिर।
5: दीदी इसलिए तो मैं पेंसिल में घुसा के जाती हूँ, पेंसिल निकालती हूँ तो उनको, वो तो ऊपर से देखने आते, वाह पपेट वाली पेंसिल खुद बनाई है, कहाँ से लाई है।
1: हाँ पपेट वाली पेंसिल लेके जाते हो आप?
5: हाँ।
1: आजकल पेंसिल भी बड़ी अच्छी अच्छी आती है ना, क्रिएटिव क्रिएटिव, और बना
5: हाँ।
1: भी तो सकते हैं घर पे अगर नहीं खरीद रहे तो।
5: हाँ।
1: है ना, बना भी सकते हैं, कुछ इंटरेस्टिंग बना सकते हैं। ओके तो इतने सारे तो आइडियाज दे दिए आपने, मुझे लगता है इतने आइडियाज के साथ तो फिर एग्जाम टाइम आपको कैसे
0: दीदी, मैं अच्छा तो नहीं जब लगेगा। विनर लेके जाता हूँ मैं कभी कभी, मैं शिवांशी की पॉकेट में डाल देता हूँ और जाते वक्त वैन में घुमाता हूँ।
1: अपनी पॉकेट में क्यों नहीं डालते हो?
0: ताकि मुझे डांटना पड़े,
1: ताकि शिवांशी को डांट पड़े।
2: नहीं सोचोगे नहीं, जब हम एग्जाम सेंटर में बैठे होते
1: हाँ, पहले
0: वो बहुत सारे टॉयज लेके जाती है, इसीलिए मतलब वो अगर रखेगी तो मैम को शक तो नहीं जाएगा कि ये किसी और का है।
4: दीदी गर्ल्स के इतने चेक भी नहीं होते ना, इसलिए इसका एडवांटेज उठा रहे।
1: बड़ी बहन होने के फायदे उठा रहे हो आप।
2: अगर मान लो मैं एग्जाम सेंटर में बैठी हूँ जहाँ पे एग्जाम दे, अगर उससे आगे मेरी कोई क्लास की लड़की बैठी है या फिर कोई दूसरी क्लास की लड़की बैठी है, मेरी फ्रेंड है, मतलब हम क्या करते हैं, अगर टीचर बाहर गई होती है या फिर टीचर का ध्यान कहीं और होता है ना, हम स्टोन पेपर सीजर खेलते हैं
1: एग्जाम में। अरे बाप रे, तो डर नहीं लगता मेरा टाइम कम हो जाएगा एग्जाम में लिखने का?
2: जब पूरा करके बैठते हैं और टाइम पास नहीं होता।
1: अच्छा, पूरा करने के बाद?
2: हाँ। और अगर पूरा करने के बाद में ये इसका आंसर ये याद आता है तो फिर उसे कर देते हैं।
1: ओके।
4: दीदी हम तो पेपर करके आराम से सो जाते हैं अगर टाइम बचा होता है तो।
2: नींद भी आती है
4: दीदी? नींद आ जाती है, फिर टीचर आग उठाती है, बेटा पेपर दे दो, बहुत सो लिया।
2: एक दिन तो मुझे नींद ही आ गई थी इतनी जोर की, क्योंकि घर पे पापा ने जबरदस्ती उठाया था, मन ही नहीं कर रहा था, छोड़ो ना एग्जाम क्या देना है, नींद आ रही है उसको पूरा करो पहले।
1: पर पेपर देना तो जरूरी है इसलिए पापा ने उठा दिया होगा।
6: दीदी मुझे तो कभी कभी नहीं, मुझे रोज ही नींद आती है।
1: एग्जाम में जाके सोते नहीं जाते हो?
6: नहीं, मैं एग्जाम दे के फिर सोती हूँ।
1: फिर सो जाते हो। अनुष्का, अनुष्का को नींद आती है एग्जाम में? आती है। फिर कैसे जगाते हो खुद को?
9: जग जाते मैम आती है ऐसे ही, जब नींद नींद लगने वाली तब तक तो मैम ही आ जाती है।
1: मैम आ जाती है तो जगना ही पड़ता है फिर।
2: नहीं, मैम खुद बोलती है बेटा पेपर हो गया, सो जा, जा सो जा सो जा,
1: होने के बाद।
2: वैसे बोलते
1: होने के पहले नहीं।
0: अगर दीदी एक बार ना मैं स्कूल में था, मेरा पेपर 10 मिनट में ही खत्म हो गया था।
1: 10 मिनट में? कितने मार्क्स का पेपर था?
0: 50
4: होगा दीदी।
1: 50 मार्क्स का पेपर 10 मिनट में खत्म कर दिया? अच्छा, वो MCQ वाला था क्या? फिर 10 मिनट में कैसे खत्म कर दिया?
0: क्वेश्चन आंसर्स वाला ही था।
1: तो आपने 1 वर्ड लिखना था?
0: नहीं।
1: तो फिर भी 10 मिनट में खत्म कर दिया? बाप रे, ये स्किल तो सीखनी पड़ेगी, ये वाली तो आती नहीं है किसी को, 10 मिनट में पेपर खत्म करने वाली।
2: दीदी खत्म करते तो जल्दी भी खत्म किया, 1.5 घंटा। 10 मिनट में कौन पेपर खत्म करता?
0: ना जो मेरे मतलब मेरे स्केच थे, जो मेरे स्टेशनरी आइटम था, उससे मैंने एक एरोप्लेन बनाया था, वो मतलब मैं फिर उससे ही खेल रहा था
1: बाकी पेपर में ना।
5: लेकिन दीदी जब जल्दी जल्दी पेपर करते है ना, उसमें गलत होने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं।
1: हाँ, पेपर को ध्यान से करना चाहिए ना, सारे क्वेश्चंस पढ़ के।
6: ना दीदी हम लोग तो ध्यान से करते हैं।
2: क्वेश्चन सोचोगी नहीं, मैं एक क्वेश्चन को लिखने में 10-15 मिनट लगाती, चाहे वो छोटे उसका क्यों ना हो, अच्छे से उसकी राइटिंग निकालते, अच्छे से उसको याद करके लिखती।
0: दीदी एक बार क्या हुआ, मुझे जब मैं स्टार्टिंग में आया ना तो मुझे पता नहीं था कि रीडिंग टाइम भी होता है, तो मैं रीडिंग टाइम में ही सब लिख दिया मैंने, फर्स्ट पेज का, सेकंड पेज आधा लिख दिया, और रीडिंग टाइम तब खत्म हुआ। मैम ने बोला ये तो सारा आपको हुआ कैसे? मैंने बोला मैम एग्जाम तो पहले ही स्टार्ट हो गया था ना।
1: आपको पता नहीं था
4: दीदी? हम 10 मिनट
0: फिर मैम ने मुझे पूरा इरेज करवा के वापस लिखवाया।
1: ओहो, कोई बात नहीं, पहली बार था ना, होता है कभी कभी।
4: दीदी 10 मिनट में तो करने को हम भी कर सकते हैं, फिर सोचने की बात है 3 घंटे क्यों दिए, फिर आराम आराम से ही करो, क्यों इतना दिमाग को स्ट्रेस दिया?
1: हाँ, क्वेश्चन पढ़ो, फिर क्वेश्चन में आंसर नंबर आपने सही डाला है वो ठीक से लिखो।
6: और दीदी और है ना, हम लोग अगर हेड डाउन कर लेते हैं ना सोने जाते हैं, तो मैम बोलती है पेपर हो गया, हम बोलते हैं हो गया, तो मैम चेक करती है सारे क्वेश्चन आंसर लिखे हैं ना, तभी हमें सोने देती है, नहीं तो बोलती इसका नहीं आ रहा लिख।
1: तो छोड़ना नहीं चाहिए, जितना समझ में आए वो लिखना चाहिए, है ना?
0: अगर अपा लिखते हैं तो मैम आधा तो मार्क्स देंगे।
1: हाँ, कुछ तो मिलेगा ना नंबर, तो एकदम छोड़ना नहीं चाहिए।
2: आप आधे नंबर से पास क्यों ना बाकी हो तो कुछ मिल जाते हैं।
1: हाँ, थोड़ा तो देखो आपने पढ़ा ही होगा चैप्टर, कुछ तो याद होता ही होगा, तो उससे संबंधित जो याद हो लिख दो। चलिए, बहुत सारी बातें आप लोगों ने की है, मुझे लगता है एग्जाम को इजी बनाने के तरीके भी आप लोगों के खुद के ही पास हैं, किसी को पूछने की जरूरत ही नहीं है। तो इसीलिए और क्रिएटिव क्रिएटिव तरीके निकालना इस साल, जिस भी आप क्लास में हो, एक और क्रिएटिव तरीका सब लोग निकालना एग्जाम टाइम को और आसान करने के लिए, पढ़ाई को और अच्छा बनाने के लिए क्रिएटिव तरीका, ठीक है? फिर बताना कि कौन सा तरीका आप लोगों ने निकाला है थोड़े समय बाद, ठीक है? चलो फिलहाल हमारे दोस्तों को करते हैं गुड बाय, और जिनके भी एग्जाम या टेस्ट आने वाले हैं या इस साल जब भी होंगे उसके लिए अभी से सबको ऑल द वेरी बेस्ट। तब तक के लिए रेडियो मधुबन से जुड़े रहिए, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय बाय।

0: goes to Miss Surekha.
1: अरे ये तो देख भी नहीं सकती, फिर भी उसको अवार्ड मिल गया।
0: प्लीज कम ऑन द स्टेज मिस सुरेखा, दो शब्द हमारे बीच रखें। आपको कैसा लग रहा है?
2: मैंने मन की आंखों से देखा है इस दुनिया को। मेरी आंखों में रोशनी ना सही, परंतु जीवन में उजाला ही उजाला है। दिव्यांगता मेरी पहचान नहीं, मेरी काबिलियत ही मेरी पहचान है।
3: रेडियो मधुबन की कोशिश है दिव्यांग लोगों के प्रति हो सही दृष्टिकोण, काबिलियत से बनाए अपनी पहचान, पिछड़ी सोच का खत्म करे नामो निशान।
4: मानवीय हो मानसिकता, सुखद हो व्यवहार, मन की आंखों से देखिए सुंदर ये संसार।

0: नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस विशेष कार्यक्रम में। आशा करूंगा आप बिल्कुल हेल्दी वेल्दी और हैप्पी होंगे। आइए आज हम लोग बात करेंगे विशेष बाल मन पर, यानी बाल संसार पर। जी हाँ, बच्चों का एक यूनिक संसार होता है और हम सभी भी बच्चों के संसार को देखकर खुश होते हैं, मुस्कुराते हैं, और कभी हम भी इसी तरह थे ये हमें याद करके बेहद सुकून महसूस होता है। तो आइए आज के इस कार्यक्रम में, जिसका नाम है बाल संसार, इस कार्यक्रम के हमारे विशेष मेहमान जिन्होंने इस कार्यक्रम की कल्पना की है, अजय शुक्ला जी, एजुकेशनिस्ट शिक्षाविद हमारे साथ हैं और काफ़ी किताबें भी लिखे हैं और लोगों को जो है अपने मन की संवेदनाओं को समझने में मदद करते हैं। तो आज उनका मन हुआ कि हम बाल मन के बारे में समझते हैं, ताकि शिक्षाविद होने के नाते बच्चों के साथ जुड़कर, या जो बच्चे पढ़ रहे हैं, स्कूली एजुकेशन उनको मिल रहा है, चाहे पहली क्लास में हो, दूसरी क्लास में हो, या इवन आजकल तो किंडर केजी है ना, ये सारी चीज़ें भी चलती हैं। तो बच्चों को जो है शिक्षित करने के लिए, जैसे ही पैदा होता है बच्चा सीखना शुरू कर देता है, हम सिखाना शुरू कर देते हैं और उसके हर एक बदलाव को हम एंजॉय करते हैं और खुशी फील करते हैं। तो आइए आपकी खुशी को बढ़ाने के लिए अजय जी से मैं स्वागत करना चाहूँगा। अजय जी, बहुत बहुत स्वागत है बाल संसार इस कार्यक्रम में।
1: बहुत बहुत धन्यवाद परमादरणीय भाई जी।
0: कैसे हैं आप?
1: बिल्कुल कुशल मंगल, आनंद पूर्वक हूँ।
0: बाल संसार इस प्रोग्राम में आप बच्चों के मन के बारे में बात करने वाले हैं, तो ऐसा क्यों आपने सोचा, बाल मनोविज्ञान के बारे में आप क्यों सोच रहे हैं? बड़ों का मनोविज्ञान भी तो सोचना पड़ेगा आपको।
1: बहुत अच्छी विषय वस्तु है, और चूंकि आपसे कई बार विभिन्न विषयों पर चर्चा होती रहती है और मानवीय संवेदनाओं को लेके आपकी मनस्थिति काफ़ी संजीदगी भरी होती है, संचेतना से युक्त होती है, चिंतनशील होती है, तो ये सब बातें भी कई बार एक अच्छे वातावरण को जन्म देती हैं। और जैसा भी आपने कहा भी कि क्यों हम बाल मन की ही शुरुआत करना चाहते हैं, क्यों नहीं हम बड़ों के ऊपर बात करते हैं, तो देखिए बड़ों के साथ में एक मैच्योरिटी वाला पॉइंट होता है भाई जी, और ऐसी स्थिति में क्या होता है कि बड़े तो अपने समाधान के लिए थोड़ा सा इनिशिएटिव लेके समाधान की स्थिति में चले जाते हैं, लेकिन बच्चे होते हैं वो हेजिटेट करते हैं, थोड़ा सा उनको संकोच होता है, और जो इनिशिएटिव पावर होती है वो उतनी नहीं होने के कारण वो कई बार अपने प्रश्नों के साथ में मन महसूस के रह जाते हैं। और मनोविज्ञान ये कहता है कि केवल देखने में या ऑब्जर्वेशन करने में या परीक्षण करने में हमको लगता है कि हम बाल मनोविज्ञान की बात कर रहे हैं, जबकि एक सामान्य मनुष्य को हम अगर संपूर्ण उसकी परिकल्पना को देखने का प्रयास करें तो एक सामान्य इंसान के अंदर बाल मन हमेशा मौजूद रहता है। वो मैच्योरिटी के लेवल पर या ईगो स्टेट के लेवल पर हम देखें तो चाइल्ड ईगो हो सकता है, एडल्ट ईगो हो सकता है, तो ये चाइल्ड ईगो और एडल्ट ईगो दोनों ही मिलके जीवन को गतिशील करने का प्रयास करते हैं, और ऐसे में हम केवल बाल मन की बात नहीं कर रहे बल्कि बाल मन के माध्यम से बड़ों के अंदर भी खुशियों को समेटने का एक माध्यम हम देने का प्रयास कर रहे हैं। उदाहरण के लिए हम कहें कि बच्चे अगर प्लेग्राउंड में खेल रहे हैं या सुबह सुबह बड़े अगर घूमने जा रहे हैं और उस समय यूनिफॉर्म में बच्चों को जब देखते हैं वो और उनकी खुशी को देखते हैं, स्कूल चलने के उनके जो एक आनंद के परिवेश को देखते हैं, तो खुश होते हैं कि काश ये हमारा जीवन होता और हमारा था भी पहले जीवन। जी
0: बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने बताया, और आशा करूंगा कि हमारे इस कार्यक्रम के माध्यम से जिस पर हम बात कर रहे हैं बाल संसार के बारे में, बच्चों के मनोविज्ञान के बारे में बातें करेंगे, लेकिन मुझे लगता है कि जितना हम बच्चों के मनोविज्ञान को समझेंगे उतना हम अपने मनोविज्ञान को या अपने मन को भी हम ठीक कर सकते हैं, या अपने मन को भी बेहद सुंदर और सुखद अनुभूति करा सकते हैं। तो इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं, और सबसे पहले तो मैं चाहूँगा कि बच्चों का मन जो है, ऐसे कहा जाता है कि भाई बच्चे तो भगवान के रूप है, मासूमियत है उनमें, कोमलता है उनमें, शीतलता है, लेकिन आजकल देखा गया कि बहुत सारे बच्चे ऐसे उधम भी हो जाते हैं, तो ये इसको कैसे हम लोग समझें?
1: बहुत अच्छी बात आपने कहा, और ये बिल्कुल सही है कि पहले ज़माने में जब आप लोगों के स्वरूप को हम देखते थे या समझते थे तो बड़े बच्चों को बड़े अच्छे ढंग से आकर्षित कर लेते थे, और बच्चों को वो चेष्टा करते थे कि हम गोद में ले लें, उनको स्नेह प्यार दें, और बच्चे बड़े सरल तरीके से उनके पास में आ भी जाते थे। अभी जो नई पीढ़ी हमारी आ रही है उसमें देखने में आ रहा है कि वो बालमन तो कहीं गुम हो गया है, कुछ मैच्योरिटी जल्दी डेवलप हो गई है, और वो मैच्योरिटी डेवलपमेंट होने के कई कारण हो सकते हैं। उदाहरण के लिए मैं एक बात कहूँ कि एक प्लेग्राउंड में मैं मूव कर रहा हूँ और एक बच्चा है जो अपने पिता के साथ जाड़े के समय में क्रिकेट खेलने का प्रयास कर रहा है, कई बार वो वॉलीबॉल खेलने में अपने आप को जोड़ने का प्रयास कर रहा है, तो उस स्थिति में ये पूरी प्लेइंग मोड एक साथ नहीं होता है। तो बच्चे ने क्या प्रयास किया कि अपने पिता के पास में वो एक बॉल है और वो गोल करने का प्रयास कर रहा है, लेकिन पिता ने हर बार उस बॉल को रोक लिया। लेकिन पिता ने उस बच्चे की तरफ जब बॉल लेके गया तो उस समय पिता सफल हो गए गोल करने में। तो बच्चे ने एकदम झुंझलाते हुए कहा कि पिताजी ये बॉल है, अब कल से मैं ग्राउंड में नहीं आने वाला हूँ। तो वहाँ पर उनके अंदर एक विद्रोह पैदा हुआ कि मेरा बच्चा है, इसको मैं तैयार करके लेके आता हूँ, उसको सिखाने का प्रयास कर रहा हूँ, लेकिन ये मेरा विरोध क्यों कर रहे हैं। तो बच्चे के पिता से मैंने सहज रूप से कहा, चूंकि मैं इस विषय पर कार्य करता हूँ तो आपसे विनम्र निवेदन है कि एक दो गोल इस बच्चे के द्वारा जब ये बच्चा करने आता है तो हो जाने दें आप। तो कहते हैं कि हो जाने दें, इसका मतलब हमने बोला उस मन को वो नम होना चाहता है। अच्छा, लेकिन अच्छा, हम उस मन को मन पर ही रोक देंगे और उसको बार बार ये बताने की चेष्टा करेंगे कि आपको बहुत मेहनत लगेगी, तो वो हार की फीलिंग करेगा। तो थोड़ा सा उसको जीत का स्वाद आप कराइए और आप देखेंगे कि ये बच्चा फिर अभी तो जाड़े में आ रहा है, आपके साथ 12 महीने ये जुड़ने का प्रयास करेगा। तो इस मन के प्रति थोड़ा सा संवेदनशील होने की जरूरत है। इसको एकदम डिनाई मत करिए, इसको एकदम दुख मत प्रदान करिए। दुख प्रदान करना आप चाहते नहीं है, अनजाने में हो रहा है आपसे, आपको लगता है कि बच्चा गोल कर रहा है और मैं तो इसको रोक लूंगा, लेकिन वो बच्चा तो शारीरिक और मानसिक रूप से सक्षम ही नहीं है कि उस गोल को रोक पाए आप जब उसको गोल करने जाएंगे। तो हमें देखना पड़ेगा कि आपके और बच्चे के बीच में जो संवाद है, जो स्नेह है, प्यार है, उसमें कठोरता व्याप्त नहीं हो। जी,
0: तो बच्चों के साथ जब भी जुड़े तो कोमलता से, सरलता से जुड़े, ताकि बच्चा जो है अपने आप को अच्छा महसूस करे और वो आगे बढ़ने का जो खुशी है उसको मिले और उस खुशी से वो और आगे बढ़ सकेगा और उसमें डेवलपमेंट शुरू हो जाएगा। तो बहुत ही अच्छा आपने ये भाव बताया और मुझे लगता है कि इस तरह के भावनाओं को अगर हम लोग समझे तो जीवन का जो गहरा असर है वो हम लोग एक संवेदनाओं के साथ जुड़ने के लिए हमें कोमलता की ज़रूरत है, मासूमियत की ज़रूरत है, और उस अबोधपन में कुछ सीखने सिखाने का जो भाव है वो शायद आपको बहुत जल्दी जो है महसूस होगा। और आप उसे डांट डपाट के अगर सिखाना शुरू करेंगे, हो सकता है कि बच्चा कर भी ले, लेकिन वो कहीं ना कहीं उसकी जो सीखने की जो मासूमियत था जी, जो जिज्ञासा थी, वो शायद मर ना जाए। ये बहुत अच्छी बात आपने बताया और मुझे लगता है कि हम सभी को इस बात का ध्यान रखना है। और आइए आगे बढ़ते हैं और आप सभी को ले चलते हैं एक बहुत ही प्यारा संगीत की तरफ। आप सुना है रिजवान 107.8 FM पर बाल संसार। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

0: नमस्कार, ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। बहुत ही प्यारा सा गीत आपने सुना, बच्चे मन के सच्चे हैं। तो आइए इस गीत के साथ ही मुझे लगता है कि आप बाल संसार के आगे की कहानी को सुनने के लिए आप बिल्कुल जिज्ञासा आपके अंदर बनी होगी, क्योंकि हम भी कभी बच्चे थे, है ना। तो बच्चों के संसार को देखकर या उनकी भावनाओं को सोचकर हमें भी खुशी होती है और उनके साथ खेलना, उनके साथ बातें करना भी अच्छा लगता है। तो आइए आगे बढ़ते हैं बाल संसार इस कार्यक्रम में और अजय जी से फिर से बात करते हैं। अजय जी को आपके साथ जोड़ना चाहूँगा। अजय जी, फिर से एक बार स्वागत है और बताइए कि किस तरह से बच्चों के साथ हम लोग का जो एक कनेक्टिविटी है वो बड़ा ही यूनिक है। तो मैं चाहूँगा कि आप जैसे बच्चों में लोग भगवान को देखते हैं या बच्चे मन के सच्चे हैं, इस तरह की चीज़ें जो है बच्चों के साथ जुड़ी गई है, तो ये इसकी भावनाएं क्या हैं, ये कैसे संभव है और उन चीज़ों को क्यों भगवान के साथ जोड़ा गया?
1: बहुत अच्छी बात आपने कहा और निश्चित तौर पर जब ये गीत सुनते हैं तो ऐसा लगता है कि पूरा जीवन बचपन के सानिध्य में हो गया है और वही फीलिंग्स, वही भावनाओं के साथ में खेलना, अपने भावों को सहज करना, सरल करना आसान हो जाता है, क्योंकि मन और या अंतर मन से जब ये बात निकलती है कि बच्चे मन के सच्चे, सारी जक्की आँख के तारे वो नन्हे फूल हैं जो भगवान को लगते प्यारे, तो ये ईश्वर के साथ में जुड़ने का जो भाव है गीत में वो इस बात का संकेत है कि बच्चों के पास में एक सहज मन और सच्चाई से युक्त हुआ क्रिएशन होता है और वो जब निष्पक्षता के फ्रेमवर्क में होते हैं तो कई बार बड़े भी जब किसी उलझन में हो जाते हैं तो उस स्थिति में बच्चों से पूछते हैं कि अच्छा बेटा ये बताओ कि इस समस्या का हल क्या है, और बच्चे जब निष्पक्षता से उस बात के समाधान के लिए कोशिश करते हैं तो कई बार हमारा मन खिल उठता है, है कि नहीं जो आज बात निकल के आई है वो निष्पक्ष है। तो ये जो निष्पक्षता है, सच्चाई से युक्त जो बात है, यही बड़ों के लिए आकर्षण का केंद्र बन जाता है और बड़ों को जब अपनी इथिकल वैल्यूज में स्वयं को कन्वर्ट करना होता है तो फिर उन्हें याद आता है कि ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, थी भी है भी और भविष्य में भी रहेगी। तो वो जो ईमानदारी पूर्ण व्यवहार है या छल कपट रहित जो बिहेवियर है, निस्वार्थता की जो फीलिंग है, उनके प्रति जो अटैचमेंट क्रिएट करता है या हमें लगता है कि उनके साथ जुड़ जाना चाहिए, घुल मिल जाना चाहिए, खेलना चाहिए, या वो कि अगर प्ले मोड में है तो हम भले ही बड़े हो गए हैं लेकिन मन से तो एक बार हम उनके साथ में जुड़ ही जाते हैं और ये फील करते हैं कि वाकई में जो बच्चों का संसार है, बच्चों का जीवन है, ये जो नव जीवन है और नव जो कलियां हमारे सर में खिल रही हैं या बाल हृदय की गहराइयों में समाज की भावी और श्रेष्ठतम कल्पनाएँ छिपी हुई हैं, तो उन्हें भी हम पुनः जीने का प्रयास करते हैं या जीना चाहते हैं। जी
0: बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही अच्छी बात आपने बताया है और आशा करूंगा हमारे सभी श्रोताओं को भी अच्छा लग रहा है। चलिए आगे बढ़ते हुए मैं चाहूंगा कि कोई बच्चे बहुत ज़्यादा शरारती है तो उनको समझाने के लिए बच्चों को कई बार माता पिता जो है डांट डपाट करते हैं, नहीं सुनता है तो मार भी देते हैं, तो ऐसे बच्चों के साथ कैसे ट्रीट करें, आप क्या सोचते हैं?
1: बड़ी अच्छी पहल आप करते हैं कि नहीं प्रश्नों के माध्यम से, और यहाँ भी मैं देख रहा हूँ कि आपने एक बात रखी कि कई बच्चे थोड़ा सा शरारती हैं, उधम करते हैं, मेरे सामने भी ऐसे बहुत सारे केस आते हैं, तो मैं बड़ों से ही कहता हूँ कि अगर इनको हम मैच्योरिटी की चिप इनके अंदर स्थापित कर देते हैं तो ये सदा अगर गंभीर रहते हैं तो जो आपके घर का वातावरण है, जो चहलकदमी है या थोड़ा सा हल्ला बोल होता है तो उसका जब अभाव होगा तो उसको ढूंढने के लिए आप कहाँ जाएंगे। तो जब ये बात मैं उनके सामने रखता हूँ तो कहते हैं नहीं, हमारे बच्चों को आप चंचल ही रहने दो या थोड़ी इनकी शरारत हम एक्सेप्ट कर लेंगे, क्योंकि एक मनोवैज्ञानिक अवधारणा को लेकर जब हम काम करेंगे तो उनके सारे विचारों को लेकर, भावनाओं को लेकर, और ये बताने का प्रयास होगा कि भाई इन इन एक्टिविटीज़ से आपके माता पिता को कष्ट होता है, और जब उनको रियलाइज हो जाएगा तो वो चेंज हो जाएंगे, और जब चेंज हो जाएंगे और स्कूल से आएंगे और जब वो हल्ला नहीं मचाएंगे, शोरगुल नहीं करेंगे तो आपको लगेगा हमारे बच्चे हमने जन्म दिया और वो सुख उठा नहीं पा रहे हैं। तो एक बार हम इस बात का भी मूल्यांकन करें कि जब हम बच्चे थे तो क्या बिल्कुल बचपन से लेकर और बड़े होने तक हम गंभीर ही रहे, या गंभीरता का आवरण अगर हम के चलते हैं तो उनका बचपन नहीं छिन जाएगा। तो बच्चों को बच्चों की शरारतों के साथ में रहने दें। हाँ, उसमें यह है कि उन्हें यह समझाने का प्रयास करें कि कैसे और किस समय वो किसी बिहेवियर को अंजाम देते हैं तो उसका क्या इम्पैक्ट होता है, इस पर जरूर उनसे चर्चा हो सकती है और इट मे बी पॉसिबल कि वो थोड़ा सा उसमें मॉडिफिकेशन भी करें, लेकिन पूरा का पूरा बचपन हम छीन के और उनको एक गंभीर मनुष्य बनाने की अगर चेष्टा करते हैं तो ये हो सकता है कि कुछ मेंटल डिसऑर्डर की सिचुएशन क्रिएट हो सकती है, क्योंकि उनको जब इस बात का एहसास हो जाएगा कि हमारे खेल कूद से या हमारे उद्यम से माता पिता या पड़ोसी को बहुत पीड़ा हो रही है, तो वो अपने आप में गंभीर होने का प्रयास करेंगे। लेकिन उस समय जो मनोभाव होंगे और उस मनोभाव का जो वेग होगा, उसको हम अगर रोकते हैं तो उनके अंदर जो एक आनंद की क्रिया उमड़ रही है, क्योंकि उस समय जब वो खेल कूद रहे हैं तो उस समय उनको नहीं लगता है कि समाज को कोई क्षति पहुंचा रहे हैं। हम ये है कि कुछ वातावरण में परिवर्तन कर सकते हैं, उनको एक ग्राउंड की उपलब्धता करा सकते हैं, उनके साथ खेलने जा सकते हैं, उनको कुछ गेम्स से रिलेटेड कुछ चीज़ें उनको दिलवा सकते हैं, उनके मन को संतुष्ट कर सकते हैं। लेकिन उनकी मन स्थिति में जो आनंद या भाव विभोर क्रिएट हो रहा है, उसको रोकने का या उसको दमन करने का प्रयास करते हैं, तो ये हो सकता है कि वो अपने बचपन से तो पलायन कर जाएं, वो माता पिता के प्रति भी अपना एक नया दृष्टिकोण विकसित कर सकते हैं और अपने आप को उनसे अलग करने की चेष्टा भी कर सकते हैं। जी
0: चलिए, बहुत अच्छी बात आपने बताया है, लेकिन अब ऐसे सिचुएशन में हमें उनको कैसे ट्रीट करना चाहिए, ये इम्पोर्टेंट रह जाता है, और कई बार ये चीज़ें जो है संभव नहीं हो पाता, तो क्या किया जाए, क्या टेक्निक है?
1: बहुत अच्छी बात है। देखिए, हमारे पास में जो विकल्प हैं, क्योंकि दुनिया में कहा गया है कि मैनेजमेंट के सिद्धांत का जब हम अवलोकन करते हैं तो उसमें एक बात निकल के आती है कि हमारे पास में संकल्प क्या क्या है और विकल्प क्या क्या है। लेकिन इसको अगर आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखते हैं तो हमको लगता है कि हमारे पास में संकल्प भी श्रेष्ठ, शुभ और पवित्र होना चाहिए और विकल्प भी हमारे पास में श्रेष्ठ, शुभ और पवित्र होना चाहिए। तो अगर इन तीन मानदंडों को लेकर हम चलते हैं तो बाल मन इस बात को स्वीकार कर लेता है कि कहीं ना कहीं हमारे साथ में न्याय किया जा रहा है, क्योंकि न्याय की अपेक्षा तो वो करता है, क्योंकि न्याय को अपने शब्दों में वो देखे तो निष्पक्षता की श्रेणी में रखता है और वो सोचता है कि हमारे माता पिता हमारे प्रति एक संवेदनशील दृष्टिकोण को अपना रहे हैं और जब वो बातचीत करते हैं तो फिर वो तय करता है कि कोई बात नहीं, हम इन एक्टिविटीज को करेंगे और इसको हम नहीं करेंगे। अर्थात वो धीरे धीरे उसका मन जो है वो बालमन है और वो बालमन डूज और डोंट डूज, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इसके बीच में एक समानांतर रूप से मूल्यांकन भी करता है और एक विभाजन भी करता है। और धीरे धीरे जब वो मैच्योरिटी की ओर बढ़ता है तो माता पिता को ये कहना पड़ता है कि बहुत कम समय में बेटा आपने इन सब चीज़ों को मैनेज कर लिया और अब आपकी एक्टिविटीज़ से हमको दुख नहीं होता है बल्कि सुख पहुंचता है। तो बच्चे ने कहा कि आपने हमको एक खुला आसमान दिया, हमें उड़ने के लिए आकाश दिया और हमारे माता पिता आप हैं और हमें ऐसा महसूस हो रहा है कि आप ही हमारे माता पिता होना चाहिए, क्योंकि आपने एक स्पेस दिया हमको अपनी बात रखने का, अपनी भावनाओं को साझा करने का, और अब हमें बड़ी खुशी हो रही है कि हम आपके साथ में घुल मिल के और बड़े आनंदपूर्वक जीवन जी सकते हैं। जी
0: बिल्कुल बिल्कुल, चलिए बहुत अच्छी बात आपने बताया है और मुझे लगता है कि यहाँ पर हमें जो है थोड़ा सा संवेदनशील होकर हमें भी समझना पड़ेगा, और कई बार जो है वेट एंड सी वाला काम कर जाता है, थोड़ा सा रुक के अगर आप बच्चों को अलग सा समझाते हैं तब भी हो सकता है कि बातें ठीक हो जाए, और कभी कभी बच्चा जो है एक्स्ट्रा केयर भी चाहता है, तो उसको एक्स्ट्रा केयर करके अगर आप उसको अकेले में इस बात का एहसास कराएंगे, जब उसका मन सुनने के काबिल हो, वो शांत हो, रिसीवर के रूप में आपके सामने है, तो मुझे लगता है कि यह ज़्यादा बेटर होगा। बहुत अच्छी बात आपने बताया। तो चलिए, जाते जाते मैं चाहूँगा कि एक संदेश क्या देना चाहेंगे आखिरी में।
1: बहुत अच्छी बात है, ये जो भी बातचीत हो रही है निश्चित तौर पर बच्चों के लिए हितकारी है और बड़ों को भी उन्हें मैनेज करना या उनके साथ में संबंध दीर्घकालीन तक बनाए रखना बड़ा आसान होगा। और उसके लिए जैसा आपने कहा कि एक्स्ट्रा केयरिंग, जैसे बच्चों को जब पढ़ाई में कमजोरी होती है तो हम लोग एक्स्ट्रा कोचिंग लगाते हैं, तो ऐसे ही स्नेह और प्यार का संबल बढ़ाना होगा। और जो आपने एक शब्द कहा केयरिंग, तो केयरिंग के साथ में हमें अच्छी नर्चरिंग भी करना पड़ेगा, अच्छी पेरेंटिंग भी करना पड़ेगा, और अच्छी नर्चरिंग और पेरेंटिंग जब होगी तो नेचुरली हमारे और उनके बीच में एक लविंग सिचुएशन क्रिएट होगी, स्नेह और प्यार का स्तर हमारा बढ़ता जाएगा और यही हमारे और बच्चों के बीच में संवाद स्थापित करने में, या जिसे हम एडजस्टमेंट कह सकते हैं, और वो भी क्रिएटिव एडजस्टमेंट वाली सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी। तो मैं उम्मीद करूंगा कि इस संवाद के माध्यम से बच्चों और बड़ों के बीच में एक सौहार्दपूर्ण वातावरण बनेगा और वो हमारे जीवन में बाधक नहीं बल्कि साधक होंगे और हमारी पूरी यात्रा में कहीं ना कहीं वो सहभागी बन जाएंगे, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ।
0: अजय जी, काफ़ी अच्छी बात आपने बताया है और मुझे लगता है कि हमारे सभी श्रोताओं को भी अच्छा लग रहा है। बच्चों का इस जो मन है उस पर हमने बातें की और बच्चों का मनोविज्ञान को समझने की कोशिश कर रहे हैं इस एपिसोड के माध्यम से। आगे और भी एपिसोड्स इस तरह के सीरीज में हम लोग सुनेंगे जहां पर बच्चों का पूरा संसार पूरा जगत को हम लोग कोशिश करेंगे कि आपके सामने रखें और बच्चों की बातों के साथ साथ बच्चों के मनोविज्ञान को ठीक से समझना और उसको सुलझे और सुलझाने का प्रयास करेंगे हम लोग। तो इन्हीं शुभ आशाओं के साथ आप सभी अपने बच्चों के साथ बड़े मासूमियत के साथ प्रेम से और पूरे हृदय से आप जुड़े रहें। तो कहा जाता है कि भाई जो चीज़ें आप दिल से करते हैं और बच्चों की एक सेवा समझ के उनको अगर आप करते हैं तो आपको भी उसका जो है तनाव नहीं रहेगा। अगर आप करना ही है मजबूरी से करते हैं तो तनाव रहता है, तो वो तनाव रहित अगर आप करेंगे तो इसके लिए आपको सोचना पड़ेगा बच्चों की सेवा के लिए मुझे भगवान ने इस बच्चे को मेरे पास भेजा है। तो सीधी सीधी आपकी जो मनस्थिति बहुत ही बदल जाएगी और आप अच्छा कर पाएंगे बच्चों के साथ और बच्चे भी आपके साथ बहुत ही अच्छी तरह से व्यवहार कर पाएंगे। फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में कुछ नई बातें लेकर। तब तक आप बने रहिए हमारे साथ। सलाम नमस्ते खमा गणिसा जय हिंद जय भारत ओम शांति। सुनते रहो मुस्कुराते रहो।

नमस्कार, आप सुन रहे रेडियो मधुबन 107.8 एफएम पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और बड़ा अच्छा लग रहा है। आइए आज के इस कार्यक्रम में बात करते हैं। 19 अगस्त की कुछ बातें मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा। आज जसवंत राज सिंह रावत, हजारी प्रसाद द्विवेदी, हरिशंकर शर्मा, शंकर दयाल शर्मा, आरसी प्रसाद सिंह, शिव प्रसाद सिंह, सुधा मूर्ति, एस सत्यमूर्ति, अब्दुल अमित खान, अरुंधति कटजू विजय कुमार, इन सभी का जन्मदिन है। और इसके साथ ही बद्रुद्दीन तैयब, जी उज्जवल दत्त, सचिन नागा, सोनल स्टुअर्ट और विशेष खय्याम, इन सभी का पुण्य दिवस है। तो आइए आज के इस कार्यक्रम को यादगार बनाते हैं आप सभी के साथ मिलकर बहुत सारी खुशियों के साथ। जैसे कि कार्यक्रम की शुरुआत में हम लोग एक सुंदर विचार आपको सुनाते हैं और विचार में एक छोटा सा विचार, हर समस्या या हमारी समस्याओं का समाधान तो केवल हमारे पास ही है, दूसरों के पास तो केवल सुझाव रहता है। आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन पर सफर इस कार्यक्रम को। आइए एक बहुत ही प्यारा सा गीत के साथ कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

0: मम्मी मम्मी।
1: हाँ बेटा।
0: आज जब मैं स्कूल से आया तो मैंने पता क्या देखा कि एक बच्चा चाय बांट रहा है, वह फिसल गया और उसके हाथ से चाय का ग्लास गिर गया। उसे बहुत डांट पड़ी। मम्मी मैं सोच रहा हूँ कि हमारे घर के बाजू में जो शंभू है वो भी तो काम करता है, उसे भी तो ऐसी ही डांट पिटती होगी, क्यों ना हम उसे पढ़ाएं।
2: नमस्कार, आप सुन रहे रेडियो 107.8 एफएम पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और बड़ी अच्छी बातें होंगी आज। विशेष कुछ खास महान व्यक्तियों के बारे में, आज़ादी के दीवानों के बारे में, देश के प्रति समर्पित होकर जीवन को सुंदर बनाने वाले लोगों की जीवन कहानी से आपको रूबरू कराते हैं इस कार्यक्रम में। आइए भारत के थल सेना के जांबाज सैनिकों में से एक जसवंत सिंह रावत की कहानी आपको सुनाते हैं। उत्तराखंड की पावन भूमि एक और धार्मिक, आध्यात्मिक और सांस्कृतिक अनुष्ठान की स्थली रही है, वही ये भूमि अनेकों वीर और वीरांगनों की जन्म स्थली भी रही है। इस कड़ी में सुबेदार बलभद्र सिंह नेगी विक्टोरिया क्रॉस विजेता, सुबेदार दरबान सिंह विक्टोरिया क्रॉस विजेता, राइफलमैन गब्बर सिंह नेगी, कर्नल डी सिंह रावत, मेजर हर्षवर्धन बहुगुणा आदि के नाम अमर हैं। 1962 के भारत चीन युद्ध में 72 घंटे तक अकेले बॉर्डर पर लड़कर शहीद होने वाले भारतीय सैनिक जसवंत सिंह रावत आज भी अमर हैं। 24 घंटे उनकी सेवा में सेना के 5 जावाज लगे रहते हैं। यही नहीं, रोजाना उनके जूतों पर पॉलिश की जाती है और कपड़े प्रेस होते हैं। परिचय की बात करें तो ये देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों का उद्घर्षण करने वाले राइफलमैन जसवंत सिंह रावत का जन्म 19 अगस्त 1941 को ग्राम बड़ियोपट्टी कटली पौड़ी गढ़वाल में हुआ। इनके पिता गुमन

सिंह रावत देहरादून में मिलिट्री डेयरी फार्म के कर्मचारी थे। उनकी माता का नाम लीलावती थी और इनके भाई विजय सिंह और रणबीर सिंह है। नौवीं कक्षा तक शिक्षा प्राप्त करने के बाद जसवंत सिंह रावत के मामा प्रताप सिंह नेगी सेवानिवृत्त मेजर ने उन्हें 16 अगस्त 1960 को चौथी गढ़वाल राइफल लेसनाउन में भर्ती करा दिया और उनके ट्रेनिंग के समय ही चीन ने भारत के उत्तरी सीमा पर घुसपैठ कर दी थी। धीरे धीरे उत्तरी पूर्वी सीमा पर युद्ध शुरू कर दिया गया और सेना को कुछ करने के आदेश दिए गए। चौथी गढ़वाल राइफल नेफा क्षेत्र में चीनी आक्रमण का प्रतिरोध करने को भेजी गई। जसवंत सिंह रावत ने पूर्वज गढ़काड़ा गुरकाड़ा के आधिपति वीर सेनानी भूपू रौत एवं तीलू सरौताली थे जो गढ़वाल के राजा के दरबारी थे। इन्होंने अपने अदम्य साहस व अनुकरणीय वीरता के कारण गढ़वाल के इतिहास में अपना नाम सम्मान से दर्ज कराया है और तीलू रैतेली को तो गढ़वाल की रानी लक्ष्मीबाई भी कहा जाता है। तो आइए ऐसे विशेष जसवंत सिंह रावत के बारे में बात करते हैं। चीनी आक्रमण परीक्षण समाप्त करना ही 17 नवंबर 1962 को चौथी गढ़वाल राइफल को नेफा अरुणाचल प्रदेश की तवंग यू नदी पर नूरगनंग पुल की सुरक्षा हेतु लगाया गया और चीनी सेना ने हमला बोल दिया और ये स्थान 14,000 फीट की ऊंचाई पर था। चीनी सेना टिड्डियों की तरह भारत पर टूट पड़ी और चीनी सैनिकों की अधिक संख्या और बेहतर सम्मान के कारण सैनिक हड़ताल पर हो रहे थे और दुश्मन के पास एक मीडिया मशीन गन थी जिसे वे पुल के निकट लाने में सफल हो गए। इस LMG से पुल व फाल्टन दोनों की सुरक्षा खतरे में पड़ गई थी। और बात करते हैं मोर्चा पर अड़े ये सब देखकर जसवंत सिंह रावत ने पहले के व मशीन गन को लूटने के उद्देश्य से अपने आप को स्वेच्छा से समर्पित कर दिया। तब उनके साथ लेंस नायक त्रिलोक सिंह व राइफल मैन गोपाल सिंह भी तैयार हो गए। ये तीनों जमीन पर रेंग कर मशीन गन से 10-15 गज की दूरी पर ठहर गए। उन्होंने हाथ गोले से चीनी सैनिकों पर हमला कर दिया और उनकी LMG ले आए और गोली बरसाने लगे और इस तरह से जसवंत सिंह रावत ने बहादुरी दिखाते हुए बैरक नंबर 1, 2, 3, 4 और 5 से निरंतर कभी बैरक नंबर 1 से तो कभी बैरक नंबर 2 से गोलियों की वर्षा कर शत्रु को 72 घंटे रोक रखा था। वो कभी एक बंकर में जाते तो वहाँ से गोली चलाते, फिर दूसरे बंकर में जाते। उन स्थानीय महिला शीला ने बड़ी मदद की और गोला बारूद व खाद्य सामग्री निरंतर उपलब्ध करवाई। जसवंत सिंह रावत देशभक्ति के दीवान थे, वो निरंतर गोलियां चलाते रहे। उन्हें उस समय परमपिता परमात्मा की असीम शक्ति प्रदान कर दी थी। उनकी पूर्वज वीर बाला तीलूर रायतोली उनकी आदर्श थी। इस रणनीति के कारण दुश्मन ये समझता रहा कि भारतीय सेना बड़ी मात्रा में उन्हें रोक रही है। तो इस तरह से मोर्चे पर अडिग रहने वाले जसवंत सिंह की कहानी ये थी। और फिर 1962 के इस भयंकर युद्ध में 162 सैनिक वीरगति को प्राप्त हो गए और 1264 को दुश्मनों ने कैद कर लिया और 256 सैनिक बर्फीले हवाओं में तितर बितर हो गए। उस समय भारतीय सेना के पास युद्ध के अनुकूल गोला बारूद युद्ध का साजो सामान भी नहीं था और ना ही उनकी तैयारी थी। वहाँ पर मठ के गद्दार लामा ने चीनी सैनिकों को बताया कि एक आदमी ने आपकी ब्रिगेड को 72 घंटे से रोक रखा है। इस समाचार के बाद उन्होंने चौकी को चारों ओर से घेर लिया और जसवंत सिंह रावत का सर कलाम करके अपने सेना नायक के पास ले गए। चीनी सेना ने डिप्ट कमांडर के सामने सम्मान के साथ उनका शव संदूक में बंद कर एक साथ में भेजा कि भारत सरकार बताए कि इस वीर को क्या सम्मान देंगे जिसने 3 दिन 3 रात तक हमारी ब्रिगेड को रोक रखा। वीर तो वह है जिसकी वीरता का शत्रु भी सम्मान करें। तेजपुर से तवंग रोड पर 425 किलोमीटर पर शिला लेख पर वीरगति प्राप्त शहीदों के नाम अंकित है वह उनकी स्मृति स्वरूप समाधि मंदिर बनाया गया है। लेफ्टिनेंट जनरल कौर ने अपनी पुस्तक दी अनटोल्ड स्टोरी में लिखा है कि जिस तरह से चीन का ये युद्ध गढ़वाल राइफल के सैनिकों ने लड़ा उसी तरह अन्य बटालियन भी युद्ध लड़ती तो इस युद्ध का परिणाम कुछ और ही होता।
नेफा की जनता जसवंत सिंह रावत को देवता के रूप में पूजती है और उन्हें मेजर साहब कहती है। उनके सम्मान में जसवंत गढ़ भी बनाया गया है। उनकी आत्मा आज विदेश के लिए सक्रिय है। सीमा चौक के पहरेदारों में से यदि कोई ड्यूटी पर सोता है तो वो उसे चोट मारकर चौकन्ना कर देती है। तो इस तरह की बातें आज भी वहां पर मौजूद हैं। हीरो ऑफ नेफा जसवंत सिंह रावत को मरणोपरांत महावीर चक्र प्रदान किया गया। एक सेना द्वारा उनकी याद में हर वर्ष 17 नवंबर को नूरानंगा दिवस मनाकर अमर शहीद को याद किया जाता है। तो ये थी कहानी जसवंत सिंह के बारे में। आइए आगे बढ़ते हैं और आप सभी को ले चलते हैं एक और गीत की तरफ। आप सुनाए हैं रेडियो माधुबन 107.8 FM पर सफर। इस कार्यक्रम को सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

0: मैं हूं श्रवण राठौर ऑफ नदीम श्रवण टीम और आप सुन रहे हैं ब्रह्मा कुमारी का कम्युनिटी रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन। सुनते रहिए मुस्कुराते मुस्कुराते रहिए।
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 एफएम पर। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और बड़ा ही सुंदर जो है कहानी जसवंत सिंह की आपने सुनी। निश्चित तौर पे ऐसे वीर सैनिकों की कहानी जब सुनते हैं तो दिल में जो है जुनून आ जाता है देश के प्रति कुछ मर मिटने की जो भावना है हमारे अंदर भी प्रणाग हो जाती है, हमारे अंदर भी ऐसी आस्था निर्माण हो जाती है। आइए आगे बढ़ते हैं और आप सभी को ले चलते हैं एक और ख़ास व्यक्तित्व के बारे में बात करते हैं जिन्हें आपने कई बार इनका नाम सुना होगा। हजारी प्रसाद द्विवेदी हिंदी के बहुत ही पॉपुलर साहित्यकारों में से इनका नाम उच्च कोटि के निबंधकार, उपन्यासकार, आलोचक, चिंतक और शोधकर्ता के रूप में याद किया जाता है। साहित्य के इन सभी क्षेत्रों में द्विवेदी जी अपनी प्रतिभा और विशेष कर्तव्य के कारण विशेष यश के भागी हुए हैं और द्विवेदी जी का अभिव्यक्ति गरिमाए चित्त वृत्ति उदार और दृष्टिकोण व्यापक है। द्विवेदी जी की प्रत्येक रचना पर उनके इस व्यक्तित्व की छाप देखी जा सकती है। तो आइए इनके बारे में बात करते हैं और परिचय के मोहताज नहीं है। 19 अगस्त 1907 को विशेष इनका जन्म हुआ बालिया जिले के अर्थत दुबे का छापरा गांव के एक प्रतिष्ठित सूर्य परियान ब्राह्मण कुल में हुआ। उनके पिता पंडित अनमोल द्विवेदी संस्कृत के विशेष पंडित थे। द्विवेदी जी के पितामह के ने काशी में कई वर्षों तक रहकर ज्योतिष का गंभीर अध्ययन किया था और द्विवेदी जी की माता भी प्रसिद्ध पंडित कुल की कन्या थी। इस तरह बालक द्विवेदी को संस्कृत के अध्ययन का संस्कार विरासत में ही प्राप्त हो गया और 1930 में इंटर की परीक्षा पास करने के बाद द्विवेदी जी प्राध्यापक होकर शांति निकेतन चले गए और 40 और 50 के दशक में वे वहां पर हिंदी भवन के निर्देशक के पद पर काम कर रहे थे और शांति निकेतन में रविन्द्रनाथ टैगोर ने घनिष्ठ संपर्क में आने के बाद नए मानवतावाद के प्रति उनके मन में जिस आस्था की प्रतिष्ठा हुई वह उनके भावी विकास में बहुत ही सहायक बनी। सितीज मोहन सेन, विदु शेखर भट्टाचार्य और बनारसी दास चतुर्वेदी की सानिध्य में उनकी साहित्यिक गतिविधि में अधिक सक्रियता आई और हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की भाषा शैली की बात करें तो विशेष खड़ी भूली थी और उन्होंने भाव और विश्व के अनुरूप भाषा का चयनित प्रयोग किया और उनकी भाषा के दो रूप दिखाई पड़ते हैं और प्रजल व्यवहारिक भाषा और संस्कृत निष्ठ शास्त्रीय भाषा। द्विवेदी जी के निबंधों में विषय भारतीय संस्कृति, इतिहास, ज्योतिष, साहित्य, विविध धर्मों और संप्रदाय का विवेचन आदि है। वर्गीकरण की दृष्टि से द्विवेदी जी के निबंध दो भागों में विभाजित किए जा सकते हैं, विचारात्मक निबंध, आलोचनात्मक निबंध। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की कुछ कृतियाँ इस प्रकार है कि हिंदी साहित्य की भूमिका अनेक सिद्धांतों की बुनियादी पुस्तक है जिसमें साहित्य को एक परंपरा तथा उसमें प्रतिफलित क्रिया प्रक्रियाओं के रूप में देखा गया है। नवीन दिशा निर्देशन की दृष्टि से इस पुस्तक का ऐतिहासिक महत्व है और विशेष रूप से इतिहासकार और निबंधकार के रूप में प्रख्यात द्विवेदी जी की कवि हृदय यूं तो अनेक उपन्यास, निबंध और आलोचना के साथ साथ इतिहास में भी देखी जा सकती है, लेकिन एक तथ्य ये भी है कि उन्होंने बड़ी मात्रा में कविताएं लिखी। हजारी प्रसाद द्विवेदी को भारत सरकार ने उनके विविधता के साथ साथ साहित्यिक सेवाओं के ध्यान में रखते हुए शिक्षा के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए 1957 में पद्म भूषण से सम्मानित किया और ये महाशय 19 मई 1969 को इनका मृत्यु हो गया हजारी प्रसाद द्विवेदी का और सरकार ने इनका एक डाक टिकट भी इनकी याद में रिलीज की थी। तो ये थी कुछ खास बातें आपके लिए द्विवेदी प्रसाद जी के बारे में। आप सुनाए हैं रेडियो मधुबन 107.8 एफएम पर सफर इस कार्यक्रम को। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

0: प्रभु मन।
1: नमस्कार, आप सुन रहे रेडियो 107.8 FM पर आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। बहुत ही प्यारा सा गीत आपने सुना और आशा करूंगा द्विवेदी जी की हजारी प्रसाद की बातें सुनकर अच्छा लगा होगा। आइए एक और खास साहित्यकार की बात करते हैं, हरिशंकर शर्मा जी। जी हाँ, ये भी एक बहुत ही पॉपुलर साहित्यकार, कवि, लेखक, व्यंगकार और पत्रकार थे। इन्हें उर्दू, फारसी, गुजराती तथा मराठी आदि भाषाओं का अच्छा ज्ञान था। पंडित हरिशंकर शर्मा जो है विशेष हिंदी के कुछ गिने चुने हास्य लेखकों में से एक थे। इनकी गिनती अपने समय के उच्च कोटि के पत्रकारों में होती रही है। कई पत्र पत्रिकाओं का सफल संपादन भी इन्होंने किया। अपनी रचनाओं के माध्यम से हरिशंकर शर्मा समाज में फैली रूढ़िवादियों, कुरूतियों तथा बुराइयों पर करारी चोट करते थे। और पंडित हरि शर्मा के बारे में अगर मैं बात करूं हरिशंकर जी के बारे में, तो 19 अगस्त आज के दिन 1891 में उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जनपद के हरदू अगंज कस्बे में हुआ था। और उनके पिता का नाम पंडित नत्थूराम शंकर शर्मा था। बचपन से ही उन्हें घर में साप्ताहिक वातावरण मिला था, जिसका पंडित जी पर विशेष रूप से प्रभाव पड़ा। एक दिन वो भी आया कि वे राष्ट्र के साहित्यकारों में गिने जाने लगे और हरिशंकर शर्मा के पूज्य पिता पंडित नत्थूराम शंकर शर्मा हिंदी के बहुत ही पॉपुलर कवि थे। हरिशंकर शर्मा की शिक्षा दीक्षा किसी स्कूल अथवा कॉलेज में बिल्कुल नहीं हुई। घर पर ही रहकर ही उनकी शिक्षा उर्दू, फारसी, गुजराती तथा मराठी आदि भाषाओं का अच्छा ज्ञान प्राप्त कर लिया था। पंडित जी के पिता के यहाँ अनेक साहित्यकार उनसे भेंट करने आया करते थे, जिनमें आचार्य पंडित पदम सिंह शर्मा प्रमुख थे। शर्मा जी अपने पिता के साथ साहित्यकारों की बातचीत को बड़े ध्यान से सुना करते थे और आगे चलकर इसका लाभ शर्मा जी को मिला। और उनके संपर्क में आने से, उनके प्रभाव से अपने पिता की भांति एक दिन वे स्वयं एक कवि, लेखक, पत्रकार और व्यंगकार के रूप में विख्यात हुए। व्यक्तित्व की बात करें तो ये व्यक्तित्व के हरिशंकर शर्मा स्वाभिमानी थे और निबंधकार बाबू गुलाब राय के उनके बारे में लिखा था कि समाज का कोई प्राणी अहम से मुक्त नहीं है। शिक्षित समाज के भी 99% जनों का अहम दंभ की सीमाओं में जकड़ा है। पंडित जी का सरल, सौम्य, स्वाभिमानी व्यक्तित्व तो उन सीमाओं से मुक्त है। उनका अहम अपने लिए ना होकर अपने साहित्य वर्ग के लिए है। विनत के सामने वे स्वयं विनम्र है। हाथ जोड़कर अभिवादन करने वाले उन्हें पांव छूकर प्रमाण करने वालों के क्रम प्रिय नहीं है। तो ये विशेष रूप से बातें हैं इनके बारे में। और उच्च कोटि के पत्रकार के रूप में भी इन्हें याद किया जाता है और महापुरुषों के कथन में विशेष रूप से इनकी बातें जो है आती हैं। और आर्य मित्र को हिंदी के उच्च कोटि के अन्य साहित्यिक पत्रकारों की पंक्ति में खड़ा करना हरिशंकर जी का ही काम था, जैसे सुयोग संपादक का ही काम था। इस संबंध में महापंडित राहुल ने अपने विचार व्यक्त करते हुए लिखा था कि पंडित हरिशंकर शर्मा के हाथों में जब आर्य मित्र आया तो उनके लेखों में विचित्र स्फूर्ति दिखाई पड़ती थी। संपादक सभी लेखों को नहीं लिखता, पर उनके चयन करने और संवारने में भी बड़ी प्रतिभा की आवश्यकता होती है। मैं समझता हूँ आर्य मित्र अपना जनप्रिय कभी नहीं हुआ जितना कि पंडित हरिशंकर शर्मा के संपादन से हुआ। इसके बाद इनकी कई रचनाएं भी आई और इन्हें भाषा शैली के लिए विशेष रूप से याद किया गया। और 1968 में पंडित हरिशंकर शर्मा बीमार हो गए और इस वजह से फिर वो धीरे धीरे 9 मार्च 1968 को अपना शरीर त्याग दिया, यानी स्वर्गवास हुआ उनका। तो ये थी कुछ खास बातें पंडित हरिशंकर शर्मा जी के बारे में। आइए आगे बढ़ते हुए मैं आप सभी को ले चलता हूँ एक और गीत की तरफ। आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन, सफर इस कार्यक्रम को सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

ओम शांति, मैं हूँ ग्रेसी सिंह और आप सुन रहे हैं ब्रह्मा कुमारीज का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

नमस्कार, आप सुन रहे रेडियो मधुबन 107.8 एफएम पर आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ मंगल कामनाएं करते हैं। आइए, हम आखिरी मोड़ पे हैं। हम लोग सुधा मूर्ति के बारे में बात करते हैं। ये इन्फोसिस फाउंडेशन के संस्थापक एन आर नारायण मूर्ति की पत्नी और बहुत ही पॉपुलर सामाजिक कार्यकर्ता व लेखिका हैं। कुछ लोग महान लक्ष्य को हासिल करने के मकसद लेकर ज़िंदगी जीते हैं, लेकिन सुधा मूर्ति एक ऐसी शख्सियत है जो सादगी, ज़िंदगी को सादगी और दानिशमंद के साथ जीने में यकीन रखती है, और यही सादगी और मन की उदारता उन्हें इस मुकाम पर ले आई है जिसे देखने के लिए लोगों को आसमान तक नज़रें बुलंद करनी पड़ती हैं। उद्योग जगत में सफलता की नई कहानी लिखने वाली आईटी कंपनी इन्फोसिस के इन्फॉर्मेशन फाउंडेशन की इन्फोसिस फाउंडेशन की अध्यक्षता सुधा मूर्ति की ज़िंदगी, मेहनत और मकसद की अद्भुत कहानी है। भारत सरकार द्वारा उन्हें पद्मश्री और पद्मभूषण से सम्मानित किया जा चुका है। तो आइए ऐसे विशेष महिला के बारे में बात करते हैं। आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन पर सफ़र, इस कार्यक्रम को जीवन परिचय की बात करें तो सुधा मूर्ति जो है एक सफलता इस बात की रेखा की याद रखती है कि पति के विशाल व्यक्तित्व की परछाई के नीचे दबने के बजाय कोई महिला यदि चाहे तो अपना अलग व्यक्तित्व गढ़ सकती है। बतौर इन्फोसिस फाउंडेशन की अध्यक्ष सुधा मूर्ति समाज के दबे कुचले तबके के उत्थान के लिए बेहद महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। हालांकि वह सुर्खियों में आने से परहेज करती हैं, लेकिन समाज सेवा के प्रति उनका जज्बा खुद ब खुद उनकी महानता को बखान करती है। 19 अगस्त 1950 को कर्नाटक में पैदा हुई सुधा मूर्ति की इन्फोसिस कंपनी की स्थापना में क्या भूमिका रही, उसे इस बात से जाना जा सकता है कि उनकी यही बचत से 10,000 रुपये से इस कंपनी की नींव रखी गई थी। और न्यायमूर्ति आज भी बड़े गर्व से बात लोगों को अक्सर बताते हैं, सादी सी साड़ी और चेहरे पर सदा खिली रहने वाली मुस्कान सुधा मूर्ति के व्यक्तित्व में चार चांद लगाते हैं। और ज़िंदगी में किन चीज़ों ने सुधा मूर्ति को सर्वप्रथम प्रभावित किया, तो वो है, जवाब में कहती हैं कि ईसा मसीह तथा भगवान बुद्ध की शिक्षाओं और आरडी टाटा के शब्द और जीवन ने मुझे न केवल प्रभावित किया है बल्कि मेरी ज़िंदगी को पूरी तरह से दिशा दी है। क्रिस्टी कॉलेज में एमबीए और एमए विभाग की प्रतिभाशाली प्रोफेसर सुधा अपने छात्र जीवन में बहुत योग्य छात्रों में गिनी जाती रही और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस में कंप्यूटर साइंस की शिक्षा हासिल करते हुए उन्होंने विशेष रैंक हासिल किया था। तो आइए, ऐसे विशेष व्यक्तित्व को सम्मान की कोई ज़रूरत नहीं, लेकिन अनेकों सम्मान उन्हें प्राप्त हैं। डॉक्टरेट ऑफ लॉ की उपाधि 2011 में, भारत सरकार 2006 में पद्मश्री और वुमन ऑफ द ईयर 2002 में, मिलेनियम महिला शिरोमणि कर्नाटक 2000 में इनको मिला, और बेस्ट टीचर पुरस्कार 1995 में मिला। और प्रकाशित साहित्य उनकी जो है बहुत सारे हैं, लेखिका है तो बहुत सारी पुस्तकें उन्होंने लिखी, और उनका विशेष योगदान के लिए आज भी समाज के कई लोग जो हैं कंप्यूटर और विज्ञान बढ़ाने में साहित्यिक कदम उठाया, उन्होंने साहसिक कदम उठाया और एक लाइब्रेरी और स्कूल आदि और पिछड़े इलाका के लोगों को विशेष रूप से शिक्षा के प्रति उन्हें जागरूक करना और शिक्षित करने का कार्य भी इन संस्था इन्फोसिस के माध्यम से किया जाता है। तो चलिए, ये थी कुछ खास बातें सुधा मूर्ति जी के बारे में। आप सुनाए हैं रेडियो मधुबन पर सफ़र, इस कार्यक्रम को चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और गीत आपके नाम, सुनते रहो मुस्कराते रहो।

0: आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि हॉस्पिटल्स में एडमिट होने वाले ज्यादा केसेस रोड एक्सीडेंट्स यानी सड़क दुर्घटना की वजह से होते हैं। इसलिए अपनी रफ्तार पर नियंत्रण रखें, सड़क सुरक्षा नियमों का पालन करें। रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी।
1: नमस्कार, आप सुन रहे रेडियो मधुबन 107.8 FM पर आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। चलिए, वक्त हो गया है आपसे इजाज़त लेने का और आज हमने जसवंत सिंह रावत की कहानी सुनी, जो देश के लिए मर मिटने वाले जवान की एक ऐसी कहानी जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ऐसे व्यक्ति जिन्होंने खास करके दो दो बंकर संभालते हुए 72 घंटे जो है सेना को रोक के रखने की जो जज्बा है अकेले आदमी ने किया, ये बहुत बड़ी चीज़ थी जो आपने सुना जसवंत सिंह की कहानी में आपको देखने को मिला। इसके साथ हजारी प्रसाद द्विवेदी जी जो एक साहित्यकार हैं और हरिशंकर शर्मा जो भी एक साहित्यकार हैं, इन दोनों की साहित्य जगत की कहानी हमने सुनी और इसके साथ एक सोशल वर्कर सुधा मूर्ति की कहानी आपको मैंने सुनाई। साहित्य जगत में अपना काम करते हुए इन्फोसिस के लिए उन्होंने बुनियादी तौर पर जो मदद की थी उसके वजह से इन्फोसिस बड़ा और बढ़ते गया और उसके साथ में इन्फोसिस फाउंडेशन को सुधा मूर्ति जो है उसकी अध्यक्ष है और उसको चलाती हैं, जहां पर कंप्यूटर से जुड़ी हुई सेवाओं को जो जहां तक गरीब गांव में वगैरह जो बच्चे हैं उनके लिए कंप्यूटर सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं और शिक्षा दीक्षा में लोगों को हेल्प करने में काम करती हैं। तो ऐसे सुधा मूर्ति की कहानी हमने सुनी और आइए इसके साथ ही आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। फिर मिलते हैं अगले कार्यक्रम में। जाते जाते आपके लिए एक सुंदर विचार, हमेशा चुनौतियों को स्वीकार करना चाहिए, इससे सफलता मिलेगी, ये तो शिक्षा है। आप सुनाए हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM पर। जी हाँ, सफर इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं, तो चलिए जाते जाते एक और गीत के साथ मैं आपको छोड़े जा रहा हूँ। सुनते रहो मस्कराते रहो।

0: रेडियो मधुबन 90.4 FM सुन रहे हैं आप। कार्यक्रम का नाम है युवा मंच और मैं हूं आरुषि आपके साथ। दोस्तों, युवाओं को मन में अगर कोई सवाल भी होते हैं तो साथ में उमंग भी होता है कुछ करने का, कुछ कर दिखाने का। अपने लिए कुछ सपने होते हैं, कुछ अपने परिवार के लिए सपने होते हैं। कुछ ऐसी चीजें हैं दोस्तों जो हम सोशल मीडिया पे जिनके बारे में सुनते हैं, जैसे कि स्टॉक मार्केट की अगर बात करें तो नाम तो सुना होगा लेकिन कितनी जानकारी हमारे पास है ये एक बिल्कुल ही अलग मुद्दा हो जाता है। और कई बार सभी चाहते हैं कि हम जीवन में पैसे कमाएं, आगे बढ़ें, चाहते तो हैं लेकिन रास्ता कौन सा सही है वो चुनना मुश्किल हो जाता है। इसलिए सबसे बड़ा हथियार जो जरूरी है वो है शिक्षा, वो है जानकारी। तो आज हम स्टॉक मार्केट के बारे में ही बात करने वाले हैं आपसे, और सही तरीका क्या है उसको बताने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में एक एक्सपर्ट जुड़े हैं जिनका नाम है रविंद्र चंदेल जी, जो कि इंदौर से पधारे हैं, स्टॉक ब्रोकर हैं, NISM क्वालिफाइड हैं। तो आज उनसे हम जानेंगे स्टॉक मार्केट के बारे में और सही तरीके से कैसे आप उससे अर्न कर सकते हैं और कैसे सही और गलत में भेद भी कर सकते हैं उसके बारे में भी जानेंगे, और साथ साथ आपके सवालों के जवाब भी मिलेंगे जो मुझे लगता है आपके मन में जरूर चल रहे होंगे। रविंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: धन्यवाद।
0: सबसे पहले तो जैसा कि आपके इंट्रोडक्शन में मैंने बोला हमारे दोस्तों से कि NISM क्वालिफाइड, तो सबसे पहले तो मैं यही जानना चाहूंगी कि क्या क्वालिफिकेशन होती है।
1: वैसे स्टॉक मार्केट में काम करने के लिए कोई स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड नहीं होता है, लेकिन फिर भी अगर कभी हम अवेयर होना चाहते हैं, हम टेक्निकली काम करना चाहते हैं, तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज बहुत सारे सर्टिफाइड कोर्सेज लॉन्च करती है। तो NISM का मीनिंग ही होता है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्टॉक मार्केट। इसमें सर्टिफिकेशन कोर्सेज होते हैं इक्विटी, डेरिवेटिव, म्यूचुअल फंड, ऑप्शंस ट्रेडिंग, दे आर सो मेनी, मोर देन 26 कोर्सेज दे लॉन्च्ड। वो क्वालिफाइड करने के बाद जब हम काम करने मार्केट में आते हैं तो हमें उसमें बेसिक नॉलेज के साथ में सही गलत का भेद करना आ जाता है।
0: ओके, तो जैसा आपने कहा कि वैसे तो कोई एजुकेशन की जरूरत नहीं होती है, लेकिन ये जो क्वालिफिकेशन है ये कौन कर सकते हैं और कब कर सकते हैं?
1: इसका कोई क्राइटेरिया नहीं होता है, ये सारा ऑनलाइन होता है। आप जो www.nacindia.com जो गवर्नमेंट की वेबसाइट है वहाँ पर जाकर आप कोर्सेज के बारे में डिटेल देख सकते हैं और आपके रेट ऑफ इंटरेस्ट से आप किसी भी कोर्स को कर सकते हैं। उसमें जो एक मिनिमम फीसेस होती है गवर्नमेंट की वो सबमिट करना होता है।

0: उसमें डील करते हैं, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, निकिल, मेंथाइल, नेचुरल गैसेस, वो एक अलग पार्ट हो जाता है। इक्विटी में हम जब काम करने की बात करते हैं तो हमें किसी कंपनी के शेयर्स की खरीदी या बिक्री वाला काम करना होता है, तो वो एक अलग पार्ट हो जाता है।
1: तो मतलब NISM को ये समझने के लिए पहले हमें ये समझना जरूरी है कि स्टॉक मार्केट होता क्या है।
0: बिल्कुल।
1: तो अगर आप अपने शब्दों में बताना चाहें, जो भी युवा दोस्त हमें सुन रहे हैं खासतौर से, स्टॉक मार्केट शब्द बहुत बार सुना है, ऊपर चला गया, नीचे चला गया, ये हो गया, लेकिन वो असल में क्या होता है?
0: बिल्कुल, आपको मैं सरल शब्दों में कभी स्टॉक मार्केट की डेफिनेशन बताऊं तो स्टॉक मार्केट एक ऐसा प्लेस है जहां पर लिस्टेड कंपनियों, है ना, जो भी गवर्नमेंट के द्वारा जो लिस्टेड कंपनियां होती है, आज की तारीख में जो एक्सचेंज में लिस्टेड कंपनियां 2000 है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में, उनके शेयर्स की खरीदी या बिक्री कर सकते हैं। वो एक्सचेंज हमें प्रोवाइड करता है। अब क्या होता है कि एक प्लेटफॉर्म होना चाहिए, खरीदी बिक्री कैसे करें, है ना, तो वो प्लेटफॉर्म हमें डीमैट अकाउंट के थ्रू प्रोवाइड होता है। तो जो स्टॉक ब्रोकर्स होते हैं वो एक डीमैट अकाउंट ओपन करके देते हैं जो किसी भी पर्सन के सेविंग अकाउंट से लिंक्ड होता है, है ना, तो उसके थ्रू डीमैट अकाउंट के थ्रू हम किसी भी कंपनी के शेयर्स की खरीदी या बिक्री कर सकते हैं। वही स्टॉक मार्केट होता है। जो गवर्नमेंट की जो वेबसाइट होती है www.nsc.com, वहां पर आपको उस कंपनी के शेयर्स के प्राइस देखने को मिलते हैं। और जब आप डीमैट अकाउंट करते हैं, ओपन करते हैं, डीमैट अकाउंट ओपन करने के लिए बहुत सारी जो बैंक है वो सब हमें फैसिलिटी प्रोवाइड करती है, एक्सेप्ट दिस, बहुत सारे ऐसे ब्रोकर है जो ऑथराइज्ड है, जैसे जरोदा हुआ, एंजल हुआ, गुडविल हुआ, ये भी हमें अपस्टॉक हुआ, जैसे टाटा ने अभी एक अपस्टॉक भी लॉन्च करा है, वहां पर जाकर अपन डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। ये इसका सही तरीका है।
1: ओके, तो पहले हम पता करें ऑथराइज्ड कौन कौन से।
0: बिल्कुल
1: जी। तो डीमैट अकाउंट एग्जैक्टली क्या होता है?
0: बिल्कुल, डीमैट अकाउंट मतलब कि डीमेटलाइजेशन फंड। आप किसी भी शेयर्स को डिजिटली फॉर्म में खरीदी या बिक्री, क्योंकि पहले कभी हम बात करें, कभी इसकी हिस्ट्री के एक बार हम बात करें
1: जी,
0: तो जो BSE इंडेक्स जो है ना, वो 1875 से लॉन्च है।
1: ओके,
0: मतलब मोर देन अप्रोक्सीमेटली 150 साल से स्टॉक मार्केट चल रहा है
1: जी, जी।
0: तो पहले ऑफलाइन काम होता था
1: जी।
0: आपको शेयर खरीदना है, आपको ब्रोकर के पास जाना है, आपने कंपनी का नाम लिया, मुझे टाटा के शेयर खरीदना है, तो आपको फिजिकल में एक सर्टिफिकेट देता था वो ब्रोकर, और जब आपको बेचना है तो वो सर्टिफिकेट दिखाकर किसी और को हैंड ओवर करना होता था। तो धीरे धीरे धीरे जैसे जैसे जनरेशन आगे आई, अपडेशन हुआ, तो फिर वो ऑनलाइन सब कुछ फैसिलिटी प्रोवाइड होने लगी। और BSE के बाद में फिर लगभग 1992 के आसपास नेशनल स्टॉक एक्सचेंज NSE लाया, वो उसने पूरा ही जो है वो कंप्यूटराइज्ड ऑटोमाइजेशन के ऊपर काम करना शुरू कर दिया।
1: तो जैसा आपने बताया कि हिस्ट्री तो बहुत पुरानी है, तरीका बदलता है,
0: तरीका
1: और आज डिजिटल युग में ये डिजिटल तरीका
0: अब फुल्ली ऑटोमेटेड ऑनलाइन हो गया है।
1: ऑनलाइन हो गया
0: बिल्कुल। अब आप जैसे कंपनी के शेयर खरीदने के लिए आपको किसी के पास नहीं जाना है
1: जी,
0: हमें सब कुछ ऑनलाइन फैसिलिटी प्रोवाइडेड है। आपको एक ऑथराइज्ड ब्रोकर को के कॉन्टेक्ट नंबर के ऊपर डील करनी होती है, वहाँ पर आपके जो बेसिक जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, आधार, पैन कार्ड हुआ, और बैंक का जो आपका जो स्टेटमेंट हुआ, वो उन्हें सेंड करना होता है। उसके बदले में आपको क्लाइंट ID पासवर्ड देते हैं, जिसको उनके ही एप्लीकेशन के थ्रू ओपन करना होता है। उसमें आपका जो डीमैट अकाउंट के साथ में जो सेविंग अकाउंट लिंक्ड है, उसमें आपको फंड ट्रांसफर करना होता है, और उसके बाद आपको खरीदी बिक्री करनी होती है।
1: ओके, एक और सवाल ये आता है मन में कि ऐसे रन होता है, लेकिन आखिर ये रन करता कौन है स्टॉक मार्केट?
0: बिल्कुल, ये सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया SEBI, इसकी रेगुलेटरी बॉडी है, इसके ही निगरानी में सारे काम होते हैं। मतलब ब्रोकर कोई फ्रॉड तो नहीं कर रहा है, या कोई भी मतलब व्यक्ति इसमें आकर कुछ अनएथिकल वे में काम तो नहीं कर रहा है, तो सारी जो सिक्योरिटी जो एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है वही इसके ऊपर डील करती है, और वही इसको पूरी तरीके से रन करता है।
1: ओके, तो जैसा आपने कहा कि SEBI इसको रन करता है, और मतलब ये टोटली लीगलाइज्ड चीजें हैं, क्योंकि कई बार हम स्टॉक मार्केट का नाम सुनते हैं तो डर जाते हैं, बहुत सारी चीजें मन में सवाल आते हैं, मैं वो भी आपसे थोड़ा बाद में पूछूंगी, लेकिन क्योंकि हम अभी स्टॉक मार्केट को समझने की कोशिश कर रहे हैं, तो थोड़ा और गहराई से अगर बात करें, जो ट्रेडिंग होती है या इन्वेस्टिंग हम कहते हैं, क्या होता है, क्या अंतर होता है इनमें?
0: बिल्कुल, कभी हम इन्वेस्टिंग की बात करें तो इन्वेस्टिंग में क्या होता है कि आप लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए किसी शेयर को खरीद के रखना चाहते हैं, तो आप उसको खरीद कर छोड़ सकते हैं, मतलब उसमें बाइंग होती है ओनली।
1: ओके,
0: ना, जैसे मुझे एग्जांपल के तौर पर मैंने टाटा स्टील का शेयर खरीदा कैश में, है ना, और उसको मैंने छोड़ दिया, तो ये इन्वेस्टिंग पार्ट हो गया है ना, लेकिन मैं उसे एज अ इंट्राडे जब हम काम करना शुरू करते हैं
1: जी,
0: ना, कि मुझे सोर्स ऑफ इनकम बनानी है, मैं आज ही खरीदूंगा, आज ही बेचूंगा, थोड़ी लिमिट भी चाहिए होती है, इसके और कैश फ्यूचर ऑप्शंस पार्ट होते हैं, तो आपने आज खरीदा, आज बेचा, फिर कभी बेच दिया और फिर खरीद लिया, इसमें सेलिंग और बाइंग भी होती है। इसे एग्जांपल के तौर पे आपने कुछ खरीदा नहीं है और पहले ही बेच दिया,
1: अच्छा,
0: तो वो ट्रेडिंग के पार्ट में पॉसिबल है, इन्वेस्टिंग में पॉसिबल नहीं है। इन्वेस्टिंग में केवल आपको खरीद के छोड़ना होता है, मतलब पहले एंट्री बाइंग होती है और फिर सेलिंग होती है। बट ट्रेडिंग में क्या होता है, आप पहले एंट्री सेलिंग भी कर सकते हैं। जैसे मैं इसको सरल शब्दों में बताऊं कि आपको कपड़े खरीदना है
1: जी,
0: तो आप खरीद सकते हो
1: जी।
0: बिना खरीदे बेच सकते हैं क्या?
1: जी।
0: नहीं बेच सकते। आप किसी भी शॉप पे जाके बोल नहीं सकते हो कि मुझे

0: ये ट्राउजर सेल करना है
1: राइट
0: नहीं नहीं कर सकते पॉसिबल नहीं है लेकिन स्टॉक मार्केट में पॉसिबल है कैसे पॉसिबल है एक्स वाई जेड कोई कंपनी है ना अब मुझे अपडेशन है कि ये कंपनी का शेयर गिरने वाला है तो मैं वो एक्स वाई जेड कंपनी के शेयर को खरीदने से पहले बेच दूंगा मतलब उसका प्राइस चल रहा है अभी एग्जांपल के तौर पे 200 रुपीज तो मैंने 200 की बीट से वो स्टॉक को सेल कर दिया ठीक है अब वो 200 से जब नीचे आया 190-180 आया तो मैंने उसको परचेज कर लिया तो 200 और 190 के बीच में 10 रुपीज का डिफरेंस आया तो 10 रुपया मेरा प्रॉफिट है
1: ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है जैसा आपने बताया लेकिन अगर किसी को शुरुआत करनी है तो क्या करना बेहतर रहता है शुरुआत में
0: शुरुआत के लिए सबसे पहले तो मैं बोलना चाहूंगा कि थोड़ा सा एजुकेटेड हो पेपर ट्रेडिंग स्टार्ट करे इसके लीगलाइज चीजें जो होती है उन्हें जाने और रेंडमली जो स्टॉक मार्केट के जो कॉल्स आते हैं जनरली उन्हें इग्नोर करे और जैसे डीमेट अकाउंट क्या होता है हम उसमें कैसे हम फंड ट्रांसफर करते हैं पेपर ट्रेडिंग के साथ में जो गवर्नमेंट की वेबसाइट है वहाँ पर शेयर्स के प्राइस ऊपर नीचे कैसे हो रहे हैं कैसे खरीदी हो रही है बिक्री हो रही है इसमें मोमेंटम कितना ज्यादा हो रहा है ये बेसिक चीजें की अवेयरनेस होनी चाहिए
1: पहले स्टडी करना जरूरी
0: है स्टडी करना बिल्कुल बहुत जरूरी
1: ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट हम इन्वेस्ट करने लगे
0: हाँ, नहीं नहीं ऐसा वो फिर क्या होगा उसमें क्या होगा अगर कभी कम नॉलेज के साथ में स्टॉक मार्केट में कोई उतरता है तो फिर आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम वो किसी भी चीज को गेन करने के लिए प्रतिबद्ध नहीं होता है क्योंकि वो लत के हिसाब से चालू कर देता है जैसे कभी मैं बात करूँ तो कमोडिटी में बहुत ज्यादा लोगों को स्कैल्पिंग की आदत हो चुकी है आज की तारीख में हाँ तो वो
1: मतलब जैसे आपने बताया कम एजुकेशन के साथ अगर हम उतरते हैं
0: हाँ मतलब प्रॉपर नॉलेज नहीं होता है तो फिर वो सीखना भी चाहता नहीं है कोई व्यक्ति फिर वो लॉस होता है फिर होते जाता है फिर लॉस रिकवर करने के चक्कर में और लॉस हो जाता है इस तरह से चीजें होना शुरू हो जाती है
1: तो कहीं ना कहीं एक तरीके से वो लत
0: लग जाती है
1: एंड आप उसको समझ के नहीं कर रहे तो लॉसेस ही होते जा रहे हैं और आप फिर भी उसे बाहर नहीं निकल
0: बिल्कुल बिल्कुल
1: तो जैसा कि आपने अभी भी सुना दोस्तों कि अगर स्टॉक मार्केट में आप एंट्री की सोच रहे हैं तो पहले समझिए पहले एजुकेट कीजिए खुद को लेकिन अगर एजुकेट करना है हमें खुद को तो कैसे करें मतलब कहाँ से सीखें
0: बिल्कुल मैंने आपको जैसे बताया कि जो NISM सर्टिफिकेशन जो कोर्सेज होते हैं वो साथ में आपको एक PDF फाइल भी प्रोवाइड करते हैं जो हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है बिल्कुल जैसे आपने बेसिक नॉलेज लिया जनरली पता चल गया स्टॉक मार्केट डीमेट अकाउंट के थ्रू हम ट्रेडिंग करते हैं अब हर व्यक्ति का अपना एक कैपिटल होता है उसकी अपनी एक रिक्वायरमेंट होती है और उस कैपिटल के हिसाब से उसे अपना रिटर्न चाहिए होता है क्योंकि इसमें कोई फंड का भी कोई क्राइटेरिया नहीं है आप 500 रुपीज से लेकर 5 करोड़ रुपए तक का इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं छोटे बड़े हर व्यक्ति के लिए अपॉर्चुनिटी होती है इसी फंड के अकॉर्डिंग इसमें सेगमेंट डिजाइन होते हैं जैसे एक ऑप्शंस ट्रेडिंग है ना जैसे इक्विटी हुआ इक्विटी में कैश में काम करना हुआ फ्यूचर में काम करना ऑप्शन में काम करना तो ऑप्शंस ट्रेडिंग जो होती है वो बहुत ही मिनिमम फंड से स्टार्ट होती है वो मिनिमम फंड से मैक्सिमम प्रॉफिट की तरफ जाती है और आज जो सबसे ज्यादा जो लॉसेस का जो रीजन है वो ऑप्शन ट्रेडिंग ही है जो मैं इसको उदाहरण के तौर पर आपको समझाना चाहूंगा जैसे मैंने टाटा स्टील की बात करी थी टाटा स्टील एग्जाम्पल के तौर पर है ना अभी 400 रुपीज चल रहा है 500 रुपीज चल रहा है जो भी प्राइस चल रहा है तो कोई भी स्टॉक है ABC वो 400 रुपीज चल रहा है आप एक शेयर खरीदेंगे तो कितने रुपए लगेंगे 400 रुपीज लेंगे 10 शेयर खरीदेंगे तो क्या रुपए लगेगा 4000 रुपीज लेंगे 1000 शेयर खरीदेंगे तो 4 लाख रुपीज कैपिटल लगेगा है ना लेकिन अगर कभी हम इसमें ऑप्शंस में काम करते हैं तो हम उस स्ट्राइक प्राइस के ऊपर काम न करते हम प्रीमियम के ऊपर काम करते हैं जो कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर लिमिटेड होता है इसकी एक एक्सपायरी होती है वीकली एक्सपायरी होती है यह हर गुरुवार को एक्सपायर होता है मतलब मंथ के आखिरी वाले में कभी स्टॉक की बात करें तो और इंडेक्स की बात करें तो ये वीकली एक्सपायर होता है और स्टॉक की बात करें तो ये मंथली एक्सपायर होता है और जैसे निफ्टी और बैंक निफ्टी का हम एग्जांपल लेके चलते हैं अभी निफ्टी चल रहा है 18,500 एग्जांपल और फाइनेंस निफ्टी चल रहा है 19,000 और बैंक निफ्टी चल रहा है 43,000 बैंक निफ्टी ने 43,000 का लेवल क्रॉस किया बहुत दिनों बाद तो 43,000 रुपीज जो उसका जो स्ट्राइक चल रहा है 43,000 तो मैं कभी कैश में काम करूंगा तो मुझे एक शेयर के लिए 43,000 रुपीज देना पड़ेंगे ना जो बड़ा अमाउंट है लेकिन मैं ऑप्शंस में काम करूंगा तो मैंने 43,000 का कॉल बाय किया
1: तो आपको कैश में नहीं लेना होगा
0: नहीं वो उसका प्रीमियम मिलेगा जो वो काफी कम होता है जैसे 43,000 का मैंने प्रीमियम कैश में इसको बाय किया तो उसका प्रीमियम अकॉर्डिंग टू उसकी एक्सपायरी जैसे ये चलता है शुक्रवार से गुरुवार तक है ना तो
1: मंडे टू फ्राइडे जी
0: फ्राइडे टू थर्सडे तो आज फ्राइडे का दिन है कॉन्ट्रैक्ट नया है तो 43,000 का कॉल आपको मिलेगा हो सकता है 100 रुपीज का, 200 का, 300 का, 400 का, तो जो 43,000 की चीज है वो आपको 200 रुपए में मिल गई।
1: ये ऑप्शंस
0: में, ऑप्शंस में। अब यहाँ पर लॉट होते हैं, नंबर ऑफ लॉट में काम करना होता है ना, तो इसका बैंक निफ्टी का लॉट चल रहा है 25 रुपीज का ना। अब आपने 100 रुपीज का प्रीमियम लिया, 43,000 रुपीज आपको 100 में प्रीमियम मिल गया, एक लॉट में आपको 2,500 रुपीज ही लगे
1: जी,
0: और 25 शेयर आ गए उसमें
1: जो इतने हजारों में है।
0: हाँ
1: जी,
0: और 25 शेयर अगर कभी हम 40,000 करते तो कितना ज्यादा इन्वेस्टमेंट लगता। बट यहाँ पर इसका ड्रॉबैक क्या है या कहे कुछ भी, आप इसको मान सकते हैं, इसको अपॉर्चुनिटी की तरह भी ले सकते हैं और ड्रॉबैक भी कह सकते हैं कि एक्सपायर होता है।
1: हाँ, एक हफ्ते का जो आपने
0: हाँ
1: जी।
0: अब इसमें क्या थोड़ा टेक्निकल पार्ट आ जाता है ये
1: जी।
0: इसमें टेक्निकल से हम बात करें तो इसमें क्या टाइम डीके जैसे जैसे लगता है, तो जैसे आउट ऑफ मनी और एट द मनी के सारे प्रीमियम गल जाते हैं, जीरो हो जाते हैं। जैसे वीकली हम एग्जांपल के तौर पे लेकर चलता हूँ, हम बैंक निफ्टी को ही लेकर चलते हैं। आज नया कॉन्ट्रैक्ट खुला 43,000 रुपीज का स्ट्राइक प्राइस है बैंक निफ्टी का। अगले गुरुवार आने तक अगर कभी बैंक निफ्टी 43,000 रुपीज पर ही बंद होती है
1: जी,
0: तो उसके कॉल और पुट दोनों के प्रीमियम जीरो हो जाएंगे।
1: तो मतलब अगर ये ऑप्शन ट्रेडिंग की जो आप बात कर रहे हैं यहाँ तक पहुँचना, तो पहले जो नॉर्मल स्टॉक मार्केट है उसको समझना, क्या उतार चढ़ाव हो रहा है,
0: बिल्कुल
1: मार्केट को स्टडी करते रहना लंबे समय तक, वो बहुत जरूरी,
0: बहुत जरूरी
1: है। तो आप वहीं जीरो
0: जाएंगे। जनरली क्या है कि लोग ऑप्शंस में काम करना स्टार्ट कर देते हैं, आपने डीमेट अकाउंट करवाया, आपका नंबर सर्कुलेट हुआ, सब कुछ ऑनलाइन हो चुका है,
1: सीधे
0: ब्रोकर आपको रेंडम कॉल आया और आपने काम करना शुरू कर दिया, तो वहाँ पे लॉसेस के चांसेस बढ़ जाते हैं।
1: ओके, तो जैसे कि आपने लॉसेस की बात किया, ये तब भी होते हैं जब हमें जानकारी नहीं होती और उतार चढ़ाव तो मार्केट में होता है। तो क्या जब हम इन्वेस्ट करना शुरू कर रहे हैं तो हम जितना हमारी सेविंग है, कई बार लोग सब कुछ इन्वेस्ट करते हैं,
0: बिल्कुल,
1: तो क्या करना चाहिए, कितना आपको परसेंटेज इन्वेस्ट करना चाहिए, क्या सब कुछ इन्वेस्ट कर देना?
0: नहीं नहीं, ये बहुत गलत है। मैं आपको एक बात क्लियर करना चाहूंगा कि यहाँ पर आप जो आपकी एक्स्ट्रा पैसा है जिसको आप सेविंग क्या FD करके रखते हैं, जो आप सालों साल तक विदड्रॉ नहीं करना चाहते, उसका भी आप 50% ही इन्वेस्ट करें। और एक पोर्टफोलियो डिजाइन करना होता है, केवल इन्वेस्ट करें तो उसमें पैसा थोड़ा सेफ होता है, क्योंकि आप इसकी होल्डिंग रखते हैं, यहाँ पे कोई एक्सपायरी या कोई गलने वाली चीज नहीं होती है। लेकिन हम जब ट्रेडिंग की बात करते हैं तो फिर ट्रेडिंग में आपको उससे भी उसका भी 50% ही ऐसा यूज करना चाहिए। और एक चीज और बता दूं मैं कि यहाँ पर टारगेट SL भी होते हैं, अगर कभी आपको लग रहा है कि लॉसेस जा रहा है तो पोजिशन से एग्जिट कर देना चाहिए। इसमें फंसने की जो बात होती है वो ये होती है, जैसे कि जब चांदी 70,000 रुपए से गिरना शुरू हुई थी तो लोगों को बहुत लॉस हुए, क्योंकि 70,000 से थोड़ा 500 रुपए नीचे आया तो और खरीद लिया, फिर नीचे आया तो फिर खरीद लिया, फिर नीचे आया तो फिर खरीद लिया, फिर वो एक्सपायर होके जीरो, मतलब इसमें स्टॉक की बात करो तो खत्म हो जाता है, कॉन्ट्रैक्ट चलता है उसमें भी
1: जी। ओके, तो जैसा कि आपने कहा कि आप जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, आपकी जो एक्स्ट्रा सेविंग है उसका भी 50% करें। ऐसा नहीं करें कि आप तुरंत अपना बहुत बड़ा कोई अमाउंट लगा देते हैं, या आपकी जो लाइफ सेविंग है आप किसी से लोन लेके या उधार लेके तो बिल्कुल भी नहीं करें। तो पहले, सबसे पहली बात जो हमने आज जानी है कि आप पहले समझिए स्टॉक एक्सचेंज होता क्या है, स्टॉक मार्केट होता क्या है, उसके बाद ही इसमें कदम रखिए। आपने ये तो बता दिया हमें कि कितने जो पैसों की जरूरत होती है वो 500 से आपने बोला कि शुरू कर सकते हैं, किसी भी अमाउंट से शुरू,
0: किसी भी अमाउंट से शुरू कर सकते हैं
1: जी। ओके, तो क्या हमें ये अपना मेन सोर्स ऑफ इनकम रखना चाहिए, या फिर क्योंकि अगर हम शुरुआत कर रहे हैं, हम एक यूथ हैं, मान लीजिए पढ़ाई भी कर रहे हैं, कुछ लोग जॉब भी कर रहे हैं, तो क्या जॉब छोड़ के इसको करना चाहिए, या सेकेंडरी एक इनकम भी हो सकता
0: है? बिल्कुल, ये सेकेंडरी सोर्स ऑफ इनकम बन सकता है ये, क्योंकि ये पूरा ऑनलाइन होता है, आप दुनिया के किसी भी कोने में बैठकर काम कर सकते हैं। ये मार्केट 9:00 से 3:30 तक ऑपरेट होता है, इस ड्यूरेशन में आप कहीं से भी ऑनलाइन इसमें काम कर सकते हैं। सेकेंडरी सोर्स ऑफ इनकम इसको बनाने के लिए सबसे पहले तो एक चीज ये बोलना चाहूंगा कि जैसे आपने डीमैट पे कुछ भी फंड ट्रांसफर किया और ट्रेडिंग स्टार्ट करी, ठीक है, और थोड़ा सा एजुकेशन के बाद में आपने काम शुरू करा, तो दिन का केवल एक ही ट्रेड लेना चाहिए। सस्ता स्कैल्पिंग क्या होता है, सेकेंडरी सोर्स ऑफ इनकम में भी क्या होता है कि स्कैल्पिंग करना शुरू करते हैं, मतलब मल्टीपल ट्रेड्स करना स्टार्ट कर देते हैं। आपने खरीदा, थोड़ा ऊपर नीचे पे बेच दिया, मतलब 9 से लेकर 3:30 बजे तक मल्टीपल ट्रेड में लोग 200 ट्रेड डाल देते हैं, 200 काटा प्लस माइनस प्लस माइनस
1: करते जाते हैं।
0: हाँ, तो वही स्टार्ट है इस चीज की। अगर कभी आप इसको ऐसा सेकेंडरी सोर्स बनाते हैं तो आपने एनालिसिस करके एक बार किसी चीज को खरीदा और उसका एक रिस्क रिवार्ड रेशो टारगेट और SL मेंटेन करा कि मैंने भाई 40,000 या 50,000 का इन्वेस्टमेंट करा है, तो उसका 2 से 3% का मुझे लॉस आता है तो मैं एग्जिट हो जाऊंगा और आज काम नहीं करूंगा, या 2 से 3% का मुझे प्रॉफिट आता है तो मैं एग्जिट हो जाऊंगा, मैं बहुत ज्यादा प्रॉफिट की एक्सपेक्टेशन भी नहीं रखूंगा। तो एक कैलकुलेटेड रिस्क रहती है ना
1: जी, तो अपने लिए डिसाइड
0: करना बहुत जरूरी, मतलब रिस्क और रिवॉर्ड। कि मैंने 50,000 के रिस्क लिए, मतलब मार्केट में 50,000 का ट्रेड लगाया है, तो उस रिस्क पे मुझे कितना रिवॉर्ड चाहिए, और जितना रिवॉर्ड चाहिए उसका कम मुझे रिस्क लेना है। मतलब मैं 10,000 का प्रॉफिट एक्सपेक्ट कर रहा हूँ तो मैं लॉस कितना लूंगा, 4,000-5,000। इसका उल्टा भी हो जाता है, लोग प्रॉफिट 2,000-3,000 का लेते हैं और एक ट्रेड में लॉस 40-50,000 का ले लेते हैं, तो फिर वो क्या होता है कि सर्वाइव नहीं कर पाते मार्केट में।
1: तो यानी खुद को आपको लिमिट में रखना
0: बहुत जरूरी है,
1: और वो भी वो लंबे समय तक।
0: लंबे समय तक
1: जी, कई बार हमें लगता है कि जल्दी प्रॉफिट हो जाए,
0: सारा प्रॉफिट हो जाए। अब जैसे क्या होता है कि कभी कभी एक रुपए का प्रीमियम एक्सपायरी में 100 रुपए भी चला जाता है, जब इन द मनी हो जाता है, मोमेंटम होता है स्टॉक मार्केट में, हैवी फ्लक्चुएशंस होते हैं। जैसे आरबीआई की पॉलिसी आई है या कोई इवेंट है, तो कोई बड़ी चीज जैसे बजट है, इंडियन बजट में आपने बजट लॉन्च किया, इधर हमारे वित्त मंत्री जब बजट पेश करते तो मार्केट में बहुत उथल पुछल होती है, तो एक रुपए का प्रीमियम 100 रुपए भी चला जाता है, तो बहुत बड़ी बात है। अब एक रुपए का प्रीमियम 100 रुपए चला गया तो आप मानेंगे कभी आपने 1,000 शेयर खरीदे, मतलब एक प्रीमियम 1,000 करे तो इन्वेस्टमेंट कितना हुआ आपका 1,000 का, और वो 100 रुपए चला गया तो प्रॉफिट कितना आ गया, 1,00,000 का,
1: एकदम से एक बड़ा प्रॉफिट हो जाता
0: है विद इन 15 मिनट। तो वही इस चीज की शुरुआत है। लेकिन जब हम कैलकुलेटेड काम करते हैं और जो छोटा ट्रेडर है या छोटा इन्वेस्टर है वो इस तरह के इवेंट को इग्नोर करे, जब हैवी फ्लक्चुएशन होता है उस दिन काम नहीं करना चाहिए,
1: नहीं तो कई बार लगेगा अरे एक बार प्रॉफिट हो गया चलो दोबारा से।
0: बिल्कुल, और वो है फिर शुरुआत होती है,
1: शुरुआत हो जाती है डाउनफॉल की, शुरुआत हो जाती है।
0: मतलब जो मिथ फैला हुआ है जो स्कैल्पिंग का सट्टे का, वो यही तो शुरुआत होती है। क्योंकि क्या होता है कि रिस्क रिवॉर्ड रेशो मेंटेन नहीं करा, आपने एक दिन में 1,00,000 रुपए कमा लिया 1,000 रुपए लगाकर, तो आपकी एक्सपेक्टेशंस क्या होगी, बढ़ जाएगी। अब अगले दिन आपको 2,000 का प्रॉफिट डाइजेस्ट नहीं होगा,
1: फिर लगेगा जी कुछ हुआ
0: ही नहीं। बट कभी हम ऐसे कभी हम कैलकुलेट करें तो एक दिन के आप कोई भी कंपनी में जॉब करते हैं तो बेसिक सैलरी 25-30,000 रुपए भी होती है
1: जी,
0: है ना, इससे ज्यादा नहीं होती है स्टार्टिंग में। तो आप एक दिन का कैलकुलेट करेंगे तो आपका 1,000 रुपए भी बन रहा है।
1: तो मतलब आपको बहुत कैलकुलेटेड होकर चलना है, समझदारी है। जैसा आपने कुछ चीजें बताई, बजट की बात की आपने, और आपने बात किया कि किस तरीके से मार्केट में और चीजें जो लॉन्च हो रही है, तो ये चीजें भी पढ़ना जानकारी लेना जरूरी है। ऐसा नहीं है कि हम अपने मन से बस कर रहे हैं जी। तो इसलिए दोस्तों जब एजुकेशन की बात होती है तो जरूरी है कि आप जो न्यूज है, जिस तरह की चीजें हैं जो इकोनॉमी पे असर डालती हैं, जो आप अगर स्टॉक मार्केट में कदम रख रहे हैं, तो लगातार खुद को एजुकेट करना जरूरी।
0: बिल्कुल, क्योंकि एक बहुत वास्ट सब्जेक्ट है, जैसे कि हम हमारी देश की जो इकोनॉमी को, वो हमारा देश का जो स्टॉक मार्केट का इंडेक्स ही रिप्रेजेंट करता है
1: जी।
0: हमारा जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का इंडेक्स है, इसको बोलते हैं निफ्टी
1: जी।
0: निफ्टी एक 50 कंपनियों का ग्रुप होती है, वो 50 कंपनियां जो अलग अलग सेक्टर की टॉप कंपनी है, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर की कंपनी हुई, आईटी सेक्टर की कंपनी हुई, टेक्सटाइल की कंपनी हुई, तो उन कंपनी की जो टॉप कंपनी होती है वो एक कंपनी उसके अंदर होती है। तो वो 50 कंपनियों का जो ग्रुप है वो ऊपर जाता है, मतलब स्टॉक मार्केट ऊपर जा रहा है, 50 में से 30 कंपनियां नीचे गई है ना, मतलब गिर रही, और 20 कंपनी ऊपर गई, तो स्टॉक मार्केट नीचे आया। मतलब उसका एवरेज जो होता है वही स्टॉक मार्केट के मोमेंटम को आपको पेपर में जनरली देखने को मिलता होगा कि आज निफ्टी ने 18,000 रुपए का लेवल क्रॉस किया, तो वो 18,000 रुपए का जो लेवल है वो 50 कंपनियों की जो वेज होनी है ना, उसमें से कंपनियां जो मैक्सिमम है वो ऊपर की तरफ जा रही है।
1: ओके, तो उसका एवरेज
0: होता है, उसका एवरेज होता है।
1: रविंद्र जी, जैसे आपने बताया स्टॉक मार्केट के बारे में और हमने लॉसेस की भी बात की, कई चीजें ऐसी भी होती है जो फेक होती है, और आजकल हम जानते हैं कि खबरें भी व्हाट्सएप या फिर सोशल मीडिया पे बहुत तरह के,
0: बिल्कुल
1: कई बार आते हैं लिंक्स, आप इस पे क्लिक कीजिए, अकाउंट नहीं या ये खरीद लीजिए, ये शेयर, ये कम, इस तरह के बहुत मैसेजेस भी आते हैं, वेबसाइट्स भी हैं, एप्लीकेशंस भी हैं, तो अब इनमें कैसे अंतर किया जाए, सही गलत क्या है और कैसे बच के रहा जाए।
0: बिल्कुल, ये आपने बहुत अच्छा क्वेश्चंस किया, और मेरा जो यहाँ पर आने का जो मोटो है वो मेन यही है, क्योंकि आप बेसिक इन्फॉर्मेशन तो यूट्यूब से या गूगल से या कहीं से भी ले सकते हैं, लेकिन जो इसमें फ्रॉड चल रहा है और जो इसमें जो जो कॉमन व्यक्ति जो उसमें फंस रहा है, वो उससे अपने आप को कैसे प्रिवेंट करे, उसमें मैं आपको कैसे अपने को प्रिकॉशंस यूज करनी है, मैं उसी के ऊपर थोड़ा डिटेल में चर्चा करना चाहूंगा कि क्या हो रहा है आज की तारीख में। जैसे जैसे हम टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ रहे हैं, जैसे जैसे हम इंटरनेट की दुनिया में हमारा जो प्रोग्रेस हो रही है, तो चीजें जो डाटा है वो लीक होना बहुत आसान हो गया है। ठीक है, जैसे प्राइवेसी नाम की चीज नहीं बची है। आपके पास एंड्रॉइड मोबाइल है, आपने सर्च करा स्टॉक मार्केट क्या है, ठीक है ना, आपने दो तीन लिंक के ऊपर क्लिक करा, यूट्यूब पे वीडियो देखे, है ना, किसी भी एप्लीकेशन पे अपना नंबर डाल दिया कि मुझे बेसिक इन्फॉर्मेशन आ जाए, या आपने किसी ब्रोकर के पास अपना डीमैट अकाउंट खुलवाया, वहाँ पे भी आपकी इन्फॉर्मेशन चली गई, या किसी भी इसी लिंक पर क्लिक करा जहाँ पर आपकी ऑलरेडी डिटेल चली गई है। मतलब आपका नंबर जब ऐसे किसी फ्रॉड ऑर्गेनाइजेशन के पास जाता है तो डेफिनेटली 101% वो आपको 101% कॉल करेंगे। जब वो आपको कॉल करते हैं, अब क्या है कि अवेयरनेस का बेसिक नॉलेज थोड़ा सा है
1: जी।
0: फोन आया, हेलो आप ट्रेडिंग करते हैं, जाहिर सी बात है वो व्यक्ति बोलेगा हाँ करता हूँ, किस सेगमेंट में काम करते हैं, कैश में, फ्यूचर में, ऑप्शंस में, तो वो अपना एक सेगमेंट भी बता देगा। उसके बाद में फिर वो धीरे धीरे धीरे धीरे वो आपको एक लालच देंगे कि हम हमारे पास बहुत अच्छे एक्सपर्ट है, वो आपको 10,000 रुपीज के इन्वेस्टमेंट के ऊपर आपको डेली बेसिस पे 10,000 का प्रॉफिट देंगे।
1: लालच देंगे आपको,
0: बिल्कुल डेफिनेटली लालच देंगे। और पॉसिबल है क्योंकि स्टॉक मार्केट है, मैंने बताया था कि आप 1,000 रुपए का भी प्रीमियम खरीदते हो, 100 रुपए जाएगा तो 1,00,000 का प्रॉफिट हो सकता है, तो उन्होंने तो उस हिसाब से कम बोला क्योंकि मार्केट के दायरे में बोला कि 10,000 पे भी मैं आपको 5 से 10,000 का डेली रिटर्न दे दूंगा, आप जो मैं बताऊंगा टिप्स एंड रिकमेंडेशन जल्दी जो प्रोवाइड करते हैं वो बंदा बोलेगा चलो ठीक है आप मुझे कॉल दिखाइए मैं वॉच करता हूँ, अच्छा लगा तो मैं काम कर लूंगा, ठीक है। अब उन्होंने ऐसे रेंडम कई लोगों को कॉल किया है,
1: कुछ लोग हाँ बोल देते हैं उसमें से।
0: हाँ, अब उनके पास एक डाटा आ गया कि मुझे आज 100 लोगों ने हाँ बोला है कंपनी ऑर्गेनाइजेशन में, तो 50 लोगों को उन्होंने बाय करवा दिया। अच्छा। और 50 लोगों को सेल करवा दिया
1: उसी में।
0: हाँ। जी। और मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, उन 100 लोगों में से 50 को तो प्रॉफिट होना 100%
1: है।
0: ओके, बिल्कुल। जिनको लॉस हो गया उनका फोन नहीं उठाया, उनको इग्नोर कर दिया, उनको किसी और नए नंबर से कॉल जाएगा लेकिन थोड़े एक ड्यूरेशन के बाद में। जिनको प्रॉफिट हुआ है उनसे वो डील करना स्टार्ट करते हैं कि आपने देखा होगा कि हमारी कॉल के ऊपर प्रॉफिट आया है, अगर आप डेली बेसिस पे इस तरह का रिटर्न चाहते हैं तो हमारी कॉल पे काम करें और पैसा कमाएं। इसके लिए क्या करना होगा, तो आप ऐसा करिए, इसके लिए आप हमें पेमेंट करिए, और वो फिर धीरे धीरे धीरे धीरे धीरे उनसे पेमेंट ऐंठना शुरू कर देते हैं और उन्हें सट्टा खिलाना शुरू कर देते हैं। बहुत ज्यादा प्रॉफिट हो गया तो बहुत बड़ी डिमांड कर लेते हैं, लॉस हो गया तो फिर कोई बात नहीं छोड़ देते हैं। इस तरीके से चीजें बहुत होने लगी,
1: फिर आप उनको ट्रैक नहीं कर पाएंगे,
0: ट्रैक नहीं कर पाएंगे।
1: तो ऐसे फोन कॉल से बचना है, मतलब कोई भी जब ट्रेडिंग आप स्टार्ट करते हैं, आप इन्वेस्टमेंट शुरू करते हैं, तो आप ऐसे कोई भी कॉल आए तो हम क्या करें, उसके इस तरह के जवाब ही नहीं दें इस तरह के।
0: जैसे कुछ ऑथराइज्ड कंपनियां भी होती है, है ना, तो आप उनसे बोल सकते हैं कि आप सेबी रजिस्टर्ड है, क्योंकि टिप्स एंड रिकमेंडेशन देने के लिए भी है ना गवर्नमेंट की एक बॉडी बनी हुई है ना, वो सेबी अपना एक मतलब एक रजिस्टर्ड करती है उनके अंडर में, और फिर उनको ऑथराइज करती है कि आप काम करें। उसमें भी कंडीशंस अलग ही होती है, वर्बली कॉल आपको कोई देता है तो काम नहीं करना है, मैसेज के थ्रू कॉल आना चाहिए, उस कंपनी का नाम होना चाहिए, उस कंपनी का सेबी रजिस्ट्रेशन नंबर होना चाहिए, मतलब ईच एंड एवरीथिंग आपके पास क्लियर होती है तब काम करना चाहिए।
1: तो और उसमें कॉल आए तो भरोसा नहीं,
0: कॉल कर, हाँ मतलब मैं बोलूँ 90% तो इग्नोर ही करना चाहिए। आप अपनी रिसर्च पे, अपनी मेहनत पे, अपने एफर्ट्स के ऊपर काम करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा।
1: और उसमें रिस्क जैसे आपने बोला कि बहुत ही ज्यादा है, क्योंकि सर से कॉल्स नहीं आते हैं जो सेबी रजिस्टर्ड है। हाँ। और टेक्स्ट बेस्ड आपने बोला, या कॉल भी करेगी।
0: हाँ,
1: एक
0: रजिस्ट्रेशन नंबर होगा,
1: वो आप ऑनलाइन चेक कर सकते
0: हैं, ऑनलाइन चेक कर सकते हैं। और उस पर भी हम क्यों ट्रस्ट करें, अगर कभी आपको कॉल आता है तो सबसे पहले सेबी रजिस्ट्रेशन नंबर के बाद में उसका एक इतिहास होता है, उनका एक हिस्ट्री होती है कि भाई आपका ट्रेकिंग रिकॉर्ड क्या है। और मैं तो ये कहूंगा कि मतलब मेरे एक्सपीरियंस ये कहूंगा कि आप जब तक किसी से फिजिकली नहीं मिलते हैं, है ना, कोई एक सेबी का रजिस्टर्ड ऑफिस भी है, तो आप वहाँ विजिट करें, वहाँ के ऑथराइज बॉडी से बात करें, और फिर उनसे वो खुद आप जब आप हम फिजिकली किसी से मिलते हैं तो वो आपसे फ्रॉड नहीं कर पाएगा। राइट,
1: क्योंकि आप देख रहे हैं,
0: आपको लोकेशन पता है, कंपनी पता है, इच एंड एवरीथिंग पता है ना, वो एरिया पता है, सब कुछ पता है, तो वो चांसेस कम हो जाते हैं, तो वो खुद ही आपको छोड़ देंगे। कभी उनके अंदर कुछ फॉल्ट है तो वो छोड़ देंगे, चलो इसको आप फोन मत लगाना, छोड़ दो ये अपने पास आके, बिना किसी से फिजिकली मिले इंटरेक्ट किए हुए किसी भी कंपनी, किसी भी पर्सन, किसी भी ऑथराइज बॉडी की कॉल के ऊपर काम करना बहुत हाई रिस्क है
1: जी। और उसमें आपको लॉस हो सकता है, और साथ साथ आप एक बड़े जाल में भी फंस सकते हैं, जो आपको लगातार लॉसेस हो सकते हैं। और अगर फायदा एक बार हो भी गया तब भी वो लॉन्ग टर्म में आपके लिए लॉस होगा, क्योंकि एक फ्रॉड है, तो फ्रॉड से बचना
0: बहुत जरूरी है।
1: जाते जाते मैं रविंद्र जी आपसे ये पूछना चाहूंगी, जो यूथ हमें सुन रहे हैं और जो मान लीजिए थोड़ी बहुत नॉलेज भी अटेन कर लेते हैं, जैसा आपने बताया कि गवर्नमेंट डेवलपमेंट की जो वेबसाइट है उसमें भी पीडीएफ उपलब्ध है हिंदी में, इंग्लिश
0: हाँ,
1: में
0: बिल्कुल,
1: और यूट्यूब चैनल्स है जो कई चीजें बता रहे
0: हैं। हाँ, अभी यूट्यूब चैनल्स और जो टेलीग्राम है वो भी एक मतलब आजकल बहुत ज्यादा फ्रॉड्स कर रहे हैं।
1: अच्छा
0: हाँ,
1: वो कैसे?
0: जैसे टेलीग्राम के ऊपर फ्री में टिप्स एंड रिकमेंडेशंस प्रोवाइड करने के चैनल्स बने हुए हैं और गवर्नमेंट ने इसके ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शंस भी लिए, कई चैनल को ब्लॉक भी किया है, इवन दो कई कंपनियां भी बैन करी है। तो वहां से भी आपको जो कॉल्स एंड टिप्स एंड रिकमेंडेशन टेलीग्राम से मिलती है उन्हें भी इग्नोर करना चाहिए। आए दिन जो है न्यूज में फ्लैश होता ही रहता है और उन्हें ट्रैक करना इसलिए मुश्किल होता है क्योंकि जब उनका इंटेंशन ही फ्रॉड करने का है तो वो ईच एंड एवरीथिंग सब फेक यूज करते हैं। मोबाइल फेक है, सिम फेक है, लोकेशन फेक है, अकाउंट्स फेक है, ईच एंड एवरीथिंग दे यूज फेक्ड, है ना। और फिर जब आप कंप्लेन करने भी जाते हैं तो देखिए क्या होता है कि जब हम फंस गए कंप्लेन करने गए, बहुत सारे लोग तो पहली बात कंप्लेन करते हैं, कंप्लेन भी कहाँ करें। एक भी अच्छा पॉइंट निकल कर आया है कि कोई व्यक्ति जो यहाँ सुन रहा है वो हो सकता है ऑलरेडी इस जाल में पहले से फंसा हुआ
1: जी, बहुत लोगों के साथ ऐसा
0: हो भी चुका होगा
1: जी।
0: तो उन्हें पता ही नहीं होता है कि हमें कंप्लेन कहाँ करनी है
1: जी,
0: और किससे करनी है और किस वे में कंप्लेन करनी है, है ना। तो उसके लिए भी आपको सेबी में ही कंप्लेन करनी होती है।
1: अच्छा
0: जी, और वहाँ पे प्रूफ लगता है कि आपने कब पैसा दिया, कितना पैसा दिया, किस अकाउंट में पैसा दिया, क्यों पैसा दिया, स्क्रीनशॉट्स व्हाट्सएप के सब कुछ होने चाहिए होता है, किस एवेज में पैसा दिया, वो ऑथराइज बॉडी को दिया या लोकल पर्सन को दिया, वो सब आपको वहाँ पर डिटेल फिल करनी होती है। सेबी की वेबसाइट के ऊपर ही कंप्लेन का एक ऑप्शन होता है, वहाँ पर आपको रजिस्टर करना पड़ती है। आप जिस एरिया में लोकल में वहाँ पर जाके FIR भी कर सकते हैं, बट जनरली मोस्ट ऑफ द टाइम पे FIR इतनी आसानी से दर्ज नहीं हो पाती है।
1: हाँ, तो आप ऑनलाइन लेकिन हो सकते
0: हैं। हाँ, ऑनलाइन सेबी की वेबसाइट पे आप कंप्लेन कर सकते हैं।
1: तो उसके लिए ये सब चीजें संभाल के रखना
0: जी।
1: तो अगर हम जैसे अकाउंट बनाते हैं तो क्या चीज है ऐसी, अगर मैं आपको पूछूं कि जो ध्यान रखनी है चीजें हमें, तो क्या आप बताएंगे कि आप अगर शुरू कर रहे हैं, आप शुरू कर चुके हैं, तो चाहे डॉक्यूमेंटेशन हो आपका, डॉक्यूमेंट्स हो, चाहे पैसे हो, चाहे टाइम हो कितना आपको देना है उसके लिए, क्योंकि कई बार अगर हम पूरा ही टाइम उसी में लगे हुए हैं और अपने और बाकी काम को छोड़ दिया है हमने, तो वो भी ठीक नहीं होता है। तो क्या आप कुछ टिप्स देना चाहेंगे?
0: बिल्कुल, मैं मतलब जो हमारा यूथ है उनको मैं एक मैसेज देना चाहूंगा कि अगर कभी आप स्टॉक मार्केट के बारे में सोच रहे हैं या प्लान कर रहे हैं या सेकेंडरी सोर्स ऑफ इनकम जनरेट करना चाहते हैं, तो सबसे पहले तो सेकेंडरी सोर्स ऑफ इनकम जनरेट करने के लिए आपकी प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम होना चाहिए। तो सीधी सी बात है कि फोकस आपको आपके पहले अपने एरिया पे करना है, जो आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन जिस चीज में आपकी मास्टरी है उसमें करें। उसके बाद जब हम इसमें धीरे धीरे एजुकेट होते हैं, ऐसा नहीं ये भी प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम बन सकता है, लेकिन वो एक लंबे एक्सपीरियंस के बाद बनेगा। कम से कम मिनिमम आपको 6 महीने पेपर ट्रेडिंग करनी चाहिए।
1: पेपर ट्रेडिंग
0: मतलब आपने रियल में पैसा नहीं लगाया है, मार्केट आपके सामने चल रहा है, सब कुछ ऑनलाइन है ना, आपको बेसिक नॉलेज आ गई है, तो आपने टेक्निकली इसका चार्ट ट्रेडिंग कैसे होता है, है ना, बुक्स आपके बहुत सारी अवेलेबल है मार्केट में, उनको रीड करा, चार्ट ट्रेडिंग करा, है ना, सब एनालिसिस धीरे धीरे धीरे आती है। वो उसके बिहाफ में फिर आपको खुद आइडिया हो जाता है, 6 महीने ट्रेडिंग करने के बाद में आपका खुद का एक पोर्टफोलियो डिजाइन होता है कि मैंने 6 महीने है ना काम किया ऑफलाइन, मतलब पेपर ट्रेड करा, तो क्या प्रॉफिट निकल कर आ रहा है, आ भी रहा है नहीं आ रहा है। और पेपर ट्रेडिंग में भी एक चीज का ध्यान रखना होता है कि जो रियलिटी में आप फंड लगा सकते हो उतने ही फंड का पेपर ट्रेड करना है।
1: राइट, तो मतलब एज इफ सब कुछ हो रहा है लेकिन पेपर
0: हो रहा है। अब पेपर ट्रेडिंग में भी क्या होता है कि जैसे वहां पे तो पेपर ट्रेडिंग हो रही है, तो आपने एक 1 CR का फंड में आप ट्रेडिंग कर रहे हैं, जब रियलिटी में आपको इन्वेस्ट करना है तो आप 1 लाख भी नहीं कर पा रहे, तो फिर वो मैच नहीं हो पाएगा,
1: तो आपको प्रैक्टिकल नहीं पता चलेगा कि आपके साथ एक्चुअली क्या
0: होने वाला है। जैसे मैं प्लान कर रहा हूँ, मेरी जो प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम पे मेरी 40,000 की सैलरी है, मैं हर महीने 5 से 10 हज़ार रुपए सेविंग करता हूँ, मैं साल के 50-60 हज़ार रुपए सेव कर सकता हूँ। तो मैं चाहूंगा कि मैं अपनी एक साल की सेविंग से ट्रेडिंग स्टार्ट करता हूँ, तो मैं पेपर ट्रेड में भी 40-50,000 के इन्वेस्टमेंट के हिसाब से ही ट्रेड करके नोट डाउन करूंगा कि आज मुझे 400 का लॉस हुआ, आज मुझे 400 का प्रॉफिट हुआ, आज मुझे 2,000 का लॉस हुआ। तो एक आपका 6 महीने का रिकॉर्ड मेंटेन होगा, है ना, उसके ही रिकॉर्ड के ऊपर फिर आप स्टार्ट कर सकते हैं।
1: ओके, तो आपको आइडिया हो जाएगा पूरी तरीके से। और जैसा आपने बताया था रविंद्र जी NISM क्वालिफिकेशन के बारे में, तो अगर आपने जो क्वालिफिकेशन ली, ये कितने समय के अनुभव के बाद या क्या स्टडी करने के बाद ये आपने अप्लाई किया या फिर आप क्वालिफाई हुए?
0: तो इसमें भी क्या होता है कि कुछ बेसिक एकेडमिक की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। वैसे तो मैं MSc बॉटनी हूँ, मेरा फील्ड बिल्कुल मतलब अलग है,
1: अलग है बिल्कुल।
0: मैंने बॉटनी में एमएससी कर रखा है खोलकर कॉलेज इंदौर से, बट धीरे धीरे मेरा स्टॉक मार्केट में इंटरेस्ट आया
1: जी.
0: तो फिर मैंने इसके लिए जो रिसेंटली जो बोलते स्टॉक ब्रोकर के लिए अप्लाई किया. तो वहां पर मुझे पता था कि अच्छे से काम करना है तो इक्विटी डेरिवेटिव का आपके पास सर्टिफिकेशन होना चाहिए. म्यूचुअल फंड में आप किसी को काम करवाते हैं म्यूचुअल फंड का सर्टिफिकेशन होना चाहिए. तो फिर मैं जो हमारी गवर्नमेंट की बॉडी है जो ऑथोराइज बॉडी है वहां पर जाके इसका जो फॉर्म फिल होता है जो चार्जेस लगते हैं एक डेट वो देते हैं उस डेट पर आपको जाके ऑनलाइन एग्जाम देनी होती है और उसके फिर आपको सर्टिफिकेट मिलता है.
1: ओके और डेफिनेटली आप बता तो बहुत सिंपली रहे हैं लेकिन हाँ इसके लिए नॉलेज बहुत ज्यादा
0: नॉलेज मुझे ऐसे तो मुझे ओवरऑल 10 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस है स्टॉक मार्केट का. काम करते करते मुझे 10 साल हो चुके हैं इस मार्केट में और जैसे मैं खुद भी ट्रेड करता हूँ और किसी को ट्रेड प्रोवाइड नहीं करता हूँ. नॉलेज प्रोवाइड करता हूँ अवेयरनेस काफी लोगों को देता हूँ लेकिन किसी को टिप्स एंड रिकमेंडेशन में अपनी फैमिली में भी नहीं देता हूँ.
1: ये आपने अपना अपने लिए
0: ये मैं अपना इवन दो मैं किसी को ज्यादा मतलब जो ज्यादा करीब के लोग होते हैं उन्हें मैं बोलता भी नहीं हूँ कि आप इसमें काम करें. क्योंकि क्या होता है कि जैसे क्या होता है कि हमारे बोलने का इंटेंशन होता है अलग और समझने का इंटेंशन होता है किसी का अलग. तो मैं पर्सनली किसी को ट्रेड नहीं देता हूँ. हाँ लेकिन एजुकेट जरूर करता हूँ.
1: तो अगर आपका इंटेंशन ये है कि जल्दी से पैसा कमा लें तो ये आपके लिए नहीं है. आप उसको बैलेंस रूप में एक काम की तरह सीखने के लिए लर्निंग के लिए इनकम का एक सोर्स बनाना चाहें एजुकेटेड होकर तो ये आपके काम
0: फिर
1: अगर आप ये सोचें कि हाँ मैंने पैसा लगाया मुझे बहुत कुछ मिल जाए एकदम से तो ये आपके लिए बिल्कुल भी नहीं है. तो इसके लिए एक सर्टेन लेवल ऑफ मैच्योरिटी
0: होना बहुत जरूरी है. अब जैसे इसका एक पार्ट आपको और बता दूं मैं कि जैसे डब्बा ट्रेडिंग भी होती है ना कई लोग उसमें भी फंस जाते हैं. डब्बा ट्रेडिंग से मतलब क्या है कि वो डीमैट अकाउंट ओपन नहीं करवाते हुए फिजिकली रजिस्टर्ड मेंटेन करके भी लोगों को ट्रेड करवाते हैं और फिर उनके लॉसेस का सारा पैसा वो रख लेते हैं. तो उससे भी बहुत सतर्क होना जरूरी है. मतलब राजस्थान और गुजरात में जैसे ऑल ओवर कभी हम इंडिया की बात करें तो स्टॉक मार्केट में केवल 2-3% लोग ही ट्रेड करते हैं इन्वेस्ट करते हैं 140 करोड़ की पॉपुलेशन में. और यही हम रेशियो कभी अमेरिका में देखें तो मोर देन 50-60% लोग काम करते हैं.
1: बहुत अंतर है,
0: बहुत ज्यादा अंतर हो गया. और इवन तो मैं आपको बता दूं केवल ये कोविड का जो पीरियड आया था उसमें ही ट्रेडर और इन्वेस्टर की जो संख्या है वो बढ़ी. अदरवाइज हम 1% भी ट्रेड नहीं करते थे.
1: अच्छा,
0: बहुत ज्यादा आया है. बहुत मतलब अब जो है ट्रेडर की संख्या में उछल आया है. हम 4% लेकिन वो भी अभी हम ज्यादा पड़े कोविड के प्रिपरेशन में.
1: ओके, तो हमें फ्रॉड से बचना है और जैसा आपने कहा कि पहले अपने एजुकेशन में काम करना है, दूसरा स्मॉल इन्वेस्टमेंट करना है, सब कुछ नहीं लगा देना है. और जैसा आपने कहा सेबी और इन संस्थाओं के बारे में आप पढ़ें जानें और वहाँ कंप्लेन भी कर सकते हैं कुछ कुछ गलत हो तो और सीख भी सकते हैं.
0: बिल्कुल बिल्कुल.
1: तो मुझे लगता है बहुत सारी जानकारी आपने दी. आपको बहुत बहुत शुक्रिया रविंद्र जी. हमें आज एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग के साथ ये भी पता चला क्या करना है और क्या नहीं करना है. डेफिनेटली ये इंटरव्यू सुन के आपको एक बैकग्राउंड तो जरूर मिल गया होगा दोस्तों. और अगर आपको इंटरेस्ट है तो और समझिए पहले इस चीज को और बिल्कुल भी गलत छलावे में मत आइए. कोई भी काम शॉर्टकट से नहीं होता है, हो भी जाता है तो अच्छा नहीं होता है या लॉन्ग टर्म बेनिफिट नहीं देता है जीवन में. तो आपको बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए.
0: थैंक यू वेरी मच.
1: थैंक यू दोस्तों. आपका भी अगर कोई सवाल है, कुछ भी आप कहना चाहते हैं, रेडियो मधुबन से जुड़ना चाहते हैं तो हमारा नंबर है 9414151415 यानी 9414151415. हमारे साथ जुड़े रहिए, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए.
2: मोदी हर परिवार को घर में बिजली बनाकर वही बिजली बेचकर कमाई का एक और साधन देना चाहता है.
3: भारत के प्रधानमंत्री ने भारत में जिस सौर क्रांति का आगाज किया था उसका असर अब दिखने लगा है. भारत में एक एक करके 30 लाख से अधिक परिवारों की छत पर सोलर पैनल लग चुके हैं. आप भी इस ऊर्जा क्रांति का हिस्सा बने. पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना. जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in.

ओम शांति। नमस्कार, मैं हूं नीलम कंबोज, करनाल हरियाणा से, और आप सभी को आज के दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM। सुनते रहो।

किसी की जिंदगी में कोई दुर्घटना घटित न हो ये हम सभी चाहते हैं। पर अचानक अगर कोई विपत्ति आ जाए तो घबराइए नहीं, तुरंत कॉल कीजिए अपने शहर की पुलिस को। डायल कीजिए 100 अपने फोन से। सजग रहिए, सुरक्षित रहिए। रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी।

मैं हूँ वजाहत हबीबुल्ला और आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

0: ओए रुक, ओए रुक रुक, कोई सुनाई नहीं देती? और ये पुकार है आपकी गड्डी की, तो कह रही है कि बिना पिए मेरे को चलाओ, और ये पुकार आपके बच्चों की भी हो सकती है, तो जो सलामत घर पहुंचना हो तो बिना पिए गाड़ी चलाना, समझे? चलो निकल लो अब, और हाँ हैप्पी जर्नी मेरी तरफ से अवलदार कड़क। हाँ जो आपको कहता है डोंट ड्रिंक एंड ड्राइव, और ठीक ना? ठीक।
1: ब्रह्मा कुमारीज के सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी।

0: तंबाकू क्या होता है?
1: अरे तिकू नहीं पता क्या? इसमें पता है लोग धुएं में अपनी फिक्र उड़ा देते। अरे गाना नहीं सुना क्या तूने?
2: हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया।
0: अच्छा तो फिर मेरे नंबर का माए तो क्या मैं भी ऐसा कर सकता हूँ?
1: अरे कोई भी कर सकता है, तंबाकू तो बड़ा ही कूल होता है।
3: ऐसी बातें बचपन में होती हैं, युवावस्था में

या और बड़े होने के बाद भी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि तंबाकू या धूम्रपान व्यक्ति के मानसिक स्वास्थ्य के साथ शारीरिक सेहत पर बहुत बुरा असर डालता है। बीड़ी, सिगरेट, गुटखा इत्यादि के सेवन से कई तरह की बीमारियां हो सकती हैं। धूम्रपान करने से धमनियां कमजोर होने लगती हैं और कोरोनरी हार्ट डिजीज या स्ट्रोक भी हो सकता है। सलाह लीजिए डॉक्टर की और हिम्मत बढ़ाइए अपनों की। रेडियो मधुबन द्वारा जानकारी जनहित में जारी।

0: समय की बात है, ब्रजभूम जिले में एक राजा था। उसके राज्य में सभी लोग खुशी से रह रहे थे। फिर भी राजा भेष बदल कर राज्य में घूमना चाहते थे। जैसा उन्होंने सोचा था वैसा ही हुआ। एक सुबह राजा अपने पसंदीदा घोड़े पर सवार होकर निकल गए। और घूमते घूमते जब वो राज्य के अंतिम छोर पर पहुँचे तो उन्होंने देखा एक असहाय बुजुर्ग व्यक्ति राहगीरों से मदद की भीख मांग रहा था। लेकिन सभी लोग उसे नजरअंदाज करते हुए जा रहे थे, कोई भी उस पर ध्यान ही नहीं दे रहा था। तब राजा उसके पास गए और पूछा,
1: कुछ चाहिए आपको?
2: क्या तुम मुझे घर तक छोड़ दोगे क्या?
1: आपका घर कहाँ है?
2: वो मेरा घर उस तरफ है, समस्तीपुर नाम की एक जगह है, बस उसी गांव में।
1: अच्छा, चलिए मैं आपको छोड़ देता हूँ, आइए।
0: इतना कहकर राजा उसे अपने घोड़े पर बिठाता है और उसके घर के नजदीक चौराहे पर उसे पहुंचाकर कहता है,
1: ठीक है अब आप आइए, मुझे अभी बहुत लंबा सफर तय करना है, शाम भी होने वाली है।
2: क्या ठीक है? हाँ ठीक है, से तुम्हारा क्या मतलब है? ये घोड़ा तो मेरा है।
3: मैंने तो आपकी मदद की है और आप है कि मेरे घोड़े पर अपना होने का दावा कर रहे हैं।
1: कोई इंसान इतना कृतघ्न कैसे हो सकता है? आप तो बहुत बेईमान हैं। हाँ
2: सही ही कहा है तुमने, लेकिन तुम्हारे पास क्या सबूत है? जैसे तुम इस काम के लिए पूरी तरह अजनबी हो, वैसे मैं भी हूँ। और तुम्हारी बातों पर विश्वास करेगा कौन? इसलिए ये घोड़ा मुझे दे दो और चुपचाप यहाँ से निकल जाओ।
0: ये सुनकर राजा बड़े संशय में पड़ गए। अब अगर वो बुजुर्ग को घोड़े से जबरदस्ती उतार देते हैं तो वो बुजुर्ग चिल्लाएगा और लोग इकट्ठा हो जाएंगे, सभी लोग उसका पक्ष लेने लग जाएंगे। और अगर वो उसे 10 सोने के सिक्कों के साथ जाने देते हैं तो वो फिर से इसी तरह किसी को धोखा दे सकता है। ये सोचकर राजा ने निर्णय लिया कि वो इस मामले को लेकर समस्तीपुर के सरपंच के पास जाएंगे, वो निश्चित तौर पर सही फैसला लेंगे। हो सकता है कि उन्हें अपना घोड़ा खोना पड़े, लेकिन बदले में उन्हें ये पता चल जाएगा कि गांव का सरपंच न्याय करने में कितनी बुद्धि का उपयोग करता है। ये सोचकर राजा ने उससे कहा,
1: ठीक है तब चलिए सरपंच के पास।
0: इस प्रस्ताव को उस बुजुर्ग ने मान लिया। इसके बाद दोनों सरपंच के पास गए। सरपंच अपना फैसला एक खुले मैदान में सुना रहे थे। उनके सामने एक तेल व्यापारी और एक मुठिया खड़ा है। मुठिया के हाथ में एक सोने का सिक्का है जिसे वो अपना बता रहा है।
4: सरपंच जी, ये सोने का सिक्का मेरा है। ये सिक्का मेरे पास काफी समय से था, लेकिन आज सुबह खो गया था।
1: कोई सबूत है क्या?
4: नहीं सरपंच जी।
0: सरपंच ने सिक्का अपने पास रख लिया और उन दोनों को अगले दिन आने को कहा। इस समय राजा को आश्चर्य हो रहा था कि जब कोई साक्ष्य है ही नहीं तो ये सरपंच सही निर्णय कैसे देंगे। अगला मामला एक लेखक और एक दर्जी का था। सरपंच ने लेखक से पूछा,
1: आप क्या करते हैं?
3: हुजूर मैं लेखक हूँ।
1: तो फिर यहाँ क्यों आए?
3: हुजूर आज सुबह जब मैं बाहर गया तो किसी ने मेरी सीखने की किताब चोरी कर ली और अब वो किताब इनके पास है।
1: क्या किसी ने दर्जी को उस किताब को चोरी करते देखा है?
3: नहीं हुजूर।
1: ठीक है, किताब को यहीं छोड़ दो, तुम दोनों कल आ जाना।
0: इसके बाद सरपंच ने राजा और उस बुजुर्ग को बुलाया।
1: महामहिम, मैं एक राहगीर हूँ, मैं बहुत दूर से आया हूँ। रास्ते पर इस बुजुर्ग की गुहार सुनकर मैंने उसे अपने घोड़े पर बिठा लिया और यहाँ छोड़ने आ गया। पहुँचने के बाद जब मैंने नीचे उतरने को कहा तो इन्होंने साफ साफ इनकार कर दिया और दावा किया कि ये घोड़ा उनका है। आप अपने ऊपर लगे आरोप पर कुछ कहना चाहते हैं?
2: ये घोड़ा तो मेरा है हुजूर, ये घोड़ा तो मेरे पास बचपन से है, और अब अगर ये मुझसे किसी ने छीन लिया तो मैं कैसे जीऊंगा हुजूर। मैं बूढ़ा और कमजोर हूँ, ठीक से चल भी नहीं पाता हूँ हुजूर। ये घोड़ा ही मेरे लिए सब कुछ है हुजूर, सब कुछ है।
1: क्या इस घटना का कोई गवाह है?
3: नहीं महामहिम, कोई गवाह नहीं है।
1: अच्छा, घोड़े को मेरे अस्तबल में छोड़ दो, कल सुबह तुम दोनों आ जाना।
0: अगली सुबह राजा न्याय स्थल पर पहुँचे ये देखने के लिए कि सरपंच कैसे न्याय करते हैं। सरपंच ने आते ही तेल व्यापारी को अपने पास बुलाया और उससे कहा,
1: ये लो, ये सिक्का तुम्हारा ही है, तुम्हारी सजा ये है कि तुम तेल व्यापारी की एक महीने तक बिना किसी भुगतान के सेवा करोगे। तुम लोग इस मुठिया पर नजर रखना, देखना कि आदेश का ठीक से पालन कर रहा है या नहीं।
0: उसके बाद लेखक और दर्जी को बुलाया और कहा,
1: यह किताब लेखक की है, इसलिए मैं ये किताब तुम्हें लौटा रहा हूँ।
5: लेकिन हुजूर, मैं कसम खाकर कहता हूँ कि ये किताब मेरी है।
1: इस कपटी दर्जी को अभी यहाँ से ले जाओ और ये सुनिश्चित करो कि वो इस लेखक को परेशान करने के लिए इसे 5 सोने के सिक्के दे।
0: राजा ऐसा न्याय देखकर सोच में पड़ गए। वो सोचने लगे कि आखिर सरपंच को कैसे पता चला कि कौन सी वस्तु किसकी है। वो सोच में पड़ गए कि असली हकदार को न्याय मिला भी या नहीं। तभी उन्होंने राजा और बुजुर्ग को बुलाया और कहा,
1: किसी अजनबी के उपकार के बदले में इस उम्र में भी आप इतनी कृतघ्रता कैसे कर सकते हैं? आखिर आपकी उम्र का लिहाज रखते हुए मैं आपको कठोर दंड तो नहीं दूंगा, लेकिन आपकी नीचता के दंड स्वरूप आपको आज से ही समस्तीपुर के चौराहे पर बैठना होगा और वहाँ से गुजरने वाले सभी यात्रियों को सम्मान देना होगा तथा नम्रता से बात करनी होगी। आप निसंदेह एक अच्छे इंसान है, मैं जानता हूँ कि घोड़ा आपका है, आपका घोड़ा आपको लौटाया जा रहा है। अब आप अपने आगे की यात्रा स्वतंत्र रूप से कर सकते हैं। उम्मीद है कि भविष्य में आपको अपने अच्छे काम का फल अवश्य मिलेगा।
0: राजा ने देखा कि सरपंच न्यायपूर्ण कार्य कर रहे हैं और वो भी बिना किसी सबूत के, पर ये कैसे हो सकता है? ये सोचकर उन्होंने सरपंच से पूछने का फैसला किया, वो भी अंतिम निर्णय के बाद। राजा ऐसा सोचकर सरपंच को अकेला पाकर उनसे पूछते हैं,
3: महामहिम, यदि आप बुरा ना माने तो मैं आपसे एक बात पूछूं क्या?
1: अरे राहगीर जी, क्या बात कर रहे हैं? हाँ हाँ, बेझिझक होकर पूछे।
3: हे महामहिम, आपको कैसे पता चला कि वो सिक्का तेल व्यापारी का था, किताब लेखक की थी और घोड़ा मेरा था?
1: इन सब का फैसला करना बहुत आसान था। आपने तेल व्यापारी को ये कहते जरूर सुना होगा कि ये सिक्का उनके पास बहुत दिनों से था।
3: हाँ महामानव,
1: मैंने उस सिक्के को साफ पानी से भरे गिलास में रखा और पानी में सिक्के से तेल की एक बूंद निकली, तो इससे ये साबित होता है कि ये सिक्का तेल व्यापारी का है और किसी का नहीं।
3: अच्छा, वो लेखक और दर्जी वाला मामला?
1: वो तो बहुत आसान था। किताब के पन्नों को ध्यान से देखने पर मैंने देखा, विद्वान लेखक के कर्तव्य वाले पृष्ठ पर बार बार उपयोग के कारण घिस गया है। अब एक दर्जी तो लेखक के कर्तव्य नहीं पड़ेगा ना, आप ही बताइए। सही कहा ना?
3: आपका न्याय निसंदेह है, असंदिग्ध है, लेकिन आपको ये कैसे पता चला कि वो घोड़ा मेरा ही था, उनका नहीं?
1: पिछली रात को मैंने आपका घोड़ा अपने अस्तबल में रखवा दिया। आप दोनों को अस्तबल के रास्ते से होकर यहाँ पे आना था। आज सुबह जब आप दोनों अस्तबल के पास से जा रहे थे, तब मैं अस्तबल के पीछे एक कुटिया में छुपा हुआ था, ये देखने के लिए कि घोड़ा क्या कर रहा है। जब वो बुजुर्ग आदमी घोड़े के पास से गुजरे तो घोड़े की ओर से मुझे कोई प्रतिक्रिया नहीं दिखाई दी, लेकिन जैसे ही आप अस्तबल के पास से गुजरे, घोड़े ने अपनी गर्दन उठाई और पुकारा, जैसे कि घोड़ा आम तौर पर तब करते हैं जब अपने प्रिय मालिक को देखते हैं। तब मैं समझ गया था कि ये घोड़ा सिर्फ और सिर्फ आपका ही है।
3: आपकी बुद्धिमानी का तो कोई जवाब नहीं है महामहिम। मेरा नाम हेमंद्र नारायण है मैं इस बीरभूम जिले का राजा हूँ। माननीय सरपंच जी, मैं आपकी न्याय व्यवस्था से बहुत ही ज्यादा संतुष्ट हुआ हूँ और इसीलिए मैं आपको आज से इस बीरभूम जिले का मुखिया सचिव नियुक्त करता हूँ।

0: बताता हूँ।
1: प्रकृति बेटा, पृथ्वी पर तुम्हें क्या करना है तुम्हें पता है ना?
2: मुझे लोगों को प्यार से इंस्पायर और लाइफ के लिए एजुकेट करना है, ताकि वो नेचुरल रिसोर्सेज का उपयोग कर इस पृथ्वी को बचाए रखे।
1: इसमें तुम्हारी मदद करेंगी ये तीन चीजें। पहली, टियारा ऑफ फ्लावर्स, जो तुम्हें हमेशा हैप्पी और एनर्जेटिक रखेंगे। दूसरा, ये बैज ऑफ लाइफ, जो लोगों को पर्यावरण के लिए लाइफ जीवन शैली की याद दिलाएगा। जब वे प्रकृति की रक्षा करेंगे तो प्रकृति उनकी रक्षा करेगी। तुम ये बैज उन लोगों को भी दे सकती हो जो हमारे प्लैनेट की बेहतरी के लिए योगदान करते हैं। और तीसरा, ये बैग ऑफ होप, जब भी कोई एनवायरनमेंट को हार्म करे तो तुम इसमें से इको सस्टेनेबल अल्टरनेटिव निकाल कर उसे देना।
2: ओके, अब मैं अपने मिशन पर चलती हूँ।

0: आज खाने का स्वाद रोज से ज्यादा बेहतर आ रहा है उर्वशी।
1: आपके कहने का मतलब है रोज खाना अच्छा नहीं बनता है?
0: मैंने ऐसा कब कहा? मैंने कहा रोज से ज्यादा बेहतर है।
1: क्योंकि इस बार घी मैंने गंगूधर से खरीदा है, शुद्ध और एकदम असली घी।
0: मैंने पहले कभी घी का इतना अच्छा स्वाद नहीं चखा उर्वशी, वाकई ये घी बहुत अच्छा है।
1: सही कहा आपने।
2: जहाँ पना आगरा की कचौरी की बात ही कुछ और है। मिया, लखनऊ का जायका भी कुछ कम नहीं, कसीम का कबाब और बिरयानी का क्या कहना।
0: और दौलत की चाट भी कमाल की होती है। आप सभी लोगों की खाने की बात सुन सुन कर हमें भी भूख लग गई है। अब भोजन करने के बाद ही सभा शुरू होगी। वाह वाह, क्या खुशबू है, क्या स्वाद है, लाजवाब है इसका स्वाद। हम बहुत खुश हुए। मुझे पता था जहाँ पना आपको इसका स्वाद पसंद आएगा। मैंने खान सामा को कहकर गंगूधर जी के बनाए घी से खाना बनाने के लिए कहा है। हमने पहले ऐसा घी कभी नहीं खाया। खान सामा, खान सामा, अब से खाना हर रोज इसी घी में बनेगा और उस पुराने घी वाले को मना कर दो।
3: जी हुजूर। जहाँ पना को आपका दिया घी पसंद नहीं आ रहा है, इसलिए आज से आप घी भेजना बंद कर दीजिए। उन्हें गंगूधर का घी पसंद आ गया है।
2: खान सामा, मैं अच्छा घी भेजूंगा और सस्ता भी करके दूंगा, लेकिन आप मना मत करना।
3: मैं कुछ नहीं कर सकता, अब आप जा सकते हैं।
1: ये कैसी गंध आ रही है खाने में?
0: गंध? ये क्या बेस्वाद पका दिया? खान सामा, खान सामा, ये क्या पकाया है? कैसी गंध आ रही है खाने में?
3: हुजूर, खाना तो स्वादिष्ट ही था, ये बेस्वाद कैसे हो गया? मैं इसे देखकर आपको बताता हूँ। जहाँ पना, मैंने सारी भोजन सामग्री की जांच परख की, सारे ठीक थे, लेकिन घी के डब्बे में अभी अभी खराब होने के असर दिख रहे हैं। खाना इसी वजह से बेस्वाद हो गया होगा।
0: जाओ यहाँ से। समझ नहीं आता लोग व्यापार में मिलावट क्यों करते हैं।
2: बादशाह हुजूर को गंगू का सलाम।
0: जो घी आपने भेजा था उसमें आपने कोई मिलावट की थी क्या? आपको घी का दाम कम मिला था?
2: हुजूर, मैं कभी घी में कोई मिलावट नहीं करता। मैंने जहाँ भी घी दिया है एकदम असली और शुद्ध दिया है।
0: खान सामा,
2: माफ करना हुजूर, समझ में नहीं आ रहा है कि ये घी इस तरह से बदबू क्यों मार रहा है। ऐसा पहली बार हुआ है, मुझे एक मौका दीजिए, मैं आपको फिर से दूसरा घी भेजता हूँ।
0: गंगूधर, जो भी हुआ अगर वो दोबारा होता है तो अंजाम ठीक नहीं होगा। पहली मर्तबा गलती हुई है, इसलिए तुम पर 200 मुहर का जुर्माना लगता है, ताकि अगली बार तुम सावधानी बरतो।
3: गुस्ताखी माफ हुजूर, कल बिल्कुल शुद्ध और असली घी महल में आ जाएगा।
1: इतनी जोर से भूख लगी है और कोई खाना क्यों नहीं ला रहा है?
0: अब तक खाना क्यों नहीं तैयार हुआ?
3: हुजूर, खाना तो तैयार हुआ था, लेकिन पिछली बार की तरह इस बार भी घी में से बुलबुले निकल रहे हैं।
0: गंगूधर, हमने तुम्हें चेतावनी दी थी कि अगली बार घी में किसी भी प्रकार की मिलावट नहीं होनी चाहिए।
2: हुजूर, इस बार मैं बहुत सावधानी से घी लेकर आया था।
0: तो क्या हम झूठ बोल रहे हैं गंगूधर?
2: माफी हुजूर, मेरा मतलब वो नहीं था, माफी।
0: तुम ऐसे नहीं मानोगे, इस बार हम तुम पर 1000 मोहर और नगर में कहीं भी घी बेचने पर पाबंदी लगाते हैं। अब जाओ यहाँ से।
2: लेकिन शहंशाह,
0: हम कुछ नहीं सुनना चाहते। और आप बीरबल, आपने ही हमें गंगूधर के घी के स्वाद के बारे में बताया था, पर अगली बार से हमारे सामने ऐसे किसी भी मिलावट खोर को लाने से पहले 100 बार सोचिएगा। गुस्ताखी माफ जहां पना। ये तो वाकई मिलावट वाला घी है, लेकिन मेरे घर में जो घी है वो शुद्ध कैसे है? लगता है कोई गंगूधर का
2: घी का कारोबार बंद करवाना चाहता है, लेकिन वो कौन हो सकता है?
4: बीरबल जी, मैं बहुत परेशान हूँ। मैंने अपने पूरे जीवन में कभी बेईमानी नहीं की और ना ही कभी अपने घी में किसी प्रकार की मिलावट की।
2: क्या आप मुझे दिखा सकते हैं कि आप घी कहाँ रखते हैं?
4: जी हाँ, आइए मेरे साथ। देखिए बीरबल जी, अगर कोई घी में मिलावट करेगा तो यहाँ आकर करेगा, और ऊपर छत पर आने का रास्ता दुकान के अंदर से ही है।
2: क्या आपकी किसी से कोई दुश्मनी या जलन का रिश्ता है गंगू जी?
4: नहीं बीरबल जी,

0: काफी दिलचस्प आयोजन किया है बीरबल आपने, मजा आ गया। शुक्रिया जहाँपना, मेरी एक छोटी सी दरख्वास्त है जहाँपना, वो आप मान लीजिए। इस बार अगर मैं गलत साबित हुआ तो आप मुझे सजा दे दीजिएगा। फरमाइए बीरबल, गंगूधर को आप दरबार में घी बेचने का एक और मौका दे दीजिए। आप होश में तो है ना बीरबल जी? जहाँपना, बस आखिरी बार, अगर इस बार कुछ भी गलत होता है तो मैं सजा पाने के लिए तैयार रहूँगा। पता नहीं क्या जादू कर दिया है आप पर उस गंगूधर ने। ठीक है, हम उसे एक और मौका देने के लिए तैयार हैं। गंगूधर, आपको दरबार में घी बेचने के लिए एक आखिरी मौका दिया जाता है, इस बार कोई गलती नहीं होनी चाहिए।
1: शुक्रिया बीरबल जी, इस बार मैं पूरी हिफाजत से घी दरबार में लेकर आऊंगा।

0: सिपाहियों, पकड़ लो इसे। यही है गंगूधर जी के घी में मिलावट करने वाला मिलावटखोर, जिसको कल रात हमने रंगे हाथों पकड़ा था। लेकिन ये तो तमाशा करने वाला नट है, जिसे आपने कल अपना खेल दिखाने के लिए बुलाया था। ये कैसे मिलावट कर सकता है बीरबल? जहाँ पना ये बड़े बड़े बांस पर चलकर आधी रात के समय गंगूधर जी की दुकान के छत पर जाता और बड़ी आसानी से छत पर रखे घी और मक्खन में मिलावट करके वापस आ जाता। इस तरह से इस पर किसी को कोई शक भी नहीं होता और मिलावट का सारा इल्जाम गंगूधर जी पर आ जाता। लेकिन आपको इस पर कैसे शक हुआ बीरबल? जहाँ पना कल जब ये दरबार में बांस पर चलकर तमाशा दिखा रहा था, तो जमीन पर ठीक वैसे ही खड्डे हो रहे थे जैसे मैंने गंगूधर जी की दुकान के पीछे खाली जमीन पर देखे थे। मुझे इस पर वही शक हुआ और आज सब कुछ साफ हो गया है आलमगीर। क्या ये सच है? बताओ, वरना तुम्हें भूखे शेर के पिंजरे में डाल देंगे।
1: माफ कर दीजिए हुजूर, मुझे ऐसा करने के लिए सुंदर लाल ने पैसों का लालच दिया था। ये मैंने अपनी मर्जी से नहीं किया हुजूर।
0: सुंदर लाल को पेश किया जाए।
2: शायद और घी राजमहल में पहुंचाना होगा। सलाम जहां पना, शायद मेरा भेजा हुआ घी अब तक खत्म हो गया होगा। आप बताइए जहां पना, कब भेजना है और घी?
0: सिपाहियों, सुंदर लाल को भूखे शेर के पिंजरे में डाल दो।
2: लेकिन हुजूर, मेरा कसूर क्या है?
0: तुमने गंगूधर के घी में मिलावट क्यों की थी, बताओ?
2: क्या मिलावट? मैंने तो मिलावट नहीं की हुजूर।
0: झूठ बोलना बंद करो सुंदरलाल, वरना अभी के अभी तुम्हें शेर के पिंजरे में डाल दिया जाएगा।
2: नहीं नहीं, माफ करना जहां पना, मुझे गंगूधर की ईमानदारी और उसके शुद्ध चीजों की बढ़ती मांगों को देखकर जलन होने लगी थी। उसके घी की वजह से मैं आपके दरबार में अपनी दुकान का घी नहीं बेच पाता था, इसलिए मैंने उसके घी में मिलावट की थी। मुझे माफ कर दीजिए जापना, मैं दोबारा ऐसा कभी नहीं करूंगा।
0: ये तुमने ठीक नहीं किया सुंदरलाल, तुम्हारी इस करतूत की वजह से तुम पर 500 मोहर का जुर्माना लगाया जाता है, जो गंगूधर को मिलेगा, और गंगूधर को फिर से महल में घी बेचने का आदेश दिया जाता है।
2: शुक्रिया जापना।
0: और हमें हमारी गलती का एहसास भी करवाया है। आपका बेहद शुक्रिया बीरबल, मेहरबानी जापना।

नमस्कार, मैं हूं सिंगर साइराम अय्यर और आप सुन रहे हैं ब्रह्म कुमारीज का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन 107.8 FM। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

0: रेडियो मधुबन पर आइए सुनते हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी के प्रेरणादायी विचार।
1: एक वाक्य ने मेरे थॉट्स को डिस्टर्ब किया, फीलिंग्स को डिस्टर्ब किया, मेरे शब्द डिस्टर्ब हुए, मैंने शायद वो चीजें बोल दी आपने जो बोलनी नहीं चाहिए थी, फिर आपका बिहेवियर डिस्टर्ब्ड हुआ, फिर रिलेशनशिप एनर्जी एक्सचेंज डिस्टर्ब हुआ एक घंटे के लिए। लेकिन मुझे अपने आप को ये चेक करना है कि ये जो मैं सोच रही हूँ, इज इट कम्फर्टेबल फॉर मी। एक चीज हमने मिस आउट की कि ये सारी थॉट्स एंड फीलिंग्स जो हमने क्रिएट की उसका इफेक्ट हमारे शरीर पे भी पड़ा। व्हेन वी हैव अंडरस्टूड कि एवरी थॉट दैट वी क्रिएट, जस्ट द अदर डे एक डॉक्टर ने हमें एक्सप्लेन किया, एक साइकाइट्रिस्ट है, तो उन्होंने कहा ब्रेन के अंदर 10,000 crore सेल्स है, जस्ट द ब्रेन, ओके 10,000 crore सेल्स। एंड फिर उन्होंने कहा ये 10,000 crore सेल्स आर, ईच सेल इज कनेक्टेड टू एटलीस्ट 10,000 मोर सेल्स इन द बॉडी, 10,000 crore सेल्स इन द ब्रेन इनटू 10,000, दिस इज द ह्यूमन नेटवर्क, सो मेनी स्विचेस कनेक्टेड टू सो मेनी स्विचेस। अब जब इतने स्विचेस से कनेक्टेड होते हैं तो एक में भी अगर कुछ ऊपर नीचे होगा तो उसका इफेक्ट कितना लंबा जाएगा। तो जब ब्रेन में 10,000 crore सेल्स कनेक्टेड टू 10,000 सेल्स, ईच सेल कनेक्टेड टू 10,000 सेल्स इन द बॉडी, एंड हर थॉट जो हम क्रिएट कर रहे हैं उसका ब्रेन पर असर पड़ रहा है, ब्रेन से फिर वो केमिकल सिक्रेट होते हैं, फिर उसका असर शरीर पे पड़ता है, और हमने कितने आराम से एक घंटा डिस्टर्ब रहे। अब हम अगर इस इक्वेशन को सिर्फ चेक करें तो एक घंटे में कितना इम्पैक्ट आया होगा हमारे शरीर के ऊपर, उससे हमें याद नहीं रहता ना, क्योंकि हमें शायद नॉलेज नहीं है, अवेयर नहीं है, या हम अपने आप को अलाउ करते हैं वैसे करना।
0: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन, सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए।

0: नमस्ते, राम राम और ओम शांति। मेरा नाम पवित्र मल्लिक और आप सुन रहे प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय का सामुदायिक रेडियो रेडियो मधुबन 107.8 एफएम पर कार्यक्रम मेरा गांव मेरा आंच यानी माय विलेज माय एरिया और अपना आंचलिक भाषा में कहते हैं मारो गांव मारो अंचल। इस कार्यक्रम को लेकर जब गांव और अंचल में जाते हैं हमें बहुत खुशी मिलता है क्योंकि एक सामुदायिक रेडियो है, सामुदायिक द्वारा और सामुदायिक के लिए प्रस्तुतिकरण होता है फॉर द कम्युनिटी, ऑफ द कम्युनिटी और बाय द कम्युनिटी। सरकार का जो मंच है, आसपास बच्चों का अंदर में जो टैलेंट है, बौद्धिक विकास, मानसिक विकास का साथ साथ शारीरिक विकास का साथ साथ अनुशासन और हृदय में जो संगीत गीत का द्वारा अपना प्रस्तुतिकरण करेंगे। तो पहला प्रस्तुति माँ शारदा का गीत भजन के रूप में करेंगे। पहले माँ शारदा का एक गीत प्रस्तुति होगी और इस कार्यक्रम को सजाने के लिए हम पहुंचे राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय गांधी नगर जो कि आपू रोड में स्थित है। तो एक प्रार्थना का रूप में शुरू करते हैं। तो लीजिए, हमारा 7-3 छात्र है उपस्थित, उनको स्वागत करते हैं रेडियो मधुबन परिवार की ओर से। अपना अपना परिचय देंगे। पहले
1: आस्था।
0: आस्था और विश्वास दोनों ट्रस्ट होना चाहिए।
1: उषा।
0: उषा आवाज।
1: तमन्ना।
0: तमन्ना। आज तो सबका आवाज सुनेंगे, उनका आवाज को रोक नहीं पा रहे तो सुनेंगे अभी।
1: हे।

0: हमें तार
1: हमें
0: दे माँ।
1: बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर प्रस्तुति के लिए, और खासकर जब राज्य के उच्च माध्यमिक विद्यालय गांधीनगर में पहुंचे तो बच्चों को एक मौका मिला, बॉयज स्कूल का साथ साथ गर्ल्स स्कूल को भी आज मौका मिला, क्योंकि इसका पहले गांधीनगर का बॉयज स्कूल का भी लिया था, जो कि आज इस कार्यक्रम को सजाने के लिए पुनः आए हैं इस स्कूल में जो कि राज्य के उच्च माध्यमिक विद्यालय गांधीनगर गर्ल्स का। तो संस्था प्रधान और सभी स्टाफ को धन्यवाद देते हैं, एक इशारा से, कोई प्रिपरेशन नहीं था, कोई तैयारी नहीं था, फिर भी बच्चे बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिए, ये तन्मना और हमारा बहन उषा दोनों को धन्यवाद देते हैं, इस तरह कार्यक्रम में अपना प्रस्तुतियां दिए। उषा बड़े होकर क्या बनेगी तुम, डॉक्टर इंजीनियर पुलिस कुछ बनना तो चाहेंगे, लक्ष्य रखें
0: पुलिस,
1: पुलिस क्योंकि पुलिस एक देश को रक्षा करते हैं, खुद को भी रक्षा करेंगे, सेल्फ डिफेंस में पुलिस का बहुत काम आता है, और भ्रष्टाचार चोर डकैत जो चीज होता है वो होगा नहीं, क्योंकि सात्विक में रहेंगे और इसके लिए मेहनत भी करना पड़ेगा। उसे कितने घंटा मेहनत करते हैं आप पढ़ाई का साथ?

0: मैडम जब मौका मिलेगा पुलिस नहीं बन के मैडम बनेगी हिंदी टीचर? नहीं, पुलिस ही बनेगी। तो तन्मना आप बताया बड़े होकर क्या बनेगी?
1: मैं आईपीएस बनना चाहूंगी।
0: हाँ देखो ये एक अच्छा बात बता, मैं आईपीएस पुलिस, उसका भी आईपीएस मतलब पूरा इंस्पेक्टर है, पुलिस इंस्पेक्टर है ना, बहुत अच्छा। दोनों पुलिस में आपका अच्छा दोस्त कौन है, तुम्हारा खास दोस्त?
1: खुशी?
0: खुशी। वाह खुशी, आए आज?
1: नहीं आज नहीं आए।
0: आज नहीं है, लेकिन खुशी रहना है और खुशी बांटना है। खुशी सबसे बड़ा खुराक है, कोई मेडिसिन रहेगा कि नहीं, खुशी से रहेगा तो बीमारी नहीं होगी। तो लेते हैं छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद और एक प्रस्तुति सुनेंगे उषा अरुण उनका दोस्त से। सुनते रहे कार्यक्रम मेरा गांव मेरा आंचल रेडियो मधुबन 107.8 FM पर। आज हमारा उषा और तन्मना दोनों एक आरजे बन गए, रेडियो जोकी बन गए। रेडियो में जो बोलते उसको आरजे कहते, क्या कहते? आरजे, रेडियो जोकी। जैसे आप पुलिस इंस्पेक्टर आईएएस ऑफिसर कलेक्टर जो रेडियो में बोलते हैं माइक में उसको क्या कहते हैं बच्चे? आरजे। क्या बोलते हैं?
2: आरजे।
0: सब एक एक आरजे हो गए क्योंकि आपका आवाज तो आ गया ना, है ना? तो आप एक एक आरजे, खुशी है आज एक मिनट के लिए एक एक आरजे बन गया? जोर से बोलो। ये हुई ना बात, प्रिंसिपल तक पहुंच रही है। हाँ जी जी, हाँ जी करते हैं, लेकिन और एक प्रस्तुति सुनेंगे, लेकिन और पर विराम के बाद सुनते रहे कार्यक्रम मेरा गांव मेरा अंचल।

0: मैं हूं श्रवण राठौर ऑफ नदीम श्रवण टीम और आप सुन रहे हैं ब्रह्मा कुमारी का कम्युनिटी रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन। सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए
1: चलिए ब्रेक का पहले हम सुन रहे थे एक प्रार्थना, तत्पश्चात तन मन हमारे इस कार्यक्रम को सजाने के लिए सिंगल प्रस्तुति देने के लिए पुनः उनको स्वागत करते वंस मोर, क्योंकि भाव और भावना का साथ एक प्रस्तुति मिली प्रार्थना सत्र में। तत्पश्चात और एक प्रस्तुति के लिए प्रस्तुत है हमारा तन मन्ना, तो शुरू करिए।
2: इतनी शक्ति हमें दे न दाता, मन का विश्वास कमजोर।

0: कमजोर होना।
1: ताली का साथ बच्चे उमंग उत्साह भर दिए और आवाज को आवाज का दुनिया में सजा दिए। और तमन्ना कैसे गीत गाई, कहाँ से सीखती है वो बताएगी। कहाँ से आप सीखती है गीत? बहुत सुंदर लगा। और स्वर लय का साथ कहाँ से सीखती थी? मोबाइल से ना? स्कूल में ना? आपका घर में कोई सिंगर है?
0: मैं रेडियो से सुनती हूँ।
1: अरे बाप रे, रेडियो का हमारा ग्राहक है, रेडियो में सुनते हैं। आज रेडियो में उसका आवाज जो सुनेंगे, सबका आवाज सुनते थे पहले, रेडियो सुनते थे, रेडियो से सीखते थे, लेकिन आज उनको मौका मिला रेडियो में बोलने के लिए। क्या बात, ताली बजा भाई इसके लिए। खुशी लगा क्योंकि कभी रेडियो से सीखती, लेकिन उसका राज अभी पता चला। हम रेडियो से गीत संगीत
0: सीखते,
1: कैसे सीखते, कब, कैसे आपको प्रेरणा मिली बताओ। देखिए
0: हम जैसे गाने सुनते हैं ना विविध भारती पर, तो उसमें एक वो शो आता है, उससे हमें प्रेरणा मिलती है, तो हम उससे मतलब सीखते हैं।
1: तो आप तो
0: हम साथ के साथ गाते हैं यानी
1: उसमें।
0: हाँ,
1: तो कौन सा समय में आता है? और रेडियो मधुबन का नाम सुना है?
0: हाँ,
1: उसमें भी आता है, फरमाइश आता है शाम का टाइम में।
0: हेलो फरमाइश भी आता है,
1: आता है 8 से 9 बजे आप सुन सकते हैं। सुबह सुबह में अच्छा गीत है तो वो भी सुन सकते हैं। ये जो प्रोग्राम आप सुनेंगे 7 से 8 बजे, कितने बजे? शाम को 7 से 8 बजे सुन रहे सभी जगह में, तो आप भी सुन सकते हैं शाम को डेली। आप आवाज इसे सब स्कूल का आवाज आता है, तो आपका भी आवाज उस समय सुनेंगे।
0: हाँ,
1: आवाज ऐसे
0: हाँ।
1: लगा तो आरजे बनकर आज गीत गा रहे तो खुशी लग रहा है तुमको? तो बड़े होकर तो क्या आप सिंगर बनेंगे ना? पुलिस आईपीएस तो बोल देता, आईपीएस बनेगी ना?
0: हाँ।
1: तो आपका घर में कोई आईपीएस है क्या?
0: नहीं,
1: सर्विस होल्डर है।
0: नहीं,
1: फिर भी आपको उमंग उत्साह कौन भरता है?
0: मेरा खुद का सपना है कि मैं आईपीएस बनूं।
1: इसलिए मेहनत, विद्यार्थी जीवन में पढ़ाई का साथ साथ और 3-4 घंटा एक्स्ट्रा मेहनत करेंगे, ध्यान से, लगन से। क्वालिटी चाहिए, क्वांटिटी नहीं। इतना बड़ा 4 घंटा 6 घंटा बढ़कर रहेंगे लेकिन याद नहीं रहेगा। क्या बात, 1 घंटा पढ़ो ध्यान से, एकाग्रता का साथ, ठीक है, खुशी से, तो कामयाबी होंगे, है ना? तो आपका अच्छा दोस्त का नाम बताया था ना, क्या नाम?
0: खुशी।
1: और कौन सा क्लास के?
0: 12th क्लास।
1: और आपका?
0: मैं 11th क्लास में।
1: वाह, फिर भी देखो 12th और 11th क्लास का में भी दोस्ती है, जैसे सुदामा और श्री कृष्ण का दोस्ती पक्का होता है ना।
0: हाँ।
1: तो उनका पास, खुशी का पास क्या विशेषता है, क्या गुण है जो आपको अच्छा लगता है, क्या सहयोग मिलता है आपको उनसे?
0: वो मतलब मेरा साथ देती है हरदम।
1: वो हरदम, सदा हरदम साथ रहेंगे, साथ जाएंगे, जहीं भी हो, है कि नहीं?
0: हाँ।
1: बहुत अच्छा, लेते हैं छोटा सा ब्रेक और एक प्रस्तुति लेंगे, लेकिन अल्प विराम के बाद सुनते रहे कार्यक्रम मेरा गांव मेरा आंचल, रेडियो मधुबन 107.8 FM पर।

0: and you are listening to Brahma Kumari's community radio station, Radio Madhuban. Keep listening, keep smiling.
1: एक का बाद एक का बाद बढ़ते जा रहे हैं और हमारा श्रोता सुन रहे ध्यान से राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय गांधीनगर का आवाज, वो भी बालिका गांधीनगर और एक बालक गांधीनगर भी है। इसी में ही दोनों बच्चे अपना अपना जगह में सिलेक्शन करते हैं, लेकिन यहाँ पर मिक्सिंग है ना, वो भी राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय गांधीनगर का आवाज आप सुन पा रहे हैं और हमारा श्रोता ध्यान से सुन रहे हैं और उनका जवाब तो वाह वाह कर रहे हैं हमारा तमन्ना के लिए। तमन्ना और शुरू करिए एक गीत, रेडी? ओके।
2: विजय विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचे रहे हमारा, सदा शक्ति बरसाने वाला, प्रेम सुधा सरसाने वाला, वीरों को हरसाने वाला, मातृभूमि को तन मन सारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। इस चरखे के नीचे निर्भय ले स्वराज्य यह अविचल निश्चय, बोले भारत माता की जय। स्वतंत्रता हो ध्येय हमारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा, आओ प्यारे वीरो आओ, राष्ट्र ध्वज पर बलि जाओ, एक साथ सब मिलकर गाओ, प्यारा भारत देश हमारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। इसकी शान ना जाए पाए, जाने पाए चाहे जान भले ही जाए, विश्व विजय करके दिखलाए, तब होवे प्रण पूर्ण हमारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा।
1: झंडा, तिरंगा का नाम सुनते ही भारत में जो भारत का नागरिक का अंदर में का खून का जो जज्बा, जो देशभक्ति देखने को मिलता है और भारत आजादी का अमृत काल तक पहुंच रहा है। जब भारत 100 साल का मनाएगा तब तो हमारा ये बच्चे ही देश को संभालेंगे, देश का आन बान शान कहते हैं। और हमारा विद्यार्थी कम नहीं है, विद्यार्थी का पास इतना शक्ति है और कुछ करने के लिए जोश रखते हैं। इस कविता के माध्यम से सुनाए देश का प्रति उनका कितना उद्वेग है। तो एक अच्छा खेल का नाम बताओ, खेल खेलते हैं तुम कोई भी गेम? तो क्या करते हैं, हॉबी क्या है आपका पढ़ाई का साथ साथ, आप क्या करते हैं, आप किस में रुचि रखते हैं, गीत में ना, आप किस में, गाने में?
2: हाँ।
1: क्योंकि आप गीत गा रहे तो भाई कविता में ना गीत में ही आपका रुचि रहता है। तो आपका स्कूल में कौन सा शिक्षक आपको, कौन सा मैम आपको अच्छा लगते हैं, उनका पढ़ाने का तरीका चाहे अनुशासन, कौन सा टीचर आपको अच्छा लगते हैं?
2: हमारी प्रिंसिपल मैडम।
1: क्या नाम है?
2: संतोष।
1: संतोष मैम, क्या विशेषता है उनका?
2: मतलब वो एक स्ट्रिक्ट मैडम है और जो अच्छे तरह से पढ़ाते हैं,
1: वो पूरा अनुशासन में और बच्चों का फायदा के लिए, बच्चों का फायदा के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं और ऑलराउंडर है और हमारा इस कार्यक्रम को सुंदर में सजा रहे हैं। तो लेते हैं छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद और एक प्रस्तुति सुनेंगे, लेकिन सभी बच्चे मिलकर एक गाएंगे, गाएंगे सभी बच्चे?
3: हाँ जी,
1: हाँ जी, करने में तो होशियार है। चलिए शुरू करते हैं, एक प्रार्थना हो जाएगा लेकिन अल्प विराम के बाद।

0: करते रहिए। आप सड़क पर चलते समय अपनी गाड़ी को कंट्रोल रखें और अपनी गाड़ी को धीरे धीरे चलाएं और हमेशा हेलमेट पहनते रहिए।
1: रेडियो मधुबन।
2: नमस्ते, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए और एक बोलते बोलते फिर और एक प्रस्तुति करने के लिए हम आगे बढ़ रहे, तो हमें खुशी मिल रहा है। बच्चे सच्चे होते हैं और बढ़ चढ़ कर अपना भाव और भावना को देते हैं, क्योंकि उनको मौका मिलता नहीं। आज मौका मिला है रेडियो मधुबन उनका बात को रखने के लिए, एक मंच दे रही है, जिस मंच का माध्यम से, जिस स्टेज का माध्यम से अपना भाव को जन जन तक पहुँचाते हैं। और आदिवासी गाँव में रहते हैं बच्चे, इस तरह आकाशवाणी में आने के लिए उनको कोई पूछता नहीं था, तो रेडियो मधुबन ब्रह्मा कुमारी आज उनका बात को रखने के लिए उनको मंच दे रहे, माइक दे रहे, तो पुनः और एक प्रस्तुति के लिए रेडी है हमारा।

0: वाह वाह बोलने से बच्चे बहुत अच्छा सुंदर प्रस्तुति को धन्यवाद देते हैं।
1: इस तरह बच्चे को जब मान के मिलते हैं सभी बड़े होकर,
0: लेकिन मेहनत जरूरी है। विद्यार्थी जीवन में मेहनत करेंगे तो आगे बढ़ेंगे, बिना मेहनत से कुछ नहीं होने वाला है।
1: इसमें पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई तब तक विद्यार्थी पढ़ाई का जीवन में पढ़ाई करना है और बड़ों का बात मानना चाहिए, है ना।
0: लेकिन छोटा सा ब्रेक के बाद और एक प्रश्न सुनेंगे, लेकिन अल्प विराम के बाद सुनते रहे कार्यक्रम मेरा गांव मेरा अंचल रेडियो मधुबन 107.8 FM पर।

0: मैं हूं उदित नारायण और आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।
1: चलिए, आवाज का दुनिया में फिर हम आवाज के पास पहुंच रहे हैं और हमारा बच्चियां बात छात्राएं एक का बाद एक प्रस्तुतियां दे रहे हैं। सभी को नाम का साथ धन्यवाद देते हैं पुनः उनको हमारा ईश्वरीय विश्वविद्यालय और रेडियो मधुबन परिवार की ओर से। इस कार्यक्रम को बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं और सभी को खुशी लग रहा है, हमारा इस कार्यक्रम को सजा रहे हैं। तो चलिए और एक प्रस्तुति, सभी मिलेंगे, बच्चे भी गाएंगे। ओके,

0: आप अपना परिचय दीजिए।
1: मैं क्लास 9 की छात्र हूँ। मेरा नाम दिव्यानी है।
0: आपको कौन सा विषय आपको अच्छा लगता है?
1: मुझे इंग्लिश।
0: और बड़े होकर क्या बनना चाहेगी?
1: डॉक्टर।
0: इसलिए क्या मेहनत करना पड़ेगा? बा क्या कर रही है?
1: मैं क्लिनिक में जाती हूँ।
0: हाँ वाह, बहुत अच्छा। और शांत स्वभाव के है और अनुशासन में रहते हैं। और दोस्त कौन है तुम्हारा? अच्छा क्लासमेट?
1: खुशी।
0: खुशी, खुशी का नाम तो आजकल बहुत आ रहा है। और खुशी नाम जैसे, और खुशी रहते हैं और खुशी बांटते भी है। खुश रहना चाहिए जीवन में, कोई भी परिस्थिति हो लेकिन खुशी गायब न हो, इसलिए हमें खुद को ध्यान देना चाहिए। तो आज इस कार्यक्रम का माध्यम से, इस कार्यक्रम का भी रेडियो माध्यम नाम सुनी थी तुम, लेकिन आज पहला बार सुने और प्रोग्राम भी दिए, तो बहुत अच्छा बात बताया। और क्या आपको अच्छा लगा आज?
1: आपसे हमें ज्ञान मिला, यही बताऊं।
0: ज्ञान माने समझ, सबसे मेन चीज समझ मिला, जो हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। इसके बाद हमारे हाथ में जब ज्ञान में समझ हो गया तो हमें कोई बताना नहीं पड़ेगा, हम खुद कर लेंगे। समझ होना चाहिए क्या करना चाहिए, क्या सोचना चाहिए, क्या पहनना चाहिए, क्या देखना चाहिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आज के लिए हमें दीजिए इजाजत। फिर कल मिलेंगे इसी वक्त इसी समय और किसी बात को लेकर। यह था खासकर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बालिका विद्यालय गांधीनगर की आवाज को आप सुन पा रहे हैं। तो सभी को उनका जो आशा है, विश्वास है, बड़े होकर कोई पुलिस, कोई आईपीएस, कोई डॉक्टर जो बनना चाहते हैं, इसलिए मेहनत करना पड़ेगा विद्यार्थी जीवन में। और 4-5 साल जो मेहनत करेंगे तो आगे जाकर 90 साल तक कुछ मेहनत नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि 5 साल का मेहनत आगे बढ़ कर खाना पड़ेगा। डॉक्टर बन जाएंगे तो बहुत मेहनत करना नहीं पड़ेगा, कोई भी सर्विस करेंगे तो बस 90 साल तक सभी परिवार को खिलाएंगे, अभी खा रहे बाद में खिलाएंगे। मात्र 5 साल और मेहनत करना पड़ेगा, 5 साल कॉलेज का बाद, 12 क्लास का बाद 5 साल मेहनत करेंगे तो आपको प्राइवेट नौकरी करना नहीं पड़ेगा, 12 घंटा नौकरी नहीं करना पड़ेगा, 6 घंटा में इतना पैसा कमाएंगे। लेकिन कब? जब हम इस विद्यार्थी जीवन में बड़ों का बात मानेंगे और मेहनत करेंगे 6 घंटा एक्स्ट्रा, जो पढ़ाई करते जो मेहनत करते और 6 घंटा एक्स्ट्रा मेहनत करेंगे तो आपका लक्ष्य, जहां लक्षण दिखाई देगा जरूर, और पहुंच पाएंगे। इसलिए आत्मबल, दृढ़ता, ईमानदारी, बौद्धिक सबको तेज रखना पड़ेगा। 5 साल, मात्र 5 साल करेंगे तो 50 साल तक आपका करियर बन जाएगा, है कि नहीं
1: जी?
0: ये 5 साल मेहनत करना पड़ेगा।
1: हाँ।
0: आईएएस ऑफिसर हो चाहे डॉक्टर, 5 साल मेहनत करेंगे तो डॉक्टर बन जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, आज के लिए हमें दीजिए इजाजत। फिर कल मिलेंगे इसी वक्त इसी समय और किसी बात को लेकर। यह था खासकर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बालिका विद्यालय गांधीनगर की आवाज को आप सुन पा रहे हैं।

0: कनव हूँ, मैं 8वीं कक्षा में पढ़ता हूँ। कल जब मैं स्कूल से घर आ रहा था तो पता है मैंने क्या देखा? एक अंकल सड़क पे कचरा फेंक रहे थे। मैंने उनको जाकर बोला कि अंकल सड़क पे कचरा नहीं फेंकना चाहिए, तो पता है उन्होंने क्या बोला?
1: अरे बड़ा है मुझे सिखाने वाला।
0: उन्होंने मेरी बात नहीं मानी और वो चले गए, लेकिन मैंने खुद ही कचरा उठाकर कचरे के डब्बे में डाल दिया।

0: नमस्कार आदाब सत श्री अकाल केम छो की केन हो। जी हाँ दोस्तों, आज हम आए हैं फिर से लौट और कहेंगे सबसे पहले आपसे हमें क्षमा कीजिए, माफ़ कीजिए, क्योंकि हम दो दिन आपसे नहीं मिले थे। जी हाँ दोस्तों, दो दिन यानी कि सोमवार के दिन हम आपके साथ नहीं थे और हमारे प्यारे, आज नाम नहीं लूँगा, पहले हम कॉल उठाएंगे फिर बात करेंगे उनसे। हेलो
1: हेलो जी, नमस्कार भाई जी।
0: नमस्कार भूरीलाल जी, कैसे हैं आप?
1: बहुत ही बढ़िया हो, आनंद में मंगल में हो, तस्वीर लेके बैठा हो।
0: क्या बात है, तस्वीर तस्वीर आपके हाथ में किसकी है?
1: क्या जगह खुशियों की लेन लेकर के आप आ गए हो, तो दिल की बातों को कर करके और अपने दिल की बातों को प्यार से सुन करके गाने अच्छे अच्छे गाने सुना लेंगे।
0: बिल्कुल,
1: एक गाना है मेरा
0: जी,
1: चलने का काम।
0: क्या कह रहे हैं?
1: चलते रहो जीवन है, चलते चलने का काम
0: जी,
1: चलते रहो सुबह शाम
0: जी,
1: चलते रहो सुबह शाम रास्ता कट जाएगा
0: जी।
1: ठीक है सर, गाना आवाज आ रही है मेरी?
0: बिल्कुल आ रही है, आपकी आवाज हमें बिल्कुल आ रही है।
1: आनंद से मंगलाचरण से आ रहा, खुशी से आ रही है
0: एकदम। आपकी खुशी के लिए तो हम कायल हो जाते हैं, आपकी आवाज में जब आप कहते हैं ना हेलो जी, ये तो हमारे लिए बिल्कुल
1: चलते रहे सुबह शाम
0: बिल्कुल
1: रास्ता कर जाएगा। ठीक है सर, ये गाना है सर, गाने को बोलिए
0: बिल्कुल।
1: और सभी साथियों को, मेरे सुरेश भाई है
0: जी,
1: और मदन भाई है
0: जी,
1: बुरा राम जी है, सुभाष भाई है, सभी को मेरा प्यार सा नमस्कार खुशियों के साथ में और बहुत बहुत धन्यवाद और आपको प्रणाम।
0: ठीक है, चलिए बिल्कुल, चलिए आपने हमें इतने प्यार से याद किया और तो हमने भी आपको सभी की तरफ से, जो भी सुन रहे हैं सभी की तरफ से, आप
1: प्यार नहीं होगा तो क्या होगा ये बताओ
0: जी,
1: प्यार के बिना दुनिया नहीं चल रही है।
0: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल,
1: धन्यवाद
0: धन्यवाद, थैंक यू सो मच भूरीलाल जी, आपका कॉल करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे भूरीलाल जी, और आज भी इन्होंने जो हमें गाना दिया है, जीवन चलने का नाम, चलते रहो सुबह, ये मेरा बड़ा प्यारा गाना है मेरे लिए, मतलब मेरा फेवरेट गाना, मेरे फेवरेट्स में से एक है। हाँ जी, तो दस हम बात कर रहे थे कि दो दिन हम क्यों नहीं आए। बिल्कुल आपकी हक है हमसे पूछने का कि हम दो दिन तक क्यों नहीं थे, क्योंकि ये आपका चहिता शो है और ये समय आपके उन पसंदीदा गानों को सुनाने का हमारा फ़र्ज है। तो दो दिन इसलिए नहीं आए क्योंकि तबीयत ठीक नहीं थी पहले दिन यानी कि सोमवार के दिन, और दूसरे दिन कुछ ऐसे काम थे जैसे कि हमारे मैराथन हुआ था, तो मैराथन में जो भी हमारे रनर्स ने रनिंग किया था या जो भी जीते थे उनका सम्मान था, तो उसमें हम बिजी थे। तो बात करते हैं बीमार से लेकर के कि दोस्तों देखिए, हाल फिलहाल वक्त ऐसा चल रहा है कि हवा में जिस तरह से बारिश नहीं हो रही है, हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही है और कीचड़ हो रहा है, मक्खी मच्छर हो रहे हैं, तो साथ में बीमारी भी फैल रही है। यहाँ मेरे घर की ही हम बात करते हैं, सबसे पहले पिताजी से शुरुआत हुई, सर्दी खांसी बुखार कफ जमना वायरल फीवर होना, फिर

स्वागत करा है। चलिए बढ़ते हैं दोस्तों शो की तरफ। आज का शो यानी कि आज 19 अगस्त की ये सुहानी शाम हम और आप मिलकर बनाएंगे यादों का एक वही पुराना खूबसूरत गुलदस्ता, गुलडनेला के वो नगमे जो सीधे दिल में उतर जाते हैं और उनके पीछे छिपी वो अनकही बातें जो हमारे चेहरे पर एक मीठी मुस्कान ले आती है। और कई बार ऐसा भी होता है कि उन पीछे की जो बातें होती उनको सुन करके हमारे मन में वो चीज़ें जागने लगती हैं कि हाँ ऐसा हुआ होगा। तो बस चलिए अपने हाथ में जो भी है, चाहे खाना खा रहे हैं, चाहे चाय पी रहे हैं, चाहे जो भी कर रहे हैं, चलिए साथ में लीजिए हमारे साथ और थकावट को करते हैं दूर और कहीं दूर छोड़ाइए। शुरुआत करते हैं रेट्रो धुन की खूबसूरत सफ़र को। चलिए पहला गाना सुनते हैं, बिकॉज आज हमने जो भी गाने लगाए हैं किसी एक मूवी से उठाया है और उन मूवी से ही गाने आज हम प्ले कर रहे हैं और फिर आपके जो भी फरमाइशें आएगी वो भी हम प्ले करेंगे। और आप हमसे बता सकते हैं कि अगर आपके साथ इन्हीं कुछ दो तीन दिनों में कुछ ऐसी खास बातें हुई है तो आप मुझसे ज़रूर से शेयर कीजिए। आपको पता है नंबर 9414151415 पे आपको कॉल करना है और आपको हमसे ये सारी चीज़ें शेयर करनी है। चलिए दोस्तों चढ़ते हैं, बढ़ते हैं पहले नगमे की ओर, सुनते हैं ये पहला नगमा और सुनते रहिए रेडियो मधुबन 107.8 FM पर। सुनते रहिए और मुस्कुराते रहिए।

सभी भाई बहनों को नमस्कार, मैं हूं अन्ना हजारे और आप सुन रहे हैं ब्रह्मा कुमारीज का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन। महिलाओं के साथ जो दुर्व्यवहार हो रहे हैं उसका भी कारण यही है कि जीवन का अज्ञान। अज्ञान क्या है? खाओ पियो चैन बजे करो एक दिन मरना है। ये जो अज्ञान है इसके कारण ये बुराइयां बढ़ रही है। दूसरा है पश्चिमी संस्कृति का अतिक्रमण, चंगलवाद, भोगवाद, और वो संस्कृति हमें यही बता रही है खाओ पियो चैन बजे करो एक दिन मरना है। इसीलिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में जो विद्या सिखाई जाती है और वो जो बाबा ने संदेश दिया है, अरे खाना पीना और मरना जीवन नहीं है। मनुष्य जीवन में आया है, खाया पिया और एक दिन चला गया, तो पशु और तेरे में क्या अंतर है? अंतर इतना है कि पशु हरा घास खाते, सूखा घास खाते, आप ज्वार बाजरा की रोटी खाते, गेहूं की रोटी खाते। खाना पीना और मरना जीवन नहीं है। मानवीय जीवन कोई विशिष्ट जीवन है। भगवान ने आपके प्रति ज्ञान दिया, बुद्धि दी, शक्ति दी। मैं कौन है, मैं कहाँ से आया है, मेरा कर्तव्य क्या है, मुझे जाना कहाँ है, इन बात को सोचो। ये ज्ञान अगर हर इंसान के दिल में आ गया तो बहन और भाई में कोई फर्क नहीं होगा, स्त्री और पुरुष में कोई फर्क नहीं होगा, भगवान के घर में वो सब एक ही संतान है। ये समझ में आएगा, ये समझ में आने के बाद ये परिवर्तन होगा। ये चंगलवाद, भोगवाद, ये संस्कृति जो हमारे देश में अतिक्रमण कर रही है उसके कारण आज महिलाओं के साथ जो दुर्व्यवहार होते हैं चंगलवाद, भोगवाद के कारण।

0: जी हाँ दोस्तों, वेलकम बैक। और अभी हमने बहुत ही प्यारा एक गाना सुना, मैं तेरे प्यार में क्या क्या ना बना। जी हाँ दोस्तों, 1964 में एक फिल्म आई थी जिसके रोमांटिक अंदाज ने और जिसके गीतों ने हर किसी का दिल जीत लिया था। फिल्म का नाम था जिद्दी, जिसमें जॉय मुखर्जी और आशा पारेख जी की एक ज़बरदस्त जोड़ी नज़र आई थी। इस फिल्म का एक गाना ऐसा था जो आज भी जब बजता है, बट बजने से पहले हमारे कॉलर बजे है, कॉल फोन कॉल बजाए, चलिए सुनते हैं उनसे। हेलो
1: जी सर, नमस्ते।
0: नमस्कार नमस्कार सुरेश भाई, कैसे हैं आप?
1: सब अच्छे हैं बिल्कुल। और दो दिन तो आप नहीं थे, तो चलो कोई बात नहीं, हम तो कार्यक्रम सुन रहे थे, गाने तो सुन रहे थे अच्छे अच्छे
0: जी।
1: फिर भी चलो आज आप आ गए तो बहुत अच्छा लगा सर।
0: थैंक यू सो मच।
1: क्योंकि दो दिन तो हमारा जो रेडियो मधुबन सुना था इस टाइम पे,
0: बिल्कुल
1: बस गाने तो सुन रहे थे अच्छे अच्छे, तो आज आप आ गए बहुत खुशी हुई सर।
0: थैंक यू सो मच।
1: क्योंकि हम हर तो आपसे बात करते हैं और दो दिन बात नहीं किया, तो सोचा चलो
0: थोड़ा फील ऐसा लगता है कि आज
1: हमको पता था तो आप तो आज जरूर आएंगे। तो रेडियो ऑन किया था आपकी आवाज सुनी
0: जी,
1: तो अच्छा गाना भी सुना दिया। और एक गाना हम भी आपको देते हैं, शायद गौतम गोविंदा का जो गाना है, एक ऋतु आए एक ऋतु जाए, मौसम बदले ना बदले नसीब।
0: एक ऋतु ठीक है
1: जी जी
0: गाइए। हाँ नहीं, मेरे को, मैं वो गाना सोच ही रहा हूँ कि वो कौन सा गाना है, मैं भी वो गाने की धुन की कोशिश कर रहा हूँ कि वो गाना मुझे याद आ जाए, लेकिन हाँ याद आ रहा है मुझे।
1: हाँ मैं बताऊँ कि एक ऋतु आए एक ऋतु जाए, मौसम बदले ना बदले नसीबे, गौतम गोविंद का गाना है और वो साइकिल पे गाना गा रहा है, साइकिल चला रहा है, पास पीछे कोई भाई बैठा है
0: जी,
1: और वो गाना चल रहा है, बहुत अच्छा गाना है सर।
0: लेकिन मैं कोशिश करता हूँ ये हमारे अगर डेटाबेस में रहेगा मिलेगा, बिकॉज
1: 1979 का है,
0: क्योंकि हमारे पास 60s और 70s तक के ही गानों का, क्योंकि 80s में
1: का
0: है। कोशिश करते हैं, प्ले करेंगे आपके लिए, बजाएंगे जरूर, बट कोशिश करते हैं, अगर मिल जाएगा तो जरूर बजाएंगे।
1: कोई बात नहीं सर, हमारे सभी मित्रों को आपको नमस्ते, हमारे बुरीलाल जी हैं, बुरा राम जी को भी हमारा राम राम है, दया राम जी हमारे
0: जी,
1: मदन भाई जी हैं, हमारे सुभाष भाई जी हैं, सभी हमारे परिवार मित्र को हमारी तरफ से शुभकामनाएं बहुत बहुत
0: जी। सभी ने सभी की तरफ से भी आपको भी खास शुभकामनाएं,
1: नमस्ते
0: नमस्कार, थैंक यू सो मच। तो ये थे हमारे सुरेश जी, और जब हम बात करते हैं अपनों की, और जब ये कहते हैं कि आपको दो दिन हमने नहीं सुना, लेकिन आज हमने जैसे ही सुना हमने अच्छा लगा और हम आपसे बात कर रहे हैं, फ़ोन कर रहे हैं, तो ये जो हम कहते हैं कि दोस्ती बनती है रेडियो पे आने के बाद, या फिर हम कहते हैं कि एक अनदेखा लेकिन फिर भी जाने पहचाने से लोग, ये एक अपनी अपनों की खुशी देती है। जी हाँ दोस्तों, तो हम बात कर रहे थे गाने के बारे में जिसने दिल जीत लिया, गीत ने हर किसी का दिल जीत लिया। फिल्म का नाम था जिद्दी, जिसमें जॉय मुखर्जी थे। इस फिल्म का एक गाना ऐसा है जो अभी भी आज जब बजता है तो दिल में एक मीठी सी शरारत और बचपन जैसा पागलपन भर देता है। मास्टर मदन, हाँ अगर आपको मैं सवाल दूँ ये मास्टर मदन किसे कहा जाता था, तो आप जल्दी से बताइए, मुझे कॉल कीजिए 9414151415 पर, और बताइए कि मास्टर मदन हम किसे कहते थे। या जब आशा पारेख जी के किरदार को मनाने के लिए अलग अलग रूप में बदलते हैं, तो मोहम्मद रफ़ी साहब की आवाज़ में ये गीत जैसे अमर हो जाता है। मैं तेरे प्यार में क्या क्या न बना, दिलबर जाने ये मौसम जाने ये मौसम। जी हाँ, इस गाने को लिखा था हसन जयपुरी जी ने और इसे धुन दी थी दादा SD बर्मन ने। गाने के बोल इतने आसान और मज़ेदार थे कि उस दौर के हर लोअर बॉय की जबान पर यह गाना छा गया था कि मैं तेरे प्यार में क्या क्या ना बना। जी हाँ, इस गाने की पिक्चराइजेशन में जॉय मुखर्जी ने जो कॉमिक टाइमिंग और इनोसेंस दिखाई थी, उसे आशा पारेख जी के साथ उनकी ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री का सुपरहिट बना दिया था। गाने में वो कभी साधु बन के नाटक करते हैं, तो कभी अलग अलग रूप में आते हैं और फिर कहते हैं कि मैं तेरे प्यार में क्या क्या ना बना। होता है कई बार आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है कि कभी किसी से प्यार किया और उस प्यार के करने के, उस प्यार को निभाने के लिए कभी क्या बने, कभी क्या बने, कभी स्कूल के बाहर गेट पे जाके खड़े रहे, तो कभी कुछ किया कभी कुछ किया, ऐसा कभी किसी के साथ हुआ है? तो अगर कभी कुछ हुआ है तो आप फिर से हमें अपनी साथ की वो स्टोरी शेयर कर सकते हैं। कॉल करना है 9414151415 पर, और हमें ये सारी चीज़ें बतानी है। जी हाँ दोस्तों, फिल्म जिद्दी 1964 की सबसे बड़ी हिट्स में से एक थी। इस फिल्म के बाकी गाने जैसे रात का समा और ये मेरी जिंदगी भी सुपरहिट रहे, लेकिन मैं तेरे प्यार में गाना आज भी पब्लिक डिमांड में सबसे आगे है ना दोस्तों। आपको पता है जब 50s और 60s में गाने रिकॉर्ड होते थे तो एक छोटे से स्टूडियो में पूरा ऑर्केस्ट्रा एक साथ बैठता था, एक भी साज गलत बज गया तो पूरा गाना दोबारा रिकॉर्ड करना पड़ता था। वही मेहनत और वही ईमानदारी आज भी इन गानों के हर सुर में महसूस होती है, तभी तो ये गाने आज भी हमें सुनने में इतने प्यारे लगते हैं। आप सोचिए, अगर हल्की सी धुन बज रही है उसमें गायक के आगे पीछे हो गए बोल, या फिर धुन को कुछ हो गया, कुछ भी, मतलब हल्की सी भी मिस्टेक, तो वो गाना फिर से पूरा का पूरा रिकॉर्ड, उस वक्त रिकॉर्ड करने में भी काफ़ी टाइम लगता था। तो आप सोचिए, इस वजह से आज भी हम जब पुराने गाने सुनते हैं ओल्ड इज़ गोल्ड कहते हैं, तो ये इसी कारण से बस की उसकी जो मेहनत थी वो थी। आप भी सोच रहे होंगे कि आज की शाम किस गाने के नाम किया जाए। अगर आपका फेवरेट कोई रेट्रो सॉन्ग है जो आपने अपने किसी खास को डेडिकेट करना चाहते हैं तो तुरंत हमें बताइए 9414151415 पर। तो दोस्तों बढ़ते हैं अगले नगमे की ओर। जैसे हमने कहा था कि इसी फिल्म के कुछ गाने हम आपको आज सुनाएंगे, सुपरहिट्स गाने हैं, और अगला जो गाना है वो भी इसी फिल्म से है। तो सुनते रेडियो मधुबन 107.8 FM पर, सुनते रहिए और मुस्कुराते रहिए।

सुनना चाहते हो? सुनो, मैं एक चांद हूँ जिसके माथे पे एक दाग है, मेरा दिल जलता हुआ चिराग है।

0: ओए रुक रुक।
1: हाँ कहिए।
0: और जी कहना सुनना आपकी शादी में कर लेंगे, फिलहाल तो ये बताइए कि आपकी बेल्ट कहाँ है?
1: है तो ये देखिए।
0: ओए कमर की नहीं, मैं सीट बेल्ट की बात कर रहा हूँ। हवलदार कड़क से मजाक मत करो, बहुत महंगा पड़ेगा। हाँ और उससे ज्यादा महंगा पड़ेगा ये बिना सीट बेल्ट की गाड़ी का चलान। ओए जल्दी ऊपर जाने का बहुत शौक है, हैं? ओए छोटू फाइन काटो इनका, 1200 रुपए सीट बेल्ट नहीं पहनने का और 2400 रुपए हवलदार कड़क से मजाक करने का। ये है मेरी सड़क, मुझे कहते हैं हवलदार कड़क।
2: कार चलाते समय सीट बेल्ट का उपयोग करना चाहिए, इससे आप बड़ी दुर्घटना से बच सकते हैं। रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी, सुनते रहो मुस्कुराते रहो।
3: आया हुआ है
4: जी? बिल्कुल मदना जी,
3: मोबाइल चालू करेंगे और आपको नमस्कार करते हैं नवी किरण, अरे खुशी के लगने और दिल की बातें को और हमारे सभी दोस्तों को बहुत दिन के बाद नमस्कार, ओम शांति
4: जी। थैंक यू।
3: और हमारे सभी शो बहुत अच्छे लगते हैं
4: जी,
3: और भी बहुत कुछ आपको नमस्कार करते हैं और बस
4: थैंक यू,
3: थोड़ा गुनगुनाते।
4: बिल्कुल
3: गुनगुनाते। मुझे चलते जाना है, बस चल के जाना, मुसाफिर हूँ यारो, मगर है ना ठिकाना, मुझे चल के जाना है, बस चल के जाना। बड़ा अच्छा गाना है, और दिन में हाथ पकड़ के यहाँ बिठा दिया, रात में इशारे से वहाँ बुला दिया, सुबह से शाम मेरा दोस्त आना था
4: जी।
3: बड़ा अच्छा गाना है। नमस्कार, ओम शांति, और चाहते हैं कि हम सुनेंगे और आपको नमस्कार करते हैं बहुत दिन के बाद
4: जी। थैंक यू सो मच।
3: आप गुड मॉर्निंग, शुभ दिवस, थैंक यू, शुभ रात्रि, जय हिंद, जय भारत।
4: थैंक यू जय मदन जी, थैंक यू सो मच।
3: थैंक यू सो मच
4: जी। तो ये हमारे मदनलाल जी, इन्होंने बहुत ही प्यारा हमें गाना आज याद दिलाया है, मुसाफिर हूँ यारो, ना घर है ना ठिकाना। बड़े दिनों के बाद आज ये गाना मतलब मैं सुनूंगा, और ये भी काफ़ी गाना है जब हम काफ़ी समय पे गाते थे मुसाफिर, कई बार ट्रैवलिंग के समय पे भी हमने ये गाने हमने गाए हैं, और बड़ा प्यारा गाना है। लेकिन बड़े प्यारे गाने से पहले, इससे पहले जो गाना बजा ये भी बड़ा प्यारा गाना था, ये मेरी जिंदगी एक पागल हवा। जी हाँ दोस्तों, फिल्म जिद्दी 1964 के पुराने नए किस्से तो चल ही रहे हैं, लेकिन जब इस गीत की बारी है तो वो एक ऐसा जादू, एक ऐसी आज़ाद रूह की दास्तान है जो किसी बंधन में नहीं बंधना चाहते। आशा पारेख जी पर फिल्माया गया है और लता मंगेशकर जी की आवाज़ से सजाया ये गीत आज़ादी और मस्ती का एक बेहतरीन मिसाल है। हसरत जयपुरी जी के लिखे बोल, दादा एसडी बर्मन का चांद जैसा संगीत। दोस्तों गाने की शुरुआत ही एक बहुत ही शानदार शेर से होती है, मैं एक चांद हूँ जिसके माथे पर एक दाग है, मेरे दिल एक जलता हुआ चिराग है। चलिए लेकिन हमारे साथ हमारे कॉलर जुड़ रहे हैं, पहले करते हैं उनसे बातें। हेलो
5: हेलो
4: हेलो
5: हेलो,
4: शायद कैंसल या कट हो गया है। हाँ तो हम बात कर रहे थे कि इसकी जो गाने की शुरुआत होती है, शुरुआत में एक प्यारी सी शायरी है, मैं एक चांद हूँ जिसका जिसके माथे पर एक दाग है, मेरा दिल एक जलता हुआ चिराग है। इस गीत के लफ्ज़ देखिए कि ये मेरी ज़िंदगी एक पागल हवा, आज इधर कल उधर, मैं किसी की नहीं। हसरत जयपुर जी ने कितने सरल शब्दों में एक ऐसी लड़की की शख्सियत को बयां किया है। लेकिन फिर से शायद हमारे साथ कोई कॉलर जुड़ रहे थे, लेकिन शायद नहीं, फिर से कट हो गया। जी हाँ, तो ऐसी शख्सियत को बयां किया है जो किसी के साए में या दाए में हम कह सकते हैं नहीं रहना चाहती, आज़ाद रहना बिना किसी की परवाह के जीना और अपनी शर्तों पर मुस्कुराना, यही तो इस गीत की असली रूह है। शायद फिर से कोई हमारे साथ कॉलर जुड़ रहा है, चलिए करते हैं उनसे बातें। हेलो
5: हेलो
4: हेलो
5: हेलो,
4: आज शायद नेटवर्क में गड़बड़ है या हमारे अंदर किसी के साथ कोई गड़बड़ी हो रही, कोई ना कोई तो है जो हमें कॉल कर रहा है लेकिन हम उनसे बात नहीं कर पा रहे। कोई बात नहीं, आप कोशिश करते रहिए, कोशिश करना ज़रूरी है, कोशिश पर ही सफलता प्राप्त होती है और आपकी सफलता हमारे लिए बहुत बड़ी बात है, करते रहिए कोशिश। जी हाँ, तो गीत की हम जब बात कर रहे थे तो SD बर्मन साहब ने लता मंगेशकर की जो आवाज़ की मकदार को इतने खूबसूरत तरीके से इस्तेमाल किया कि गाने का हर अंतरा एक नए जोश के साथ आगे बढ़ता है। आशा पारेख जी का ऑन स्क्रीन प्लेफुल अंदाज और उनकी खूबसूरत अदाएँ इस गीत को और भी मेमोरेबल बना देती है। जी हाँ दोस्तों, कभी कभी ज़िंदगी को भी इसी पागल हवा की तरह होना चाहिए, बिना किसी बूझ के बस अपनी ही धुन में बहते जाना, है ना दोस्तों, ऐसा होना चाहिए कभी कभी, बिल्कुल। और हमने एक आपसे सवाल भी पूछा था, जी हाँ, मास्टर मदन किसका कहते हैं? जल्दी से अपना फ़ोन उठाइए और हमें कॉल कीजिए 9414151415 पर। चलिए बढ़ते हैं अगले नगमे की और, क्योंकि जो अगला नगमा है ये भी इसी फिल्म से है, सुपरहिट गानों में से एक है, और सुनते रहिए रेडियो मधुबन 107.8 FM पर, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

0: पढ़ना सीखा, लिखना सीखा, जीना सीखा। रेडियो मधुबन की छोटी सी पाठशाला।
1: हमारी मन की क्वालिटी कैसे है, और अक्सर करके डॉक्टर्स कहते हैं मोर देन 85% डिजीजेस है वो साइकोसोमैटिक है, मन से आरंभ होता है। और अक्सर करके जो तनाव भी होता है इट इज देयर इन द माइंड। और अक्सर करके देखते हैं कि पेरेंट्स को अपने बच्चों के प्रति इतनी शुभ भावना होती है कि जब बच्चों का एग्जाम्स होता ना तो उस समय मम्मी डैडी का प्यार बच्चों के प्रति कुछ ज्यादा ही बढ़ जाता है। और एग्जाम के दिन में मम्मी डैडी आकर कहेंगे बच्चा आज तेरा एग्जाम है तो है ना हॉर्लिक्स भी पी, बॉर्नविटा भी खा, ये भी कर वो भी कर, है ना, उसको बहुत जबरदस्ती खिलाएंगे। शरीर को तो हमने बहुत भोजन दिया, जरूरत है उसको मन को अच्छा भोजन देने के लिए। और मन का भोजन क्या है? विचार। मन का भोजन है विचार, बहुत पुराने विचार, बासी विचार। अगर उसको बार बार हम अपने मन में लेकर आएंगे तो ऑटोमेटिकली धीरे धीरे मन जो है वो कमजोर हो जाता है, धीरे धीरे द माइंड विल ऑल्सो बिकम वीक। तो फ्रेंड्स इस बात को चेक करना है कि सारे दिन में हमने अपने मन में जो विचार आ रहे हैं उसकी क्वालिटी कैसी है। देखिए सोचने की बात है, आज हर एक व्यक्ति के पास मोबाइल है और हम बहुत ध्यान रखते हैं कि मोबाइल को चार्ज करना है। और जिस दिन रात को सोए और मोबाइल चार्ज करना भूल गए तो रात के 2 बजे उठेंगे और उसको चार्ज करेंगे, क्योंकि हमको ये बात महसूस होती है कि अगर हमने मोबाइल को चार्ज नहीं किया तो शायद दूसरे दिन हमारा कम्युनिकेशन नहीं हो सकेगा। उसी तरह हमें अपने मन को भी अच्छे विचार से सुबह सुबह चार्ज करना बहुत बहुत जरूरी है।

वेलकम बैक दोस्तों। अभी हमने जो गाना सुना रात का समा जुमे चंद्रमा, जी हाँ दोस्तों, आज की शाम फिल्म जिद्दी 1964 के उन रंगीन पन्नों के नाम रही है जिन्होंने इंडियन सिनेमा में रोमांस और चुलबुलेपन की एक नई मिसाल कायम की थी। पहले हमने देखा कि कैसे हीरो अपने प्यार को मनाने के लिए हर रूप ढालने को तैयार होते हैं, मैं तेरे प्यार में क्या क्या ना बना। फिर हम देखा कि नई आज़ाद पंछी की तरह किसी की बाहों में बंधना नहीं चाहती और कहती है ये मेरी जिंदगी एक पागल हवा। लेकिन दोस्तों, जब वही आज़ाद हवा थोड़ी शांत होती है और जब चुलबुला पागलपन एक गहरे रूहानी एहसास में बदल जाता है तो जन्म लेती एक हसीन खामोश और रोमांचक रात, जब दिल के जज्बात शब्दों से ज़्यादा आँखों में नज़र आने लगते हैं। हसरत जयपुरी जी की बेहतरीन बोल और दादा SD बर्मन का जादुई संगीत। दोस्तों, फिल्म जिद्दी के इन तीनों नगमों ने आज हमारी शाम को सच में खूबसूरत और यादगार बना दिया। तो आपको जिद्दी फिल्म का ये स्पेशल म्यूजिकल जर्नी कैसे लगी हमें ज़रूर बताइए। कॉल कीजिए 9414151415 पर। और एक और बात हमने पूछी थी, मास्टर मदन, जी हाँ बिल्कुल, मास्टर मदन उस फिल्म में जॉय मुखर्जी के लिए कहा गया है कि मास्टर मदन जी को जॉय मुखर्जी के नाम से भी जाना जाता था, तो ये था उसका सही जवाब। हम आशा करते हैं अगली बार फिर से आप सभी इसी तरह के क्वीज़ में आप पार्टिसिपेट करें या हमें उन प्रश्नों के उत्तर दें, कॉल करें हमें और हमसे बातें करें। तो चलते हैं, बढ़ते हैं अगले नगमे की ओर, क्योंकि जो अगला नगमा है हमारी फरमाइश हमारे भूरी राम जी की तरफ से, बहुत ही प्यारा इन्होंने हमें ये गाना दिया है, जीवन चलने का नाम। जी हाँ, तो चलिए सुनते हैं इसी गाने को। सुनते रहिए रेडियो मधुमन 107.8 FM, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

किसी की जिंदगी में कोई दुर्घटना घटित न हो ये हम सभी चाहते हैं, पर अचानक अगर कोई विपत्ति आ जाए तो घबराइए नहीं, तुरंत कॉल कीजिए अपने शहर की पुलिस को, डायल कीजिए 100 अपने फोन से। सजग रहिए, सुरक्षित रहिए। रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी।

वेलकम बैक दोस्तों। और अभी हमने बहुत ही प्यारा एक गाना सुना, जीवन चलने का नाम, चलते रहो सुबह शाम, किराहे कट जाएंगे मित्रा, कि बादल छट जाएंगे मित्रा। जी हाँ, लक्ष्मीकांत प्यारे लाल जी का ये प्यारा सा म्यूजिक, राजकवि इंद्रजीत सिंह जी के लिखावट ये बोल, और महेंद्र कपूर साहब, मन्ना डे और श्याम चित्रा जी का ये गाए हुए बहुत ही सुरीले सुर शोर मूवी से अभी हमने ये गाना सुना। बहुत ही प्यारा ये गाना अभी हम सुन रहे थे, और बढ़ते हैं अगले नगमे की ओर। हम प्यार का सौदा करते हैं, सुनते हैं ये प्यारा सा नगमा। फिर एक और फरमाइश है हमारे मदन लाल जी की तरफ से कि मुसाफिर हूँ यारो, ये गाना हमें उन्हें सुनाना है। और सुनते रहिए रेडियो मधुबन 107.8 FM पर, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

वेलकम बैक दोस्तों, और अभी वक्त हो चला है आप सभी से विदा लेने का, क्योंकि ये वक्त है आपसे बाय बाय करने का, गुड नाइट करने का, शब्बा खैर शुभ रात्रि कहने का। फिर मिलेंगे आपसे अगले हफ्ते मंडे को और बहुत सी बातें करेंगे साथ में। और हमारे खास अजीत भाई ने, जिसने हमें आज कॉल किया था, वक्त हमारा समय हो चला था, उन्होंने हमें बहुत ही प्यारी सी फरमाइश भी दी है, देर ना हो जाए, कहीं देर ना हो जाए। और विशाल जी अगर हमें सुन रहे हैं, विशाल भाई हमारे साथी आरजे, उनके लिए

ये फरमाइश थी, क्योंकि बहुत समय से उन्हें सुनने की कोशिश किए कर रहे हैं अजीत जी, और वो सुन नहीं पा रहे। तो अजीत जी की तरफ से ये गाना हम बिल्कुल से मंडे को विशाल जी के लिए पेश करेंगे, कोशिश करेंगे हमारे प्लेलिस्ट में हमें ये मिल जाए और हम उनके लिए प्ले करेंगे। अजीत जी, आपसे भी गुजारिश है कि अगर आप आज भी हमें सुन रहे हैं तो मंडे तक आप हमें, मंडे को फिर से हमें ज्वाइन कीजिए। कोशिश करेंगे हम विशाल जी को लाइव लेने की और आपसे बातें कराने की। तब तक आप सभी से गुड नाइट, शबा खैर, और आप बने रहिए रेडियो के साथ, सुनते रहिए रेडियो मधुबन 107.8 FM, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

0: नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM। ये है कार्यक्रम सहज स्वास्थ्य। मैं हूँ आपका दोस्त आजिश। दोस्तों, जब हम स्वास्थ्य की बात करते हैं तो अक्सर हम इस बात को समझते हैं कि स्वस्थ रहना मनुष्य के लिए एक सबसे बड़ा वरदान है। अगर स्वास्थ्य चला जाता है तो व्यक्ति जीवन के सारे सुख सुविधाएं होते हुए भी उसका उपभोग नहीं कर सकता, या वो चीजें होते हुए भी वो अपने आप को सुखी नहीं महसूस करता। ऐसे में स्वास्थ्य कितना महत्वपूर्ण है हम सभी समझते हैं। अक्सर इसके महत्व को न जानने के कारण हम कुछ ऐसी गलतियां कर बैठते हैं जिसकी वजह से हम अपने स्वास्थ्य को खो देते हैं, या थोड़े समय के लिए हम रोगी बन जाते हैं और इस रोग से छूटने के लिए फिर हमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है। आइए आज स्वास्थ्य से जुड़े हुए कुछ ऐसे विषयों पर जानकारी लेते हैं जिससे ये समझा जाए कि कैसे हम अपने आप को स्वस्थ बनाए रखें, स्वास्थ्य का यह तोहफा हमेशा हमारे पास रहे। आज हमारे साथ इन विषयों पर चर्चा के लिए स्वास्थ्य जगत से ही एक ऐसे एक्सपर्ट जुड़ रहे हैं जो पेशे से एक एलोपैथी डॉक्टर हैं, भारत के जाने माने ऑस्टियोपैथ हैं और स्पोर्ट्स मेडिसिन के क्षेत्र में लंबा अनुभव रखते हैं। साथ ही भारत के प्राचीनतम प्रकृति चिकित्सा केंद्रों में से एक आरोग्य मंदिर गोरखपुर में प्रैक्टिस करते हैं, जहां पर उनके परिवार की अनेक पीढ़ियों ने लोगों को स्वास्थ्य लाभ दिया है और दे रहे हैं। आज हमारे साथ स्टूडियो में जुड़ रहे हैं डॉक्टर राहुल मोदी जी। डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है आज के कार्यक्रम में।
1: नमस्कार, ओम शांति।
0: डॉक्टर साहब, स्वास्थ्य से संबंधित चीजों पर जब भी हम कोई बातचीत करते हैं तो ये बात समझ में आती है कि स्वास्थ्य एक ऐसी चीज है जिसे एक बहुमूल्य कुंजी के रूप में लोग हमेशा से देखते आए हैं, मगर गौर करने वाली बात ये आज देखने को मिलती है कि व्यक्ति का ध्यान पैसा कमाने के लिए ज्यादा रहता है, जीवनोपार्जन के लिए ज्यादा रहता है, मगर जीवन को सुख से व्यतीत करने के लिए जो सबसे पहली चीज चाहिए, निरोगी काया यानी स्वस्थ शरीर, व्यक्ति का अपना स्वास्थ्य आवश्यक है, वो पहली रिक्वायरमेंट है, इसे लोग भूल जाते हैं। ऐसा क्यों होता है
1: भैया? अरबी में कहावत है कि जिसके पास स्वास्थ्य है उसके पास उम्मीद है, और जब उसके पास उम्मीद है तो उसके पास सब कुछ है। बहुत बार ये बोला जाता है, होप हैंग्स ऑन अ वेरी थिन स्ट्रिंग, बट इफ यू हैव होप यू कैन गेट ऑल द थिंग्स। तो मोटा मोटी उम्मीद को भी स्वास्थ्य के साथ जोड़ा जाता है कि अगर आप स्वस्थ हैं तो आपके पास ज्यादा मेहनत करने की ताकत है, आपको पास ज्यादा उम्मीद है। और ये बहुत बार लोगों को समझाया जाता है कि आप कृपा करके अपने स्वास्थ्य का ध्यान बहुत अच्छे से दीजिए। और अभी हम लोग जिस तरह से बात कर रहे हैं, क्या हमारे देश नहीं, पूरी दुनिया में जो बदलाव आया है सन 1990 सन 2000 तक, हमारे यहां नाइट ड्यूटी या रात का काम सिर्फ चौकीदार लोग किया करते थे, पुलिस वाले किया करते थे और अस्पताल के कर्मचारी किया करते थे। रेलवे स्टेशन पे भी आपको ये मिल जाता था। उस समय हमारी हवाई सेवाएं इतनी नहीं थी कि रात भर आपको दौड़ना भागना पड़े, और एक अमूमन ये था कि 10-11 बजे के बाद आपको रिक्शा मिलना, आपको टैक्सी मिलना, ये सब कम हो जाएगा। अब आप देखिए कि रात का काम करने वाले कितने सारे लोग हो गए, और जो दिल्ली एनसीआर है या हैदराबाद है, मुंबई है, बैंगलोर है, चंडीगढ़ है, लखनऊ है, जयपुर है, आप जो भी बड़े शहरों को देखिए, इवन सुदूर आसाम कोलकाता चले जाइए, आपको एक बहुत बड़ी जनसंख्या यंगस्टर्स की मिल जाएगी जो कॉल सेंटर पे काम कर रहे हैं और जो रात में काम कर रहे हैं, और वो उस रात में काम करने की वजह से अपनी पूरी जो लाइफ साइकिल है और स्लीप साइकिल है उसको डिस्टर्ब कर दिए हैं। इसीलिए कहा जा रहा है कि बहुत दिन तक लोग ये काम कर ही नहीं पा रहे हैं।

0: और मेरे पास बहुत सारे मरीज रहते हैं, तो मेरा नाश्ता, मेरा जो दोपहर का भोजन है और मेरे शाम का जो भोजन है, वो सिर्फ एक चीज होता है, वो है वड़ा पाव। और आपका दिमाग क्या कहता है, जल्दी से जल्दी कुछ खा लो। और ये मेरे यंग डेज में मैंने बहुत किया। मैं जब ब्रिटेन में रहा तो जस्ट एक इंग्लिश का वर्ड है, आप भी श्री भैया रहे हैं, ग्रैब अ सैंडविच एंड गो, या पिक अप अ कॉफी एंड गो। तो हम लोग क्या करते, और आप जितने भी बड़े स्टोर्स को देखिए, वहां पर एक मील कॉम्बो मिलता था, जिसमें एक छोटा पैकेट ऑफ चिप्स या कुकी बिस्किट मिलता था, एक सैंडविच मिलता था और एक ड्रिंक मिलती थी। और ये आपसे उम्मीद की जाती थी कि आप इसको 5 ही मिनट में खा के खत्म कर लेंगे। तो हम लोग अपने भोजन उस समय, दिमाग यही था कि बस पेट भर लेना है, स्वास्थ्य की तो हम बात ही नहीं सोच रहे थे। और जब उम्र बढ़ने लगती है, खासकर जब आप 35 साल को क्रॉस करते हैं और बहुत सारे लोगों में 40 साल तक, तो आपको ये जो आपने किया है अपने शरीर के साथ, आपने जो दुर्व्यवहार किया है, वो आपको दिखने लगता है, आपको लगने लगता है कि आपने गलत किया, आपको ये करना नहीं चाहिए था, आपको ठीक से भोजन करना चाहिए था, आपको ठीक से एक्सरसाइज करनी चाहिए थी, आपको ठीक से हिलना डुलना चाहिए था। तो मैं सबको ये कहना चाहूंगा कि कृपा करके अपने स्वास्थ्य के प्रति जितनी जल्दी हो सके उतना जागरूक हो जाइए। और मैं सिर्फ शरीर के स्वास्थ्य की बात नहीं कर रहा हूं, मैं शरीर, मन और हम सोसाइटी में कैसे रह रहे हैं, हम तीनों तरह से आपको स्वस्थ रहना है और अच्छा काम करना है। क्योंकि अगर आप स्वस्थ रहेंगे, अच्छा काम करेंगे, तभी हमारा देश आगे बढ़ पाएगा।
1: डॉक्टर साहब, ये बात आप बहुत ही सहजता से हम सबको समझा रहे हैं कि कैसे हम इस एक चीज को इग्नोर कर देते हैं, अपने स्वास्थ्य को इग्नोर कर देने की वजह से, दूसरी चीजों को प्रायोरिटी देने से हम इसे खो देते हैं और फिर उसे वापस पाने के लिए हमें कमाया हुआ पैसा, समय इत्यादि खर्चना पड़ता है। पिछले दिनों हम बातचीत कर रहे थे, हम ये चर्चा में समझ रहे थे कि कब्ज की जो बात हम कर रहे थे, कॉन्स्टिपेशन एक ऐसी समस्या है जो हमारे ऐसे ही इग्नोर करने के कारण शुरू होती है। हम पानी पीना पर ध्यान नहीं देते, हम समय पर शौच पे जाना पड़ेगा तो उसके लिए हम, हालांकि हमारा शरीर इशारा करता है तो भी हम उसे दबा दे रहे हैं कि हम शौचालय का इस्तेमाल नहीं कर पाते। हम भोजन में भी हेर फेर कर लेते हैं, क्या खाना है क्या नहीं खाना है उस चीज पर ध्यान नहीं देते। ऐसे करते करते ये इसका स्वरूप बदलता चला जाता है। और आपने ये भी कहा कि पाइल्स जैसी समस्याएं भी इससे ही जुड़ी हुई होती हैं कि इन्हीं गलतियों के कारण ये चीज ऐसे होती जाती हैं। अब समस्या एक ही चीज से जुड़ी हुई है वो समझ में आ रहा है कि धीरे धीरे वो अलग अलग स्टेजेस पे आ रहा है। अब इसके इलाज के बारे में जब बात की जाती है तो प्रश्न उठता है, क्या इसके इलाज भी एक समान है कि इन सारी समस्याओं के लिए हम अलग अलग तरीके से इलाज करते हैं, क्योंकि आज लोग अलग अलग पैथीज इत्यादि का इस्तेमाल करते हैं, तो प्रश्न उठता है स्वाभाविक रीति।
0: भैया, मोटापा हो, कॉन्स्टिपेशन हो या पाइल्स हो, मोटा मोटी सबका इलाज एकदम एक जैसा है। इन तीनों के विषय में आपने भैया खाने की बात की और शौच जाने की बात की, तो एक बड़ी, यहाँ एक लोकल बंगला में कहावत है कि जाए कि ना जाए तो जो जाए उचित, और खाए कि ना खाए, ना खाए उचित। मतलब अगर आपको, मतलब थोड़ा भी आपको, आपका पेट इशारा कर रहा है कि फ्रेश होने जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, आपको तुरंत जाना चाहिए। वो हल्के से भी सिग्नल को, वो हल्के से भी जो आपके शरीर के अंदर से आवाज आ रही है, उसे तुरंत आपको पकड़ना चाहिए। मतलब शौच आप जाए कि ना जाए, इस दुविधा में अगर आपका मन है तो आपको चुपचाप शौच चले जाना चाहिए। और इसी के विपरीत कि हमको खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए, तो इसमें नहीं खाना चाहिए ज्यादा उचित है। अगर आपके शरीर ने, आपके मन ने, आपकी जिह्वा ने, आपके दिमाग ने एक बार भी ये सोच लिया यार ये खाएं कि नहीं खाएं, तो नहीं खाना उचित है। तो प्लीज, अगर आप अपने पेट को ठीक रखना चाहते हैं, तो मैं हमेशा बोलता हूं गर्दन को दाहिने बाएं घुमाइए, ना बोलना सीखिए खाने को। और अगर जरा सा भी आपके पेट में सिग्नल आए, तो आपको तुरंत पेट साफ होने के लिए

0: जानना चाहिए। हम लोग अभी पेट की बात कर रहे हैं और पेट साफ होने की बात कर रहे हैं, तो इसमें सबसे जो इम्पॉर्टेंट चीज आजकल बात की जाती है वो है इलाज में, अब उसको भी कंसिडर किया जा रहा है कि आपको सुबेरे जल्दी उठना चाहिए। हमारी ह्यूमन बॉडी को इस तरह से भगवान ने बनाया है कि उसमें जो भी नेचुरल जो बात फ्रेश होने के जो सिग्नल्स हैं वो सुबेरे के समय आते हैं। आप जान के अचंभित होंगे कि इस समय जितने भी इनफर्टिलिटी के मरीज हैं उनके ट्रीटमेंट के लिए भी जो प्रोसेसेस हैं वो डॉक्टर्स कोशिश करते हैं कि सुबेरे किए जाएं, और वो ये तक कोशिश कर रहे हैं स्पेशली बड़े शहरों में कि ब्रह्म मुहूर्त में किया जाए, कि ये सबसे पॉजिटिव सबसे अच्छा समय है। मेरी माँ ये हमेशा कहती थी, सुबेरे उठ के जो पढ़ाई होती है वो एक घंटे में हमें 2 से 3 घंटे का फायदा हो जाता है। सुबेरे उठ के मुंह हाथ धो के जब पूरा वातावरण शांत रहता है, कोई भी चीज सुनाई नहीं देती, उस समय अगर आप बैठ के पढ़िए तो आपको ज्यादा याद होगा, आपके शरीर के लिए अच्छा और आपके मन के लिए भी अच्छा। तो यही चीज अब मोटापा, कॉन्स्टिपेशन और पाइल्स तीनों में कहा जा रहा है कि आप प्लीज सुबेरे उठिए। और ये भी कहा जाता है कि सूर्य की जब किरण निकल रही है अगर आप उस समय उठ पाएंगे तो आपको सबसे अच्छा लगेगा। और अगर आप किसी तांबे के या मिट्टी के या जो सामर्थ्यवान है चांदी के बर्तन में रखा हुआ पानी जो रात भर का रखा है उसे उठते ही पीते हैं तो आपके पेट साफ होने में वो बहुत मदद करेगा। सुबेरे उठते ही 2 ग्लास पानी आपको पीना चाहिए। अब इस पानी में हम चाहें तो जो सर मैंने पहले कहा था कि हमको इसमें जो नींबू का रस मिलाकर हम इसमें सुबेरे पी सकते हैं। मैं अपने श्रोताओं को यह समझाना चाहूंगा कि आप रात में पानी रखें और सुबेरे उसमें नींबू गार ले, कागजी नींबू, और पी जाएं। ये मत करिएगा कि रात में ही आप नींबू और पानी बनाकर आप उसको रख दें और सुबेरे पिए। हल्का फुल्का व्यायाम और गहरी सांस लेने वाली कसरत आपको करनी चाहिए। और अगर आपको सीवियर कॉन्स्टिपेशन या आपको अच्छा खासा आपका वजन बढ़ा हुआ है तो आपको 4 से 6 किलोमीटर तक सुबेरे वॉक करना चाहिए। ये मोटा मोटी माना जाता है अगर स्टेप के हिसाब से माने कि हम हर मिनट 100 स्टेप चल लेते हैं, 10 मिनट में 1000 स्टेप चल लेते हैं, तो हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि हम कम से कम 10,000 स्टेप सुबेरे ही चल लें। क्योंकि यदि आप 10,000 स्टेप चल लेंगे तो आपका पूरा मेटाबॉलिज्म जो है वो एक्टिवेट हो जाएगा। और जहां आप हल्के फुल्के व्यायाम, एक्सरसाइज या टहलना करेंगे तो आपका रक्त संचार जो है वो थोड़ा सा बढ़ जाएगा, आपकी बड़ी आंत में भी अच्छा रक्त संचार होगा और इसकी वजह से आपका पेट ठीक से साफ हो जाएगा। इसके बाद हमें कोई भी फल का या रस का प्रयोग करना चाहिए। फलों में सबसे अच्छा जो फल है वो पपीता, अमरूद और बेल है, और पके हुए फल का प्रयोग करना चाहिए। अमरूद, पपीता या बेल, इन तीनों में से जो भी चीज आपको मिले आपको सुबेरे के नाश्ते में करनी चाहिए। अगर आप रस पीना चाहते हैं तो आपको गाजर का रस और पालक का रस, ये रस आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छे होंगे। दोपहर के भोजन में हमें चोकर समेत आटे की रोटी, हमको ताजा साग सब्जी, उबली हुई साग सब्जी का भोजन करना चाहिए, या हम कोई भी दलिया या कोई भी मिलेट जो है वो खा सकते हैं। मैं सबको ये राय और देना चाहूंगा, कृपया मिक्स्ड आटा या मिक्स्ड मिलेट इसका प्रयोग मत करिए, क्योंकि ये आपके जो पाचन तंत्र है उसके ऊपर ज्यादा जोर डालता है। इसीलिए सिंगल ग्रेन या सिंगल मिलेट का प्रयोग करिए। मिक्सिंग ऑफ ग्रेन्स मतलब बहुत सारे अन्न को मिला के खाने की कोशिश मत करिए। जिनको भयंकर कॉन्स्टिपेशन, पाइल्स, मोटापा होता है, उनको ये तक कहा जाता है कि आप दालों को मत खाइए और जो भी भोजन जो गर्म होते हैं उन्हें मत खाइए, क्योंकि जैसे तेल, अचार, खटाई, मिठाई, ये सारी चीजें जो हैं वो आपके पाचन तंत्र को और धीरा बना देते हैं। आप सुबेरे के नाश्ते के बाद अपनी पेट पे ठंडे पानी का कपड़ा रख सकते हैं। यदि आपको मिट्टी मिले तो आप पेट पे मिट्टी की पट्टी रख सकते हैं। बहुत सारे लोग को ये भी कहा जाता है कि आप अपने कमर पे एक ठंडे पानी में कोई पट्टी, जो कॉटन की कोई भी पट्टी है, उसको भिगो लें, और ये करीब 12 इंच मोटी कोई पट्टी आपके पास अगर कॉटन की है तो इसको भिगो लें और इसको अपने कमर पे बांध लें। नाभि के 4 उंगल ऊपर, 4 उंगल नीचे होना चाहिए। पट्टी नाभि के एकदम बीचों बीच से, अगर आप नाभि को बीच में माने तो जितना ऊपर नाभि के उतना ही नाभि के नीचे भी होनी चाहिए। इससे आपकी सारी जो आंत है उसमें ठंडक पहुंचेगी, आंतों की गर्मी निकलेगी और आंतों में फिर से नया जीवन आएगा और वो अपने आप चलायमान हो जाएंगी। हम लोग ने ठंडे पानी में बैठ मतलब पानी में बैठने की भी बात की थी, तो आप अगर आंतों को ठंडक पहुंचाएंगे तो आपको बहुत आराम मिलेगा। करीब हफ्ते में एक दिन उपवास करने की कोशिश करनी चाहिए। 2-3 दिन तक अगर हम रसाहार या लिक्विड डाइट करते हैं तो वो भी हमको बहुत आराम देगा। सवेरे भारी नाश्ता करने की हमें आदत छोड़नी चाहिए कि हम मतलब हैवी ब्रेकफास्ट कर रहे हैं। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि जितना ज्यादा खाएंगे उतनी जल्दी निकलेगा।
1: डॉक्टर साहब, जब आप कहते हैं कि ये जो हैवी ब्रेकफास्ट करना है इससे बचना होगा, और आपने ये भी बात कहा कि जितना ज्यादा खाएंगे उतना जल्दी निकलेगा शरीर से बाहर, ये एक अवधारणा हमारी कैसे बनती है वो मैं नहीं जानता। प्रायः ये चीज कहा जाता है कि लोगों को बोला जाता है कि भाई अच्छे से नाश्ता करो बेटा, बचपन से ये चीज सिखाया जाता है। तो हम सोचते हैं कि भाई एक किंग के समान नाश्ता होना चाहिए और एक मजदूर के जितना हमें भोजन करना चाहिए, और फिर बाद में एक बहुत ही गरीब आदमी जितना रात का भोजन होना चाहिए, ये कहावत मशहूर है। तो लोगों को लगता है कि नहीं, ब्रेकफास्ट तो हैवी होना ही चाहिए, जो मिल रहा सब कुछ ही खा लेना है, ऐसे ये चीज लगती है।
0: भैया, ये जो आपने बात की ये हेल्दी पीपल के लिए है। जब आपका पाचन तंत्र चल ही नहीं रहा है तो उसमें आप ऊपर से जो भी डालेंगे वो फंस जाएगा। अच्छा, हैवी ब्रेकफास्ट अगर ये जहां से भैया निकला वहां पर जो भी लोग थे वो सैलेड बहुत खाते हैं, वो फ्रूट्स बहुत खाते हैं, वो ब्रेकफास्ट में जैसे जो यूरोप है वहां से ये धारणा निकली, तो दे हैव लॉट ऑफ फ्रूट्स, सैलेड्स, ब्रेड्स, मिल्क, ये वहां से निकला। हमारी इंडिया में आते आते ये सुबेरे के पराठे में कन्वर्ट हो गया। और ये हैवी ब्रेकफास्ट जो है ये तला भुना वो सारी चीजें हो गई। आप खुद नोटिस करेंगे भैया कि हम आप विदेश में रहे हैं वहां खाने के साथ पानी बहुत कम पिया जाता है, और हमारे यहाँ हम इतना भारी भोजन करते हैं कि हम खाने के साथ पानी का गिलास भी रखते हैं। बहुत सारे लोग जब आरोग्य मंदिर में चिकित्सा कराने आते हैं तो वो इस बात से अचंभित हो जाते हैं कि यहाँ पानी का गिलास ही नहीं भोजन के साथ मिलता है। हम आपको सिर्फ एक स्टील की प्लेट, 2 कटोरी, 1 चम्मच देते हैं, हम पानी का गिलास ही नहीं देते हैं। और अगर आपको कोई भी पाचन तंत्र की समस्या है, भोजन आपका ठीक नहीं है, तो आपको ये कोशिश करनी चाहिए कि आप खाना खाने से पहले नॉर्मल या हल्का गुनगुना पानी ठंडक में पी सकते हैं, और भोजन करने के 1.5 से 2 घंटे बाद इच्छा अनुसार आप जल पी सकते हैं। खाने के साथ आपको पानी जो है वो अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि वो पेट और छोटी आंत का जो काम है वो बढ़ा देता है। एक्सरसाइज में ये भी कहा जाता है कि आप बेसिक सूर्य नमस्कार अगर करिए, क्योंकि सूर्य नमस्कार में आगे झुकने और पीछे झुकने के जो आसन है वो आपके पेट को साफ करने में बहुत मदद करेंगे। ये अवधारणा है कि खासकर प्राकृतिक चिकित्सा एवं आयुर्वेद ये कि आपको बहुत भारी भोजन नहीं करना चाहिए अगर आप कॉन्स्टिपेशन या पाइल्स के मरीज हैं।
1: व्यायाम की जब आप अभी बात कर रहे थे डॉक्टर साहब, तो बहुत सारे लोग इन सब चीजों से अवगत नहीं होते। जैसे आपने ये बात कहा, जैसे मैंने अभी ये सवाल पूछा, आपने कहा कि ये स्वस्थ लोगों के लिए चीज है, मगर वो लोग जो पाइल्स, कॉन्स्टिपेशन जैसे कब्ज जैसी बीमारियों से जूझ रहे हैं, उनको अपने इलाज में इन चीजों का ख्याल रखने की जरूरत है। कभी कभार हम एक्सरसाइज के बारे में भी जब करते हैं, तो हम बिना चिकित्सीय सलाह के, बिना डॉक्टर से राय मशवरा किए, जो हम YouTube पे देख रहे हैं या सोशल मीडिया रील्स पे देख रहे हैं, वो करना शुरू कर देते हैं। तो क्या ये जानना जरूरी नहीं है कि मेरे शरीर में जो गड़बड़ियां चल रही हैं या कोई चीजें मुझे सूट नहीं करने वाली होंगी, उसके हिसाब से मुझे ये चीज समझ कर करना है?
0: आपको अपने बारे में जरूर सोचना चाहिए। आपको वो भोजन जो आपकी जिह्वा पे आपको अच्छा लग रहा है पर आपको शरीर से कष्ट दे रहा है उसको पक्का छोड़ देना चाहिए। भैया राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात में एक चटनी बनाई जाती है जिसमें हम लाल मिर्च का पाउडर लहसुन के साथ उसको पीसते हैं और ये बहुत तेज होती है। मतलब मेरे जैसा व्यक्ति इसको अगर एक बार खा लेता है तो मेरा चेहरा लाल हो जाता है, मेरे पेट में अगले दिन जलन होने लगती है और मेरी पूरे जो मुंह है सूख जाता है। तो मुझको मालूम है ये मेरे लिए अच्छी चीज नहीं है, मगर वो जब जीवा पड़ती तो बहुत एकदम एक तीखा सा स्वाद आता। तो मुझे मालूम चल गया वो मेरे लिए अच्छा नहीं है। मैंने इसको एक बार दो बार खाया, उसके बाद से मैं पहले मना कर देता हूं कि मैं नहीं खाता और अगर सर भी हो जाती है तो मैं इसको छोड़ देता हूं, क्योंकि वो चीज मेरे शरीर के लिए अच्छी नहीं है। बहुत सारे लोग ऐसे ही, कोई एक फल होता है जिससे वो रिएक्शन हो जाता है, कोई एक दाल होती है, कोई एक मतलब प्रोटीन होता है, कोई सब्जी होती है, इनको खाने से परेशानी होने लगती है। ठंडक के समय लोग बहुत मटर खाते हैं तो गैस होने लगती है, इसलिए मटर को वो फिर ये बोलता है बड़ा परेशानी हो रही, तो भाई छोड़ दीजिए आप। तो जो चीज आपके शरीर के लिए अच्छी नहीं है, आपको भले ही उससे स्वाद आ रहा है, तो प्लीज उसको तो जरूर छोड़ दीजिए।
1: बहुत ही खूबसूरत बात आपने कही डॉक्टर साहब। एक ओर हम स्वास्थ्य के प्रति जागरूक हैं, और जागरूक होने की कोशिश में हमें यह भी जानने की जरूरत है कि हम क्या कर रहे हैं, क्या चीजें हमारे शरीर के लिए, हमारी प्रकृति के लिए अनुकूल है और क्या चीजें अनुकूल नहीं है, क्या चीजें हमें सूट करती हैं, क्या चीजें हमारे शरीर के लिए विरोधी हैं, ऐसी चीजें हैं जो हमें समस्या ले आ सकती है, क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, कौन सा एक्सरसाइज करना है, ये सारी चीजें समझ के साथ जब हम करते हैं तब पता चलता है। दोस्तों, स्वास्थ्य में जब भी गड़बड़ियां होती हैं तो इलाज मौजूद है, मगर उन इलाजों को करते समय सही राय लेना बहुत ही आवश्यक है। आजकल जानकारी के इस युग में रहते हुए हम हर कोई जो मन में आए वो करने लग जाए तो शायद ये हमारे लिए अहितकारी साबित होगा। कब्ज, कॉन्स्टिपेशन, पाइल्स जैसे बीमारियों के लिए इलाज के क्या तरीके हैं, उस विषय पर आज हमने डॉक्टर राहुल मोदी जी से सुना। आशा करते हैं कि ये सभी जानकारी आपके लिए फायदेमंद होगी और आप इसका सही सही इस्तेमाल करेंगे। आज की चर्चा में यही रुकना होगा। आप सभी श्रोता मित्रों की ओर से मैं डॉक्टर राहुल मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब।
0: नमस्कार, ओम शांति।
1: दोस्तों, आज की बातचीत में बस इतना ही। सहज स्वास्थ्य में अपने स्वास्थ्य को सहज करने के लिए क्या करने की जरूरत है, रेडियो मधुबन इसके लिए आपको आपके हाथ पकड़कर अच्छे स्वास्थ्य की ओर एक एक कदम बढ़ाने में मदद कर रहा है। हमारे साथ इस सफर पे यूं ही बने रहिए, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए। रेडियो मधुबन 107.8।

0: नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। ध्यान मन को स्थिर करता है और आत्मा की गहराई में झांकने का मार्ग दिखाता है। मैं हूं आपका हम सफर आरजे रमेश। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।
1: हेलो बच्चों, चलो चलो बैठो रेडियो के पास। बज गए हैं 9:30 और सपनों की सैर कार्यक्रम में परी और मनी दीदी भी आपसे बातें करने आ गए हैं।
2: हाँ बच्चों, अगस्त मास यानी कि सबसे पहला दिमाग में तो आता है 15 अगस्त, है ना। और

0: कैसे हमें आज़ादी मिली, कितने सारे लोगों ने संघर्ष किया, मेहनत की, अपना बलिदान दिया, तब जाकर हमें ये आज़ादी मिली।
1: तो बच्चों, आपको पता है ना, कितने सारे अच्छे अच्छे स्वतंत्रता सेनानियों ने भारत को आज़ाद करने में हमें मदद की, जैसे महात्मा गांधी, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आज़ाद, रानी लक्ष्मीबाई और अनेक वीरों ने देश के लिए साहस और त्याग की मिसाल कायम की है।
0: सही कहा, और देश की आज़ादी में इन सभी का तो बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है, क्योंकि इनकी वजह से हम आज आज़ाद भारत में पढ़ सकते हैं, अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं और अपने सपनों को पूरा करने का भी प्रयास कर सकते हैं।
1: इसीलिए बच्चों, हमें अपने स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान को भी हमेशा याद रखना चाहिए।
0: हाँ परी, सही बात है। जब हम ऐसी देशभक्ति मूवी देखते हैं, सरदार भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, महात्मा गांधी, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, तो कितना मीन्स एक मोटिवेशन मिलता है, एक प्रेरणा मिलती है हमें।
1: हाँ बच्चों, तो चलो अब बातें करेंगे या फिर गाना भी सुनेंगे और उसके बाद कहानी भी तो सुनेंगे।
0: हाँ परी, तो चलो बच्चों, अभी कहीं जाना नहीं, अभी थोड़ी ही देर में परी फिर से आने वाली है लेकर के कहानी आपके लिए कुछ स्पेशल। तो सुनते हैं ये प्यारा सा गाना।
1: सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए
0: रेडियो मधुबन 107.8 FM पर।

बच्चों चलो बैठो फिर से रेडियो के पास, परी कहानी शुरू कर रही है। एक अमीर आदमी था, वो अक्सर देश विदेश की यात्रा किया करता था, इसलिए वो अधिकतर घर से बाहर रहता था। जब कभी वो घर पे लौट कर आता तो आसपास के युवकों को एकत्र करता और उन्हें अपनी यात्रा के चित्र विचित्र अनुभवों के बारे में बताता। अक्सर वो उन युवकों को पूछता, क्या तुमने पेरिस का आईफिल टावर देखा है? क्या तुमने पीसा की झुकी हुई मीनार देखी है? क्या तुमने आगरा का ताज महल देखा है? वो लोग उसकी बातें सुनकर अवाक रह जाते थे। हर बार उस घुमक्कड़ अमीर के सवालों के जवाब में युवकों के मुंह से यही निकलता, नहीं। ये सुनकर अमीर कहता, तुम लोग घर छोड़कर बाहर कहीं गए नहीं, इसलिए तुम्हें जीवन का आनंद ही नहीं मिला। बच्चों एक दिन युवकों ने उस अमीर आदमी से कहा, क्या आप कभी शहर के कबाड़ी की दुकान पर गए हैं? तो चलिए घुमा लाते हैं आपको। लड़के उसे लेकर कबाड़ी की दुकान पर पहुँचे। अमीर कबाड़ी की दुकान को देखकर दंग रह गया। उसने देखा कबाड़ी की दुकान उसके घर के कीमती सामानों से भरी पड़ी है। उसने कहा, अरे मेरे घर की चीजें इस कबाड़ खाने में कैसे पहुँच गई? बच्चों सोचो कैसे पहुँच गई होगी। युवकों ने उसकी खिल्ली उड़ाते हुए कहा, आप तो मुश्किल से अपने घर पर होते हो, इसलिए आप अपने पुरखों की गाड़ी कमाई की चीजें इस तरह लुटाते जा रहे हो। तो देखा बच्चों, ये कहानी हमें समझाती है कि समुचित देखभाल न करने पर घर की संपत्ति जाते देर नहीं लगती, है ना बच्चों? इसीलिए सारा टाइम घर के बाहर भी नहीं रहना चाहिए, घर में भी रहना चाहिए, सबको समय देना चाहिए, घर के परिवार के लोगों को भी समय देना चाहिए, खुद को भी समय देना चाहिए। तो चलो अब सुनते हैं ये प्यारा सा गाना। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए, रेडियो मधुबन 107.8 FM पर, सपनों की

नमस्कार, मैं हूँ श्वेता पंडित, आपकी साथी। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी है खुशियों की खान, बेटी है तो दुनिया है, बेटी नहीं तो दुनिया भी नहीं। आप सुन रहे हो रेडियो मधुबन, सुनते रहो मुस्कुराते रहो।

बच्चों आ जाओ जल्दी से रेडियो के पास। वही मनी दीदी आ गई है लेकर तेनाली रामा की किताब लेकर, और इसमें हम पढ़ रहे हैं कहानी जिसका शीर्षक है फलियों की शिक्षा, जिसमें महाराज और तेनाली राम अपना एक ग्रुप लेकर के राज्य का भ्रमण करने निकले हैं, और जिसमें वे रात दिन बहुत ही सफर करते आगे बढ़ रहे हैं, बहुत थक गए हैं, रात भी होने वाली है। तो उन्होंने एक स्थान पर नदी के किनारे तंबू गाड़े और भोजन के लिए बगल के ही खेत में खूब सारी मटर की फलियां दिखाई दी। तो महाराज ने कहा आज इसी का ही आहार लिया जाए। तो फिर उन्होंने सिपाहियों को भी कहा कि क्या आप लोग ये फलियों का आहार लेंगे। तो सिपाहियों ने भी कहा हाँ महाराज, इस जंगल में जो भी मिल जाए वही उत्तम आहार है। तो अब आगे क्या हुआ वो मैं पढ़ती हूँ बिना देर किए। तो महाराज ने कहा तो जाओ सामने खेत में फलियां तैयार है, तोड़कर कुछ हम दोनों के लिए लाओ और तुम लोग भी खाओ, घोड़े तो मैदान में घास चर ही रहे होंगे। जैसी आज्ञा महाराज कहकर सिपाही मुड़ने ही जा रहा था कि तेनाली राम ने हस्तक्षेप किया, ठहरो। फिर महाराज की ओर देखते हुए बोला महाराज मैं तो इस तरह फलियां ग्रहण नहीं करूंगा, आप इस राज्य के राजा अवश्य हैं किंतु इस खेत के मालिक नहीं हैं। इस खेत का मालिक तो वही किसान होगा जिसने इस खेत में फलियां उगाई है, इसे अपने पसीने से सींचा है, बिना उसकी आज्ञा के इस खेत की एक फली भी तोड़ना अपराध है, और यह अपराध ही नहीं किंतु राज धर्म के विरुद्ध चरण है जो कि एक राजा को शोभा नहीं देता। महाराज को तेनाली राम की बात उचित लगी, उन्होंने सिपाही को निर्देश दिया जाओ इस खेत के स्वामी का पता लगाकर उससे आज्ञा लो, यदि वह मिल जाए तो उससे कहना इस राज्य के राजा ने उसके खेत की फलियां मंगाई हैं। सिपाही जब उस खेत के मालिक का पता लगाते हुए उसके पास पहुंचा तो सिपाही को देखकर खेत का मालिक घबरा गया, किंतु जब उसे पता चला कि महाराज स्वयं उसके खेत के पास विश्राम कर रहे हैं और अपनी भूख मिटाने के लिए खेत से थोड़ी फलियां तोड़ने की आज्ञा चाहते हैं, तब उसके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा और प्रसन्नता से उसका हृदय भर गया। तो बच्चों ये मैनर तेनालीराम ने बहुत अच्छा सिखाया है ना, कि जिसका भी खेत है पहले उसे आज्ञा ली जाए, उसके पश्चात वहाँ की फलियां ग्रहण की जाए। तो चलो ये एक और अच्छी शिक्षा हमें मिली। अब बच्चों आगे क्या होगा वो हम पढ़ेंगे अगली कड़ी में, तब तक कहीं जाना रही, मिलते हैं इस प्यारे से गाने के बाद। सुनते रहो मुस्कुराते रहो रेडियो मधुबन 107.8 FM पर।

0: आप सुन रहे हैं ब्रह्मा कुमारीज का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन।
1: कृपया जब गाड़ी प्लेटफॉर्म पर खड़ी हो तब मेहरबानी करके शौचालय का उपयोग ना करें, जिससे स्टेशन परिसर में गंदगी फैलती है। इसमें रेलवे की सहायता करें।
0: रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी, सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए।
2: बच्चों चलो चलो बैठो रेडियो के पास, हमने बहुत अच्छी अच्छी बातें कर ली, कहानियाँ सुन ली, मनी दीदी की तेते ते तेनाली रामा की स्टोरी भी सुन ली। अब बारी आती है पहेली की, और याद है ना पिछली कड़ी में हमने पूछा था, सात रंगों की मैं पहचान, बारिश के बाद करता हूँ गान, आसमान में फैलता हूँ, बताओ मैं कौन कहलाता हूँ।
3: हाँ बच्चों, और सही जवाब है सात रंगों का क्या बनता है, रेनबो, इंद्रधनुष। तो सही जवाब है रेनबो।
2: तो बच्चों चलो फिर से जल्दी जल्दी नोट कर लो आज की पहेली। मीठा रस भरा स्वाद, गर्मी में करता हूँ सबको याद, राष्ट्रीय फल कहलाता हूँ खास, बताओ मैं कौन हूँ ये मिठास।
3: तो बच्चों गर्मी के समय में कौन सा बहुत सुंदर मीठा मीठा फल आता है, केवल गर्मियों में ही मिलता है, और उसे फलों का राजा भी कहा जाता है। तो चलो चलो जल्दी से अपना फोन उठाओ और 9414151415 पर हमें वॉइस नोट या मैसेज करके भेज दो।
2: हाँ बच्चों, हमें आपके जवाब का इंतजार रहेगा, और मनी दीदी ने तो बहुत अच्छी हिंट दे दी है, तो साथ में अब भगवान को भी याद करना मत भूलना, उन्हें सॉरी और थैंक यू लिख देना सारे दिन के कारनामे किए उसके।
3: बिल्कुल, और चलो बच्चों अब करते हैं गुड नाइट,
2: स्लीप टाइट,
3: गुड बाय,
4: सुनते रहो मुस्कुराते रहो रेडियो मधुबन।

संगीत की दुनिया के साथ अब मेरा रिश्ता अपने 50 साल पूरे कर रहा है। आज जब मैं पीछे मुड़ के देखती हूँ तो कई यादें उभर रही हैं। कैसे कैसे लोग याद आ रहे हैं, खास तौर पे याद आ रहे हैं वो लोग जिनके साथ मैंने गाया, जिन्हें गाते हुए सुना। ऐसे सुरीले लोगों को मैं अपने सुरों की श्रद्धांजलि के अलावा दे ही क्या सकती हूँ। मैं ये साबित नहीं करना चाहती कि मैं इन महान कलाकारों से अच्छा गा सकती हूँ, बल्कि ये कहूँगी कि इन 50 सालों में मैंने उनसे जो सीखा है उसे ही पेश करने की एक छोटी सी कोशिश कर रही हूँ। बचपन में या तो मैं अपने पिताजी को गाते हुए सुना करती थी, या मुझे पसंद था सहगल साहब का गाना। मेरी बड़ी इच्छा थी कि उनसे मिलूं, बातें करूं, उनका गाना सुनूं और अपना गाना सुनाऊं। ये सपना सपना ही रह गया, पर उनके सुरों का असर 50 सालों से मेरे संगीत के साथ साये की तरह चल रहा है।

समय बनता है सुबह का जब खास उषा आती है अचानक के साथ। आप सभी को नमस्कार, गुड मॉर्निंग, राम राम सा, जय श्री कृष्ण सा, खम्मा गणेशा। लालच बुरी बला है, अतः लालच कभी नहीं करना चाहिए। कैसे जरा सोचिए। और जी हाँ, तुलसी स्वास्थ्य के लिए कैसे फायदा करती है आप भी सोचिए। उपाय तो हम जरूर बताएंगे, लेकिन थोड़ा आप भी सोचिए। अगर आपको भी आंसर मिलता है तो आप भी उपाय बता सकते हो। और आज मैं आप सभी को सिखाने वाली हूँ आइसक्रीम। कल आपने खाई कुल्फी, आज बनाएंगे आइसक्रीम, परंतु कौन सी वाली, वो तो आप आशियाना सुनेंगे तभी जान पाएंगे। और खुशनुमा जीवन की ढेर सारी बातें भी करेंगे, तो प्रश्न भी पूछने वाली हूँ बहुत ही सरल और सुंदर। तो ये सब कुछ सुनेंगे आप आशियाना में। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन 90.4 FM।

0: रुक कोई रुक रुक रुक पीछे पीछे पीछे चल भाई, स्टॉप लाइन के आगे कहाँ जा रहा है? लाल बत्ती दिखाई नहीं देती।
1: पर हवलदार साहब, जरा जल्दी निकलने के मूड में हूँ।
0: वो तो ठीक है, पर दूसरी तरफ हरी बत्ती है और उन लोगों का रुकने का मूड नहीं है। तो जब भी लाल बत्ती हो तेरी तरफ तो बोलो पहले आप।
2: गाड़ी चलाते वक्त पहले आप का रूल अपनाइए और अपने शहर का ट्रैफिक स्मूथ बनाइए। ब्रह्मा कुमारीज के सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी।
3: बहुत ही सुंदर गीत सुना आप सभी ने, उसके बाद पुनः आप सभी का आशियाना में स्वागत है। आज का सुंदर सा विचार इस प्रकार है कि लालच बुरी बला है, अतः लालच कभी नहीं करे। लालच बुरी बला है, इसलिए लालच कभी नहीं करना चाहिए। कैसे? तो आज के विचार का विस्तार एक छोटी सी कहानी के साथ करना चाहूंगी कि एक नगर में एक लालची आदमी रहता था। अपार धन संपदा होने के बाद भी उसे हर समय और भी अधिक धन प्राप्ति की लालसा रहती थी। एक बार नगर में एक चमत्कारी संत का आगमन हुआ। लोभी व्यक्ति को जब उनके चमत्कारों के बारे में ज्ञात हुआ तो वह दौड़ा दौड़ा उनके पास गया और उन्हें अपने घर आमंत्रित किया, उनके अच्छी सेवा की, आदर सत्कार किया। सेवा से प्रसन्न होकर के नगर से प्रस्थान करने के पहले संत ने उस लोभी व्यक्ति को चार दीपक दिए। चारों दीपक देकर के संत ने उसे बताया, पुत्र जब भी तुम्हें धन की आवश्यकता हो तो पहला दीपक जला लेना और पूर्व दिशा में चलते जाना। जहां दीपक बुझ जाए उस जगह की जमीन खोद लेना, वहां तुम्हें धन की प्राप्ति होगी। उसके बाद पुनः तुम्हें धन की आवश्यकता हुई तो दूसरा दीपक जला लेना, जिसे लेकर के पश्चिम दिशा में तब तक चलते जाना जब तक वहां दिया बुझ ना जाए। उस स्थान से जमीन में घड़ी अपार धन संपदा तुम्हें प्राप्त होगी। धन की तुम्हारी आवश्यकता तब भी पूरी नहीं हो सकती है तो तीसरा दीपक भी जला करके दक्षिण दिशा में चले जाना। वहां पर दिया बुझेगा तो वहां पर तुम्हें धन की प्राप्ति होगी। अंत में तुम्हारे पास एक दीपक और है, एक दीपक है किंतु तुम्हें न उस दीपक को जलाना है न ही उस दिशा में जाना है। इतना कह करके संत लोभी व्यक्ति के घर और उस नगर से प्रस्थान कर गए। संत के जाते ही लोभी व्यक्ति ने पहला दीपक जला लिया और धन की तलाश में पूर्व दिशा की ओर चल पड़ा। एक जंगल में दीपक बुझ गया। वहां की खुदाई करने पर उसे एक कलश प्राप्त हुआ और वह कलश सोने के आभूषणों से भरा हुआ था। लोभी व्यक्ति ने सोचा कि पहले दूसरी दिशाओं का धन प्राप्त कर लूं, फिर यहाँ का धन भी ले जाऊंगा। वह कलश वही झाड़ियों में छिपा करके दूसरा दीपक जलाया और पश्चिम दिशा की ओर चल पड़ा। एक सुनसान स्थान पर दूसरा दीपक भी बुझ गया। लोभी व्यक्ति ने वहां की जमीन खोदी। उसे वहां एक संदूक मिला जो सोने के सिक्कों से भरा हुआ था। लोभी व्यक्ति ने वह संदूक उसी गड्ढे में रख दिया और सोचा कि बाद में ले जाऊंगा, इसलिए वही छोड़ करके तीसरा दीपक जलाया और दक्षिण दिशा की ओर बढ़ गया। वह दीपक एक पेड़ के नीचे बुझा। वहां जमीन के नीचे लोभी व्यक्ति को एक घड़ा मिला जिसमें हीरे मोती भरे हुए थे। इतना धन प्राप्त कर लोभी व्यक्ति प्रसन्न तो बहुत हुआ किंतु उसका लोभ और बढ़ गया। वह अंतिम दीपक जला करके उत्तर दिशा में जाने का विचार करने लगा, जिसके लिए उसे संत ने सख्त मना किया था। किंतु लोभ में अंधे हो चुके व्यक्ति ने सोचा कि अवश्य उस स्थान पर इन स्थानों से भी ज्यादा धन छुपा होगा जो संत स्वयं रखना चाहता हो। मुझे तत्काल वहां जाकर उसे पहले उस धन को अपने कब्जे में ले लेना चाहिए, उसके बाद सारा जीवन में ऐशो आराम से बिताऊंगा। उसने अंतिम दीपक भी जला लिया और उत्तर दिशा में बढ़ने लगा।

चलते चलते वे एक महल के सामने पहुंचा। वहां पहुंचते ही दीपक बुझ गया। दीपक बुझने के बाद लोभी व्यक्ति ने महल का द्वार खोल लिया और महल के भीतर प्रवेश कर महल के कक्षों में धन की तलाश करने लगा। एक कक्ष में उसे हीरे जवाहरात का भंडार मिला, जिन्हें देख करके उसकी आंखें चौंधिया गई। एक अन्य कक्ष में उसे सोने का भंडार मिला। अपार धन देख करके उसका लालच और भी बढ़ने लगा। कुछ आगे जाने पर उसे चक्की चलने की आवाज सुनाई दी। वे कक्ष से आ रही थी। आश्चर्यचकित होकर उसने उस कक्ष का द्वार खोल लिया। वहां उसे एक वृद्ध व्यक्ति चक्की पीसता हुआ दिखाई पड़ा। लोभी व्यक्ति ने उससे पूछा, यहाँ कैसे पहुंचे बाबा? क्या थोड़ी देर में तुम चक्की चलाओगे? मैं जरा सांस ले लूं, फिर तुम्हें पूरी बात बताता हूँ कि मैं यहाँ कैसे पहुंचा और मुझे यहाँ क्या मिला, वृद्ध व्यक्ति बोला। लोभी व्यक्ति ने सोचा कि वृद्ध व्यक्ति से ये जानकारी प्राप्त हो जाएगी कि इस महल में धन कहाँ कहाँ छुपा है, और उसकी बात मानकर वह चक्की चलाने लगा। इधर वृद्ध व्यक्ति उठ खड़ा हुआ और जोर जोर से हंसने लगा। उसे हंसता देख लोभी व्यक्ति ने पूछा, ऐसे क्यों हंस रहे हो भाई? ये कहकर वह चक्की बंद करने लगा। अरे अरे, चक्की बंद मत करना, अब से ये महल तेरा है, इस पर अब तेरा अधिकार है, और साथ ही इस चक्की पर भी। ये चक्की तुम्हें अब हर समय चलाते रहना है, क्योंकि चक्की बंद होते ही ये महल ढह जाएगा और तो इसमें दब करके मर जाएगा, गहरी सांस लेकर वृद्ध व्यक्ति आगे बोला। संत की बात न मानकर मैं भी लोभवश आखिर दीपक जलाकर इस महल में पहुंच गया था। तब से यही चक्की चला रहा हूं। मेरी पूरी जवानी चक्की चलाते चलाते निकल गई। इतना कह करके वृद्ध व्यक्ति वहां से जाने लगा। जाते जाते ये तो बताते जाओ कि इस चक्की से छुटकारा कैसे मिलेगा, लोभी व्यक्ति जोर से चिल्लाया पीछे से। जब तक मेरे और तुम्हारे जैसा कोई व्यक्ति लोभ में अंधा होकर के यहाँ नहीं आएगा, तुम्हें इस चक्की से छुटकारा नहीं मिलेगा। इतना कहकर वृद्ध व्यक्ति चला गया। लोभी व्यक्ति चक्की पीसता और खुद को कोसता रह गया। तो कहने का भाव यही है मेरे प्यारे श्रोता बंधुओं कि लालच बुरी बला है, इसलिए लालच कभी नहीं करना चाहिए। देखा ना आपने लालची व्यक्ति के क्या हानि हुई, क्या इसके साथ घटित हुआ। इसलिए लोभ लालच बिल्कुल नहीं करना है। यही आज का सुंदर सा विचार है, जिस पर जरूर गौर करेंगे और सुनेंगे पुनः एक प्यारा सा गीत। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन।

मैं हूं संजय कुमार और आप सुन रहे हैं ब्रह्म कुमारीज का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन 107.8 FM पर। सुनते रहो और मुस्कुराते रहो।

चा ओ झुक जा सांवरिया लूले जाए तुल छा ओ झुक जा सांवरिया लूले जाए तुल छा। आप सुन रहे हो कार्यक्रम आशियाना और आशियाना में जैसे कि ये गीत की चंद पंक्तियां मैंने गुनगुनाई है इससे आप समझ गए होंगे कि आज मैं नुस्खे कौन से देने वाली हूँ। वैसे तो परिचय में आप सभी सुन चुके हो फिर भी आइए आज आपको नुस्खे देते तुलसी के ऊपर कि तुलसी के गीत तो बड़े अच्छे अच्छे बने हुए हैं, भजन बहुत ही सुंदर सुंदर बने हुए हैं, लेकिन वास्तव में जैसा नाम है वैसा तुलसी का काम भी है। बहुत ही फायदा करती है तुलसी, और तुलसी का पौधा तो लगभग हम अपने घरों में लगाते ही हैं, है ना, कोई घर में रखते कोई घर के बाहर रखते, लेकिन हर एक के घर में लगभग तुलसी का पौधा तो होता ही है। तो बहुत सारी बीमारियों को ठीक करती है तुलसी। तुलसी देखिए इसको एक दिव्य पौधा माना जाता है क्योंकि ये श्री कृष्ण जी को भी प्यारी है, तो बहुत सारे भजन बन गए हैं, है ना, और बीमारियों को भी ठीक करती है, इसलिए इसको दिव्य पौधा के रूप में माना जाता है। इसकी पूजा भी होती है और बहुत सारी बीमारियों को ये नाश करती है। तो जैसे कि कैंसर वाले लोगों के लिए मैं आपको कहना चाहूँगी कि कैंसर में कैसे फ़ायदा करती है तुलसी। कैंसर जैसे गंभीर रोगों में 25 से 100 पत्तियाँ बड़ों के लिए, ठीक है ना, तुलसी के पत्ते कितने लेने हैं, 25 से 100 पत्तियाँ और 5 से 25 पत्तियाँ बच्चों के लिए ले सकते हैं आप। फिर भी शुरुआत में आप 21 से 35 पत्तियों से शुरू करिएगा, ठीक है, ये पर्याप्त है, फिर आपको संख्या बढ़ानी है। तो अधिकतर रोगों में सामान्यतः 7 से लेकर 11 पत्तियां लेनी है। कैंसर की बीमारी में मैंने आपको बताया है कि शुरुआत में 21 से 35 तक शुरुआत करनी है और बाकी 25 से 100 तक पत्तियां लेनी है, धीरे धीरे संख्या बढ़ानी है, लेकिन ज़्यादा ही तकलीफ है तो फिर आप बढ़ा सकते हैं। और दूसरी अन्य कोई बीमारी हो तो आप 7 से लेकर के 11 पत्तियाँ, ठीक है, और बच्चों के लिए 6 से लेकर के 5 पत्तियाँ ज़रूर इनको खिलाइएगा, ठीक है। जैसे कोड जैसे 7 साल पुराना चर्म रोग केवल 3 पत्तियाँ बारीक घोट करके आप दीजिएगा, तो कोड जैसी बीमारियों में भी फायदा पहुँचा सकते हैं तुलसी के पत्तियाँ। बस आपको ज़रूरी है थोड़ा सा लगातार इसका सेवन करना, ठीक है, और जलन या फिर कोई और छोटी मोटी तकलीफ है तो आप खाली पत्तियां भी दे सकते हैं, सुबह खाली पेट देना है, ठीक है। तुलसी की पत्ती खा करके आप सामान्य जो जल है उसको पी लीजिएगा, ठीक है, नहीं चबाएंगे तो भी चलेगा, ऐसे उतार करके पानी पी लीजिए, चबा करके भी लेना चाहते हो तो ले सकते हो, ठीक है। तो जैसे कि 7 से 21 ताजे हरी तुलसी की पत्तियाँ लेकर के आप स्वच्छ खरल या सिल बट्टे पर जिस पर मसाला नहीं पीसा जाता है, ठीक है, और मसाला पीस रहे हो तो उसको अच्छी तरह धुलाई करो, धुलाई करके स्वच्छ कपड़े से पोंछो, उसके बाद ही आपको तुलसी की पत्तियां घोटनी है, नहीं तो फिर आप लोगे तो छाती में जलन करेंगे, फिर कहेंगे कि अरे ये तुलसी जल रही है, लेकिन तुलसी की जलन नहीं है, आपके मसाले की जलन है। इसलिए अगर सिलबट्टे पर पीस रहे हैं आप और मसाले वाला है तो उसका अच्छी तरह धुलाई करिए, बाकी जिसमें आप मसाला नहीं पीसते हो वो सिलबट्टा भी आप ले सकते हो और चटनी की तरह इसको, मतलब चटनी बना देनी है इसकी 7 से 21 ताज़ा हरी पत्तियां लेकर के, फिर इसको 50 या फिर 125 ग्राम दही में मिला करके रोज खाली पेट 2-3 महीना तक लीजिए। बस इतना ध्यान रखना है कि दही खट्टा नहीं होना चाहिए, यदि दही खट्टा है माफिक नहीं आ रहा है तो आप 1-2 चम्मच शहद मिला सकते हैं इस चटनी में, ठीक है, तुलसी की चटनी में, और इसको लीजिए, तो इससे कफ और श्वसन संस्थान के रोगों तथा छोटे बच्चों को बारीक पीसी हुई तुलसी की पत्तियां शहद में मिलाकर दीजिए तो ये श्वसन और कफ में काफ़ी फायदा करेगा। बच्चों के आप खुराक की मात्रा घटा दीजिए, बड़ों के लिए मात्रा जो मैंने आपको बताया है वो लीजिएगा, इससे कफ है, श्वास की समस्या है, इन सब में राहत मिलेगी। जैसा कि मैंने आपको बताया 2-3 महीने तक लगातार लेना है, सुबह सुबह खाली पेट तुलसी के पत्तियों के पेस्ट करके इसको या तो दही में घोलिए, दही अगर खट्टा है तो शहद में भी आप मिला सकते हैं और इसको चाटिए, ठीक है, तो श्वास की समस्या ठीक होगी, कफ की समस्या ठीक होगी। और आप दूध में
तुलसी को मत डालिएगा, चाय में डालिएगा। चाय में जैसे आप अदरक डाल रहे हो, अन्य मसाला डाल रहे हो, उसके साथ आप तुलसी की पत्तियां डाल करके भी चाय बना सकते हो। और इसको पीने से भी कफ में, सर्दी में, सब में राहत मिलेगी और बहुत सारे दर्द जो शरीर में होते होंगे ना, उससे भी छुटकारा मिलेगा। अंदरूनी दर्द थोड़ा बहुत चलता ही रहता है, तो इस तरह अगर आप तुलसी लेते रहेंगे तो धीरे धीरे ये दर्द आपका छोटा मोटा ठीक हो जाएगा। तो ये सारे ही नुस्खे बहुत ही अच्छे हैं और आप चाहो तो आजमा सकते हो। आइए अब आज के प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आज का प्रश्न बहुत ही सुंदर और सरल है। प्रकृति के पांच तत्वों का नाम बताइए। प्रकृति के पांच तत्वों का नाम बताइए। जवाब देने के लिए रेडियो मधुबन के नंबर है 9414151415 पर आप फोन कॉल्स कर सकते हो और आज के प्रश्न का जवाब दे सकते हो। अब आइए सुनेंगे बहुत ही सुंदर एक गीत और उसके बाद हम पुनः आपसे रूबरू होंगे। तो बने रहिएगा आशियाना में, सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 एफएम। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।
1: हमारे श्रोता बंधु जुड़ना चाहते हैं, पहले उनसे बात करेंगे, उसके बाद हम आपसे रूबरू होंगे। हेलो,
2: हाँ नमस्कार दीदी, पालनपुर से फिरोज भाई बोल रहे
1: हैं। हाँ जी नमस्कार फिरोज भाई, कैसे हो आप?
2: आज बहन जी प्रश्न कौन सा है, मेरे पास रेडियो है नहीं अभी।
1: हाँ जी, आज का प्रश्न है प्रकृति के पांच तत्वों का नाम बताइए।
2: अच्छा, तो ये पृथ्वी
1: जी, जी
2: और जल, अग्नि और ये हवा वायु।
1: अच्छा ठीक है, तो आभार आपका फिरोज भाई।
2: आप अभी सभी रेडियो मधुबन परिवार को सलाम
1: जी, आपको भी। चलिए आप सुनते रहिए आशियाना, हम आपका जवाब जरूर देंगे। ठीक है
2: जी, जी जी जी।
1: तो आप सभी आशियाना के किचन में पधारिएगा। आज जैसा कि मैंने आपको परिचय में कहा था कि आइसक्रीम सिखाएंगे, परंतु कौन सी वाली? जी हाँ, ड्राई फ्रूट की आइसक्रीम। ठीक है, सादी सिंपल आइसक्रीम बच्चे भी पसंद करते हैं, बड़े भी पसंद करते हैं, बुजुर्ग भी पसंद करते हैं। तो ड्राई फ्रूट की आइसक्रीम के लिए आप पेन और डायरी ज़रूर ले लीजिएगा, और सामग्री में लिखवा रही हूँ वो लिखिएगा। आप लीजिएगा 1 लीटर दूध, ठीक है, फिर आपको लेना है 2 ब्रेड की स्लाइस, फिर आप लीजिए 250 ग्राम चीनी, छोटी इलायची ले लीजिएगा 4, 10 ग्राम आप खरबूजे के बीज लीजिएगा, 10 ग्राम ही आपको चिरौंजी लेनी है, और थोड़े काजू, बादाम, पिस्ता आवश्यकता के अनुसार ले लीजिए, थोड़े कटे हुए। ठीक है, तो फिर से मैं दोहरा रही हूँ सामग्री, आप एक नज़र डालिएगा अपनी डायरी में, कहीं छूट गया हो तो लिख लीजिएगा। 1 लीटर दूध, फिर आप लीजिएगा ब्रेड की स्लाइस 2, 250 ग्राम आपको लेनी है चीनी, और 4 ले लीजिएगा छोटी इलायची, खरबूजे के बीज ले सकते हैं आप 10 ग्राम और चिरौंजी भी 10 ग्राम, और काजू, बादाम और पिस्ता ये आप अपनी आवश्यकता के अनुसार लीजिएगा। ठीक है, बनाने का तरीका आपको सिखा रही हूँ। ध्यान दीजिएगा कि दूध को आप गर्म करिए, गर्म करके आप उसको तो गर्म करते रहिए, बीच बीच में हिलाते रहिए, चिपके नहीं, नीचे चिपकेगा लगेगा तो आप समझ सकते हो कि उससे स्मेल आएगी, इसलिए आप हिलाते रहिए और दूध गर्म करिए। फिर जो ब्रेड की स्लाइस ली है इसका आप चूरा कर दीजिए, और लगातार हिलाते हुए दूध को आप थोड़ा गाढ़ा होने दीजिए। ठीक है, और पकाते रहिए, और इसमें ही ये जो चूरा है ये भी डाल दीजिए दूध में। ठीक है, और हिलाते रहिए, दूध गाढ़ा हो जाए तो फिर आप चीनी मिलाइए, फिर 5-10 मिनट और इसको पकाना है, फिर आप गैस बंद कर दीजिए या फिर गैस से नीचे उतार दीजिए, फिर पिसी हुई इलायची का पाउडर डाल दीजिएगा और कटे हुए ड्राई फ्रूट डाल दीजिएगा, अच्छी तरह मिक्स करके आप किसी भी बर्तन में भर करके आप फ्रीजर में रख दीजिए, और जब ये जम जाए कम से कम 8-10 घंटे लगेंगे, 8-10 घंटे के बाद आप चेक कर सकते हो कि आइसक्रीम आपकी जम चुकी है, फिर जब चाहे आप खा सकते हो। तो इस तरह ड्राई फ्रूट की आइसक्रीम बनाई जाती है। फिर से विधि दोहरा रही हूँ, ध्यान दीजिएगा, अच्छी तरह सुनकर के बनाइएगा कि दूध को आप गर्म करिए, हिलाते रहिए और गर्म करते रहिए, फिर जो हमने ब्रेड की स्लाइस ली है उसका चूरा कर दीजिए, और इस चूरे को भी आप दूध में डालिए और अच्छी तरह हिलाइए, दूध थोड़ा गाढ़ा हो जाए तो शक्कर डाल दीजिएगा। ठीक है, और फिर से हिलाइए, उसके बाद आप गैस बंद कर दीजिए, और गैस बंद करने के बाद आप इसमें इलायची पाउडर डाल दीजिएगा, ड्राई फ्रूट्स कटे हुए डाल दीजिएगा, और अच्छी तरह हिलाकर जब यह ठंडा हो जाए तो आप आइसक्रीम के बर्तन में भर करके आप फ्रीजर में रख दीजिए, 8-10 घंटे आपको फ्रीजर में रखना है। उसके बाद आप देखिएगा आपकी आइसक्रीम तैयार हो चुकी है, ड्राई फ्रूट्स वाली आइसक्रीम तैयार है। तो बस आइसक्रीम आपने सीखी है, और भी मैं आपको अन्य प्रकार के आइसक्रीम सिखाने वाली हूँ, लेकिन कौन सी वो आप की सुनने के बाद ही जान पाएंगे। तो आइए आज के प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आज का प्रश्न है कि प्रकृति के 5 तत्वों का नाम बताइए। जवाब देने के लिए रेडियो मधुबन के नंबर है 9414151415 पर आप फोन कॉल्स कर सकते हो और आज के प्रश्न का जवाब दे सकते हो। आइए अब सुनेंगे गीत, उसके बाद हम पुनः आपसे मिलेंगे, आशियाना में आगे बढ़ेंगे। तो सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन।

0: आप सुन रहे हैं ब्रह्मा कुमारीज का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन।
1: प्लेटफॉर्म पर चलते समय ध्यान रखें कि यदि कोई गाड़ी रनिंग थ्रू पास होती है उस समय प्लेटफॉर्म के किनारे पर न चलें, जिससे आपकी जान को खतरा हो सकता है। तब एक छोर से दूसरे छोर पर जाने के लिए पैदल पुल का इस्तेमाल करें। रेलवे लाइन क्रॉस करना कानूनी अपराध है व इससे आप अपनी जान गंवा सकते हैं।
0: रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी, सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए।
2: आप सभी आशियाना के किचन में हो और आशियाना के किचन में बना रहे थे ड्राई फ्रूट वाली आइसक्रीम। आइए अब आपको कोकोनट वाली आइसक्रीम सिखा देते हैं। ठीक है, गर्मी का मौसम चल रहा है, आप जब भी चाहो बना सकते हो आइसक्रीम कुल्फी और घर पर ही बना करके इसका आनंद ले सकते हो। पेन और डायरी तो तैयार है ना, तो लिखिएगा। कोकोनट आइसक्रीम के लिए आप लीजिएगा वनीला आइसक्रीम 4 कप, फिर आप लीजिएगा कद्दूकस किया हुआ नारियल 1 कप, सादी क्रीम लेनी है 1/2 कप और कैस्टर शुगर लेना है 1/2 कप। बस इसमें सामग्री ज़्यादा नहीं है, फिर से दोहरा रही हूँ, 4 कप ले लीजिएगा वनीला आइसक्रीम, फिर आप लीजिएगा कद्दूकस किया हुआ नारियल 4 कप लेना है वनीला आइसक्रीम, 1 कप कद्दूकस किया हुआ नारियल लेना है, सादी क्रीम भी आप 1 कप ले लीजिएगा या फिर थोड़ी कम होगी तो भी चलेगा, और कैस्टर शुगर लेना है आपको 1/2 कप। अब देखिए इसमें आपको मैं वनीला आइसक्रीम रेडी मतलब दिलवा रही हूँ आपको, लेकिन आप चाहो तो जैसे ड्राई फ्रूट वाली आइसक्रीम आपको सिखाई है ना, तो बस आप उसमें ड्राई फ्रूट्स मत डालिएगा तो सादी आइसक्रीम हो जाएगी। तो इस तरह अगर आप पूरी ही तरह से बनाना चाहते हैं आइसक्रीम तो इस तरह भी आप बना सकते हैं। ठीक है, तो कोकोनट आइसक्रीम के लिए फिर इसमें आपको खाली नारियल ऐड करना है, और वो वाली आइसक्रीम जिसमें ड्राई फ्रूट लिया है, वैसे ड्राई फ्रूट हर एक में आप डाल सकते हो, मात्रा को थोड़ा सा घटा बढ़ा सकते हो। ठीक है, और नहीं भी डालोगे तो चलेगा, इस आइसक्रीम में लिया नहीं है वैसे ड्राई फ्रूट। तो आप अब क्या करेंगे, बनाने का तरीका आपको सिखा रही हूँ। नारियल को मिक्सी में पीस लीजिए, फिर क्रीम और कैस्टर शुगर को एक साथ मिला करके आप फेंट लीजिए। ठीक है, और नारियल के पेस्ट को इसमें मिला दीजिए। वनीला आइसक्रीम में इस पेस्ट को मिला देना है, फिर इस मिश्रण को आइसक्रीम कंटेनर में भर करके आप फ्रीजर में रख दीजिए। जब मिश्रण हल्का सा जमने लगे तो फ्रीजर से निकाल करके कांटे की मदद से फेंटिए, फिर से फेंटना है और वापस कंटेनर में भर करके ढक्कन लगा करके फ्रीजर में जमने के लिए रख दीजिए। तो बस 8-10 घंटे आपको फिर से रखना है फ्रीजर में, और उसके बाद आप निकालिए, जब चाहो तब आप खा सकते हो। ये बन गई हमारे नारियल वाली आइसक्रीम। थोड़ा सा स्वाद में चेंज आ गया है, लेकिन बहुत सारे फ्लेवर की बनती है आइसक्रीम, जिसमें थोड़े थोड़े से चीज़ें हम अलग तरीके से ऐड करते जाते हैं, उसका टेस्ट थोड़ा चेंज होता जाता है, और हर कोई चाहता है कि टेस्ट चेंज होता रहे, चाहे कुल्फी हो, चाहे आइसक्रीम हो, चाहे भोजन हो, टेस्ट सभी चाहते हैं कि हमेशा थोड़ा सा अलग अलग प्रकार का मिलता रहे, है ना। तो बहुत ही सरल तरीका है इस आइसक्रीम का भी, इसमें ज़्यादा मुश्किल नहीं है। फिर से दोहरा रही हूँ विधि को कि आप नारियल को मिक्सी में पीस लीजिए, क्रीम और कैस्टर शुगर को एक साथ मिला करके अच्छी तरह फेंटिएगा, और इसमें फिर फेंटने के बाद नारियल की पेस्ट को भी मिला दीजिएगा। अब आप वनीला आइसक्रीम में इस पेस्ट को मिक्स करिए और इस मिश्रण को आइसक्रीम कंटेनर में आप भर के रख दीजिए, किसी भी आप बर्तन में जो आइसक्रीम जमाने का है उसमें भर के रख दीजिए। जब मिश्रण हल्का सा जमने लगे तो फ्रीजर से निकालिए और निकाल करके इसको फिर से फेंटिए, फेंट करके फिर से इस कंटेनर में इस पात्र में भरना है और ढक्कन लगा करके अच्छी तरह आप फ्रीजर में रख दीजिए। 8-10 घंटा इसको जमने दीजिए, उसके बाद बस आप जब चाहे आइसक्रीम का आनंद ले सकते हो। तो चलिए हमारे श्रोता बंधु जुड़ना चाहेंगे तो उनसे बात करेंगे। हेलो
3: हेलो, नमस्कार, गुड मॉर्निंग हमारी प्यारी उषा बहन जी।
2: हाँ जी नमस्कार दयाराम जी, कैसे हो आप?
3: बहुत ही अच्छा हूँ, और सभी मित्रों की कृपा है, बाबा की कृपा है और आपकी दुआ है, और कार्यक्रम भी बहुत सुंदर चल रहा है, और अभी अभी जो ऑन किया तो कार्यक्रम चल रहा
2: जी,
3: तो सोचा फोन कर लूं और बात कर लूं, और जवाब क्या है वो प्रश्न भी।
2: अच्छा, प्रश्न नहीं सुना आपने?
3: जी मैं तो अभी ऑन किया था।
2: जी जी, तो आज का प्रश्न है प्रकृति के पांच तत्वों का नाम बताइएगा।
3: जी जी जी बहन, प्रकृति अपने में जो समेत के पांच तत्व रखे है
2: जी,
3: तो उसका नाम मैं बताता हूँ बहना, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, ये सब प्रकृति के नियम है। हम ये सब सृष्टि के बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
2: ठीक है दयाराम जी, तो आप कार्यक्रम सुनेगा, हम आपका जवाब जरूर सुनाएंगे। ठीक है
3: जी बहन
2: जी, आभार आपका जी, नमस्कार। तो देखिए दोनों ही प्रकार के आइसक्रीम तैयार है, चाहे हम आइसक्रीम बनाए, कुल्फी बनाए, चिवड़ा बनाए या भोजन बनाए, भोग तो लगाना बहुत ज़रूरी है ना। तो आप भोग लगाइएगा, परमात्मा की याद में भोग लगाइएगा, और कभी कभी क्या है प्रकृति को भी धन्यवाद दे दीजिएगा, क्योंकि प्रकृति से बना हुआ ये शरीर है और प्रकृति के द्वारा ही हम वस्तुओं को, चीज़ों को बनाते हैं। तो कभी क्या है, जो भी बना रहे हम, चाहे भोजन हो, चाहे आइसक्रीम हो, चाहे कुल्फी हो, चाहे कुछ भी बना रहे हो, साथ ही साथ आप प्रकृति को धन्यवाद भी देते जाइएगा कि प्रकृति हमारा कितना साथ निभाती है। ये प्रकृति नहीं होती तो हमारा क्या होता, इसलिए है प्रकृति आपको बहुत बहुत धन्यवाद जो आप इतना अच्छा साथ हमारा निभाती हो। तो इस तरह कभी प्रकृति के पांच तत्व में से एक तत्व को भी आप धन्यवाद दे सकते हो, कभी पांचों को ही धन्यवाद दीजिए, और प्रभु की याद में आप भोग लगा करके आइसक्रीम को स्वीकार कीजिए। ठीक है, आइए फिर से आज के प्रश्न दोहरा रही हूँ कि प्रकृति के पांच तत्वों का नाम बताइए। जवाब देने के लिए रेडियो मधुबन के नंबर है 94-14-15-14-15, और अब एक गीत सुनने के बाद पुनः लौट रही हूँ, तो बने रहिएगा आशियाना में, सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन। आग लगती है तो ये नहीं पूछते कैसे लगी, सिर्फ आग बुझाने में लग जाते हैं, बात छोटी हो या समस्या बड़ी हो, क्यों हुआ, कैसे हुआ, किसकी वजह से हुआ, प्रश्नों का चिंतन मन की शक्ति को घटाता है। मेरे प्यारे श्रोता बंधुओं, कारण नहीं ढूंढना, निवारण ढूंढना है। आप सुन रहे हो कार्यक्रम आशियाना, और आशियाना में अब हम खुशनुमा जीवन की बातें करेंगे। विषय आपके समक्ष रख चुकी हूँ, अब आप इसको स्पष्ट करने में मदद करेंगे। और आज का प्रश्न भी बहुत ही सुंदर है कि प्रकृति के पांच तत्वों का नाम क्या है। तो दोनों में ही प्रश्न का भी आप जवाब दे सकते हो और खुशनुमा जीवन में भी आप जुड़ सकते हो। नंबर है रेडियो मधुबन के 9414151415 पर आप फोन कॉल्स कर सकते हो, और आप खुशनुमा जीवन की बातें भी कर सकते हो कि कैसे आग लगती है तो पूछना नहीं है कैसे लगी, उस समय पूछते कैसे लगी, कैसे लगी, कैसे हम फटफट उसको पानी ला करके बुझाने की कोशिश करते हैं। तो बस ठीक इसी तरह बातें छोटी हो या बड़ी हो, समस्या छोटी हो या बड़ी हो, क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, ये नहीं करना है, समस्या का समाधान करना है। क्या कहेंगे आप, हम आपके द्वारा जानना चाहेंगे, तो आप जरूर जुड़िएगा रेडियो मधुबन से और अपने विचार को जरूर रखिएगा। तो बहुत ही सुंदर विषय है खुशनुमा जीवन का कि जैसे आग लगती है, ये आपको बता चुकी हूँ कि मैं आग लगती है तो हम इंतजार नहीं करते, ठीक इसी तरह किसी के भी जीवन में समस्या आती है तो उसका क्या क्यों में मत घेरिए। हेलो, हाँ जी, नमस्ते नमस्ते सुरेश भाई, कैसे हो आप?
4: बस बिल्कुल अच्छे हैं, और बहुत अच्छा विषय भी दिया है दीदी। आजकल जो आपने बात बताई ऐसा ही हो रहा है
2: जी,
4: आज कोई भी बात है तो बात का बदंतर कर देते हैं और बात को छोटी करने की कोशिश नहीं करते हैं। आज देखो कोई भी बात हो तो जैसे आपने बताया कि आग लगती है तो कहीं ना कहीं कितने ही बातें हो सकती है, ऐसे करो ऐसे करो ऐसे करो, लेकिन
2: जी,
4: कोई
2: जी,
4: करता
2: जी।
4: नहीं करता नहीं, बात ही करता है
2: बिल्कुल,
4: और सब सुचन देते हैं, सलाह देते हैं, लेकिन खुद इसको खुद अच्छी करने की कोशिश नहीं करते
2: जी।
4: तो आज कई सारी पिछली बातें ऐसी है कि हमारे भी जो देखो आज परिवार में कोई बात हो जाती है तो बहुत बात बड़ी हो जाती है, लंबी हो जाती है
2: जी,
4: लेकिन शॉर्टकट में बात पूरी नहीं होती है
2: जी।
4: कितने ही सवाल उठते हैं, शायद देखो आज मैं बताऊँ तो एक सैंपल बताऊँ तो ठीक है, हमारे घर में कोई भी झगड़ा हो गया शायद, ऐसा एक नमूना मैं देता हूँ
2: जी।
4: और झगड़े में बात झगड़े की और होती है और और बात कहाँ से कहाँ से चली जाती है,
2: पाया ही चेंज हो जाता है,
4: शायद आपका विषय चेंज हो जाता है
2: जी।
4: तो आज ऐसा है तो इसलिए आज ये बात बहुत बड़ी हो जाती है। शायद पहले पहले कुछ साल भर में कोई आदि कुछ हुआ तो ये बात भी आगे आ जाती है इस वक्त
2: जी।
4: तो बात का वतन कर करते हैं लेकिन बात छोटी करने की कोशिश नहीं करते कि चलो ये बात भी तो ये बात बस ये कर दो पूरा हो जाए, ऐसी बात नहीं आती
2: जी।
4: इसलिए तो आज देखो कई सारे झगड़े हो रहे हैं, कई सारे रिश्ते में दरार हो रही है, शादियाँ होती है किसी की, तो देखो कई परिवार ऐसे है कि आगे की बात लेके बैठ जाता है और हमको ऐसा हुआ था, आपने ऐसा किया था, ऐसा किया था, इसलिए आज रिश्ते टूट रहे हैं। इसका कारण ये है कि बात छोटी हो तो छोटी ही रहने, तो बड़ी नहीं करना, बस बड़ी करेंगे तो कहीं ना कहीं सब रिश्ता टूट जाएगा।
2: बिल्कुल, बहुत सुंदर।
4: तो यही कहूंगा कि दीदी बस कोई भी बात हो तो शॉर्ट में इसको पूरी कर दो तो सही है
2: जी जी जी,
4: वरना परिणाम तो अच्छा नहीं आता है
2: जी जी। आभार आपका, बहुत सुंदर आपने स्पष्ट किया है, बहुत ही अच्छी बात बताई है सुरेश भाई ने कि देखिए सभी फैलाने की कोशिश करते लेकिन समेटते कोई नहीं। आप क्या कहेंगे? हमारे और भी श्रोता बंधु जुड़ना चाहते रेडियो मधुबन से, उनसे बात करेंगे। हेलो,
5: हाँ नमस्कार दीदी, पालनपुर से फिरोज।
2: हाँ जी नमस्कार, नमस्कार फिरोज भाई।
5: विषय बहुत बढ़िया है
2: जी, थैंक यू।
5: हाँ, पहले तो एक फेर बोल देता हूँ कि दबा ले जितना जी चाहे मंजिल तक पहुँचा दूंगी, दबा ले जितना जी चाहे मंजिल तक पहुँचा दूंगी, और जरा सा मिल का झोंका आया तो कयामत तक सुला दूंगी।
2: वाह वाह वाह वाह, क्या बात है, बहुत सुंदर।
5: अमीरों की जिंदगी बिस्किट और केक में, और हमारे जैसे ड्राइवरों की जिंदगी स्टेयरिंग और ब्रेक में।
2: वाह वाह वाह वाह, क्या बात है।
5: दूसरा क्या है, दूसरा क्या, समझो कि दो गाड़ी के बीच में एक्सीडेंट हुआ
2: जी।
5: तो सबसे पहले एक्सीडेंट के अंदर कितने अंदर बैठे हैं, किसको क्या इजा हुई है, क्या हुआ है, उससे सबसे पहले तो इनको हॉस्पिटल पहुंचाना है
2: जी।
5: और फिर बाद में ये जो गाड़ी बीच में रोड के बीच में है तो उसको साइड में करवाना है
2: जी।
5: और
2: बिल्कुल
5: इसके गौर, ये कई लोग तो क्या वो देखेंगे, वो भले मरता तो मरने दो या तो कुछ भी होने दो
2: जी, जी,
5: वो पहले
2: जी।
5: तो सेल्फी लेंगे और टेलीफोन लगाएंगे और फिर इसका वो पूरी जगह पे उसको अनाउंस कर देंगे, ऐसा नहीं करना है।
2: बिल्कुल सही कहा आपने,
5: हाँ ये बात है
2: जी, बहुत अच्छी बात बताई फिरोज भाई, बहुत बहुत आभार आपका। स्वीट एंड शॉर्ट शब्दों में काफी कुछ आपने समझा दिया कि कैसे लोग जब एक्सीडेंट होते तो सेल्फी लेना शुरू कर देते, वीडियो बनाना शुरू कर देते हैं, लेकिन जो पेशेंट पड़ा हुआ है उसकी मदद नहीं करते। और भी हमारे श्रोता बंधु जुड़ना चाहते रेडियो मधुबन से। हेलो,
6: हेलो नमस्कार दीदी, मैं सुरेश भाई धानेरा से बोल रहा हूँ दीदी।
2: हाँ जी सुरेश भाई नमस्कार, स्वागत आपका रेडियो मधुबन में, कैसे हो आप?
6: बस अच्छे है, काम कर रहे, तो अभी भी 58 पर मैंने रेडियो शुरू किया तो अच्छी अच्छी बातें हो रही थी, चलो मैं भी कॉल

0: करके बात करता हूँ।
1: जी जी, स्वागत आपका। तो आज के प्रश्न भी मैं दोहरा रही हूँ कि प्रकृति के पांच तत्वों का नाम बताइएगा।
0: हाँ, वो तो जल, वायु, अग्नि, आकाश और पृथ्वी।
1: अच्छा, ठीक है
0: जी। और दीदी, हमारे मित्र भी जैसा उनका चरित्र है वैसी बात कर रहे हैं, तो हम भी बस ऐसे ही बात करेंगे। कहीं भी कोई ऐसा प्रॉब्लम रहता है ना, तो हमें बुलाते हैं और हम समाधान करते हैं। तो जैसे जो आपने बात की ना, इस पर ही मैं बात कर रहा हूँ। तो घर में दो पति पत्नी को झगड़ा हुआ, और पत्नी किस तरह वजह से झगड़ा कर रही थी कि पति का जो किसी गैर औरत के साथ ये ऐसा चरित्र खराब है, तो ऐसा करके झगड़ा कर रहे थे। और लोग जो कुछ अच्छे लोग वो समझाते कि चलो भाई ऐसा नहीं है, ये तो अच्छा आदमी है। और ऐसे भी लोग है जो चढ़ावा देते है, हमारे गुजराती में बोलते है, तो के अरे तुम तो ये है। फिर आदमी को, उस इंसान को भी पत्नी के बारे में, तुम्हारी वाइफ इतनी ये है, खराब है
1: जी, जी,
0: तो
1: जी।
0: आग फैलाते हैं मतलब, और कुछ ऐसे भी है तो आग बुझाते हैं।
1: जी,
0: तो
1: जी,
0: फिर
1: जी।
0: जैसे भी जैसे ही हम लोगों को बुलाया, तो पहले तो दोनों की बात सुनी। चलो के पति तो निर्दोष साबित होने के लिए कुछ भी करने को तैयार था, और पत्नी भी पीछे हटने को तैयार नहीं थी
1: जी।
0: तो अब करे क्या, तो बहुत समझाया लेकिन नहीं समझ रहे। तो फिर आखिर में एक बात कही कि चलो अब जो भी हुआ, चलो तुम्हारे पति ने ये किया, चलो कर दिया, हम भी मानते हैं और आप सही है, लेकिन अब से नहीं करेगा, उसकी गारंटी हम लेते हैं। और आप भी अगर पति का चरित्र जो भी खराब हो ना, तो भी आप कुछ नहीं कहेंगे, ये वादा करो, कसम खाओ, मतलब ऐसा कुछ समझाया। अब तक लगभग 3 साल हुए हैं, ना उनके घर में झगड़ा या ना कोई ऐसी बात हो रही है। तो ये बात है, तो आग बुझाने की
1: बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात। ऐसे सॉल्यूशन मिले तो ही सही मायने में कुछ लगता है कि हमने किसी के लिए कुछ किया है और किसी के जीवन में खुशियां आई है।
0: जी जी, सही बात है दीदी
1: जी। बहुत सुंदर आपने बातें बताई है सुरेश भाई, और बहुत अच्छी आपने मदद की है। बहुत बहुत आभार आपका।
0: थैंक यू जी।
1: जी, तो ये थे सुरेश भाई धानेराव से, और आपने बहुत ही अच्छी बात बताई कि किस तरह पड़ोसी में झगड़ा हुआ और इन्होंने जा करके झगड़े को सुलझाया, और आज 3 साल होने को आए लेकिन उनके घर में कभी झगड़ा नहीं हुआ, कारण सारा आपने बताया है। तो इस तरह मदद करना अच्छी बात है, लेकिन वो कहते हैं ना, आग में घी का काम करना बहुत बुरा है, इसलिए आग को फैलाना नहीं है, आग को बुझाना है। ऐसे ही समस्याओं को भी बढ़ाना नहीं है, समस्या आ गई है तो उसको सुलझाना है। ठीक है, और भी आपसे बातचीत करेंगे, आप तैयार रहिएगा। एक गीत सुनने के बाद पुनः इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे। तो आइए गीत सुन लेते हैं। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन।

नमस्कार, मैं हूं सुरेश कुमार जांगड़ा, हरियाणा पुलिस सेवा सुरक्षा सहयोग। हरियाणा पुलिस व होमगार्ड आपकी सेवा में हर समय तत्पर है। आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

शक्ति को घटाता है और कारण नहीं ढूंढना, निवारण को ढूंढना है। क्या, क्यों, कैसे, इन सभी में जाएंगे तो परिस्थितियां बढ़ेगी और बड़ी होगी, घटेगी नहीं, ठीक है ना। जैसे आग लगती है तो हम ये नहीं कहते हैं कि क्या हुआ, कैसे हुआ, हम उसका निवारण ढूंढते हैं और फायर ब्रिगेड को बुलाते हैं, पानी वाले को बुलाते हैं और पानी डलवाते हैं। हम स्वयं भी कोशिश करते हैं कि मिट्टी डाले, पानी डाले, कैसे भी करके आग को बुझाने की कोशिश करते हैं। ऐसे ही जीवन में बहुत सारी बातें आती है। एक बात आपको बताना चाहूँगी, जैसे कि हमारे सुरेश भाई ने भी बताया था कि छोटी छोटी बातों से भी कभी कभी इतनी बड़ी बातें फैल जाती है कि जो मेन बात होती है वो तो कहीं की कहीं रह जाती है और पूरा ही विषय चेंज हो जाता है। ऐसा ही होता है घर परिवार में आजकल, ऐसा ही हो रहा है मेरे प्यारे श्रोता बंधु, और घर टूटते जा रहे हैं। जैसे कि मैं आपको बताना चाहूंगी, एक परिवार में बहुत दूध गर्म कर रही थी, दूध उबल गया, आधा दूध बाहर निकल गया। उसको पता चला अरे ये दूध उबल रहा है, तो तुरंत ही उसने गैस बंद किया, लेकिन तब तक आधा दूध बाहर बह चुका था। इधर सास बोली कि इसका वैसे काम में ध्यान कहाँ है, ये कहाँ सही काम करती है, जब भी करती है ऐसा ही करती है, घर में नुकसान ही करती है। फिर दूसरे व्यक्ति ने कहा कि अरे जरूर ये टीवी देख रही होगी, टीवी में इसका ध्यान होगा इसलिए दूध उबल गया। तीसरे व्यक्ति बोला कि अरे ये तो वैसे ही विचारों में खोई रहती है, कहाँ ये घर में रहती है, रहती यहाँ पर है हमारे सामने, लेकिन विचार कहीं के कहीं चले जाते, इसके विचारों में खई होगी ना, इसलिए दूध उबल गया। और किसी ने कहा कि वैसे ही ये मन से काम कहाँ करती है, ये तो ऊपरी मन से करती है। मतलब कितनी सारी बातें सुनने को मिली, जबकि कारण कुछ था ही नहीं, एक ही कारण था कि भाई दूध उबल गया। अब उबल गया सो उबल गया ना, समेटने वाला होता तो कह सकता था कि भाई कोई बात नहीं, अगली बार ध्यान रखना, हो जाता है तो वो जरूर ध्यान रखती। लेकिन जब इतनी सारी बातें सुना दी तो आप ही सोचिएगा कि कौन सुनेगा इतनी सारी बातें, वो भी तो शुरू हो गई, फिर तूतू मैमे शुरू हो गई। अब बात जो थी दूध उबलने की वो तो रह गई एक तरफ, और दूसरी बातें, अरे इसने पहले ऐसा किया था, अरे वो 4 दिन पहले इसने मेरे को ऐसा सुनाया था, अरे 8 दिन पहले तो इसने ऐसा ही किया। अब आप सोचिए बात कितनी सी थी, दूध उबल गया। लेकिन इतनी तूतू मैमे हुई, इतनी तूतू मैमे हुई कि लोग इकट्ठे हो गए मोहल्ले में, और मेन बात तो दब गई और दूसरी बातें सामने आई। वो उनकी उछाले, क्या फायदा मिला। घर परिवार ऐसे नहीं चलता है मेरे प्यारे श्रोता बंधुओं, बहुत सारी बातों को समानी होती है, बहुत सारी बातों को सहन करना होता है, बहुत सारी बातों को लेट को करना पड़ता है, तभी घर परिवार टिकता है। अगर हम फट फट कुछ भी बोल लेते हैं तो वो घर नहीं टिकेगा, क्योंकि सहन शक्ति सभी में खत्म होती जा रही है। अब बहू को आप 4 सुनाओगे तो एक तो वो जरूर सुनाएगी, 4 सुनाया उसका हमें दुख नहीं, लेकिन एक उसने जवाब दे दिया वो हमें दुख बैठ गया, फिर हमने 4 सुनाई, 8 सुनाई, फिर इधर उधर बात की, फिर उसने भी हमारी जो रही सही इज्जत थी वो भी उतार दी, फलाने दिन ऐसे किया, ढिकड़े दिन ऐसे किया। अब क्या फायदा मिला, भाई दूध उबल गया कोई बात नहीं, दूसरी बार ध्यान रखना, हो जाता है, हमसे भी कभी उबला है, तुमसे भी गलती हो गई। अगर ये कह करके हम उस बात को शांत कर दे तो वो बात बढ़ेगी नहीं और खत्म हो जाएगी। अब एक तो दूध उबला उसका नुकसान हुआ, ऊपर से झगड़ा हुआ तो सभी का खून जला, क्या फायदा हुआ, और लोगों के सामने तमाशा हुआ, लोग इकट्ठे हुए और हंस हंस के गए, अरे देखो देखो छोटी छोटी बातों में इनके झगड़ा होता है, फिर कभी बड़ी बात पर भी झगड़ा होता है ना तो लोग हंसेंगे कि अरे इनके घर में चलता रहता है, छोटी छोटी बातों पर झगड़ते हैं ये लोग, तो हमारी इमेज तो वहीं पर खत्म हो गई। वो कहते हैं ना प्यारे श्रोता बंधु कि इज्जत बनाने में पूरी जिंदगी चली जाती है, लेकिन इज्जत का कचरा होने में 1 सेकंड लगता है। इसलिए घर परिवार में बहुत ही सोच समझ करके रहिए, बहुत ही, आप अगर दूसरों को कुछ सुना रहे हो तो बहुत ही सोच समझ करके बोलिएगा कि मुझे ऐसी बातें नहीं बोलनी है कि उसका पलट कर मुझे जवाब मिले। कुछ हमारे सामने हो रही होती है बातें, उनको समाना सीखिए। परिस्थितियां हर एक के जीवन में आती है, लेकिन परिस्थितियों को समेटने की ताकत हमारे में होनी चाहिए, तभी वो परिस्थितियाँ बड़ी नहीं, वो छोटी दिखाई देगी और धीरे धीरे उस परिस्थितियों पर हम विजय प्राप्त कर लेंगे। इसलिए विस्तार में नहीं जाना है, सार में रहना है, यही खुशनुमा जीवन का राज है। आइए गीत सुनेंगे, उसके बाद पुनः लौट रहे हैं, तो बने रहिएगा आशियाना में, सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन।

0: बहू मुझे लड़का ही चाहिए।
1: माँ माँ माँ माँ माँ मा, अभी तो भगवान ने मेरे हाथों पे किस्मत की लकीरें भी नहीं बनाई और उनसे पहले ही आप सबने मेरी तकदीर का फैसला सुना दिया। माँ मुझे जी लेने दो, अपनी कसम मैं आपको कभी तंग नहीं करूंगी। माँ मेरी स्कूल फीस की चिंता मत करना, मैं भैया की किताबों से अपने आप ही पढ़ लिख जाऊंगी। और हाँ पापा से कहना मेरे दहेज की चिंता ना करे, मैं आपके साथ रहकर आपके बुढ़ापे का सहारा बनूंगी। अगर फिर भी आपको लगता है कि मैं आप पर बोझ बनूंगी तो आप इस ऑपरेशन पर भी खर्चा मत करना, मैं ही भगवान जी से कह दूंगी कि मेरी माँ मेरा मरा मुंह देखे।
2: माँ अब तो बस करो।
0: बहू क्या सोच रही हो, घर चले, नन्ही परी के स्वागत की तैयारियां भी तो करनी है ना। चलो
3: शोक को कवर ना बनाए, खुशी खुशी बिटिया को दुनिया में लाए।
4: प्यारे श्रोता बंधुओं, समय हो चला है आप सभी से अनुमति लेने का। आज के कार्यक्रम आपने सुना है, बहुत ही सुंदर विचार आपके समक्ष रखा है, उस पर जरूर ध्यान दीजिएगा। नुस्खे भी बहुत ही अच्छे थे, तो रेसिपी भी आपको आइसक्रीम बनाना सिखाई है, दोनों ही प्रकार की, ड्राई फ्रूट्स वाली और नारियल वाली, तो ज़रूर बना करके खाइएगा। और खुशनुमा जीवन की बातें भी बहुत ही अच्छी हुई है। आज का प्रश्न भी बहुत ही सुंदर था, जिसको मैं पुनः दोहरा रही हूँ। प्रकृति के 5 तत्व, उनके नाम बताना है और आप सभी ने सही जवाब दिया है। पहले तो मैं आप सभी के लिए ढेर सारी तालियां बजवाना चाहूंगी, क्योंकि आप सभी का पहली बार ऐसा हुआ है कि सही जवाब मिला है। तो अब मैं आपको नाम सुना रही हूँ, प्रकृति के 5 तत्व, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। बिल्कुल सही है, आप सभी ने सही जवाब दिया है। आज का मीठा मोती आपको सुनाना चाहूंगी, जो बहुत ही सुंदर है, कि जैसे हमारी रचना अगरबत्ती, जैसे हमारी रचना अगरबत्ती इतना सुगंध फैलाती है, तो हम रचिता जहां हो वहां का वातावरण कितना सुगंधित कर सकते हैं। अब मैं आपको हनुमान जी पर प्यारा सा भजन सुनाऊंगी, आप लेंगे भजन का आनंद और मुझे देंगे इजाजत। कल फिर मिलेंगे एक नए प्रश्न के साथ, तब तक के लिए राम राम सा, जय श्री कृष्ण सा, घनी खम्मा सा, रेडियो मधुबन सुनते रहो, मुस्कुराते रहो। रोम रोम में हनुमत के बसे हुए श्री राम, लांग गए सागर को पल में लेके राम का नाम। झूठा बंधन झूठी माया झूठा ये संसार है, सच्चा है एक राम नाम का

रेड लाइट होने पर हमेशा अपनी गाड़ी रोक लेना चाहिए और उसे ग्रीन होने पर ही आगे बढ़ाना चाहिए। ऐसा ना करके हम अपनी और दूसरों की जान खतरे में डाल सकते हैं। रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी।

सिंहासन हिल उठे, राजवंशों ने भ्रिकुटी तानी थी, बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी, गुमी हुई आजादी की कीमत सबने पहचानी थी, दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी, चमक उठी सन 57 में वो तलवार पुरानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी।

कवयित्री सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा रचित ये कविता भारतीय वीरांगना झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की वीरता की गाथा है, जो हम सब ने अपने स्कूली दिनों में पढ़ी भी होंगी। बाल्यावस्था से ही उनके साहस के किस्से चारों ओर फैल चुके थे और 29 वर्ष की अल्प आयु में वो अंग्रेजों से लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुई। इतिहास के पन्ने ऐसे अनगिनत देशभक्तों और क्रांतिकारियों के खून से सने हैं, जिन्होंने खुशी खुशी मातृभूमि के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। फिर वो पुरुष हों या महिला, उनमें से ही एक थी प्रीति लता वाड्डेदार, जो महज 21 साल की उम्र में अंग्रेजों के खिलाफ लड़ते हुए शहीद हो गईं। जब अंतिम सांस ली तो उनके मुख से एक ही शब्द निकला, वंदे मातरम। आज एक गीत एक नारा राष्ट्रगीत हमारा के इस एपिसोड में हम जानेंगे

0: सुनिए वीर क्रांतिकारी प्रीति लता के देशभक्ति की कहानी।
1: निर्मल दा, हम सब ने सिस्टर निवेदिता, भिकाजी कामा, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की वीरता एवं साहस की कहानी सुनी है। आखिर प्रीति लता ने देश के लिए कैसा बलिदान दिया?
2: अच्छा सवाल। प्रीति लता को बंगाल की अग्निकन्या भी कहते थे। वह किसी से डरती नहीं थी।
1: इतना साहस कैसे आया उनमें?
2: तनिक ठहरो, सब्र करो। इसके लिए हमें चलना होगा इतिहास के उस चटगांव में जो आज बांग्लादेश का दूसरा सबसे बड़ा शहर है। बांग्लादेश और बंगाल की खाड़ी का सबसे व्यस्त बंदरगाह है और जिसे अब चटगांव नहीं चटग्राम के नाम से जाना जाता है।
0: चटगांव को हम मास्टर सूर्यदा यानी बंगाल के वीर क्रांतिकारी सूर्य सेन की वजह से जानते हैं। उसी चटगांव में रहती थी प्रीति लता, जिनके अंदर देश को ब्रिटिश हुकूमत से आजाद कराने की धुन लगी थी। एक सुबह उनके घर घबराई सी युवती प्रतिभा पहुंचती है और उन्हें कुछ दिखाती है।
3: दीदी दीदी, देखो आज के अखबार में क्या छपा है। मास्टर दा की ढोलघाट वाली मुठभेड़ के बारे में क्या लिखा है। उन्हें पुलिस तलाश रही है। मुझे तो डर लग रहा है, आप क्या कहती हैं?
4: किस बात का डर प्रतिभा? डरना तो अंग्रेजों को चाहिए जिन्होंने हमारे देश को गुलाम बना रखा है।
3: दीदी आपको डर नहीं लगता? आप स्कूल की हेडमिस्ट्रेस हैं। आपका सभी बहुत सम्मान करते हैं। माँ बाबा आपके लिए लड़का ढूंढ रहे हैं और आप क्रांतिकारियों के साथ आजादी के सपने देख रही हैं।
4: प्रतिभा, जब पूरा देश एक बड़ी जेल बन चुका हो तो चार दीवारों की गृहस्थी में सुख कैसे मिल सकता है? माँ बाबा को समझा देना, उनकी बेटी सिर्फ शादी के लिए पैदा नहीं हुई है, मेरा विवाह तो इस देश की आजादी से हो चुका है।
0: ये वो समय था जब ब्रिटिश पुलिस इंडियन रिपब्लिकन आर्मी के सदस्यों को जिंदा या मुर्दा पकड़ने के लिए जमीन आसमान एक कर रही थी। और तभी जून 1932 में ढालघाट गांव में क्रांतिकारियों के एक गुप्त ठिकाने पर पहली बार प्रीति लता और सूर्यदा की भेंट होती है। उनके साथ निर्मल सेन और अपूर्व सेन भी थे।
4: मास्टर दा, प्रणाम, मैं आ गई हमेशा के लिए।
5: आओ प्रीति, तुम्हारी प्रतीक्षा थी। कल्पना दत्त ने मुझे तुम्हारे आने की सूचना दी थी, पर क्या तुम जानती हो कि इस गुप्त ठिकाने पर कदम रखने का वास्तविक अर्थ क्या है?
4: जानती हूँ मास्टर दा, यहाँ कदम रखने का अर्थ है मौत से सीधा सौदा।
5: तुम एक पढ़ी लिखी लड़की हो, कोलकाता विश्वविद्यालय से फिलोसफी में ग्रेजुएट हो, तुम्हारा भविष्य उज्जवल है, फिर इस कांटों भरे रास्ते पर क्यों आना चाहती हो? यहां भूखे पेट रहना पड़ता है, जमीन पर सोना पड़ता है और किसी भी क्षण अंग्रेजों की गोली का शिकार होना पड़ सकता है।
4: खोमा कोर्बिन मास्टर दा, अगर देश के पढ़े लिखे युवा केवल अपने भविष्य की चिंता करेंगे तो इस भारत माता को गुलामी की बेड़ियों से कौन आजाद कराएगा? यदि पुरुष इस लड़ाई में गोलियां खा सकते हैं तो महिलाएं पीछे क्यों रहें? मुझे अपनी सेना में शामिल कर लीजिए।
5: तुम्हारी आंखों की यह चमक बता रही है कि तुम पीछे हटने वालों में से नहीं हो। आज से तुम हमारी सैन्य शाखा की सक्रिय सदस्य हो।
0: सूर्यदा के ठिकाने पर पहाड़ तली यूरोपियन क्लब पर हमले की योजना बन रही थी। वहां कल्पना, प्रीति लता सभी पहुंचते हैं।
3: प्रीति,
6: मास्टर दा चाहते हैं कि इस बार हमले की कमान तुम संभालो, लेकिन चुनौती बहुत बड़ी है।
4: हाँ कल्पना, मैंने देखा है, इस क्लब के बाहर एक बोर्ड टंगा है जिस पर लिखा है कुत्तों और भारतीयों का आना मना है। यह सिर्फ एक बोर्ड नहीं है, यह हमारे पूरे राष्ट्र के आत्मसम्मान पर रोज किए जाने वाला प्रहार है।
6: क्लब के चारों ओर कटीले तारों का घेरा है और हर वक्त ब्रिटिश सर्जेंट हथियारबंद सिपाहियों के साथ गश्त करते हैं। हमें रात के अंधेरे में पुरुष वेश धारण करके जाना होगा। क्या तुम तैयार हो?
4: बिल्कुल तैयार हो। हम धोती और शर्ट पहनकर पंजाबी नाविकों का भेष बदलेंगे। मास्टर दा, मुझे इस अभियान के लिए आपकी अनुमति और आशीर्वाद चाहिए।
5: तुम्हें पूरी अनुमति है प्रीति, लेकिन एक बात हमेशा ध्यान रखना, यदि अभियान के दौरान पकड़े जाने की स्थिति बने तो जीवित दुश्मनों के हाथ मत आना। अंग्रेज महिलाओं और पुरुषों पर ऐसी यातनाएं ढाते हैं जो मौत से भी बदतर होती हैं।
4: इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी मास्टर दा, ये पोटेशियम साइनाइड हमेशा मेरे पास रहेगा। अंग्रेजों की गोली या उनकी जेल की काल कोठरी से बेहतर है कि मैं भारत माता की गोद में सो जाऊं।
0: फिर वो तारीख आई, 24 सितंबर 1932, जिस रात को क्लब पर क्रांतिकारियों को धावा बोलना था। प्रीति लता ने कमर कस रखी थी, वो अपने साथियों के साथ आखिरी तैयारी में जुटी थी। उन्हें दिशा निर्देश दे रही थी ताकि कोई चूक न रह जाए।
4: सब अपनी अपनी पोजीशन ले लो, जैसे ही मैं सीटी बजाऊं क्लब के भीतर बम फेंक देना और खिड़कियों से गोलाबारी शुरू कर देना।

0: बताते हैं कि क्लब के एक मुस्लिम बावर्ची क्रांतिकारियों की सहायता कर रहे थे, क्योंकि वो अंग्रेजों के बर्ताव से बहुत नाराज थे। उन्होंने ही क्रांतिकारियों को क्लब के रास्तों, बनावट आदि की पूरी जानकारी दी थी। सब बताया था कि क्लब में कितने दरवाजे और खिड़कियां हैं, कहां कहां पुलिस तैनात रहते हैं आदि। ये भी तय था कि वो रसोई की खिड़की से टॉर्च लाइट से इशारा देंगे। उनके इशारे के बाद ही तीखी सीटी की आवाज आती है और रात करीब 10 बजे एक बहुत तेज धमाका होता है। कांच टूटने और अंग्रेजों की चीख पुकार मच जाती है। उन्हें बाहर निकलने का मौका ही नहीं मिलता, क्योंकि बाहर जाने के सभी रास्तों पर क्रांतिकारी थे।
1: Help! Help! Terrorists! Terrorists! Run for your lives!
2: इनकलाब जिंदाबाद! आजाद हिंदुस्तान जिंदाबाद! साथियों, कोई भी गोरा अफसर बच कर ना जाने पाए, हमला तेज करो।
0: राइफलों और पिस्तौलों की अंधाधुंध तड़तड़ाहट हो रही थी। दोनों तरफ से भारी गोलाबारी के बीच लोग इधर उधर भाग रहे थे। चीख पुकार मची थी। अंग्रेजों ने भी जवाबी हमला शुरू कर दिया था।
3: Fire! Fire back! Shoot them down! Don't let these rebels escape!
0: तभी अचानक एक भारी गोली चलने की आवाज आती है और उसके तुरंत बाद प्रीति लता के मुंह से एक तेज करहा निकलती है।
4: मुझे शायद गोली लग गई।
5: प्रीति दीदी, आप बहुत बुरी तरह से जख्मी हैं, बहुत खून बह रहा है। चलिए चलिए, हम आपको यहाँ से सुरक्षित निकाल लेते हैं।
4: नहीं नहीं, रुकना मत, मेरा आदेश है, तुम सब यहाँ से पीछे हटो। हमारा काम पूरा हो चुका है, हमने अंग्रेजों के घमंड को चूर चूर कर दिया है। अगर तुम मुझे बचाने में समय गवाओगे तो सब पकड़े जाओगे।
0: कुछ देर के पश्चात गोलीबारी थम जाती है। केवल क्लब के अंदर लगी आग की लपटों की चटकने की आवाज आ रही थी और प्रीति लता की भारी सांसें सुनाई दे रही थी, लेकिन उस पीड़ा के बीच भी उनकी हिम्मत नहीं टूटी थी। वो नारे लगा रही थी।
4: भारत माता, आज तुम्हारी ये 21 साल की बेटी तुम्हारे चरणों में अपने जीवन का अंतिम अर्घ दे रही है। मैंने जो मशाल जलाई है, उम्मीद है वह बुझेगी नहीं। घोरे सर्जेंट, मुझे

0: मातरम।
1: प्रीति लता ने कागज की पुड़िया खोली और गोली निगल ली। उसने एक गहरी सांस ली और जमीन पर गिर गई। कुछ सेकंड के भारी सन्नाटे के बाद वहां ब्रिटिश साजन पहुंचे और टॉर्च जलाकर देखा।
2: ओह माय गॉड, चेक दिस आउट, ये तो एक युवा लड़की है। इसने पुरुषों के कपड़े पहन रखे हैं। बट शी इज डेड, इसने जहर खा लिया है। लेकिन चेहरे पर खौफ की जगह ये कैसा सुकून और मुस्कान है।
1: असल में ये क्रांतिकारी अप्रैल 1919 के जलियांवाला बाग नरसंहार का बदला लेना चाहते थे और उसमें वो कुछ हद तक सफल भी हुए। लेकिन क्लब पर हमले के बाद ब्रिटिश खेमे में हड़कंप मच गया। घटनास्थल पर चारों ओर अंग्रेज सिपाही पहुंच गए।
3: सर्च एवरी कॉर्नर, इस मरी हुई लड़की की जेब की तलाशी लो। मुझे इसके सारे मददगारों के नाम चाहिए। ये अकेली नहीं थी, इसके पीछे मास्टर द सूर्य सेन का हाथ है।
4: यस सर, देखिए इसकी जेब से कुछ दस्तावेज और एक हाथ से लिखा हुआ पत्र मिला है।
3: क्या लिखा है इसमें?
4: सर जी, इसमें लिखा है,
5: भारत की महिलाएं अब किसी भी मामले में अपने भाइयों से पीछे नहीं रहेंगी। यदि हम देश के लिए जान दे सकती हैं, तो हथियारों से दुश्मनों का भी खात्मा कर सकती हैं।
3: Damn it! ये औरतें तो पुरुषों से भी ज्यादा खतरनाक हैं। तुरंत रेड मारो, कल्पना दत्त और सूर्य सेन को जिंदा या मुर्दा पकड़ो।
1: क्लब पर हमले के बाद कल्पना दत्त को गिरफ्तार कर लिया गया। मास्टर सूर्यदा भागने में सफल रहे। मामले की सुनवाई शुरू हो गई। कोर्ट में भारी गहमा गहमी थी।
6: ऑर्डर, ऑर्डर! चटगांव आर्मरी रेड और पहाड़ तली क्लब हमले का स्पेशल ट्रिब्यूनल केस, किंग एम्परर वर्सेस कल्पना दत्त और अन्य।
7: माय लॉर्ड, 25 सितंबर 1932 की रात जो हुआ वह ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ खुली बगावत थी। प्रीति लता वादेदार नाम की बागी लड़की ने खुदकुशी करके कानून से बचने का रास्ता चुना, लेकिन हमारे पास पुख्ता सबूत हैं कि इस पूरी साजिश के पीछे यहाँ खड़ी मुलजिम कल्पना दत्त और फरार मास्टरदा सूर्य सेन का हाथ है। इन बागियों को सरेआम फांसी की सजा मिलनी चाहिए।
8: मुलजिम कल्पना दत्त, क्या आपको अपने बचाव में कुछ कहना है?
9: मिलोर्ड, हमें किसी बचाव की जरूरत नहीं है। प्रीति लता वदेदार मरी नहीं है, उसने देश के आत्मसम्मान के लिए शहादत दी है। आप हमें बागी कहते हैं, लेकिन हम अपनी मातृभूमि को आजाद कराने वाले सैनिक हैं। आप हमें जेल भेज सकते हैं, फांसी पर लटका सकते हैं, लेकिन हमारे दिलों में जल रही आजादी की इस आग को कभी नहीं बुझा सकते।
1: अदालत में भारतीयों द्वारा इनकलाब जिंदाबाद, वंदे मातरम के धीमे लेकिन दृढ़ नारे गूंजने लगे। जज उन्हें शांत रहने को कह रहे थे।
8: साइलेंस, साइलेंस इन द कोर्ट। ये अदालत ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ युद्ध छेड़ने के जुर्म में कल्पना दत्त को आजीवन काला पानी की सजा सुनाती है।
9: मुझे ब्रिटिश हुकूमत से इसकी ही उम्मीद थी। उन्होंने सोचा था कि प्रीति लता के बलिदान और उनके साथियों को जेल भेजकर वे क्रांति को कुचल देंगे, लेकिन वे गलत थे। 21 साल की प्रीति लता वदेदार ने जो शहादत की मशाल जलाई थी, उसने पूरे देश की महिलाओं और युवाओं को उद्वेलित कर दिया है। चटगांव की उस बेटी का नाम इतिहास के पन्नों में अमर हो गया है। उसने सिखा दिया कि आजादी की कीमत अपने प्राणों से बढ़कर कुछ नहीं।
10: दादा,
0: जब प्रीतिलता शिक्षण से जुड़ ही चुकी थी तो वे क्रांतिकारी गतिविधियों में कैसे शामिल हुई?
10: इसकी भी एक कहानी है। असल में ग्रेजुएशन के दौरान वे श्री संघ से जुड़ी हुई थी, जो लीला नाग के नेतृत्व में चल रहे दीपाली संघ का अंग था। आगे चलकर दीपाली संघ महिला क्रांतिकारियों का एक प्रमुख संगठन बना, जहां सदस्यों को शारीरिक प्रशिक्षण से लेकर राजनीतिक आंदोलनों और अन्य तत्कालिक घटनाक्रमों की जानकारी दी जाती थी। इतना ही नहीं बल्कि महिलाओं को पुरुषों के बराबर कार्य करने और आंदोलनों में भागीदारी करने के लिए प्रेरित भी किया जाता था। कलकत्ता प्रवास के दौरान प्रीतिलता कल्याणी दास के नेतृत्व में संचालित छत्री संघ से भी प्रेरित रही। उन्हीं दिनों प्रीतिलता की मुलाकात पूर्णेंदु दस्तीदार से हुई, जो चितगोंग क्रांतिकारी पार्टी के सदस्य थे।
1: प्रीतिलता के क्रांतिकारी बनने की कहानी जानने के लिए हमें इतिहास में लौटना होगा। जब प्रीतिलता मिलती है क्रांतिकारी पार्टी के सदस्य पूर्णेंदु दस्तीदार से।
5: पूर्णेंदु जी, आप मुझे अपनी पार्टी में शामिल कर लीजिए।
11: मुझे समय दो प्रीति, मैं ऐसे फैसले नहीं लेता। मुझे सूर्यदास से विचार विमर्श करना होगा।
5: ठीक है, आप कर लीजिए, मैं जवाब का इंतजार करूंगी।
1: पूर्णेंदु ने सूर्य सेन को प्रीतिलता के बारे में बताया कि वो पार्टी में शामिल होने को लेकर कितनी उत्सुक है।
12: देखो पूर्णेंदु, मैं महिलाओं के क्रांतिकारी गतिविधियों में शामिल होने के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन उन्हें कुछ विशेष कार्यों की जिम्मेदारी ही सौंपी जा सकती है, जैसे संदेश वाहक, क्रांतिकारियों को पनाह देना, किताबों को छिपाकर रखना आदि। जहां तक प्रत्यक्ष रूप से क्रांतिकारी गतिविधियों में शामिल होने, हथियार चलाने की बात है, जिससे काफी खून खराबा होने की आशंका रहती है, वैसी गतिविधियों में महिलाओं को हम खतरे में नहीं डाल सकते हैं।
11: आप अपनी जगह ठीक है, लेकिन प्रीतिलता के इरादे भी काफी मजबूत है। वह मानसिक रूप से क्रांतिकारी गतिविधियों में शामिल होने को लेकर पूरी तरह तैयार नजर आ रही है। आप उसे एक मौका देकर देखें, क्या पता कि हमें एक वीर महिला योद्धा मिल जाए।
12: अब तुम इतना कह रहे हो तो ले लो प्रीतिलता को पार्टी में, लेकिन यह बात बाहर नहीं जानी चाहिए।
1: इसके बाद ही प्रीतिलता को चितगोंग क्रांतिकारी पार्टी में शामिल कर लिया जाता है। 18 अप्रैल 1930 को सूर्य सेन के नेतृत्व में चितगोंग आर्मरी रेड होता है। उसके बाद जलालाबाद की जंग हुई, जिसमें 14 से 19 वर्ष के युवा क्रांतिकारियों ने ब्रिटिश सिपाहियों को कड़ी टक्कर दी। उन्हें पीछे हटना पड़ा, लेकिन इस संघर्ष में 11 क्रांतिकारी शहीद हो गए। इसके पश्चात कर्णफुली नदी के समीप यूरोपियन क्वार्टर्स पर हमला किया गया। कालरपोल की जंग हुई, काफी क्रांतिकारी शहीद हो गए। उधर प्रीतिलता के सब्र का बांध टूटा जा रहा था।
5: पूर्णेंदु दा, मुझे सशस्त्र संघर्ष के लिए कब भेजा जाएगा?
11: मैं सूर्यदा से बात करता हूँ।
12: पूर्णेंदु, उसे धीरज रखने को कहो। पहले उसे अलीपुर सेंट्रल जेल में बंद रामकृष्ण विश्वास से जाकर मिलने को बोलो।
11: प्रीति, सूर्यदा ने तुम्हें रामकृष्ण से जेल जाकर मिलने को कहा है। उन्हें फांसी की सजा हुई है।
5: क्या क्या किया था उन्होंने?
11: उन पर चांदपुर रेल पुलिस इंस्पेक्टर तारिणी मुखर्जी की हत्या का आरोप है।
5: ठीक है, आप जैसा कहेंगे मैं उनसे जाकर मिलूंगी।
1: प्रीतिलता रामकृष्ण से मिलने जेल गई। वो उनकी कजन के रूप में उनसे मिलने गई, ताकि किसी को कोई शक ना हो। इस तरह प्रीतिलता करीब 40 बार से ज्यादा रामकृष्ण से मिली। असल में सूर्यदा ने उन्हें एक खास मकसद से वहां भेजा था। वो जानते थे कि रामकृष्ण से मिलकर प्रीतिलता के अंदर क्रांति का भाव और गहरा होगा, उनमें स्थिरता आएगी।
10: जानती हो बन्नो, सूर्यदा का ये प्रयोग सफल भी रहा।
0: कैसे दादा?
10: प्रीतिलता रामकृष्ण से मिलने के बाद रोजाना डायरी लिखा करती थी। उसमें वे अपनी भावनाएं और तमाम विचार लिखती। इससे उनके दृष्टिकोण में स्पष्टता आती गई।
1: हालांकि रामकृष्ण की फांसी का प्रीतिलता के मन पर गहरा आघात लगा। उन्होंने तय कर लिया कि वो अब अपना समय जरा भी जाया नहीं करेंगी। खुदीराम, कन्हैयालाल, बाघा जतिन, रानी लक्ष्मीबाई की तरह वो भी देश को आजाद कराने के लिए अपने प्राण न्योछावर कर देंगी। इसीलिए वो सूर्यदास से मिलना चाहती थी। उन्होंने पार्टी में अपना संदेश भिजवाया।
12: प्रीतिलता, मैंने तुम्हारे बारे में सुना है। तुम्हें एक जिम्मेदारी सौंपने जा रहा हूँ। तुम्हें चटगांव में अंग्रेजों पर हमला करना है।
5: मैं कब से इंतजार कर रही हूँ दादा।
1: योजना के अनुसार अगले दिन ही यानी 13 जून को प्रीतिलता को निकलना था, लेकिन ब्रिटिश अधिकारी कैप्टन कैमरून के साथ अचानक मुठभेड़ हो गई, जिसमें निर्मल सेन की गोली से कैप्टन मारा गया, जबकि एक गोरखा सिपाही की गोली से निर्मल शहीद हो गए। गोलीबारी में अपूर्व की भी मौत हो गई। प्रीतिलता और सूर्य सेन किसी तरह भागने में सफल रहे, लेकिन इस घटना के बाद प्रीतिलता को वापस ढाल घाट लौटना पड़ा। उधर पुलिस ने प्रीतिलता के घर की तलाशी ली, जहां से उन्हें एक पत्र और कई फोटो मिली। उसमें आपत्तिजनक कुछ भी नहीं था। फिर भी प्रीति को घर में नजरबंद कर दिया गया।
13: प्रीतिलता घर में कैद होकर रहेगी सूर्यदा, उन्हें बाहर निकालना होगा।
12: उसे संदेश भिजवाओ कि वह अब घर छोड़ने की तैयारी करे। उसे अब से अंडरग्राउंड रहकर काम करना है।
13: ठीक है, मैं संदेश भिजवाता हूँ।
1: प्रीतिलता को सूर्यदा का संदेश मिलता है और 5 जुलाई 1932 को वो अपने घर से भाग जाती हैं। ब्रिटिश प्रशासन उनके ऊपर 500 रुपए का इनाम घोषित कर देता है, लेकिन प्रीतिलता को फर्क ही नहीं पड़ता। वो अपनी तैयारियों को और धार देने में जुट जाती हैं। इस समय तक वो रिवॉल्वर, पिस्टल एवं बम चलाना सब सीख लेती हैं। आखिरकार उनके सपने के पूरा होने का दिन तय हो जाता है, 24 सितंबर 1932। सूर्यदा उन्हें पहाड़तली यूरोपियन क्लब पर हमले की जिम्मेदारी सौंपते हैं। उसी हमले में प्रीतिलता को गोली लगती है और वो शहीद हो जाती हैं। लेकिन उनका वही सर्वोच्च बलिदान आने वाली सदियों तक हर भारतीय के दिल में देशभक्ति के अंगारे सुलगाता रहेगा। तो अब हमें दीजिए इजाजत। एक गीत एक नारा, राष्ट्रगीत हमारा की अगली कड़ी में मिलेंगे एक और वीर सेनानी से। वंदे मातरम।

0: नमस्ते, राम राम और ओम शांति। मेरा नाम पवित्र मल्लिक और आप सुन रहे प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय का सामुदायिक रेडियो रेडियो मधुबन 107.8 एफएम पर कार्यक्रम मेरा गांव मेरा आंच यानी माय विलेज माय एरिया और अपना आंचलिक भाषा में कहते हैं महारो गांव महारो अंचल। इस कार्यक्रम को लेकर जब गांव और अंचल में जाते हैं हमें बहुत खुशी मिलता है क्योंकि एक सामुदायिक रेडियो है, सामुदायिक द्वारा और सामुदायिक के लिए प्रस्तुतिकरण होता है फॉर द कम्युनिटी ऑफ द कम्युनिटी और बाय द कम्युनिटी। सरकार का जो मंच है आसपास बच्चों का अंदर में जो टैलेंट है बौद्धिक विकास मानसिक विकास का साथ साथ शारीरिक विकास का साथ साथ अनुशासन और हृदय में जो संगीत गीत का द्वारा अपना प्रस्तुतिकरण करेंगे। तो पहला प्रस्तुति माँ शारदा का गीत भजन के रूप में करेंगे। पहले माँ शारदा का एक गीत प्रस्तुति होगी और इस कार्यक्रम को सजाने के लिए हम पहुंचे राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय गांधी नगर जो कि आपू रोड में स्थित है। तो एक प्रार्थना का रूप में शुरू करते हैं। तो लीजिए हमारा 7-3 छात्र है उपस्थित, उनको स्वागत करते हैं रेडियो मधुबन परिवार की ओर से। अपना अपना परिचय देंगे। पहले
1: आस्था।
0: आस्था और विश्वास दोनों ट्रस्ट होना चाहिए।
1: उषा।
0: उषा आवा
1: तमन्ना।
0: तमन्ना। आज तो सबका आवाज सुनेंगे, उनका आवाज को रोक नहीं पा रहे तो सुनेंगे अभी।
1: हे

0: समेदार देमा।
1: बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर प्रस्तुति के लिए, और खास कर जब राज्य के उच्च माध्यमिक विद्यालय गांधीनगर में पहुंचे तो बच्चों को एक मौका मिला। बॉयज स्कूल का साथ साथ गर्ल्स स्कूल को भी आज मौका मिला, क्योंकि इसका पहले गांधीनगर का बॉयज स्कूल का भी लिया था, जो कि आज इस कार्यक्रम को सजाने के लिए पुनः आए हैं इस स्कूल में, जो कि राज्य के उच्च माध्यमिक विद्यालय गांधीनगर गर्ल्स का। तो संस्था प्रधान और सभी स्टाफ को धन्यवाद देते हैं। एक इशारा से, कोई प्रिपरेशन नहीं था, कोई तैयारी नहीं था, फिर भी बच्चे बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिए। तन्मना और हमारा बहन उषा, दोनों को धन्यवाद देते हैं इस तरह कार्यक्रम में अपना प्रस्तुतियां दिए। उषा, बड़े होकर क्या बनेगी तुम? डॉक्टर, इंजीनियर, पुलिस, कुछ बनना तो चाहेंगे? लक्ष्य रखें पुलिस, क्योंकि पुलिस एक देश को रक्षा करते हैं, खुद को भी रक्षा करेंगे। सेल्फ डिफेंस में पुलिस का बहुत काम आता है, और भ्रष्टाचार, चोर, डकैत जो चीज होता है वो होगा नहीं, क्योंकि सात्विक में रहेंगे, और इसके लिए मेहनत भी करना पड़ेगा। उसे कितने घंटा मेहनत करते हैं आप पढ़ाई के साथ साथ? तो मेहनत करना पड़ेगा, कितने घंटा मेहनत करते हैं? एक्सरसाइज वगैरह करते हैं? दौड़, पुलिस के लिए तो भाई शारीरिक एक्सरसाइज करना पड़ेगा। तो क्या कहना चाहें, कितने घंटा मेहनत करते हैं?
0: 2 घंटे में।
1: 2 घंटा, और 2 घंटा में कितना, कौन सा समय में एक्सरसाइज करते हैं? जिम वगैरह जाते हैं? कोई कोई स्कूल में भी सिखाते, पीटी सर सिखाते होंगे, शारीरिक एक्सरसाइज करना पड़ता है पुलिस के लिए? तो भाई बॉडी को फिट रखना पड़ता है कि नहीं, कोई बीमारी नहीं होना चाहिए। और 2 घंटा कब प्रैक्टिस करते हैं, सुबह ना शाम को?
0: सुबह ही करते हैं।
1: सुबह कर सकते हैं। और पढ़ाई में कौन सा विषय आपको अच्छा लगता है उषा?
0: हिंदी।
1: हिंदी टीचर का नाम बताएंगे?
0: शक्ति सर।
1: शक्ति सर हिंदी पढ़ाते हैं। तो आप भी मैडम, जब मौका मिलेगा पुलिस नहीं बन के, मैडम बनेगी हिंदी टीचर? नहीं, पुलिस ही बनेगी। तो तन्मना आप बताया, बड़े होकर क्या बनेगी?
2: मैं आईपीएस बनना चाहूंगी।
1: हाँ देखो, ये एक अच्छा बात बता, मैं आईपीएस पुलिस, उसका भी आईपीएस मतलब पूरा इंस्पेक्टर है, पुलिस इंस्पेक्टर है ना, बहुत अच्छा। दोनों पुलिस में आपका अच्छा दोस्त कौन है, तुम्हारा खास दोस्त?
2: खुशी।
1: खुशी, वाह, खुशी आए आज?
2: नहीं आज नहीं आए।
1: आज नहीं है, लेकिन खुशी रहना है और खुशी बांटना है। खुशी सबसे बड़ा खुराक है, कोई मेडिसिन रहेगा नहीं, खुशी से रहेगा तो बीमारी नहीं होगी। तो लेते हैं छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद और एक प्रस्तुति सुनेंगे उषा और उनका दोस्त से। सुनते रहे कार्यक्रम मेरा गांव मेरा आंचल, रेडियो मधुबन 107.8 एफएम पर। आज हमारा उषा और तन्मना दोनों एक आरजे बन गए, रेडियो जोकी बन गए। रेडियो में जो बोलते उसको आरजे कहते, क्या कहते? आरजे, रेडियो जोकी। जैसे आप पुलिस इंस्पेक्टर, आईएएस ऑफिसर, कलेक्टर, जो रेडियो में बोलते हैं माइक में उसको क्या कहते हैं बच्चे? आरजे। क्या बोलते हैं?
3: आरजे।
1: सब एक एक आरजे हो गए, क्योंकि आपका आवाज तो आ गया ना, है ना? तो आप एक एक आरजे, खुशी है आज एक मिनट के लिए एक एक आरजे बन गया? जोर से बोलो। ये हुई ना बात, प्रिंसिपल तक पहुंच रही है। हाँ जी जी, हाँ जी करते हैं, लेकिन और एक प्रस्तुति सुनेंगे, लेकिन और पर विराम के बाद सुनते रहे कार्यक्रम मेरा गांव मेरा अंचल।

0: मैं हूं श्रवण राठौर ऑफ नदीम श्रवण टीम और आप सुन रहे हैं ब्रह्मा कुमारी का कम्युनिटी रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन। सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए
1: चलिए ब्रेक का पहले हम सुन रहे थे एक प्रार्थना, तत्पश्चात तन मन हमारे इस कार्यक्रम को सजाने के लिए सिंगल प्रस्तुति देने के लिए पुनः उनको स्वागत करते वांस मोर, क्योंकि भाव और भावना का साथ एक प्रस्तुति मिली प्रार्थना सत्र में। तत्पश्चात और एक प्रस्तुति के लिए प्रस्तुत है हमारा तन मन, तो शुरू करिए।

0: कमजोर होना।
1: काली का सात बच्चे उमंग उत्साह भर दिए और आवाज को आवाज का दुनिया में सजा दिए और तमन्ना कैसे गीत गाई, कहाँ से सीखती है वो बताएगी। कहाँ से आप सीखती है गीत? बहुत सुंदर लगा। और स्वर लय का साथ कहाँ से सीखती तुम? मोबाइल से ना? स्कूल में ना? आपका घर में कोई सिंगर है?
0: मैं रेडियो से।

0: अरे बाप रे, रेडियो का हमारा ग्राहक है, रेडियो में सुनते हैं, आज रेडियो में उसका आवाज जो सुनेंगे, सबका आवाज सुनते थे पहले, रेडियो सुनते थे, रेडियो से सीखते थे, लेकिन आज उनको मौका मिला रेडियो में बोलने के लिए, क्या बात, ताली बजा भाई इसके लिए। मुझे लगा क्योंकि कभी रेडियो से सीखती थी, लेकिन उसका राज अभी पता चला, हम रेडियो से गीत संगीत
1: सीखते,
0: कैसे सीखते, कब कैसे आपको प्रेरणा मिली बताओ। देखिए
1: हम जैसे गाने सुनते हैं ना विविध भारती पर, तो उसमें एक वो शो आता है, उससे हमें प्रेरणा मिलती है, तो हम उससे मतलब सीखते हैं।
0: तो आप तो
1: हम साथ के साथ गाते हैं
0: उसमें।
1: हाँ,
0: तो कौन सा समय में आता है? और रेडियो मधुबन का नाम सुना है?
1: हाँ,
0: उसमें भी आता है, फरमाइश आता है शाम का टाइम में,
1: हेलो फरमाइश भी आता है,
0: आता है 8 से 9 बजे आप सुन सकते हैं। सुबह सुबह में अच्छा गीत है तो वो भी सुन सकते हैं। ये जो प्रोग्राम आप सुनेंगे 7 से 8 बजे, कितने बजे? शाम को 7 से 8 बजे सुन रहे सभी जगह में, तो आप भी सुन सकते हैं शाम को डेली। आप आवाज इसे सब स्कूल का आवाज आता है, तो आपका भी आवाज उस समय सुनेंगे।
1: हाँ,
0: आवाज कैसे
1: हाँ।
0: लगा? तो आरजे बनकर आज गीत गा रहे तो खुशी लग रहा है तुमको? तो बड़े होकर तो क्या आप सिंगर बनेंगे ना? पुलिस आईपीएस तो बोल देता, आईपीएस बनेगी ना?
1: हाँ।
0: तो आपका घर में कोई आईपीएस है क्या?
1: नहीं,
0: सर्विस होल्डर है।
1: नहीं,
0: फिर भी आपको उमंग उत्साह कौन भरता है?
1: मेरा खुद का सपना है कि मैं आईपीएस बनूं।
0: इसलिए मेहनत, विद्यार्थी जीवन में पढ़ाई का साथ साथ और 3-4 घंटा एक्स्ट्रा मेहनत करेंगे, ध्यान से लगन से, क्वालिटी चाहिए क्वांटिटी नहीं। इतना बड़ा 4 घंटा 6 घंटा बढ़कर रहेंगे लेकिन याद नहीं रहेगा, क्या बात। 1 घंटा पढ़ो ध्यान से, एकाग्रता का साथ, ठीक है, खुशी से, तो कामयाबी होंगे, है ना? तो आपका अच्छा दोस्त का नाम बताया था ना, क्या नाम?
1: खुशी।
0: और कौन सा क्लास के?
1: 12th क्लास।
0: और आपका?
1: मैं 11th क्लास में।
0: वाह, फिर भी देखो 12th और 11th क्लास का में भी दोस्ती है, जैसे सुदामा और श्री कृष्ण का दोस्ती पक्का होता है ना।
1: हाँ।
0: तो उनका पास, खुशी का पास क्या विशेषता है, क्या गुण है जो आपको अच्छा लगता है, क्या सहयोग मिलता है आपको उनसे?
1: वो मतलब मेरा साथ देती है हरदम।
0: वो हरदम सदा हरदम साथ रहेंगे, साथ जाएंगे, जाएं भी हो, है कि नहीं?
1: हाँ।
0: बहुत अच्छा, लेते हैं छोटा सा ब्रेक और एक प्रस्तुति लेंगे, लेकिन अल्प विराम के बाद सुनते रहे कार्यक्रम मेरा गांव मेरा आंचल, रेडियो मधुबन 107.8 FM पर।

0: This is Aditya Raj Kapoor and you are listening to Brahma Kumari's community radio station, Radio Madhuban. Keep listening, keep smiling.
1: एक का बाद बढ़ते जा रहे हैं और हमारा श्रोता सुन रहे ध्यान से राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय गांधीनगर का आवाज, वो भी बालिका गांधीनगर और एक बालक गांधीनगर भी है। इसी में ही दोनों बच्चे अपना अपना जगह में सिलेक्शन करते हैं, लेकिन यहाँ पर मिक्सिंग है ना, वो भी राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय गांधीनगर का आवाज आप सुन पा रहे हैं और हमारा श्रोता ध्यान से सुन रहे हैं और उनका जवाब तो वाह वाह कर रहे हैं हमारा तमन्ना के लिए। तमन्ना और शुरू करिए एक गीत, रेडी? ओके।
2: विजय विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचे रहे हमारा, सदा शक्ति बरसाने वाला, प्रेम सुधा सरसाने वाला, वीरों को हरसाने वाला, मातृभूमि को तन मन सारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। इस चरखे के नीचे निर्भय ले स्वराज्य, यह अविचल निश्चय, बोले भारत माता की जय। स्वतंत्रता हो ध्येय हमारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा, आओ प्यारे वीरो आओ, राष्ट्र ध्वज पर बलि जाओ, एक साथ सब मिलकर गाओ, प्यारा भारत देश हमारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। इसकी शान ना जाए पाए, जाने पाए चाहे जान भले ही जाए, विश्व विजय करके दिखलाए, तब होवे प्रण पूर्ण हमारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा।
1: झंडा, तिरंगा का नाम सुनते ही भारत में जो भारत का नागरिक का अंदर में का खून का जो जज्बा, जो देशभक्ति देखने को मिलता है और भारत आजादी का अमृत काल तक पहुंच रहा है। जब भारत 100 साल का मनाएगा तब तो हमारा ये बच्चे ही देश को संभालेंगे, देश का आन बान शान कहते हैं। और हमारा विद्यार्थी कम नहीं है, विद्यार्थी का पास इतना शक्ति है और कुछ करने के लिए जोश रखते हैं। इस कविता का माध्यम से सुनाए देश का प्रति उनका कितना उद्वेग है। तो एक अच्छा खेल का नाम बताओ, खेल खेलते हैं तुम कोई भी गेम? तो क्या करते हैं, हॉबी क्या है आपका? पढ़ाई का साथ साथ आप क्या करते हैं, किस में रुचि रखते हैं, गीत में ना आप किस में, गाने में?
2: हाँ।
1: क्योंकि आप गीत गा रहे तो भाई कविता में बा गीत में ही आपका रुचि रहता है। तो आपका स्कूल में कौन सा शिक्षक आपको बा कौन सा मैम आपको अच्छा लगते हैं, उनका पढ़ाने का तरीका चाहे अनुशासन, कौन सा टीचर आपको अच्छा लगते हैं?
2: हमारी प्रिंसिपल मैडम।
1: क्या नाम है?
2: संतोष।
1: संतोष मैम, क्या विशेषता है उनका?
2: मतलब वो एक स्ट्रिक्ट मैडम है और जो अच्छे तरह से पढ़ाते हैं,
1: वो पूरा अनुशासन में और बच्चों का फायदा के लिए, बच्चों का फायदा के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं और ऑलराउंडर है और हमारा इस कार्यक्रम को सुंदर रूप में सजा रहे हैं। तो लेते हैं छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद और एक प्रस्तुति सुनेंगे, लेकिन सभी बच्चे मिलकर एक गाएंगे, गाएंगे सभी बच्चे?
3: हाँ जी,
1: करने में तो होशियार है। चलिए शुरू करते हैं, एक प्रार्थना हो जाएगा लेकिन अल्प विराम के बाद।

0: आप सुन रहे रेडियो मधुबन, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए। आप सड़क पर चलते समय अपनी गाड़ी को कंट्रोल रखें और अपनी गाड़ी को धीरे धीरे चलाएं और हमेशा हेलमेट पहनते रहिए।
1: रेडियो मधुबन।
2: नमस्ते, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए और एक बोलते बोलते फिर और एक प्रस्तुति करने के लिए हम आगे बढ़ रहे हैं, तो हमें खुशी मिल रहा है। बच्चे सच्चे होते हैं और बढ़ चढ़ कर अपना भाव और भावना को देते हैं, क्योंकि उनको मौका मिलता नहीं। आज मौका मिला है रेडियो मधुबन उनका बात को रखने के लिए एक मंच दे रही है, जिस मंच का माध्यम से, जिस स्टेज का माध्यम से अपना भाव को जन जन तक पहुँचाते हैं। और आदिवासी गाँव में रहते हैं बच्चे, इस तरह आकाशवाणी में आने के लिए उनको कोई पूछता नहीं था, तो रेडियो मधुबन ब्रह्मा कुमारी आज उनका बात को रखने के लिए उनको मंच दे रहे, माइक दे रहे, तो पुनः और एक प्रस्तुति के लिए रेडी है। हमारा सभी बुढ़िए आए हैं, तो क्या कहना चाहेंगे सभी? अपना नाम क्या बताया था?
3: अंजू
4: शुभना।
2: चलिए सभी मिलकर एक प्रस्तुति करेंगे। ओके।

0: वाह वाह बोल रहे से बच्चे बहुत अच्छा सुंदर प्रस्तुति को धन्यवाद देते हैं।
1: इस तरह बच्चे को जब मान के मिलते हैं आगे आकर अपना बात करते हैं, बड़े बड़े अपना अपना लक्ष्य भी रखते हैं, कोई डॉक्टर कोई इंजीनियर कोई पुलिस बनेंगे सभी बड़े होकर, लेकिन लेकिन मेहनत जरूरी है। विद्यार्थी जीवन में मेहनत करेंगे तो आगे बढ़ेंगे, बिना मेहनत से कुछ नहीं होने वाला है। इसमें पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई तब तक विद्यार्थी पढ़ाई का जीवन में पढ़ाई करना है और बड़ों का बात मानना चाहिए, है ना।
0: कार्यक्रम मेरा गांव मेरा अंचल रेडियो मधुबन 107.8 FM पर।

0: मैं हूं उदित नारायण और आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।
1: चलिए आवाज का दुनिया में फिर हम आवाज के पास पहुंच रहे हैं और हमारा बच्चियां बाद छात्राएं एक का बाद एक प्रस्तुतियां दे रहे हैं। सभी को नाम का साथ धन्यवाद देते हैं पुनः उनको हमारा ईश्वरीय विश्वविद्यालय और रेडियो मधुबन परिवार की ओर से। इस कार्यक्रम को बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं और सभी को खुशी लग रहा है, हमारा इस कार्यक्रम को सजा रहे हैं। तो चलिए और एक प्रस्तुति, सभी मिलेंगे, बच्चे भी गाएंगे। ओके,

0: आप अपना परिचय दीजिए।
1: मैं क्लास 9 की छात्र हूँ। मेरा नाम दिव्यानी है।
0: आपको कौन सा विषय आपको अच्छा लगता है?
1: मुझे इंग्लिश।
0: और बड़े होकर क्या बनना चाहेगी?
1: डॉक्टर।
0: इसलिए क्या मेहनत करना पड़ेगा? बात क्या कर रही है?
1: मैं क्लिनिक में जाती हूँ सीखने।
0: हाँ वाह, बहुत अच्छा। और शांत स्वभाव के है और अनुशासन में रहते हैं। और दोस्त कौन है तुम्हारा? अच्छा क्लासमेट?
1: खुशी।
0: खुशी, खुशी का नाम तो आजकल बहुत आ रहा है। और खुशी नाम जैसे, और खुशी रहते हैं और खुशी बांटते भी है। खुश रहना चाहिए जीवन में, कोई भी परिस्थिति हो लेकिन खुशी गायब न हो, इसलिए हमें खुद को ध्यान देना चाहिए। तो आज इस कार्यक्रम का माध्यम से, इस कार्यक्रम का भी रेडियो माध्यम नाम सुनी थी तुम, लेकिन आज पहला बार सुने और प्रोग्राम भी दिए, तो बहुत अच्छा बात बताया। और क्या आपको अच्छा लगा आज?
1: आपसे हमें ज्ञान मिला, यही बात।
0: ज्ञान माने समझ, सबसे मेन चीज समझ मिला, जो हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। इसके बाद हमारे हाथ में जब ज्ञान में समझ हो गया तो हमें कोई बताना नहीं पड़ेगा, हम खुद कर लेंगे। समझ होना चाहिए क्या करना चाहिए, क्या सोचना चाहिए, क्या पहनना चाहिए, क्या देखना चाहिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आज के लिए हमें दीजिए इजाजत। फिर कल मिलेंगे इसी वक्त इसी समय और किसी बात को लेकर। यह था खासकर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बालिका विद्यालय गांधीनगर के आवाज को आप सुन पा रहे हैं। तो सभी को उनका जो आशा है, विश्वास है, बड़े होकर कोई पुलिस, कोई आईपीएस, कोई डॉक्टर जो बनना चाहते हैं, इसलिए मेहनत करना पड़ेगा विद्यार्थी जीवन में। और 4-5 साल जो मेहनत करेंगे तो आगे जाकर 90 साल तक कुछ मेहनत नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि 5 साल का मेहनत आगे बढ़कर खाना पड़ेगा। डॉक्टर बन जाएंगे तो बहुत मेहनत करना नहीं पड़ेगा, कोई भी सर्विस करेंगे तो बस 90 साल तक सभी परिवार को खिलाएंगे, अभी खा रहे बाद में खिलाएंगे। मात्र 5 साल और मेहनत करना पड़ेगा, 5 साल कॉलेज का बाद, 12 क्लास के बाद 5 साल मेहनत करेंगे तो आपको प्राइवेट नौकरी करना नहीं पड़ेगा, 12 घंटा नौकरी नहीं करना पड़ेगा, 6 घंटा में इतना पैसा कमाएंगे। लेकिन कब? जब हम इस विद्यार्थी जीवन में बड़ों का बात मानेंगे और मेहनत करेंगे 6 घंटा एक्स्ट्रा, जो पढ़ाई करते, जो मेहनत करते और 6 घंटा एक्स्ट्रा मेहनत करेंगे।

0: मैं कनव हूँ, मैं 8वीं कक्षा में पढ़ता हूँ। कल जब मैं स्कूल से घर आ रहा था तो पता है मैंने क्या देखा? एक अंकल सड़क पे कचरा फेंक रहे थे। मैंने उनको जाकर बोला कि अंकल सड़क पे कचरा नहीं फेंकना चाहिए, तो पता है उन्होंने क्या बोला?
1: अरे बड़ा है मुझे सिखाने वाला।
0: उन्होंने मेरी बात नहीं मानी और वो चले गए, लेकिन मैंने खुद ही कचरा उठाकर कचरे के डब्बे में डाल दिया।

0: जाते हैं उसके बाद। लेकिन आज का कार्यक्रम व्यक्तिगत तौर पर मेरे लिए बहुत खास है, बहुत विशेष है, क्योंकि एक ऐसे व्यक्तित्व जिनको मेरे जैसे हजारों हजार युवा अपना आदर्श मानते हैं, एक ऐसे व्यक्ति जो कि सुप्रीम कोर्ट में सीनियर लॉयर के पद पर आसीन है, और इससे भी महत्वपूर्ण बात, जो लगभग 50 वर्षों से दृष्टिबाधित साथियों की सेवा में लगे हुए हैं, भारत और भारत के बाहर शायद ही कोई ऐसा हो जो हमारे आज के जो विशेष मेहमान हैं उन्हें नहीं जानता हो, और साथ ही साथ वे भारत के सबसे बड़े दृष्टिबाधितों के लिए बने संगठन राष्ट्रीय दृष्टिहीन संघ के महासचिव हैं, और 1, 2, 4 नहीं लगभग 40-42 वर्षों से वो इस पद पर रहते हुए अपने समाज, अपने साथियों की और अपने पूरे इस पीढ़ी को नेतृत्व प्रदान करने का काम कर रहे हैं। उम्मीद है श्रोताओं इतनी बात में तो आप सब समझ गए होंगे। चलिए तो स्वागत करते हैं आज के इस कार्यक्रम में हमारे विशेष मेहमान आदरणीय एस के रोंगटा सर एवं उनकी श्रीमती जी सुषमा रोंगटा मैडम का। सर और मैम आप दोनों का बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में।
1: नमस्कार सबको।
0: मैम आपका भी स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में।
2: थैंक यू सो मच। नमस्ते सबको।
0: मैम एक्चुअली सर को तो जैसा कि मैंने बताया शायद ही कोई ऐसा हो जो नहीं जानता हो, और वैसे तो आपको भी जानते ही हैं, लेकिन हम चाहते हैं आज की शुरुआत आपसे की जाए। आप थोड़ा सा अपने बारे में मैम हमारे सुनने वालों को बताइए प्लीज।
2: अपने विषय में क्या बताऊं मेरा तो साहब के साथ ही जुड़ा है, जो भी है मिस्टर रोंगटा के साथ ही मैं जुड़ी हुई हूँ शुरू से। सबसे पहले मैंने जब इलीप साइंस किया तो लाइब्रेरी में, मतलब जो हमारी एनएपी की लाइब्रेरी थी उसको ज्वाइन किया था। तो मैं साहब के साथ मीटिंग्स में जाती थी, डिफरेंट मीटिंग्स में, ऑफिशियल्स मीटिंग में, तो मैं देखती थी मिस्टर रोंगटा की पर्सनैलिटी से मैं बहुत ही ज्यादा प्रभावित हो गई, क्योंकि वो जो भी अपनी बात कहते थे उसमें इतना दम होता था कि अच्छे अच्छे ऑफिसर्स भी उनकी बात को मानने के लिए बाध्य हो जाते थे। तो वो सब मुझे बहुत ही अच्छा लगता था। और इसी तरह जो है मेरा जो है उनसे जो लगाव जो था वो फिर बाद में प्रेम में परिवर्तित हो गया।
0: बहुत खूब। वाकई में ये कहानी जो भी आज सुनेंगे उन्हें बड़ा अच्छा लगने वाला है। मैम आपकी क्वालिफिकेशन वगैरह क्या?
2: मैंने पहले तो एमए हिंदी किया था और उसके बाद में बिलीव साइंस किया, और बाद में लोकसभा ज्वाइन करने के बाद में मैंने यहाँ पे लाइब्रेरी प्रोफेशनल के रूप में लोकसभा में पार्लियामेंट लाइब्रेरी को ज्वाइन किया, और उसके बाद में फिर मैंने लॉ किया।
0: क्या बात, वाह। मतलब सर की वकालत का असर आप पर भी हो ही गया कम से कम।
2: वकालत के फील्ड में तो अभी मुझे कुछ नहीं आता है।
0: जी मैम थैंक यू। आपसे बातचीत तो बहुत लंबी करनी है, तो सर वैसे तो आप जो भी कहेंगे वो हम सब के लिए अनमोल वचन ही होते हैं, लेकिन आप अपनी तरफ से अपने बारे में बताएं सर कुछ ऐसा जो शायद बहुत कम आप कभी कहते हो, प्लीज सर।
1: मैं तो यही कहना चाहूंगा अपने विषय में, जो जीवन का सार अब तक का है।
0: जी सर।
1: जो मैं अपना मूल्यांकन करता हूँ अब तक की जिंदगी के सफर को, वो यही है कि जो आपके साथ समाज परिवार में जिस तरह का व्यवहार होता है,
0: यस सर,
1: उसका बड़ी सतर्कता से हमको मूल्यांकन करना चाहिए।
0: यस सर।
1: और उस व्यवहार के मूल्यांकन के आधार पर आपको अपने जीवन को आगे बढ़ाने के लिए और अपने जीवन को ढालने का, जिससे कि आपका अधिकार, आपका स्वाभिमान सुरक्षित रहे, उसी आधार पर अपने जीवन को ढालना चाहिए और उसी तरह की जीवन यात्रा करनी चाहिए। मैं इसमें विश्वास रखता हूँ और इसी विश्वास के साथ मैंने अपनी ये जीवन यात्रा तक की है, और उसमें मुझे लगता है कि इस अप्रोच से मैं न केवल अपने व्यक्तिगत जीवन में सफल रहा बल्कि अपने सामाजिक कार्यों में सफल रहा।
0: बहुत खूब। एक बात बताएं सर कि दुनिया आपको अलग अलग नजर से देखती है, हमारे जैसे लोग आपको आदर्श मानते हैं, कुछ लोग आपको एक्टिविस्ट मानते हैं, कुछ लोग आपको सफल वकील मानते हैं, आप अपने आप को क्या मानते हैं सर?
1: मैं तो अपने आप को एक इंसान मानता हूँ, और यही प्रार्थना करता हूँ कि एक अच्छा इंसान ईश्वर हमेशा मुझे बनाए रखे, और जो सबसे बड़ी दुश्मन बुराइयां हैं मानव के लिए जैसे अहम, अहंकार
0: जी सर,
1: जैसे घृणा, जेलस, इनसे दूर रखें
0: जी।
1: और मैं उस इंसानियत का जो आधार मानता हूँ, जिस इंसानियत के साथ अपने अंतिम सांस लेना चाहता हूँ,
0: क्या
1: अंतिम सांस तक जीना चाहता हूँ, वो आधार यही है
0: जी
1: कि व्यक्ति को अपने जीवन में
0: जी
1: जो उसका सबसे बुरा समय था उसको कभी नहीं भूलना चाहिए, और उससे जुड़े रहते हुए दूसरों के प्रति अपने व्यवहार को संचालित करना चाहिए।
0: जी जी जी, निश्चित रूप से सर, बहुत खूब सर। सर आपका भी जीवन एक सामान्य दृष्टिबाधित विद्यार्थी की तरह ही प्रारंभ हुआ, कब आपने ये सोचना शुरू कर दिया कि आप अपने इस समाज के लिए ही लड़ेंगे, इस समाज के लिए ही कार्य करते रहेंगे, ये सब भावना आपके अंदर मतलब शुरू में तो नहीं आई होगी एकदम से? तो
1: नहीं, मैं ये कहूंगा कि बहुत शैशव काल से ये भावना आ गई।
0: अच्छा।
1: और इसमें जैसा मैंने कहा कि परिवार और समाज में और विद्यालय में
0: जी जी
1: जो व्यवहार देखा, मैंने कहा ना मेरे जीवन यात्रा का आधार और जीवन को ढालने का आधार ही समाज, परिवार और अन्य व्यक्तियों का जो व्यवहार है दृष्टिबाधिता के कारण
0: जी,
1: उसी ने हमेशा यात्रा को निर्धारित किया है। उस क्रम में जो मैंने परिवार में देखा, एक मध्यम वर्गीय परिवार में जन्म लेने के नाते
0: जी सर,
1: जो आपस में दृष्टिबाधिता को लेकर बातें सुनी
0: जी,
1: और जिस तरह से एक जो आम दृष्टिकोण उस समय था, आज भी है, लेकिन आज वो काफी नीचे चला गया है, नीचे इन द सेंस कि वो अभिव्यक्त नहीं होता
0: जी।
1: मैं ये नहीं कहूंगा कि वो लोगों के दिमाग से चला गया है
0: जी जी।
1: अब अभिव्यक्त करते हुए लोग डरते हैं, पहले अभिव्यक्ति उसकी बिल्कुल खुलेआम होती थी, व्यवहार में भी, शब्दों में भी
0: जी।
1: तो वो जो अभिव्यक्ति थी नकारात्मकता की
0: जी,
1: वो जो बोझपन की
0: जी,
1: कि परिवार में एक बोझ आ गया, समाज में एक बोझ आ गया, और विद्यालय में जो देखा कि किसी भी श्रेणी का कर्मचारी
0: जी
1: वो दृष्टिबाधितों को बड़े हे दृष्टि से देखकर व्यवहार करता था
0: जी जी जी,
1: तो निर्दयता भी देखी
0: जी,
1: उसने एक मुझे जो मैं हूं वो बनाया
0: जी,
1: एक रिएक्शन पैदा किया, प्रतिक्रिया पैदा की, नहीं इसके विरुद्ध संघर्ष करना है, इसको परिवर्तित करना है।
0: बिल्कुल सर।
1: और उसको परिवर्तित करने के कारण ने मैंने बहुत शैशव काल में ही ले लिया, और बहुत शैशव काल में ही मैंने तय कर लिया कि मुझे कानून का व्यवसाय चुनना है, क्योंकि उस समय मुझे ये लगा कि, और जो शायद सही लगा और सही निर्णय था
0: जी,
1: यही एक व्यवसाय है
0: जी
1: जिससे अंततोगत्वा संघर्ष के एक हथियार के रूप में प्रयोग करके हम इस नकारात्मक दृष्टिकोण को बदलकर अपने अधिकारों की प्राप्ति कर सकते हैं और उसकी रक्षा कर सकते हैं
0: जी। क्या बात है, बहुत खूब। तो आपकी सर ये यात्रा तो इतनी विशाल, इतनी लंबी है कि इस पर आगे भी बातचीत जारी रहेगी यहाँ पर, लेकिन अब मेरे मन में प्रश्न ये आ रहा है कि ये सब करते करते, अपने साथियों के लिए लड़ते लड़ते, समय आता है जब अपने बारे में भी सोचना होता है कि भाई गृहस्थी बसानी है, परिवार बनाना है, बढ़ाना है, तो ये सब आपने कब सोचना शुरू कर दिया सर?
1: देखिए, मैं अगर इस प्रश्न का उत्तर ढूंढने की बहुत कोशिश करता रहा आज तक मुझे उत्तर नहीं मिला कब
0: जी,
1: लेकिन मैं यही कहूंगा
0: जी
1: कि जब मैडम का साथ मिला
0: जी,
1: तो हमने तय किया कि अब ये सही समय है जब ना केवल परिवार के लिए हम सोचें
0: जी,
1: बल्कि हमने ये देखा कि इनके रूप में हमें एक और साथी इस जो मिशन है
0: जी,
1: उसको पूरा करने में संबल के रूप में
0: जी
1: मिलेगा
0: जी,
1: और अच्छी साथी साबित होगी, तभी हमने ये निर्णय किया
0: जी जी। कौन से सन में सर आप दोनों विवाह सूत्र?
1: ये 1984 में हम लोगों का विवाह हुआ था, 8 मई 1984 को विवाह हुआ था।
0: अरे मतलब मई का महीना आपके लिए?
1: मई का महीना, बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं।
0: श्रोताओं बताएंगे
1: ऐसे, क्रांति के लिए मार्च का महीना
0: जी जी जी
1: मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है
0: जी,
1: संघर्षों के लिए
0: जी,
1: अपने समाज के लिए
0: जी,
1: क्योंकि विद्यालय में भी जो पहला आंदोलन किया मैंने 23 मार्च को
0: जी जी जी। अच्छा,
1: 23 मार्च को किया
0: जी सर?
1: 23 मार्च 1966 को।
0: 1966, वाह।
1: और यहाँ राष्ट्रीय स्तर पर जो पहला आंदोलन संगठित आंदोलन हुआ वो 16 मार्च 1916
0: बिल्कुल, जिसको
1: ये 2 महीने मेरे जीवन के लिए काफी महत्वपूर्ण है।
0: वाह,
1: और राजर मैं कहूँ कि डिटर्मिनेंट है।
0: बहुत खूब सर, बहुत खूब सर। मैम से पहले भी कभी ऐसा हुआ कि मतलब ये व्यक्ति बहुत अच्छे हैं? आपकी जिंदगी में तो काफी लोग आए होंगे, आपने काफी लोगों से मुलाकात की होगी, कभी और कोई आया जहन में आपके, या ऐसा कभी सोचने का वक्त ही नहीं मिला?
1: नहीं, मतलब इस दृष्टि से तो नहीं कहेंगे, लेकिन हाँ ये बात सही है कि व्यक्ति कई आए
0: जी
1: जिनको हमने सोचा कि वो बन सकते हैं और उनमें सामाजिक प्रवृत्ति है
0: जी,
1: लेकिन अंततोगत्वा जो इनमें मैडम में देखी इसके लिए काम करने की, एक्चुअली उस समय परिवार से ज्यादा यही डिटर्मिनेंट था कि कौन इस मिशन में सच्चा साथी साबित हो सकता है।
0: बिल्कुल तो सही,
1: वो जो है उसको ध्यान में रखते हुए।
0: अच्छा सर, पहला प्रस्ताव, हमारे श्रोता जानने के लिए बेताब रहेंगे सर कि पहला प्रस्ताव किसकी तरफ से आया?
1: अब ये बड़ा डिफिकल्ट मुझे लगता है अकस्मात दोनों ने एक दूसरे को एक ही समय में प्रस्ताव।
0: कहीं ना सर, कहीं ये वकीलों वाला उत्तर तो नहीं
1: है?
0: वकीलों वाला उत्तर तो नहीं है सर कहीं ये?
1: नहीं नहीं नहीं, वो तो मैडम करेक्ट करेंगी अगर
0: जी जी जी जी,
1: लेकिन मुझे जो लगता है
0: जी जी। वाह, मतलब ये यही होता है सर, जब दोनों तरफ भावनाएं प्रबल हो तो फिर शायद समय भी उसी एक साथ ही एक समय में ही ये सारी बातें होती
1: हैं। बिल्कुल बिल्कुल
0: जी। तो बिल्कुल। अब यहाँ पर थोड़ी सी बातचीत सर मैम से भी जरूरी बनती है
1: जी जी।
0: मैम
2: जी हाँ,
0: यही बात आपके लिए भी मैम आती है मेरे जहन में कि आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा एक्टिवली काम करते हुए, और आपका अपना एक परिवार था, वहां भी बातें हुई होंगी कि भाई अब आपका विवाह होना चाहिए, तो फिर एकाएक दृष्टिबाधित व्यक्ति को चुनना, ये कैसे एकदम संभव हो पाया? मतलब आपके लिए बड़ा आसान रहा होगा, लेकिन हम लोग ये जानना जरूर चाहेंगे। मैं
2: नहीं, मुझे मिस्टर रूंटा में कभी दृष्टि बाधिता कभी मतलब अड़चन के रूप में कभी भी फील नहीं हुई। हमेशा उनका मेरा जो उनको देखने का नजरिया था वो हमेशा उनके इंटेलिजेंसिया पर ही जाता था
0: जी।
2: कि वो कितने इंटेलिजेंट हैं, कितने इंटेलेक्चुअल हैं, और मुझे मतलब जो है वही चीज बहुत ज्यादा प्रभावित करती थी, और मेरे को लगता था कि वो कोई भी ऐसा काम नहीं है कि नहीं कर सकते हैं। तो बल्कि मुझे साइटेड लोगों में बहुत सारी कमियां भी नजर आती थी, जो मेरे ठीक है मेरे पेरेंट्स चाहते थे कि मैं किसी बैंक ऑफिसर से शादी कर लूं, या मतलब ठीक है रिश्ते देखते थे, लेकिन जब मैं सोचती थी कंपेयर करती थी तो मुझे मतलब ठीक नहीं लगता था। जो कैपेबिलिटी और जो मिस्टर रूटा में थी वो मुझे किसी और में नजर नहीं आती थी, और दूसरी कुछ फैमिली की सर्कमस्टेंसेस भी ऐसी थी कि मेरे छोटे बहन भाई थे थोड़े, तो मुझे लगता था कि मेरे की फैमिली में जितना साथ मेरे को मिस्टर रूटा दे सकते हैं शायद कोई दूसरा नहीं देगा उतना जिंदगी में।
0: क्योंकि मैम ये प्रश्न दरअसल इसलिए आता है कि आज तो तकनीक ने बहुत सारे काम आसान कर दिए हैं, लगभग सब कुछ ही आसान कर दिया है, लेकिन उस जमाने में ना तो तकनीक थी, केवल जो कुछ था वो अपना अपनी इंटेलेक्चुअलनेस ही सब कुछ थी। तो ऐसे में मतलब निर्णय ले पाना, और उस समय बातें भी बहुत हुआ करती थी, ब्लाइंड और साइटेड के बीच की जो एक खाई है वो भी बहुत ज्यादा बड़ी थी।
2: पर मैंने तो बोला ना कि मुझे प्रभावित ही उनका इंटेलिजेंसिया ही किया।
0: हाँ।
2: तो वही मेरे लिए कभी अड़चन लगती नहीं थी कि उनमें ये कमी है वो कमी है, कभी मुझे किसी चीज की कमी नजर ही नहीं आती थी।
0: क्या बात। तो मैम जैसे सर ने बताया आपका विवाह तो 1984 में हुआ, लेकिन अगर मैं पूछूं कि पहले दिन वो पहली बार कौन सा साल था जब आपने सर को देखा?
2: 82 में मैंने NFB ज्वाइन की थी
0: जी,
2: और NFB में मैं फिर जब इनके साथ मीटिंग्स में जाया करती थी, तो ऐसे शुरुआत में तो ऐसे कुछ नहीं था, ठीक है ही वाज माय बॉस, बट ठीक है जब धीरे धीरे जो है जो उनका व्यक्तित्व जो है वो मुझे धीरे धीरे प्रभावित करता गया, और आगे चल के मुझे लगा कि मतलब जब घर में मेरे शादी वादी की बात चलने लगी तो फिर मुझे लगा कि ये कैन बी अ गुड चॉइस फॉर मी।
0: क्या बात मैम। तो 1982 में आपने पहली बार सर को देखा, और
2: वो तो एज ए ऑफिशियल मतलब एक साल तक तो शायद हम ऑफिस की तरह ऑफिसर ही मैं उनको मानती थी।
0: हाँ, लेकिन एक पर्सन के रूप में, एक ह्यूमन बीइंग के रूप में आपने 1982 में। बहुत खूब। तो मैम परिवार का क्या रिएक्शन था, इमीडिएट रिएक्शन, पहली बार जब आपने ये बताया कि भाई आप इस तरीके से विवाह करने जा रहे हैं? ये बहुत कॉमन क्वेश्चन आपसे पूछा गया होगा मुझे लगता है।
2: परिवार तो देखिए उस टाइम पे जैसी सोच होती है, टाइम पे तो कोई एग्री नहीं कर सकता था इस चीज को कि मैं जो है ब्लाइंड पर्सन से शादी कर लूं, और बहुत रिएक्शन था इसीलिए जो है हमें जो है बिना फैमिली की परमिशन के ही शादी करनी पड़ी।
0: अच्छा, बाद में फिर मैम कितना वक्त लगा परिवार को ये समझने में कि आपने जो निर्णय लिया है वो शायद उनसे भी बेहतर निर्णय लिया है?
2: एक्चुअली मेरी मदर उस टाइम पे काफी बीमार थी, वो तो उनका तो सॉफ्ट कॉर्नर था बहुत ज्यादा, लेकिन मेरे फादर और मेरे फादर के ब्रदर्स वगैरह थे वो सब अगेंस्ट थे बहुत ज्यादा। उनको एक साल तो लगी गया इस चीज को समझने में।
0: अच्छा मैम, फैमिली का तो खैर हम समझ सकते हैं कि क्या रोल रहता है, लेकिन आपके फ्रेंड सर्कल का क्या रिएक्शन था उस समय, फ्रेंड सर्कल की राय क्या थी?
2: नहीं, मेरी जो फ्रेंड्स थी वो बहुत ही सपोर्टिंग थी, हमेशा उन्होंने मुझे सपोर्ट किया। उन्होंने कहा कि अगर तुम किसी को चाहते हो तो उसकी किसी फिजिकल कमी पे नहीं जाना चाहिए, अगर तुम चाहते हो तो ठीक है, आपको वहीं जाना चाहिए जहाँ आपका मन करता है।
0: ऐसे मामलों में मैम
2: दे वर वेरी सपोर्ट।
0: बहुत बढ़िया। ऐसे मामलों में मैम मानसिक रूप से खुद का भी स्ट्रांग होना बहुत जरूरी होता है। कभी आपको ऐसा पल आया कि आपने खुद से ये प्रश्न किया हो कि यार मैं कहीं मतलब लड़खड़ा तो नहीं जाऊंगी, कहीं ऐसा तो नहीं है कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज मेरी बढ़ जाएंगी, ऐसा कभी आपको सोचने का मिला?
2: नहीं, ऐसा मुझे कभी फील नहीं हुआ, बल्कि मैं अगर अवलोकन करती भी थी तो हमेशा मुझे मिस्टर डूटा अपने से बेटर ही नजर आते,
0: ज्यादा स्ट्रांग नजर आए आपको?
2: ज्यादा स्ट्रांग नजर आते।
0: बहुत तो सर ये बताएं सर कि एक तरफ ये सब आंदोलन चल रहे थे, दूसरी तरफ आप विवाह सूत्र में बंध गए।
1: जी,
0: आमतौर पर सर सबके साथ अक्सर ऐसा होता है कि एक्टिविज्म करते करते कहीं ना कहीं परिवार की डोर या परिवार पर थोड़ी पकड़ ढीली होने लगती है। आपने ये सब कैसे मैनेज किया सर? एक तरफ मैम की भी मतलब इच्छाएं रही होंगी परिवार को संभालने की और उनको समय देने की, सबसे बड़ी बात, तो वो सब मैनेज कैसे किया? ये मुझे लगता है गुरु मंत्र होगा आपकी तरफ से सबके लिए।
1: नहीं, मैं तो इसमें मैंने मैनेज नहीं किया
0: जी,
1: मैनेज मैडम ने किया। इन्होंने बहुत क्लियरली अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी फैमिली की ले ली
0: जी,
1: और कभी भी मुझे नहीं लगता कि परिवार के चलाने के मामलों में
0: जी
1: मैंने कोई किसी ऐसे दायित्व का निर्वहन किया हो जिससे मेरे सामाजिक कार्य पर असर पड़ता हो
0: जी।
1: तो ये तो मैंने कहा ना कि जो मैंने इनसे विवाह का जो निर्णय लिया
0: जी जी,
1: उसका आधार यही था कि मुझे इनकी सोशल इंस्टिंक्ट और सोशल स्पिरिट का मूल्यांकन था
0: जी,
1: और उसी मूल्यांकन के आधार पे किया जो सही साबित हुआ
0: जी।
1: तो परिवार को तो संभाला मैडम ने ही
0: जी,
1: बच्चों के लालन पोषण से लेकर
0: जी
1: को पूरी तरह से संभाला उन्होंने, और मुझे कोई पारिवारिक दायित्व के निर्वहन के नाम पर मुझे अपने किसी सामाजिक दायित्व या सामाजिक कार्य या संघर्ष में कहीं पीछे या समय का बंटवारा नहीं करना पड़ा
0: जी जी जी।
1: तो इसके लिए तो पूरा श्रेय मैडम को जाता है।
0: बहुत बड़ी बात कह रहे हैं सर आप, क्योंकि ऐसे में व्यक्ति फ्री हो जाता है अपने साथियों के लिए पूरी ऊर्जा लगाने के लिए।
1: नहीं, कभी भी इन्होंने रोका भी नहीं, ये अपेक्षा भी नहीं की कि भाई पहले परिवार को ही देखो या ये काम करना जरूरी है, और बल्कि हमेशा खुश होती रही। कभी भी जैसे रोजगार के जैसे बात सुनती थी, ये विवाह से पहले भी मैं आपको उदाहरण देना चाहूंगा।
0: जी जी जी, जरूर सर जरूर।
1: विवाह से पहले 1982 में हमने एक फैसला कराया था
0: जी
1: उत्तर प्रदेश सरकार से, विश्वनाथ प्रताप सिंह जी जो उस समय मुख्यमंत्री थे
0: जी जी,
1: आदित्य के बीच नहीं है, तो उनके साथ फैसला करवाया था कि जितने लोग उत्तर प्रदेश में बेरोजगार हैं और रोजगार के लायक हैं उनको एम्प्लॉयमेंट दिया जाएगा, और उसके लिए पूरी योजना मैंने ही बना के दी थी
0: जी,
1: और उसमें नाम तक दिए थे कि कौन कहाँ लग सकता है
0: जी,
1: इस पद पर लग सकता है
0: जी।
1: तो वो लिस्ट एज इट इज पूरी योजना अप्रूव हुई थी
0: जी।
1: अब सवाल ये था कि आप जानते हैं कि हमारी व्यवस्था ऐसी है कि निर्णय होने के बाद भी इम्प्लीमेंटेशन जो नीचे लेवल पे है बहुत डिफिकल्ट काम
0: जी,
1: इतना मुश्किल होता है वो आप जानते हैं
0: जी।
1: तो विवाह से पहले ही जैसा मैडम ने कहा कि मीटिंग्स में जाती थी
0: जी,
1: एक कंक्रीट एग्जांपल है कि भी आगरा में
0: जी
1: पूर्णानंद विश्वविद्यालय, उसमें दो लोगों को जॉब मिलनी थी।
0: अच्छा।
1: और वो लगभग 6 महीने से उस पर कोई काम नहीं। हम आगरा गए, मैडम भी गई थी, और उस दिन भर में एक ही दिन में
0: जी
1: उस फाइल को मूव करा के नियुक्ति पत्र का आदेश हुआ
0: जी।
1: उस समय जो इनकी फीलिंग थी
0: जी
1: उसने मुझे बहुत प्रभावित किया।
0: क्या बात है?
1: वैसे तो उस समय तो कोई ऐसी बात नहीं थी तो कि विवाह होगा नहीं होगा, लेकिन एक एम्प्लॉय की हैसियत से वो गई थी और उसमें मतलब खुशी इनको शाम को ये बात सुनकर हुई। वो इस बात को दर्शाती है कि हमारे संघर्षों और उसके परिणामों से
0: जी
1: वो कितना सरोकार रखती, शुरू से रखती रही।
0: जी जी जी जी जी, क्या बात है। ये दूरदर्शिता आपके अंदर शुरू से ही थी सर, और ये बहुत अच्छी बात होती है अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करने के लिए।
1: आज भी कोई केसेस होते हैं फेडरेशन से संबंधित कोर्ट में
0: जी,
1: या कोई मीटिंग होती है तो तुरंत पूछती हैं
0: जी
1: उसके खत्म होने के बाद
0: जी
1: कि क्या हुआ, ठीक हुआ
0: जी जी,
1: क्या हुआ नहीं हुआ
0: जी। और सर कभी आपको परेशान देखते होंगे मैम, तो उस समय फिर क्या प्रतिक्रिया होती है मैम की?
1: नहीं, वो हमेशा स्ट्रेंथ के रूप में रही है
0: जी,
1: परेशान देखकर भी हमेशा स्ट्रेंथ के रूप में रही। उन्होंने हमेशा यही मुझे बल दिया है इस बात का कि काम इनके लिए अगर आप नहीं करेंगे तो कौन करेगा। इस दृष्टि से मतलब केवल एक जीवन संगिनी के रूप में नहीं
0: जी जी जी जी जी,
1: हमारे सामाजिक कार्यों में और संगठन के कार्यों में
0: जी।
1: आपको बताऊं, ये जब अपना प्रधान कार्यालय बना
0: जी जी जी,
1: इसकी बिल्डिंग, इसका नक्शे से लेकर इसकी सुपरविजन, इसकी ईंट से लेकर लोहे की परचेजिंग
0: जी,
1: हर चीज का खुद,
0: क्या बात,
1: इन्होंने ऑफिस जाते हुए भी
0: जी जी जी,
1: और उन दिनों सुबह जाना
0: जी
1: ऑफिस, पहले वहाँ बिल्डिंग पे फिर ऑफिस जाना, और शाम को वापस आते हुए पहले बिल्डिंग पे आना
0: जी,
1: कंस्ट्रक्शन जो हुआ है उस दिन उसका सुपरविजन करना
0: जी,
1: और फिर घर आना।
0: बहुत
1: खुश। तो आप ये सोचिए कि यही कारण है कि हमने किसी को बिल्डिंग मटेरियल और लेबर का कंबाइन कॉन्ट्रैक्ट नहीं दिया, हमने लेबर कॉन्ट्रैक्ट केवल दिया, वो भी एक अभी जिसने शुरू ही किया होगा
0: जी, जी,
1: अपने अपने काम को
0: जी,
1: उसको ठेका दिया था
0: जी,
1: उससे काम करवा लेना, और इतना अच्छा, कम से कम आज जब कोई कहता है कि ये बिल्डिंग बहुत अच्छी है, किसी भी कॉर्पोरेट से अच्छी है
0: जी,
1: तो मुझे बहुत गर्व होता है इनके इस सहयोग पर।
0: क्या
1: संघ का, अब देखिए
0: जी
1: आप जानते हैं कि संघ में चूंकि जनतांत्रिक है,
0: बिल्कुल सर,
1: राजनीतिक बातें बहुत होती हैं
0: जी,
1: हम इन चीजों को कभी रेखांकित नहीं करते, लेकिन सच्चाई ये है कि प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप में अनकहे बहुत से सहयोग हैं इनके, जो निश्चित रूप से संगठन और समाज को काफी शक्ति हमेशा प्रदान करते हैं, और मेरे कार्य को तो निश्चित रूप से बहुत सबल बनाते हैं।
0: वाह सर, ये संगठन के प्रति आपका जो समर्पण है वो तो सभी जानते हैं, लेकिन मैम का जो समर्पण भाव है कहीं ना कहीं वही संगठन की,
1: हमारे समर्पण को तो आप ये मान के चलिए
0: जी
1: कि हमारा समर्पण तो वर्ग का एक सदस्य होने के नाते जो है है, लेकिन इनका समर्पण होना
0: जी
1: वो मेरे समर्पण से ज्यादा महत्वपूर्ण है।
0: निश्चित रूप से सर, निश्चित रूप से। इतने सारे सर मतलब चूंकि आपका पेशा ही वकालत का है, और आपके केसेस के साथ साथ आपने संगठन और अपने साथियों के लिए जो केसेस इतने सारे लड़े हैं और जीते हैं, ऐसा हुआ सर कभी कि परिवार से इतर उन केसेस पर भी आप दोनों की चर्चाएं होती हूँ आपस में, और कई बार कभी ऐसा भी हुआ हो जब मैम की कोई राय आपके बहुत काम आ गई हो?
1: देखिए लीगल रूप से हर केस पर चर्चा होती है।
0: अच्छा, व्यवहारिक रूप से
1: लीगल पक्ष के लिए तो वो ये कहती हैं कि भाई उस पे तो आप ही सही निर्णय ले सकते हो,
0: आप ही बेहतर हैं जी जी जी,
1: लेकिन व्यवहारिक रूप से वो जरूर अपनी प्रतिक्रिया भी देती हैं। अगर निर्णय, जैसे मान लीजिए हमने किसी केस में, जैसे एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं
0: जी,
1: कि राजस्थान में जो टीचर्स का केस था
0: जी, रीट वाला,
1: रीट का
0: जी,
1: रीट वाला
0: जी सर,
1: जिसमें उनको शिक्षकों की नियुक्ति में कंसेशन पहले मिला हुआ था,
0: बिल्कुल
1: रिलैक्सेशन मार्क्स में
0: जी सर,
1: और बाद में उन्होंने हमारा छीन लिया, बाकी का जारी रखा, तो उसके विरुद्ध जो डाली थी, हर बार मैं जाता था, हर बार जब लगता था कि आज हो जाएगा फैसला
0: जी,
1: और जब नहीं होता था
0: जी,
1: तो इनको भी उतनी ही खींच आती थी जितनी हमको आती थी। क्या न्यायालय की व्यवस्था है, मतलब वो देख के काफी अंदर से शक्ति भी आती थी
0: जी जी।
1: देखिए
0: जी,
1: जो आपने पहले बहुत पहले सवाल पूछा था शुरू में
0: जी जी,
1: मैनेज कैसे किया सामाजिक कार्य और परिवार को के समय के बीच
0: जी सर,
1: वो जो बात मैंने कही थी कि भाई मैंने मैनेज नहीं किया,
0: बिल्कुल
1: ये उसी का परिणाम, उसी का प्रमाण है जो मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ
0: जी।
1: तो मैंने देखा उन दिनों, मतलब हमको तो लगता ही था जो लगता था
0: जी,
1: इनको भी ऐसे केसेस में लगता है। अभी खाद्य सुरक्षा का जब हुआ था केस,
0: बिल्कुल सर,
1: तो मैं समझ सकता था कि जब

0: वो ऑर्डर हुआ तो कितनी खुशी इनको,
1: कितनी खुशी। जी जी जी जी
0: हाँ, सबके लिए, कम से कम जिनके पास खाने की सुरक्षा नहीं है वो तुम आपने दिलवा दी।
1: जी
0: मतलब वो खुशी, जो जीवन संगीनी हो जाना एक अलग इशू है, परिवार चला लेना एक अलग इशू है
1: जी,
0: लेकिन आपकी जो मिशन है उसके साथ उसके खुशी और गम दोनों को शेयर करना, ये ज्यादा एडेड इनकी व्यक्तित्व का मैं कहूंगा कि हिस्सा है।
1: क्या बात है सर, बहुत खूब सर। आमतौर पर सर घरों में छोटी छोटी बातों को लेकर के विवाद हो जाते हैं।
0: नहीं, हमारे यहाँ कोई विवाद नहीं।
1: आपका जीवन इतना समर्पित रहा है इस सबके पीछे,
0: जबकि विवाद की गुंजाइश आप जैसा कह रहे हैं बहुत थी।
1: जी जी,
0: क्योंकि अधिकतर समय हमारा संघ को ही और समाज को ही गया है।
1: जी,
0: इसमें मुझे मानने में कोई हिचक नहीं है।
1: जी,
0: और किसी भी गृहिणी को इस पर कम से कम रोष तो हो ही सकता है।
1: जी जी जी,
0: लेकिन वो रोष भी व्यक्त नहीं कभी हुआ।
1: जी,
0: आप देखते हैं जब, अब तो खैर परिस्थितियां ऐसी नहीं है।
1: जी,
0: पहले जब परिस्थितियां सामान्य थी तब महीने में कम से कम 2-3 बार बाहर जाना भी पड़ता था।
1: जी जी, जी।
0: लेकिन उसके बावजूद, उन 2-3 बार बाहर जाने के बावजूद भी
1: जी
0: कभी ऐसा नहीं लगा उनको कि दिक्कत कोई है। तो उस दृष्टि से मैं मानता हूँ कि ये निर्णय भी सही था।
1: जी,
0: और इस जीवन यात्रा में एक सही साथी मिला,
1: एक मजबूत आधार स्तंभ आपकी इस पूरी यात्रा में।
0: बिल्कुल,
1: क्या बात है सर, बहुत खूब सर। लेकिन इंसान कभी कभी परेशान हो जाता है सर, अपने जो दिक्कतें आती हैं या प्रशासन से या समाज से जो कुछ सुनने को मिलता है, समझने को मिलता है, तो उस समय आपके तनाव को किस प्रकार मैम ने कम करने में अपना योगदान दिया, मदद की आपकी, कोई ऐसी बात आपको जो बहुत ही प्रभावित कर गई हो कि हाँ यार ये तो मैं गलत ही सोच रहा था?
0: नहीं, मुझे देखो संदीप, ऐसा कोई वाकया, एक्चुअली मेरा काम करने की शैली, मेरे काम की शैली बहुत डिफरेंट है। मैं किसी चीज को तनाव में नहीं लेता।
1: क्या बात है, वाह बहुत खूब सर।
0: किसी भी चीज को तनाव के रूप में कभी नहीं लेता।
1: जी जी जी।
0: और अगर कोई समस्या है तो समस्या को चुनौती के रूप में लेता हूँ, न कि तनाव, इसलिए ऐसी स्थिति आती नहीं।
1: जी,
0: जनरली
1: जी।
0: और इसलिए ऐसा कोई इंस्टांस याद नहीं आता जब ऐसी आवश्यकता मान पड़ी हो।
1: जी जी। तो सर एक प्रश्न जो बहुत देर से मेरे मन में चल रहा है, मैं वो पूछना चाह रहा हूँ आपसे कि
0: बिल्कुल पूछिए।
1: आपने साथियों को रोजगार दिलवाने के लिए, उनको एकेडमिक क्वालिफिकेशंस में उनको मदद मिले इंस्टीट्यूशन से, और इसके अलावा भी वो उनका सामाजिक विकास हो, इसके लिए आपने पूरी जिंदगी लगा दी अपनी। लेकिन हर एक इंसान की सर एक आवश्यकता होती है, अपना परिवार बसाना, अपने जीवन साथी की तलाश करना, क्योंकि आजकल सर इतना आपने और संगठन ने काम कर दिया है कि जॉब में इतनी दिक्कत आजकल आती नहीं है, आती तो है फिर भी लेकिन इतनी नहीं आती है। लेकिन आपको नहीं लगता अभी कि सामाजिक सर्वांगीण विकास के लिए व्यक्ति के परिवार के साथ उसका सामंजस्य और समाज में, उसके लिए व्यक्ति को खुद क्या पहल करनी चाहिए, और आप अपने स्तर पर कहां देखते हैं कि कहीं कोई कमी रही है क्या इसमें?
0: देखिए, जो सामाजिक विकास की प्रक्रिया है, और मैं अगर कहूं कि फुल इंटीग्रेशन की जो प्रक्रिया है,
1: जी,
0: क्योंकि जो समस्याएं, जिस समस्या की ओर आप इशारा कर रहे हैं,
1: जी जी जी,
0: उसका रूट कॉज, उसकी जड़ में क्या है, उसकी जड़ में एक्सक्लूजन, जो नकारात्मक दृष्टिकोण के कारण एक्सक्लूजन हुआ हमारा, एक विभाजक रेखा खिंची
1: जी
0: दान दाता
1: जी,
0: और दान लेने वाले के बीच।
1: बिल्कुल बिल्कुल,
0: समाज में ये एक विभाजक रेखा हमारे और समाज के वर्ग के बीच रही। तो अब आप उसको तोड़ने के लिए, उस विभाजक रेखा को मिटाने के लिए
1: जी,
0: हमारे संघर्ष का उद्देश्य क्या है? हमारे संघर्ष का उद्देश्य समानता की ओर आगे बढ़ना
1: जी,
0: हमारे संघर्ष का उद्देश्य अवसरों के माध्यम से, क्षमता प्रदर्शन के माध्यम से नकारात्मक दृष्टिकोण को परिवर्तित करना है
1: जी।
0: ये प्रोसेस बहुत लंबा है, बहुत लंबा है
1: जी जी जी जी जी।
0: ये प्रोसेस एक व्यक्ति या कुछ व्यक्तियों के जीवन काल का नहीं है
1: जी,
0: ये अनवरत चलने वाला प्रोसेस है।
1: बिल्कुल सर।
0: अगर हम तुलना करें कि जो लोग आज आत्मनिर्भर हो गए, क्योंकि मैं ये मानता हूँ
1: जी
0: कि किसी भी समानता के लिए सबसे पहले आर्थिक आत्मनिर्भरता आवश्यक है, उसके बिना समानता की बात
1: नहीं,
0: बेमानी है, वो होगा नहीं,
1: होगा नहीं। बिल्कुल
0: आप बोलते रहिए
1: जी,
0: कॉन्स्टिट्यूशन में लिख दीजिए कोई फर्क नहीं पड़ता, कानून में लिख दीजिए कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अगर हम ऐसे लोगों की तुलना करें और आपस में तुलना करें जिनको रोजगार मिल गया, आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर हो गए
1: जी,
0: तो कुछ आपको ऐसे मिलेंगे जिन्होंने हो सकता है मुझसे भी ज्यादा अच्छा अपना समायोजन किया हो
1: जी,
0: सामाजिक रूप से, पारिवारिक रूप से
1: जी, जी, जी।
0: कुछ ऐसे भी मिलेंगे जिन्होंने उस अवसर का लाभ उठाए, कुछ ऐसे भी मिलेंगे आपको।
1: बिल्कुल निश्चित रूप से सर।
0: और वो क्यों मिलेंगे
1: जी,
0: और क्यों हो रहा है ऐसा
1: जी,
0: उनकी गलती नहीं, उनका जो पारिवारिक परिवेश है, उनका परिवार ही बहुत पीछे नीचे पायदान में खड़ा। तो ऐसे लोगों का ज्यादातर समय
1: जी,
0: क्योंकि ये बात भी सच है
1: जी,
0: कि अगर दृष्टि बाधित व्यक्ति जब तक आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर नहीं होता तब तक परिवार उसको बोझ समझता है
1: जी,
0: और जिस दिन वो आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर हो जाता है उस दिन से वो अपना अधिकार समझता है
1: जी, जी,
0: उससे सहयोग
1: जी।
0: ये एक बहुत बड़ी डाइकोटमी है जो मैंने एक्सपीरियंस किया,
1: निश्चित रूप से
0: मैंने स्वयं देखा है अपने जीवन में
1: जी,
0: मैं दूर नहीं जाता
1: जी,
0: कि जो हमारे रिश्तेदार भाई जब हम दिल्ली आ गए पूरी तरह से सेटल नहीं हुए अपनी लाइफ में, तब तक वो हमारे फोन का भी शायद जवाब ना देते थे
1: जी,
0: लेकिन आज उनका खुद का फोन आता है। ये अंतर है।
1: बिल्कुल सर,
0: यही आर्थिक शक्ति है
1: जी।
0: तो वो जिन लोगों का समायोजन नहीं हो पाया अभी उस तरह से पारिवारिक जीवन में,
1: बिल्कुल,
0: या अच्छा समायोजन नहीं हो पाया
1: जी, जी, जी,
0: उसका कारण मैं ये समझता हूँ कि उनका अधिकतर शक्ति उनकी अपने माता पिता जो पहले ही गरीबी से जूझ रहे थे उनको संभालने में, उनको सपोर्ट देने में
1: जी, जी,
0: जो अच्छी बात है। मैं तो कहता हूँ
1: जी
0: कि हम केवल अधिकारियों की बात ना करें, दायित्वों की बात,
1: दायित्वों की बात करें, बिल्कुल सर,
0: लेकिन साथ साथ
1: जी
0: ऐसे लोगों से के लिए मेरा संदेश यही रहेगा कि आप दायित्वों का निर्वहन करते हुए
1: जी
0: अपने परिवार अपने परिवेश को भी सुधारते रहें
1: जी, जी, जी, जी, जी, जी,
0: उसमें भी अपना कुछ हिस्सा उसमें भी लगाएं, अपने एनर्जी का, संसाधनों का। ये कहने का अभिप्राय नहीं है कि माता पिता के प्रति अपने दायित्वों का निर्वहन ना करें
1: जी,
0: हाँ ये जरूर कहूंगा
1: जी
0: कि भाई बहनों ने अगर आपका पहले ध्यान नहीं रखा तो उनके लिए जब तक आपका आर्थिक समायोजन नहीं हुआ था उनके लिए अपना जीवन व्यर्थ ना करें
1: जी,
0: उनको सहयोग अपने संसाधनों का इस्तेमाल उनके लिए ना करें
1: जी,
0: ये तो मैं बिल्कुल बहुत दृढ़ता से कहना चाहूँ।
1: लेकिन चूंकि आर्थिक सशक्तिकरण हुआ है तो अब आपका ये जो मानना है बिल्कुल ठीक है सर कि व्यक्ति को खुद इस पर इसके लिए प्रयास करना,
0: खुद इस पर करना चाहिए और खुद सही निर्णय लेने चाहिए।
1: और कहीं ना कहीं सर आप ये भी मानते हैं कि व्यक्ति चाहे तो अपने आप को इतना सशक्त वो बना सकता है जॉब लगने के बाद।
0: बिल्कुल बना सकता है, क्यों नहीं बना सकता
1: जी। मैम हमारे सभी जो साथी हैं समाज के वो ये जानना जरूर चाहेंगे कि सर की आज उम्र के इस पड़ाव पर इतनी ऊर्जा का राज क्या है।
2: उनकी ऊर्जा का राज उनकी डिटर्मिनेशन है।
1: वाह मैम, कभी ऐसा होता है कि आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं आपको लगता है कि भाई इतना बड़ा देश है, इतने सारे संगठन है, इतने सारे लोग हैं इंडिविजुअली भी काम कर रहे हैं, कभी आपने कहा हो सर को कि देखिए ये व्यक्ति अच्छा काम कर रहा है, मतलब इसने बहुत अच्छा किया है, कभी ऐसा हुआ मैम?
2: हाँ, अगर कोई काम अच्छा करता है तो मुझे भी खुशी होती है, ऐसा ही नहीं है। और मैं ये भी सोचती हूँ कि ठीक है मिस्टर रूंगटा आज 67 इयर्स के हो गए, और कितना 10 साल और काम कर लेंगे मैक्सिमम अगर ईश्वर ने इतनी लाइफ दी तो।
1: हाँ
2: ठीक है, 5-7 साल और काम कर लेंगे उसके बाद। मैं इनको बार बार कहती हूँ कि आपको एक एक टीम तैयार करनी चाहिए जो कि आपको टेक ओवर करे और इस इंस्टीट्यूशन को ऐसे ही चलाए जैसे कि आज चल रहा है, उसी इसकी मुझे बहुत चिंता होती है क्योंकि बिकॉज मैंने इसको एक छोटा सा बीज बोया था उसके बाद एक छोटा पौधा देखा था और पौधे बढ़ते बढ़ते एक वटवृक्ष की तरह से मैं इसको देखती हूँ जो कि अपनी बाहें फैला करके सबको छाया दे रहा है। लेकिन ये ऐसे ही चलना चाहिए, इसकी जड़े कमजोर नहीं होनी चाहिए। इसको मतलब एनएफबी को थोड़ी सी भी अगर सोच लीजिए सशक्तिकरण नहीं होता, मतलब थोड़ा सा भी अगर इसकी कोई चीज कमजोर हो जाती है या वो काम नहीं कर पाती किसी कारण से तो उसका मुझे बहुत दुख होता है,
1: निश्चित रूप।
2: लेकिन हाँ यस, और होगा तो इसलिए मैं चाहती क्योंकि एक अच्छी टीम बनाएं जो कि आगे लोग आए अच्छे और जो है टेक ओवर करके आगे इसी तरह से काम करते रहें।
1: क्या बात,
2: जैसे मिस्टर रूंगटा ने किया,
1: बहुत बहुत खूब। लेकिन मैम सच्चाई ये है कि हालांकि आप जो कह रहे हैं वो भी सच्चाई है, लेकिन सच्चाई

0: लग रहा है कि नहीं, टीम तैयार करने में थोड़ा सा वक्त अभी और लगेगा?
1: देखो, टीम तैयार करना एक सतत प्रक्रिया है। मैं ये कह सकता हूँ कि ये प्रक्रिया ठीक तरीके से चल रही है।
0: बहुत खूब जी।
1: और मैं ये भी कह सकता हूँ कि जो जनतांत्रिक प्रणाली में
0: जी,
1: जिसको मैंने संजोया है
0: जी जी जी,
1: बड़े तूफान आए इस जनतांत्रिक प्रणाली को, चुनौतियां दी, संगठन और संगठन के अस्तित्व पर कई बार प्रश्न चिन्ह लगाने का प्रयास भी हुआ
0: जी जी जी।
1: लेकिन मुझे लगता है कि ये जो टीम बनाने का जो प्रयास था और है
0: जी,
1: उसी टीम ने
0: जी
1: इस झंझावात को मेरे साथ मिलकर खड़े होकर सहा है
0: जी जी जी,
1: और उसको झंझावात को नेस्त नाबूद किया है
0: जी जी।
1: वही इस बात का प्रतीक है कि प्रक्रिया सही दिशा में
0: जी
1: चल रही है
0: जी।
1: अब आप देखिए, मेरा जो प्रयास है
0: जी,
1: वो नेशनल स्तर से लेकर
0: जी
1: राज्यों के स्तर तक,
0: बिल्कुल सर,
1: युवाओं को अधिक से अधिक भागीदारी देना है,
0: बिल्कुल सर,
1: महिलाओं को अधिक से अधिक भाग देना है,
0: बिल्कुल सर,
1: क्योंकि मैं ये मानता हूँ
0: जी
1: कि जो युवा और महिला अगर मिलकर
0: जी
1: संगठन को चलाएंगे
0: जी,
1: तो निश्चित रूप से आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, वही मजबूती मिलेगी जो मजबूती आज है, हो सकता है इससे ज्यादा मिले और सस्टेनेबिलिटी और ज्यादा हो
0: जी।
1: क्योंकि मेरा जो इस समय प्रयास चल रहा है वो हर स्तर पर
0: जी
1: एक कलेक्टिव लीडरशिप का प्रयास चल रहा है
0: जी जी,
1: एक कार्य विभाजन कर हरेक को अपनी जिम्मेदारी देकर, बिना हस्तक्षेप किए उस जिम्मेदारी का निर्वहन करने का अवसर देकर
0: जी,
1: अभी अपनी देखरेख में उनमें एक कॉन्फिडेंस पैदा करने का प्रयास चल रहा है। जैसा आपने देखा
0: जी,
1: आप तो काफी निकटता से जुड़े हुए हैं संगठन से
0: जी जी जी।
1: अब राजस्थान के स्तर पे आप देखिए जैसे, या इसी तरह कोई भी राज्य।
0: मेरा प्रश्न था सर आगे वो भी कि केंद्र में आपके नेतृत्व में इतना सुदृढ़ तरीके से काम हो रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं आज के एक विद्यार्थी को, एक युवा को जो नया नया संगठन से जुड़ा है और वो किसी राज्य के दूर दराज के किसी कोने में है, कहीं उसके मन में शायद ये आता होगा सर कि राज्य की शाखाओं में उतना प्रबल, उतना सशक्त तरीके से काम शायद नहीं हो रहा है जितना आपने उम्मीद की है।
1: जी आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन उसका कारण अगर हम ढूंढे
0: जी,
1: तो कारण कहीं ना कहीं ये है कि जो केंद्रीय स्तर पर युवा भागीदारी बढ़ाई गई वो अभी राज्यों के स्तर पर परकुलेट नहीं हुई, और राज्यों के स्तर पर अभी हमारे कार्यकारिणी के पदाधिकारियों ने और जिम्मेदार पदाधिकारियों ने विशेष रूप से
0: जी
1: युवाओं को वो फ्रीडम नहीं दी है,
0: बिल्कुल सर,
1: और मेरा प्रयास यही है
0: जी
1: कि वो फ्रीडम मिले,
0: मिले वही सर
1: जी, और वो फ्रीडम मिलकर उनको गलती करने दीजिए आप
0: जी जी जी जी जी,
1: गलती करने दीजिए, हम बैठे हैं
0: बिल्कुल
1: गलती को ठीक करने के लिए
0: जी,
1: हम बैठे हैं,
0: मॉनिटरिंग पूरी रखनी है, उन्हें अवसर भी पूरा देना है,
1: अवसर पूरा देना है
0: जी,
1: इंटरफेयर नहीं, हर दो मिनट में ये नहीं पूछना है
0: जी
1: कि तुम्हारा, अगर आपको जिम्मेदारी दे दी एक हॉस्टल चलाने की
0: जी,
1: तो मैं नहीं पूछूंगा कि भाई कैसे चल रहा है, क्यों नहीं चल रहा है, मेरे पास कोई बात आएगी तब पूछूंगा कि ये क्या हुआ कि नहीं हुआ, क्या दिक्कत आ रही है वगैरह,
0: वही बातें हैं सर दरअसल ये एक किसी भी
1: वो हमको, जब तक हम वो नहीं देंगे लिबर्टी
0: जी जी।
1: अब मैंने तो अपने स्तर पर अब राष्ट्रीय कार्यालय ने तो लिबर्टी दे रखी राज्यों को
0: जी,
1: अब जैसे आपके यहाँ हॉस्टल की स्कीम है
0: जी,
1: हमने तो लिबर्टी दे रखी है
0: जी,
1: अब वो ठीक से चलाना न चलाना
0: जी
1: वो राज्य के पदाधिकारियों का काम है, ठीक है
0: जी जी जी।
1: और इस दिशा में हमको ये चाहिए और ये हमको कुछ आमूलचूल परिवर्तन करने होंगे, लेकिन आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, राज्यों के स्तर पर ये प्रक्रिया अभी प्रारंभ नहीं हुई है
0: जी जी,
1: सफल की तो बात दूर है,
0: दूर है बिल्कुल सर,
1: इसको प्रारंभ करना होगा
0: निश्चित रूप से सर, क्योंकि चाहे राज्य हो चाहे केंद्र हो, हर एक दृष्टिबाधित व्यक्ति अपने संगठन के प्रति एक आशा की किरण से देखता है ना सर,
1: निश्चित रूप से। आज महामारी में देखिए
0: जी,
1: कोई और संगठन दिख रहा है, अगर महाराष्ट्र के दूर के इलाके से भी मैसेज आता है तो यहीं से आता है, एनएफबी इंडिया पे फॉरवर्ड होके आता है
0: जी,
1: वो निवेदन करता है किसी ना किसी से कि इसको फॉरवर्ड कर दो, सर तक पहुंचा दो
0: जी,
1: कि मैं इस परेशानी में हूँ, तो ये सब मैसेजेस आपको बता रहे हैं, हम सबको बता रहे हैं
0: जी
1: कि आपका दायित्व कितना बड़ा है
0: जी,
1: और आपसे कितनी संवेदना की अपेक्षा है
0: जी। इसमें वही बात जुड़ जाती है सर कि जैसे अब जयपुर में भी बात करनी है अगर एग्जेम्पशन को लेके, तो

0: कर रहे हैं या पंजाब में भी करनी है तो आप कर रहे हैं।
1: वही आपने आपने देख पिछले दिनों लगातार
0: जी
1: मैं अपने मैसेज में कहता भी रहा है अप्रत्यक्ष रूप से
0: जी जी जी
1: कि थोड़ा आप लोग सहयोग करेंगे तो लोकल,
0: जबकि स्टेट लीडरशिप की तरफ से ये मतलब काम हो जाने चाहिए, आप तक तो इन्फॉर्मेशन आ जानी चाहिए कि सर हो गया।
1: वही लेकिन अबे उल्टी गंगा बह रही है, हमें बताना पड़ता है कि अब इस राज्य में आ गया, ये डाल दिया मैंने, ये कर दिया, वो कर दिया।
0: वही सर, वही वही वही सर,
1: तो एक्टिव तो होना पड़ेगा। देखिए
0: होना पड़ेगा निश्चित रूप से सर,
1: और उसमें कहीं ना कहीं हमारे सदस्यों को भी जागरूक होना। देखिए जहाँ जनतांत्रिक व्यवस्था है
0: जी,
1: तो सदस्यों को थोड़ा मित्रता, अपना पराया ये भूल कर
0: जी
1: निर्णय लेने होंगे अपने कार्यकारिणी के गठन के समय।
0: जी हाँ, जी हाँ,
1: संगठन के हित में
0: जी
1: डिस्पैशनेटली निर्णय लेने होंगे
0: जी।
1: मान लीजिए मैं ही काम ना करूं,
0: बिल्कुल सर,
1: फिर भी आप अपना समझ के हमको वोट दें तो आप गलत कर रहे हैं, संगठन के प्रति गलत।
0: जी जी जी जी जी, ठीक कह रहे हैं सर। मैम
2: yes.
0: हमारा कार्यक्रम वैसे वैवाहिक जीवन की चुनौतियों और उसको लेकर के होता है, लेकिन श्रोता सोच रहे होंगे ये संगठनात्मक, लेकिन श्रोताओं ये संगठन भी एक परिवार है और संगठन के मुखिया भी संगठन के साथियों के लिए हमराही की तरह ही होते हैं, इसीलिए ये सब चर्चाएं, और सर का कार्य क्षेत्र इतना बड़ा है ये सब चर्चाएं करना बहुत जरूरी है। मैम कभी ऐसा कुछ हुआ हो कि आपने किसी कार्य के लिए सर को रोका हो और बाद में आपका कहना ही सही निकला हो, ऐसा कभी हुआ है?
2: मुझे ऐसा कुछ याद तो नहीं आ रहा कि मैंने कभी किसी काम के लिए रोका हो।
0: जी एक मैम मतलब महिलाओं के लिए ये बड़ी एक बात होती है कि लुक्स को लेकर के वो बहुत ज्यादा कंसर्न होती हैं। आपने भी तो कई बार सर को रोका टोका होगा इन मामलों में, या कभी ऐसी जरूरत ही नहीं पड़ी?
2: नहीं, जो भी देखिए वो अपने अपनी चॉइस से तो कपड़े लाते नहीं है, मैं अपनी चॉइस के ही कपड़े लाती हूँ तो जब भी पहनाती हूँ तो अच्छे ही लगते हैं हमेशा।
0: नहीं कभी ऐसा हुआ कि आपने कहा और सर ने मना कर दिया और नहीं नहीं यार रहने दो ये रहने?
2: नहीं नहीं ऐसा कभी नहीं, क्योंकि वो तो कहते हैं जो तुम बना रही हो तो अच्छा ही बना रही होगी और दूसरे लोग भी अप्रिशिएट करते हैं, ऐसा नहीं है।
0: सर कुछ कहना चाह रहे थे शायद?
1: नहीं नहीं मैं कह रहा हूँ ये अब आपको समझ आ गई ना, सामंजस्य की बात।
0: सामंजस्य की बात, बिल्कुल बिल्कुल। बड़ा सर जबरदस्त आज का कार्यक्रम रहा और बात करते करते वक्त कब निकल गया पता ही नहीं चला, लेकिन सर बातें बहुत है अभी भी, जो काम किया है संगठन की तरफ से आपने, पूरे संगठन ने, संगठन के प्रत्येक व्यक्ति ने वो भी, और समस्याओं पर भी, प्रशासन के रवैये पर भी, तो लगता है कि एक कार्यक्रम और होना चाहिए आपके साथ, अगला भाग भी इसका होना चाहिए अगर आप अनुमति देते हैं तो। तो रेडियो मधुबन और हमारे पूरे दृष्टिबाधित समाज की ओर से इन पंक्तियों के साथ कि जैसा कि आपका जीवन रहा है, अभी तक का जो कार्य क्षेत्र रहा है कि नेक ने तो नेक समझा, बद ने बद जाना मुझे, अपने अपने आईने में सबने पहचाना मुझे, आपको सर जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं पूरे समाज की ओर से, हमारे परिवार की ओर से। और मैम आप भी अगर इस मंच पर सर को अपनी ओर से जन्मदिन विश करें तो बड़ा अच्छा लगेगा। मैम
2: मुझे तो अभी तक इससे बड़ी शिकायत रहती थी कि आप लोगों के साथ ही जन्मदिन मना रहे थे, नहीं तो कभी कभी कानपुर में तो कभी कहीं कभी कहीं डिफरेंट स्टेट्स में ही जन्मदिन मनाया जा रहा था पिछले कई सालों से। तो
0: बिल्कुल निश्चित रूप से पिछले लगभग 10-12 सालों से ऐसा ही हो रहा था। जी
2: बिल्कुल,
0: आप अपने तरीके से विश कीजिए मैम सर को। कुछ आप ऐसी बात जो शायद कहना चाहते हो जो
2: मैं तो यही चाहूंगी कि ईश्वर इनको बहुत लंबी उम्र दे और इतना स्टैमिना दे, हमेशा स्टैमिना रहे कि संघ के लिए हमेशा काम करते रहे अंतिम सांस तक। मैं तो यही चाहूंगी, यही विश करती हूँ।
0: वाह मैम, और आज इस मौके पर मैम जो महिलाएं आपको सुन रही हैं और खासकर दिव्यांग साथियों से जुड़ी हुई हैं और परिवार में कुछ इसी वजह से गड़बड़ चलती है कि भाई ये मत कीजिए वो मत कीजिए, क्या सलाह देंगी, क्या संदेश देना चाहेंगे आप?
2: मत कीजिए तो कभी नहीं कहती, मत खाइए जरूर कहती हूँ।
0: नहीं जो आपको सुन रहे हैं उन्हें क्या संदेश देंगे मैम?
2: अपनी प्यारी बहनों और बच्चियों के लिए तो मेरा यही संदेश है कि भाई ठीक है घर में जो है, मतलब जो हमें परिवार जो चलाना होता है ना उसकी सारी जिम्मेदारी जो है एक नारी की होती है। मेल्स को थोड़ा फ्री रखना चाहिए जिससे कि वो भी वो जो है जो वो चाहते हैं वो करें और घर की हमें जिम्मेदारी पूरी लेकर चलनी चाहिए।
0: बहुत गुड। और सर आप अपने सभी साथियों को आज इस मंच पर आपके इस जन्मदिन की पूर्व संध्या पर एक तरह से क्या संदेश देना चाहेंगे?
1: मैं तो यही संदेश देना चाहूंगा कि हम सब अपने अंदर छिपी हुई क्षमताओं को पहचानें
0: जी,
1: और जो हमको समाज में अवसर मिले हैं
0: जी,
1: उन अवसरों का लाभ उठाते हुए
0: जी,
1: परिवार और समाज के प्रति अपने दायित्वों का
0: जी,
1: उसी तरह से समानता से निर्वहन करें जिस तरह से समानता के अधिकार की रक्षा की अपेक्षा हम रखते हैं
0: जी जी।
1: और मैं ये भी कहना चाहूंगा सभी साथियों को
0: जी,
1: जो लोग सुन रहे हैं
0: जी,
1: कि आप भी निरंतर मेरे साथ साथ हर साल
0: जी,
1: अपना जन्मदिन खुशियों और किसी नए निश्चय के साथ
0: जी,
1: हमेशा खुशी से मनाएं परिवार के साथ और समाज के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद
0: जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो श्रोताओं, आज का ये प्रोग्राम सर के साथ कैसा लगा आप अपनी प्रतिक्रियाएं जरूर दीजिएगा और रेडियो मधुबन सुनते रहिएगा। कॉल करें 94-14-15-14-15 पर।
3: तो श्रोताओं, आप सब तो जानते ही हैं हम राही कार्यक्रम रिकॉर्डिंग क्लब और रेडियो मधुबन के साझा प्रयासों से आप सब तक पहुंचाया जाता है। आज का यह कार्यक्रम अगर आपको पसंद आया हो, आप इसका अगला भाग भी सुनना चाहते हो, तो फिर मैसेजेस जरूर कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा। आपके मैसेजेस और कमेंट्स का हमें इंतजार रहेगा, आपके कॉल्स का हमें इंतजार रहेगा। तो चलिए श्रोताओं, आज का कार्यक्रम अब यहीं पर समाप्त करने की इजाजत दीजिए। रेडियो मधुबन का ऐप आप इंस्टॉल कर लीजिए, एंड्रॉइड प्ले स्टोर पर जाकर के, रेडियो मधुबन के ही नाम से है। अगर आप ईमेल करना चाहें तो info@radiomadhuban.in, और कॉल के लिए तो नंबर मैं दे ही चुका हूं, एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं, 94-14-15-14-15 पर। नमस्कार।

नमस्ते मित्रों, मैं हूं कवयित्री डॉक्टर कविता किरण और आप सुन रहे हैं ब्रह्मा कुमारीज का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन 107.8 FM। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

ओम शांति, मैं हूं ब्रह्मा कुमारी प्रेमलता और आप सुन रहे हैं ब्रह्मा कुमारीज का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन 107.8 FM। सुनते रहो मुस्कुरा।

ओम शांति। मैं हूं गायक कलाकार राम शंकर और आप लोग सुन रहे हैं रेडियो मधुबन। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

0: पीछे पीछे पीछे चल। स्टॉप लाइन के आगे कहाँ जा रहा है? लाल बत्ती दिखाई नहीं देती।
1: पर हवलदार साहब, जरा जल्दी निकलने के मूड में हूँ।
0: वो तो ठीक है, पर दूसरी तरफ हरी बत्ती है और उन लोगों का रुकने का मूड नहीं है। तो जब भी लाल बत्ती हो तेरी तरफ तो बोलो पहले आप।
2: गाड़ी चलाते वक्त पहले आप का रूल अपनाइए और अपने शहर का ट्रैफिक स्मूथ बनाइए। ब्रह्मा कुमारीज के सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी।

नमस्ते, ओम शांति। मैं हूं हरीश मोयाल और आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए। आप सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं।

मैं हूं सुमन, साउथ इंडिया का एक्टर, और आप सुन रहे हैं ब्रह्म कुमारी जी का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

0: मम्मी मम्मी।
1: हाँ बेटा।
0: आज जब मैं स्कूल से आया तो मैंने पता क्या देखा कि एक बच्चा चाय बांट रहा है। वह फिसल गया और उसके हाथ से चाय का ग्लास गिर गया। उसे बहुत डांट पड़ी। मम्मी मैं सोच रहा हूँ कि हमारे घर के बाजू में जो शंभू है वह भी तो काम करता है, उसे भी तो ऐसी ही डांट पड़ती होगी। क्यों ना हम उसे पढ़ाएं।

ओम शांति। आज 20 अगस्त 2026 के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य सुनेंगे। आज की मुरली से पहले गीत बजा है, इस पाप की दुनिया से दूर कहीं ले चल जहां सुख चैन हो। तो बाबा कहते हैं कि ये दुनिया बेचैनी वाली है, यहां सुख चैन नहीं है, इसलिए पुकारते हैं इस पाप की दुनिया से दूर कहीं ले चल। मनुष्य आत्माएं जितना पाप कर्म करती जाती है उतनी ही बेचैनी उनके अंदर बढ़ती जाती है। तो बाप आए हैं तुम बच्चों के लिए दो सौगात लेकर के, सुख और चैन। चैन माना शांति। सुख और शांति की दुनिया है स्वर्ग। बाप हम बच्चों को उस दुनिया में ले चलते हैं, लेकिन उसके लिए दो बातें जरूरी है। पहली बात, पवित्र जरूर बनना पड़े, तभी सुख चैन प्राप्त कर सकेंगे। और दूसरी बात, एक बाप की याद में रहना है। बाबा कहते हैं तुम हो सच्ची सच्ची नंस, जो एक बाप के सिवाय और किसी की याद में नहीं रहती हो। वैसे क्रिश्चियन धर्म में भी वह अपने को नंस कहती है, लेकिन उनकी बुद्धि में एक तरफ गॉड की याद रहती है तो दूसरी ओर क्राइस्ट की याद भी रहती है, क्योंकि क्राइस्ट ने तो कहा मैं गॉड का बच्चा हूं। तो वो गॉड कौन? तो इसीलिए दो की याद रहती है, लेकिन तुम बच्चे बाप को यथार्थ रीति जानते हो, इसीलिए नन बट वन। तभी कहा सिर्फ एक बुद्धि में है और कोई नहीं, मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। तो सुनते हैं आज के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य। ओम शांति। मीठे बच्चे, बाप आए हैं तुम्हें इस पाप की दुनिया से निकाल चैन की दुनिया में ले जाने। बाप द्वारा तुम्हें सुख शांति की दो सौगातें मिलती है। आज की मुरली से प्रश्न है, सारी दुनिया में सच्ची सच्ची नंस तुम हो, सच्ची नंस किसे कहेंगे? उत्तर, सच्ची नंस वह जिनकी बुद्धि में एक की याद हो, अर्थात नन बट वन, एक के सिवाय और कोई नहीं। वे अपने को भल नंस कहलाती है, लेकिन उनकी बुद्धि में सिर्फ एक क्राइस्ट की याद नहीं है। क्राइस्ट को भी गॉड का बच्चा कहेंगे, तो उनकी बुद्धि में दो है, क्राइस्ट भी है गॉड भी है, और तुम्हारी बुद्धि में एक बाप है, इसलिए तुम सच्ची सच्ची नंस हो। तुम्हें बाप का फरमान है पवित्र रहना है। आज की मुरली से पहले गीत बजा है, इस पाप की दुनिया से दूर कहीं ले चलो। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने गीत सुना, किसने सुना? आत्माओं ने। आत्मा को परमात्मा नहीं कहा जा सकता, मनुष्य को भगवान नहीं कह सकते। अच्छा, अभी तुम हो ब्राह्मण, तुमको अभी देवता नहीं कहा जा सकता, ब्रह्मा को भी देवता नहीं कहा जा सकता। बल कहते हैं दुनिया में, बल कहते हैं ब्रह्मा देवताएं नमः, विष्णु देवताएं नमः, परंतु ब्रह्मा और विष्णु में तो बहुत फर्क है। विष्णु को देवता कहा जाता है, ब्रह्मा को देवता नहीं कह सकते। क्यों? वो प्रजापिता है, क्योंकि वह है ब्राह्मणों का बाप। ब्राह्मणों को देवता नहीं कहा जा सकता। अब यह बातें कोई मनुष्य मनुष्य को नहीं समझा सकते, भगवान ही समझाते हैं। मनुष्य तो अंधश्रद्धा में जो आता है सो बोल देते हैं। अभी तुम बच्चे समझते हो,
रूहानी बाप हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं। अपने को आत्मा समझना चाहिए। अहम आत्मा ये शरीर लेती है, अहम आत्मा ने 84 जन्म लिए। जैसे जैसे कर्म करते हैं वैसे शरीर मिलता है। शरीर से आत्मा अलग हो जाती है तो फिर शरीर से प्यार नहीं रहता है। शरीर से आत्मा अलग हो गए, शरीर छोड़ दिया तो फिर शरीर से प्यार नहीं रहता, आत्मा से प्यार रहता है। आत्मा में भी प्यार तब है जबकि आत्मा शरीर में है। पितरों को मनुष्य बुलाते हैं, शरीर छोड़ दिया तो आत्मा से प्यार है उसका प्रमाण कि पितरों को मनुष्य बुलाते हैं। शरीर तो उनका खत्म हो गया फिर भी उनकी आत्मा को याद करते हैं, इसलिए ब्राह्मण में बुलाते हैं, कहते हैं फलाने की आत्मा आओ, ये भोजन आकर खाओ। गोया आत्मा में मोह रहता है, परंतु पहले शरीर में मोह था। कितनी सूक्ष्म बात है कि पहले शरीर में मोह था, शरीर छूटते ही शरीर से मोह समाप्त हो गया, आत्मा के साथ मोह हो गया। तो बाबा कहते पहले शरीर में मोह था, वह शरीर याद आता था। ऐसे नहीं समझते हैं कि हम आत्मा को बुलाते हैं, आत्मा ही सब कुछ करती है। आत्मा में अच्छे व बुरे संस्कार रहते हैं, पहले पहले हैं देह अभिमान, फिर उसके बाद और विकार आते हैं। सबको मिलाकर कहा जाता है विकारी। जिसमें यह विकार नहीं है उनको कहा जाता है निर्विकारी। यह तो समझते हो, बरोबर भारत में जब देवी देवता थे तो उनमें दैवी गुण थे। इन लक्ष्मी नारायण का है ही देवी देवता धर्म। जैसे क्रिश्चियन धर्म में मेल अथवा फीमेल सब क्रिश्चियन है, यह भी कहा जाता है देवी देवता। राजा रानी प्रजा सब देवी देवता धर्म के हैं। सतयुग में राजा रानी प्रजा सब देवी देवता धर्म के हैं। यह बहुत ऊंच सुख देने वाला धर्म है। बच्चों ने गीत भी सुना, यह आत्मा ने कहा कि बाबा ऐसी जगह ले चलो जहां मुझे चैन शांति हो, इस पाप की दुनिया से दूर कहीं ले चलो जहां मुझे चैन अर्थात शांति हो। वह तो है सुख धाम और शांति धाम। यहां बड़े बेचैन है, इस दुनिया के अंदर मनुष्य बड़े बेचैन है। सतयुग में बेचैनी होती नहीं, आत्मा जानती है। बाबा बिगर कोई चैन की दुनिया में ले जा नहीं सकते हैं। बाप कहते मुक्ति और जीवन मुक्ति ये दो सौगाते मैं कल्प कल्प लाता परंतु तुम भूल जाते हो। ड्रामा में भूलना ही है, ये भी लिखा हुआ है, ड्रामा में भूलना ही है। सब भूल जाए तब तो मैं आऊं। अभी तुम ब्राह्मण बने हो, तुमको निश्चय है हमने 84 जन्म लिए हैं। जो पूरा ज्ञान नहीं उठाएंगे वह पहले नहीं

समझते हो हम 21 जन्मों के लिए चैन पाएंगे। बाबा हमको वह रास्ता बता रहे हैं। हम अभी पतित हैं, इसलिए बेचैन है, दुखी है। जहां चैन हो उसको सुख शांति कहेंगे। तो अब तुम बच्चों की बुद्धि में आदि मध्य अंत का ज्ञान है, समझते हो बरोबर सतयुग में भारत कितना सुखी था। दुख अथवा बेचैनी का नाम नहीं था। अभी तुम पुरुषार्थ कर रहे हो, इसलिए स्वर्ग में जाने लिए। अभी तुम बने हो ईश्वरीय संप्रदाय के, और वह है आसुरी संप्रदाय के। कहते हैं ना पाप आत्मा, आत्माएं अनेक है, परमात्मा एक है, सब ब्रदर्स है। सब परमात्मा हो नहीं सकते, इतनी थोड़ी सी बात भी मनुष्य की बुद्धि में नहीं है। बाबा ने समझाया है कि सारी दुनिया बड़ा बेहद का टापू है, वह छोटे छोटे टापू होते हैं। इस बेहद टापू पर रावण का राज्य है। इन बातों को मनुष्य नहीं समझते हैं, वह तो सिर्फ कहानियां सुनाते रहते हैं। कहानी को ज्ञान नहीं कहा जाता, उनसे मनुष्य सदगति को पा नहीं सकते। ज्ञान से सदगति मिलती है, भक्ति का फल है ज्ञान, और ज्ञान से गति प्राप्त होती है, श्रेष्ठ गति, सदगति मिलती है। ज्ञान देने वाला एक बार, दूसरा न कोई। भक्तों की भगवान ही आकर रक्षा करते हैं, मनुष्य मनुष्य की रक्षा नहीं कर सकते। शिव बाबा सभी बच्चों को वर्षा देते हैं, वह बाप भी है, शिक्षक भी है, सतगुरु भी है, वकील बैरिस्टर भी है, क्योंकि जमघटों की सजा से छुड़ाने वाला है। बाबा बाप भी है, टीचर भी है, सतगुरु भी है, फिर बाबा कहते वकील और बैरिस्टर भी है, क्योंकि हमें जमघटों की सजा से छुड़ाने वाला है। सतयुग में कोई भी जेल में नहीं जाएंगे, बाप सबको जेल से छुड़ाते हैं। बच्चों की सर्वश्रेष्ठ सब मनोकामनाएं पूरी होती है। रावण द्वारा अशुद्ध कामनाएं पूरी होती है, बाप द्वारा शुद्ध कामनाएं पूरी होती है। शुद्ध कामनाएं पूरी होने से तुम सदा सुखी बन जाते हो। अशुद्ध कामना है पतित विकारी बनना। पावन रहने वाले को ब्रह्मचारी कहा जाता है। तुमको भी पवित्र रहना है, पवित्र बन और पवित्र दुनिया का मालिक बनना है। पतित से पावन एक बाप ही बनाते हैं। साधु संत आदि तो विकार से पैदा होते हैं। देवताओं के लिए ऐसे नहीं कहेंगे कि विकारी है या विकारों से पैदा हुए, वहां विकार होते ही नहीं। वह है ही पावन दुनिया। लक्ष्मी नारायण संपूर्ण निर्विकारी थे, भारत पवित्र था, यह अभी तुम समझते हो। सतयुग में प्योरिटी थी तो पीस प्रॉस्पेरिटी थी। सतयुग में प्योरिटी थी तो पीस प्रॉस्पेरिटी थी, सब सुखी थे। रावण राज्य जब से हुआ है तो गिरते आए, अभी तो कोई काम के नहीं रहे हैं, एकदम कौड़ी मिसल बन गए हैं। अब फिर हीरे मिसल बाप द्वारा बनते हो। भारत जब सतयुग था तो हीरे जैसा था, अब तो कौड़ी मिसल भी नहीं है। अभी तो इस समय संसार में कौड़ी मिसल भी नहीं है। अपने धर्म का ही किसको भी पता नहीं पड़ता, पाप करते रहते हैं। मनुष्य इतने पाप कर्म करने लग पड़े कि अपने धर्म का भी किसी को पता ही नहीं पड़ता। वहां तो पाप का नाम नहीं। तुम देवी देवता धर्म के नामी ग्रामी हो, देवताओं के ढेर चित्र है। और धर्म में देखेंगे एक ही चित्र रहता है। क्रिश्चियन पास एक ही क्राइस्ट का चित्र होगा, बौद्धियों के पास एक ही बुद्ध का। क्रिश्चियन क्राइस्ट को ही याद करते हैं, उनको नंस कहा जाता है।

करता है। नंस माना सिवाय एक क्राइस्ट के और कोई नहीं, इसलिए कहते नन बट क्राइस्ट। ब्रह्मचारी रहते हैं, तुम भी नंस हो, तुम अपने गृहस्थ व्यवहार में रहते नंस बनती हो, एक ही बाप को याद करती हो, नन बट वन, एक के सिवाय और कोई नहीं, एक शिव बाबा दूसरा न कोई। उन्हों की बुद्धि में फिर दो आ जाते हैं, वो भले नंस कहलाते हैं लेकिन बुद्धि में दो आ जाते, क्राइस्ट के लिए भी समझेंगे वह गॉड का बच्चा था, परंतु उनको गॉड की नॉलेज नहीं, तुम बच्चों को नॉलेज है। सारी दुनिया में ऐसा कोई नहीं जिसको परमात्मा की नॉलेज हो। परमात्मा कहाँ रहते हैं, कब आते हैं, उनका क्या पाठ चलता है, ये कोई नहीं जानते। भगवान को जानी जानन हार कहते हैं, समझते हैं वो हमारे दिल की बात को जानते हैं। क्या समझते हैं? कि भगवान जानी जानन हार है, वो हमारे दिल की बात को जानते हैं। बाप कहते मैं नहीं जानता, हमको क्या पड़ी है, जो हर एक के दिल को बैठ रीड करूंगा। हम आए ही है पतित को पावन बनाने। बाबा क्यों आए हैं? पतितों को पावन बनाने। अगर कोई पवित्र नहीं रहते हैं, झूठ बोलते हैं, तो नुकसान अपने को ही पहुंचाएंगे। गाया हुआ है, देवताओं की सभा में असुर जाकर बैठते थे, वहां अमृत बांटा जाता था, कोई विकार में जाकर फिर छिप कर आए बैठते तो वह असुर हुए ना। बाबा कहते कोई विकार में जाकर फिर छिप कर आए बैठते तो वह असुर हुए ना, आप पे ही अपना पद भ्रष्ट कर देंगे। हर एक को अपना पुरुषार्थ करना है, नहीं तो अपने ही सत्यानाश करते हैं। बस ऐसे जो छिप कर बैठ जाते हैं, कहते हैं हम विकार में थोड़ी जाते हैं, परंतु विकार में जाते रहते हैं। ये गोया अपने को ठगते हैं, अपनी ही सत्यानाश करते हैं। परम पिता परमात्मा जिसका राइट हैंड धर्मराज है, उनके आगे झूठ बोलते हैं तो खुद ही दंड के भागी बन पड़ते हैं। बहुत सेंटर्स में भी ऐसे होते हैं। बाबा जब पहली बार दिल्ली में गया था तो रोज एक आता था और विकार में जाता रहता था, पूछा जाता था जबकि पवित्र नहीं रहते हो तो आते क्यों हो, कहता था आऊंगा नहीं तो निर्विकारी कैसे बनूंगा। पवित्रता अच्छी लगती है परंतु रह भी नहीं सकता हूं, आखिरन तो सुधर जाऊंगा। खुद में एक उम्मीद तो थी कि आखिरन सुधर जाऊंगा, नहीं आऊंगा तो बेड़ा गर्क हो जाएगा और कोई रास्ता ही नहीं है, इसलिए हमको यहाँ आना पड़ता है। इतना समझता था कि और कोई रास्ता नहीं है इसलिए हमको यहाँ आना पड़ता है। बाप समझाते हैं, हाँ बाबा फिर उनको समझाते थे तुम वायुमंडल खराब करते हो, कहां तक ऐसे आते रहेंगे। पावन जो बनते हैं उनको पतित से जैसे घृणा आती है, कहते बाबा इनके हाथ का खाना भी अच्छा नहीं लगता। बाप ने युक्ति भी बताई है, खान पान की खिटपिट होती है, ऐसे तो नहीं नौकरी छोड़ देंगे, फिर युक्ति से चलाना होता है। कोई को समझाओ तो बिगड़ पड़ते हैं, पवित्र कैसे रहेंगे, यह तो कब सुना नहीं, सन्यासी भी रह नहीं सकते, जब घर बार छोड़ जाते हैं तब पवित्र रह सकते हैं। परंतु ये किसको भी पता नहीं कि यहाँ पतित पावन परमपिता परमात्मा पढ़ाते हैं, नहीं मानते इसीलिए विरोध करते हैं। शिव बाबा ब्रह्मा तन में आते हैं, कोई शास्त्र दिखाओ जहां लिखा हो कि शिव बाबा ब्रह्मातन में आते हैं,
यह तो गीता में लिखा हुआ है कि मैं साधारण बूढ़े तन में आता हूं, वह अपने जन्मों को नहीं जानता है, यह तो लिखा हुआ है। फिर तुम कैसे कहते हो कि परमात्मा कैसे मनुष्य तन में आएंगे? पति तन में ही आकर रास्ता बताएंगे ना। आगे भी आए थे और कहा था मामेकम याद करो, वही परमधाम में रहते हैं और कहते हैं मामेकम याद करो। श्री कृष्ण का शरीर तो मूल वतन में नहीं होगा, जो कहे मामेकम याद करो। एक परम पिता परमात्मा ही साधारण तन में प्रवेश कर तुम बच्चों को कहते हैं मामेकम याद करो, तो इस योग अग्नि से तुम्हारे पाप कट जाएंगे, इसलिए ही मुझे पतित पावन कहते हैं। पतित पावन जरूर आत्माओं का होगा ना, पतित भी आत्मा ही बनती है। बाप कहते तुम पवित्र आत्मा 16 कला संपूर्ण थी, अभी 9 कला, बिल्कुल ही पतित बन गए हो। मैं कल्प कल्प आकर तुमको समझाता, तुम जो काम चित्ता पर बैठ पतित बन जाते हो, फिर ज्ञान चित्ता पर बिठाकर तुमको पावन बनाता हूं। भारत में पवित्र प्रवृत्ति मार्ग था और अभी अपवित्र प्रवृत्ति मार्ग है, किसको भी चैन नहीं है। अब बाप कहते दोनों ज्ञान चित्ता पर बैठो, हर आत्मा को अपने अपने कर्मों अनुसार शरीर मिलता है, ऐसे नहीं कि दूसरे जन्म में वही पति पत्नी आपस में मिलेंगे, नहीं, इतनी रेस कर न सके। ये तो पढ़ाई की बात है ना, अज्ञान काल में हो सकता है, आपस में बहुत प्रेम है तो उनकी मनोकामनाएं पूरी हो सकती है। वह तो है पतित विकारी मार्ग, पति के पीछे पत्नी चिता पर बैठती है, दूसरे जन्म में भी जाकर उनसे मिलती है, परंतु दूसरे जन्म में उनको थोड़ी मालूम पड़ेगा। तुम भी बाबा के साथ ज्ञान चित्ता पर चढ़ते हो, यह छी छी शरीर छोड़ चले जाएंगे, तुमको यह अभी मालूम है। उनको तो नहीं रहता कि हम आगे जन्म में ऐसे साथी थे, तुमको भी बाद में वहां यह बातें याद नहीं रहेगी। अभी तुम्हारी बुद्धि में एम ऑब्जेक्ट है, मम्मा बाबा लक्ष्मी नारायण बनेंगे, विष्णु है देवता, प्रजा पिता ब्रह्मा को देवता नहीं कह सकते। ब्रह्मा सो देवता बनते हैं, ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा कैसे बनते हैं, यह अभी तुमने समझ लिया है। ये सारा राज बाबा कहते अभी तुमने समझ लिया है, अभी तुम जानते हो। चैन सिर्फ कहाँ मिलेगा? चैन सिर्फ स्वर्ग में ही होता है। कोई मरते हैं तो कहते हैं स्वर्ग गया, अर्थात चैन में गया, बेचैनी में पतित रहते हैं। बाप फिर भी कहते हैं अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। बाकी है डिटेल में समझने की बातें। बाप नॉलेजफुल है तो तुमको भी अपने जैसा नॉलेजफुल बनाएंगे, बाप की याद से तुम सतो प्रधान बनेंगे। ये आत्माओं की रेस है, जो जास्ती याद करेंगे वह जल्दी बनेंगे। यह है योग और पढ़ाई की रेस। स्कूल में भी रेस होती है ना, ढेर स्टूडेंट्स होते हैं, उनमें से जो नंबर वन निकलते हैं उनको स्कॉलरशिप मिलती है। एक ही पढ़ाई लाखों करोड़ों आत्माओं के लिए होती है, तो इतने स्कूल भी होंगे ना। अब तुमको यह पढ़ाई पढ़नी है, सबको रास्ता बताओ, अंधों की लाठी बनो, घर घर में पैगाम पहुंचाना है। अच्छा, हाँ, घर घर में पैगाम पहुंचाना है। बाबा कहते अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की
रूहानी मात पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते शुक्रिया बाबा शुक्रिया। आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार है, अब अशुद्ध कामनाओं का त्याग कर शुद्ध कामनाएं रखनी है। सबसे शुद्ध कामना है पवित्र बनकर पवित्र दुनिया का मालिक बने। कोई भी भूल को छिपाकर अपने आप को ठगना नहीं है। धर्मराज बाप से सदा सच्चा रहना है। दूसरी पॉइंट, ज्ञान चिता पर बैठ इस पढ़ाई में रेस कर भविष्य नई दुनिया में उच्च पद पाना है। योग अग्नि से विकर्मों के खाते को दग्ध करना है। आज का बाप दादा का मधुर वरदान हम बच्चों के प्रति है, बुद्धि की प्रीत एक प्रीतम से लगाकर सदा सन्मुख की अनुभूति करने वाले विजयी रत्न भव। बुद्धि की प्रीत एक प्रीतम से लगाकर सदा सन्मुख की अनुभूति करने वाले विजयी रत्न भव। प्रीत बुद्धि अर्थात बुद्धि की लगन एक प्रीतम के साथ लगी हुई हो। जिसकी एक के साथ प्रीत है उनकी अन्य किसी भी व्यक्ति व वैभव के साथ प्रीत जुट नहीं सकती। वे सदा बाप दादा को अपने सन्मुख अनुभव करेंगे। उन्हें मनसा में भी श्रीमत के विपरीत व्यर्थ संकल्प व विकल्प नहीं आ सकते। उनके मुख से व दिल से यही बोल निकलते, तुम्ही से खाऊं, तुम्ही से बैठूं, तुम्ही से सर्व संबंध निभाऊं। ऐसे सदा प्रीत बुद्धि रहने वाले ही विजयी रत्न बनते हैं। आज का स्लोगन है, चाहिए चाहिए का संकल्प आना भी रॉयल रूप का मांगना है। चाहिए चाहिए का संकल्प आना भी रॉयल रूप का मांगना है। आज का व्यक्ति इशारा, अपवित्रता के बीज को भी समाप्त कर संपूर्ण स्वच्छ पवित्र बनो। उसके अंतर्गत बाबा कहते, संगम युग पर बाप दादा ने सभी बच्चों को पहला व्रत दिया है, संपूर्ण पवित्र भव। यह पवित्रता का व्रत सिर्फ ब्रह्मचर्य का व्रत नहीं है, लेकिन ब्रह्मा बाप समान हर बोल में पवित्रता का वाइब्रेशन समाया हुआ हो, हर संकल्प में पवित्रता का महत्व हो, हर कर्म में कर्मयोगी जीवन का अनुभव हो, इसको कहा जाता ब्रह्मचारी सो ब्रह्माचारी। अच्छा, ओम शांति।